0: वजह से किसी पर्टिकुलर काम में उनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर मान लो कि पशुओं के बाड़ा बनाना है या फिर आपको उससे सीएनजी निकालना है या फर्नीचर बनाना है, तो उसके हिसाब से वैरायटी में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। जैसे अभी हम ब्लैक बेम्बो देखेंगे, उसकी वैरायटी थोड़ी डिफरेंट है, हैमिल्टोनी बेमिल्टोनी करके तीन चार वैरायटी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बांस से लगभग 25,000 प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो वो कैसे बनाए और उसके बारे में हम बात कर सकते हैं।
1: यहाँ पीछे कम से कम 4-5 तरह के बांस के झुंड दिख रहे हैं, इनके नाम क्या हैं, इनकी खासियत क्या है, यहीं से एक बार डॉक्टर विनोद से हम जानने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ में फिर बांसों के अधिकतम उपयोग क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। जी डॉक्टर साहब,
0: ये डंडा बांस है, लाठी बांस है, इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं और हर क्षेत्र में इनके नाम बदल जाते हैं, साइंटिफिक नाम सेम रहते हैं। लेकिन जो डंडा बांस है उसकी खासियत, जैसे पुलिस वाले डंडे रखते हैं या फिर मच्छरदानी लगाने के लिए रखते हैं, या बायोमास में भी इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हैमिल्टोनी बेमिल्टोनी और टूल्डा न्यूटन बालकोआ, इस तरीके से इनके एक पूरी फैमिली है। और इन फैमिली में दो तरीके के स्पेसिफिक बांस होते हैं, एक वो हैं जो दूर दूर फैलते हैं और एक वो हैं जो बिल्कुल बंच में एक साथ में निकलते हैं। तो इसमें दो मेजर वैरायटी हैं और ये कोई भी वैरायटी कहीं पे भी पैदा हो सकती है। जो ऐसी जगह है जहां पे बर्फ गिरती है, वहां पे थोड़ा वैरायटी सोच के लगाना पड़ता है और बहुत गर्म इलाकों में, उसके अलावा लगभग सभी वैरायटी सभी जगह पे चल जाती है।
1: बिल्कुल, यहाँ पर आखिर में मैं आपको ब्लैक बैम्बू की तरफ ले जाऊंगा और वहीं से फिर बांस का पूरा का पूरी जो खासियत है, बांस की जो उपयोगिता है पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे।
0: इसको सिमेंसिस बोलते हैं। इस बांस की खास बात यह है कि ये पूरा बंच में उगता है और ये बहुत ही गहरा होता है। आप देखेंगे एक पौधा लगाया था ये, और इस एक पौधे के कई हजार बन चुके हैं।
1: ये भी वॉल बनाने के काम आ सकता है।
0: हाँ, वॉल बनाने के लिए भी काम आ सकता है, लेकिन इसका ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है फर्नीचर में, अगरबत्ती की काड़ी बनाने में, या जो आपके चॉपस्टिक्स हैं, ऐसी सीधी चीजें जिनको मार्केट वैल्यू ज्यादा है उनमें इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये वाले जो बैम्बो है, इसके खास बात यह है कि ये हजारों की संख्या में उग जाता है और जिस साइड में इसको पानी मिलेगा, जिस साइड में इसको नमी मिलेगी,
1: उधर
0: उस साइड में ये बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो ये भी जैसे व्हाइट बेम्बो का एक वैरायटी है, इसका जो खास बात है ब्लैक बेम्बो का, ये इसको दो वैरायटी हैं, हैमिल्टोनी बेमिल्टोनी, इसको ब्लैक बेम्बो भी बोलते हैं। और इसकी खास बात ये है कि इसके पत्ते चौड़े होते हैं और इसकी जो बॉटनिकल जानकारी है वो हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पे। लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल ब्लैक कलर है और इस ब्लैक कलर की खास बात यह है कि जो ही वो ग्रीन उगता है वो ताजा प्लांट है, और जो ही वो काला हो जाता है
1: तो काट
0: ये काट लेने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इसको बजा के देखते हैं कि अच्छा। जितना पुराना हो गया उतना अच्छा है। और इसको काटने के लिए किसान भाई को क्या करना चाहिए कि वो इसको तीन जनरेशन में डिवाइड कर ले, कि एक तो दादा है, एक बाप है और एक पोता है। तो जो दादा है, मतलब 3 साल पुराना जो हो गया, उसको काटेंगे तो वो पूरी तरह पका हुआ है, तो पिछले साल वाले अगले साल तैयार हो जाएंगे, अगले साल तैयार हो जाएंगे। तो साल में एक बार इसकी अच्छे से कटाई करते रहें।
1: तो हमेशा आपको दादा को
0: निकालता रहना है, क्योंकि उसकी उम्र हो गई है, उसको नहीं निकालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो बांस एक ऐसा पौधा है जो जबरदस्ती पैसा देता है। अगर आप नहीं भी लेंगे तो बोलेगा कि भाई काटो मेरे को, मेरे पास पैसे रखने का अभी टाइम नहीं है। तो किसान के लिए एक जबरदस्त चीज है ये, अपने आप बढ़ता रहता है, कोई देखभाल नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगता है, कोई बीमारी नहीं लगती है। तो ये किसान के लिए बहुत ही अच्छा एक चीज है।
1: शुरू में डॉक्टर साहब, जब बांस की खेती करनी होती है किसी किसान को, उस समय तो कुछ समय के लिए उसका पानी, उसकी देखरेख, इस सब को थोड़ा सा समझना होता है।
0: इसमें ये घास की वैरायटी है, जैसे हरियाणा पंजाब राजस्थान में झुंडा एक उगता है, सरकंडा जिसको बोलते हैं, लगभग वही चीज है ये इसकी हाइट और जो मोटाई है वो बढ़ जाती है। इसको ज्यादा देखभाल की जरूरत है नहीं। जब स्टार्टिंग में लगाएंगे तो अच्छे से इसको सोच समझ के, इसके बारे में जान के लगाना चाहिए और आपके लोकल मार्केट में किस चीज की डिमांड है उसके हिसाब से लगाना चाहिए। फिर किसान को बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी सरकार की तरफ से भी और गैर सरकारी बहुत सारी संस्थाएं इसका चारकोल, सीएनजी पैलेट्स और तमाम सारी दूसरी चीजें बनाना चालू कर चुकी हैं, तो बेचने के लिए वैसे भी दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी ऐसी वैरायटी लगाएं जो लोकल मार्केट में जल्दी बिक जाती हैं, जैसे टूल्डा न्यूटन हैमिल्टोनी बेमिल्टोनी जैगेंटिस, तो ये फटाफट बिकने वाली वैरायटी है। और इस

0: को बाउंड्री से पैसे आने चालू हो जाएं, तो वो अपनी बाकी सारी फसल से ज्यादा पैसा देना चालू कर,
1: कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़े,
0: बिल्कुल जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए तो फिर अंदर भी लगाना चालू कर दें। और ये इसकी खास बात ये है कि मान लो कि कोई छोटा जोत का किसान है, मात्र एक एकड़ का किसान है, उसने खेत के चारों तरफ बैम्बो लगाया, बीच में एक पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर का सिस्टम है जिसको PQNK भी बोलते हैं, तो उस मॉडल पे उसने फल सब्जियां लगा दिया, बीच में थोड़ी बकरियां छोड़ दी या बाकी जानवर छोड़ दिए, तो उसके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बन जाएंगे और उसकी दीवार भी उसको पैसा देना चालू करेगी। आपने और कोई दीवार नहीं सुनी होगी जो पैसा देती हो, लेकिन बैम्बो की दीवार पैसा देती है। इसके साथ साथ
1: दीवार के लिए ब्लैक बैम्बू भी अच्छा है,
0: कोई भी बैम्बो लगा सकते हैं। आपके खेतों में पशु का नुकसान कितना है उसके हिसाब से सोचना चाहिए।
1: आपने 500 एकड़ जमीन में किसानों को बांस लगवाया है अभी तक, इसको लेकर के आप कितना उम्मीद से हैं?
0: यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा गया है कि पानी की भयंकर कमी होने वाली है हमारे देश में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, और हम पहले से ही ब्लैक जोन और डार्क जोन में, रेड जोन में आ चुके हैं, तो पानी आगे मिलेगा ही नहीं खेती करने के लिए। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जितना भी पानी अभी हमारे पास है उसका इस्तेमाल करते हुए बैम्बो लगाए जाए और एग्रीकल्चर की टेक्निक को समझ के पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर पे खेती की जाए, तो कम से कम पानी में किसान जिंदा रहेगा। इसके साथ साथ में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बांस भी जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी जड़ें लगभग 50,000 लीटर पानी को पकड़ के रखती हैं, और हर बरसात में ये पानी ज्यादा पकड़ के रखती हैं और बाकी पानी जमीन में छोड़ती रहती हैं। जमीन को ये ऑर्गेनिक करते हैं, फर्टाइल करते हैं, इसके आप देख रहे हैं हर जगह पे पत्ते जो गिरे हुए हैं, ये पत्ते जमीन को ढक के उसको ज्यादा नेचुरल बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम जनरेट करता है और इससे रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, आप जो सोच सकते हैं वो सब बनता है। तो किसान को ये एक ATM मशीन जैसा है, जैसे बकरी को किसान का ATM बोलते हैं, वैसे ही ये भी ATM है। जब मर्जी उसको काटा और 200-300-400 रुपए का एक डंडा बिक जाता है, तो उसकी इनकम का एक स्टेबल जरिया ये रहेगा। इसके बाद में आपने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत सारी सरकारों का और इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में जो हल्ला मचा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी बांस है, क्योंकि कार्बन सिंक करने में बांस का कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। ये हवा से धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सबको कंज्यूम करके अपने अंदर समा लेता है।
1: बाकी पौधों के अलावा ज्यादा CO2 को कंज्यूम करता है
0: जी, लगभग 130-135% ज्यादा लेता है ये, और उसका फायदा ये होता है कि हवा बहुत जल्दी साफ हो जाती है और ये ऑक्सीजन भी ज्यादा छोड़ता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ भी अनलिमिटेड है।
1: कार्बन क्रेडिट को लेकर के आपने डॉक्टर साहब कुछ काम किया है? मान लिया एक एकड़ में अगर 750 पौधे किसी किसान ने लगाए हैं, तो वो उसका कैलकुलेशन की भाई ये इतना CO2 कंज्यूम कर लेगा और जो फैक्ट्री चलाने वाला आदमी है वो उसे इतना पैसा उसको मिल सकता है, ठीक है, क्या कंपनसेशन है उसका?
0: इसके लिए अभी यूरोप में चालू हो चुका है और इंडिया में भी कुछ कंपनियों ने चालू किया है, और लगभग $75 पर टन के हिसाब से कंपनियां इस पे स्पेंड करेंगी, ये कंपलसरी उनके लिए हो चुका है। और जो इनकम है कार्बन क्रेडिट सेल करके, वो काफी अच्छा होने वाला है किसान को। एक मोटा मोटा अंदाजा मैं दूं तो 10-15 हजार से लेके और 60-70 हजार पर एकड़ उसको मिल सकता है बिना कुछ और एक्स्ट्रा किए,
1: अकेले कार्बन क्रेडिट से,
0: अकेले कार्बन क्रेडिट से। और प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल इसको लॉन्च किया है 15 अगस्त को कि कार्बन क्रेडिट हम सेल परचेज कर सकते हैं, जैसे हम शेयर मार्केट में सेल परचेज करते हैं, ठीक उसी तरीके से। तो ये कार्बन क्रेडिट का जो बिजनेस है इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ
1: पर मैं आपको बता दूं कि भारत में, जबकि उन्होंने, डॉक्टर साहब का कहना है और हम भी मानते हैं कि कार्बन क्रेडिट जैसी बातें यूरोप में, पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में ज्यादा होती हैं, फिर भी भारत के अंदर 4,000 करोड़ रुपया जो है कार्बन क्रेडिट के मार्केट में वहां से वो उठाया गया है। तो एक बात यह है कि जमीन से लेकर के और पूरे इकोसिस्टम को कैसे डील करता है अकेला बांस, ये एक बात यह है। एक साथ में बहुत बड़ी बात है जिसको हर किसान समझना चाहता है, क्योंकि वो अपने वॉलेट की तरफ देखता है। आपने बैम्बू की इकोनॉमी को समझा है, एक एकड़ में अगर वो 750 पौधे लगाता है तो एक एकड़ से वो साल भर में कितना पैसा वो अपने घर में ला सकता है, इसका कुछ अंदाजा?
0: जी देखिए, लगभग 3 साल बाद में, चौथी साल में कटना चालू हो जाता है, और ये एक पौधा लगाया गया था आपके सामने है, ये हजारों की संख्या में निकल चुके हैं इसमें, हम मान लें कि वो 10-15 डंडे ही काट पाएगा, तो अगर वो 10 डंडे भी काटेगा 7,500 डंडे उसके पास होते हैं, पर डंडा अगर 100 रुपए का भी बिक रहा है तो 7,500 रुपए का बनता है। तो आप 7.5 छोड़िए, 6 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख

0: तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, तो उसकी इनकम ये स्टार्टिंग है और वो हर साल बढ़ता रहेगा, और कार्बन क्रेडिट भी मिलने की संभावना अभी बढ़ती जा रही है, उसके अलावा सब्सिडी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल बैम्बो मिशन के अंडर दे रही है, कुछ राज्यों में हम चालू करवाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो जल्दी ही सब जगह चालू होने की संभावना है। तो किसानों के लिए एक ये परमानेंट एटीएम जैसा है, और वो लगाएंगे तो इससे मल्टीपल फायदे उठाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ज्यादातर किसान सब्जी की खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, सब्जी की खेती में एक एकड़ में वो लगभग 20,000 के जो बांस के डंडे होते हैं वो खरीद के लगाते हैं। तो अगर उसके खेत में दो बांस भी लगे हुए हैं तो उसको अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं उससे पूरा कर लेगा। अगर उसने थोड़ा ज्यादा लगाया तो मान लो 20,000 रुपए वहां पे सेव कर रहा है, पशुओं के बाड़े बनाने पे सेव कर रहा है, बाउंड्री को अच्छे से बना लेता है ताकि आवारा पशु उसके खेत खराब नहीं करें, तो उसको एक कंटिन्यूअस इनकम का स्ट्रीम चालू हो जाता है। इसके बीच में वो पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन और तमाम सारे दूसरे कार्य भी कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी को बढ़ई का काम आता है, इसका फर्नीचर बनाए, इसकी कटलरी बहुत अच्छी बनती है और डिस्पोजल आइटम बहुत अच्छे बनते हैं, तो अनलिमिटेड चीजें इसकी बना सकते हैं। और ये छोटे हथकरघा जो उद्योग होता है इसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसका भी वो फायदा उठा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा वो स्वरोजगार की तरफ जाएगा, तो हर रोज उसके घर में बैठ के उसको अच्छे खासे पैसे आते रहेंगे जितना वो किसी नौकरी में नहीं कमा पाए।
1: कई बार बांस के ट्रीटमेंट को लेकर के बात होती है कि ट्रीटमेंट अगर उसका नहीं किया गया तो उसकी जो एज है वो कम रह जाएगी, वो उतना ज्यादा सक्सेस नहीं होगा।
0: इसमें बोरोक्स पाउडर वगैरह से इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, वो उस वजह से करनी पड़ती है। अगर आपको मान लो कि फर्नीचर बनाना है, घर बनाना है, तो आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज अगर कुछ और काम कर रहे हैं इसका, जैसे चारकोल, पैलेट, सीएनजी, एथेनॉल, सीडी, ये सब बना रहे हैं, तो कोई खास जरूरत है नहीं उसके करने की, क्योंकि बांस की जो लाइफ है, आप उसको अगर हल्का सा वार्निश या पॉलिश करते रहे और हल्का सा ट्रीटमेंट भी कर लिया और उसका घर बना लिया, तो वो सैकड़ों साल में चला जाता है, है ना। तो बांस एक ऐसी चीज है जो रिन्यूएबल है, आप इसका घर अगर टूट भी गया तो दोबारा से आप बनाएंगे तो आपको सारी चीजें बांस से दोबारा मिल जाएंगी, और ये कार्बन नेगेटिव फुटप्रिंट वाला घर होगा। इसके साथ साथ में नेचुरल है, ब्रीदिंग हाउस होता है। आप नॉर्थ ईस्ट में अभी मेरे साथी जाके आए हैं, उन्होंने देखा कि बांस से खूबसूरत घर बना के अंदर से वो लिपाई कर देते हैं मिट्टी की।
1: नॉर्थ इंडिया में भी बांस से घर बनाने के कुछ मॉडल जो है, कुछ स्टार्टअप शुरू हुए हैं।
0: हाँ, बहुत सारे हुए हैं। आप चंडीगढ़ में भी देखेंगे सेक्टर 15 में वो रेडी वगैरह लगा रहे हैं, पूरा बांस से डेकोरेशन किया है, बांस का ही बनाया है। फाइव स्टार होटलों में मैंने कई सारी जगह पे देखा, उन्होंने बांस से बहुत अच्छा डेकोरेशन और जो रूफ टॉप है उसके ऊपर हट्स वगैरह बांस की बनाई है। इसके अलावा चंडीगढ़ के आसपास में बहुत सारे ऐसे जगह बनी हुई है जहां पे बांस से घर बने हुए हैं, और पटियाला में और भी कई सारी जगह पे लोगों ने फुल फ्लैज घर बनाए हुए हैं बांस के, और टूरिज्म इंडस्ट्री, नेचुरोपैथी सेंटर, कई बार खेतों में लोग हट्स बनाते हैं इसकी खूबसूरत वाली, तो इसकी दुनिया भर की चीजें ऑलरेडी बन चुकी हैं और बन रही हैं। पहले दिक्कत ये थी कि बांस अवेलेबल नहीं था, इसके ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत हाई है अगर आप नॉर्थ ईस्ट से लेके आएंगे तो उसकी वजह से इतना लोग ज्यादा एनकरेज नहीं फील कर रहे थे। अभी लोकल में जब हम बांस लगाएंगे तो इसकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो हजारों की संख्या में आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अगर सरकार भी सिग्नल दे चुकी है कि अब आपको बांस को काटने में, खरीदने में, ट्रांसपोर्ट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी जो है बैम्बू वॉल जो है वो राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर पर वो करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, और सबसे खास बात यह है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को डील करता है, सबसे खास बात यह है कि ये पानी से डील करता है, अगर आपका स्लाइन वाटर है तो भी ये उस पानी में भी ये हो सकता है, आपके नमकीन पानी में भी ये हो सकता है, उसे बिल्कुल 7 PH का वाटर ही नहीं चाहिए, तो इसको लेकर के, और दूसरा उसकी जो इकोनॉमी है पर एकड़ है, बाउंड्री को लेकर के है, ये सब इतना ज्यादा है कि अगर आपने बांस को अपना मिशन बनाया तो ये बैम्बू मिशन केवल सरकार का मिशन नहीं बल्कि हर परिवार का मिशन भी बन सकता है। तो स्मार्ट खेती में मुझे इजाजत दीजिए, अगर आपने किसी तरह का कोई बीड़ा उठाया है, अगर आपने अपने यहां पर किसी तरह की स्मार्टनेस दिखाई है खेती में, तो आप हमें जरूर बताइए, हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहां की स्मार्ट खेती।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बेटे आप सभी? यू आर ऑल वेलकम इन अवर टुडे सेशन. आज का बेटे हमारा जो सेशन है, इट्स ए करियर काउंसलिंग सेशन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स. स्पेसिफिकली हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे इस करियर काउंसलिंग सेशन के अंदर. हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट करियर ऑप्शंस के, उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज, एकेडमिक कोर्सेज, इसके अलावा कुछ ऐसे जनरल ऑप्शंस जो ओपन है स्पेसिफिक टू कॉमर्स स्टूडेंट्स. आई दिनेश मिगलानी वेलकम ऑल ऑफ यू इन अवर क्लासेस. वी हैव वेबसाइट www.examtv.in. हम बेटे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द टुडे सेशन, दैट इज कॉमर्स स्टूडेंट करियर काउंसलिंग. बेटे जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में आज भी काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल, नॉन मेडिकल की तरफ जाते हैं, और जनरली पेरेंट्स ये मानते हैं जिन बच्चों की 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो वो उनको मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन कराते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए. पर ट्रेंड चेंज हो चुका है. आज पेरेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर भी करियर ऑप्शंस की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं अपने बच्चों के लिए. कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें हर स्टैंडर्ड का बच्चा, बिलो एवरेज, एवरेज या हम कहें कि हाई आईक्यू लेवल स्टूडेंट अपना करियर बिल्डअप कर सकता है, क्योंकि काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर. तो बेटे हमने अपने ऑप्शंस को डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा बीबीए, एमबीए, लॉ, उसके साथ साथ एनडीए, जो हर कॉमर्स का स्टूडेंट अपीयर कर सकता है. फिर हम अपने कोर्सेज में बात करेंगे बेटे, जो स्पेसिफिक कॉमर्स के बच्चे ही आ सकते हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप, एक्चुरियल साइंस, इसके साथ साथ बीकॉम, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स, क्या स्कोप है इनके, या लास्ट में हम गवर्नमेंट जॉब्स की भी बात करेंगे कि वाइल डूइंग योर बीकॉम आप बेटे साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. सबसे पहले मैं यहां डिस्कस करूंगा बेटे आईपीएम, जो आजकल काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट. वैसे तो अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद कैट का एग्जाम दिया जाता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ज्वाइंटली कंडक्ट करवाते हैं. आज से 10 ईयर्स एगो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर हैज स्टार्टेड 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमबीए. अभी 2 साल पहले आईएम रोहतक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक ने भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमबीए का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो आईपीएम के नाम से जाना जाता है. आईपीएम के लिए आपको आईपी मैट का एग्जाम अपियर करना रहता है, जो एक ऑनलाइन टेस्ट है. आईएम रोहतक, आईएम इंदौर दोनों सेपरेट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं. दोनों के सिलेबस में कुछ पार्ट सिमिलर है, कुछ पार्ट डिफरेंट है. मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये रोहतक और इंदौर दोनों के एग्जाम में पूछा जाता है. आईएम रोहतक में मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के अपार्ट फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. तो ये 3 सेक्शंस में आपका पेपर रहेगा. एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद में आपको सेकंड स्टेज में अपीयर करना रहता है, जिसे हम पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट कहते हैं. उसमें ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज रहता है, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, राइट? तो जो स्टूडेंट 12th के बाद ही अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज में जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि एमबीए ही करना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो आईएम रोहतक एंड आईएम इंदौर का रहता है. इसके साथ साथ आप बेटे अगर एमबीए में, क्योंकि कई और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो 5 ईयर एमबीए ऑफर करती हैं, बट टॉप कॉलेजेस की बात करें तो आईएम इंदौर एंड आईएम रोहतक. फिर उसके बाद सपोज आपका एमबीए में एडमिशन नहीं होता, आप बीबीए, बीएमएस के बारे में भी सोच सकते हैं. ये आपके बैचलर कोर्सेज होते हैं, जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो 3 ईयर के प्रोग्राम रहते हैं,
और इनको करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, या अगर अच्छे कॉलेज से आपने बीबीए बीबीएस किया है तो बेटे 3 ईयर के बाद ही आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। तो अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसमें सबसे टॉप पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट के नाम से पेपर कंडक्ट कराती है, जिसे हम जेएटी कहते हैं, जैट डीयू जैट कहते हैं। इसमें बीएमएस बीएफआईए बीबीए प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जिसमें शहीद सुखदेव कॉलेज, केशव महाविद्यालय एंड नंबर ऑफ अदर कॉलेजेस आर देयर। ये अपना एक ज्वाइंट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके पास में कॉमर्स के अंदर। इसके साथ साथ जो इसका एंट्रेंस एग्जाम रहता है उसमें 4 सेक्शंस पे फोकस होता है। मैथमेटिक्स जिसमें 10th लेवल एज वेल एज 12th लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्बल एबिलिटी, इसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। डीयू जैट एग्जाम के अंदर आपकी फर्स्ट स्टेज के साथ साथ आपके 12th के मार्क्स की भी वेटेज रहती है, तो फाइनल मेरिट जो बनता है उसमें आपका टेस्ट के मार्क्स प्लस 12th के मार्क्स की वेटेज दोनों को ऐड करके मेरिट बनाई जाती है। सिमिलरली सिम्बोसिस पुणे के मैनेजमेंट कॉलेज में भी बीबीए के प्रोग्राम है, एससीटी के नाम से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें पुणे नोएडा हैदराबाद 3 सेंटर्स पर बीबीए ऑफर की जाती है। इसके साथ साथ आप एनपैट नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज मुंबई और बेंगलोर के कैंपस में बीकॉम ऑनर्स बीएससी इकोनॉमिक ऑनर्स बीएससी फाइनेंस इस तरह के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जो इक्विवेलेंट टू बीबीए है। तो आप देखते हैं 12th के बाद काफी बच्चे ऐसे हैं जो बीबीए बीएमएस या 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमबीए के लिए प्रिपरेशन करते हैं। इन सब में प्रिपरेशन का एडवांटेज क्या रहता है कि एंट्रेंस एग्जाम जो है उसमें आपके 12th के सब्जेक्ट्स का कोई रोल नहीं है। अगर आप अकाउंट्स में इकोनॉमिक्स में बिजनेस स्टडीज में इफ यू आर नॉट गुड तो नो प्रॉब्लम, आपको जो भी एंट्रेंस एग्जाम है वो एक तरह से मल्टीपल च्वाइस पेपर रहता है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, और कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें क्वेश्चंस जो है वो मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से एसोसिएटेड है। तो अगर आप 10th के बाद से ही इन एग्जाम्स को टारगेट करें, इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, डेली कुछ टाइम स्पेयर करें, हम भी अपने वेबसाइट के थ्रू काफी कोर्सेज ऑफर करते हैं बहुत ही लो प्राइस के ऊपर, तो आप बेटे हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.examtv.in जहां आईपीएम का प्रोग्राम हम ऑफर करते हैं। इसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट के बाद बेटे नेक्स्ट आई स्पेंड सम टाइम ऑन लॉ। आजकल पहले तो बेटे माना जाता था कि आर्ट्स का स्टूडेंट ही लॉ में जाता है, बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम में मेडिकल नॉन मेडिकल कॉमर्स काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बेटे क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं। क्लैट मतलब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये प्राइमली एनएलयूज कंडक्ट कराती हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। जैसे बेटे आप इंजीनियरिंग में आईआईटीज का नाम लेते हैं, अगर आपको एमबीबीएस करना है तो एम्स का नाम रहता है। सिमिलरली अगर आपको लॉ करना है तो क्लैट इज द टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज 21 एनएलयूज है इंडिया में ज्वाइंटली कंडक्ट कराती हैं इस एग्जाम को, जो मई मंथ में होता है। इसके साथ साथ कुछ और कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस एलसेट का स्कोर लेते हैं, एनएलयू दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली एआईएलटी का स्कोर लेती है। सिमिलरली पुणे में जो लॉ कॉलेज है सिम्बोसिस दे कंडक्ट देयर एग्जाम इन नेम ऑफ एससीटी। जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं इन सब का एग्जाम पैटर्न मोर और लेस इज सेम, वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स वेरी लिटिल पोर्शन, लीगल एप्टीट्यूड जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर, इसके साथ साथ जर्नल स्टडीज जिसमें आपके स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लैट
में 150 क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलरली AIELTS में भी 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। एक सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि क्लैट के अंदर आपके 12th के मार्क्स की कोई वेटेज नहीं है, आपको ओनली एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं तो बेटे विदाउट गिविंग एनी वेटेज टू योर 12th मार्क्स या कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता, ओनली आपका एंट्रेंस के बेस पर आपका एडमिशन होगा, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। क्योंकि NLU's में जैसे आपका मैनेजमेंट कॉलेज में MBA करने के बाद आपकी अच्छी प्लेसमेंट होती है, सिमिलरली टॉप NLU's जिसमें NLU बेंगलोर, NLU हैदराबाद, NLU भोपाल, जोधपुर, लखनऊ, इस तरह की नंबर ऑफ टॉप NLU's आर देयर, तो अगर आप इनमें कहीं भी आपका लॉ में एडमिशन हो जाता है तो 5 ईयर के बाद में यू इजिली गेट कॉरपोरेट प्लेसमेंट्स, या आपको लॉ फर्म्स में डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, अच्छी सैलरी पे जॉब मिल जाती है। तो जो स्टूडेंट लॉ के बारे में इंटरेस्टेड हैं, तो बेटे बीकॉम होना, कॉमर्स में एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं कि वो लॉ नहीं कर सकते, लॉ भी उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। तो प्लस वन से ही आपको बेटे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और इसके बाद आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट www.examtv के थ्रू क्लैट का कोर्स ऑफर करते हैं, इसके साथ साथ हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज भी आते हैं क्लैट के, तो बेटे आप उनको भी देख सकते हैं एट ए वेरी मिनिमम प्राइस। इसके बाद एक बहुत बड़ा मिथ रहता है कि बेटे जिस बच्चे ने कॉमर्स ले लिया तो वो डिफेंस में नहीं जा सकता, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली NDA को यहां इंक्लूड किया है। NDA मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA में 3 स्ट्रीम्स है बेटे, एक आपकी आर्मी है, सेकंड एयरफोर्स है, थर्ड नेवल है। एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के लिए 12th में नॉन मेडिकल होना एसेंशियल है, बट आर्मी के लिए आप बेटे कॉमर्स आर्ट्स के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ये भी कोई एसेंशियल नहीं कि 12th में आपके पास में मैथमेटिक्स हो, बट एंट्रेंस एग्जाम में 12th के मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैथ्स होना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो बेटे अगर आपका NDA में जाने का इंटरेस्ट है, तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड अगर आपकी है तो यू डोंट नीड टू वरी, आप NDA का एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। या मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा बेटे कि क्वालिफिकेशंस क्या है और NDA एग्जाम में क्या क्या आता है। NDA एग्जाम की क्वालिफिकेशन जो है, एज लिमिट है 16 से 18.5 ईयर्स तक का। जनरली जब आप 12th क्लास में होते हैं, सितंबर के मंथ में एग्जाम होता है, 12th अपीयर जिस साल आप कर रहे हैं उस साल, तो आप वो एग्जाम दे सकते हैं। फिर बेटे नेक्स्ट एग्जाम इसका आपका अप्रैल में होता है और फिर नेक्स्ट सितंबर में, तो 2 से 3 बार आप अटेम्प्ट दे सकते हैं NDA का। NDA भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होता है, बट कई बार पेरेंट्स अनअवेयर होते हैं या बच्चों को इस बात का पता ही नहीं होता कि कॉमर्स का स्टूडेंट भी NDA का एग्जाम दे सकता है। NDA का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो बेटे 2 पार्ट्स में आता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो रहता है उसमें आपका 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स है, और पेपर 2 600 मार्क्स का पेपर रहता है, पेपर 2 जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जनरल इंग्लिश 200 मार्क्स एंड जनरल स्टडीज 400 मार्क्स। जनरल स्टडीज में आपके 10th स्टैंडर्ड तक के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इसके साथ साथ साइंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं, और जनरली 10th क्लास तक तो आपने GS पढ़ा ही होता है, तो ऐसी बात नहीं है, आप थोड़ी सी प्रिपरेशन अगर करें तो NDA भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। NDA में ये आपकी स्टेज 1 होती है, स्टेज 2 के लिए आपको SSB क्वालिफाई करना रहता है। SSB में भी 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज द स्क्रीनिंग जो डे 1 पर होती है आपकी। स्क्रीनिंग में क्वालिफाई होने के बाद आपका स्टेज 2 स्टार्ट होता है, 4 डे का इंटरव्यू रहता है, नंबर ऑफ टेस्ट आर देयर। हमने एक अलग सेशन बनाया हुआ है कि SSB में क्या क्या इंक्लूड है, तो बेटे आप हमारे YouTube चैनल से उसके बारे में देख सकते हैं। NDA के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपको सिखाई जा सके,
एनडीए का आपकी एनडीए में जो जो टेस्ट किया जाता है आपके अंदर, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, आपकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट बने हुए हैं। तो आप एनडीए भी एक अच्छा ऑप्शन सोच सकते हैं बेटे, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बट ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स आप जरूर रखिए अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, एनडीए के अंदर जाना चाहते हैं तो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बेटे अब मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा कि सपोज मैं इन कोर्सेज में नहीं जाना चाहता, बीबीए एमबीए नहीं करना चाहता, लॉ नहीं करना चाहता, मैं जनरल एकेडमिक कोर्सेज की तरफ जाना चाह रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट जो है एकेडमिक कोर्सेज में है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए हम क्यों जनरली बच्चे को बच्चा अवॉइड करता है कि बीकॉम बीए इकोनॉमिक ऑनर्स ना करे, रीजन क्या है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं बेटे कि ट्वेल्थ के बाद वो एक ऐसी ट्रैक में एडमिशन ले ले कि उसके बाद फिर उसे सोचना ना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बेटे एमबीए किया तो क्लियर है, आपका एमबीए करोगे, एमबीए के बाद आप जॉब करोगे, मतलब आपका एक लाइन सेट हो गया। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एडमिशन लिया, ट्वेल्थ के बाद सीपीटी का एग्जाम दिया, अभी मैं सारे एग्जाम्स की बात करूंगा, तो उसमें क्या है कि आपने अगर सीएम एडमिशन ले लिया तो क्लियर है बेटे, पेरेंट्स को एक बात लाइन क्लियर है, बच्चे ने सीए ही करनी है। आपने सीएस किया तो पेरेंट्स के माइंड में क्लियर है वे सीएस ही करेगा। अगर आप बीकॉम बीए इकोनॉमिक ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स बीकॉम पास किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो थ्री इयर्स के बाद में फिर से आपके आगे सेम क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट नेक्स्ट। इसलिए थोड़ा पेरेंट्स अवॉइड करते हैं, ट्राई किया जाता है कि बच्चा ट्वेल्थ के बाद ही किसी प्रोफेशनल लाइन में एंटर कर जाए, सो दैट फोर फाइव इयर्स के बाद ही कैन गेट द जॉब। अब बेटे जो बच्चे इन कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाते, या काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका टारगेट होता है कि इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से आपने बीकॉम ऑनर्स करना है, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स में एडमिशन लेना है, जिसमें श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्रीराम कॉलेज, सेंट स्टीफन्स कॉलेज, नंबर ऑफ कॉलेजेस आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना मतलब आपको ट्वेल्थ में मार्क्स बहुत अच्छे चाहिए, प्योरली मार्क्स बेस्ड एडमिशन है, तो इसलिए ट्वेल्थ में मार्क्स की परफॉर्मेंस मैटर करती है। और अगर आप डीयू की बात करें नॉर्थ कैंपस के अंदर तो 98%+ मार्क्स पे ही बीकॉम में एडमिशन होता है, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, मिरिंडा हाउस, खालसा कॉलेज, डीआर कॉलेज, नंबर ऑफ कॉलेजेस आर देयर इन नॉर्थ कैंपस। सिमिलरली साउथ कैंपस में वेंकटेश्वरा कॉलेज, नंबर ऑफ कॉलेजेस आर देयर। आप जब एडमिशन लेने की बात करेंगे तो आप बेटे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस, किस कॉलेज में लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा। पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है बेटे कि बीकॉम या बीए में एडमिशन लेना मतलब तीन साल के बाद आपके आगे फिर वही क्वेश्चन है व्हाट नेक्स्ट। जनरली फिर वहां भी बच्चा ऑप्शन देखता है, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीकॉम करने के बाद में एमबीए की प्रिपरेशन करते हैं, कैट का एग्जाम देते हैं, काफी स्टूडेंट्स एमकॉम परस्यू करते हैं, नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जिनको टीचिंग लाइन में जाने का इंटरेस्ट है, एमकॉम के बाद बीएड करते हैं, स्कूल लेवल टीचिंग में आप एंटर कर सकते हैं। तो एक तरह से पॉइंट ये यही है कि बेटे अगर आप थ्री ईयर के बाद में आपको फिर सोचना पड़ेगा व्हाट नेक्स्ट, राइट। लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करते हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में भी, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास में डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। हाँ, टॉप कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो रहा है बीकॉम के अंदर तो प्लेसमेंट्स भी अच्छी हैं, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, सेंट स्टीफन्स कॉलेज में, बीकॉम ऑनर्स करने के बाद से ही आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है, बट वो कुछ सेलेक्टेड ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अगर हम जनरल स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्हें बीकॉम के साथ साथ आगे के लिए प्लानिंग करना पड़ता है पहले से ही कि आगे वो क्या करेंगे। इसके बाद बेटे अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी स्ट्रीम्स के बारे में जो स्पेसिफिकली कॉमर्स स्टूडेंट ही ऑप्ट करता है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप, एक्चुरियल स्टडीज, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉमर्स स्टूडेंट के लिए स्पेसिफाइड स्ट्रीम्स हैं। सबसे पहले मैं एक्चुरियल साइंस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। एक्चुरियल साइंस एक नया स्ट्रीम है, अभी भी काफी बच्चे इस स्ट्रीम में नहीं जाते,
आप देखेंगे अपने आसपास में आपको बहुत कम स्टूडेंट्स मिलेंगे जो एक्चुरियल साइंस में कुछ कोर्स कर रहे हैं। एक्चुरियल बेसिकली स्टडी ऑफ इंश्योरेंस होता है, रिस्क फैक्टर को स्टडी करना। आप देखिए बेटे, जितनी इंश्योरेंस पॉलिसीज बनती हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ केयर में है, बिजनेस में है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, तो उसमें रिस्क फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये सारा काम जो होता है, ये एक्चुरीज का वर्क होता है, वो प्रोफेशनल्स होते हैं इस फील्ड के। एक्चुरीज का जो पैटर्न है, उसके लिए बेटे ट्वेल्थ के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मैथमेटिक्स मस्ट होता है ट्वेल्थ में, ठीक है। उसके बाद बेटे टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद आप एक्चुरियल इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाता है। बॉम्बे में इंस्टीट्यूट है, बाकी दिल्ली में इसकी ब्रांच है। इसमें आपको टोटल 15 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं, जिसमें आप एक बार में दो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आप ये मान के चलिए बेटे, अगर आपके 4-5 एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको इजिली जॉब मिल जाती है एज एन एक्चुरी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक ठीक ठाक अर्निंग अपनी कर सकते हैं। तो जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है ज्यादा आगे स्पेंड करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले जिन कोर्सेज की बात करी जिसमें एमबीए, बीबीए या हमने लॉ की बात करी, तो वो बेटे वो कोर्सेज है जिनका फीस स्ट्रक्चर काफी हाई है। और हम कई बार देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल कैपेसिटी इतना नहीं होता कि हमें वो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा सके, पर बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, दे वांट टू डू समथिंग, तो उनके लिए एक्चुरियल साइंस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत ही कम फीस में सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड है, आपको बेटे सेल्फ स्टडी करनी है। पेपर क्वालिफाई करते चलिए, आज भी आप अगर नेट पे सर्च करके देखें द मोस्ट पेड प्रोफेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपको पता चलेगा बेटे एक्चुरी जो है वो मोस्ट पेड प्रोफेशन है यूएसए के अंदर। इसके साथ साथ इंडिया में चेन्नई एक सेंटर है इंश्योरेंस कंपनीज का, मैक्सिमम जॉब्स जो जनरेट होती हैं बेटे साउथ इंडिया में एक्चुरीज की जॉब जनरेट है चेन्नई के अंदर। बट एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप 7-8 एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप 1 लाख पर मंथ की जॉब इजिली आपको मिल जाता है, और जो एक बहुत बड़ा बहुत मुश्किल टारगेट नहीं होता। थोड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कम है, आप सर्च भी करेंगे नेट पे भी सर्च करने बैठेंगे तो आपको बहुत ही कम इंस्टीट्यूट मिलेंगे जो एक्चुरियल साइंस से रिलेटेड, एक्चुरियल स्टडी से रिलेटेड पढ़ाते हैं। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं बेटे, अगर आपका इंटरेस्ट एक्चुरियल साइंस में जाने का है, क्योंकि इसके जो सब्जेक्ट्स हैं स्टेटिस्टिक्स से मैच करते हैं, तो आप बीए स्टेटिस्टिक्स ऑनर्स कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीए स्टेटिस्टिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं, उसके साथ साथ एक्चुरियल स्टडीज को फॉलो करते हैं। इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी सदाबहार प्रोफेशन कॉमर्स के बच्चों के लिए। पहले तो यही माना जाता था बेटे जिस बच्चे ने कॉमर्स में एडमिशन लिया है मतलब उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है, ठीक है, इसलिए इसको मैंने सबसे बाद में रखा है क्योंकि ये सब बच्चों को ऑलरेडी पता ही होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सीए जो है वेरियस डोमेन में काम करता है, जैसे ऑडिट है, टैक्सेशन है, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस है। सीए के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, उसके बाद बेटे सीपीटी का एग्जाम रहता है। सीपीटी मतलब कॉम्पिटेंसी प्रोफेशनल टेस्ट। सीपीटी टेस्ट में कुछ पेपर सब्जेक्टिव है, कुछ ऑब्जेक्टिव है। कॉमर्स का बच्चा ही अपीयर कर पाएगा, क्योंकि अगर आपके पास में कॉमर्स नहीं है, सीपीटी के अंदर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन, तो ये 4 सब्जेक्ट्स का पेपर रहता है। तो अगर आपके पास में कॉमर्स नहीं है तो बेटे अकाउंटेंसी, बिजनेस ये आपको पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। तो जनरली एडवाइजेबल यही रहता है कि कॉमर्स स्टूडेंट जो है उसने +1 +2 में ये सारे कोर्सेज किए होते हैं, अकाउंटेंसी उसने पढ़ा रहता है, तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम आपका सीपीटी के एग्जाम में रहता है। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन से आप सीपीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। सीपीटी एक तरह का फर्स्ट स्टेप है, आप ये कह सकते हैं कि सीपीटी इज एन एंट्रेंस गेट। आप एंटर कर जाएंगे, आपका सीए में एडमिशन हो जाएगा। सीए में स्टेजेस हैं बेटे, सबसे पहली स्टेज आपकी आईपीसी है, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी जिसे हम कहते हैं। इसमें आपको
टू ग्रुप्स क्वालिफाई करने होते हैं, एक बार में दे सकते हैं या आप दोनों ग्रुप्स को एक बार में भी दे सकते हैं, आपकी च्वाइस है। आईपीसी स्टेज वन क्वालिफाई होने के बाद थ्री ईयर की आर्टिकलशिप रहती है आपकी। थ्री ईयर आर्टिकलशिप के साथ साथ आप आईपीसी फाइनल की प्रिपरेशन भी करते हैं, सीए फाइनल जिसे हम कहते हैं, और थ्री ईयर आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं, और एक बार आपका सीए फाइनल के एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तो यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आप देखेंगे बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, पर्सनल प्रैक्टिस कर सकते हैं आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज के टाइम में टैक्सेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है जीएसटी आने के बाद, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्कोप हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। इसके साथ साथ बैंक्स में जॉब्स मिल जाती हैं, प्राइवेट कंपनीज में जॉब्स मिल जाती हैं सीए की, तो ये काफी ज्यादा स्कोप है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी ट्राई कर सकते हैं, पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वैकेंसीज आती हैं। और आप ये मान के चलो बेटे कि अगर आपका रैंक अच्छा है सीए के अंदर तो टॉप कंपनीज में बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। तो कॉमर्स स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में तो उनका फर्स्ट टारगेट है ही है, ये वो अपना प्लान कर सकते हैं। इसके बाद बेटे कंपनी सेक्रेटरीशिप, सीएस भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। जनरली जो बच्चे सीएस में एडमिशन लेते हैं तो सीएस के साथ साथ बेटे वो एलएलबी भी करते हैं, ड्यूअल क्वालिफिकेशन हो जाती है। कंपनी सेक्रेटरीशिप जो है ये आईसीएसआई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ट्वेल्थ के बाद इसमें सीएस फाउंडेशन का कोर्स होता है, ये एक तरह का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सीएस फाउंडेशन, सीएस करने के लिए सब्जेक्टिव पेपर रहता है, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी हैं उसमें और कुछ आपके जनरल सब्जेक्ट जैसे आपका मैथमेटिक्स है। सीएस फाउंडेशन क्वालिफाई होने के बाद आप बेटे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम देते हैं, एग्जीक्यूटिव कोर्स, उसके बाद आपकी 15 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहती है, फिर बेटे आप प्रोफेशनल प्रोग्राम कोर्स देते हैं, तो इस तरह से आप एक सीएस बन जाते हैं कंपनी सेक्रेटरीशिप। बेसिकली सीएस का जो काम क्या रहता है कि जितने भी कंपनीज हैं उनको कैसे अपनी कंप्लायंसेज करनी है कंपनी लॉ के अंडर, तो ये सारा सीएस का वर्क रहता है। तो बेटे अगर आपने सीएस के साथ लॉ भी किया हुआ है तो आप एज ए प्रैक्टिसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा स्कोप है, हार्डवर्किंग है, थोड़ा सेल्फ स्टडी ज्यादा रिक्वायर्ड है और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आर गुड इन द सीएस ऑल्सो। तो ये बेटे कुछ वो एग्जाम्स थे जो मैंने आपको बताए जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली। फिर काफी स्टूडेंट्स आज के टाइम में ऐसा भी है जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क नहीं करना चाहता बट बीकॉम में एडमिशन लिया है, तो बेटे उसके बाद वो सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकता है। जनरली गवर्नमेंट जॉब मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। अगर हम एक दो एग्जाम्स को छोड़ दें जिसमें एसएससी सीएचएसएल जो 12th बेस पर एग्जाम है, अदरवाइज मैक्सिमम एग्जामिनेशन की जो क्वालिफिकेशन है दैट इज आफ्टर ग्रेजुएशन। या मैंने लिस्ट ऑफ एग्जाम्स दिया है जिसमें हमने अलग अलग गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के बारे में बात करी है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जिसे हम कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर, एलआईसी, आईबीपीएस, आरबीआई। एक टाइम पर तो ये माना जाता था कि कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वो बेटे बैंक में जॉब्स के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट होता है, बट आज के टाइम में आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है बैंक पीओ का एग्जाम रहता है, उसमें मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स सभी टाइप के स्टूडेंट आते हैं। हाँ ये जरूर है कि आपको कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में कई एरियाज में हेल्प हो जाती है। तो ये दिस द लिस्ट ऑफ द एग्जाम। अब थोड़ा सा टाइम बेटे मैं आपको, वैसे तो हमने अलग अलग सेशंस में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कैसे करें, बैंक पीओ के एग्जाम में क्या रहता है, एसएससी एग्जाम में क्या रहता है, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप अलग अलग सेशंस देख सकते हैं जिसमें हमने बहुत ही एलाबोरेटली एक एक एग्जाम को कवर किया है ताकि स्टूडेंट्स उस एग्जाम के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले पाए। मैं इन ब्रीफ आपको बताऊं, जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स हैं मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर आपको बेटे टू स्टेजेस में पेपर रहता है। फर्स्ट आपकी प्रिलिमिनरी स्टेज जिसे हम स्टेज वन कहते हैं,
और जो पेपर पैटर्न है बेटे उसमें फोर सब्जेक्ट्स पे आपको कमांड बनानी है, चाहे आप बैंक पीओ का एग्जाम दें, चाहे आप एलआईसी का एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, मतलब किसी भी टाइप का जो गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन है उसमें आपको मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड तक का मैथमेटिक्स जिसमें अर्थमेटिक्स एल्जब्रा ज्योमेट्री ये सारी चीजें आपने पढ़नी रहती है। इसके साथ साथ रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश जिसे हम कहते हैं इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी ये सारी चीजें आपको करनी है, और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, बिजनेस अफेयर्स, इसके साथ साथ आपकी जनरल स्टडीज में स्टैटिक जीके जिसे हम 10th स्टैंडर्ड तक की जीके कहते हैं, जिसमें आप बेटे हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। तो एक तरह से कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास में ये सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि जब बेटे आप प्लस वन में एडमिशन लेते हैं उस टाइम पर आपकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं। काफी स्टूडेंट कॉमर्स इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते हैं अभी वो कॉमर्स लें, या कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं बेटे जिनको ये लगता है कि दे आर नॉट गुड इन स्टडीज, तो मेडिकल नॉन मेडिकल चलाना उनके लिए मुश्किल है, तो दे गो फॉर कॉमर्स। बट जब आप कॉमर्स में एडमिशन ले लेते हैं प्लस वन में, तो आपको बेटे ये जरूर सोचना चाहिए कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। आज का टाइम जो है वो कॉम्पिटिशन का टाइम है, आप जितनी जल्दी अपनी स्ट्रीम फाइनलाइज करेंगे, जितना टारगेटेड एफर्ट करेंगे उस पर्टिकुलर करियर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेड क्या है कि बेटे ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ मैं तो कहता हूं कि प्लस वन से ही, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है तो बेटे आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को उस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करिए कि आगे सीए में आपको हेल्प हो सके। आपको अगर बीबीए एमबीए में जाना है तो बेटे आप प्लस वन से ही आईपीएम एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, एप्टीट्यूड अपना बिल्डअप करिए, लैंग्वेज पे कमांड बनाइए सो दैट आप ट्वेल्थ के बाद अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। आपको लो में जाना है तो क्लैट की प्रिपरेशन करिए। तो मतलब प्लस वन में एडमिशन लेने के बाद आपको थोड़ा ये डिसाइड जरूर करना चाहिए आप एक्चुअल में कॉमर्स के अंदर किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। वैसे तो आप लाइफ में किसी भी स्टेज में किसी भी करियर में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिन लोगों ने बहुत लेट एज में वर्क करना स्टार्ट करा बट डेडिकेशन से काम किया, बहुत जल्दी उन्होंने सक्सेस की बुलंदियां पाली, ऊंचाइयां पाली। बट फिर भी जितना जल्दी आप अपने टारगेट को सेट करके उसको चेंज करना स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो दिस इज एंड टू अवर सेशन। बेटे हम डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, पेनड्राइव कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज थ्रू अवर वेबसाइट examtv.in, जिसमें हम बेसिकली कैट आईपीएम क्लैट और एसएससी के कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या स्क्रीन पे हमारे नंबर शेयर हुए हैं उस पर आप बेटे बात कर सकते हैं किसी भी टाइप की एंक्वायरी के लिए रिगार्डिंग योर करियर। थैंक यू वेरी मच।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। किसान न सिर्फ अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था करता है, बल्कि वो खेतों में जीतोड़ मेहनत करता है ताकि आपकी और हमारी थाली तक भी भोजन पहुंचता रहे। हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं जो कि आज के दौर में नवाचार, नई तकनीक को अपनाकर कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। ये किसान कृषि स्टार्टअप, पशुपालन और कृषि में नए नए प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे किसान भी हैं जो कि अपनी मेहनत के चलते आज अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। ये किसान इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी थाली तक जो भोजन पहुंचे वो रसायन मुक्त हो और पोषण से भरपूर हो। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से संबंध रखने वाले शिव कुमार से, जो कि मुख्य रूप से जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती के लिए जाने जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की।
1: गाजियाबाद भारत की राजधानी से सटे ऊपरी गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इसी जिले के गांव चोलस से आते हैं हमारे सफल किसान शिव कुमार, जो दूसरे किसानों के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं, जिन्होंने साधारण खेती नहीं बल्कि ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती और पशु पालन दोनों को एक साथ चुना। शिव कुमार जैविक खेती से मिले फल सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वो कैसे, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की जुबानी।
2: ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग करता हूं और नेचुरल फार्मिंग भी तो मैं अब से करने लगा हूं। पहले मैं जैविक खेती करता था। 2005-06 से मैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के संपर्क में आया, जहां से ये केंचुए पालन मुझे सीखने को मिला और मैंने इनसे ट्रेनिंग लेकर के विधिवत तरीके से अपने यहां पर केंचुए पालन शुरू किया, जिससे मुझे केंचुए पालन के साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट भी मिलता था और वर्मी वास भी मिलता था। इससे क्या हुआ कि जब मैंने अपने खेतों में विधिवत तरीके से अप्लाई किया तो मैंने वर्मी कंपोस्ट से कुछ किसानों को बेचा भी कि इस विधि से हम जैविक पे आ सकते हैं और जो हम जहरीली खेती कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं या ये केमिकल फार्मिंग से पेस्टिसाइड से जो हम खेत में लगा रहे हैं, इससे हम लोगों को निजात मिल सकता है, जिससे हम जहर मुक्त भोजन ले सकते हैं।
1: आज भले ही शिव कुमार अपने गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन रहे हों, लेकिन ये सब करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें मदद मिली गाजियाबाद के राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से, जिनकी मदद और सही सलाह अपनाने के बाद शिव कुमार आज एक सफल किसान बनने की राह पर अग्रसर हैं। कैसे शिव कुमार और उनके जैसे हजारों लाखों किसान खेत की मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के उप निदेशक जगत सिंह।
3: कुमार जी, वर्ष करीब 2005 से ही एक इनोवेटर के रूप में उभरे हैं और वर्ष 2014 से ये राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से जुड़े। तो जब इनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई तो इनसे मुझे पता चला कि इनके खेत की मिट्टी का पीएच हाई है और खेत में मोटे मोटे ग्रेवल्स हैं, माने कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर हैं, जो निशानी है ऊसर भूमि की या हाईली सेलाइन एल्किली की। तो उसी समय से हमने इनको जैविक खेती के परिपेक्ष में दो तीन चीजें बताई थी कि एक तो कंटिन्यू आपको ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करना है, पकी और पची हुई खाद का इस्तेमाल करना है, जहां जहां पे सेलाइन एल्कली के पैचेज हैं वहां पे गोबर डाल के और थोड़ा मीठा डाल के उसको गलाना है, और जहां पे ज्यादा खारी सॉइल है वहां की मिट्टी उठा के उसमें मीठी मिट्टी और गोबर डालना है। तो पहले बार में इन्होंने ये काम किया। दूसरी बार में हमारे केंद्र से कुछ कल्चर दिए जाते थे जो डिकम्पोज करने का काम करते थे। शिव कुमार जी ने उस कल्चर का अपने खेतों में प्रयोग किया और उस कल्चर के प्रयोग से जो खेत का जो सेलाइन एल्कली का जो नेचर था हाई पीएच वो लो पीएच में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ जो खेत में 1.5 से 2 इंच मोटे पत्थर थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए।
1: अब ये जैविक खेती है क्या जिससे हमारे सफल किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जरा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जैविक खेती फसल उत्पादन की एक प्राचीन पद्धति है जिसमें फसलों के उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध कई तरह के खनिज पदार्थों के जरिए पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि ऐसी खेती में प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने के साथ ही भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। जैविक खेती का मतलब एक ऐसी कृषि प्रणाली से है जिसमें फसलों के उत्पादन में रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के स्थान पर जैविक या प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती को लेकर शायद हमारे सफल किसान शिव कुमार ये जानते हैं कि जिस तरह जैविक खेती बीते कुछ समय में लोकप्रिय हुई है उसी हिसाब से आने वाला समय जैविक खेती का ही है, इसलिए उन्होंने जैविक खेती को चुना।
2: जैविक हर किसी को चाहिए और नेचुरल उत्पाद हर किसी किसान को, हर किसी उसको चाहिए जिनको खाना है, तो उसको लेकर के जितना मेरे पास में उत्पाद था उससे डिमांड अत्यधिक थी मेरी, तो इसलिए मैं बंसी गोल्ड पहले से लगा रहा था। बंसी गोल्ड गेहूं मैंने एमपी वाला गेहूं लगाया था, उसका उत्पादन बहुत अच्छा आया और उसकी जो हमारी पैदावार थी वो थोड़ी सी इससे कम थी, लेकिन जो हमारा खाने में बहुत अच्छी गुणवत्ता देता था एचडी 226 उसका विकल्प एचडी 3226 वैरायटी करके मुझे राष्ट्रीय नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से प्राप्त हुई। केवल 6 क्विंटल बीज मुझे मिल पाया था, तो मैंने विधिवत तरीके से अपने खेत में नवम्बर में यानी 17-18 नवंबर को मैंने इसको अपने खेत के अंदर लगा दिया था, और इसको मैंने विजय सुपर सीडर से की, उसका सीड ट्रीटमेंट मैंने अपने जेल खाद से वही 1 चम्मच लेकर के और थोड़ा एक उसमें 1 लीटर पानी डाल करके, और मैंने लगभग 3 क्विंटल गेहूं को पर्याप्त मात्रा में उससे बीज शोधन किया था, और थोड़ा सा उसमें मैंने हल्का सा 250 ग्राम गुड़ घोल कर भी उसको मिला लिया था। उसका मैंने विधिवत तरीके से उसका उपचार किया, और उपचार करने के बाद में जो मेरे पास में वर्मी कंपोस्ट था तो मैंने अपने उर्वरक की फर्टिलाइजर की जगह वर्मी कंपोस्ट अगले टापे में भर करके पिछले में सीड डाल करके और मैंने अपने सुपर सीडर से इन खेतों की बिजाई कर दी है, और यील्ड शायद इस बार बहुत अच्छा आएगा सर, मुझे रेट बहुत अच्छा मिल रहा है।
1: शिव कुमार का मानना है कि गांव में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ गांव का भी विकास होगा, तो वहीं सह फसली जैविक खेती पर सोने पर सुहागा का काम कर रही है जिससे शिव कुमार को 2 गुना लाभ हो रहा है। इस तरह सह फसली खेती करने से मेहनत मजदूरी के साथ साथ पानी, खाद, उर्वरक, बीज और कटाई का खर्चा निकल आता है।
2: पहले जैसे हम खेती कर रहे थे अभी भी और अच्छे तरह से उसको खेती को कर रहे हैं, हम फसल चक्र में लेकर आए हैं। एक तो फसल चक्र से फायदा क्या है कि जो हमारा ये जो वीड है ये वीड अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है फसल चक्र से। जैसे हमने अब तिलहन यानी तिलहन लगाया है तो तिलहन के बाद में फिर हमने इसके तिलहन के बाद में जैसे मक्का लगाया है, मक्का के बाद में हम और सब्जी वर्गीय यानी कद्दू वर्गीय फसल इस तरह से घिया, तोरई, ककड़ी, खीरा ये इस तरह से ले रहे हैं, और इससे जो है किसान भाई समझे कि इससे अत्यधिक बेनिफिट है। सब्जी से जो आदमी उस किसान को जो मिलता है उससे बहुत ज्यादा कुछ मिलता है।
1: इन फसलों में धान और गन्ना जैसी फसल मुख्य है। गन्ने के साथ सह फसली करने के एक नहीं कई फायदे हैं, जहां गन्ने की फसल को पकने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं वहीं 60 से 90 दिनों में दूसरी फसलें पक जाती हैं। इस दौरान बीच बीच में सब्जियों और दलहनी फसलों की खेती करने से 2 से 3 महीनों में दूसरी फसलों की उपज से पैसे मिल जाते हैं। अच्छी बात ये भी है कि ऐसा कर हमारे सफल किसान अपनी जैविक खेती से दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।
0: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे जैविक खेती से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान।
4: आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं फ्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होश खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा।
0: आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से संबंध रखने वाले शिव कुमार के बारे में, जो कि जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती की बात करें तो वो आज के समय की मांग भी है। जी हाँ, हमने दशकों रसायन युक्त खाना खाया, यानी ऐसे फसलें उगाई गई जिनमें रसायनों का उपयोग किया गया। इसकी वजह से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई और ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी काफी हानिकारक है। वहीं अगर हम जैविक खेती करें या फिर ऑर्गेनिक खेती करें तो उससे रसायनों को हम दूर कर सकते हैं, यानी ये रसायन मुक्त खेती होती है और इसीलिए ये हमारे लिए काफी लाभकारी भी है, पर्यावरण के अनुकूल भी है और मानव स्वास्थ्य पर भी इसका कोई विपरीत असर नहीं है। आइए देखते हैं जैविक खेती से जुड़ी कुछ खास बातें।
5: जैविक खेती को लेकर शिव कुमार का मानना है कि जैविक खेती पशुपालन के बिना मुश्किल है। शिव कुमार ने जैविक खेती को और बेहतर तरीके से करने के लिए ही पशुपालन करना शुरू किया था। किसान शिव कुमार अपने खेतों के लिए जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, बेसन, प्याज का रस, डीकम्पोजर, नीम का पत्ता, मिर्च, लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाद का इंतजाम भी पशुओं के अपशिष्ट से ही हो जाता है, मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम।
6: ये हमारे पास एक गिर गाय है जो हमारी देसी नस्ल की गाय है और इसका दूध बड़ी गुणवत्ता युक्त है। देखने में आया है कि यदि हम कितनी भी पूरे दिन की मेहनत, हमने हार्डवर्क कितना भी परिश्रम किया हो, यदि एक गिलास दूध हमें शाम को मिल जाता है तो सुबह को पुनः हम कोई भी हार्डवर्क करने के लिए, पूरे दिन के कार्य करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। और जैविक खेती ऑब्लिक प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती है, बगैर गाय के या बगैर पशुधन के हमारी खेती संभव नहीं है। तो हम ये गाय पालन भी कर रहे हैं और भैंस पालन भी कर रहे हैं। इसी के गोमूत्र से हम जो अपना इंसेक्ट है उसको भगाने का कार्य करते हैं और जो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू है इसी से हम कर लेते हैं। गाय के गोबर से इसी की झिल्ली को उतार करके हम जो सफल खाद है और सरल खाद है उसका प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, ये हमारी पशुशाला है और गायों को और भैंसों को हम अलग अलग रखते हैं, और क्योंकि गाय की गुणवत्ता बहुत अत्यधिक

0: एक दिक्कत जैविक फसल को बाजार में सही दामों पर बेचने की है, क्योंकि इसमें मेहनत थोड़ी अधिक होने के चलते जैविक फसल दूसरे फल सब्जियों से थोड़ी महंगी होती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जैविक खेती से उपजी फसल आपको सेवन के लिए फायदेमंद कितनी है।
1: जैसे मैंने देखा है, सुना है कि भाई जैविक के दाम बहुत ज्यादा होते हैं, तो जो अच्छा है शुद्ध खाना हर कोई चाहता है। मैं तो इसको नॉर्मल रेट पर बेचना चाहता हूं, क्योंकि अब उत्पादन, पहले जब हम जैविक खेती में आए थे तो हमारा उत्पादन घटा था, अब हमारा उत्पादन पहले से भी अधिक होने लग गया है। और मैं इसको नॉर्मल रेट पर मैं चाहता हूं कि जो गरीब आदमी है वो भी इसको खाए, वो भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत है। ऐसा नहीं कि भाई जिनके पास सब कुछ है, दाता का दिया हो, कुदरत की मौजें, वही ऑर्गेनिक भोजन या नेचुरल जो हमारा उत्पाद है उसको खरीद पाए। मेरी ये ललक होती है कि हम डोर टू डोर हर किसी के घर से, जो भी मतलब जिनको भी चाहिए या जिनको नहीं भी चाहिए उनको भी हम तो ऐसे ही दे के आ जाते हैं कि सर हमारे सैंपल है, इसको आप चेक करके देखिएगा। जिनको पसंद आता है सर दोबारा से हम लोगों को कॉल करते हैं, दोबारा से उनको दरवाजे खटखटाते हैं। सर जो भी आपने उत्पाद की डिमांड की थी वो उत्पाद आपके सामने है।
2: यहाँ पर जो हमारे बड़े भाई श्री शिव कुमार जी हैं, जो आजकल पूरे जनपद में जैविक का काम कर रहे हैं, इनके फार्म पर हम लोग आते रहते हैं, पूरी हमारी टीम आती रहती है, हमारे हेड भी आते रहते हैं। मैंने इनके वार्ता से ये यहाँ पर देखा है कि जो इस इनकी जो फार्म की जो मिट्टी थी पहले कुछ ऊसर टाइप की थी और कुछ रेह युक्त थी, और इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से पूरा ऑर्गेनिक ट्रेनर लेकर के और इन्होंने अपने फार्म को आज बहुत अच्छा बना रखा है। और यहाँ पर इन्होंने काफी ऑर्गेनिक पर काम कर रखा है इन्होंने, जिसको हम देखते हैं इनके नेडा कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, और इन्होंने वर्मी वास के द्वारा इनकी बहुत अच्छी खेती होती है। और हम कृषि विज्ञान केंद्र साइंटिस्ट की टीम इनके खेत पर भ्रमण करती रहती है, और आज ये जनपद के अंदर बहुत अच्छा अपना जैविक उत्पाद कर रहे हैं। इनके पास में काफी मधुमक्खी पालन का भी इनके बॉक्स हैं, और इन पर इनके पास अपना जैविक का अपना नींबू भी है, काफी अच्छा इनका काम रहता है यहाँ पर। और मिट्टी की जांच के कृषि विज्ञान केंद्र पर समय समय पर अपने इस फार्म की कराते रहते हैं, और इनके साथ में पूरा जनपद क्या पूरा सभी विभाग का इनका इनका कोरिलेशन रहता है। मिस्टर शिव कुमार जी बहुत अच्छी जैविक पर काम कर रहे हैं, और समय समय पर हमारे जो जैविक केंद्र है गाजियाबाद में, वहां भी अपना प्रशिक्षण समय समय पर जैसे लेते रहते हैं, और इनको बहुत अच्छी जानकारी है जैविक के ऊपर, और ये बहुत ही अच्छा अपना काम कर रहे हैं।
0: जैविक खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होना बेहद जरूरी है, लेकिन इन दिनों रसायनों का इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ चुका है। नतीजा ये हो रहा है कि इनसे स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और खेत की मिट्टी भी कमजोर पड़ रही है। रासायनिक पदार्थ पानी के साथ मिलकर जमीन के नीचे स्थित पानी तक भी पहुँच रहे हैं और उसे भी प्रदूषित कर रहे हैं। यही वजह है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र।
3: इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान किस तरीके से इस दिशा में प्रयास कर रहा है। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सफल किसान। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान के बारे में। जी हाँ, इस संस्थान का मुख्य मकसद यही है कि किसानों को बताया जाए कि कैसे वो जैविक या फिर प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, इसके लाभ के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाए, और साथ ही ये भी बताया जाए कि कैसे जैविक खेती को अपना कर भी वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बाजार में इसके अच्छे दाम भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
0: जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र और इससे जुड़े वैज्ञानिक किसानों को समय समय पर खेती किसानी से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। किस तरह से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है और कैसे, ये केंद्र किसानों की मदद के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के निदेशक डॉक्टर जगनीश शर्मा। साथ ही संस्थान के उपनिदेशक जगत सिंह बता रहे हैं कि कैसे किसान सही जानकारी के जरिए अपने खेत में बढ़िया उपज पा सकते हैं।
4: हमारा जो संस्थान है वो देश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुखतया यहाँ पर कार्यरत है, और हमारे जो संस्थान है इसके

0: चार मुख्य मैंडेट्स हैं जो कार्य हैं हमारे. सबसे पहला जो है हमारा कार्य वो ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, किसान भाइयों से लेके और सभी जितने भी एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन सब के साथ मिलके जो है हम कृषि के जितने भी जैविक कृषि के ट्रेनिंग्स हैं, हमारे जो प्रशिक्षण के प्रोग्राम हैं वो चलाते हैं. और कैपेसिटी बिल्डिंग करना सभी स्टेक होल्डर्स की, ये हमारा सबसे पहला दायित्व है. दूसरा जो है हमारा प्रमाणीकरण है कि प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना है देश में. आपको पता ही है कि दो प्रकार की प्रमाणीकरण की प्रक्रियाएं हैं देश में. पहली तो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जो अपेडा एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उनके द्वारा चलाई जाती है, जो एक्सपोर्ट के लिए और डोमेस्टिक ट्रेडिंग के लिए दोनों के लिए कार्य करती है. हमारे यहाँ पर पीजीएस सेक्रेटरिएट है जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन. तो ये सर्टिफिकेशन ग्रुप बेस्ड सर्टिफिकेशन है और जैसे कि आपने नाम सुना पार्टिसिपेटरी, मतलब किसानों द्वारा खुद का निरीक्षण खुद करके और खुद ही अपना पीयर इंस्पेक्शंस पीयर अप्रेजल्स के द्वारा डिक्लेयर करना कि हाँ हम जो है केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं और हमारी जो है जैविक खेती हम जैविक कर रहे हैं और स्टैंडर्ड्स और जो मानक हैं उनके आधार पर जैविक खेती कर रहे हैं. तो इस प्रकार की जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है वो भी हमारा दूसरा दायित्व है. और तीसरा जो हमारा मैंडेट है वो है टेस्टिंग का. हमारे यहाँ पर हमारे संस्थान के साथ हमारे पांच और संस्थान हैं जिनका हम क्षेत्रीय संस्थान कहते हैं और जो रीजनल सेंटर हैं हमारे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर गाजियाबाद से शुरू करें यहाँ पर. तो ये जो संस्थान है यहाँ पर लेबोरेटरी भी है जो ऑर्गेनिक जो इनपुट्स हैं जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 है उसके तहत हमारी लैब्स जो हैं वो नोटिफाइड हैं. और हमारी जो हेडक्वार्टर की लेबोरेटरी है वो तो NABL एक्रेडिटेड भी है. और इसके अलावा बेंगलोर की लेबोरेटरी है RCNF बेंगलोर और RCNF नागपुर है. हाँ, और इसके अलावा जो है हमारी RCNF भुवनेश्वर है. इसके अलावा हमारे RCNF मणिपुर है. तो हमारी पांच संस्थान हैं क्षेत्रीय जो ट्रेनिंग भी करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ में सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को भी सुचारू रूप से चलाने में सहायक हैं।
1: जैविक खेती के लिए जो इम्पोर्टेंट इनपुट हैं आज इसके ऊपर मैं चर्चा करेंगे. और जब जैविक खेती की बात करते हैं तो जैविक खेती में जो सॉइल हेल्थ या मृदा स्वास्थ्य जैविक खेती का मेरुदंड है. और मृदा स्वास्थ्य में जो ऑर्गेनिक कार्बन है इसको इसका नर्वस सिस्टम कहा जा सकता है. तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जैविक खेती में भूमि स्वास्थ्य की एक अहम भूमिका है और भूमि स्वास्थ्य में जो ऑर्गेनिक कार्बन है या ऑर्गेनिक मैटर है ये एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है. क्योंकि पिछले 60-70 सालों में भारतवर्ष की मृदाओं में जो मृदा कार्बन जो कंटेंट है जैसे जैसे फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन बढ़ा है वैसे ही वैसे जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है या मृदा में जो जैवांश पदार्थ है इसमें कमी आने लगी है. तो कमी आने की वजह से जो फर्टिलाइजर का रेस्पॉन्स भी कम होने लगा है. और जहां तक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो ऑर्गेनिक कार्बन का या ऑर्गेनिक मैटर का इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है. हमारे देश में ऑन एन एवरेज जो सॉइल का जैवांश कार्बन स्तर है वो 0.2 से 0.3 के बीच है. और एक सफल जैविक खेती करने के लिए हमारी जमीनों का जो ऑर्गेनिक कार्बन है या जैवांश कार्बन है वो करीब करीब 0.5 से तो बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए. ये कन्वेंशनल फार्मिंग के लिए है. और अगर बढ़िया आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना है तो हमारी खेती का जो जैवांश कार्बन है वो करीब करीब 0.7 के ऊपर होना चाहिए. 0.7 से लेके 1.2 के बीच होना चाहिए. यदि इतना हमारा जैवांश कार्बन है तो हमारी जैविक खेती जो है उसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं.
2: कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर शुरू की गई खेती के बाद शिव कुमार की आमदनी साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है. साल 2017 के बाद से जब उन्होंने अपने खर्च और मुनाफे का लेखा जोखा रखना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगातार घट रही है जबकि मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है.
3: किसान भाइयों, पहले से तो हिसाब किताब नहीं लगाया था, लेकिन 2017 से मैं थोड़ा अपने खेतीबाड़ी के बारे में लेखा जोखा रखता हूँ। उससे पहले क्या था कि मेरा खर्चा आ जाता लगभग 4-4.5 लाख खर्चा आ जाता था मेरे पास में। अपनी तो केवल 10 एकड़ जमीन है, लेकिन 5-6 एकड़ जमीन में लीज पे लेकर के उसमें कार्य करता था, अभी भी करता हूँ। तो उससे क्या होता था कि मेरा जो है लगभग 4-4.5 लाख रुपए उसमें खर्चा आ जाता था और लगभग 5-6 लाख रुपए मुझको टोटल आमदनी होती थी। तो जिसमें शुद्ध बचत मुझको सालाना मुश्किल से 1-1.5 लाख मुश्किल से निकल आती थी और जिसमें परिवार का भरण पोषण पालन बड़ा मुश्किल होता था। 2017 से जैसे मैं अब हिसाब किताब लगाने लगा हूँ, तो जब मैंने हिसाब किताब लगाया था तो मेरी जो बिक्री थी वो मेरी लगभग 7.5 लाख के आसपास में पहुंची थी और खर्चा मेरा वही था लगभग 4-4.25 के समथिंग में हो गया था। उसके बाद में मैंने 2018-19 में डाटा निकाला था तो तब मेरी आमदनी बढ़ करके लगभग 8.5-9 लाख हो गई थी और मेरा जो खर्चा है वो थोड़ा सा और डाउन चला गया था, लगभग मैं 2.25 लाख के आसपास में चला गया था। और 2021-22 के सेशन में भी मैंने अपने हिसाब का कैलकुलेशन किया है तो उसी स्थिति में देखने में आया तो मेरी आमदनी लगभग 11-11.5 लाख के करीब पहुंच गई और मेरा जो खर्चा है वो 1.25 लाख मुश्किल से रह गया। और अभी का जो हिसाब है, अभी का हिसाब मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन मुझे परिपूर्ण विश्वास है कि मेरी जो आमदनी है वो 23-24 लाख पार कर गई है और मेरी जो खर्चा है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मुश्किल से 60-65 हजार रुपए प्रति वार्षिक होगी। तो इस तरह से मेरी आमदनी में इजाफा हुआ और बहुत खुशहाली से मैं खेती कर रहा हूँ।
2: शिव कुमार आज के समय में नजीर बन दूसरे किसानों को प्रेरित तो कर ही रहे हैं, खुद भी अच्छा मुनाफा कमाकर गांव के कई और परिवारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो वहीं जैविक खेती को अपना कर समाज के कल्याण के लिए भी एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हमारे सफल किसान शिव कुमार आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं।
4: आज का सफल किसान, जिसमें आपने जाना कि कैसे ऑर्गेनिक खेती आज के समय की मांग भी है और इस क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत तरह के अवसर भी हैं। बस आवश्यकता है कि आप इसे करने की ठाने और शुरुआती चुनौतियों से डरे नहीं, जैसा कि शिव कुमार जी ने किया। आशा करते हैं कि उनके जीवन से आप भी कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। आज के सफल किसान में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव है, अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम सफल किसान लेकर आए, किसी किसान की कहानी को कार्यक्रम में दिखाएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, सफल किसान कमरा नंबर 77 CPC दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। हम ऐसे किसानों की कहानियां जानना चाहते हैं जिन्हें आप हमें बताएं ताकि उन्हें भी एक मंच मिल सके। सफल किसान में सफलता की कुछ और कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का जो हमारा सेशन है, एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि किस टॉपिक पे हम बात करेंगे और उसके साथ साथ उसके अलावा भी किस पॉइंट पे फोकस करेंगे। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वो प्राइमरी करियर्स इन एग्रीकल्चर के ऊपर है, ठीक है। मतलब जो लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड हमारा सेशन है। और एग्रीकल्चर में आपकी कुछ डोमेन्स है, मतलब एक तो वो बच्चे हैं जो एक तरह से एग्रीकल्चर रिसर्च में जाना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड, वो बच्चे हैं जो एक तरह से उन्होंने अपना 10th 12th के बाद वो अपनी खेती करना चाहें, ऑर्गेनिक फार्मिंग है या और भी ऐसी ऐसी डोमेन्स हैं जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मतलब वो आपकी डायरेक्ट एग्रीकल्चर नहीं है, उसमें आप कुछ प्रोफेशनली एग्रीकल्चर जैसे हॉर्टिकल्चर है या और भी कई तरह की खेती है जो आप कर सकते हैं। तो इन सब बातों पे हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और लास्ट में फिर हम थोड़ा ये भी बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो सीरीज ऑफ सेशंस हैं तो हम अप्रोक्सीमेटली आज हमारा मतलब अब ऑलमोस्ट ज्यादातर जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, अब एक दो सेशंस हो रहे हैं इसके अंदर, तो हम थोड़ा सा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम प्रिपरेशन की बात करते हैं बार बार, तो सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस करेंगे आज के सेशन में कि जैसे आप जनरल स्टडीज की बात करते हैं जीएस की, तो कैसे जीएस के लिए प्रिपेयर किया जाए, वो भी एक हमारा टारगेट है आज की सेशन के अंदर, ठीक है। तो पहले तो मैं बात करूंगा बेटे एग्रीकल्चर के ऊपर कि अगर आप एक एग्रीकल्चर में प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर उसका स्कोप क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि बच्चों को स्कोप के बारे में नहीं पता होता, इसलिए वो उस फील्ड में नहीं जाते। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जिन बच्चों के पास में 12th में मेडिकल साइड होती है, देखिए ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एग्रीकल्चर भी एक तरह की साइंस है, इसमें भी आपको 12th में आपके लिए मेडिकल साइड होना चाहिए, आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप एग्रीकल्चर के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या रहता है कि इंडिया में काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको बीएससी ऑफर करती हैं, बीएससी इन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये एक तरह से 4 ईयर का प्रोग्राम होता है 12th के बाद में, जिसमें आपको एग्रीकल्चर साइंस या उससे जो रिलेटेड जो डिसिप्लिन है उनके बारे में टीच किया जाता है, ठीक है। ये मतलब हम नाम में कहते हैं एग्रीकल्चर कहते हैं, बट ये डोमेन काफी वाइड है। इसमें एग्रीकल्चर के अंदर आप प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सोयल साइंस, मतलब ये जो खेती की बात करें, देखिए आप जब भी एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में सोयल प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसमें आप सीड डाल रहे हैं दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर जो फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स डाल रहे हैं कैसे आप उसे डील करते हैं, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर आपको सभी डोमेन्स के बारे में टीच किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर जो मेथड्स होते हैं, जैसे कुछ मेथड्स हमारे ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर आपके मेथड्स हैं या नए नए चीजें ऐड हो रही हैं। आप देखें आज के टाइम में एग्रीकल्चर एक तरह से प्रोफेशन के तौर पे सामने आया है, तो उसमें ये सारी चीजें आपको जब आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो वहां पर आपको ये सारी चीजें टीच की जाती है, ठीक है। डोमेन बहुत अच्छा है, स्कोप भी काफी ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए इंडिया में आज भी एग्रीकल्चर सबसे अगर हम जीडीपी की बात करें तो आज भी एग्रीकल्चर का रोल काफी ज्यादा है और बहुत इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है, ठीक है। आप मतलब चाहे आपकी क्लोथ इंडस्ट्री है, ठीक है, चाहे आपकी बेवरेज इंडस्ट्रीज है, मतलब ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है, तो स्कोप इज वेरी वाइड। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्या इसका स्ट्रक्चर है, 4 ईयर प्रोग्राम है जैसे मैंने आपको पहले बताया, और बीएससी एग्रीकल्चर का जो एडमिशन प्रोसेस है बेसिकली एंट्रेंस बेस पर है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपके 12th के मार्क्स के बेस पे भी एडमिशन देते हैं, क्योंकि ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज में टीच किया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है वहां पर ये प्राइमरी कोर्स रहता है, तो जनरली इसमें एंट्रेंस एग्जाम बेस है, ठीक है। इसमें 12th की जो मिनिमम कंडीशन है 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपके पास हो, मतलब हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि मेडिकल साइड होना चाहिए आपके पास में। फीस जो आपके स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है वहां फीस काफी कम है, ज्यादा फीस नहीं है, मतलब कम मतलब जितना आप बीए बीएससी करते हैं उतना ही फीस आपको पे करना रहता है, ठीक है। बट सैलरीज आपको मिलती है, मतलब आप अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है और वहां पर कंपनीज भी आती हैं आपको अलग अलग तरह की जॉब ऑफर करती हैं, जैसे है मैं आपको कई तरह के जॉब प्रोफाइल्स बताऊं। सबसे पहला स्कोप जो एग्रीकल्चर का आता है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर का आता है, जो एक तरह से आपकी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है। प्लांटेशन मैनेजर की वैकेंसी होती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की होती है। मैं इन सब के बारे में इन डिटेल आपको भी बताऊंगा किसका क्या क्या स्कोप है। और काफी प्राइवेट कंपनीज भी है, मतलब बहुत प्राइवेट कंपनीज है जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में, फर्टिलाइजर्स में, सीड्स में, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रही है, फिर उसकी प्रोसेसिंग में, तो काफी इंडस्ट्रीज हैं, काफी प्राइवेट कंपनीज हैं जो उसमें डील करती हैं, तो वो आपको हायर करती हैं, वहां आपको इजिली जॉब मिल जाता है। तो स्कोप इज वेरी वाइड, ठीक है। अब इसमें आप इसके अलावा देखिए, तो मैंने एक जनरल बात करी भी, आप ऐसे जॉब्स कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है तो आप अपना एक तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर किया है, अगर आपके पास में लैंड है अपनी, या बहुत लोग तो क्या करते हैं कि दे टेक द लैंड और उसके बाद उस पर अपनी खेती करते हैं प्रोफेशनल टाइप से, आजकल जो डिमांड चल रही है उसके अकॉर्डिंगली, जिससे कि उनको काफी अर्निंग हो सके। आप अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यू कैन एस्टेब्लिश द नर्सरी। देखो आप देखेंगे अगर जितने बड़े बड़े शहर हैं, चाहे दिल्ली है, गुड़गांव है, तो यहाँ पे लोगों ने नर्सरी बना रखी है, छोटी छोटी प्लेसेस के ऊपर, मतलब जो छोटे छोटे आपके पौधे होते हैं जिससे आप अपने घरों में पौधे उगाते हैं, तो दे हैव मेड द नर्सरी। आप मानेंगे नहीं, गुड़गांव के अंदर एक आपको तुलसी का पौधा चाहिए छोटा सा, तो मेरे हिसाब से 200 से 250 रुपए का छोटा सा आपको गमला मिलेगा जिसको आप पोर्ट में डाल के यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब आपको, मतलब स्कोप है, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। देखिए अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, आपकी टू टाइप्स की जॉब्स होती हैं। एक आपकी व्हाइट कॉलर जॉब है, आपने सेल्स में काम किया, मार्केटिंग में काम किया, आपने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब किया, ठीक है। सेकंड होता है जहां आपको थोड़ी मेहनत करनी रहती है, मेहनत मतलब कि आपको अपने हाथ से काम करना है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मेहनत करना रहता है यहाँ पर आपको। बाकी आप यू कैन ऑल्सो मेक द कंसल्टेंसी, जो बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये काफी वाइड स्कोप है बीएससी एग्रीकल्चर का, और आप इसमें हायर स्टडीज में भी जा सकते हैं। जैसे देखिए आप कोई भी जो डिग्री करते हैं, देखिए आप ऐसे बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे कि जो सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं कि उन्हें एग्रीकल्चर में अपना करियर बिल्डअप करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब एज ए अकेडमिक, ठीक है। तो पर आपको नहीं करना, तो कम से कम आपके परिवार में और बच्चे हैं उनको भी अगर प्रोफेशंस के बारे में पता चले तो वो भी अपना स्कोप बना सकते हैं। देखिए क्या रहता है कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया, ऐसा नहीं इसके बाद आप अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। स्टडीज कंटिन्यू में क्या, आप एमएससी कर सकते हैं। अब जब आप एमएससी करते हैं तो एमएससी में क्या होता है कि आपको अब थोड़ी सी डोमेन स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर तो वाइड कोर्स है, ठीक है। अगर हम एमएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो स्पेशलाइजेशन हो जाता है। अब सोयल साइंस में एमएससी होती है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी होती है, इकोनॉमिक्स में है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में है, प्लांट साइंस में है, फिजियोलॉजी में है। तो मतलब आपकी अलग अलग आप स्ट्रीम्स में, डोमेन्स में एमएससी कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहें तो एमएससी करने के बाद फिर आपको नेट का पेपर क्वालिफाई करना है, वो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। जैसे आप बीए करने के बाद अगर आपको टीचर बनना है तो आपको एसटेट सीटेट क्वालिफाई करना है, अगर आपको लेक्चरशिप में जाना है तो आपको नेट का पेपर क्वालिफाई करना रहता है। तो सेम यहाँ पर है, एग्रीकल्चर में भी बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आपने बीएससी के बाद में एमएससी किया हुआ है तो एमएससी के बाद में फिर आपको नेट का पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप एज ए लेक्चरर जितने भी एग्रीकल्चरल कॉलेजेस हैं वहां पर आप एज ए लेक्चरर अपने बन सकते हैं। काफी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस आर ऑल्सो देयर, तो उन सब में आप अपना स्कोप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बीएससी एग्रीकल्चर को ऐसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। फिर ऐसा नहीं कि प्राइवेट में ही स्कोप है एग्रीकल्चर का, आपका गवर्नमेंट में भी काफी स्कोप है, काफी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं जिसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बीएससी एग्रीकल्चर ही माना जाता है, बीएससी एग्रीकल्चर उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो मतलब एक साल में कोई बहुत ज्यादा कॉलेजेस नहीं है जो बीएससी एग्रीकल्चर ऑफर करते हैं, और जबकि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उसके हिसाब से ही निकलती है। जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब होती है एडीओ, ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी आती है, हर स्टेट में आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होता है हर एक ब्लॉक के अंदर, जिसका काम अपने एरिया में एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप अपना हॉर्टिकल्चर में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके केन ऑफिसर है, कंजर्वेटर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, मतलब काफी गवर्नमेंट जॉब्स की भी वैकेंसीज आती हैं जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर होता है, राइट। तो प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट फील्ड में भी एग्रीकल्चर का काफी स्कोप है। मैं कुछ कॉलेजेस आपको बताता हूं जहां से आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पीएयू, मतलब बहुत टॉप पे नाम आता है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है जबलपुर के अंदर, जैसे आपका पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है, ठीक है, ऐसी पालमपुर में है हिमाचल प्रदेश के अंदर। श्रीनगर में भी शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है। आपका मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है। तो मतलब पूरे इंडिया में हम देखें तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, मतलब एक एक तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में है। ये मैंने कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज की बात की है, बट एटलीस्ट वन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो ऑलमोस्ट सभी स्टेट में है, ठीक है। और उसका आपका ट्वेल्थ में, जैसे आप ट्वेल्थ पास करते हैं, जिस साल आपने ट्वेल्थ का एग्जाम दिया है, और उसके बाद फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, और एंट्रेंस एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन भी हो जाता है। तो ये एक आपके लिए टारगेटेड कॉलेजेस रहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपना एग्जाम लेती है, दे टेक द एग्जाम इन द ग्रुप, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस एक से ज्यादा होते हैं। जैसे आपका बीएचयू है, वो अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है। आंध्र प्रदेश में एपी ईएमसीटी का एग्जाम होता है, जो एग्रीकल्चरल फार्मेसी, मतलब ऑलमोस्ट हर स्टेट अपना एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराती है, और जो बच्चे भी उसमें जाना चाहें उनको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसके बाद उनका एडमिशन होता है। छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और भी आप देखिए आपका ओडिशा है, हरियाणा में भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, पंजाब में होता है, उत्तराखंड में होता है। तो मतलब हर स्टेट में इनके अपने अलग अलग एग्जाम होते हैं जो एक तरह से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। मैं बात कर रहा था बेटे जॉब्स कहाँ कहाँ है इसमें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर भी आपकी एक टाइप की गवर्नमेंट जॉब होती है और काफी अच्छी सैलरी आपको मिलती है इसके अंदर। और इसका मेन काम क्या रहता है कि जिस एरिया में एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्टिंग है उस एरिया के फार्मर्स को एडवाइस करना भी कैसे है वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। आप देखेंगे आज के टाइम में गवर्नमेंट का काफी फोकस है एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि इंडिया अगर सेल्फ सफिशिएंट है एग्रीकल्चर के अंदर तभी वो पूरे वर्ल्ड के साथ, हम देखें भी हम बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, हमें रेवेन्यू भी मिलता है एग्रीकल्चर से, तो जितनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी उतना ही लोगों को भी फायदा है। आज जैसे आप लोगों में से काफी लोग, काफी बच्चे ऐसे होंगे जो फार्मिंग बैकग्राउंड से डील करते होंगे, मतलब उनके परिवार में एग्रीकल्चर से डील करते हैं, तो आप जैसे देखते हैं कि कॉस्ट बढ़ रही है पहले के मुकाबले, बट प्रोड्यूस उतना नहीं, उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती, या प्रोडक्शन है तो उतना प्राइस नहीं मिल पाता। तो जो फार्मर है उसे आज के हिसाब से, क्योंकि अभी जो फार्मर है, हम देखेंगे अगर हम गांवों की बात करें तो फार्मर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब वो आज भी जो फार्मर है वो अपने ट्रेडिशनल सोर्सेज यूज करता है, ठीक है, उसकी एजुकेशन कुछ हद तक है बट उसे टेक्निकल एजुकेशन नहीं। आप देखिए आप कितने ऐसे किसानों को जानते हैं जिनको एग्रीकल्चर की टेक्निकल एजुकेशन है, जैसे आप इंजीनियर बनते हैं, आप जॉब करते हैं, कोडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे पहले आप 3 से 4 साल का आपने पहले इंजीनियरिंग किया होता है, आप डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद ही आप उससे रिलेटेड काम करते हैं। बट आप कभी सोच के देखिए कि हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर एज ए प्रोफेशन है, उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो उसमें प्रोफेशनली ट्रेन्ड है, जिन्होंने उसमें प्रोफेशनली ट्रेनिंग किया हुआ है, तो आप पाएंगे कि मतलब कोई भी नहीं है, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में कुछ ट्रेनिंग लिया हुआ है, और ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर उन्होंने खेती करा। हम एग्रीकल्चर खेती करते हैं क्योंकि हमारे को परिवार से लैंड मिली है और हम उसी पे अपना खेती करना स्टार्ट कर देते हैं, सेम प्रोसेस पे जिस पे हमारे पेरेंट्स ने एग्रीकल्चर किया, उसी पैटर्न के ऊपर ही। प्रॉब्लम क्या है कि हम कभी भी प्रोफेशनली ट्रेन नहीं है उसके अंदर। तो थोड़ा सा अगर आप ये जो बच्चे जिनकी खेती है ऑलरेडी फैमिली के अंदर, तो अगर वो बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, अगर वो बीटेक एग्रीकल्चर करते हैं, तो उनको काफी फायदा हो सकता है, उसको अच्छा और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बाकी जॉब्स अपॉर्चुनिटी तो है ही, मतलब अगर आपको फार्मिंग नहीं भी करनी है तो फिर आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया जैसे ये सारी जॉब्स जो है, ये एक तरह की जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स है, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट की जॉब आती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का जॉब होता है, टेक्नीशियन का जॉब होता है, तो ये मतलब हर स्टेट में स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती हैं, और उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका एग्रीकल्चर इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, बीएससी एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए, और जिसके बेस पे फिर आप वहां पर अप्लाई करते हैं। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, प्लांट ब्रीडर है, सीड टेक्नोलॉजिस्ट है, मतलब वो अलग अलग आपकी डोमेन्स है, जिस पर्टिकुलर डोमेन में आपने काम किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली फिर आगे वैकेंसी आती है और उसमें आप फर्दर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मतलब स्कोप अच्छा है एग्रीकल्चर का, बीएससी एग्रीकल्चर का भी। अगर आपने ट्वेल्थ में नॉन ट्वेल्थ के अंदर अगर आपके पास में साइंस साइड है और आप एमबीबीएस पीएमटी या फार्मेसिस्ट में नहीं जाना चाहते, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में सोच सकते हैं, ये एक अच्छा लाइन है, करियर आपका बन सकता है। आप देखेंगे बेटे आजकल कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बीटेक भी कराती हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, जैसे एक तो बीएससी एग्रीकल्चर है, कुछ यूनिवर्सिटीज है जो बीटेक भी कराती हैं। उसमें क्या है कि ट्वेल्थ में आपके पास में मैथ्स भी होना चाहिए, मैथ्स कम बायोलॉजी, तो आप बीटेक एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो बीटेक एग्रीकल्चर में थोड़ा आपको एडवांटेज क्या हो जाता है, अगर आपने बीटेक एग्रीकल्चर किया है तो उसमें क्या है, जैसे कुछ आपके जो इक्विपमेंट्स इंजीनियरिंग है, जैसे एग्रीकल्चर में जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, ट्रैक्टर्स हैं, और भी बहुत चीजें, जब आप खेती करते हैं तो काफी तरह के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो उनसे रिलेटेड काम हो जाता है, फील्ड एप्लीकेशन है आपका, इंजीनियरिंग इरिगेशन है, तो ये काफी स्कोप हो जाता है बीटेक एग्रीकल्चर का। बस मेन थिंग है कि वो स्कोप सारा आपका एग्रीकल्चर के अंदर ही है। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में भी, आज का हमारा जो सेशन है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर कोई ऐसा बहुत बड़ा, हम ये कहें कि बहुत बड़ा डोमेन नहीं है। अगर हम बात करें एज ए प्रोफेशनल एजुकेशन की, मतलब प्रोफेशनली, तो अगर आपको एग्रीकल्चर में अपनी एजुकेशन इंक्रीज करना है तो आपको पहले बीएससी करना है। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग स्कोप आपके बनते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक चीज और मैं आपको ऐड करूं, नहीं देखिए आजकल क्या है कि आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना होगा सब बच्चों ने, कोई बताएगा मुझे आप में से एनीवन आउट ऑफ यू कोई भी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या है, मतलब क्या, क्योंकि आप लोग काफी बच्चे ऐसे हैं आप में से जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने ये टर्म हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको प्राकृतिक खेती कहते हैं, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या है और क्या स्कोप है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। आज हम कहीं सामान खरीदने चले जाए, किसी मॉल में चले जाए, हमें वीट राइस कुछ भी खरीदना है, तो ऑर्गेनिक वीट मिलता है, ऑर्गेनिक राइस मिलते हैं, जिनकी जो प्राइस है जनरल वीट और राइस से काफी ज्यादा होता है। तो आप में से कोई बच्चा शेयर करना चाहेगा कि उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में क्या पता है?
1: हाँ जी सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मुझे खैर ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा सा मालूम है। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो हम कोई भी सिंथेटिक यूज, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे, हम उनका यूज नहीं करते फार्मिंग करने में, और नेचुरल रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल करते हैं।
0: जी
1: और
0: जी सर
1: नेचुरल सीड्स और हाइब्रिड नहीं यूज करते हम कुछ भी, उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इसकी वजह से ये कॉस्टली होती है क्योंकि इसमें हम क्वांटिटी बहुत कम आती है, इसमें क्वालिटी पे ज्यादा फोकस रहता है।
0: जी जी जी जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि जैसे आप देखिए जो इंडिया में जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, आप सबको पता है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति थी, तो हरित क्रांति में क्या हुआ कि सीड्स आए नए, और उसके बाद फिर फर्टिलाइजर यूज करने लगे हम, यूरिया यूज करने लगे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन हमारी ज्यादा हुई उससे, ठीक है। पर स्टार्टिंग में तो हमें बहुत फायदा हुआ, पर धीरे धीरे फार्मर्स जो है फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज करने लगे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। तो आज समय ऐसा आ चुका है कि जो हम एक तरह से खाना खाते हैं जिसको जहरीला खाना बोला जाता है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि वो हमारे बॉडी को इफेक्ट कर रही है। आप देखिए आज से कुछ साल पहले किसी को कैंसर नहीं हुआ करता था, अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें तो कैंसर नाम की जो बीमारी थी वो ओनली एक टाइप से मूवीज में आती थी, अपने आसपास में हमें कैंसर का कोई बिरला ही मरीज मिलता था। बट आज हम देखें कि आज कैंसर के जो मरीज हैं डे बाय डे काफी इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हमारी जो हम खाने में जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो खेती में फर्टिलाइजर्स को कम करना, यूरिया का कम यूज करना, मतलब एक तरह से ना के बराबर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या है कि जब आप खेती करते हैं तो उसमें आप जो भी यूज करें ट्रेडिशनल चीजें यूज करेंगे, ठीक है, उसमें यूरिया ये कोई भी चीज यूज नहीं की जाती। उससे प्रॉब्लम क्या रहती है कि स्टार्टिंग में जो प्रोड्यूस है वो कम होती है कंपैरेटिवली, बट उसका प्राइस मार्केट में ज्यादा है। अगर आपकी लैंड ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, ठीक है, मतलब आपके ये अगर आपको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है कि आपके यहाँ से जो प्रोड्यूस है वो बिल्कुल टॉक्सिक फ्री है, उसमें बिल्कुल भी जहर नहीं है, तो आप देखेंगे उसका प्राइस जो है वो मार्केट में कंपैरेटिवली ज्यादा आपको मिलेगा। तो काफी लोग ऐसा है जो आजकल ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा स्कोप है इसके अंदर भी। और जो बहुत फार्मर्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में टाइम लगा रहे हैं, इसके साथ साथ अभी देखिए जो फार्मिंग हमारे यहाँ होती है उसमें एक तरह से जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उनकी की जाती है, बट आज का टाइम ऐसा है कि ट्रेडिशनल क्रॉप्स के साथ साथ भी आप अलग अलग क्रॉप्स की, मतलब उन क्रॉप्स की जिनकी मार्केट में डिमांड है। दूसरा आप देखें कि जो फार्मर है, मतलब आप लोगों में से जो लोग फार्मिंग बैकग्राउंड से है वो भी थोड़ा इस चीज को समझ सकते हैं कि देखिए जो पैसा वही कमाता है जो फाइनल कंज्यूमर को बेचता है। अभी हमारे एग्रीकल्चर में क्या है कि फार्मर ने खेती करी, फार्मर ने प्रोड्यूस आया और प्रोड्यूस को उसने मिडल मैन को बेच दिया, ठीक है। अब जो मिडल मैन है वो आगे छोटे छोटे दुकानदारों को बेचता है और दुकानदार फिर आगे चीजों को सेल करते हैं, तो उसमें क्या है कि जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो तो जो शॉपकीपर अर्न कर रहा है, क्योंकि जो फाइनल कंज्यूमर से पैसा निकलवा रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा फार्मर जो है वो एक तरह से मंडियों पर डिपेंडेंट है ज्यादा, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा अगर आप एग्रीकल्चर आपकी फैमिली में मतलब खेती होती है। फिर आपको प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप सब जानते ही हैं कि जैसे आप कपास की खेती अगर करते हैं तो कपास की वैल्यू बहुत कम है, बट वही अगर उसी कपास से आपने ऊन बना दिया, कपड़ा बना दिया, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सेम हमारे एग्रीकल्चर के साथ में है कि हम किसी भी चीज का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, अगर हम उसी प्रोडक्शन को ही आगे बेचते हैं तो अगर उसकी वैल्यू कम है, बट अगर हम उसकी प्रोसेसिंग करके बेचें, उसको कन्वर्ट करके बेचें किसी एक्चुअल ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जिसको यूज किया जा सके, तो वहां से आपको ज्यादा अर्निंग होगी। तो इस तरह से ये काफी मीन्स है, बट अगर प्रोफेशनली तरीके से किया जाए एग्रीकल्चर को तो आप ये मानेंगे भी एग्रीकल्चर भी एक ऐसा प्रोफेशन, मतलब इसको एज ए प्रोफेशन यूज किया जा सकता है। और आप देखें आज तो मैं भी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, काफी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में थे, अपनी जॉब छोड़ के अब वो खेती की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब ऐसे कामों की तरफ मूव कर रहे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। आप देखें अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आजकल काफी एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलती होंगी कि गाय का घी, गाय का दूध, वो जो इस तरह के प्रोडक्ट है वो आपको मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द कंपनीज, कई सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो मतलब ये भी एक फ्यूचर का फील्ड है और उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है. मतलब आपका एक तरह से जो लो इन्वेस्टमेंट का फील्ड है, बहुत लोगों को मैं ऐसे जानता हूं जिन्होंने क्या किया हुआ है कि वो एक टाइप से डेयरी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है. उन्होंने 4 से 5 मतलब ऐसे लोगों से बात किया जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, तो वहां उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया भी जैसे जो प्योर मिल्क आपको मिले, फिर वो उनसे इकट्ठा करके शहरों में आके बेच देते हैं. तो देखिए लोग आजकल क्वालिटी कॉन्शियस काफी ज्यादा है, तो आप भी अगर इस तरह के फील्ड में काम करना चाहें बट आपको क्वालिटी मेंटेन करना रहता है तो अच्छा स्कोप है और बहुत इजिली आप अपना करियर इसमें बना सकते हैं. थोड़ी सी मेहनत वाला काम है एग्रीकल्चर का.
2: हाँ दिनेश जी, मैं इसमें है ना 2 पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ.
0: जी सर.
2: पूसा एग्रीकल्चर जैसे बिहार में है, आपको समस्तीपुर में, वहाँ भी लोग जैसे कि बीटेक के लिए मोतीलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कॉलेज इलाहाबाद में, वहाँ भी एग्रीकल्चर का बहुत ही बड़ा है,
0: हाँ जी.
2: है स्कोप है. जैसे बीटेक करने के बाद जैसे कि कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि आपने ड्यूपॉन्ट के लिए बोला, महिंद्रा एंड महिंद्रा है जो लोग महिंद्रा ये भी मैं बता दूं, आप बीटेक ना करें, आप एमएससी यदि आप बायोलॉजी में करते हैं, आप यदि आप बॉटनी वगैरह में करते हैं आप, तो वहां से भी आपको काफी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो आपको इन हाउस मतलब यू नो सो इन कैंपस में आती है, बच्चों को सिलेक्ट करके ले जाती है. अपार्ट फ्रॉम जैसे कि गवर्नमेंट का भी एक, जैसे आपने बताया ही है कि स्टेट गवर्नमेंट हो वो ऑलरेडी आपको एक वैकेंसी भी निकालती है बीएससी एग्रीकल्चर, मतलब जी बीएससी पास आउट हो, ऑनर्स हो उनका बॉटनी में प्लस वो बीटेक हो, तो उनको भी बहुत अच्छे स्कोप पे ऑफर मिलता है. ये मेरा था.
0: हाँ जी यस. तो मतलब स्कोप काफी ज्यादा है एग्रीकल्चर का, और उसमें जैसे सर ने भी बताया मतलब काफी प्राइवेट कंपनीज हैं जो अगर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीटेक किया, मतलब ये तो हम उन जॉब्स की बात कर रहे हैं जो आपकी एक तरह से जिसमें आपकी बीएससी एग्रीकल्चर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है. तो मतलब अगर आपके पास में 12th के बाद में जो मेडिकल साइड थी तो आप इन फील्ड्स में जा सकते हैं और एक अच्छा करियर आप सकते हैं बना. क्योंकि देखिए आजकल क्या है कि जो बच्चे हैं वो ऐसी जॉब चाहते हैं, इस तरह की जॉब चाहते हैं कि जहां पर मतलब ठीक ठाक इनकम हो और उन पे ज्यादा प्रेशर ना हो. आप देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप काम करेंगे तो आपको एक तो इसमें जॉब का प्रेशर कम है, ठीक है, और सेकंड इनकम भी ठीक ठाक है और आप अपना काम भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये सारी स्कोप है एग्रीकल्चर के अंदर. तो जैसे आज के इस सेशन में तो आपको पहले पार्ट में तो आपको मैंने एग्रीकल्चर के स्कोप के बारे में बताया, ठीक है. तो ये एक अच्छा प्रोफेशन है, आप ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास में जमीन है अपना भी काम कर सकते हैं, तो सारी चीजें हैं इसके अंदर. कुछ टाइम यहाँ मैं आज स्पेंड करना चाहूंगा. मेरी आज जैसे आजकल काफी फॉर्म्स निकले हुए हैं आपके गवर्नमेंट जॉब्स के भी निकल रहे हैं, और अभी जैसे जैसे ये आपका COVID-19 का प्रेशर कम होता जाएगा और चीजें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी, लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी पहले वाली, तो आप देखेंगे कि हर फील्ड में काफी गवर्नमेंट जॉब फिर से आएंगी, ठीक है. मतलब 6 महीने बाद और 6 महीने मान लीजिए, तो उसकी तैयारी जो है वो आज से ही स्टार्ट करने वाली बात होती है. मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हमें इस चीज का वेट नहीं करना चाहिए कि कब फॉर्म निकलेगा, और जब फॉर्म निकलेगा जब मेरा रोल नंबर आ जाएगा तो ही मैं तैयारी की स्टार्ट करूं, ऐसा नहीं. हमें उसकी जो प्रिपरेशन है वो पहले से ही स्टार्ट करनी रहती है. जैसा आपको मैंने पहले ही बताया, अभी देखिए मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीएस है, 4 सेक्शन आपके किसी भी टाइप का गवर्नमेंट जॉब है आपका, अप टू सी लेवल है, बी ग्रेड है, तो सभी जॉब्स में ये 4 ही सेक्शन आपके आते हैं, ठीक है. तो आज के जो सेशन में कुछ टाइम मैं स्पेंड करूंगा कि कैसे आप इन चारों में से जो जनरल स्टडीज का सेक्शन है कैसे आप अपनी जनरल स्टडीज की प्रिपेरेशन करें, ठीक है. जीएस एक ऐसा सेक्शन होता है जनरल स्टडीज का, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी एग्जाम में 25% वेटेज है इसका, मतलब 25% वेटेज रहता है. 4 में से 1 क्वेश्चन आपका जीएस का होता है. अगर हम एसएससी की बात करें तो 100 में से 25 क्वेश्चन होते हैं. पुलिस का एग्जाम है, आर्मी का एग्जाम है, वहां पर आप कह सकते हैं हाफ ऑफ द क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के होते हैं. जैसे अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि दिल्ली कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली हुई थी उसमें पेपर के अंदर आप ये मान के चलिए अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो 40 से 50 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के होंगे. तो जीएस का एक काफी बड़ा रोल है आपके एग्जामिनेशन के अंदर. अब हमारी समस्या ये है कि ये समझना कि जीएस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत वाइड होता है। क्योंकि अगर आप और मैथ्स की बात करिए, रीजनिंग की बात करिए, तो चैप्टर फिक्स है, 10 से 12 चैप्टर आपने पढ़ने रहते हैं, उन्हीं पे आपको प्रैक्टिस करना रहता है। तो जीएस में अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करिए कि आप पहले अपनी 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, मतलब 6th to 10th क्लास तक की एनसीईआरटी, ये आपका पहला काम है, ठीक है। देखिए आप सोच के देखो, जब आप 8th क्लास में थे, उस क्लास में आप अगर अपनी छोटी क्लास की किताब उठा के देखें तो आपको बड़ा फील होता है कि बहुत आसान था, और आज की एज में जब आप 12th में हैं, आप 1st ईयर में हैं, 2nd ईयर में हैं, तो आज अगर आप 6th 7th की क्लास की बुक उठा के देखेंगे तो यू विल फील कि बहुत आसान सा है वो, तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, कुछ मार्केट से किताबें खरीद लेते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, लूसेंट की बुक आती है आपकी जीएस की, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो सारा इकट्ठा करके आपको दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें बहुत ही कंसाइज वे में होता है। जब आप किसी चीज को बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो ज्यादा याद नहीं हो पाता, तो याद तभी हो सकता है जब आपने उस चीज को एक्सटेंसिवली पढ़ा हो। तो सबसे पहली चीज आपको जो करनी है, अगर आप एक्चुअल में जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, जहां स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की। और आप देखेंगे एक बुक आपकी एसएस की आती है, एक आपकी साइंस की बुक आती है, अगर हम 6th 7th 8th में जाके देखें, तो वो एक एक बुक आप लेके उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, और उसमें से भी आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं काम काम की चीजें, ठीक है। तो उससे आपको क्या लगेगा कि जब भी आपको दोबारा से रिवाइज करना है, बहुत इजी हो जाता है आपके लिए रिवाइज करना। जीएस के अंदर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो रेगुलरली अपडेट होता रहता है। जैसे मान लीजिए आपको आपका एग्जाम 2 साल बाद है, तो जो आज पढ़ रहे हैं आप वो 2 ईयर्स के बाद उस टाइम आपको काम नहीं आएगा। जो करंट अफेयर जनरली किसी भी एग्जाम के अंदर पिछले 1 साल तक का मैक्सिमम करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम के अंदर, तो उसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपका टारगेटेड एग्जाम है उससे कम से कम साल पहले से आप अपना करंट अफेयर तैयार करना स्टार्ट करिए। करंट अफेयर तैयार करने के 2-3 टेक्निक्स होती हैं। एक तो आप न्यूज़पेपर रीड करो डेली, और न्यूज़पेपर के साथ साथ आप एक कॉपी मेंटेन कर सकते हैं, जो भी आपने इंपॉर्टेंट सा नाम उसमें देखा, कोई प्लेस का नाम आपने देखा जो किसी पॉइंट के लिए फेमस है, या कोई ऐसी घटना हुई, या आप ये कह सकते हैं कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया, तो आप उस न्यूज़पेपर उस अपने कॉपी के अंदर उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। उसका फायदा क्या रहता है कि वीक के बाद में जब आप दोबारा से उसे रिवाइज करते हैं तो आप उसको पढ़ के एकदम आपको चीजें याद आ जाती हैं, ठीक है, पहली चीज। सेकेंडली, एक रेगुलर मंथली मैगजीन आपको जरूर खरीदनी चाहिए, जो मंथली मैगजीन होती है जिसमें एक महीने का सारा करंट अफेयर आपको मिल जाता है। उसमें प्रतियोगिता दर्पण है हिंदी मीडियम में, या हिंदी मीडियम में प्रतियोगिता किरण है, और भी काफी आजकल मैगजीन्स मिल जाती हैं आपकी, रीड इंडिया की जो लाइब्रेरीज हैं वहां भी आपको मैगजीन्स मिल जाती हैं,

0: हमारे सभी व्यूअर्स का वेलकम कर रही हूँ एक और कार्यक्रम में, रिकग्नाइजिंग द लीडर्स फ्रॉम आवर ग्रासरूट्स। ये एक यूनिक कहानी है जहाँ पे आर एस दलाल, उनका जो दिल है वो इतना बड़ा है कि वो अपने गांव को जितना देना चाहते हैं उससे भी ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो हर वक्त अपनी कम्युनिटीज को गिव बैक कर सके। तो यही एक स्टोरी है हम आज आपके साथ लेके आए हैं, और इस स्टोरी को और अपनी कहानी को नरेट करने के लिए हमारे साथ ऋतु हजर से जुड़ी है। वेलकम ऋतु।
1: मैम, मैं सोनीपत से हूँ। मैंने बीए बीएड किया हुआ है, और मैम मेरी शादी यहाँ पे हुई 2012 में। मेरी शादी हुई उस टाइम यहाँ पे हवेली की रिनोवेशन चली हुई थी। 2014 में यहाँ पे रीड इंडिया ने सेंटर ओपन किया। यहाँ पे रीड इंडिया ने मल्टी टास्क लेडीज के लिए रखा।
0: व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, जो पिक्चर्स शशांक अभी शो कर रहे हैं वो हमारी कम्युनिटी लाइब्रेरी जो झज्जर में है, जो मिस्टर दलाल के जो एंसेस्ट्रल हवेली है उसमें सेटअप है। इसमें एक लाइब्रेरी है जिसकी लाइब्रेरियन ऋतु है, वो बात कर रही थी कि उन्होंने किस तरीके से सेंटर पे काम करते हुए ही अपना जो है लाइब्रेरी में ही उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया है इस सेंटर के दौरान, इस सेंटर के साथ जुड़े रहने के दौरान। तो इसमें जो बच्चों के कार्यक्रम है वो भी आप देख पा रहे हैं। अभी हम मिस्टर दलाल की फोटो भी हमने अपने व्यूअर्स को दिखाई थी। वी विल कम बैक टू दैट अगेन। तो ऋतु, आप बताइए कि किस तरीके से सेंटर से कम्युनिटी को बेनिफिट हुआ है, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और बाकी जो हमारे संसाधन चल रहे हैं इसमें लाइवलीहुड को लेके, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को लेके, उसमें थोड़ा आप शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ।
1: मैम, जैसे कि 2014 में जब सेंटर की ओपनिंग तब हुई थी तब गांव कुछ और था, और आज 2021 में गांव कुछ और है। स्टार्टिंग में मैम यहाँ पे जो लेडीजें थी उनको ये नहीं पता था कि ये सेंटर किस लिए खुला है, क्या इसका पर्पज है। उन्होंने यहाँ पे आके सिलाई सीखी, क्योंकि गांव का जो एरिया होता है वहां पे 11th और 12th में ही लड़की को सिलाई सिखा दी जाती है और फिर बाद में उसकी शादी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे आके लोगों ने इंटरनेट से कनेक्ट हुए, समाज को देखा, यहाँ पे विजिटर्स आए उनके बिहेवियर को देखा कि वो कितना स्टडी कर चुके हैं, आज समाज कितना ऊपर जा चुका है। वो समाज में एक मतलब एक आईना है ये सेंटर समाज का। यहाँ की औरतों ने शुरुआत में सिलाई सीखी, महिलाओं ने सिलाई धीरे धीरे सीखी, फिर उसको एक रोजगार बनाया कि हम सीख रहे हैं तो साथ ही साथ हम अपने घर परिवार के लिए कुछ ना कुछ कमाएं। वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले उनके सामने कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई ऐसा स्किल नहीं था। स्किल था बट वो बाहर उभर के नहीं आया था, सेंटर ने उस स्किल को उभारा है।
0: इसी तरीके से हम स्पोर्ट्स का भी काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे, कैसे गांव में स्पोर्ट्स को, एक स्पोर्ट्स की पूरी टीम बनी है आपकी एरिया में, और एक बहुत ही बड़े दर्जे पे मैच भी हुआ था फुटबॉल का, तो उसके बारे में आप कुछ शेयर करेंगी कैसे फोकस कर रहे
1: हैं। मैम, यहाँ पे टाइम टू टाइम टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें बॉयज गर्ल्स जितने भी यूथ हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं, और वो स्टेट लेवल तक भी जा चुके हैं। और यहाँ तक कि सर हर साल में जो वुमेन्स डे होता है उस पे लेडीज के लिए कि लेडीज भी आगे आए, वो भी स्पोर्ट्स को देखे कि स्पोर्ट्स क्या है जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, यहाँ पे सर उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स रखवाते हैं, जैसे रनिंग का हो गया, मटका कंपटीशन हो गया, साइकिलिंग कंपटीशन हो गया। मैम, जैसा कि हर इंसान के मन में पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग होती है, जब स्टार्टिंग में सेंटर ओपन हुआ था तो हम लोगों को लेकर काफी नेगेटिव थिंकिंग थी कि ये तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, हर मंथ इनको सैलरी मिल जाएगी बस काम खत्म। लेकिन अब जब हम हर बार सर्वे करते हैं वो देखते हैं कि ये अपने नियर बाई जो विलेज है वहां पे भी वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ की औरतें बहुत खुश होती हैं। हम पहले हाउसवाइफ के उसमें जाने जाते थे कि ये उसकी पत्नी है, ये उसकी उसकी लड़की है, इस तरह से जाने जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे औरतों को खुद के उनके नाम से जाना जाने लगा है कि ये जो है प्रोडक्शन की यूनिट है, इसमें 20 महिलाएं हैं, इस महिला का नाम ये है, इस महिला का नाम ये है, तो मैम बहुत ज्यादा चेंज आया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट हमने कम्युनिटी को देखा है कि इंडिपेंडेंट हो गई है, और हमारे लिए भी पॉजिटिव थिंकिंग आई है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भी सोशल वर्क कर रहे हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं निस्वार्थ काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो निस्वार्थ काम करते हैं।
0: वेरी नाइस। और आपकी जो हवेली है वो भी सस्टेनेबल है, क्योंकि जिस तरीके से इसका आर्किटेक्चर बना हुआ है और डिजाइन है, ये ज्यादा बिजली खर्च नहीं करते। तो जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये कल्चर को भी प्रिजर्व करने की बात करता है, कि किस तरीके से हमारे गांव में हमारे जो रीड के सेंटर्स हैं, वो नॉट ओनली क्राफ्ट्स एंड कल्चर, बल्कि जो हमारे रहन सहन का तरीका है, खान पान का तरीका है, उसके ऊपर भी हम जितना हो सके नेचर और सस्टेनेबल तरीके से काम कर सकें।
1: अभी जैसे कोरोना टाइम में घर में लाइट्स की प्रॉब्लम थी, नेटवर्क्स की प्रॉब्लम थी, सेंटर पे वाईफाई होने के कारण यहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे, एक दिन में कम से कम 60 60 70 70 स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करते थे, अपने प्रैक्टिस करते थे, टेस्ट देते थे, उसी टाइम उनके एग्जाम भी होते थे, तो उनके लिए बाहर नेटवर्क में आना बहुत मुश्किल हो गया था, तो यहाँ पर बैठकर वो अपना काम पूरा करते थे। और मैम जैसे कि कोरोना की वैक्सीनेशन है, तो सेंटर पर इतनी सफाई है, यहाँ पर टॉयलेट्स हैं, वाटर की फैसिलिटी है, लाइट्स की फैसिलिटी है, वाईफाई की फैसिलिटी है, तो ये सब कुछ कोरोना की जो वैक्सीनेशन टीम है उनको ये सब फैसिलिटी चाहिए थी, तो यहाँ पे आके हम उन्होंने यहाँ पे हर हफ्ते हफ्ते में 2 बार या 1 बार यहाँ पे कैंप लगता है, सिर्फ वो इस हवेली में जो फैसिलिटी है उनके लिए नहीं आते, कि वो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, यहाँ पे 2 गांव हैं मैम, मेहंदीपुर है और डाबोदा है, दोनों अलग अलग गांव हैं, तो दोनों गांव के लोग इस सेंटर से कनेक्ट हैं, उनको हर गांव में रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो किसी को बोलेंगे कि यहाँ पे वैक्सीनेशन चली हुई है, तो वो एक बंदा 10 लोगों को बताएगा कि आज वैक्सीनेशन शुरू हो रखी है, तो मैम इससे उन लोगों को भी बहुत फायदा है कि उनको घर घर जाकर बताना नहीं पड़ता, हम भी उनको बताते हैं कि आज के टाइम में वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है। और मैम एक सेंटर एक मतलब उनके लिए भी एक बहुत ज्यादा गॉड गिफ्टेड बन गया, मतलब हर बंदे के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि कोरोना का टाइम ऐसा था जिसमें हर व्यक्ति निराश बैठा था कि हम क्या करें, बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएं, लेकिन यहाँ पर आकर बच्चों ने पूरा पूरा दिन वाईफाई वाईफाई यूज किया, क्योंकि घर में नेट का पैकेज खत्म हो जाता है, और एक घर में ये है कि फोन की दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, तो हम भी अपना पर्सनल फोन उनके साथ शेयर कर देते थे कि आप अपना लिंक इस पे डालिए और आप पढ़ाई कीजिए।
0: वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग रितु। आपके यहाँ पे शुरुआती तौर में एक CSC भी चला था, जिसमें कि पेंशन और जितना भी अकाउंट बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज थी, वो भी आपने गांव में उपलब्ध कराए, तो थोड़ा उसका भी आप चर्चा करें।
1: मैम CSC और CSV सेंटर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन यहाँ पे आती है, और यहाँ पे कम से कम 450 या 500 के करीब लोगों का अकाउंट ओपन हो चुका है, जो कि यहाँ से पेंशन लेके जाते हैं, अपना जो बजट है उनका, अपनी बचत यहाँ पे डाल के जाते हैं, ऑनलाइन जितनी भी सर्विस है, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, किसी को ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो वो यहाँ से करवा के जाते हैं, यहाँ से एकदम से, जैसे मैम ट्रेवल की मैंने आपसे कहा था कि ट्रेवल की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो बुजुर्ग वहां पे जा नहीं सकते और हर मंथ उनको पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि पेंशन से कुछ घर ऐसे हैं जिनका पेंशन से ही गुजारा चल रहा है, जो बुजुर्ग हैं अकेले रहते हैं, तो वो यहाँ पे आके पेंशन लेते हैं और उन्हें टाइम टू टाइम पेंशन मिलती है, और ऑनलाइन CSC CSP उनको इतना प्रॉफिट दे रही है कि बच्चों के जैसे ऑनलाइन एडमिशंस हैं, तो वो यहाँ पे आके ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, एडमिशन लेते हैं, फीस पे करते हैं, ऑनलाइन टिकट ट्रैवल टिकट बुक कराते हैं, तो मैम ये भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। और मैम यहाँ पे एक फोटोकॉपी की भी मशीन रखी हुई है। फोटोकॉपी के लिए दूसरे गांव में कम से कम 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था उनको फोटोकॉपी के लिए, लेकिन जब से सेंटर ओपन हुआ है तब से मशीन यहाँ पे होने के कारण लोगों का

इसी प्लेटफॉर्म पे याद करना चाहती हूँ कि मिस्टर दलाल से मैं कैसे मिली थी. हमने एक सेंटर बनाया था खैंसा में जो कठिन ब्लॉक में है, तो उसके इनॉग्रेशन के लिए मैंने मिस्टर दलाल को बोला था कि आप आए. वो पूरे पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पे सेंटर लॉन्च करने के लिए आए थे, और तब से उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे गाँव में मैं अपनी हवेली लेता हूँ और वहाँ पे आप सेंटर बनाए. और 2012 में मैंने खैंसा का सेंटर लॉन्च किया था, और 2014 में शायद हमने मैंने काम करना शुरू किया. तो इट टुक मी 2 years टू फाइनलाइज द प्रपोजल बिकॉज इट वॉज नॉट दैट वेरी इजी टू स्टार्ट द रीच सेंटर. सो मेनी फॉर्मेलिटीज एंड सो मेनी डॉक्यूमेंटेशन आर रिक्वायर्ड. So, but I would like to say here that this partnership and this association has given so much to Meet India from Mr. Dalal. I would like to recognize here that every time he is ready to help us, every time he is ready to walk with us, wherever we are facing any challenges or wherever we are facing any issues, mature guidance and help is highly appreciated. और ये जो झज्जर का सेंटर है ये बहुत ही प्यारा हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ इन्होंने और भी पुलिस ऑफिसर्स को एनकरेज किया कि आप अपनी भी हवेली को. तो 2 साल पहले टांडागिरी एक गाँव है जो मैंने उसके साथ लिया, और वहाँ पे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी हवेली हमें दे दी और बोला कि यहाँ पे भी आप नीट का सेंटर बना सकते हैं. और वहाँ पे भी हमने स्टाफ रखा, स्कूल चलाया, सल्ला जी हैं जो वहाँ पे सिटिंग इंजीनियर चलाती हैं, और उर्वशी मैम हैं जो उस हवेली की ओनर हैं, और वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट का काम करने के लिए. द पॉइंट हियर आई एम मेकिंग इज द विलिंगनेस टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. और अगर ये थॉट हर एक के मन में हो तो हमारे गांव तो कभी भी पिछड़े नहीं रह पाएंगे, वो हमेशा शहरों से भी आगे बढ़ जाएंगे और वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. और दूसरी बात मैं जो यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जैसे ही गांव में अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मूवमेंट कम फॉरवर्ड इन अ ग्रेट वे. They are the role models. They are the mentors. I should not say that I am the mentor. I just play the role. But these women like Ritu and many other, Kavita ji, many other have taken the position of mentors now. Mentoring the rural women who are residing with them in the villages. Or center mein wo khali bhulal seekhte nahi aati hai. But center mein wo apne mind ko strong karne aati hai. अपने परिवार के लिए वो क्या कर सकती हैं वो सीखने आती हैं, और एक कोहेसिवनेस बनती है गांव में कि यस ये हमारा सेंटर है. और जैसे अभी एक वीडियो शशांक ने दिखाई थी उसका टाइटल था हमारा हरियाणा, पर मैं ये कहूँगी कि ये लोग अभी ये नारा बोल सकते हैं हमारा मंदिर, हमारा चर्च, हमारी कामना फेरी. सो वो सिचुएशन आ गई है अब. और सच में मैं बोल रही हूँ कि एज अ ह्यूमन बीइंग आई हाईली हाईली अप्रिशिएट मिस्टर दलाल्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द टीम हु हैज रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड सो वेल एंड नर्चर्ड द सेंटर लाइक देयर ओन हाउस. सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे जो आई शुड से हमारा जो नेटवर्क है, हमारे जो क्लीग्स हैं जो सेंटर में काम करते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन में ऋतु और कविता में देख रही हूँ पिछले 6-7 साल से, वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पक्का विश्वास है बहुत सारी औरतों में भी हुई है गाँव लेवल पे. और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक जील है उनके मन में कि हमें कुछ करना है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो ऋतु जी, मैं आपसे एक बस यही सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने हजारों में औरतों को फील किया, आप मेहंदीपुर गांव से आगे भी गई हैं और आसपास के गांव में भी आपने औरतों को मोटिवेट किया कि आपके सेंटर में आए और जो ट्रेनिंग दिए, बहुत लड़के

0: मैम सबसे पहले तो मैं आपका थैंक करना चाहूंगी कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया, सर ने दिया, आप दोनों ने मिलकर एक खंडर में जान डाल दी है, क्योंकि जैसे एक शरीर और आत्मा का मिलन होता है वैसे ही सेंटर, अगर अकेला एक सेंटर होता और उसमें और कुछ नहीं होता तो वो एक अकेला सेंटर कुछ नहीं कर पाता, वैसे ही कम्युनिटी है मैम, अगर हम हैं हमारे साथ कम्युनिटी नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है, हमारे साथ कम्युनिटी ने मिलकर इतना हम लोगों को भी सपोर्ट किया है, जो हम उनसे बोलते हैं कि आप आइए, हमारी एक रिक्वेस्ट करने पर वो हमारे सेंटर पर आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो औरतों में है, औरतों को स्टिचिंग का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा लगता है कि वो उसमें मगन हो जाती हैं, हम उनका 1.5 घंटे का बैच बनाते हैं लेकिन वो 1.5 घंटे में यहाँ से जाना नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि कम से कम हमें 3-4 घंटे आप लोग यहाँ पे बैठने दीजिए, तो जब हम लोगों के बैच फिनिश हो जाती हैं तो वो सैटरडे को आती हैं, हमसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मैम आप कविता से भी रिक्वेस्ट करती हैं कि मैम थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दीजिए, मुझे ये करना है, जो हमारे पुराने जो यहाँ पे जा चुके हैं जैसे 2016 में या 17 में जो बेनिफिशरी रह चुके हैं वो यहाँ पे आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आज भी सेंटर पर आकर कविता से बात करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये न्यू फैशन चला हुआ है हमें ये बताइए, तो मैम हम लोगों को इतना अच्छा लगता है कि लोग यहाँ की औरतें हैं जो सिलाई से इतनी जुड़ी हुई हैं वो एकदम कपड़े में इतना मगन हो जाती हैं, प्रोडक्शन का जब हम लोग काम करवाते हैं, कुर्तियां जब लेडीज सिलती हैं तो वो इतनी मगन हो जाती हैं कि कविता उनको बोलती है कि आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लगता है, तो वो बोलते हैं हम बताएंगे नहीं, हम आपको करके दिखाएंगे, तो मैम वो इतना इतना अच्छा काम करती हैं कि बहुत ज्यादा कि उनके बगैर हम कुछ नहीं है, लेडीजों ने हम लोगों को आगे बढ़ाया है, हमारे सेंटर को आगे बढ़ाया है, सेंटर में जान उन औरतों ने डाली है, क्योंकि वो इतना मेहनत करती हैं, इतना परिश्रम करती हैं, इतना खुश होती हैं, यहाँ पे बच्चों को लेके आती हैं, तो मैम वो भी आपको बार बार थैंक करती हूँ।
1: बहुत अच्छा लग रहा है सुन के रितु और कविता जो आप कह रही हैं, क्योंकि ये ही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, हम सब की, मैं तो ये बोलूँगी नॉट हमारी ओनली, हम सब की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या करना चाहते हैं आप लोग, आप सबको बताइए कि आपके दिल में क्या है और इसको कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज इतना जील है, इतना कमिटमेंट है, बहुत सारी औरतें जुड़ी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और क्या करना चाहते हैं, आपकी सोच क्या है वो थोड़ा हमें बताइए।
0: मैम जैसा कि हमारे यहाँ पे मल्टी फैसिलिटीज हैं, तो मैम हम हर फैसिलिटी से कुछ ना कुछ इनकम ले सकते हैं, हम औरतों को ये बोलते हैं कि आप आज हमारे पास प्रोडक्शन की 20 की यूनिट है, तो हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर वो हमारी 50 या 100 की यूनिट हो, जिससे कि हम बड़े लेवल पर हम वर्क कर सकें, क्योंकि अभी हम जो क्लॉथ मार्केट में लेके जाते हैं वो कम प्राइस में सेल होता है, तो उसको हम चाहते हैं कि और हम उसको मार्केट में ना सेल करके अपना खुद का नाम दें, क्योंकि मैम मार्केट में जो हम लोगों ने जितना रिसर्च किया है, मार्केट में जो एक शॉप वाला होता है वो इतना पैसा उनसे कमाता है, हमसे बिल्कुल सस्ते प्राइस में जो कि जो मेहनत करते हैं उन बंदों को कम पैसा मिलता है, और जो खरीदता है उसको, जो उसको पीस को खरीद कर बेचता है वो इतना इनकम कमाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा भी एक ऐसा बड़े लेवल का वर्क हो कि हम खुद इंडिपेंडेंटली अपना नाम उससे जोड़ें, एक बड़ी यूनिट बनाएं, और हम लोग जितने भी नियर बाई विलेज में गए हैं वहाँ पे भी हम लोगों की यूनिट्स हो, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं या ऑफलाइन कोर्सेज हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ हर किसी चीज से अगर हमें थोड़ा थोड़ा भी पैसा मिलता है तो हम और हमारे जो साथ वर्क कर रहे हैं, बेनिफिशियरी हैं, उनको भी प्रॉफिट हो और ये हवेली इसी तरह रनिंग करती रहे। और जो आने वाला फ्यूचर है उसमें अभी जो औरत यहाँ से 100 रुपए कमा रही है, हम चाहते हैं कि वो यहाँ से 50,000 कमाए।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बड़ी सोच है रितु, और हम मिलके इसको पूरा करेंगे, मैं इसकी एश्योरेंस देती हूँ। तो सिर्फ अगर कमिटमेंट है आप में और मेहनत करने की क्षमता है तो ड्रीम्स तो फुलफिल हो ही जाते हैं। मैं रितु को बोलना चाहूंगी कि अगर वो कोई एक मैसेज हमारे सारे रीड की वुमेन के लिए कहना चाहे तो प्लीज शी शुड शेयर विद अस।
0: मेरा यही मैसेज है कि हमारा जितना भी रीड का स्टाफ है, हम मिलकर, अलग अलग ना हो, मिलकर कुछ ऐसा प्लान करें जिससे जितनी भी कम्युनिटी है उसको फायदा हो। और वो जैसा कि अभी मैम कर रही हैं, हमें भी गीता मैम जैसा और रणजीत दलाल सर जैसा लीडर बनना चाहिए कि इन फ्यूचर में जब हमारे हम ना रहे तो लोग हमें याद करें कि इन लोगों ने क्या किया है। गीता मैम इतना बड़ा एम लेकर चली हुई हैं निस्वार्थ भाव से, क्योंकि आज का जो टाइम है वो अपने लिए सोचता है, न्यू जनरेशन सिर्फ अपने लिए काम करती है। तो हम जो है, हमें भी मैम ने ऐसा बना दिया है, सर ने ऐसा बना दिया है कि हम ये मैसेज हर किसी तक पहुंचाए कि निस्वार्थ भाव का से काम करें, अपने लिए नहीं समाज के लिए जिए, जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए जिए, उनके लिए कुछ करें जितना आप कर सकते हो, क्योंकि शिक्षा हर किसी के पास है लेकिन शिक्षा को बांटना बहुत जरूरी है। शिक्षा से व्यक्ति शिक्षित तो हो जाता है लेकिन जब तक वो अपनी शिक्षा को दूसरों तक नहीं बांटता वो इंसान अनपढ़ है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जितना जिसके पास जो स्किल है वो हमें समाज में बांटना है, और आगे हमें अपनी जनरेशन को भी यही सिखाना है। एक कोरोना ने हमें इतना बड़ा मैसेज दे दिया है कि जब तक हम हैं, हमारे शरीर में जान है, तब तक सब कुछ है, जब हम नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो अभी समाज में देखा गया है कि लोगों ने कोरोना ने लोगों को अकेला कर दिया है, तो हमें अकेला नहीं रहना है, हमें मिलकर रहना है, हमें ऐसा काम करना है जिससे पूरा समाज को बेनिफिट हो। थैंक यू मैम।
1: थैंक यू सो मच, इतना अच्छा मैसेज रितु आपने दिया, एंड सेल्फलेस लाइफ इज द मैसेज विच यू हैव गिवन टू एवरीवन। एंड मुझे पक्का विश्वास है कि जितनी भी औरतें, जितना भी लोग रीड इंडिया के साथ जुड़े हैं, उन सबकी सोच यही है कि कैसे हम दूसरों के लिए सर्विस कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों के साथ अपनी एजुकेशन को शेयर कर सकते हैं। वंडरफुल मैसेज रितु, एंड थैंक यू सो मच। स्मिता, यू वुड लाइक टू कंक्लूड द प्रोग्राम?
2: So I'm very, very thankful to Dalal sir for taking that initiative, and of course to Dr. Geeta Malhotra for, you know, so many resources are required. इसके पीछे बहुत काम होता है जो कभी कभी हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते। बहुत मेहनत लगती है लोगों को जोड़ने में, इस मुकाम तक लाने में कि इस सेंटर को आज इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, 8-9 सर्विसेज इस एक अकेले सेंटर से प्रोवाइड हो रही हैं, और कोशिश ये है कि इसको धीरे धीरे करके सेल्फ सस्टेन किस तरीके से बनाया जाए, और बिल्कुल जो है सेल्फलेस होके, निस्वार्थ जिसकी हम बात कर रहे हैं, दोनों ही हमारे मेंटर्स जो हैं मिस्टर दलाल एज वेल एज डॉक्टर गीता, इसी इसी जुट में जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से ये कम्युनिटी सेंटर सेल्फ सस्टेन हो और ये आगे बढ़ता जाए और एक रोल मॉडल की तरीके से हम इसको भारतवर्ष में प्रेजेंट कर सके। सो थैंक यू वेरी मच टू आवर व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस। दिस वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी दैट वी वांटेड टू शेयर विद यू। थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ दलजीत सचदेवा
1: और मैं चांदनी वर्मा।
0: नमस्कार
1: दलजीत, कहते हैं कि किसी भी चीज को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है, क्यों?
0: बिल्कुल, तभी तो कहते हैं कि चीज खूबसूरत नहीं होती बल्कि उसे देखने वाले की निगाहें अच्छी होती हैं, उनका नजरिया खूबसूरत होता है।
1: बिल्कुल, और एक नजरिया होता है विज्ञान का, जो किसी भी घटनाक्रम को या किसी भी स्थिति को या फिर किसी भी वस्तु को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मापता है और फिर पहुंचता है एक ठोस नतीजे पे।
0: और तभी तो कहते हैं कि विज्ञान ने हमें जीने के नए मायने दिए हैं और हमारी सोच को नई दिशा,
1: और इसी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और लोगों में वैज्ञानिक चेतना जगाने का बीड़ा उठाया है विज्ञान प्रसार ने।
0: जी हाँ दोस्तों, विज्ञान प्रसार के माध्यम से आपको मिलती है विभिन्न विषयों की रोचक, दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
1: और दोस्तों, आज वैज्ञानिक कार्यक्रमों के इस श्रृंखला में हम प्रस्तुत करते हैं एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विद्या पर आधारित कार्यक्रम, और इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे सन यानी सूरज के बारे में।
0: तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि आज हम सूरज के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो चांदनी शुरू करें सीखने सिखाने का ये सिलसिला।
1: बिल्कुल, तो चलो सबसे पहले हम सूरज का परिचय प्राप्त करते हैं। सूरज पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाकी तारों की अपेक्षा ये पृथ्वी से हजारों गुना ज्यादा निकट है, और तारों के बारे में हम जितना भी जानते हैं उनके बारे में हमें सूरज के अध्ययन से ही पता चला है। जैसा कि हमने कहा कि ये बाकी तारों की अपेक्षा पृथ्वी से हजारों गुना ज्यादा नजदीक है, इसीलिए खगोल शास्त्रियों ने इसका विस्तृत अध्ययन करने में सफलता हासिल की है।
0: और खगोल शास्त्रियों के अध्ययन से ये पता चला कि सूर्य G2 टाइप मेन सीक्वेंस तारा है, जो लगभग 5 करोड़ वर्ष से चमक रहा है। पृथ्वी, चंद्रमा और उल्कापिंड की रेडियो सक्रियता से ये पता चला कि ये इतने ही वर्षों से हैं, और पृथ्वी का तापमान शुरू से ही सुखद है और सूर्य की ऊर्जा से ही ये संभव हो पाया है।
1: बिल्कुल ठीक, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि सूर्य की इतनी शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत क्या है। अब प्रयोगों और अध्ययनों के बाद ये पता चला है कि सूर्य के साथ साथ बाकी तारों की असीम ऊर्जा का स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूजन। दलजीत, अब बात आती है सूर्य के आकार की, तो इसके बारे में तुम क्या कुछ बता सकते हो?
0: देखो चांदी, सूर्य अभी तक सौर मंडल का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके 0.5 डिग्री कोणीय आकार और तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूरी के आधार पर इसके व्यास का आकलन किया गया है, जो करीब 1,392,000 किलोमीटर है। ये व्यास पृथ्वी के व्यास का करीब 109 गुना है और सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से 10 गुना ज्यादा है। चांदनी, यहाँ एक खास बात और बता दूं कि सूर्य के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की वजह से सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
1: हाँ, सूर्य पृथ्वी के आकार से करीब 3,33,000 गुना ज्यादा और बृहस्पति से करीब 1,000 गुना ज्यादा बड़ा है। ये कहा जा सकता है कि सूर्य इतना बड़ा है कि ये अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर लेता है, और इसकी यही खासियत तारों को ग्रहों से अलग कर देती है। दलजीत, ये बताओ कि सूरज की संरचना कैसी है?
0: देखो चांदनी, ये अच्छा सवाल वैसे तुमने पूछा। स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से ये पता चलता है कि ये मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 94% और हीलियम की 6% है। बाकी के तत्व बहुत ही थोड़ी मात्रा में, लगभग 0.13% में है।
1: लेकिन दलजीत, कम मात्रा में पाए जाने वाले ये तत्व कौन कौन से हैं?
0: देखो चांदनी, सूरज की संरचना में जो तत्व काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं उनमें नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम और आयरन है। तो ये तो बात थी कि सूरज किन किन चीजों से मिलकर बना है। चांदनी, अब तुम इसकी अंदर की संरचना के बारे में कुछ बताओ।
1: जरूर, सूरज का बीच का हिस्सा या इसका अंतर्भाग सूरज के आकार का 10% हिस्सा है। सूरज का यही वो हिस्सा है जहां न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके ऊपर के सभी हिस्सों के गुरुत्वाकर्षण दबाव के कारण ये हिस्सा काफी ज्यादा गर्म और सघन होता है। जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए काफी ज्यादा तापमान और घनत्व की जरूरत होती है।
0: सूरज का अंतर्भाग करीब 16 मिलियन के है और इसका घनत्व पानी के घनत्व से करीब 160 गुना ज्यादा है और लोहे के घनत्व से 20 गुना ज्यादा है। हालांकि काफी ज्यादा तापमान होने की वजह से सूरज का अंदरूनी हिस्सा सिर्फ गैसों से भरा हुआ है। इसके अंदरूनी हिस्से में कहीं भी पृथ्वी की तरह पिघले चट्टान नहीं पाए जाते हैं। चांदी, अब तुम ये बताओ कि सूरज का रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन क्या है?
1: बताती हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो श्रोताओं, जाइएगा मत, हम अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2: विज्ञान प्रसार सूचना सेवा यानी विप्रिस भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों का संग्रह है। विज्ञान प्रसार अपने होम पेज दैट इज www.vigyanprasar.com को व्यवस्थित एवं सामयिक करने के अतिरिक्त सीडी रोम एवं अनेक सीखने वाले सॉफ्टवेयरों को विकसित करता है। ये होम पेज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मुख्य वेबसाइट है। विप्रिस 125 हिंदी एवं अंग्रेजी समाचारों को संकलित करके एक पुस्तक क्लिप सेट ग्राहकी आधार पर हर पखवाड़े प्रकाशित करता है। विप्रिस अन्य वैज्ञानिक निकायों एवं संस्थाओं की भी वेबसाइट बनाता है।
1: ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, दलजीत ने मुझसे सूरज के रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन के बारे में पूछा था, क्यों दलजीत?
0: बिल्कुल ठीक, तो जल्दी बताओ भाई।
1: देखो, सूरज के त्रिज्या का करीब 85% भाग रेडिएटिव जोन कहलाता है। और ये वो हिस्सा है जहाँ गर्म अंदरूनी भाग से ऊर्जा फोटॉन्स के जरिए बाहरी परतों तक पहुँचाई जाती है।
0: और कन्वेक्टिव जोन?
1: सूर्य की त्रिज्या के बाहरी 15% हिस्से में ऊर्जा जिस विधि से पहुँचाई जाती है उसे कन्वेक्शन कहते हैं। फोटोन रेडिएशन का प्रवाह ठंडे हिस्सों में आयनों द्वारा बाधित कर दिया जाता है और इन हिस्सों में गैसों के प्रवाह से ऊर्जा पहुंचाई जाती है। सूरज की सतह के ठीक नीचे का ये हिस्सा कन्वेक्टिव जोन कहलाता है।
0: बिल्कुल ठीक। और अब बात करते हैं सूरज की सतह की। सूर्य की सबसे अंदरूनी सतह फोटोस्फीयर है, इसे ही सूरज की सतह मानते हैं क्योंकि इसी के ऊपर से फोटॉन्स अंतरिक्ष में निकलते हैं। ये फोटोस्फीयर तकरीबन 500 किलोमीटर घना है और इसका तापमान करीब 5840 के है।
1: बिल्कुल ठीक। और इसी संदर्भ में गैलीलियो ने पाया था कि सूरज की सतह पर छोटे छोटे गहरे हिस्से थे जिन्हें सन स्पॉट्स कहते हैं और ये हिस्से फोटोस्फीयर के ठंडे हिस्से माने जाते थे। चूंकि ये हिस्से बाकी के फोटोस्फीयर से 1000 से 1500 के गुना ज्यादा ठंडे हैं, इसीलिए इनसे रोशनी उत्पन्न नहीं होती और ये गहरे नजर आते हैं। इन सनस्पॉट्स या गहरे हिस्सों की उम्र सिर्फ कुछ दिनों से कुछ महीनों तक की ही होती है।
0: और गैलीलियो ने ज्यादा लंबे समय तक टिके रहने वाले सनस्पॉट्स की मदद से सूर्य की घूर्णन विधि का अंदाज लगाया। चूंकि सूरज गैसों से बना है इसलिए इसके सभी हिस्से सामान गति से नहीं घूमते हैं। सूरज की भूमध्य रेखा 25 दिनों में एक बार घूमती है, जबकि भूमध्य रेखा के 30 डिग्री ऊपर और नीचे का हिस्सा 26.5 दिनों में एक बार घूमता है और भूमध्य रेखा से 60 डिग्री ऊपर और नीचे का हिस्सा घूमने में 30 दिनों का वक्त लेता है।
1: दलजीत, बिल्कुल सही कहा तुमने। सूर्य पर पाए जाने वाले ये सनस्पॉट्स काफी दिलचस्प हैं। वर्षों तक इन सनस्पॉट्स का अध्ययन करने पर ये पता चला कि इन सनस्पॉट्स की संख्या एक नियत वक्त के साथ बदलती रहती है। इस सनस्पॉट साइकिल की शुरुआत में सनस्पॉट्स की संख्या न्यूनतम होती है और उनमें से ज्यादातर सनस्पॉट सूरज की भूमध्य रेखा से 35 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। करीब 5.5 सालों के बाद इन सनस्पॉट्स की अधिकतम संख्या होती है और उस वक्त ज्यादातर सनस्पॉट्स भूमध्य रेखा के 5 डिग्री कोण पर होते हैं।
0: बिल्कुल, ये सनस्पॉट्स अत्यधिक चुंबकीय शक्ति वाले क्षेत्र हैं और ये सनस्पॉट स्पेक्ट्रा की स्पेक्ट्रल लाइंस को प्रभावित करते हैं। हर स्पेक्ट्रल लाइन कई भागों में बढ़ जाती है और इन भागों के अंतर से चुंबकीय शक्ति की माप की जाती है।
1: बिल्कुल, और ये भी माना जाता है कि सनस्पॉट साइकिल के जिम्मेदार यही चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। 11 साल के एक चक्र में सनस्पॉट ग्रुप का सबसे आगे वाले सनस्पॉट का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय होता है, जबकि सबसे पीछे वाले सनस्पॉट का दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय होता है। अगले 11 साल के चक्र में बिल्कुल उल्टा हो जाता है और इस तरह से इस पूरे चक्र की अवधि होती है 22 सालों की।
0: जब सूर्य में सनस्पॉट की संख्या अधिक होती है उस वक्त ये हिस्से काफी चमकीले और धधकते नजर आते हैं। ये चमकीले हिस्से गैसों के बादल होते हैं जो सनस्पॉट्स के ऊपर बनते हैं और चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करते हैं।
1: और सूरज की सतह से 40,000 किलोमीटर ऊपर का हिस्सा कोरोना या सूरज का वायुमंडल कहलाता है, जो अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र होता है। कभी कभी चुंबकीय क्षेत्रों में बने घेरों का अनुसरण करने वाले हाइड्रोजन गैस के घेरे भी बन जाते हैं। ये शांत क्षेत्र कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक ही रहते हैं। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो सिर्फ कुछ घंटों तक ही टिकते हैं और उनसे काफी मात्रा में गैस निकलती है जो फोटोस्फेयर से करीब 3,00,000 किलोमीटर ऊपर तक चली जाती है।
0: सूरज के जो धधकते हिस्से हैं, वो इसके शांत क्षेत्र से काफी ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। ये केवल कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक ही जीवित रहते हैं और इन धधकते हिस्सों से काफी प्रायोनिक तत्व भी निकलते हैं। इन हिस्सों की खासियत ये होती है कि इनके द्वारा छोड़े गए तत्व इतनी ऊर्जा से निकलते हैं कि इन पर सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का भी असर नहीं पड़ता है। कभी कभी तो इन आयनों का विस्फोट जब पृथ्वी पर पहुंच जाता है तो रेडियो कम्युनिकेशन में बाधा भी डालता है।
1: और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बाहर यात्रा करने वाले इंसानों को इन शक्तिशाली आयन विस्फोटों के प्रभाव से बचने के लिए रक्षा कवच का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।
0: सूर्य की सतह का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने से ये पता चला कि इस पर एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना है जिसे ग्रैनुलेशन कहा जाता है। ग्रैनुलेशन चमकीले बिंदुओं से बना है और ये करीब 700 से 1000 किलोमीटर तक फैला है। हर ग्रैनुल के बीच से गर्म गैस निकलती है जो इसके अंदर से बाहर की सतह तक ऊर्जा का संचार करती है। एक ग्रैनुल करीब 8 मिनट तक जीवित रहता है। चांदनी, अब तुम हमें सूर्य के वायुमंडल के बारे में कुछ बताओ।
1: देखो, हम सूर्य के अंदर के हिस्से से जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते हैं तापमान और घनत्व घटता जाता है और जैसे जैसे हम सूर्य के वायुमंडल की तरफ जाते हैं घनत्व के घटने का क्रम जारी रहता है। हालांकि फोटोस्फेयर के ऊपर तापमान बढ़ता जाता है। हालांकि इस तापमान वृद्धि का सही सही कारण तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ सिद्धांतों के आधार पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनिक वेव्स या मैग्नेटिक वेव्स तापमान वृद्धि में सहायक होते हैं।
0: अब बात करते हैं क्रोमोस्फीयर की। देखो, सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा के किनारे पर एक पतली गुलाबी परत देखी जा सकती है। ये रंगीन परत क्रोमोस्फीयर है जो करीब 2000 से 3000 किलोमीटर मोटी है। क्रोमोस्फीयर का तापमान अंदर से बाहर की ओर बढ़ता है। चूंकि इसका घनत्व कम है इसलिए इस पर हाइड्रोजन की रेखाएं या हाइड्रोजन लाइंस देखी जा सकती हैं। चांदनी, क्रोमोस्फीयर के बारे में जानने के बाद हमें अब तुम ये बताओ कि ये कोरोना क्या होता है।
1: बताती हूँ भाई, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो क्योंकि हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
3: विज्ञान प्रसार की स्थापना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 1989 में एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में बड़े पैमाने पर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के कार्यों को पूरा करने के लिए की गई थी। विज्ञान प्रसार का प्रमुख उद्देश्य बड़े पैमाने पर जहां तक संभव हो समाज में वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना तथा प्रसारित करना है।
2: आरंभ से ही विज्ञान प्रसार लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकों एवं मासिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन करता रहा है। विज्ञान प्रसार ने लगभग 100 से अधिक शीर्षकों की पुस्तकें प्रकाशित की हैं। ये पुस्तकें अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में हैं। पिछले वर्षों में प्रकाशित कुछ श्रृंखलाएं इस तरह से हैं: वैज्ञानिक जीवनी श्रृंखला, भारतीय विज्ञान की कालजयी कृतियों की पुनर्मुद्रण श्रृंखला, भारतीय वैज्ञानिक विरासत श्रृंखला, प्राकृतिक इतिहास श्रृंखला और स्वास्थ्य श्रृंखला। विज्ञान प्रसार द्विभाषी मासिक न्यूज़लेटर ड्रीम 2047 प्रकाशित करता है। ड्रीम 2047 में प्रकाशित बहुत से लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में भी पुनः प्रकाशित हुए हैं। ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कोरोना की।
0: और तुम हमें कोरोना के बारे में बताने वाली थी।
2: बिल्कुल, सुनो। जब पूरा सूर्य ग्रहण होता है तो उस स्थिति में चंद्रमा फोटोस्फेयर को पूरी तरह से ढक लेता है। और इस गहरे चंद्रमा के चारों ओर सफेद मोती सा नजर आता है कोरोना, और इसका तापमान करीब 10 से 20 लाख के, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा होता है।
0: कोरोना अत्यधिक तापमान वाला क्षेत्र है, क्योंकि अणुओं से काफी इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद यहाँ काफी आयन बचे हुए होते हैं।
2: लेकिन दलजीत, यहाँ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। अणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकल जाते हैं?
0: भाई, वही तो बताने जा रहा हूँ। काफी ज्यादा तापमान होने की वजह से इनके अणु आपस में टकराकर इतनी ऊर्जा पैदा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और ये प्रक्रिया आयनाइजेशन कहलाती है। कभी कभी तो शक्तिशाली सौर गतिविधियों की वजह से तापमान 36 लाख केल्विन तक पहुंच जाता है।
2: दलजीत, यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना का ज्यादातर हिस्सा सूर्य की चुंबकीय शक्ति के प्रभाव से सूर्य के नजदीक ही होता है। एक्सरे से देखने पर ये हिस्से चमकीले नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में नहीं है, और चुंबकीय क्षेत्र से दूर होने की वजह से ये गहरे नजर आते हैं, और इन्हें कोरोनल छिद्र कहते हैं। दलजीत, क्या तुम बता सकते हो कि सोलर विंड क्या है?
0: देखो चांदनी, तेज गति के आयन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बाहर निकल आते हैं, और इनकी गति इतनी ज्यादा होती है कि ये एक सेकंड में कई सौ किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं।
2: अच्छा।
0: और तेज गति से घूमते हुए ये धनात्मक और ऋणात्मक आयन सौर मंडल के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं, और इन्हें सोलर विंड कहते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। और इसी सोलर विंड के कण जब किसी ग्रह के नजदीक से गुजरते हैं तो ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ग्रह के चारों तरफ बिखर जाते हैं। कुछ कण ग्रह के चुंबकीय ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। जब ये आवेशित कण ग्रह के वायुमंडल में पहुंच जाते हैं तो यहाँ वायुमंडल में मौजूद गैस इमिशन स्पेक्ट्रा बनाती है, जो उत्तर में ऑरोरा बोरेलिस और दक्षिण में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाती है।
0: और इसी तरह पृथ्वी पर लाल ऑरोरा वायुमंडल के ऊपरी सतह पर हाइड्रोजन के उत्सर्जन से बनती है, जबकि इससे थोड़ा नीचे बनती है हरी या ग्रीन ऑरोरा, और ये बनती है ऑक्सीजन के उत्सर्जन से। जब सूर्य की गतिविधियां काफी तेज होती हैं, उस वक्त इन सोलर विंड के कणों की संख्या और ऊर्जा दोनों बढ़ जाती हैं, और इस वक्त पृथ्वी के वायुमंडल में दिखने वाले ऑरोरा भी काफी बढ़ जाते हैं। चांदनी, ये बताओ कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है?
2: दलजीत, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा तुमने। सूरज लाखों करोड़ों वर्षों से हर पल प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। ये एक दिलचस्प विषय भी है। काफी अध्ययन के बाद खगोल शास्त्रियों को अब ये पता चल गया है कि सूरज अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करता है। इतने लंबे समय से इतनी ऊर्जा का उत्पादन करना अपने आप में एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। दलजीत, क्या तुम्हें पता है कि सूरज से कितनी ऊर्जा निकलती है?
0: जानी, वैज्ञानिकों को गणना के आधार पर ये पता चला कि सूरज से लगभग 4×10^26 वाट ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़े पावर प्लांट से भी 8×10^16 गुना ज्यादा है। जानती हो हमारा सबसे बड़ा पावर प्लांट करीब 5,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करता है।
1: हाँ, और इसे यूं भी कहा जा सकता है कि हमारे 2.5×10^9 बड़े पावर प्लांट एक साल में जितनी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं उतनी ऊर्जा सूरज से एक सेकंड में निकलती है। अब सवाल ये आता है कि इतनी ऊर्जा का संभावित स्रोत क्या है।
0: और इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। दो हाइड्रोजन के अणु एक ऑक्सीजन के अणु से मिलकर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पानी बनाते हैं और इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा निकलती है। अब अगर हम ये मान लें कि सूरज अपने अंदर के समूचे हाइड्रोजन का इस्तेमाल इस अभिक्रिया में कर ले तो इससे निकली ऊर्जा सूर्य को केवल 18,000 साल तक चमकाने के लिए काफी है। वैसे तो ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन से काफी कम है, इसलिए ये अभिक्रिया सूरज को सिर्फ 30 साल तक ही ऊर्जा प्रदान कर सकती है।
1: दलजीत, इसका मतलब ये हुआ कि कोई और ज्यादा प्रभावशाली अभिक्रिया होनी चाहिए, बल्कि ऐसी अभिक्रिया हो जो ऊर्जा उत्पादित करने में 100% सक्षम हो, और ऐसी अभिक्रिया सूरज को 10^13 वर्षों तक ऊर्जा प्रदान कर सकती है।
0: और इसी संबंध में अध्ययन होते गए और लोगों की नजर में ग्रेविटेशनल सेटलिंग का सिद्धांत आया।
1: और क्या है वो ग्रेविटेशनल सेटलिंग का सिद्धांत?
0: देखो, इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जब हम किसी चट्टान को जमीन के ऊपर हवा में पकड़ते हैं तो इसकी ऊर्जा स्टोर्ड एनर्जी के रूप में होती है।
1: बिल्कुल।
0: और जब हम इस चट्टान को जमीन पर छोड़ते हैं तो इस ऊर्जा का निकास होता है। ये ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहलाती है और ये चीजों को गर्म कर सकती है। ऐसा ही हुआ होगा सूरज की परतों के साथ। अगर सूरज की ये परतें केंद्र की तरफ दबें तो इससे गैसीय दबाव पैदा होगा और तापमान भी बढ़ेगा और गैसों से रोशनी भी निकलेगी।
1: बिल्कुल ठीक। इस शतक की शुरुआत तक तो वैज्ञानिक इसी धारणा के पक्ष में तर्क देते रहे, लेकिन बाद में ये पाया गया कि ये गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा या ग्रेविटेशनल एनर्जी सूर्य को सिर्फ 30 मिलियन साल तक शक्ति प्रदान कर सकती है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने रेडियो सक्रिय तत्वों की सहायता से सौर मंडल की पूरी उम्र का अंदाज लगाया और ये पाया कि सौर मंडल यानी कि सूर्य भी तकरीबन 4.6 करोड़ वर्ष पुराना है। तो फिर वैज्ञानिक ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर वो कौन सा स्रोत है जो सूर्य को इतने वर्षों से ऊर्जा दे रहा है।
0: और काफी अध्ययन के बाद पता चला कि ये स्रोत है न्यूक्लियर पावर या नाभिकीय शक्ति द्वारा उत्पन्न ऊर्जा। न्यूक्लियर पावर ही एकमात्र ऐसा कारण है जो सूर्य के प्रकाश को इतने लंबे समय से बनाए हुए है।
1: हाँ, और इसी के अंतर्गत आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। इन दोनों ही प्रक्रियाओं से एक अणु का केंद्र दूसरे अणु के केंद्र या न्यूक्लियस में परिवर्तित हो सकता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे काफी बड़े यूरेनियम के केंद्र हीलियम और लेड के छोटे न्यूक्लियाई या केंद्र में टूटते हैं फिजन की प्रक्रिया में, और इस प्रक्रिया में काफी ज्यादा ऊर्जा भी निकलती है।
0: बिल्कुल। और इसी तरह फ्यूजन की प्रक्रिया में दो छोटे न्यूक्लियाई जुड़कर बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं और इस तरह फ्यूजन की प्रक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है।
1: बिल्कुल।
0: एटॉमिक पावर प्लांट्स और एटम बॉम्ब ऊर्जा के लिए फ्यूजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जबकि तारे और हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन से ऊर्जा अर्जित करते हैं। क्यों जानने?
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने सूरज के बारे में विस्तार से जाना, जिसे हम देखते तो हर रोज हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये अपने अंदर इतनी जानकारी छिपाए हुए है।
0: बिल्कुल। और ये संभव हो पाया विज्ञान प्रसार के माध्यम से। तो यूं ही सुनते रहिए विज्ञान प्रसार के कार्यक्रम और अपनी सोच को दीजिए एक नई दिशा।
1: जी हाँ दोस्तों, और हमें लिख भेजिए कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 11016।
0: पता एक बार फिर, विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया न्यू दिल्ली 110016।
1: तो आपके लिए तमाम खुशियों की कामना करते हुए मैं चांदनी
0: और मैं दलजीत
1: आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। श्रोताओ, ये कार्यक्रम आप तक किन लोगों के माध्यम से पहुंचाया गया ये हम आपको बताना चाहेंगे। कार्यक्रम के श्रृंखला निर्देशक हैं डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन, शोध मृदुला बालाकृष्णन, सलाहकार डॉक्टर बीवी कामले, विमान बसु डॉक्टर जी के मदे, वाचन स्वर चांदनी वर्मा और दलजीत सचदेवा का, रिकॉर्डिंग संपादन और मिश्रण सदन लाल मेहता और प्रस्तुति सहयोग प्रिया नटराजन और मृदुला बालाकृष्णन।
4: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
5: उपग्रह संचार क्या है? उपग्रहों के बिना विश्वव्यापी संचार प्रणाली की बात सोची भी नहीं जा सकती है। जाने माने विज्ञान कथाकार आर्थर सी क्लार्क ने 1945 में अपनी पुस्तक वायरलेस वर्ल्ड में विश्वव्यापी संचार प्रणाली के बारे में कल्पना की थी। यह प्रणाली ऐसे मानव युक्त अंतरिक्ष केंद्रों पर आधारित थी जो धरती के अपने अक्ष पर घूमने की रफ्तार से ही अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर काटते थे। भूस्थिर उपग्रहों की कल्पना भी उनके मन में तभी पैदा हो चुकी थी। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वे उपग्रह हैं जो भूमध्य रेखा के ऊपर आकाश में एक खास ऊंचाई पर घूमते हैं। इन्हें अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लगता है जितना पृथ्वी को अपने अक्ष में एक बार घूमने में लगता है। ये उपग्रह भी पृथ्वी के घूमने की दिशा में चक्कर लगाते हैं, इसलिए धरती के सापेक्ष एक ही स्थान पर रहते हैं और जमीन से देखने वाले किसी व्यक्ति को स्थिर नजर आते हैं। अगर भूतलीय माइक्रोवेव संचार प्रणाली से तुलना की जाए तो ऐसे उपग्रहों की वही भूमिका होती है जो रिपीटर स्टेशनों की होती है। भूतलीय रिपीटर स्टेशन सिग्नल प्राप्त कर उनकी प्रबलता बढ़ाते हैं और फिर इसे और बड़े क्षेत्र में प्रसारित कर देते हैं। लेकिन उपग्रहों को रिपीटर स्टेशनों की तरह इस्तेमाल करने का फायदा यह होता है कि इनका प्रसारण का दायरा, जिसे फुटप्रिंट कहा जाता है, काफी बड़ा होता है। धरती की आधी सतह से कुछ ही कम क्षेत्र में एक भू स्थित उपग्रह के दायरे में आ जाता है। इसलिए अगर पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में 88,000 किलोमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों में तीन उपग्रह स्थापित कर दिए जाएं, तो ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़कर बाकी सारी पृथ्वी इनके दायरे में आ जाती है। इस तरह दूर दराज के इलाकों को भी इस संचार प्रणाली के अंतर्गत लिया जा सकता है और उनसे सीधा संपर्क कायम किया जा सकता है। उपग्रह संचार प्रणाली के लिए प्रसारण भू केंद्र तथा अभिग्रहण भू केंद्र और इनके बीच संपर्क के लिए उपग्रह की आवश्यकता पड़ती है। दो भू केंद्रों के बीच रेडियो आवर्ती संपर्क को उपग्रह संपर्क कहा जाता है। उपग्रह संपर्क में उपग्रह को सिग्नल भेजने के लिए अपलिंक प्रणाली और उपग्रह से आए सिग्नलों को ग्रहण करने के लिए डाउनलिंक प्रणाली लगी रहती है।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जी। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जी। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जी।

विद्यार्थियों की एक टोली पढ़ने के लिए रोजाना अपने गांव से 6-7 मील दूर दूसरे गांव जाती थी। एक दिन चलते हुए अचानक विद्यार्थियों को लगा कि उनमें से एक विद्यार्थी कम है। ढूंढने पर मालूम हुआ कि वो पीछे रह गया है। एक साथी ने पुकारा, तुम वहां क्या कर रहे हो? उसने वहीं से उत्तर दिया, ठहरो, मैं अभी आता हूं। ये कहते हुए उसने धरती में गड़े एक खूंटे को जोर से हिलाया, उखाड़ा और दूर फेंक कर फिर से टोली में आ मिला। उसके सहपाठी ने पूछा, तुमने वो खूंटा क्यों उखाड़ा? उसे तो किसी ने अपने खेत की सीमा बताने के लिए गाड़ा था। इस पर उसने जवाब दिया, लेकिन वो बीच रास्ते में गड़ा हुआ था, चलने में रुकावट डालता था। जो चीज रास्ते की रुकावट बने उसे तुरंत उखाड़ फेंकना चाहिए। भविष्य में अखंड और एक भारत का मार्ग प्रशस्त करने वाले वो विद्यार्थी कोई और नहीं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाड़बाई था। उन्होंने करमसद में माध्यमिक विद्यालय और पेटलाद स्थित उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन अधिकांश ज्ञान उन्होंने स्वाध्याय से ही अर्जित किया। 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह झावेर बा के साथ संपन्न हुआ। आर्थिक तंगी के कारण उनकी शिक्षा में व्यवधान पड़ा। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास किया, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति अत्यंत मजबूत थी। वो बैरिस्टर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड के मिडिल टेम्पल में प्रवेश लिया और 36 महीने का कोर्स मात्र 30 महीने में ही पूरा कर लिया। भारत लौटने के बाद वो अहमदाबाद के सबसे सफल बैरिस्टर बने। अपने कर्तव्यों के प्रति वो अत्यंत ईमानदार थे, जिसके अनेक उदाहरण उनके जीवन में देखने को मिलते हैं। एक बार वो कोर्ट में केस लड़ रहे थे। बहस के दौरान ही उन्हें तार द्वारा पत्नी की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। उसे पढ़कर उन्होंने चुपचाप अपनी जेब में रख लिया और 2 घंटे बहस कर उस निर्दोष व्यक्ति की जान बचा ली। वो केस जीत चुके थे। बहस खत्म होने के बाद सबको उनकी पत्नी के देहांत की खबर मिली। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं उस वक्त अपना कर्तव्य निभा रहा था। पत्नी तो जा ही चुकी थी, लेकिन एक जीवन मैं बचा सकता था, मैंने वही किया। ये उनका संवेदना और करुणा से भरा मन ही था जो उन्हें हर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करता था। गांधी जी के विचारों को सुनकर ही वो स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए थे। सन 1918 में गुजरात जिले के किसानों की साल भर की फसल नष्ट हो गई थी। खेड़ा सूखे की चपेट में था, लेकिन लगान पूरा देना था। जब किसानों की सारी प्रार्थनाएं निष्फल हो गईं, तब गांधी जी ने सत्याग्रह की सलाह दी। गांधी जी की अपील पर वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चलती हुई वकालत छोड़ी और आंदोलन के लिए खड़े हो गए। यही उनके सार्वजनिक जीवन का श्री गणेश था। पटेल जी की अगुवाई में खेड़ा सत्याग्रह अत्यंत सफल रहा। अंततः ब्रिटिश सरकार को करों में राहत देनी पड़ी। ये सरदार पटेल की पहली सफलता थी, जिससे उन्हें देशव्यापी ख्याति प्राप्त हुई। इस तरह खेड़ा सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन कहलाया। यहीं से वल्लभ भाई पटेल की अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष यात्रा आरंभ हुई।

सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन के समर्थक थे। उन पर गांधी जी के कार्यों और आदर्शों का बहुत गहरा प्रभाव था। यही कारण है कि आगे चलकर उन्होंने संपूर्ण स्वदेशी को अपना लिया था। उन्हीं दिनों ब्रिटिश शासन ने भारतीय झंडा फहराने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गांधी जी जेल में थे। ऐसे समय में इस कानून के विरुद्ध सन 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उन्होंने गुजरात में शराब, छुआछूत, जातीय भेदभाव जैसी कुरीतियों का जमकर विरोध किया। सन 1922, 1924 और 1927 तीन बार वो अहमदाबाद के नगरपालिका अध्यक्ष भी चुने गए। सन 1928 में प्रांतीय सरकारों ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे कठिन समय में अपनी आवाज बुलंद करते हुए बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। आंदोलन जारी रहा। अंततः विवश होकर सरकार को झुकना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल को इस मामले की जांच का दायित्व सौंपा गया। गहरी पड़ताल के बाद उन्होंने इस लगान वृद्धि को गलत ठहराया और इसे घटाकर 6.03% कर दिया। ये वल्लभ भाई पटेल की बड़ी जीत थी। बारडोली सत्याग्रह अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर छा गया। देश भर में इसकी चर्चा हुई। इस आंदोलन की सफलता के बाद ही वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की और वो कहलाए सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो वाकई सरदार थे, मुखिया थे। वो कहा करते थे कि मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे ठंडा रहना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना होगा, अन्यथा वो स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों न हो जाए, अंत में उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। उनका मानना था कि एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है, जब तक उसे सामंजस्य में न लाया जाए और एकजुट न किया जाए। उन्होंने अपने नेतृत्व के बल पर अनेक बार लोगों को एकजुट किया और वांछित परिणाम हासिल किए। वो वाकई लौह पुरुष थे, जिनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी और युक्तियां इतनी विवेक सम्मत कि कठिनाइयां समाधान को स्वतः रास्ता देकर किनारे हो जाया करती थीं। लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो, उनका उद्देश्य सिर्फ चलना या संघर्ष करना नहीं, हर हाल में विजयी होना था। सन 1930 में उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने इतना प्रभावशाली भाषण दिया कि हजारों लोग उनके शब्दों से प्रभावित होकर इस सत्याग्रह में शामिल हुए। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो गांधी जी के साथ रहे। सभी प्रमुख नेताओं के साथ वो भी गिरफ्तार हुए और सन 1945 तक अहमदनगर जेल में कैद रहे।

15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ और वल्लभ भाई पटेल को देश के पहले उप प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री का दायित्व सौंपा गया। उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी अलग अलग रियासतों में बंटे भारत को एक सूत्र में बांधना। सरदार पटेल ने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करने का अविस्मरणीय कार्य किया। विश्व इतिहास में ऐसे एक भी व्यक्ति का उदाहरण नहीं है जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण किया हो। अखंड भारत का स्वप्न लिए वो खड़े हुए, अपना थैला उठाया और वीपी मेनन को साथ लेकर चल पड़े। वो उड़ीसा पहुंचे और वहां के 23 राजाओं से कहा कि वो भारतीय संघ में शामिल हो जाएं। उनकी भाषा स्पष्ट और कड़ी थी। उन्होंने कहा, कुएं के मेंढक मत बनो, महासागर में आ जाओ। इस तरह उड़ीसा की जनता का सपना कुछ ही घंटों में साकार हो गया। यहां से वो नागपुर पहुंचे और 38 राजाओं से मिले। सरदार पटेल ने इन राज्यों की बादशाहत को समाप्त कर भारतीय संघ में मिला लिया। इसी तरह वे काठियावाड़ पहुंचे और वहां की 250 रियासतों का भारत में विलय किया। एक शाम वो मुंबई पहुंचे, आसपास के राजाओं से बातचीत क्या की, उनकी राजसत्ता ही लेकर चले आए और एक भारत के नक्शे पर उसे जड़ दिया। जोधपुर, त्रावणकोर, भोपाल, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद जैसी रियासतें उनके समक्ष चुनौती बनकर खड़ी थीं। लेकिन पटेल लौह पुरुष थे। 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 रियासतें, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर सभी रियासतों को भारत में मिलाकर उन्होंने आज के भारत की तस्वीर तैयार कर दी थी। 9 नवंबर सन 1947 को जूनागढ़ भी भारतीय संघ में शामिल हो गया। 13 नवंबर को सरदार पटेल ने सोमनाथ के भग्न मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। सन 1948 में हैदराबाद का भी ऑपरेशन पोलो के तहत 4 दिन की सशस्त्र कार्रवाई द्वारा भारतीय संघ में विलय करा लिया गया। 562 रियासतों का एकीकरण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था। ये एक रक्तहीन क्रांति थी। गांधी जी ने इस उपलब्धि पर सरदार पटेल से कहा था कि रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी कि इसे केवल तुम ही हल कर सकते थे। अपनी कूटनीति, दूरदर्शिता और प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर सरदार पटेल ने भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया और लौह पुरुष कहलाए। उनका जन्मदिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्वानों ने उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा, लेकिन लंदन टाइम्स ने इस पर टिप्पणी की कि जर्मनी के एकीकरण से जुड़ी बिस्मार्क की चुनौतियां पटेल की चुनौतियों के समक्ष कुछ भी नहीं थीं। इसलिए बिस्मार्क की सफलताएं पटेल के सामने महत्वहीन रह जाती हैं। सरदार पटेल का स्वास्थ्य अब लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। राष्ट्र सेवा करते हुए ही 15 दिसंबर सन 1950 को उन्होंने अंतिम सांस ली। देश आंसुओं में डूब गया। नम आंखों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार पटेल की चिता के पास भाषण देते हुए कहा, सरदार के शरीर को तो अग्नि जला रही है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि को दुनिया की कोई अग्नि नहीं जला सकती। सन 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित किया गया। 31 अक्टूबर सन 2018 को सरदार सरोवर बांध के पास स्थित साधु बेट नामक स्थान पर उनकी एक विशाल मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है।

ये मूर्ति लौह पुरुष सरदार पटेल के यश को सदियों तक कहती रहेगी, भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखेगी। नमन ऐसी महान विभूति को।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नई सुबह की रश्मियां एक नया इतिहास लिख रही।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीप समूहों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया है। एक नाम राजस्थान में झुंझुनू जिले के कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत का भी है। 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पीरू सिंह अदम्य साहस दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अड़तालीस की गर्मियों में जब पाक सेना और कबायलियों ने मिलकर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करके किशन गंगा नदी पर बने अग्रिम मोर्चे को भारतीय सेना को छोड़ने पर मजबूर किया, तो सेना ने टिथवाल पहाड़ी पर मोर्चा संभाला। दुश्मन ऊंचाई पर अपनी जगह जमा बैठा था, वहां से दुश्मन को खदेड़ने का जिम्मा मिला राजपूताना राइफल्स की डी कंपनी को। इस कंपनी की अगुवाई कर रहे थे पीरू सिंह शेखावत। भारतीय सैनिकों को संकरी और खतरनाक मार्ग से होकर गुजरना था। यह रास्ता दुश्मन के बंकरों की जद में था, जिसका फायदा उठाकर दुश्मन ने कंपनी पर भीषण हमला किया और 51 सैनिक शहीद हो गए। बहादुर पीरू सिंह अपने बचे साथियों के साथ राजा रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते गए। उनका पूरा शरीर गोलियों से घायल था, लेकिन वे दुश्मन पर गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ते गए। पीरू सिंह ने दुश्मन को भी तबाह कर दिया, मगर खुद भी हमेशा के लिए मां भारती की गोद में सो गए। पीरू सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: तिरुतणी में 5 सितंबर 1888 को सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन ने इस घर में पहली बार आंखें खोली थी। उन दिनों ये मद्रास प्रांत का हिस्सा था। तिरुतणी में ही शुरुआती पढ़ाई के बाद चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने फिलोसफी में एमए किया। वैसे भारतीय दर्शन, संस्कृति और वैदिक ज्ञान में उनकी बचपन से ही दिलचस्पी थी। 1909 में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। वहां से मैसूर यूनिवर्सिटी और कोलकाता यूनिवर्सिटी में उन्होंने बतौर प्रोफेसर कई साल बिताए। इस दौरान दुनिया भर में उनके ज्ञान का डंका बजा।
1: In July 1918, Professor Ravakrishnan was appointed my colleague as Professor of Philosophy. And it was a very great acquisition to the Philosophy Department of Mysore University. Professor Ravakrishnan was not merely a distinguished writer on philosophy, but he was a great teacher as well.
0: 1931 में वो आंध्रा यूनिवर्सिटी और 1939 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। 1949 में उन्हें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान देश में शिक्षा के विकास को लेकर शानदार काम हुआ। उनकी किताबों ने दुनिया भर में धूम मचाई।
2: मेरा नाम मयंक है, मैं स्कूल से हूँ और मैं सवाद मोहम्मदपुर के लाइब्रेरी में आता हूँ। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, कुछ करना सीखे। देश हमें देता सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, ऐसा हम कुछ करना सीखे। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हम सबको फलों की माया। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखे। जो अनपढ़ है उसे पढ़ाए, जो चुप है उसे वाणी दे, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाए, प्यासी मिट्टी को पानी दे, मेहनत का दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे।
3: रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं। ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने अभी एग्जाम दिया है और अभी मैं एक हफ्ते से यहाँ क्लास में आ रही हूँ और मैं अभी सिलाई का कोर्स कर रही हूँ। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद भी हमें लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें इससे बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं और आगे लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। महिलाएं या फिर लड़कियाँ हों उनको आगे बढ़ने में, या फिर उनको कहीं कुछ जॉब वॉब दिलाने है, फिर हम अपनी तरफ से कोई एनजीओ वगैरह कुछ भी हम खोल सकते हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और लोगों को हम सिखा सकते हैं और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। अपने भाई या बहन या कोई फ्रेंड्स महिलाएं किसी को भी बता सकते हैं कि इसके बारे में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी। इसमें बहुत सारे फैसिलिटी है, बहुत चाहे 16 साल चाहे महिलाएँ हों चाहे लड़कियाँ हों, सभी को सिखाया जा सकता है, सभी सीख सकते हैं। और टीचर बनना चाहती हूँ, टीचर बन के मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट लेके इंग्लिश का टीचर बनना चाहती हूँ और लोगों को मतलब फ्री में भी पढ़ाना चाहती हूँ और स्कूल में भी जॉब करना चाहती हूँ।
2: रीड इंडिया का कार्यक्रम सुनने वालों को गीता का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं वंदना जी, जो बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। वन्ना जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
3: थैंक यू सो मच गीता जी।
2: वन्ना, आप मुझे बताएं कि जो छोटे बच्चे हैं 2 साल से 6 साल तक, गांवों में तो उनके लिए स्कूल ही नहीं है, आंगनवाड़ीज हैं, आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, और हमें साइंस ये कहती है कि इन बच्चों को 6 महीने से एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देना शुरू कर देना चाहिए, तो इसमें आपका क्या विचार है?
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम कि हमें 6 महीने के बच्चे से बच्चे को एक्टिविटीज स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब एक छोटा बच्चा घर में आता है हमारे, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो बढ़ जाती हैं। उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। एक्सपेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन अपना रोल प्ले करना बहुत मुश्किल है। तो जब हम 3 महीने, आपने 6 महीने का बच्चा बोला और मैं 3 महीने से ही बोलती हूँ, या जब बच्चा घर में आता है उसी दिन से हमें जो वैल्यूज बच्चे को देनी है हमें उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बड़ा होकर हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख पाए, तो उसे किताबों की आदत डालिए। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छी बातें बोले, तो उसके सराउंडिंग आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें वो चीज आप में भी आनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है छोटा बच्चा सुनता नहीं है, बट बच्चा माँ के पेट के अंदर से ही सुनना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे जब वो फैमिली में आता है, 6 महीने का होता है, साल का होता है, तो घर के सिस्टम को ही हमें स्कूल में बदलना बहुत जरूरी हो जाता है।
2: वंदना जी, अगर आप शहर की बात करें तो सब माएं तो नौकरी करती हैं और बच्चा जब जगता है उससे पहले ही वो दफ्तर चली जाती हैं, और जब वो वापस आती हैं तो 1 घंटा ही बचता है उनके पास, बच्चे के सोने का टाइम हो जाता है। इस केस में बच्चे की ग्रोथ पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपके क्या विचार है?
3: ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि माँ बाप के पास बहुत कंप्लेंट्स हैं, लेकिन जो बेसिक वैल्यूज छोटे होते बच्चे के अंदर हमें डालनी है, उस टाइम पे वो मदर जो है वो एक वर्किंग वुमेन का रोल प्ले करना चाहती है। तो बहुत जरूरी है आपको उस बैलेंस को मेंटेन करना, उस क्वालिटी को मेंटेन करना, कि अगर आप बाहर निकलना चाहती हैं तो ये आपको देखना है कि आप बच्चे को वो वैल्यूज कहाँ से देंगी। या तो आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स वो रोल प्ले कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना पसंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मेड्स के ऊपर बच्चे छोड़ देते हैं। मेड्स के ऊपर बच्चे छोड़ने का मतलब है बच्चे के अंदर वो वैल्यू नहीं आएगी, उसका रहना बोलना वो नहीं होता। सेकेंड पार्ट है मोंटेसरी स्कूल्स, डे केयर्स, जिसमें बच्चों के अंदर वो वैल्यूज डाली जाती हैं। तो क्योंकि आजकल वर्किंग वुमेन का कल्चर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसी के लिए हम लोगों का जो मंटेसरी सिस्टम है एजुकेशन का, वो हमें लाइन में लाना पड़ रहा है, सो दैट हम पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्चों के अंदर उन वैल्यूज को इनकलकेट कर सके।
2: वंदना, आपके सुझाव सुनने के बाद मेरे दिमाग में तीन बातें आ गई हैं, और तीन बातें ही अलग अलग हैं। एक तो ज्वाइंट फैमिली का ब्रेक होना, पर ज्वाइंट फैमिली का होना भी एक प्लस पॉइंट है। पर अगर हम ज्वाइंट फैमिली का प्लस पॉइंट समझते हैं, तो आजकल एजुकेशन में इतना गैप आ रहा है कि जो यंग मदर है वो कहती है मेरे बच्चे को एक पर्टिकुलर ढंग से ट्रेनिंग दी जाए, जो मदर इन लॉ या मदर में वो टेक्निक नहीं होती है, तो वो भी गैप फिल करने के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। और जब न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, तो मेड्स को वो नहीं आता है तरीका बच्चों को रखने का, जिससे बच्चों को वो वैल्यूज नहीं आती हैं। तीसरी बात ये कि अगर वो मॉन्टेसरी स्कूल में जाते हैं, तो टीचर्स भी उसको एक जॉब की तरह लेती हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मुझे तो ये इतनी बड़ी आगे आने वाले समय में समस्या लग रही है, और हम इससे झुलझ रहे हैं, हम भुगत भी चुके हैं, और आगे जो जनरेशन आ रही है उनको वैल्यू सिस्टम देना, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम कैसे एक बैलेंस ड्रॉ करें।
3: इस बैलेंस को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। सी, इट डिपेंड्स कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर फैमिली क्या है। जैसे आपने मुझसे पहला सवाल किया कि अगर जॉइंट फैमिली है तो हर मदर चाहती है कि मैं उसको अपने तरीके से वैल्यू दूं, क्योंकि जो ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको आजकल के बारे में नहीं पता। बट उस मदर का ये समझना जरूरी है कि जो एक बेसिक वैल्यू है वो सेम है, सिर्फ देने का तरीका बदल गया। 10 साल पहले या 20 साल पहले भी जो बच्चे बड़े हुए थे, या जिस कैटेगरी में हम अपने आप को डालते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम किसी गलत सिस्टम में फॉलो करा हमने, कि हम आजकल के बच्चों को सिस्टम में नहीं ला सकते हैं। तो जो आजकल की जनरेशन, आजकल की जो मदर है, उसके माइंड में एक सिर्फ एक माइंडसेट उसका चेंज करना है कि जो वैल्यू आपके घर के लोग आपके बच्चे को दे सकते हैं वो बाहर की मेड कभी भी नहीं दे सकती। सेकेंडली, जो एक टीचर का आपने बोला कि आजकल 90% टीचर्स जो हैं वो ये मान के काम करती हैं कि हम प्रोफेशनलिज्म पे काम करें, कि हमारी हर मंथ की सैलरी हमारी पॉकेट में आ रही है, बट हमें बच्चे के साथ कनेक्शन नहीं बनाना। सो मेरी लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि जिन लोगों में पेशेंस नहीं है, जिन लोगों में पर्सनल टच नहीं है, वो लोग टीचर की जॉब के लिए कभी भी आगे नहीं आए। बिकॉज एक टीचर है जो बच्चे को बनाएगी या बच्चे को तोड़ेगी। माँ बाप के पास बच्चा रहता है पूरा दिन, लेकिन बीच में 6 घंटे बच्चा जो है वो स्कूल में टीचर के पास आ रहा है। तो जब हम किसी टीचर को भी अपॉइंट करते हैं, तो हमें उनके साथ मिलकर ये देखना पड़ेगा कि वो बच्चों से कैसे डील कर रही हैं। वैल्यू सिस्टम सालों से सेम चलता आ रहा है, उसको आगे पहुंचाने का तरीका धीरे धीरे साल में बदलता चला जा रहा है, जिसको हमें कनेक्ट करना है।
2: बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि वैल्यू सिस्टम्स तो वही हैं, पर हमें देने का तरीका बदलना है। देने का तरीका बदलने पे मुझे एक और सामने समस्या खड़ी हो रही है कि जो प्रोफेशनलिज्म है वो कमर्शियल में बदलता जा रहा है। हर कोई पैसा देके डिग्री लेने की दौड़ में चला जा रहा है, और जो वैल्यू है एजुकेशन की वो कहीं ना कहीं बिखरती जा रही है, उसको भी समेटने की बहुत जरूरत है। मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम जो हम आज हमने ये बात करी, ये उस महिलाओं तक पहुंचनी चाहिए जहां पे रीड इंडिया के सेंटर्स हैं, और रीड इंडिया के जो सेंटर्स हैं उनके साथ हमने प्री स्कूल भी खोले हैं, और उन प्री स्कूल्स में हम कितने वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, और टीचर्स को कैसे हम ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज दे रहे हैं, जॉब भी दे रहे हैं, उससे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, उनको पैसे भी उतने ही दे रहे हैं जो एक कमर्शियल स्कूल में मिलते हैं, पर जो हमारी ट्रेनिंग है, जो बच्चों का रखरखाव है स्कूल में और जो बच्चों को हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, मैं ये पढ़ाई नहीं कहूंगी, हम उनको वैल्यू सिस्टम दे रहे हैं। और अगर एक बच्चे की बुनियाद अच्छी बन जाती है तो वो बड़े होके इतना सक्षम हो जाता है कि वो अपने आप अपनी राह को तराश करने की कोशिश करता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये बात करने का।
3: थैंक यू सो मच।

शाकिर है जिला जजर और माजरी गांव और इंदु बड़बोला की तरफ से सब ने राम राम। तो मैं इंदु बड़बोला आप सभी के सामने दो चार शायरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। तो सबसे पहले मम्मी पापा के ऊपर है एक के रह, जब मैंने उनका जिक्र कर दिया ना तो बात किसे का समाणी कोनी। के रह, जब मैंने उनका जिक्र कर दिया ना तो बात किसे का समाणी कोनी। अरे या दुनिया मैंने बहुत आजमा के देख ली मेरे भाई, इब और आजमानी कोनी। और उनने मेरे ऊपर बहुत उपकार कराखे है मेरे भाई, मेरे माँ बाबू बरगे तो कोई राजा रानी भी कोनी। एक है भाई के ऊपर है के रह, दुनिया में माँ बाप के अलावा एक और प्यारा है। के रह, दुनिया में माँ बाप के अलावा एक और प्यारा है, और वो है मेरा भाई जो सब तन्यारा है। और जब भी वो मैंने बुंडी शक्ल की कवा है ना, बेशक ते चिड़ो वह है पर उसका मजा ही न्यारा है। एक सुनियो फौजियों के ऊपर है के रह, गले में माड़ा पहरणिया और संतरी बाणा पहरणिया, और किसे मानस ने जोगी नहीं कह सकते। के रह, गले में माला पहरणिया और संतरी बाणा पहरणिया, और किसे मानस ने जोगी नहीं कह सकते। और जो मारे खातर खून पसीना बाक दिन रात बॉर्डर पर लड़े जाने मेरे भाई, जय फौजी नहीं हो ना तो हम एक रात भी चैन तो नहीं सो सकते। एक सुनियो के रह, शर्म ओढ़न पहरण की ना होया करे, आख्या की बतेरी होया करे। और जी मैं कुछ करण की लगन होने वो बंदा दिन रात नहीं सोया करे, और जो जमके करे मेहनत वो कामयाब जरूर होया करे। वाई बात है, राम के घर देर होया करे पर अंधेर नहीं होया करे। तो आप सबका धन्यवाद।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: भगवान ने अगर बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे और बड़ा करके तुम सामने वाले को घूरते रहो।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम?
0: मैं कह रहा हूँ कि अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों को थोड़ा छोटा कीजिए और प्रोग्राम शुरू कीजिए।
1: राइट, फिर आज किस बारे में जानना चाहोगे तुम बबलू?
0: ये आंखें उफ युम्मा।
2: खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, मगर आंखें खोलते ही देखने की प्रक्रिया जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी है नहीं। इसके पीछे विज्ञान है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट या अपवर्तित होकर कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया के बाद लाइट एंटीरियर चेंबर से होकर गुजरती है, जिसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये तरल पदार्थ इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर पैदा करता है, जिससे आई बॉल्स की शेप बनी रहती है। कॉर्निया के बाद लाइट आयरिस पर पड़ती है, जो लाइट की तीव्रता के हिसाब से कम या ज्यादा खुलता है। कैमरे का अपर्चर कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर रोशनी ज्यादा होती है तो कैमरे का अपर्चर और हमारी आंख का आयरिस कुछ बंद हो जाता है, और कम रोशनी में अपर्चर और आयरिस ज्यादा खुल जाते हैं। आयरिस से होकर लाइट प्यूपिल और लेंस से होती हुई रेटिना पर पड़ती है, और इससे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी होती है। इन इमेजेस को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व्स। ब्रेन में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनकी मदद से रेटिना पर बनने वाले इमेज को ब्रेन पढ़ता है। ब्रेन इमेज को सीधा करके देखता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि आंखें सामने देखते वक्त अपने दोनों तरफ भी देख पाती हैं, और इसे आंखों का फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। अक्सर जब आंखों के देखने की क्षमता कम हो जाती है तब फील्ड विजन कम हो जाता है। कई बार आंखों में डिफेक्ट आ जाते हैं, जिससे देखने की प्रक्रिया में मुश्किल होने लगती है। कभी लेंस में दिक्कत आने से रेटिना तक रोशनी पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। कई बार इमेज रेटिना पर ना बनकर उसके आगे और पीछे बनने लगती है, जिससे हमें चीजें साफ नहीं दिखती और चश्मा लगवाना पड़ता है। कई बार आंखों के इन्फेक्शन या आंख में चोट लगने से भी हमारी दृष्टि पर असर पड़ता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इस बीमारी में धीमी लाइट में और अंधेरे में दिखना बहुत कम हो जाता है। इसके इलाज के लिए जरूरी है कि मरीज को विटामिन ए से भरपूर भोजन दिया जाए। इन बीमारियों का इलाज तो हो सकता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें लापरवाही करने से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। वजह कुछ भी हो, पर आंखों की बीमारी यदि गंभीरता से ना ली जाए तो नतीजा एक ही निकलता है, दृष्टिहीनता। गंभीरता से ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह होती है इन बीमारियों का धीरे धीरे बढ़ना।
1: ये तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक चमत्कारिक शक्ति है सेल रिपेयर करने की, यानी किसी भी अंग द्वारा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर या रिप्लेस करने की क्षमता। मगर आंखों की स्थिति जरा भिन्न है। इसके लेंस की कोशिकाओं को ना तो रिपेयर किया जा सकता है और ना ही रिप्लेस। इसलिए अगर लेंस को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो ये धीरे धीरे जमा होकर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। ये बीमारी है कैटरैक्ट, यानी मोतियाबिंद। इस बीमारी में आंखों से धुंधला दिखाई देता है। आइए देखते हैं ये बीमारी होती कैसे।
2: मोतियाबिंद की बीमारी में लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है और लेंस क्लाउडी यानी कि धुंधला होता जाता है। इसकी वजह से लेंस से होकर जाने वाली रोशनी रेटिना तक पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस के प्रोटीन में बदलाव आता है, जो लेंस को अपारदर्शी बना देता है। इसे अंडे के उबलने और ऑमलेट के बनने जैसी साधारण प्रक्रिया से समझा जा सकता है। अंडे की सफेद जर्दी प्रोटीन से बनी होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जब अंडे को उबाला जाता है या पकाया जाता है तो अंडे के प्रोटीन में बदलाव आ जाता है जिससे वो अपारदर्शी हो जाता है। कैटरेक्ट में भी लेंस के प्रोटीन में आया बदलाव उसे अपारदर्शी बना देता है। कैटरेक्ट के बहुत अधिक बढ़ जाने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। मोतियाबिंद के सामान्य लक्षण हैं धुंधला दिखना, और ये धुंधलापन बीमारी के साथ बढ़ता जाता है। अगर इलाज न किया जाए तो पूरी तरह दिखना बंद भी हो सकता है। रात में रोशनी वाली जगह पर चमकीले स्पॉट्स दिखना, चश्मे के नंबर में बार बार बदलाव आना और डबल विजन यानी हर चीज दो दिखना। बढ़ती उम्र के साथ होने वाला मोतिया सिनाइल कैटरेक्ट कहलाता है। इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति में लेंस के प्रोटीन में बदलाव के कारण प्रोटीन के क्लंप यानी थक्के रेटिना तक पहुंचने वाली इमेज की शार्पनेस को कम कर देते हैं। प्रोटीन के क्लंप के कारण लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है जिससे रेटिना तक समुचित मात्रा में रोशनी नहीं पहुंच पाती। दूसरी स्थिति में पूरे लेंस की पारदर्शिता धीरे धीरे खत्म होने लगती है जिससे दृष्टि में धुंधलापन आने लगता है। जैसे जैसे लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है वैसे वैसे धुंधलापन बढ़ता जाता है। जब आंख की किसी दूसरी बीमारी की वजह से आंख के लेंस में होने वाले इन्फेक्शन से कैटरेक्ट होता है तो इसे सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। अगर कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद हुए इन्फेक्शन से दोबारा कैटरेक्ट हो जाता है तो इसे भी सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में किसी चोट जैसे फायर क्रैकर के स्प्लिंटर्स या चिंगारियों से हुआ घाव और बिजली के झटकों से होने वाले कैटरेक्ट को ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में गहरी चोट जो कॉर्निया से होते हुए लेंस को भी नुकसान पहुंचा दे उससे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं और कुहू आपका स्वागत करते हैं। ये आंखें उफ यम्मा। अरे कोकिला, तुम मुझे दो क्यों दिख रही हो?
1: पता नहीं एपिसोड के अंत तक दिखूंगी भी कि नहीं। जाओ जाकर अपना इलाज करा लो, वरना आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें शुरुआत में इलाज ना कराने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है।
0: वो तो मैं करा लूंगा, मगर आपने तो सिर्फ बीमारी के बारे में बताकर छोड़ दिया मैडम कुहू MBBS। इलाज नहीं है क्या?
1: बबलू, मैं इलाज के बारे में ही बताने जा रही थी। जानते हैं फ्रेंड्स, पुराने जमाने में मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए उसके पूरे पकने का इंतजार करते थे, मगर आज किसी भी स्टेज में उसका इलाज किया जा सकता है। असल में इसे तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। शुरुआती दौर में इसे ट्रेस कैटरैक्ट कहते हैं, फिर माइल्ड या मॉडरेट, और जब मोतियाबिंद पूर्ण रूप से बढ़ जाता है तो उसे पक्का मोतिया कहते हैं।
0: अब इलाज की बात करें।
2: मोतियाबिंद का डिटेक्शन व्यापक जांच के बाद होता है। इनमें आते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्ट, डायलेटेड आई एग्जाम और अल्ट्रासाउंड। विजुअल एक्यूटी टेस्ट में एक चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट के दौरान व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से चार्ट के अक्षरों को पढ़ता है। इसकी रीडिंग फ्रैक्शन में लेते हैं। फ्रैक्शंस के आधार पर आंखों के पावर का निर्धारण ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। ये टेस्ट आंखों की दूसरी बीमारियों की जांच के लिए भी किया जाता है।
3: जांच के दौरान डायलेशन में आंखों में ऐसे आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो प्यूपिल को बड़ा कर देते हैं। इससे प्यूपिल के पीछे का हिस्सा जांचना आसान हो जाता है। पिछला हिस्सा देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे किसी भी प्रकार की आंख की बीमारी पकड़ में आ जाती है।
4: ओपेक लेंस को सर्जिकली रिमूव करके ही कैटरेक्ट का पूरा इलाज किया जाता है। कैटरेक्ट के शुरुआती दिनों में डॉक्टर कई बार चश्मा लगाने की सलाह देते हैं। इसके पश्चात सर्जरी की जाती है, जिसके जरिए लेंस को हटाकर उसकी जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ये सर्जरी दो तरह की होती है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी और फैकोइबल्सिफिकेशन सर्जरी।
2: एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी में कॉर्निया में चीरा लगाकर खराब हो चुके लेंस को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद निकाले गए लेंस की जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। जहां लेंस नहीं लगाया जाता, वहां मरीज को सर्जरी के बाद चश्मा लगाया जाता है। दूसरी सर्जरी है फैकोइमल्सिफिकेशन सर्जरी, जो एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। इसमें कॉर्निया में एक बहुत छोटा सा सुराख किया जाता है, फिर इस सुराख के जरिए अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रवाहित की जाती हैं। इन अल्ट्रासाउंड वेव्स के कारण मोतिया यानी कि अपारदर्शी लेंस मुलायम होकर टूट जाता है और उस जगह पर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट की मदद से लेंस लगाने से पहले लेंस का पावर और साइज तय किया जाता है। कैटरेक्ट सर्जरी आजकल लगभग आधे घंटे का मामूली ऑपरेशन है, जिसमें मरीज को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स. मोतियाबिंद तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, लेकिन आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें अगर एक बार आंखों की रोशनी चली गई तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता. ये बीमारी है ग्लॉकोमा. आइए देखते हैं ये बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है.
1: ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद, ये आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाने से ऑप्टिक नर्व्स के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है. ऑप्टिक नर्व ही इमेज को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाती है. दरअसल कॉर्निया और लेंस के बीच एक्वस ह्यूमर नामक एक तरल पदार्थ मौजूद होता है जो कि आई बॉल का आकार मेंटेन रखने के लिए एक दबाव आंखों में पैदा करता है जिसे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर कहते हैं. प्राकृतिक रूप से एक्वस ह्यूमर आंख के एक हिस्से में लगातार बनते रहते हैं और दूसरे हिस्से से लगातार निकलते भी रहते हैं. इससे आई प्रेशर संतुलित रहता है, लेकिन कभी कभी एक्वस ह्यूमर का निर्माण जरूरत से ज्यादा होने लगता है या इनका निकलना बाधित होने लगता है. ऐसी स्थिति में आई प्रेशर बढ़ जाता है. एक्वस ह्यूमर के बहाव में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ग्लूकोमा दो तरह का होता है. पहला ओपन एंगल ग्लूकोमा, ट्राबेक्युलर मेशवर्क जिससे होकर एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है उसमें धीरे धीरे आने वाली रुकावट से ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है तथा दोनों आंखों को प्रभावित करता है. दरअसल ट्राबेक्युलर मेशवर्क टिश्यूज कॉर्निया के पास होते हैं और इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालते हैं. अगर इनमें कोई रुकावट आ जाती है तो एक्वस ह्यूमर का लेवल बढ़ने लगता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है. दूसरी तरह का ग्लूकोमा है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, जिसमें आयरिस एक्वस ह्यूमर के फ्लो में रुकावट पैदा करता है. नतीजतन एक्वस ह्यूमर के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है.
2: क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा में आंख का प्रेशर बढ़ने के कारण आंख की नस को नुकसान पहुंच जाता है जिसके कारण आपकी आंख की रोशनी जा सकती है. इसमें एक तो आंख में दर्द होता है, रेडनेस हो जाता है, सिर में दर्द होता है. जब आप लाइट को देखोगे कलर्ड हेलोस दिखेंगे, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है. अगर आपको ये सब सिम्टम्स है तो आपको जल्द से जल्द आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए.
1: ये एक इमरजेंसी की अवस्था है और अगर मरीज के इलाज में 24 से 48 घंटे की देरी हो जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकती है. कोई भी इसका शिकार हो सकता है, बेशक वो अपने आंखों के डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवा रहा हो और आंख इससे पहले बिल्कुल ठीक हो. और अब बात सेकेंडरी ग्लूकोमा की. इन्फ्लेमेशन, आंखों का ट्यूमर और वेनस प्रेशर के बढ़ने से होने वाले ग्लूकोमा को सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं. आमतौर पर क्रॉनिक ग्लूकोमा में कोई निश्चित लक्षण नहीं दिखाई पड़ते और ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन कुछ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो, जिनके परिवार में ग्लूकोमा की फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज, माइग्रेन या हाइपरटेंशन के मरीज हों, लंबे समय से स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे लोग या जिनकी आंखों में चोट लगी हो. ग्लूकोमा के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें प्रमुख हैं टोनोमेट्री. इसमें मोतियाबिंद के टेस्ट की ही तरह एक विशेष इंस्ट्रूमेंट द्वारा आंखों के प्रेशर को नापा जाता है. दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट है ऑप्थैल्मोस्कोप टेस्ट, जिसके जरिए आंखों के पीछे ऑप्टिक नर्व की जांच की जाती है. तीसरा टेस्ट है विजुअल फील्ड असेसमेंट. इस टेस्ट में एक स्क्रीन पर रोशनी की छोटी छोटी स्पॉट्स डाली जाती है और मरीज को रोशनी वाले स्थान को पहचानने के लिए कहा जाता है. इससे पता चलता है कि मरीज के विजन पर कितना असर पड़ा है. ग्लूकोमा का इलाज उसके वर्ग पर निर्भर करता है. ओपन एंगल ग्लूकोमा का आई ड्रॉप्स या खाने वाली दवाओं से इलाज किया जाता है. यदि दवाओं से इलाज न हो सके तब सर्जरी से इसे कंट्रोल करते हैं, सर्जरी में एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो के लिए एक नया रूट बनाया जाता है, इसको ट्रैबेक्यूलोक्टोमी कहते हैं। क्लोज एंगल ग्लूकोमा का इलाज कारगर रूप से सर्जरी के द्वारा होता है। सर्जरी में आयरिस की बाहरी सीमा पर एक छोटा छेद करते हैं, इससे एक्वस ह्यूमर बाहर निकल जाता है। इसके लिए ज्यादातर लेसिक सर्जरी या फिर मामूली ऑपरेशन किया जाता है और एक्वस ह्यूमर के निकलने के लिए दूसरा रास्ता बना दिया जाता है।
3: यो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद हम लाए हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। चलिए बताइए कि हम एक मिनट में कितनी बार पलकें झपकाते हैं। कोकिला, तुम शुरू करो।
0: यही कोई 15 बार।
3: क्या आप जानते हैं कि आंसू क्यों बहते हैं?
0: बबलू, तुम वही बताओगे जो सबको पता है, कुछ नया नहीं बता सकते।
1: विजन लॉस का एक और कारण है कॉर्नियल अल्सर या कॉर्नियल डैमेज। दरअसल कॉर्निया शीशे जैसा एक पारदर्शी टिश्यू है। इसका व्यास लगभग 11 से 12 मिलीमीटर होता है। ये आंख के काले हिस्से का आवरण है। किसी भी प्रकार की चोट, इन्फेक्शन या अधिक ताप से कॉर्निया डैमेज हो जाने पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। अगर कॉर्निया के उस हिस्से में डैमेज हुआ है जहां से विजन पर असर नहीं पड़ता तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। चूंकि कॉर्निया का पोषण रक्त से नहीं होता है बल्कि आंख के गोले के भीतर द्रव से होता है, इसलिए मृत्यु के पश्चात भी इसे ट्रांसप्लांट के लिए निकाला जा सकता है। आई डोनर की मृत्यु के 3 से 4 घंटों के भीतर कॉर्निया को निकाल लिया जाता है। सर्जन केवल कॉर्निया बदलता है, न कि आंख का पूरा गोला।
4: नेत्रदान महादान है। अगर आप नेत्रदान के इच्छुक हैं तो अपने पास के आई बैंक से संपर्क करें।
1: आंखों का एक और गंभीर इन्फेक्शन है जिसे पैन ऑप्थल्माइटिस कहते हैं। इसमें लेंस, कॉर्निया, आयरिस और रेटिना पर असर पड़ सकता है। अगर समय पर इसका इलाज न हो तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है और कई मामलों में पूरी आंख को ही निकालना पड़ सकता है। ट्रैकोमा आंखों का एक और इन्फेक्शन है जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे में एक दूसरे के सामान के इस्तेमाल से फैल सकता है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में और माँ से बच्चे में ट्रैकोमा का इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। ये इन्फेक्शन अक्सर वहाँ होता है जहाँ गंदगी फैली होती है और साफ सफाई के लिए पानी की कमी होती है। ड्रायर क्लाइमेट्स यानी अति शुष्क जलवायु वाले इलाकों में ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है।
3: So, कैसा रहा? खूब सारी बातें बता दी, नहीं?
0: अब बातें ही करते रहोगे या कुछ कंक्लूजन भी होगा?
3: ओहो, मेरे डायलॉग की चोरी। खैर, बच्चों को भी कभी कभी छूट दे देनी चाहिए।
0: बबलू,
3: बाय फ्रेंड्स,
0: तुमसे मैंने
3: नेक्स्ट वीक मिलेंगे, बाय।
0: सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ना इसके बड़बोलेपन पर रोक लगानी पड़ेगी, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।
3: बबलू,
1: आइए अब एक नजर इस एपिसोड की कुछ खास बातों पर। आंख में लाइट कई जगह पर फोकस होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कॉर्निया पर पड़ती है। रेटिना के ऊपर उल्टी इमेज बनती है। मस्तिष्क में हमें सीधा दिखाई देता है। मोतियाबिंद में धुंधला दिखने लगता है। ऐसा आंखों के लेंस में मौजूद प्रोटीन के आकार में परिवर्तन के कारण होता है। मोतियाबिंद का इलाज एक छोटे से ऑपरेशन से किया जाता है। ग्लूकोमा में आंखों की ऑप्टिक नर्व्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ग्लूकोमा काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसका तुरंत इलाज कराना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।

0: कृषि विशेष एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और कृषि शोध हम आपके साथ साझा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए एक ऐसे औषधीय पौधे की जानकारी लेकर आए हैं जो हमारे खान पान से लेकर हमारी जीवन शैली और इसके साथ ही हमारे जीवन के हर हिस्से में एक अलग ही महत्व रखता है। बात करें अगर रीति रिवाजों की या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तो इसका विशेष महत्व है। हम बात कर रहे हैं हल्दी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, मैं हूं मोनालिसा। आइए कृषि विशेष में आज विस्तार से जानते हैं हल्दी के बारे में। शादी विवाह की बात हो या फिर सौंदर्य की, हल्दी का प्रयोग होता ही है। वहीं किसी भी चोट या घाव को हल्दी जल्द ही भर देती है, इसलिए इसे मैजिकल हर्ब भी कहते हैं। यही वजह है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और किसान भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती को अपनाने लगे हैं।
1: भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ की हड्डी के समान है। हमारे देश प्रदेश में हमारी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। कृषि किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है क्योंकि यह न केवल लाखों करोड़ों लोगों को भोजन प्रदान करती है बल्कि जीडीपी के समग्र विकास में भी योगदान देती है। और इस नए दौर का किसान अब सिर्फ परंपरागत खेती के ऊपर निर्भर नहीं है। किसान अब अपने खेत में विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाकर अच्छा मूल्य प्राप्त कर रहा है और ऐसी ही एक फसल है हल्दी। हल्दी एक औषधीय पौधे के रूप में जानी जाती है। हमारे भारत देश में बड़े स्तर पर हल्दी की खेती की जाती है। भारत देश के हर परिवार में हल्दी का स्थान महत्वपूर्ण है। घरों में खाना बनाने से लेकर किसी भी शुभ कार्य जैसे पूजा, शादी विवाह आदि में हल्दी का उपयोग पुराने जमाने से लेकर आज के आधुनिक युग तक हो रहा है। मसाला, औषधि, गृह उपयोग, फेस क्रीम बनाने में बड़े स्तर पर हल्दी का उपयोग किया जाता है। औषधीय गुण होने के कारण ये कई प्रकार की बीमारियों में भी लाभकारी है। यही कारण है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी को देखते हुए आने वाले समय में हल्दी की खेती फायदेमंद साबित हो सकती है।

0: कहीं कम या कहीं ज्यादा, लेकिन होती तो पूरे भारत में ही है। हल्दी को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
1: हल्दी एक महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और हमारे देश में हल्दी की खेती व्यापक रूप से की जाती है और मुख्य रूप से ये एक बड़ी लंबी अवधि की फसल है। इसको बुआई से लेकर कटाई तक तकरीबन 8 से 10 महीने का कार्यकाल की आवश्यकता होती है। हमारे देश में हल्दी के ऊपर अनुसंधान कार्य किए गए और उसमें उन्नत किस्मों का विकास किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जो संस्थान इसमें काम किए हैं उसमें नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, दूसरा जो है हमारा केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश और अन्य कई संस्थानों के द्वारा। हमारा संस्थान है केरल में CTCRI जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी हल्दी की किस्मों का विकास किया गया है।
0: भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद के अनुसार हल्दी एक औषधीय पौधा है और कोरोना संकट काल में इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए बहुत सारे नए किसानों ने हल्दी की खेती की शुरुआत की है। हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसके बिना हम खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर आपकी सब्जी में हल्दी ना हो तो कितनी बेरंग लगेगी। लेकिन खाने में इसके उपयोग के साथ साथ इसके कुछ अलग विशेष फायदे औषधि के रूप में भी है, जैसे पाचन तंत्र को सुधारना, सूजन कम करना और अन्य कई बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। हल्दी त्वचा के लिए भी काफी लाभदायक है, इसी के चलते हल्दी को हम मेडिकल हर्ब भी बोल सकते हैं और हल्दी की इस फसल से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: हल्दी एक बहुत महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और इसके अंदर मिलने वाला जो तत्व है कुरकुमिन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी रोग रोधन क्षमता का विकास करने के लिए, और ये एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है। इसके निरंतर इस्तेमाल करने से हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है और पिछले हमने कई वर्षों में देखा है, जब कोरोना का बुरा समय हमारे देश को देखने को मिला या कहूँ मैं पूरी दुनिया ने देखा, तो उसमें हल्दी का बहुत बड़ा रोल रहा। हल्दी हमारी जो इम्यूनिटी है उसको सुधारता है, इसका निरंतर इस्तेमाल करना हमारे लिए आवश्यक है। हालांकि हमारी भारतीय खान पान जो पद्धति है उसमें हम अधिकांश सब्जियों की तैयारी में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी तुलना करें यूरोप के देशों में, वहाँ पे हल्दी का कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे जैसे विश्व स्तर पर इसकी व्यापकता बढ़ी है तो भारतीय हल्दी की मांग भी बढ़ी है।
2: तो अब तक आपने जाना हल्दी के महत्व के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हल्दी की खेती के बारे में और जानेंगे कि किसान किस तरह से इससे लाभ ले रहे हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।

0: दो दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम भरोसे का नाम तड़का सुपर।
1: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मैजिकल हर्ब हल्दी के बारे में। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हल्दी की खेती के बारे में। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से किसान हल्दी की बुआई कर सकते हैं और हल्दी की बुआई के लिए किस तरह की मिट्टी, जलवायु और बीज की जरूरत होती है। अगर हम बात करें हल्दी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उचित रहती है, तो आपको बता दें कि हल्दी की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु उत्तम मानी जाती है। इसकी खेती के लिए 225 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। हल्दी की फसल के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छा होता है। और अगर हम हल्दी की अच्छी फसल के लिए मिट्टी की बात करें, तो ऐसी मिट्टी अच्छी मानी जाती है जिसमें जल निकासी की क्षमता अच्छी हो। अतः हल्दी की खेती बलुई दोमट या मटिया दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। हल्दी की खेती के लिए मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करना जरूरी होता है, क्योंकि हल्दी जमीन के अंदर ही फलती फूलती है। जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरे बनाया जाना आवश्यक होता है। हल्दी के खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी जरूरी है।
1: सामान्यतः इसकी बुआई किसान भाई अप्रैल के मध्य या मई के प्रारंभ तक करते हैं, और उसके लिए उन्नत किस्म के जो कंद होते हैं, राइजोम्स होते हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। बुआई से पूर्व उनको कुछ दिन के लिए नमी युक्त स्थानों में रखते हैं या थैलों से लपेट के रखते हैं कपड़े से, ताकि उसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाए और बुआई और खेत में जमाव में समय को कम किया जा सके। इसके लिए उष्ण ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जलवायु उपयुक्त रहती है, और क्योंकि ये एक राइजोम की फसल है, तो इसके बेहतर विकास के लिए संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल के साथ साथ प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, अच्छी गुणवत्ता के ये जो खाद हों, उनका इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है।
0: वर्षा होने पर हल्दी की फसल के लिए भूमि को तैयार कर लेना चाहिए। खेत को हल्दी की फसल के लिए 3 से 4 बार गहराई से जोतना जरूरी होता है। दोमट मिट्टी में कृषि विशेषज्ञ या अनुभवी किसान की सलाह से 400 से 500 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से चूने के पानी का घोल डालकर अच्छी तरह जुताई करने से भूमि हल्दी की खेती के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाती है। हल्दी की बुआई के लिए अच्छी तरह विकसित और रोग रहित संपूर्ण या प्रकंद के टुकड़े हल्दी के बीज के रूप में उपयोग करते हैं। प्रकंद एक प्रकार का पौधे का तना है, जो या तो मिट्टी की सतह पर या भूमिगत स्थित होता है। ध्यान रहे कि बीज रोग रहित होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में हल्दी की फसल की बुआई क्यारियों या मेड़ बनाकर की जाती है। इसके बाद 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हाथ से खोदकर छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। हल्दी की बुआई के लिए 250 किलोग्राम हेक्टेयर प्रकंद बीज की आवश्यकता होती है।
1: किस प्रकार से किसान भाई हल्दी की बेहतर उपज लें, उसमें जैसे पोषण का अपना महत्व है, खेत का चयन, बुआई का समय, किस्म विशेष की उत्पादकता, उसकी उत्पादन क्षमता, इन बातों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप अपनी फसल का प्रबंधन करते हैं। यानी कि अगर फसल को पानी की आवश्यकता है तो पानी देना है, उसमें पत्तियों को मुरझाने की अवस्था नहीं आने देनी है। अगर आपकी वानस्पतिक बढ़वार मध्यम दर्जे की होगी, अधिक वानस्पतिक बर्बाद होने की स्थिति में, जैसे इस बार मैं कह सकता हूं कि बहुत अधिक वर्षा के कारण वानस्पतिक वृद्धि अधिक हुई है, और जहां पे अब इसकी फसल लगाई हुई हमारे किसान भाइयों ने, उसमें आप पानी को कम कर सकते हैं, ताकि उसमें और वानस्पतिक बढ़वार को कम कर सके। क्योंकि वनस्पतिक बढ़वार अगर ज़्यादा होगी तो उसमें जो राइजोम बनने की प्रक्रिया है वो देरी से होगी या कम मात्रा में राइजोम बनेंगे। तो ये एक आपस में संतुलन बैठाने की बात है कि अगर हमको बेहतर उत्पादकता लेनी है तो इस बात पे ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही अगर अच्छी गुणवत्ता के कंद बने तो उसमें आपको पोटेशियम उर्वरकों का इस्तेमाल भी करना आवश्यक है। अगर आपने पोटेशियम उर्वरक में पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया है तो निश्चित रूप से आपको बेहतर कंद राइजोम मिलेंगे। अगर नहीं किया है तो आप इसका 2-3% का पर्णीय छिड़काव भी अपनी खड़ी फसल में कर सकते हैं और उसका राइजोम के विकास में और उसकी गुणवत्ता के सुधार में उसकी मददगार हो सकती है। तीसरी बात आपको ध्यान रखने की है कि क्योंकि अधिक वर्षा की स्थिति में खेत में अगर लंबे समय तक पानी रहता है तो इसे वानस्पतिक बढ़वार और कंदों के विकास को, जो अपने सलकंद या राइजोम में कह रहा हूँ, उनको विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपको वर्षा बंद होने के बाद खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था भी करना आवश्यक है। अगर खेत में लंबे समय तक पानी खड़ा रहता है तो जमीन के अंदर कंपैक्शन आता है और पौधे की बढ़वार में रुकावट आती है।
0: हल्दी की खेती वैसे तो सुरक्षित होती है, लेकिन फसल संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। हल्दी की फसल तैयार होने के बाद खुदाई का समय आता है। हल्दी की खुदाई प्रजातियों के अनुसार बुआई के 7-9 महीने में किया जाता है। अल्प अवधि की प्रजातियां 7-8 महीने में, मध्य अवधि की प्रजातियां 8-9 महीने में और दीर्घकालीन प्रजातियां 9 महीने के बाद तैयार हो जाती है। खेत को जोतकर प्रकंदों को हाथ से इकट्ठा कर बड़ी सावधानी पूर्वक मिट्टी से अलग करते हैं। हल्दी की खेती के लिए हल्दी के बीज का भंडारण एक जरूरी प्रक्रिया है। इसके लिए ताजे निकले कंदों को ठंडे व सूखे स्थान पर भंडारण किया जाता है।
2: हल्दी की खेती के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है इसके प्रसंस्करण की, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ।

0: रो सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले
1: जहां जाए रिश्ते बढ़ाए। गोल्डी मसाले।
2: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें अब तक हमने बात की हल्दी की विशेषता और इसकी खेती के बारे में। आइए अब जानते हैं इसके प्रसंस्करण के बारे में। आइए देखते हैं कि किस तरह से हल्दी का प्रसंस्करण किया जाता है और किसान इससे अधिक मुनाफा कमाते हुए आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
1: व्यावसायिक सूखी हल्दी बनाने के लिए इसके कंदों को जमीन से निकालकर एक सप्ताह के अंदर उबाला जाता है, जिसे क्योरिंग कहते हैं। क्योरिंग एक महत्वपूर्ण काम है। इसके तहत हल्दी का व्यावसायिकरण होता है। हल्दी की फसल को घरेलू स्तर पर भी लोहे के बर्तन में उबाला जाता है और रासायनिक विधि द्वारा बड़े पैमाने पर क्योरिंग की जाती है। क्योरिंग करने से प्रकंद का आकर्षक नारंगी या पीला रंग विकसित होता है। हल्दी के प्रसंस्करण के लिए सबसे पहले खेतों से लाई गई हल्दी को धूप में सुखाया जाता है। लगभग एक हफ्ते तक सुखाने के बाद हल्दी प्रसंस्करण के लिए तैयार हो जाती है। हल्दी जब प्रसंस्करण यूनिट पर लाई जाती है तो सबसे पहले उसकी सफाई की जाती है। मशीन हल्दी में लगी मिट्टी और छिलकों को साफ करती है और उसे प्रसंस्करण के लायक बनाती है। मशीन को हाथ से चलाया जाता है। इसके हैंडल को 10-15 मिनट तक घुमाया जाता है। कुछ समय इसे सीधा तो कुछ समय इस मशीन को उल्टा घुमाया जाता है। इस मशीन को बिना बिजली के चलाया जाता है। मशीन के अंदर एक बार में 10 से 15 किलो तक हल्दी डाली जाती है। मशीन के नीचे एक तिरपाल बिछाया जाता है ताकि सारी गंदगी वहां गिर जाए। उसके बाद हल्दी को मशीन से निकाला जाता है, जिससे उसे पीसा जा सके। हल्दी को पीसने के बाद उसे पैक किया जाता है और फिर उसकी लेबलिंग की जाती है तथा उसे बाजार में भेजा जाता है।
2: फसल पक्के तैयार हो जाती है फरवरी के अंत में। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग समय पे ये तैयार होती है। कहीं कहीं दिसंबर के अंत में भी तैयार हो जाती है और इसको जो है किसान भाई फिर निकालते हैं, निकाल करके उनको धुलाई करते हैं और धुलाई करके इसका प्रसंस्करण करते हैं, सुखाते हैं, पाउडर बनाते हैं। और उसके लिए जो किसान भाई इसका मूल्य संवर्धन करना चाहते हैं, उसके लिए अपने कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या जो हमारे FPO पहले से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, उनसे संपर्क करके उसकी जो बेहतर प्रोसेसिंग पद्धति है उसकी जानकारी लेना आवश्यक है। और इसके संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या हमारे ICR के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसमें ऐसे उद्यमियों को या ऐसे किसानों को, युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण दे करके उनको तैयार करते हैं किस प्रकार से मूल्य संवर्धन करके और हल्दी का बेहतर व्यापार और इसका निर्यात में बढ़ावा दे सकते हैं।
1: बाजार में हल्दी की बढ़ती मांग को देखकर हल्दी की खेती के बाद किसान इसका प्रसंस्करण करके भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे किसानों की कमाई तो बढ़ती ही है, साथ ही वो आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और दूसरे किसानों को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे वो भी संपन्न बनते जा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।
0: तो ये थी हल्दी से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमें उम्मीद है कि कृषि विशेष का आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd.krishivishesh@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।

वैसे तो आप जान ही गए होंगे हम जेवर से आए हैं। मेरा नाम प्रिया है और मैं बस थोड़ी सी दो तीन लाइन बोलूंगी कि पहले मैं इसी सेंटर में स्टूडेंट थी और अब मैं पार्लर की ट्रेनर हूँ और पार्लर की जॉब करने के साथ साथ मैं घर पे भी पार्लर का काम करती हूँ। इसीलिए मैं सभी को, इन सभी टीम को मतलब धन्यवाद बोलना चाहूंगी, इनकी वजह से मेरी इनकम डबल हो चुकी है और शादी के बाद कहते हैं सरनेम बदल जाता है। मुझे हस्बैंड के नाम से जाना जाता था लेकिन अब मुझे देख के सब ये बोलते हैं वो देखो प्रिया के हस्बैंड जा रहे हैं। तो थैंक यू। वैसे तो आप जान ही गए होंगे हम जेवर से आए हैं। मेरा नाम प्रिया है और मैं बस थोड़ी सी दो तीन लाइन बोलूंगी कि पहले मैं इसी सेंटर में स्टूडेंट थी और अब मैं पार्लर की ट्रेनर हूँ और पार्लर की जॉब करने के साथ साथ मैं घर पे भी पार्लर का काम करती हूँ। इसीलिए मैं सभी को, इन सभी टीम को मतलब धन्यवाद बोलना चाहूंगी, इनकी वजह से मेरी इनकम डबल हो चुकी है और शादी के बाद कहते हैं सरनेम बदल जाता है। मुझे हस्बैंड के नाम से जाना जाता था लेकिन अब मुझे देख के सब ये बोलते हैं वो देखो प्रिया के हस्बैंड जा रहे हैं। तो थैंक यू।

0: प्रयासों की बुनाई सम्मान की कमाई। खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। हजारों की उम्मीद और उनकी जीविका के मार्गदर्शक हैं खेमराज सुंदरियाल, जिन्हें सब स्नेहवश गुरुजी कहते हैं। खेमराज जी का जन्म 1943 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आर्थिक अभाव के कारण उन्होंने बचपन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया।
1: मैं जब पढ़ रहा था तो एक दिन संत कबीर जी के बारे में जाना, उनका बड़ा नाम है और हम इतनी किताबें पढ़ती हैं उनके, तो मैं तो उन्हीं के जैसा काम सीखूंगा। मैंने ठान लिया कि मैं बुनकर बनूंगा।
0: हैंडलूम टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करने के बाद खेमराज सुंदरियाल जी की काम की तलाश ने उन्हें यह बता दिया कि रोजगार के लिए उन्हें दिल्ली जाना ही होगा। लेकिन खेमराज जी के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे। तभी एक दिन उनके चचेरे भाई को चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा। उनकी देखभाल के लिए इन्हें भी साथ भेजा गया और यही सफर खेमराज जी को पहली बार दिल्ली ले आया। दिल्ली क्लॉथ मिल में काम करने के बाद खेमराज सुंदरियाल बुनकर सहायता केंद्र में कार्यरत हो गए। 9 से 10 साल गुजर गए। काशी के बुनकर सेवा केंद्र में खेमराज जी की मुलाकात एक टेक्सटाइल आर्टिस्ट SV निकम जी से हुई। उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचान कर इन्हें केंद्र से लौटने के बाद आर्टिस्ट लोगों के लिए टेपेस्ट्री बनाने की सलाह दी।
1: उन्होंने मुझे 175 रुपए दिए लूम खरीदने के लिए।
0: इसी दौरान खेमराज सुंदरियाल बुनकर सेवा केंद्र की पानीपत शाखा में आ गए और जल्द ही देश के कई सुप्रसिद्ध कलाकारों के लिए टेपेस्ट्री बुनने लगे। जिस लड़के के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे, उनका काम उन्हें देश विदेश ले गया। जामदानी तकनीक पर खेमराज जी की पकड़ देखते ही बनती थी और साथ ही उन्होंने हत्ता तकनीक और पॉलिएस्टर की बुनाई भी शुरू कर दी। अपनी इसी लगन से उन्होंने पानीपत की दरी और खेस को एक बार फिर से प्रसिद्ध कर दिया। रिटायर होने के बाद खेमराज जी ने विष्णु हैंडलूम कोऑपरेटिव शुरू किया, जिसमें वो अब तक 10,000 से ज्यादा युवाओं को काम सिखा चुके हैं। भारत के कई प्रख्यात संस्थानों के छात्र भी खेमराज जी से बुनाई की कला सीखने आते हैं।
1: इस कला ने मुझे मान सम्मान और पहचान दिलाई। अब लगता है मैंने इस कला को नहीं, इस कला ने मुझे अपना है।
0: खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।
2: इस वक्त हमारे साथ हैं जाने माने सर्जन डॉक्टर IK धवन। डॉक्टर धवन से हम बात करेंगे कैंसर के बारे में और खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। डॉक्टर धवन, कैंसर की बीमारी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन वो कैसे होती है, किस बीमारी को कैंसर कहा जाता है, इसके बारे में आप हमें बताइए।
3: ऐसे है कि बॉडी का जो नॉर्मल टिश्यू रिपेयर का सिस्टम या मैकेनिज्म है वो बड़ा रेगुलेटेड है, उसके रेगुलेटेड है और वो मतलब गलत नहीं होता, चलता रहता है। जैसे नेचर ने कहा है ऐसे ही रिपेयर सिस्टम होता रहता है। हर एक सेल मर जाता है फिर दूसरा आ जाता है, पर एक किसी ऑर्डर में आता है, किसी नियम से आता है। पर जब ये नियम टूट जाता है, जब सेल्स पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने आप ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं और ट्यूमर बनते जाते हैं, तो फिर हम उसको कैंसर कहते हैं।
2: डॉक्टर धवन, क्या ये बात सच है कि ट्यूमर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं?
3: ये बात सच है कि दो किस्म के ट्यूमर होते हैं, एक तो जो मैलिग्नेंट होते हैं और एक जो बिनाइन होते हैं। जो बिनाइन होते हैं वो तो 100% इजीली क्योरेबल होते हैं, और जो मैलिग्नेंट होते हैं वो हर एक जगह हर एक अंग के फर्क फर्क क्योर रेट्स होते हैं। और फर्क उनमें ये है, जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो सेल्स अपना रूप छोड़ते नहीं हैं, वैसे ही रहते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर रहता है, डिसऑर्डरली नहीं होते। जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं वो अपना रूप छोड़ देते हैं, वो डिसऑर्डरली हो जाते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ब्लड वेसल में चले जाते हैं, लिम्फेटिक्स में चले जाते हैं, जो अपनी कैप्सूल होती है उसको तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो ये फर्क है दोनों में।
2: डॉक्टर धवन, इस बीमारी के साथ स्टेजेस हैं कि स्टेज वन का है, स्टेज टू का है, तो कई बारी पता चलता है जब तक कि इसको व्यक्ति को कैंसर है और ये कहा जाता है कि आखिर स्टेज का पता चला, तो ऐसा क्यों होता है?
3: ऐसे है कि ये सच है कि किसी किसी ऑर्गन्स में कैंसर जितनी भी आप कोशिश कर लीजिए देर से महसूस होता है, पर जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ती है तो हर एक अंग में यही कोशिश है कि कैंसर जल्दी पकड़ा जाए, उस स्टेज पे पकड़ा जाए जिस स्टेज पे उसका इलाज हो सके। एक तो बात यह है। दूसरा बात यह है कि बहुत ज्यादा जोर और एम्फेसिस है अपनी लाइफस्टाइल पे। जो फैक्टर्स कैंसर को प्रमोट करते हैं, जो कैंसर को बढ़ाते हैं, उनको अपनी लाइफस्टाइल से निकाल देना चाहिए, जैसे स्मोकिंग एंड टोबैको यूज।
2: डॉक्टर धवन, अमूमन ये माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी उम्र की महिलाओं को ही होता है, क्या छोटी उम्र की महिलाएं भी इसकी शिकार होती हैं?
3: सच है कि ब्रेस्ट कैंसर यंग महिलाओं में भी, छोटी उम्र की महिलाओं में भी होता है, पर इतना कॉमन नहीं है।
2: डॉक्टर साहब, महिलाओं को इसकी सही सही जानकारी रहे इसके लिए क्या करना चाहिए?
3: थोड़ी सी गलतफहमियां भी दूर करना जरूरी है। सबसे दुनिया भर में अच्छा सिस्टम जो डेवलप और मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम जो डेवलप हुआ है कि औरतों को 50 साल की उम्र या 40 साल की उम्र की औरतों को ये सिखाना चाहिए कि अपना ब्रेस्ट को कैसे पैल्पेट करें या फील करें। हम लोग यही कहते हैं कि महीने में एक दफा जब आप नहा रहे हों, जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाएं, पीरियड्स के बीच में, मतलब पीरियड्स के वक्त तो गांठें महसूस हो जाती हैं, पीरियड्स से पहले महसूस हो जाती हैं, पीरियड्स के बाद हफ्ता भर बाद आप अपना ब्रेस्ट नहाते वक्त, क्योंकि साबुन लगाएं ब्रेस्ट के ऊपर फिर अपना हाथ उसके ऊपर लगाएं, तो गांठ जो हो वो अच्छी तरह महसूस हो जाती है। हमने देखा है कि जो अनपढ़, जिनको हम अनपढ़ कहते हैं औरतें, उन्होंने भी कभी रेडियो में सुना हो तो वो आते हैं क्योंकि हमने रेडियो में सुना, हमने अपना ब्रेस्ट को फील किया तो हमें ये गांठ मजबूत। सो ये बहुत सबसे अहम बात है कि औरतों को सिखाना। दूसरी बात ये है कि 50 साल की उम्र के बाद स्क्रीनिंग या 40 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा है 15 या 20 औरतों में से 50 साल की उम्र के बाद एक को जरूर होगा ब्रेस्ट कैंसर, इतना इसका इंसिडेंस हाई है। तो इसलिए हर एक की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। नाउ स्क्रीनिंग में थोड़ी सी गलतफहमी ये है कि मैमोग्राम करा लो तो स्क्रीनिंग हो गई, ये नहीं है। स्क्रीनिंग के दो भाग होते हैं, एक तो कोई डॉक्टर जो ब्रेस्ट कैंसर को देखते रहते हैं वो ब्रेस्ट को अच्छी तरह फील करें, और दूसरा एक साल में या दो साल में मैमोग्राम कराएं। सो ये दोनों भाग हो तब स्क्रीनिंग इफेक्टिव होती है, अगर एक ही भाग करें तो स्क्रीनिंग आधी इफेक्टिव होती है।
2: डॉक्टर धवन, अगर हम कामकाजी महिलाओं को देखें तो बच्चा होने के एक दो महीने के बाद से ही वो ऑफिस जाना शुरू कर देती हैं। ऐसे में बच्चे को दूध पिला पाना तो संभव नहीं है, इसका भी कोई असर होता है उनकी सेहत पर?
3: ये बिल्कुल कंसर्न है, एक तो ब्रेस्ट कैंसर के वजह से कंसर्न है और दूसरा बेबी के लिए भी कंसर्न है कि द बेबी डजंट गेट द मदर्स मिल्क, ही इज नॉट गेटिंग द बेस्ट न्यूट्रिशन और शी इज नॉट गेटिंग द बेस्ट न्यूट्रिशन, सो दोनों तरफ से कंसर्न है।
2: डॉक्टर धवन, आप हमारे स्टूडियो में आए और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर इतनी सारी जानकारी आपने हमारे लिसनर्स को दी, हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं तो जरूर बताइए।
3: सबसे अच्छा सिस्टम तो यही है कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें। लाइफस्टाइल में सबसे जरूरी चीज है कि टोबैको का इस्तेमाल या सिगरेट के रास्ते या तंबाकू खाने के रास्ते या नस्वार रखने नाक में डालने के रास्ते, ये तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि ना ही ये कई जगह कैंसर का रोग करता है। बाकी और लाइफस्टाइल, ओवरवेट जो लोग होते हैं उनको भी कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा होता है, और खासकर ब्रेस्ट कैंसर के लिए महिलाओं को यही एडवाइस होगी कि दे शुड गेट देयर चिल्ड्रन अर्ली इन लाइफ, दे शुड ब्रेस्ट फीड देम फॉर अ ईयर, ईयर एंड हाफ और टू ईयर्स, एंड दैट विल बी अ बिग बोनस, एंड दे शुड फील देयर ब्रेस्ट वंस अ मंथ, अ वीक और 10 days आफ्टर देयर पीरियड्स, एंड इफ दे नोटिस एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत मिले तो फौरन अपने कंसल्टेशन करें।
4: मृदंगम ही उनकी धड़कन है, श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026, तिरुवारूर 18वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, संगीत ममूर्ति की जन्मस्थली।
5: मैं एक संगीत के वातावरण में पला बढ़ा। मेरी माँ तिरुवारूर तंजावुर क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थी। जब मैं केवल 2.5 वर्ष का था तब मुझे पिता की अनुपस्थिति महसूस हुई। कहा जाता है माँ एक पवित्र मंदिर के समान होती हैं, और मेरे जीवन में यह बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। मेरी माँ ने अपने 3 भाइयों और हमारी जिम्मेदारी उठाई छोटे छोटे संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर।
4: हर सुबह बालक भक्त वत्सलम अपनी माँ आनंद वल्ली की प्रार्थना और भक्ति गीतों की मधुर स्वर लहरियों के साथ जगता था। वो संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाता। माँ ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। यही प्रारंभिक शिक्षा उनके जीवन भर की संगीत यात्रा की मजबूत नींव बनी। कुछ ही समय में वे अपनी माँ और मामा के साथ स्थानीय संगीत कार्यक्रमों में संगत करने लगे।
5: मेरे मामा तिरुवारूर कृष्णमूर्ति, मैंने उनसे जिद करके मृदंगम सीखना शुरू किया। वे मुझे सिखाना तो चाहते थे लेकिन हिचकिचाते थे। संगीतकारों की आय नियमित नहीं होती थी। वे नहीं चाहते थे कि मुझे भी उन्हीं संघर्षों का सामना करना पड़े जिनसे वे गुजरे थे।
4: उस समय चेन्नई भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख केंद्र बन चुका था। देश भर के महान विद्वान और कलाकार वहीं आकर बस रहे थे।
5: जब मैं मद्रास आया तब मैं किसी को नहीं जानता था और न ही कोई सहारा था। मेरी माँ मेरे साथ आने में हिचकिचाई। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और बहुत आग्रह करके माँ को अपने साथ ले आया। मेरे लिए उन्होंने जो त्याग किया उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने मेरी खातिर उसी छोटे से कमरे में स्वयं को ढाल लिया। हम एक ऐसी बस्ती में रहते थे जहाँ छोटे छोटे घर एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाकर कमरे को ध्वनि निरोधित करता और घंटों मृदंगम का अभ्यास करता। लगातार 10 वर्षों तक यही मेरी दिनचर्या रही।
4: एक बार प्रसिद्ध गायिका M.L. वसंत कुमारी के साथ व्हाइट हाउस में प्रस्तुति के दौरान आयोजकों ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने माथे पर लगा पारंपरिक विभूति चिन्ह हटा दें, लेकिन भक्त वत्सलम ने इनकार कर दिया। उनके लिए वो उनकी पहचान और आस्था का प्रतीक था और उन्होंने गर्व के साथ अपनी प्रस्तुति दी। वर्ष 1992 में उन्होंने बार्सिलोना ओलंपिक में अपनी प्रस्तुति की। इसके बाद महान कलाकार मैंडोलिन श्रीनिवास के साथ विश्व पटल पर संगत की। भक्त वत्सलम को प्रख्यात संगीतकारों के साथ ने भारतीय संगीत जगत की विशिष्ट पहचान बना दिया। एक नवाचारी कलाकार के रूप में उन्होंने विशाल तालवाद समूहों की ऐसी अनूठी प्रस्तुतियों की संरचना की जिन्हें पहले कभी नहीं सुना गया था। अपनी संस्था लय मधुरा स्कूल ऑफ म्यूजिक के माध्यम से वे 1000 से अधिक शिष्यों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। जो ज्ञान सीखने योग्य है उसे पूरी निष्ठा से सीखो और फिर जीवन भर उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करो।
5: संगीत मेरी सांस है, मैं अगले जन्म में भी मृदंगम ही बजाना चाहूंगा।
4: श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026।

0: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
1: विटामिन विटामिन ऐसी चीज है जिसे अगर खाया नहीं जाए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। विटामिनों की ये परिभाषा नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्वेंस-ग्योर्गी ने दी थी। उन्होंने विटामिन सी का पता लगाया था और जीवित कोशिकाओं में इसकी भूमिका की खोज की। विटामिन मानव शरीर के सामान्य विकास और कार्य संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनमें से कुछ विटामिन तो मेटाबॉलिक क्रियाओं यानी कि शरीर की चयापचय क्रियाओं में कोएंजाइम की तरह से काम करते हैं। कोएंजाइम एक ऐसे गैर प्रोटीन पदार्थ हैं जो कुछ एंजाइम के साथ मिलकर जटिल संरचनाएं बनाते हैं। एंजाइमों के सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन कोशिकाओं की झिल्ली के निर्माण और रखरखाव में मदद करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण और चयापचय में भी ये सहायक हैं। जीवित कोशिकाओं में कई जरूरी प्रक्रियाओं में इनकी भूमिका रहती है। जीव जंतुओं को अधिकतर विटामिन बाहर से प्राप्त होते हैं, ये उनके शरीर में नहीं बनते। सिर्फ विटामिन बी और विटामिन डी के निर्माण में जीवों की कुछ भूमिका रहती है। विटामिन डी पाचन प्रणाली में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और विटामिन डी धूप में त्वचा द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ खास तरह के भोजन की आवश्यकता के बारे में विटामिनों की खोज से काफी पहले से पता था। 1970 के दशक में स्कॉटलैंड के एक डॉक्टर जेम्स लिंड ने पता लगाया कि स्कर्वी नाम की बीमारी नींबू का रस पीने से दूर हो जाती है। एक डच चिकित्सक क्रिश्चियन इजिकमैन ने 1890 में बेरीबेरी बीमारी और कुछ खाद्य पदार्थों के बीच संबंध स्थापित किया। 1906 में ब्रिटेन के जैव रसायनज्ञ सर फ्रेडरिक गार्लिन हॉपकिंस ने पता लगाया कि जब जब चूहों को एक खास तरह की खुराक दी जाती है तो उन्हें जीवित रखने के लिए सहायक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है। पोलैंड के रसायन शास्त्री कैसिमर फंक ने 1912 में सबसे पहले बेरीबेरी बीमारी की रोकथाम के तरीके का पता लगाया। उन्होंने इसे विटामिन यानी विट प्लस अमीन नाम यानी अमीन नेसेसरी फॉर लाइफ दिया। लैटिन भाषा में जीवन को वाइटा कहा जाता है। आज भली भांति इस बात का पता लग चुका है कि बेरीबेरी बीमारी की रोकथाम करने वाला तत्व और कुछ नहीं बल्कि विटामिन B1 ये थायमिन है। थायमिन एक रासायनिक यौगिक है जिसमें अमाइनो समूह मौजूद रहता है। शीघ्र ही सहायक तत्व के स्थान पर विटामिन शब्द का उपयोग किया जाने लगा। बाद में ये भी पता चला कि विभिन्न विटामिनों के अलग अलग रासायनिक गुण होते हैं। कुछ में तो अमीनो समूह जरा भी इस्तेमाल नहीं होता, मगर फंक द्वारा इजाद किया गया विटामिन शब्द इस्तेमाल होता रहा। सिर्फ विटामिन की अंग्रेजी स्पेलिंग में से आखिरी अक्षर मा हटा दिया गया। तरह तरह के भोजन में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिनों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहले वर्ग में वे विटामिन आते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन बी। दूसरे वर्ग में वसा में घुलने वाले विटामिन जैसे कि ए डी ई और के शामिल हैं। विटामिन ए या रेटिनल हमारी आंखों के दृश्य रंगों का आवश्यक घटक है। वसा में घुल सकने वाला ये विटामिन बीटा कैरोटीन नाम के पदार्थ से बनाया जाता है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं मछली का तेल, कलेजे का मांस, दूध और इससे बनने वाले पदार्थ, फल तथा सब्जियां आदि। बीटा कैरोटीन जिससे कि विटामिन ए बनाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से मुंह तथा श्वास नलिका की झिल्ली में सूखापन आ जाता है। इसके अलावा अंधापन, शरीर के विकास में असामान्यता और संक्रमण जैसी बीमारियां भी इसकी कमी से हो सकती हैं। विटामिन ए से त्वचा तथा श्लेष्मा बनने वाले ऊतकों का निर्माण भी होता है। विटामिन बी पानी में घुलनशील कई विटामिनों का समूह है। इसके अंतर्गत विटामिन B1, थायमिन, विटामिन B2, राइबोफ्लोबिन, विटामिन B6, पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B12, साइनाकोल कोबेलामिन, नियासिन, निकोटिनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, विटामिन एच और फॉलिक एसिड आते हैं। विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों के पाचन में सहायक होता है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोतों में अनाज, फलियों के अंतर्गत आने वाली दालें, मटर और मांस शामिल हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो सकता है। इस बीमारी से शरीर की परिधीय तंत्रिकाओं पर असर पड़ता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द होने लगता है। इसी तरह की एक अन्य बीमारी जिसे वेट बेरी बेरी कहा जाता है, भोजन में प्रोटीन और विटामिन बी दोनों की कमी से शरीर के अंगों में तरल पदार्थ का जमाव बढ़ जाता है। इससे अंगों में सूजन आ जाती है और बाद में दिल की बीमारी भी हो सकती है। विटामिन B2 कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के पाचन में सहायक होता है। ये खमीर, जिगर के मांस, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियों और मांस में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर की बढ़वार रुक जाती है। विटामिन B6 खमीर, जिगर, दूध, फलियों के अंतर्गत आने वाली दालों और अनाज में पाया जाता है। अमीनो एसिड के चयापचय में इस विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हालांकि इसकी कमी से कोई खास बीमारी होने का खतरा नहीं पाया जाता, मगर आहार में इसकी मात्रा न होने से केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली में गड़बड़ी तथा त्वचा संबंधी सामान्य विकार पैदा हो सकते हैं। विटामिन B12 इसका निर्माण आमतौर पर आंतों में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। कलेजे के कच्चे मांस में ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से एक तरह की खून की कमी पैदा हो जाती है। पर्निशियस एनीमिया नाम की इस बीमारी में लाल रक्त कणिकाओं का विकास धीमा पड़ जाता है और मेरुदंड में विकार उत्पन्न होने की आशंका रहती है। पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम ए का हिस्सा है, जो शरीर में अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आता है। यूनानी भाषा में पेंटोथिन का नाम है, रिपीट, यूनानी भाषा में पेंटोथिन का मतलब है चारों ओर से। इसके प्रमुख स्रोतों में जिगर, खमीर, अंडे, मांस, डेयरी उत्पाद, शीरा, फूलगोभी और फल आदि शामिल हैं। अगर जानवरों को पेंटोथेनिक एसिड से रहित खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं तो उनकी बढ़वार रुक जाती है, उनके बालों का रंग उड़ने लगता है और उनमें त्वचा संबंधी विकार भी पैदा हो जाते हैं। बायोटिन, विटामिन एच खाद्य पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया में भी इसका निर्माण होता है। फैटी एसिड्स के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन एच को एंटी एज फैक्टर के रूप में भी जाना जाता है। फॉलिक एसिड पत्तेदार सब्जियों, खमीर, जिगर, गुर्दे और ताजे फलों में पाया जाता है। इसे फॉलिक एसिड नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। लैटिन भाषा में पत्तेदार सब्जी को फोलियम कहा जाता है। इस विटामिन की कमी से अस्थि मज्जा में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसे परिपक्व रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती। पर्निशियस एनीमिया नाम की बीमारी में रोगी को फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दिए जाते हैं। नाइसिन का इस्तेमाल पेलाग्रा नाम की बीमारी के उपचार में किया जाता है। इस बीमारी में अमाशय और आंत संबंधी विकार पैदा हो जाते हैं तथा खाल फटने व मानसिक गड़बड़ी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। विटामिन सी की आवश्यकता कई शारीरिक प्रक्रियाओं में पड़ती है, खास तौर पर स्वस्थ योजक ऊतकों के लिए ये बेहद जरूरी है। विटामिन सी सब्जियों और ताजे फलों, विशेष रूप से नींबू प्रजाति के फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। इस बीमारी में कमजोरी, जोड़ों में दर्द आदि की शिकायत हो जाती है और बाद में मसूड़ों तथा अन्य अंगों से रक्तस्राव आरंभ हो जाता है। विटामिन डी स्टेरॉल्स नाम के अनेक मिले जुले यौगिकों के समूह का नाम है, मगर मुख्य घटक हैं कोलिकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी कैल्शियम और हड्डियों का निर्माण करने वाले खनिजों को जमा करने के काम आता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। बच्चों को होने वाली इस बीमारी का असर हड्डियों पर पड़ता है। विटामिन डी भोजन में तो मौजूद रहता ही है, धूप में हमारी त्वचा भी इसका निर्माण करती है। विटामिन ई एक तरह के अनेक यौगिकों के समूह का नाम है। इन्हें टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ये यौगिक जैव एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में भी काम करते हैं, यानी ये फैटी एसिड्स में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकते हैं। इस तरह ये विटामिन फैटी एसिड्स को परऑक्साइड्स और रेडिकल से बचाता है। विटामिन ई चोकर वाले आटे, गेहूं के अंकुर, जिगर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। टोकोफेरॉल्स का व्यावसायिक इस्तेमाल वसा, खास तौर पर वनस्पति तेलों में बनाने में भी किया जाता है। विटामिन के पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। आंतों में कुछ लाभप्रद बैक्टीरिया भी इसका निर्माण करते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है और इसकी कमी से खून का थक्का आसानी से नहीं जम पाता। विटामिन के अंतर्गत नैप्थेक्विनोन यौगिकों का एक समूह भी आता है। रक्त को जमाने में काम आने वाले रसायनों के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। विटामिनों की आवश्यकता बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पड़ती है। सामान्य संतुलित भोजन में आदमी की जरूरत के तमाम विटामिन मौजूद रहते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग संतुलित भोजन नहीं खाते, जबकि बहुत से अन्य लोग संतुलित भोजन खाने की स्थिति में नहीं होते।

डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, एक उपचारक जिसने पुनर्जीवित किया एक खत्म होती विरासत को, हिमालय की खामोशी में 2500 साल पुरानी उपचार परंपरा दम तोड़ रही थी। सोवा रिग्पा, नाड़ी देखकर बीमारी समझना, दुर्लभ जड़ी बूटियों से इलाज करना। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद मानते थे कि कुछ विरासतों को बचाना बेहद जरूरी है। सोवा रिग्पा को बचाने का उनका सफर बड़ी ही कम उम्र में शुरू हुआ। वो अक्सर अपने पिता को दवाइयां बनाते और लोगों का इलाज करते हुए देखा करते थे। उन्होंने सोवा रिग्पा को नहीं चुना, सोवा रिग्पा ने उन्हें चुना। शुरुआत में वो इसे सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया। डॉक्टर ग्योरमेद ने अपना जीवन इस चिकित्सा

0: इकट्ठा किया। उनकी पहल पर माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से लेह में राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान की स्थापना हुई। पर संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ।
1: 2014 में मुझे भारत में चीनी दूतावास से एक प्रेस रिलीज मिली, जिसमें लिखा था कि वो इस चिकित्सा पद्धति को यूनेस्को में अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्ज कराएंगे।
0: डॉक्टर ग्युरमेद ने सभी संबंधित दस्तावेज इकट्ठा किए, फाइल बनाई और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। इस लंबे सफर में कई लोगों ने डॉक्टर ग्युरमेद का साथ दिया।
1: मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया है। 25 सालों में मैंने शायद ही कभी छुट्टी ली होगी। जब मेरे पिता स्वस्थ थे, वो मुझसे कहते थे, मेडिसिन बुद्धा तुम्हारे साथ है, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो एक दिन जरूर सफल होगे।
0: आज एक नई पीढ़ी इस प्राचीन ज्ञान की ओर लौट रही है। डॉक्टर ग्युरमेद की अथक मेहनत से सोवा रिग्पा सिर्फ बचा ही नहीं, उसे मिली एक नई जिंदगी। एक उपचारक के बेटे से भारत में सोवा रिग्पा सूत्रधार तक का सफर वाकई प्रेरणादायक है। डॉक्टर पद्मा ग्युरमेद, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
2: आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम शाहबाद की आवाज में।
3: धन्यवाद शाहिल जी।
2: तो सर, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा दिवस के ऊपर, तो आपके जीवन में शिक्षक या फिर शिक्षा दिवस क्या महत्व रखता है?
3: शाहिल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज अगर मैं शिक्षक हूँ तो मुझे भी किसी शिक्षक ने मुझे शिक्षक बनाया है। मैं भी एक टाइम में एक विद्यार्थी रह चुका हूँ और आज मैं एक अध्यापक हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं वो चीज़ें जो मेरा जीवन का अनुभव है या जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने गुरुओं से, वो मैं अपने बच्चों को बता सकूं या उनको वो अपना अनुभव शेयर कर सकूं। शिक्षा एक मतलब त्रिवेणी की तरह है, तीन पैरों पे खड़ी हुई एक इमारत है, जिसमें एक शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है, एक पढ़ने लिखने की सामग्री होती है जिसको आप पढ़ते हो। शिक्षक आपको एक मार्गदर्शन देता है कि किस तरीके से आप इस पथ पे चल करके, इस रास्ते पे चल करके अपने जीवन के उद्देश्य को अचीव करो या अपने गोल को जो है प्राप्त कर लो। तो मैं मानता हूं कि हमारे जीवन के अंदर एक शिक्षक का जो है, चाहे वो अर्ली एज में माँ बाप बच्चे के शिक्षक हैं, चाहे वो कम्युनिटी के लोग हमारे शिक्षक हैं, हर एक व्यक्ति जिससे आप सीखते हो वो आपका शिक्षक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा रहता है हमारे पूरे जीवन में, वो एक स्कूल टीचर का रहता है। मैंने कल अपने गुरु को फोन किया जो मुझे संस्कृत पढ़ाते थे, उसके बाद मैंने एक दो मेरे और जो बहुत करीब हैं, जो आज भी मेरे संपर्क में रहते हैं, जो शिक्षक मेरे, जिनसे मैं टाइम टू टाइम गाइडलाइन लेता रहता हूं कि आगे मैं क्या करूं। तो हम अपने गुरु को अपने साथ जोड़े रखेंगे तो अपना हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं और अच्छा दिन ब दिन निखरता जाएगा।
2: तो जैसे कि शिक्षक दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण बच्चे को पढ़ाने वाले साधारण टीचर और स्पेशल टीचर। तो जैसे कि आप एक स्पेशल टीचर हैं जो स्पेशल बच्चों को ट्रेन करते हैं, पढ़ाते हैं, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको स्पेशल बच्चों को ट्रेन करते या फिर पढ़ाते समय?
3: बहुत अच्छी बात आपने कही कि दो तरह के अध्यापक होते हैं, और आज जो है हमारे विश्व भर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं हमारे समाज की कुछ कमियां हैं, ये कह लो कि कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो हैं जिनकी वजह से इन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, कि कुछ कुछ ऐसे इश्यूज हैं हमारे समाज में, जैसे कि चाहे वो लोगों का अवेयर ना होना, बहुत ज्यादा कम उम्र में शादी कर देना, पहले बाल विवाह होते थे, कहीं ना कहीं बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी आज जो है एक और नई चीज है कि लोग 35 प्लस होकर के शादियां कर रहे हैं, वो भी एक चैलेंज है। दवाई है, नशा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐसे एबनॉर्मल बच्चों को जन्म दे रही है। तो आपने कहा कि आप स्पेशल अध्यापक हैं तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहले जब मैं इस विशेष शिक्षा के अंदर आया था तो मुझे लगा था कि यार क्या मैं इसमें कभी कुछ कर पाऊंगा, लेकिन इसके अंदर धैर्य, संयम और आप ये कह लो कि बहुत ज्यादा लगन अपने अंदर भी होनी चाहिए और बच्चे में भी वो लगन जगाने की कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक प्रेरणा होनी चाहिए कि मैं इस बच्चे को करवा पाऊंगा। मैं अर्ली एज के बच्चों के साथ काम करता हूँ, जैसे कि एक ऑटिज्म डिसेबिलिटी होती है, वो ऑटिज्म के अंदर जो बच्चा है, स्वालीनता जिसको कहते हैं, कि बच्चा अपने अंदर लीन

0: रहता है कि वो समाज के अंदर नहीं आता है, समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, वो अपने अंदर रहता है, कम्युनिकेशन नहीं करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर करता है कि और जो है बोलना उसका बहुत लिमिटेड होता है कि वो कम्युनिकेशन बहुत कम करता है, बातचीत का बहुत कम करता है। तो ऑटिज्म के ये लक्षण हैं काफी सारे जो हम किसी दिन डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं जिन छोटे बच्चों के साथ काम करता हूँ वहाँ पे मेरा काम रहता है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को देखना। विकास तभी होगा जब हम एक बच्चे को उस तरह का माहौल देंगे। आप चुनौतियों की बात करें, चुनौती तो हम एक साधारण बच्चे को पढ़ाते हैं तो भी आती है, क्योंकि बच्चा एक एज के बाद जो है पर्सन पूछने की जो तादा वो पर्सन पूछने का जो उसका दायरा है वो बढ़ता जाता है कि बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होगा, जितना समझदार बच्चा होगा वो आपको हर एक चीज के बारे में पूछेगा कि माइक क्या है, इससे कैसे बात करते हैं, कैसे बनता है, ये है ये, तो चैलेंज आपको आता है, आपकी नॉलेज होनी चाहिए। एक बच्चा मैंने मेट्रो में देखा अपनी मम्मी को बोल रहा है, पॉइंट कर रहा है, ये नॉर्मल बच्चा साधारण जिसको आप कह रहे हो कि किसी तरह की कोई भी उसके अंदर मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांगता नहीं थी, तो वो बच्चा जो है एक मेट्रो के अंदर इतना चंचल और इतना शातिर बच्चा जिसको हम कहते हैं, इतना इंटेलिजेंट बच्चा कि वो हर एक चीज के बारे में पूछ रहा है, और उसकी मम्मी पापा इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने जिस तरीके से बात किया तो मैंने उनको रोका कि नहीं, ये आपकी कम जानकारी है जिसकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हो, बल्कि बच्चा आपका बिल्कुल सही है, आप इसकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हो, उनके जो पर्सनों के उत्तर है वो नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आप परेशान होकर के आपने इस तरह का व्यवहार किया, ये बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। अब आप स्पेशल बच्चों की बात करें तो अभी हमारा जो रीड इंडिया है वो एक प्रोजेक्ट लेके आया है PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो मुझे जब इस प्रोजेक्ट में लाया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम यहाँ पे गांव के अंदर उस स्तर पे काम कर रहे हैं जहां पे लोगों की पहुंच बहुत कम है। बहुत अच्छा आपने बोला कि बहुत कम है, कम तो होता है कि कोई चीज नहीं है, मतलब बहुत कम है, लिमिटेड, यहाँ पे बिल्कुल वो सोर्सेज है ही नहीं, बल्कि जो हमारे सेंटर है वहाँ पे ऑलरेडी वो NCR के टच में है, लेकिन फिर भी जब मैं लोगों घरों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनके उनसे बात करता हूँ, जब मैं उनके घरों को देखता हूँ, उनके माँ बाप से बात करते, तो हमें ये लगता है कि इस NCR के अंदर रह करके भी माँ बाप जो है कहीं ना कहीं आज जो हम मानते हैं कि ग्रामीण स्तर में क्षेत्र में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वही हालात है कि एक किसी विशेष गांव या शहर को हम ये नहीं कहेंगे वो पढ़े लिखे हैं वहां अनपढ़ है नहीं, लेकिन जहाँ पे जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर, चाहे वो शहर है चाहे गांव है, एक जैसा ही हाल है। तो मैं जब द्वारका, गुड़गांव, नोएडा के गांव में जाता हूँ, जब मुझे बोला जाता है कि हम आज मोबिलाइज करने जा रहे हैं, लोगों को अवेयर करने जा रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि लोगों को सच्ची में नहीं पता है। बच्चे हैं उनके पास, लेकिन उनकी अपने बच्चों के प्रति काफी माँ बाप जो हमें पॉजिटिव मिलते हैं कि अच्छा सोचते हैं कि हाँ ये कोशिश कर रहे हैं, काफी माँ बाप जो है वो कोशिश ही नहीं करते हैं, या फिर उनको कोशिश करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती है, क्योंकि हर जगह पे विशेष शिक्षक अवेलेबल नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है और हो सकता है कि टाइम लगे उसके अंदर, बट हमारे NGO ने जो अभी ये PWD का अभी शुरू किया हमने, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो हम चाहते हैं कि हम तीनों सेंटरों के अंदर हर एक डोर टू डोर जाकर के लोगों को अवेयर करें, उनको हमारे सेंटर तक लेके आए, चाहे वो किसी भी तरह से हमें उनको बुलाना पड़े कि चाहे आप लेकर के आओ बैठो, या फिर हमें काम करने का एक मौका दो। तो हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, हम आप भी देखते होंगे, आप एक विद्यार्थी हैं, आप देखते हो ज्योति एक लड़की है और उसके साथ दो शाइना एक गुड़िया है और एक और दो तीन लड़कियां और भी हैं, तो आप देखते होंगे वो बच्चे भी आपके साथ बैठ के कंप्यूटर सीख रहे हैं, वो बच्चे भी लाइब्रेरी में आ रहे हैं, वो बच्चे भी एक क्लासरूम के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे भी ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाह रहे हैं, सब चीजें वो बच्चे कर रहे हैं। तो आप उनको कैसे कह सकते हो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं? चैलेंज आते हैं, बच्चे को लाना सबसे बड़ा चैलेंज है, उनके माँ बाप को ये समझा पाना कि नहीं ये कोई रोग या किसी पिछले जन्मों का कर्म पाप नहीं है, ये एक हमारी ही गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं हमसे हुई है, चाहे वो बच्चे के जन्म से पहले है, चाहे वो बच्चे के जन्म के दौरान है या जन्म के बाद है, तो ये गलतियां हमारी हैं, लेकिन हम उनके अंदर दवाइयों से सुधार नहीं कर सकते, लेकिन हम एक थेरेपी एक स्कूल सेटअप के अंदर डाल करके बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, और कई सारी टेक्निक हम इसमें यूज करते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। वो तो डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से स्तर का है, क्या बच्चा डिसेबिलिटियों के साथ आ रहा है, क्या क्या वो इश्यूज अपने साथ लेके आ रहा है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसकी गोल सेट करते हैं, फिर उनके ऊपर हम काम करते हैं।
1: तो जैसे कि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, अगर इस प्रकार की सिचुएशन मेरी क्लास में किसी बच्चे को है कि वो पढ़ने में असक्षम है, तो मैं किस प्रकार से उसकी सहायता कर सकता हूँ?
0: आप कह रहे हो कि पढ़ने लिखने में बच्चे को समस्या आ रही है, वो समझ नहीं पाता है, मैं उसको कैसे पहचानूं? तो पहली बात तो ये कि एक विद्यार्थी अपने सहपाठी को एक सहयोग दे सकता है, लेकिन आपको लग रहा है तो आप, मैं मानता हूं कि आप पढ़ने, अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो उसमें होता है कि आप लिखना पढ़ना गणित को समझना या भाषा के अंदर किसी तरह की असमानता ना हो, तो आप लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे को पहचान सकते हैं। आप उसकी नोटबुक देखो, क्या उसका लिखता है वो सही लिखता है, आपके आपका सहपाठी है क्या वो बोर्ड से देख करके लिख पाता है, लिख पाता है तो क्या वो कितनी गलतियां करता है, वो टै को ठह तो नहीं लिख रहा, ए को आ तो नहीं लिख रहा। कि आप ये समझो कि मेरा नाम राजीव है तो वो खाजीव बोल दे, रा को खै बोल रहा है, मतलब उसको शब्दों की पहचान नहीं है, बिना देखे लिख नहीं पा रहा है। आप देखते हो कि क्लास के अंदर एक अध्यापक ने एक पाठ पढ़ाया लेकिन उसको याद नहीं रह पा रहा है, तो आप ये मान सकते हो कि किसी तरह की उसके अंदर अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। लेकिन आप पहले अध्यापक को बताओ, कि कभी कोई बच्चा खुल करके नहीं बता पाता है। अध्यापक का काम ही होता है कि जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां पे एक काउंसलर है आपके स्कूल में,
1: जी हाँ,
0: आप काउंसलर को बता सकते हो, क्योंकि आपका काम पहचानना नहीं है, आप एक विद्यार्थी हो, आप एक अपने साथी का या अपने सहपाठी का जो वीक पॉइंट है उसको आप सबके सामने उजागर मत करो, आप जाके डायरेक्ट अपने काउंसलर को बताओ, अपने टीचर को बताओ, ताकि उसकी उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अब काउंसलर जो है एक प्रोसीजर में आएगा, एक प्रक्रिया में आएगा, वो क्या करेगा, वो बच्चे से मिलेगा। देखो हम किसी को आपने देखा ज्योति इतना अच्छा कर रही है, अगर वो एक किसी स्पेशल स्कूल में जा रही होती तो सर इतना अच्छा ना कर पाती, क्योंकि उसको सब डिसेबल्ड बच्चे अपने सराउंडिंग दिखते, यहाँ पे वो नॉर्मल बच्चों को देखती है, आपको देख के भी सीखती है और वो दूसरे बच्चों को देख के भी सीखती है, उसके पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, हर चीज में। आप, मैंने 2 महीने में इतने बदलाव देखे हैं जो शायद एक विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय के अंदर जाके बच्ची लर्न नहीं कर पाती जितना वो यहाँ कर पाती है। सरकार भी चाहती है कि हमारा जो समाज है वो समेकित शिक्षा होना चाहिए, मतलब हमारे जो विद्यालय है जो इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, कि जहाँ पे सब बच्चों को एक समान भागीदारिता मिले। आपने सबको शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, उसी तरीके से इन बच्चों का भी अधिकार है। तो आपने कहा कि मैं क्या करूं, आपका सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है वो यही था कि आपने बच्चे को देखा, अब आपने विशेष शिक्षा का टॉपिक आपने लिया है, इस पे आपने मुझसे बात की है, तो आपकी कुछ ना कुछ जानकारी बढ़ी है, तो आपको इस तरह के बच्चे लगते, तो आप उनको, आप पहले अपने लेवल पे देखो कि क्या उनको सच्ची में इस तरह की दिक्कत है, कोई और है। आप एक दोस्त हो तो कभी कोई बच्चा जो है ना, माँ बाप या घर के हालात ऐसे हो जाते हैं कि बच्चा जो है घर से इतना सारा बर्डन लेके आता है, कभी कभी होता ना कि माँ बाप के झगड़े, बाप का शराब पीना या इस तरह की घर की कई सारी समस्याएं होती है जो बच्चे को पढ़ने में बाधाएं डालती हैं। तो क्या आप उससे बात करके देखो, अगर आपके गली मोहल्ले का है तो आपका, आप उसके घर का सिचुएशन देखो कैसी है, ये चीज अपने तक रखो, गुप्त रखो। उससे क्या होगा कि आप जो है पहले बच्चे का जो स्तर है क्या वो डिसेबिलिटी में आता है या फिर कोई और समस्याओं के साथ वो ये इन सब चीजों से संघर्ष कर रहा है। अगर ये सब चीज नहीं है तो आप एक काउंसलर को बता सकते हो जो आपके स्कूल में है, आप उनको बताओ कि मैम उस बच्चे को, मुझे लग रहा है किसी तरह की कोई समस्या है, मैं उसको परेशान देखता हूँ, उसको पढ़ने में भी समस्या आ रही। तो आप एक काउंसलर जो है फिर उसका असेस करेगा, उसको देखेगा, उसके माँ बाप को बुलाएगा, उनसे बातें करेगा, तो फिर एक प्रोसीजर आएगा। फिर आपके स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर भी होते हैं आजकल, जो एनसीआर के स्कूल है उनके अंदर ज्यादातर स्पेशल एजुकेटर हैं, तो फिर धीरे धीरे एक प्रोसीजर शुरू होगा, फिर काउंसलर जो है स्पेशल एजुकेटर के पास भेजेगा, फिर वो आइडेंटिफाई करेगा, असेसमेंट करेगा, देखेगा बच्चा कहाँ अटका हुआ है। तो एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन इसके अंदर पूरे समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: तो ये बात तो ये, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, फिर आसपास में हम जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे बच्चों के बारे में, आज भी हमारे आस पड़ोस में जैसे मजदूर भाई होते हैं, उनके बच्चे भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं, तो हम उन बच्चों की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा जो होते हैं इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं कि वो बच्चा किस प्रकार से विकसित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और उनको ये पता भी नहीं रहता कि हाँ हम अपने बच्चे को किस प्रकार से ट्रेंड करें या फिर हम उसको कहाँ भेजें कि उसका मानसिक विकास हो सके।
0: आपने जो बात बड़ी अच्छी बोली है, क्योंकि आप बहुत होशियार हो और आप चीजों को पकड़ पा रहे हो, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, पर्सन बहुत अच्छा है ये कि उनको हम कहाँ भेजें। देखो वो स्कूल नहीं जा रहे हैं
1: जी,
0: तो मैं आपके इस गांव की बात करूं शाहबाद की, तो वहां पे हमारे पास अभी रीड इंडिया का जरिए प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट जो जो हमारी डायरेक्टर है गीता मैम, उन्होंने बोला था कि अगर ये रहे ना रहे लेकिन पीडब्ल्यूडी हमेशा रहेगा, कि ये हमने रीड इंडिया के साथ जोड़ दिया है। तो अगर आपके गांव के अंदर आपको ऐसा बच्चा दिखता है तो आप उसके माँ बाप को बात नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, आप हमें बताओ, हम उनसे जाके बात करेंगे, हम हमारे सेंटर के अंदर उस बच्चे के साथ काम करेंगे। यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर भी है, काउंसलर भी है, स्पीच थेरेपिस्ट भी है, हमारी एक पूरी टीम है, जैसे कि आप भी हो। अगर मैं आपको कहूंगा कि बेटा इस बच्चे को आप कंप्यूटर का कुछ सिखा दो या इसको कुछ कलरिंग करा दो, तो आप मना नहीं करोगे, क्योंकि आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा था ना, वो हमने पार्ट शुरू कर दिया ऑलरेडी। भारत सरकार की जो नई नई शिक्षा नीतियां आ रही हैं या फिर पुरानी जो शिक्षा नीति है वो स्कूलों तक है, लेकिन कहीं अच्छे तरीके से काम हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। जो आपने कहा कि उन बच्चों को हम कहाँ पहुंचाएं, तो अभी तो मैं ये कहूंगा कि आपके आसपास अगर कोई स्पेशल स्कूल है तो वहां बता सकते हो। अगर जैसे कि हमारा रीड इंडिया है तो आप यहाँ पे हमें बताओ, हम उनसे मिलेंगे, उनके माँ बाप से बात करेंगे और उनको हमारे सेंटर में लेके आएंगे, और जब वो बच्चे हमारे सेंटर में आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने इस बच्चे को पहचाना और ये आज यहाँ पे आ रहा है, और जब वो चीज़ सीखेगा तो आपको वो ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो ज़रूरत है आज के युवा को विशेष शिक्षा से जुड़ने का, विशेष शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचानने का और उनके साथ एक प्रेम से रहने का, कि ये ना हो कि आप उनसे नफरत करें। आप जिस तरीके से मैं आपके अंदर ये एक उमंग देख रहा हूँ कि आप इस मतलब स्पेशल एजुकेशन या विशेष शिक्षा के बारे में जानने के लिए उत्तेजित हैं या इतने भावुक हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लास के 30 और बच्चे भी इस चीज को जानने की कोशिश करें और आप उनको भी मोटिवेट करो, क्योंकि आपके अंदर जो है मुझे भी वो शिक्षक वाली चीजें नजर आ रही है कि आप चीजों को जल्दी पकड़ पा रहे हो। और एक अच्छे शिक्षक की ये खास बात होती है कि वो वातावरण के अंदर अपने आप को या वातावरण के अंदर जो समस्याएं हैं उनको निपटने के लिए उसी वातावरण के अंदर सोर्सेज ढूंढता है, मतलब स्रोत ढूंढता है कि किस तरीके से मैं इस समस्या को इसी वातावरण के अंदर खत्म कर दूं या इसको सोल्व कर दूं।
1: तो अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: तो मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि हमारे हर घर के आस पड़ोस में, हर गली में लोगों को बच्चों की समस्याओं के बारे में नहीं पता है कि विशेष आवश्यकता है या बच्चे के विकास में देरी हो रही है या बोल नहीं पा रहा या किसी तरीके से वो जो है अनजान है। जिन जिन श्रोताओं ने आज हमें सुना है, मैं चाहूंगा कि अगर वो थोड़ा भी उनको समझ में आया है, अगर उनके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे हैं, तो अपने नजदीकी किसी भी एनजीओ में या उन माँ बाप को उस एनजीओ का पता बताए या फिर ये देखें कि इन बच्चों के लिए समाज की कौन सी संस्था, कौन सी इकाई, कौन लोग जो काम कर रहे हैं। समाज सेवी भी होते हैं, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, जैसे रीड इंडिया जो इस प्रोजेक्ट को लेकर के आया है और वो इस पे काम कर रहा है। तो जैसे कि अगर शाहबाद, वजीराबाद और नोएडा के एक गांव की बात करूं, तो हम अगर वहां के श्रोता सुन रहे हैं तो हमारा सेंटर है जहां पे आप वहां पे बच्चों को भेज सकते हैं। और अगर जो जहां पे अभी हमने शुरू नहीं किया है, आगे चल करके हम करेंगे, तो वहां के जो लोग हैं वो अपने आस पास ऐसे स्रोत ढूंढे कि जहां पे इन बच्चों के लिए कुछ हो रहा है, चाहे स्कूल है, स्पेशल स्कूल है या फिर कोई एनजीओ है, अभी तो बहुत सारे एनजीओ वगैरह काम कर रहे हैं, या फिर एक सरकार ने एक ना शिक्षक रखा हुआ है घुमक्कड़ जिनको कहते हैं, वो सरकारी स्कूलों के अंदर आते हैं वीक में 3 दिन 4 दिन, आपके स्कूल में स्पेशल एजुकेटर है हाँ, तो वो कभी कभी आते हैं इन बच्चों को एक रिसोर्स रूम, मतलब एक संसाधन कक्ष जिसको बोलते हैं, जहाँ पे इन बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिनसे कि बच्चा पढ़ता है, जिनसे सीखता है, हाँ हाँ, तो वो एक रूम होता है हर स्कूल के अंदर, तो आप वहाँ पे भेज सकते हो। और ज्यादा ज्यादा जो है जागरूकता की कमा जरूरत है हमें आज समाज के अंदर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, उनके माँ बाप के लिए और समाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर हम सब मिलकर के इससे लड़ेंगे और इसके इसके इसको डट के इसका मुकाबला करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल नहीं है, और हम अकेले से नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम है। तो मैं ये कहूंगा कि पूरे समाज को एकजुट होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और इस चीज को जागरूकता के लिए हर स्कूल के अंदर एक एजुकेटर जो है होना चाहिए, और उसको भी गांव के अंदर जागरूकता बढ़ानी चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए कि हाँ इस तरीके के बच्चे हैं तो आप हमारे पास लेके आइए, चाहे आप उनको गृह आधारित काम दे दो या फिर उनको आप रेगुलर क्लासें लो या जो भी है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को ऐसे स्रोत ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि हम इन बच्चों को कैसे और कहाँ भेज सकें।
1: तो राजीव जी, आप हमारे कार्यक्रम शावाद की आवाज में आए, आपने हमें स्पेशल बच्चों के बारे में बताया कि आप उनको कैसे ट्रेन करते हैं। धन्यवाद।
0: धन्यवाद शाहिल जी।
2: राम राम। मैं कामिनी झज्जर जिला बादली ब्लॉक माजरी गांव से हूँ और मैं आपको एक रागिनी सुनाना चाहूंगी। तो किस्सा है रूप बसंत का। तो उसमें क्या होता है कि धारा नगरी में राजा खड़क सिंह, उनकी रानी रूपवती और उनके दो बच्चे रूप और बसंत रहते थे। तो जो रानी है वो अचानक से बीमार हो जाती है और बीमार अवस्था में राजा को पास बुलाती है और उससे कहती है कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करवाओगे। तो जो राजा है वो कहता है कि ठीक है रानी, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन जो रानी है वो कहती है राजा से कि मैंने ना एक पेड़ पर दो, एक चिड़िया और एक चिड़े को देखा है और उसने, उसकी जो चिड़िया है वो मर जाती है और जो चिड़ा है वो दूसरी चिड़िया ले आता है और वो दूसरी चिड़िया उन दोनों बच्चों को मार मार कर नीचे गिरा देती है। तो जो रानी है ये दृश्य देखकर बहुत घबरा जाती है और वे राजा से एक बात के द्वारा क्या कहती है भला। हाँ।

0: नमस्ते रीड इंडिया, मेरा नाम उमा गणेश तारो है और मैं आप सबको एक मराठी पोयम का अर्थ बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है तिफन।
1: काळ्या मातीत मातीत तिफन सालते, तिफन सालते, तिफन सालते, इज थै थै नाचते, ढग ढोल वाजवितो, ढग ढोल वाजवितो, ढग ढोल वाजवितो, सदा शिव हाकारतो, नंदी बैलाच्या जोडीला, संग पार्वती चाले, ओटी बांधून पोटाला, सरीवर सरीती, माती नाती दुती होते, कस्तुरीच्या सुवासान भूल जीवाला पडते, भूल जीवाला पडते, वाट राघूची पाहते, वाट राघूची पाहते, मैना वाटुली पाहते, सजार माझ्या ढवळ्यार, माझ्या पावळ्यार, माझ्या आहा, जोडी झाडाला टांगून, राब राबते माऊली, तीथ झोळी तल्या जीवा, होते पार की साऊली, अभिषेकात घामाच्या, सदेवाच पूजन, पीक हालती डोलती, जणू करती भजन, गाभा जोंधळ्याच तवा, सोन चांदील काकते, जशी चांदील काकते, कपाशी फुलते, काळ्या मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते, तिफन चालते, चालवून पावसाचा पाठ शिवनीचा खेळ, लोणी पायाला वाटती, माऊ भिजली ढेकळ, काळ्या ढेकळात डोळा, हिरवस पान पाहतो, डोळा सपान पाहतो, काटा पायात रुततो, काटा पायात रुतता।
0: बैलजोड़ी के साथ किसान हल चला रहा है। उसकी पत्नी बीजों को कपड़े में कमर से बांधकर किसान के साथ जमीन में बो रही है। वहां पेड़ के एक डाली से बंधे हुए झोले में किसान की पत्नी ने अपने बच्चों को सुलाया है, जो अब रो रहा है। बादल बरस रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी किसान को काम करना पड़ रहा है। खूब सारी मेहनत के बाद अब बीज में से अंकुर फूट रहे हैं। कस्तूरी जैसी उसकी सुगंध आ रही है। काली मिट्टी में किसान अपना सपना सजा रहा है। तभी उसके पाँव में कांटा चुभता है, खून बहने लगता है। शाम हो रही है। किसान की पत्नी घर आकर किसान की घर आने की राह देख रही है। बरसते बादलों के साथ किसान ने देखा हुआ हरियाली यानी अनाज आने तक का सपना भी सच होने जा रहा है। यही इस मराठी कविता का अर्थ है।

नमस्कार, सास्तकार, आदाब। मेरा नाम दीक्षा है। आप लोगों का स्वागत है रीड रेडियो पे। आज मैं आप लोग के साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगी। उस कहानी में मैं आपको कुछ मतलब बताऊंगी, देखते हैं आप समझ पाते हैं या नहीं। आइए कहानी शुरू करते हैं। मैं छोटी थी ना, तो मेरे को मेरी नानी माँ कहा करती थी, बेटा तू ना डार्क चॉकलेट मत खा, डार्क चॉकलेट कड़वी होती है, बच्चे नहीं खाते हैं। तो मैंने एक बार जाके पूछा, नानी ठीक है मैं नहीं खाती, आप क्यों खाते हो? कड़वी कड़वी चॉकलेट होती है तो चॉकलेट तो मीठी होती है, चॉकलेट तो चॉकलेट होती है। तो मेरी नानी ने मुझे समझाया कि डार्क चॉकलेट जो होती है ना, वो सबसे हेल्दी चॉकलेट होती है। बच्चों को हम डार्क चॉकलेट इसलिए नहीं देते कि वो थोड़ी चीनी उसमें कम होती है, थोड़ी मिठास कम होती है, तो बच्चों को आसानी से पसंद नहीं आती। वो मुंह में डाल के हल्का कड़वाहट फील होता है ना, तो फेंक देते हैं। इसलिए मैं तुझे मना करती हूँ कि डार्क चॉकलेट बच्चों के लिए नहीं होती, आप नहीं खाओगे। तो मैंने कहा ठीक है नहीं खाएंगे। फिर मेरी नानी ने मुझे ये बात समझाई कि एक डार्क चॉकलेट आपके लिए एक फ्रूट जैसी हेल्दी होती है। अब आप सोचेंगे डार्क चॉकलेट और फ्रूट। फिर मेरी नानी ने समझाया मुझे कि जैसे हम फ्रूट जूस पीते हैं ना, किसी भी फ्रूट का, चाहे वो ब्लूबेरी हो, चाहे वो अनार हो, चाहे वो अनानास हो, चाहे वो मौसम्बी हो, या मिक्स फ्रूट जूस हो, ठीक है ये सब अच्छा होता है। कई बार हमें कहा जाता है जब ज़्यादा बीमार होते हैं तो कुछ पर्टिकुलर जूसेस पिए जाते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है। वो डॉक्टर कहता है वो दवाई की तरह, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, हम भी कहते हैं ठीक है। तो मेरी नानी ने मुझे समझाया कि बेटा अगर आप डार्क चॉकलेट एक छोटा सा टुकड़ा खा लो ना, तो वो डार्क चॉकलेट का छोटा सा टुकड़ा एक डिजीज फाइट करने वाला एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट मतलब वो दवाई जैसे काम करता है, जैसे एक जूस काम करता है ना, जब हम बीमार होते हैं कि आप बीमार हो गए हो तो आप ये जूस पियो ठीक हो जाओगे, या नारियल पानी पियो ठीक हो जाओगे। वैसे ही बड़े बूढ़ों में अगर आप चॉकलेट का, डार्क चॉकलेट का अगर एक छोटा सा टुकड़ा खा ले, तो वो आपकी बीमारी से लड़ने में आपकी हेल्प करता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी समझ आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक छोटी सी ऐसी कहानी के साथ। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और घर पे रहिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

रोम ना बापू तेरी बेटी की शहीदी बेकार नहीं जावेगी। अरे मेडल को नहीं आंदे माई ईब ते बैरी की लाश आवेगी। अरे ईब ते बैरी की लाश आवेगी।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक पेड़ है जिसके नीचे सिंदूर से रंगे हुए कुछ पत्थर रखे हैं। ये पेड़ और ये पत्थर स्मृति हैं उस शख्सियत की जिनका नाम महान देशभक्तों में प्रमुखता से लिया जाता है। नेपोलियन की तरह सैन्य दृष्टि रखने वाले इस क्रांतिकारी ने इसी पेड़ के नीचे फांसी के फंदे को गले में डालकर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। 8 अप्रैल 1859 का दिन था जब पहली बार इस नरकेसरी को अंग्रेज गिरफ्तार करने में कामयाब हो सके। 15 अप्रैल को सैनिक अदालत में न्याय का नाटक रचा गया और 18 अप्रैल को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। एक देशभक्त की देश के प्रति मोहब्बत की पराकाष्ठा की दास्तान।

नासिक जिले के यवला नामक स्थान पर 1814 में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया रामचंद्र राव। बालक के पिता पेशवाओं के धर्मगुरु थे। वेदपाठी ब्राह्मण पिता ने बालक को पुरोहिताई की शिक्षा देनी चाहिए, पर बालक तो स्वाधीनता क्रांति का इतिहास लिखने के लिए ही जन्मा था। शस्त्र विद्या में उसकी निपुणता को देखकर बाजीराव पेशवा ने उसे एक रत्न जड़ित टोपी प्रदान की और इस तरह रामचंद्र राव तात्या टोपे बन गए। वो तात्या जो युद्ध भूमि में ही आगामी युद्ध की रणनीति बना लेते थे। विलक्षण गुणों से युक्त विलक्षण मानव।

1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे ने कानपुर को अंग्रेजों से वापस हासिल किया था। झांसी की रानी की सहायता के लिए वे कालपी पहुंचे थे और ग्वालियर पर अधिकार करके स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। छापामार युद्ध शैली के लिए विख्यात तात्या टोपे का नाम क्रांतिवीरों में खास उत्साह पैदा करता था। एक ओर वे महारानी लक्ष्मीबाई का आदर्श थे तो दूसरी ओर आदिवासी जननायक टंट्या भील और भीमा नायक भी उनके शौर्य को प्रणाम करते थे। एक बार भीमा नायक ने जंगलों में भटकते हुए तात्या टोपे को पावन सलीला माँ नर्मदा को पार करवाकर अपने आप को धन्य किया था। धन्य है तात्या टोपे, धन्य है ये भारत भूमि, धन्य है इसकी क्रांति।

हमारे देश की आजादी की लड़ाई का लंबा इतिहास दुर्भाग्यपूर्ण विश्वासघातों से भरा पड़ा है। तात्या टोपे को भी विश्वासघात का शिकार बनाया गया। विश्वासघात से की गई गिरफ्तारी और न्याय के झूठे नाटक के दौरान तात्या ने अपने आप को अंग्रेजों का प्रजाजन मानने से इनकार कर दिया। उनके कर्तव्य पेशवाओं और मातृभूमि के लिए थे। उन पर चलाया गया मुकदमा उनकी नजर में एक ऐसा स्वांग था जिसे चलाने का अधिकार अंग्रेजों को कतई नहीं था। इतिहास के निष्पक्ष विद्वान उनकी इस सोच से पूर्ण तरह रजामंद नजर आते हैं। हिंदुस्तान एक मातृभूमि, तात्या टोपे एक धरती पुत्र, अंग्रेज कौन, खामखा।

0: मानवता फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: वतन का
3: सबको मेरा नमस्कार, मैं हूं किरण गांव माजरी से। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी शायरी कहना चाहती हूं। के घणिए बोल्या करती इब कुछ दिन आते चुप हूं, के घणिए बोल्या करती इब कुछ दिन आते चुप हूं, बताओ मन्ने के मैं इसीये थी जिसी इब हूं, बताओ मन्ने के मैं इसीये थी जिसी इब हूं। इनकी हर बाता ने रुवाई हूं, इनकी हर बाता ने रवाई हूं, इनकी हर आदता ने सताई हूं, इनकी हर आदता ने सताई हूं। माँ बाबू भाई भाण, माँ बाबू भाई भाण, हर रिश्ते त भरी है मेरी जिंदगी, पर मन ने ना बेरा मैं क्यों ना खुश हूँ, बताओ मन्ने के मैं इसीये थी जिसी ईब हूँ, बताओ मन्ने के मैं इसीये थी जिसी ईब हूँ। मैं भी फूल की तरिया चाहूँ हूँ खिलना, मैं भी फूल की तरिया चाहूँ हूँ खिलना, मैं भी चिड़िया की तरिया चाहूँ हूँ चहचहाना, मैं भी चिड़िया की तरिया चाहूँ हूँ चहचहाना। और तू के कर लेगी, और तू बाहर निकड़ कर के कर लेगी, रोकी हूँ माँ बाबू और चाचा ताई का कहना, मानी हूँ माँ बाबू और चाचा ताई का कहना, बताओ मन्ने के मैं इसीये थी जिसी ईब, बताओ मन्ने के मैं इसीये थी जिसी ईब। रोना चाहूँ रोना पाऊँ, हंसना चाहूँ हंसना पाऊँ, रोना चाहूँ रोना पाऊँ, हंसना चाहूँ हंसना पाऊँ, और चाहूँ मैं भी कुछ घर का था अलग करना, पर कुछ अपना नहीं रोकी हूँ, और उन अपना के खिलाफ मैं जाना पाऊँ। नमस्कार।
4: पर्यावरण प्रदूषण, आज सभी की एक ही पुकार, पर्यावरण में अवश्य करो सुधार। हमारे पर्यावरण को मुख्य रूप से चार तरह के प्रदूषण से खतरा है। भूमि प्रदूषण, बनावटी खादों के प्रयोग से भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। भूमि बचाओ नहीं तो बीमारियां पाओ। जल प्रदूषण, बड़े बड़े कारखानों का गंदा पानी तथा कूड़ा कचरा नदियों में मिलकर उसके जल को प्रदूषित कर रहा है, हमें इसे रोकना होगा। जल है तो कल है। वायु प्रदूषण, पेड़ों के काटने से, कारखानों और वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण फैल रहा है, मनुष्य को इससे सांस की कई बीमारियां हो रही हैं। पेड़ लगाओ देश बचाओ। ध्वनि प्रदूषण, बड़े बड़े कारखानों, वाहनों के शोर, विवाह शादी में ऊंची आवाज में बजते गाने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे उच्च रक्तचाप तथा बहरेपन जैसी बीमारियां हो जाती हैं। बंद करो ये शोर शराबा, नहीं तो सुनोगे आधा आधा। प्रदूषण के कारण ही भूकंप, सूखा

आदि का प्रकोप भी झेलना पड़ रहा है। पर्यावरण पर बड़ी बड़ी बातें करने से पहले हमें खुद कई प्रयास करने होंगे, जैसे कि घरों में पानी की टैंकियां ओवरफ्लो ना हो, इसका तो हमें अवश्य ध्यान रखना होगा। कारों को धोना बंद करें और सिर्फ गीले कपड़े से ही पहुंचें। कूड़ा खाली प्लाट तथा सड़कों पर ना डालकर कूड़ेदान या कूड़े वाली गाड़ी में ही डालें। अपने आसपास पेड़ लगाएं, उन्हें पानी दें, उनकी देखभाल करें। कम से कम अपने प्रत्येक जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं। बाजार जाते समय अपने पास कपड़े या जूट का एक थैला अवश्य रखें। कहीं आसपास जाना हो तो पैदल जाएं या साइकिल पर। घर में पानी, बिजली, ईंधन आदि की बचत करने का प्रयास करें। घर में सभी एक साथ खाना खाएं ताकि खाना बार बार गर्म ना करना पड़े। आइए आज हम सभी मिलकर प्रण लें कि हम पर्यावरण दिवस सिर्फ 5 जून को ही ना मनाकर हर रोज ही मनाएंगे।

0: हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जी दोस्तों, मैं हूँ संजना। मैं झज्जर जिले के माजरी गांव से हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का प्रोग्राम दहेज प्रथा पर है, तो दोस्तों आइए सुनते हैं ये दहेज की कहानी।
1: बहू बहू, जरा सुनती हो?
2: क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया?
1: बुलाया तो है, मगर तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया है। तेरे माँ बाप ने जो 3 लाख रुपए गाड़ी देने की जो बात की थी, वो पैसे और गाड़ी अब तक देने क्यों नहीं आए?
2: माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? उन्होंने मेरे पढ़ने लिखने में सारे पैसे लगा दिए।
1: अपने पापा से कह देते, अपना मकान गिरवी रखकर दहेज के पैसे दे देती।
2: माँ जी, मुझे घर से मत निकालो, मैं अपने घर से दहेज ले आऊंगी।
1: दहेज के तो पैसे नहीं लाई, मेरी माँ से ऐसे जुबान लड़ाएगी? निकल जा मेरे घर से।
2: माँ जी, मुझे मत निकालो।
3: बाबूजी।
4: हाँ बेटी।
2: मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा है कि जब तक तुम पैसे नहीं लेके आओगे, जब तक तुम्हारी शक्ल नहीं मत दिखाना।
4: ठीक है तो बेटी, मैं घर को गिरवी रख कर दहेज के पैसे दे दूंगा।
2: अगर वो अपने लिए पैसे मांग सकते हैं, अपने लालच को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो पापा मैं आपके साथ हूँ। कोई जरूरत नहीं है आपको घर गिरवी रखने की। आप है तो हम है, किसी से दबकर नहीं, सिर उठाकर और अपनी हिम्मत से जीना सीखिए।
0: तो दोस्तों आपने सुना, दहेज लेना और देना पाप है। तो दोस्तों संजना को दीजिए इजाजत, तो कल मिलेंगे इस समय और इसी चैनल पर। आप सबको मेरा नमस्कार।
5: नमस्कार सभी सुनने वालों को, मैं अनुजा आपके साथ, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फरहा। फरहा रामपुर से आई हैं। फरहा अपने आप में एक कहानी है, एक व्यक्ति हैं जिनका उदाहरण हम दे सकते हैं पूरी दुनिया की औरतों के लिए, एक ऐसे उदाहरण के तौर पर जो किस तरीके से अपने घर से बाहर निकली, छोटे से गाँव से, और किस तरीके से उन्होंने अपने को आज वहां लाकर खड़ा किया है जहां पर वो खड़ी हैं। तो फरहा आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
6: नमस्कार मैम।
5: और फरहा ये बताइए कि बचपन से आप याद करिए अपनी कहानी, आज तो आप काफी बड़ी हो गई हैं, और पहले जाइए बचपन में जब आप छोटी थी, कहाँ की रहने वाली थी, घर में कौन कौन था और क्या करती थी?
6: मैं आगापुर की रहने वाली थी और मेरे 4 बहन भाई हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। 3 बहन 1 भाई हैं, और हम बहुत ही मतलब गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे जहाँ से मैंने इंटर पास किया था। और मेरा गांव वो गांव है जिसमें लड़कियां मतलब आगे नहीं बढ़ सकती, पढ़ नहीं सकती, सिर्फ घर में ही रह के मतलब इंटर करके पढ़ाई वढ़ाई करके खाना वाना बनाना है और उनकी शादी कर दी जाती है।
5: तो आपके फादर क्या करते, आपके पिता क्या करते थे, माँ क्या करती थी?
6: मेरे पापा की ड्राई क्लीन की दुकान थी छोटी सी, जिसमें वो प्रेस करते हैं, और मेरी मम्मी उन्हीं के साथ काम करती थी।
5: और जब आप मम्मी पापा पढ़ने जाती थी, छोटी थी जब, बहुत छोटी थी जब पढ़ने जाने लगी स्कूल, तब तो गांव के स्कूल में पढ़ती होंगी। जब आप और बड़ी हुई और स्कूल आगे बड़े क्लास में गई, तो कैसा माहौल था गांव में आपके पढ़ाई के बारे में?
6: पढ़ाई के लिए मेरे जितने भी मतलब आसपास के लोग थे, गांव के लोग थे, और मेरे जो रिश्तेदार थे, वो मेरे मम्मी पापा से यही कहते थे कि अब फरहा को मत पढ़ाइए, काफी बड़ी हो गई है और इतना पढ़ा के करना क्या है, कोई जॉब तो आपको करानी नहीं है, क्योंकि हम लोगों में जो मुस्लिम इलाका है वहां पर कोई भी लड़की मतलब बाहर नहीं निकलती है, मतलब एक सिर से जो दुपट्टा होता है हमारे यहाँ, बुरखे के बगैर लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं। तो वहां पर वो मेरे पेरेंट्स से सभी लोगों ने मना करा, मेरे मोहल्ले वालों ने, मेरे गांव के लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, कि फरहा को मत पढ़ाइए और यहीं पर ही पढ़ाकर इसकी शादी कर दीजिए।
5: और बड़े होने की वजह से सबसे दबाव आपके ऊपर आया?
6: जी मैम, सबसे बड़ी मैं थी।
5: हाँ, तो ये बताइए कि आज आप कितना पढ़ाई कर चुकी हैं?
6: मैं आज बीटीसी कर रही हूँ, जो बीए भी कर लिया है मैंने इंटर के बाद, एमए भी कर लिया है, एमए के बाद आज बीटीसी कर रही हूँ।
5: तो ये कैसे संभव हुआ?
6: ये मैं एक रीड इंडिया एनजीओ है जिसके साथ मैं इंटर में जुड़ी, और वहाँ पर एक हमारे ही छोटे से गांव में मतलब रीड इंडिया के नाम का एक सेंटर खुला था जिसमें काफी लाइब्रेरी थी, सिलाई था, पार्लर थे, कंप्यूटर है। तो मुझे वहीं के एक सर ने मुझे बताया कि ऐसे से वहाँ पर वैकेंसी खाली है ईसीटी टीचर के तौर पर, तो मैं वहाँ पर मतलब चुनी गई, मेरा इंटरव्यू हुआ और मुझे ईसीटी के लिए वहाँ चुना गया। लेकिन मेरे पेरेंट्स मना कर रहे थे, मतलब आसपास के लोगों ने मना करा तो सब लोग मना करने लगे, लेकिन मैंने खुद से ही मतलब एक आत्मविश्वास आया कि शायद मैं कर सकती हूँ। मैंने बोला मम्मी पापा से इजाजत ली कि मैं मतलब कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको कोई परेशानी हो या आपका सर मेरी वजह से झुके। तो मैं मतलब उनके विश्वास को मतलब जीत कर उनसे बहुत अच्छे से वादा कर कि मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं आएगी, तो उनसे मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके उन्होंने उस चीज के लिए हाँ कर दिया कि ठीक है आप सीधे सेंटर जाओगे, सेंटर से घर आओगे, उससे आपको किसी से मतलब नहीं होगा कुछ नहीं। मैंने बोला ठीक है, तो इसी तरीके से मैं सेंटर से जुड़ी।
7: तो कितना साल हो गया है सेंटर से जुड़े हुए आपको?
6: मुझे आज 6 साल हो गए सेंटर से जुड़े हुए।
7: क्या किया है इस बीच में? आप तो ईसीडी की टीचर के तौर पर छोटे बच्चों के संग पढ़ाने के लिए आप जुड़ी थी, क्या क्या सीखा है इस सेंटर से जुड़कर?
6: सेंटर से जुड़कर मेरे अंदर सबसे पहले बदलाव आया कि लोगों से बातचीत कैसे करी जाती है। लोगों से मतलब बहुत डरती थी कि मतलब लोगों के बीच जाना, लोगों से बातचीत करना, गांव का बाहर का माहौल कैसा होगा, क्या होगा। तो सेंटर से जुड़कर मुझे मेरे अंदर ही खुद कॉन्फिडेंस आया, बहुत सारे बदलाव आए, मैं लोगों से बातचीत करने लगी, लोगों से जुड़ने लगी, मेरी एक गांव में अपनी पहचान बनने लगी सेंटर से जुड़ने के बाद। फिर मतलब मेरी पोस्टिंग भी बढ़ती गई ईसीडी से, फिर मुझे कंप्यूटर टीचर, उसी बीच मैंने कंप्यूटर क्लास लेनी शुरू कर दी। मेरे माँ बापों को लगा कि हाँ शायद मेरी लड़की कर रही है तो आगे बढ़ सकती है, तो मैंने इसी बीच कंप्यूटर की क्लास लेना शुरू कर दी। वो मैंने 6 मंथ तक कंप्यूटर भी सीखा। कंप्यूटर सीखने के बाद मुझे फिर कंप्यूटर की टीचर बना दिया गया, मेरी पोस्टिंग हो गई। तो मेरे माँ बापों को मुझे बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा खुशी मिली और मैं इसी तरीके से आगे बढ़ती चली गई। और एक कॉन्फिडेंस जो मतलब दिल से होता है ना, वो मतलब बढ़ने लगा कि हाँ मैं अब सब कुछ कर सकती हूँ। मतलब एक दिल से पूरी आवाज निकलने लगी, हाँ फरा आगे बढ़ और तू कर सकती है।
7: वो तो केवल घर से सेंटर तक जाने की
6: जी
7: बात थी। आज आप यहाँ बैठी हो दिल्ली में, द्वारिका में।
6: जी मैम।
7: ये कैसे संभव हुआ?
6: फर्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली में आई थी तो मेरी मम्मी मेरे साथ आई थी। उन्होंने कहा कि मैं मतलब दिल्ली का नाम सुन के ही मतलब मेरी मम्मी तो एक तो गांव की बात थी कि उन्होंने सेंटर के लिए हाँ कह दी, लेकिन दिल्ली का नाम सुन के तो मेरे पापा और मम्मी ने डायरेक्ट ही मना कर दिया था कि नहीं वहां तक नहीं जा पाएगी। तो फिर दिल्ली में गीता मैम से बात करी सर ने कि उसकी मम्मी आ सकती है, तो मेरी मम्मी मेरे साथ आई। उन्होंने यहाँ का माहौल देखा, यहाँ की सुविधा देखी, यहाँ देखा कि सब लोग मतलब बहुत ही अच्छे हैं, और सबसे पहले जो गीता मैम हमारी कंट्री डायरेक्टर है वो तो बहुत ही अच्छी है। वो मतलब ऐसे लड़कियों के लिए तो ऐसे मतलब सुविधा रखती है कि यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो उन्होंने मतलब एक गीता मैम से मिलके और सारे स्टाफ से मिलके उन्हें लगा कि हाँ ये हमारे घर के परिवार के जैसा है, और उन्होंने मुझे आने के लिए।
7: क्या उम्र थी आपकी उस वक्त जब पहली बार आप दिल्ली?
6: जब मैं पहली बार दिल्ली आई थी तो शायद 18 साल की होंगी, 18 मतलब 19 ऐसी थी। और दिल्ली आके जब मैंने देखा मतलब मुझे अलग ही माहौल लगा, और मैं मतलब ऐसा लगे कि सारे सपने स्वीकार होते दिख रहे हैं मुझे। मतलब एक गांव की छोटी घर में रहने वाले और मतलब एकदम इतना अच्छा माहौल मिले और फिर मम्मी यहाँ तक लाए मुझे, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि जिस वक्त वो मेरे साथ आई थी और मुझे लेकर आई और उन्होंने सब घुमाया, उन्होंने खुद देखा, उन्हें लगा कि हाँ मेरी लड़की कर सकती है।
7: तो रीड इंडिया सेंटर से जितनी भी लड़कियां, क्योंकि रीड इंडिया की तो बहुत सारी सेंटर्स पूरे देश में खुले हुए हैं, तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं उनको बताना चाहेंगी आप रीड इंडिया के बारे में, उसके काम के बारे में, और क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों के लिए?
6: मैं लड़कियों के लिए यही कहना चाहूंगी कि मतलब किसी भी चीज के पीछे डरे नहीं। और रीड इंडिया हमारा एक ऐसा सेंटर है जो लड़कियों के प्रति मतलब उनके अंदर आत्मविश्वास लाता है, उनको जागरूक करता है, उनको बताता है कि मतलब लड़कियां किसी से कम नहीं है, लड़कियां अपने में एक आत्मविश्वास है, खुद भी कुछ भी कर सकती हैं। लड़कियां लड़कों से कम ना समझे, लड़कियां ये नहीं सोचे कि हम घर में रहेंगे तो मतलब हमारे पड़ोस वाले क्या कहेंगे या हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, नहीं, उसे सिर्फ अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए और अपने माता पिता पर निर्भर होना चाहिए। और रीड इंडिया ऐसा एनजीओ है जो मतलब लड़कियों को आगे बढ़ने की क्षमता देता है, और रीड इंडिया के साथ हर लड़की को हाथ मिलाकर चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
7: आपने बताया था कि आपके गांव में मुस्लिम समुदायों में और भी जगह हम देखते हैं कि बच्चियों की बहुत जल्दी शादी कर देते बहुत कम उम्र में।
6: जी मैम।
7: और आपको मौका मिला, आप आगे बढ़ी।
6: जी मैम।
7: तो क्या सपना लेके आप आगे बढ़ी और आगे क्या करना चाहती हैं?
6: सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जब मेरे माँ बापों ने मुझ पर विश्वास करके मुझे आगे बढ़ाया है तो मैं उन्हीं के लिए ये सब करना चाहूंगी। मैं मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं खुद अपने पैसों से मैं अपने माँ बापों को हज करवाना चाहूंगी कि वो हज करें मेरे पैसों से। कभी ये नहीं सोचना, क्योंकि हमारे यहाँ लड़के माँ बापों को हज करवाते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ जो लड़कों की कमाई होती है उससे ही माँ बाप हज करते हैं, लेकिन मेरा एक अपना ही सपना है कि मैं अपने ही पैसों से अपने माँ बापों को हज करवाऊं।
7: और शादियां तो बहुत जल्दी होती हैं, आपकी आपने अभी तक नहीं करी क्योंकि 18 साल की उम्र में आप पहली बार तो शहर से बाहर निकली थी, गांव और शहर से बाहर निकली थी। आज कितनी उम्र हो गई है आपकी?
6: मेरी आज 24 साल की उम्र हो गई है।
7: तो कैसे सोचती हैं, शादी को कैसे देखती हैं और क्या लगता है आपको कि आगे अगर करती हैं कब करेंगी और कैसे उसको जीवन को आगे ले जाएंगी?
6: शादी के लिए भी मतलब माँ बाप घर वाले सब मतलब बहुत ज्यादा सीरियस, लेकिन मैं शादी अभी नहीं करना चाहती। मैं अपने माँ बापों के लिए पहले वो पैसा जोड़ के रखना चाहती हूँ जिससे वो हज कर सके। मैं अपने भाई को काबिल करना चाहती हूँ कि वो आगे मतलब मेरे घर को आराम से लेके चले। मेरा एक ही भाई है और मैं अपनी बहनों की पढ़ाई मतलब अच्छे से करना चाहती हूँ कि वो अच्छी ही जॉब में लगे मेरे साथ, मतलब पढ़े, उनकी पढ़ाई किसी भी वजह से रुके नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के अभी इतनी मतलब
7: आर्थिक क्षमता नहीं है,
6: क्षमता नहीं है कि वो इतना सब कुछ कर सके। अभी जो भी चल रहा है मेरे ऊपर ही चल रहा है और थोड़ा बहुत मेरे भाई के ऊपर। तो मैं ये सब अपने घर वालों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती।
7: तो आप इस पैसे से जो जो कमा रही हैं उसको बचा के अपने परिवार की मदद करती हूँ?
6: जी मैम,
7: बहुत सारी शुभकामनाएं फरहा कि आपके सारे सपने सच हों। और देखिए, फरहा अकेली लड़की नहीं है, फरहा जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो बहुत संघर्ष से निकल के आई हैं और उनमें से बहुतों को रीड इंडिया जैसी संस्था ने या उस जैसी काम करने वाली और संस्थाओं ने और खुद रीड इंडिया ने, क्योंकि रीड इंडिया बहुत सारे प्रदेशों में काम कर रहा है, तो उन ऐसी बहुत सी लड़कियों को मौके दे करके उनकी हिम्मत बढ़ाई है, उनको मजबूती दी है, उनको रास्ता दिखाया है, उनके सपने पूरे करने के लिए उनके भीतर एक आत्मविश्वास जगाया है। मुझे उम्मीद है कि ये यात्रा जारी रहेगी। अगले ऐसे ही किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
8: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
9: हेलो, मेरा नाम नीलम है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ। मुझे यहाँ पे एक बार रीड इंडिया वाले हमारे उधर सर्वे करने आए थे, उनके थ्रू मुझे रीड इंडिया के बारे में पता लगा, फिर मैं इधर आने लग गई, मैं रीड इंडिया से जुड़ गई। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ से पार्लर भी सीखा है और कंप्यूटर भी। इस टैग के कोर्स में मैंने आईटी बनाना और किसी की लोकेशन सेंड करना, और पहले मैं घंटों उसकी लाइन में बैंक की लाइन में खड़ी रहती थी, बट जब से फ़ोन मतलब इसकी नॉलेज मुझे हुई है कंप्यूटर की, तब से मैं अपने फ़ोन में ये डाउनलोड करके कहीं भी पैसे सेंड कर सकती हूँ, पैसे भेज सकती हूँ, और उससे मतलब कैब करके मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और सबसे बड़ी बात जो रीड इंडिया से जुड़ने के बाद मेरे साथ हुई है वो ये कि मैं घर में रह के डिप्रेशन में रहने लगी थी, अब मैं फ्री माइंड हो गई हूँ, मैं मतलब आज़ाद होकर सोच सकती हूँ और थोड़ा मेरा दिमाग भी मतलब सही रहने लग गया है। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी घर में रह के, मैं बाहर भी कहीं नहीं जाती थी और घर में रह के यही रहने लग गया था, बस डिप्रेशन नहीं रहने लग गया था। अब यहाँ आके मैं बिल्कुल ठीक रहने लग गई हूँ। हाँ, मैं हाउसवाइफ के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बाहर आइए, आपको नहीं सीखना नहीं है वो ठीक है, बट आप आइए, सीखने के बहाने से ही आइए ताकि आप मतलब मेंटली तौर पर सही रह सकें और आपको एक दूसरे से बात करके कुछ नया पता लगे, मतलब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो कुछ अच्छा ही पता लगे अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में, बहुत कुछ आप यहाँ आके जान सकते हैं। थैंक यू रीड इंडिया।
10: हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लेंसी एंड आई पास 10th क्लास, देन आई थिंक टू जॉइन रीड इंडिया एकेडमी टू इम्प्रूव माय कंडीशन। मैंने एकेडमी ज्वाइन की रीड इंडिया और उसमें हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ TEG, टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स। ये एक कोर्स है जो वुमेन और गर्ल्स के लिए है। ये वुमेन और गर्ल्स की बैड कंडीशन को इम्प्रूव करता है। जैसे पहले घरों में महिलाएं निकलती नहीं थी और कोई निकलने नहीं देता था, भाई और उनके पिता, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ये प्रोग्राम चला है तो इसके लिए सब यहाँ पे वुमेन और गर्ल्स आती हैं, कंप्यूटर कोर्स करती हैं और सिलाई करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं जिनसे वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं और आगे भी एक प्रोग्राम चल रहा है। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया है 21 डेज का भी, और मैं बेसिक कंप्यूटर भी कर रही हूँ, और मैंने इंटरनेट के थ्रू मेलिंग सीखी है, वेबसाइट से लिंक बनाना सीखा है, और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी है। पहले मतलब मुझे कुछ नहीं करना आता था, मुझे किस सबकी ज़रूरत होती थी, लेकिन आज कल मैं खुद कर रही हूँ ये सब और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती, बस मैं बहुत इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया एकेडमी।
11: Good afternoon, my name is Tanu Tanwar. I passed 10th class and I joined Read India Academy in Shahabad, Mohammadpur. This is only one academy who teach us computer. This academy helps to be a woman independent. Read India starts TAG program for girls and women only to improve the bad condition for women. And it helps us in form filling and also we help our parents. Then we also reserve tickets. Thank you.
12: I am Shweta. I study in IGNU University or I done NPTT course for Polytechnic Institute, Rajouri Garden. और हमारे जो यहाँ पे शाहबाद में ये है ना NGO, मैं यहाँ से क्लासेस ले रही हूँ टैग की, तो इससे मेरे को काफ़ी चेंजेस आए हैं और थोड़ा सा लगा के भाई यहाँ पे आके हाँ बाकी को भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी हेल्प है, मतलब टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, कोई दबाव नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, और दूसरा फिर इससे ये है कि नॉलेज बढ़ती है यहाँ पे आके एक दूसरे को, मतलब हम जाके जैसे हम आ रहे हैं किसी को बता रहे हैं डिटेल दे रहे हैं तो इससे काफ़ी चेंजेस आते हैं, मतलब किसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो पास में है और ऊपर से यहाँ पे कोई ऐसे प्रेशर वाली बात नहीं, ऐसे कोई मतलब फोर्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए, कोई बता नहीं रहा, इसमें ये होता है। और मतलब होना चाहिए कि हर घर से कोई एक भी आए ना, तो ये नहीं मतलब कि सिर्फ घर में या एक फैमिली में, इसमें पूरे एरिया में चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लाना चाहें तो। और उसके बाद जैसे होती है ना फैमिली टाइम से पहले मतलब लड़कियों को मतलब घर बिठा लेते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कंडीशन लगा लो, कुछ भी हो, जिससे लड़कियां घर बैठ जाती हैं, पढ़ाई कर नहीं पाती, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे, इसमें लाइन में आने से, क्योंकि इसमें मतलब इतना कोई ज़्यादा हाई फाई फीस वगैरह भी नहीं लगती कि जिससे भाई कोई अफोर्ड नहीं कर पाए, इसमें नॉर्मली होता है फाइनली, मतलब ये कि जैसे नॉर्मली फैमिली होती है वो भी कर सकती है और जो मतलब बिल्कुल लो होती हैं वो भी कर सकती हैं। और जैसे मतलब भाई होती है कुछ फैमिली जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ लड़कों को करती हैं कि भाई लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ सकती, और शादी वादी कर देते हैं, उनकी पढ़ाना नहीं चाहते उनको आगे, तो उनके लिए भी मतलब है कि भाई वो कर सकती हैं आके, तो उनको लगेगा, खुद ही लगेगा, मतलब चेंजेस आ जाते हैं। और इससे मतलब इतना कुछ सिखाते हैं हमें यहाँ पे ये कि मतलब हमें खुद लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग वर्क में, और हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन मतलब कुछ भी वर्क है वो हम कर सकते हैं, तो इससे हमें हमारी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं और घर वालों के में भी आते हैं, और इससे ये आगे हमारा जो फ्यूचर होता है ना वो सेव हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज अपने पैरों पर खड़े तो तभी तो अपने बच्चों को हम बना सकते हैं मतलब इंडिपेंडेंट। अगर बच्चों को कुछ सिखाना तो उसके लिए पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इससे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ जानकारी होगी, हमें कुछ डिटेल्स होंगी, तभी हम किसी के सामने मतलब रख सकते हैं। एक शादी करना और मतलब लाइफ को घर में दबा के रखना, ख़त्म कर देना, सब कुछ नहीं होता आज के टाइम में, मतलब जितना बढ़ो आगे उतना कम है, और हर किसी को बढ़ना चाहिए, किसी एक को नहीं, हर किसी को, जहाँ से जैसी हेल्प मिलती है जो मिलती है वो करनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ यही कर सकता है, यही बोल सकता है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है, सबको है मतलब एक फ्रीडम होती है अपने आप में, लाइफ अपनी है, किसी का प्रेशर नहीं होता कोई के मतलब हम किसी के प्रेशर में आके अपनी लाइफ ख़राब कर दे या मतलब बोल ले नहीं, कुछ नहीं करे, आगे नहीं बढ़े। एक दो बार मतलब होता है भाई, डर होता है एक, लेकिन बार बार निकलने से ना सब डर खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है ख़त्म करने से ख़त्म होएगा, ऐसे डरने से तो डर बढ़ता ही है, कोई मतलब दूसरा उसको ख़त्म नहीं कर सकता आके। अब हम हैं जैसे कुछ होती हैं लड़कियाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को फ्रीडम होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे सिर्फ पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया, बाकी फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि सबको ये था ट्वेल्थ कर लिया पास आउट हो गया स्कूल शादी कर दो ये वो, लेकिन मेरे पेरेंट्स शुरू से वर्किंग है तो वो चाहते हैं, उनको पता है पैसे की कीमत क्या है, तो वो चाहते हैं मतलब तो बच्चे कुछ अच्छा करें ताकि उनको इस लाइन में ना जाना पड़े और वो अपने पैरों पे खड़े हो, मतलब अच्छे से अच्छा काम करें और दुनिया में मतलब उनकी एक अलग पहचान हो, तो इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ हूँ। और एक शादी की तो एक लास्ट में एक वो होता है कि भाई अब तो करनी है, वो तो एक लास्ट मोमेंट होता है कि अब तो भाई स्टेप लेना ही है, उससे पहले ना सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना चाहिए कैसे लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, ज़रूरी नहीं होता कि मतलब घर वालों ने बोल दिया आप सुन के बैठ गए चलो भाई कोई नहीं, उनको समझाना चाहिए अपने तरीके से, ऐसे भी नहीं कि लड़ लो ये कर दो वो कर दो, नहीं प्यार से समझाओ, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताओ क्या चल रहा है लाइफ में, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है। और वैसे भी आजकल तो हर कोई लड़का भी अच्छा नहीं मिलता, हर कोई फैमिली भी अच्छी नहीं मिलती, वो तो किस्मत की बात है, सुख दुख तो किस्मत का होता है, तो इसलिए हमें जितना हो सके ना अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिपेंडेंट होकर मतलब सोचना चाहिए, लास्ट एक मोमेंट होता है जो स्टेप लेना है, उससे पहले अपनी लाइफ बनाओ, जो करना है वो करो, बाकी करो सिर्फ ऐसा ही कि घर वालों को भी अच्छा लगे और खुद का भी एक स्टैंड और दुनिया में अपनी पहचान हो।

0: Hi, welcome everybody, all our viewers who've joined us today in another inspiring episode of Imbibing Grassroots Leaders. This program is an initiative of Read India supported by Read Connect Council and Folk Brain. Today's guest, as everybody shared, that's Dr. Nidhi Gulati. Welcome, Dr. Nidhi, to our channel.
1: Thank you so much. Thank you, Read India and Read Council, Read Connect Council, for letting me take part in this wonderful episode.
0: So how this journey has been of your childhood, education, what kept on inspiring you?
1: Smita, since childhood, I had a dream. Mera bahut dream tha ki mujhe kuch life mein karna hai. डॉक्टर बनना है एंड माई पेरेंट्स बोथ माई मॉम एंड माई डैड उनका भी बहुत ड्रीम था कि मैं हम अपने बेटी को कुछ अच्छे से एजुकेशन देकर उनको उसको डॉक्टर बनाएंगे एंड वी डिड इट आई डिड इट एंड मैंने डेंटल किया मैंने सुभारती डेंटल कॉलेज से डेंटल का स्टडी किया एंड उसके बाद इट वॉज अ जर्नी ऑफ 5 years उसके बाद मैंने आकर अपना गुड़गांव में ही कुछ डॉक्टर के साथ ज्वाइन होकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी बट उसके बाद फिर आई गॉट मैरिड टू अ लखनऊ एंड देन आई स्टार्टेड विद द कॉलेज आई वेंट टू द कॉलेज सरस्वती डेंटल कॉलेज एंड हेयर इन लखनऊ एज अ लेक्चरर Then I quit it after 2 years because of my family journey went on. But since childhood, मेरा बहुत dream था कि मैं कुछ अपने life में बनूं और अपने society के लिए अपनी community के लिए मैं कुछ कर सकूं.
0: ये जो passion था इसको पूरा करने की जो आपने एक exit थी उसको आपने किस तरीके से अपने हाथों में लिया क्या opportunities आई और आपने कैसे उसको mold किया अपने डॉक्टर के जो रोल था उसको आपने कैसे मोल्ड किया एक सोशल इंस्पायरिंग लीडर के रूप में
1: स्मिता व्हेन आई गॉट इनटू अ फैमिली वे तब मैंने कुछ नहीं किया था आई वाज एट होम बिकॉज़ डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू स्टे एट होम बट आफ्टर माय डॉटर वाज बोर्न समायरा वाज बोर्न इनिशियली आई डिडंट वर्क फॉर बिकॉज़ आई वाज लुकिंग आफ्टर हर मैं उसकी देखभाल कर रही थी एंड वो छोटी थी तो आई कुडंट लीव हर एट होम आफ्टर एन ईयर एंड अ हाफ और टू रीड इंडिया केम टू माई लाइफ एंड विद माई हस्बैंड सपोर्ट सौरभ का बहुत सपोर्ट था मेरे साथ कि आप ज्वाइन करो आपने कुछ नहीं डेंटल में कुछ नहीं किया एंड यू बिकमिंग बींग अ डॉक्टर आप डॉक्टर हो तो आपको अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए एंड रीड इंडिया इज एन एनजीओ जहां पर आप हेल्थ को लेकर अपना कर सकते हो तो ही वाज अ बिग सपोर्टर बाय माय साइड एंड मैंने किया मैं रीड इंडिया को ज्वाइन किया इनिशियली आई वेंट टू गुसाईगंज एंड बाराबंकी सेंटर्स टू गिव द हेल्थ सेशंस टू द कम्युनिटी वर्कर्स देयर इटसेल्फ और बहुत इंस्पायर किया मुझे ये चीज मुझे एक अंदर से बहुत पैशनेट था कि मैं ऐसे लोगों को अपनी एजुकेशन अपनी अंदर का एक एजुकेशन है अपनी अंदर की एक सोच मैं उनको बता रही हूँ कि हाँ आप ये कर रहे हैं आपको ऐसे करना है अपनी हेल्थ के साथ आपको हाइजीन मेंटेन करनी है आपको साफ सफाई रखनी है और मैंने उनको बहुत समझाया 2 साल तक मैंने उनको बहुत एजुकेशन दिया हर एक बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन पे और बहुत सारी डिजीजेस पे भी मैंने उनको बहुत समझाया एंड नाउ वो इतना अपनी उसको इतनी लाइफ में फॉलो करते हैं एंड दे कॉल मी कि मैम आपका समझाया हुआ इतना काम आ रहा है आजकल कि थैंक्स टू यू टू गिव मी सच एन एजुकेशन टू अस
0: डू यू वांट टू शेयर some challenges support system of your extended family or in-laws
1: yes
0: about
1: yes.
0: women and the support system and the power that we have yes. as leaders
1: main apni daughter ko school chhodti thi matlab she was in a play group main apni daughter ko play group mein chhod kar then I used to go to gusaiganj wahan par main session leti thi health ka aur life skill ka uske baad जो स्कूल का टाइम होता था मैं कम्युनिटी पे डिवोट करती थी एंड देन आकर मैं अपनी डॉटर को पिक कर घर आकर देन आई यूज टू स्पेंड टाइम विद हर. सो ये जो टाइम था जो कम्युनिटी के साथ था वो मेरी फैमिली ने सपोर्ट दिया कि नहीं आपको कुछ करना है आप जाओ वी विल टेक केयर ऑफ द होम. डॉक्टर मेरी स्कूल में थी मैं कम्युनिटी पे देन आई यूज टू पिक हर अप फ्रॉम द स्कूल एंड टेक हर बैक टू होम और फिर अपना टाइम डॉटर के साथ स्पेंड करना.
0: वेरी नाइस. आप ये जो पिक्चर्स हैं इनके बारे में आप कुछ हमारे व्यूअर्स को यू वांट टू एक्सप्लेन वेयर दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर अबाउट द कम्युनिटी.
1: दिस इज गोसाईगंज. ये गोसाईगंज की पिक्चर्स हैं. यहाँ पर मैंने अराउंड 200 अबव औरतों को हेल्थ के बारे में शिक्षित किया है. यंग गर्ल्स को हम लोगों ने लाइफ स्किल्स के बारे में बताया है. ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जिनको मैंने प्यूबर्टी के बारे में बताया था. लड़कियां हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं थी प्यूबर्टी एंड मेंसेस के बारे में उनको मैंने शिक्षित किया था. इसमें ऐसे बहुत सी प्रोग्राम सेशंस मैंने हेल्थ के ऊपर गोसाईगंज वालों के साथ लिए हैं जहाँ पर मैंने उनको हेल्थ एंड हाइजीन डेंटल हाइजीन एंड आपका डेंटल डिजीजेज ओरल हेल्थ की डिजीजेज बिकॉज डेंटिस्ट थी तो मैं इसका ज़्यादा इनको बता सकती थी. पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे मैंने बहुत सेशंस लिए थे यंग गर्ल्स के साथ गोसाईगंज में. या मैंने ये वाला जो फोटो है ये हमने हैंड वॉश के ऊपर सेशन लिया था बीच गांव में जाकर जहां पर लोग आ नहीं पा रहे थे सेंटर में. सो आई वांटेड टू टेक अ सेशन विद देम एंड इफ आई
0: नॉट दिस वाज बिफोर कोविड.
1: दिस वाज बिफोर कोविड.
0: हमें कोई अंदाजा भी नहीं था आज दुनिया में ऐसा कोविड सा कुछ आएगा. तब से हम ये हेल्थ के वॉश के सेशन आपके थ्रू कर रहे हैं.
1: एग्जैक्टली ये हम बिफोर कोविड के बारे में था एंड अब जब कोविड आया है तो ये सारी इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास है. सो दे आर वेल अवेयर कि हमें कब हाथ धोने चाहिए कैसे हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए कैसे अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए.
0: ये आपकी हेल्थ की वीडियो दिखा रहे हैं. तो आजकल जैसे कोविड का टाइम है अभी ऑफलाइन से हमें ऑफलाइन से तुरंत ही ऑनलाइन मोड पे आना पड़ा. सो जो हमारी कम्युनिटी से कनेक्ट था फिजिकल हमारी विजिट्स और हमारा जो फिजिकल कनेक्ट बना हुआ था उसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आए थ्रू योर सेशंस जिसमें आपने कई तरीके के सेशंस होस्ट करे हैं एज अ डॉक्टर. वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट दोस सेशंस.
1: मैंने बहुत अभी नॉट इन गोसाईगंज या लखनऊ मैंने बाकी सारी रीड इंडिया सेंटर्स जो अलग अलग जगह भी सिचुएटेड हैं उनके साथ भी हेल्थ सेशंस लिए हैं कोविड के ऊपर साफ सफाई के ऊपर हेल्थ के ऊपर हाइजीन के ऊपर हैंड वॉश के ऊपर एंड आपको कैसे प्रिकॉशंस लेनी है कोविड में क्या क्या आपको करना चाहिए ये सब चीज़ें मैंने ऑफलाइन अब जूम के थ्रू कोविड जब चल रहा था तब सारी इंफॉर्मेशन बेनिफिशरीज को दिया था. ये वाला जो फोटो आप अभी देख रहे हैं ये वुमेन्स डे था इंटरनेशनल वुमेन्स डे. दिस इज ऑल्सो बिफोर कोविड पिक्चर जहाँ हमने बाराबंकी का पिक्चर है ये जहाँ हमने वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया था.
0: सो आप अपना बैक जर्नी बताना चाहेंगे हाउ यू मेक योर कंटेंट सूटेबल फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ यू ब्रिंग दैट एस्पेक्ट टू देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल्स.
1: स्मिता मैं कहना चाहूंगी कि इनकी इनके सोच तक जाने के लिए आपको खुद इनके साथ लगना पड़ता है. तो मैंने इनके साथ पहले बातचीत करी इनसे पूछा कि इनको किस चीज के बारे में कौन सी हेल्थ के बारे में इनको जानकारी चाहिए. आपको इनकी नॉलेज जितनी नॉलेज है उसके बारे में पता होना चाहिए. देन आई मेक माई कंटेंट फ्रॉम दैट कि इनको उसी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है नॉट टेकिंग दी डेंट आपका पूरा मेडिकल टर्म्स ना लेकर बहुत बेसिक टर्म्स यूज कर सारा हमने मैंने अपना कंटेंट बनाया था चाहे वो मेंसेस के ऊपर हो चाहे प्यूबर्टी या कोई सिंपल एक डिजीज मलेरिया डेंगू के बारे में भी कंटेंट जो बनाया था बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज किया था बिकॉज इनकी समझ ही उतनी है जितनी क्योंकि ये लोग पढ़े नहीं होते तो समझ भी थोड़ी होती है, तो इसलिए उस समझ को सोच कर वही कंटेंट मैंने इनको एक्सप्लेन किया था, नॉट यूजिंग द मेडिकल टर्म्स.
0: So would you like to share about the center that you opened in Lucknow, the community, how you opened that center, challenge, क्योंकि कोविड में वो सेंटर खुला था, क्या चैलेंजेस आए वो, उसके बारे में आपको क्लियर करना चाहते हैं.
1: स्मिता, जब वो सेंटर खुला था दैट वाज दिस नवंबर 2018, एंड मार्च दिसंबर से कोविड आना शुरू हो गया था. तो मैंने वो सेंटर जब खोला था तब हार्डली वी गॉट 3 मंथ्स बेनिफिशरीज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि हम रीड इंडिया क्या क्या काम करता है एंड हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हम किस मोटिव से आए हैं. पर वो सेंटर खुला और 3 मंथ्स के बाद जब कोविड आया तो बहुत एक बैकलॉग हो गया था. हमने बहुत मुश्किल से बेनिफिशरीज को अपने फोन के थ्रू कांटेक्ट कर कर उनको जूम के बारे में समझा कर कि ऐसे आपको लिंक करना है, ऐसे आपको लिंक खोल कर आपको क्लासेस लेनी है. सो वी एंड विद माई टीम, नो डाउट माई टीम इज सो हार्ड वर्किंग, कि विद माई टीम आई स्टार्टेड दैट थिंग. उनको जूम एक्सप्लेन करना, पहले जूम के ऊपर बताया, एक सेशन लिया, फिर एक सेशन हमने लिया कि आपको कैसे जूम के थ्रू एंटर कर कर आपको अपनी अपनी क्लासेस लेनी है. सो माई टीम वर्कर्स डू दैट, अपनी क्लासेस वो लेते थे, पहले टीम को समझाना फिर बेनिफिशरीज को समझाना. समहाउ वी मैनेज टू, कोविड में हमने ये किया था. इट वॉज अ बिग चैलेंज टू अस. आई होप ये तो सबके लिए था बट हमने इसको किया एंड हमने अपने चैलेंजेस को मीट करकर हमने काफी ट्रेनिंग्स देकर आज बहुत लोग वी एक्ट के थ्रू जो ट्रेनिंग्स दी थी हमने उसमें अपना काम कर रहे हैं. दे आर अर्निंग वे.
0: Nidhi, would you like to share about the women who've become financially independent or who've started to earn something out of this particular, livelihood component of your skilling?
1: आई वुड लाइक, स्मिता, मेरे यहाँ पर एक एक औरत है जिसने जिसके हस्बैंड का केटरिंग का काम था. कोविड के दौरान केटरिंग पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आया था, तो उसने अपना एक स्टिचिंग खोला था, ब्यूटी खोला, साथ ही साथ उसने पार्लर भी खोला. एंड कोविड के दौरान ये उसने ऑनलाइन या अपने क्लाइंट के थ्रू उसने अपने अर्निंग करी. नाउ द सिचुएशन इज दैट कि उसके पास 2 पार्लर हैं एंड 2 ब्यूटीक हैं. शी इज अर्निंग वेल ऑफ बिकॉज उसके हस्बैंड का केटरिंग का बिजनेस इतना कोविड के दौरान ठीक नहीं चल रहा था.
0: Wonderful, Nidhi. I think it's the right time to call our mentor on the screen. We would like to invite Dr. Geeta Malhotra, our mentor, and we welcome her on the show.
2: Nidhi, I am very confident that you handle the community one by one. It's not that you were handling 20 women altogether, because 20 women were thinking what they can imbibe and what they cannot imbibe. But your topics were so important that you wanted to instill everything into their minds, because it in turn takes a shape of behavioral acceptance. How you handle this challenge?
1: आई वुड लाइक टू से, मैंने उनके कम्युनिटी में जाकर उनकी पहले लाइफ हिस्ट्री के बारे में समझ कर, क्योंकि लाइफ स्किल के सेशंस जब मैं लेती थी तो वो अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से शेयर करते थे आकर, तो जब उनकी प्रॉब्लम्स को मैं समझती थी तो मैंने उस पे डेप्थ पे सोचा कि इनको ज़्यादा एडवांस स्टडी ना देकर बेसिक स्टडीज पे अगर हम इनको एजुकेशन देंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा है. अपनी जिंदगी को वो वहीं कंस्ट्रेन कर देते हैं 4 लोगों के बीच में या 10 लोगों के बीच में, और इनको मोटिवेट करना कि आप आगे जाकर कुछ करो, आपने आगे जाकर कुछ करना है. तो पहले मैंने उनको लाइफ स्किल्स के बारे में बताया, वो स्किल्स इनकी एनहांस कर कर देन आई टुक इट टू हेल्थ की मेरे को इनको अब हेल्थ के बारे में जानकारी देनी है, क्योंकि अगर ये बाहर जाएंगे तो ये अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी को भी इनको एनहांस कर, क्योंकि आगे जॉब करनी है या कुछ कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, सो दे नीड टू एनहांस देयर पर्सनालिटी. सो यू नीड टू गिव अ सर्कल कि आपको पहले लाइफ के बारे में जानकारी देनी है, देन हेल्थ, देन देयर पर्सनालिटी. So this all three together worked.
2: Community health workers, you as a coordinator, and medical doctors whom we enrolled on our programs, you made a bridge between the communities as well as the medical doctors who were addressing COVID prevention precautions and the medicines they had to take. Would you like to reflect on that, how you played that role?
1: जब मैंने उनको ट्रेनिंग्स दिया था कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर, तब काफ़ी क्वेश्चंस मेरे ऊपर, मतलब उन्होंने मेरे से पुट करे थे कि मैम हम कैसे करेंगे ये सब. देन मैंने उनको बताया था कि आप अपनी कम्युनिटी पे, अपने गाँव में जो आशावारी हैं या आशा दीदीज हैं, आंगनवाड़ीज हैं, उनके साथ जाकर बात करो, उनको बताओ कि हम लोगों को ऐसी ट्रेनिंग्स मिल रही है और हम आपके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं. सो उन्होंने जाकर आशा दीदी, आंगनवाड़ीज के साथ बात करी, डॉक्टर्स के साथ जाकर बात करी, कम्युनिटी के साथ जाकर बात करी. नाउ दे आर कमिंग अप विद कि उनको ये इस किसी भी एक बीमारी के बारे में जानना है. तो मैंने डॉक्टर्स उनको बोला, डॉक्टर्स से संपर्क कर आप अपनी बीमारी के बारे में उनसे पूछ सकते. एंड आशा दीदी के साथ आपको कॉन्टैक्ट रखना है, बिकॉज बच्चे हैं, उनको किस टाइम पे इम्यूनाइजेशन चाहिए, किस टाइम पे आपको प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर्स को दिखाना है, आयरन कब देना है, ये सब जानकारी मैंने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स में ट्रेनर्स को दी है.
2: बहुत सारे ऐसे लोग हैं कम्युनिटी में जिनके पास मोबाइल एक्सेस नहीं है एंड दे कैन नॉट लिसन टू योर प्रोग्राम्स व्हाइल सिटिंग एट होम. Then how do you invite those women to your center and the children so that we can create a commonality? We should not discriminate between the haves and have-nots. So how did you handle that?
1: मैंने जब कोविड के दौरान अपना सेशंस लेने, जिनके पास मोबाइल नहीं थे, तो मैंने औरतों को स्टाफ के साथ मिलकर मैंने औरतों को बुलाया. 10-10 के ग्रुप्स में औरतें आती थी, सेंटर आती थी, एंड दे यूज टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस एंड वेयरिंग मास्क. हमने ऑनलाइन मैंने उसको सेशंस दिए थे एंड उन्होंने भी बहुत इसको सीरियसली लेकर सेशंस लिया एंड अपनी लाइफ में उसको अपनाया. कोविड में मैंने उनको सेशंस लिए कोविड के बारे में, क्या आपको खाना चाहिए, कैसे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या सेफ्टी रूल्स मेजर करने चाहिए आपको. तो उनको ये सेशंस बहुत इंफॉर्मेटिव लगे थे जब कोविड आया था.
2: नाउ व्हाट आई अंडरस्टैंड कि पूरी हेल्थ का भार समुदाय के ऊपर है अभी, और उनको क्या चाहिए, एक समझ चाहिए, एक राइट इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट नॉलेज चाहिए और राइट कॉन्टेक्ट चाहिए डॉक्टर्स के साथ जो उनको ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन दे सके और राइट काइंड ऑफ मेडिसिन एट राइट टाइम दे सके व्हाइल सिटिंग इन देयर होम्स ओनली. दे डोंट वांट टू गो टू द हॉस्पिटल, दे डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन एल्स एक्सेप्ट द पर्संस हु आर ट्रस्टवर्दी. सो वेयर डू यू स्टैंड इन द होल प्रोसेस व्हिच आई हैव शेयर्ड.
1: इस टाइम पे हमारे पास सेंटर पे ही ऑक्सीमीटर्स है, बीपी मशीन्स है, वी हैव अ थर्मामीटर्स. सो जिनको हमने ट्रेनिंग दी है वो उनको हम ये मशीन्स देते हैं, जिसकी भी घर में कोई प्रॉब्लम्स है आप जाए, आप उनका चेकअप करें, आप मेरे को आकर बताएं, देन आई कैन गिव देम बेसिक मेडिसिंस जो उनको नीड में है. वी आर गिविंग द फुल फैसिलिटीज कि अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, जो ट्रेनर्स हैं कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के, वो ये इक्विपमेंट्स लेकर जाकर उनका चेकअप कर सकते हैं एंड दे कैन टेल मी व्हाट इज द सिचुएशन. ये करने में हम, वी आर पेइंग टू देम, हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को इसको पे करते हैं उनको कि आप आप जा रहे हो तो आप इसको पेमेंट्स ले कर,
2: और फिर आप डॉक्टर्स को कनेक्ट करके कंसल्ट करके देन यू कनेक्ट देम विद द डॉक्टर, राइट?
1: एग्जैक्टली एग्जैक्टली.
2: So that is the wonderful initiative. I should say that Lead India is getting done from the community leaders like this.
0: Thank you, ma'am. Thank you for sharing your experiences and taking the talk to Dr. Niti further.
3: Read India अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है. तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम. सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी.
4: माय नेम इज नौशाबा अंसारी. मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ. मेरी क्वालिफिकेशन 10th है और मैंने हॉस्पिटल में जॉब की है. उसके बाद मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी. मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी. फिर मैंने जॉब की 2 साल आगरा में ही हॉस्पिटल में. उसके बाद मेरी शादी हो गई थी. मेरा 1.5 साल का बेटा है. उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो यहाँ पर मैंने TG का एंड NTT का कोर्स किया कर रही हूँ मैं यहाँ से. हाँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ करके. मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अपना फ्यूचर बना सकती हूँ, अपने बेटे का भी फ्यूचर बना सकती हूँ. मेरे इन-लॉज भी एग्री हैं, मेरे हस्बैंड भी एग्री हैं यहाँ के लिए. यहाँ पर अभी तक भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है NGO के सिवा, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर और भी खुलने चाहिए ऐसे, जो उससे सभी लेडीज़ को, लड़कियों को बाहर निकलने का मौका मिले, जिनके फादर मदर निकलने नहीं देते घर से. यहाँ अच्छा लगता है, टीचर्स भी अच्छे हैं यहाँ के सारे.
5: हेलो, मेरा नाम दीपा है. मेरी उम्र 23 साल है और मैं मैरिड हूँ. मेरा 1 बेटा है और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं. मैं 12th तक की पढ़ाई की है. उसके बाद मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर के फॉर्म भी भरे थे, पर मैं 6 मंथ का ही कोर्स कर पाई कि बीच में मेरी शादी आ गई, जिसके कारण मैं आगे की पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाई. शादी के 1.5 साल बाद मेरा बेटा हुआ. जैसे बेटे होने के बाद तो जैसे मैं डिप्रेशन में रहने लगी. उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो मैंने अपने इन लॉज को कन्वेंस करने की कोशिश की, पर वो राजी नहीं हो पा रहे थे. लेकिन काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने मुझे परमिशन दे दी. उन्होंने तो परमिशन दे दी. उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड को मनाने में भी काफ़ी कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि मेरा बेटा अभी 1.5 साल का ही हुआ था. लेकिन धीरे धीरे वो भी मान गए. उसके बाद मैं यहाँ आई तो मैंने NTT का कोर्स किया. उसके साथ साथ ही मुझे वहाँ पे सर्वे करने आए, तो मुझे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स के बारे में भी पता चला. फिर मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स में भी एडमिशन ले लिया, कंप्यूटर का कोर्स भी किया. उससे मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा. उसके रीड इंडिया आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा. मुझे काफ़ी का महसूस होता था और मैं अपने आप को काफ़ी आज़ाद महसूस करती थी. मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था. मैं शादी के बाद और बच्चों के बाद काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी. उसमें भी मुझे काफ़ी ये लगा कि मेरा डिप्रेशन दूर हो रहा है, खुल के सांस ले पा रही थी. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे काम अपने आप से खुद कर सकती हूँ. मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ. मैं अपने आप को अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ. मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है. मुझे कंप्यूटर सीखने के बाद तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मैं कुछ कर रही हूँ. मेरे काफ़ी काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बिल पे करना, टिकट करना, और भी काफ़ी बैंक में के काम सभी घर पे हो जाते हैं. मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खुद से अपना काम करके. या फिर भाई, पहले बहुत बहुत देर तक धूप में लाइन में जाना पड़ता था, अब मैं घर बैठे ही अपना सब कुछ कर सकती हूँ. थैंक यू रीड इंडिया.
6: मेरा नाम रिया है. मैं 10th में स्टडी करती हूँ और मेरी क्लास बीच में अभी कुछ दिनों से बंद हो गई थी. क्लास आना बंद हो गया था मेरा, और मेरे घर वाले एग्री नहीं थे. लेकिन मैम ने कॉल करके समझाया, फिर मेरे घर वाले एग्री हुए, मेरे को भेजा. मैम भी बहुत अच्छी है यहाँ की, और जो भी कोर्स आता है, मैं पहले टीचर ट्रेनिंग भी कर रही थी, फिर उसके बाद अब मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया है। ये महसूस किया मैंने कि हाँ, जो मैं चाहती हूँ फ्यूचर में बनना, अपने करियर में कुछ करना, उससे ये हुआ है कि हाँ, मैं बिल्कुल, मेरे को वो हो गया है, घर वालों का सपोर्ट हो गया है। टीचर्स ने समझाया था, कॉल की थी कि हाँ, ये कर सकती है कुछ।

0: अभिता और फर्रा, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे जिसका नाम है नीडल एंड थ्रेड, और जिससे आप रोजाना काम करती हैं। और आपको ये भी पता है और हम सबको पता है कि नीडल और थ्रेड के बिना हमारा गुजारा भी नहीं है, बिकॉज सबको कपड़े सिलवाने हैं, पहनने हैं, और बहुत सारी औरतें जो हैं, जो रीड के साथ जुड़ी हैं या वैसे भी काम करती हैं, उनको स्टिचिंग करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो यू कैन नॉट इमेजिन दैट। और अभी प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटी में भी हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी हैं अपैरल डिज़ाइनिंग के। और जैसे अबीदा ने भी छोटा कोर्स किया है अपैरल डिज़ाइनिंग पे, और आज की जो चर्चा है हम इसी पे बेस करेंगे। और अबीदा और फरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अबीदा, शशांक ने आपके बारे में इंट्रोडक्शन दी है, और आपने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सारी मेहनत करी है, बचपन से मेहनत करी है। आप अपना गांव छोड़ के दिल्ली में भी आई रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और फिर वापस जाके जब आपके मन में जुनून था कुछ करने का तो आपने उसको पूरा कर दिखाया। और मैं यहाँ भी ये भी कहना चाहूँगी कि जुनून अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है, और ज़िंदगी बहुत लंबी है, और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की आप इच्छा भी रखती हैं, और उसके उसको पूरा करने के लिए आप में दृढ़ विश्वास भी है। तो चलो हम बातचीत शुरू करते हैं। अबिदा, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, थोड़ी जानकारी दें, और फिर हम आगे इस चर्चा को लेकर जाएंगे। अबिदा प्लीज।
1: गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम आबिदा है और मैं रामपुर शहर से छोटे से मोहल्ले कलगत के रहने वाली हूँ। मैम, यहाँ का माहौल हमारे यहाँ मतलब ऐसा है कि लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। शुरू से ही हम अपने आसपास का माहौल यही देखते आए हैं, अपने घर का भी, कि हमारे भाइयों को एजुकेशन दी जाती थी और अच्छे से वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती थी। जैसे मैं अपनी बड़ी बहनों को देखती थी, वो घर का काम काज कर रही हैं और सिर्फ घर तक ही सीमित रहती थी, किचन तक, घर तक उनकी लाइफ रहती थी। लेकिन मेरे अंदर बचपन से ही एक जुनून था कि मुझे अपनी लाइफ कुछ चेंज करनी है। मुझे लड़कों से, लड़कियों को क्यों अलग समझा जाता है, मुझे वो सोच हटानी है लोगों की, और मुझे भी पढ़ना है, आगे कुछ बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, लड़कियों का नाम रोशन करना है। ये सारी इच्छाएं मेरे अंदर बचपन से ही रहती थी। मैंने अपने घर वालों को बहुत सपोर्ट किया कि मुझे आप पढ़ने दें, तो घर वाले ने यही कहा कि नहीं, आप लोग, आप जैसे लड़कियां यहाँ घर में रहती हैं, आप भी ऐसे रहिए और घर का काम काज सीखिए। हालांकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत चाहत थी कुछ बनने की। तो मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया, उन्होंने मेरा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में कराया, कवरलगा स्कूल, वहां से मैंने 8th क्लास पास की। फिर उसके बाद वहाँ रामपुर में कारोबार नहीं है, बहुत प्रॉब्लम थी घर के, खुद के पापा एक जॉब करते थे छोटी सी, और बस उसी से हमारा गुजर बसर काफी मुश्किल से होता था। तो इसी वजह से काम के लिए हम लोग दिल्ली चले गए, हमारे भाई ने वहाँ काम शुरू किया। मैंने अपने घर वालों को कोर्स किया बहुत ज्यादा कि मुझे आगे पढ़ने दें, कुछ बनने दें, ताकि मैं भी अपने भाइयों के साथ सपोर्ट करूँ घर का। तो मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प की और मुझे आगे पढ़ने दिया। मैंने मदरसा जामिया से अपनी एजुकेशन आगे की, और जिसमें मैंने बीए फाइनल किया, और अरबिक साइड से, अरबी लैंग्वेज सीखी उस साइड से मैंने किया। लेकिन फिर भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर एक सोच रहती थी कि मैं किस तरह आगे बढ़ूं, किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ, किस तरह लड़कियों का नाम रोशन करूँ। ये सारी सोच मेरे अंदर हर टाइम रहती थी, लेकिन किस तरह, ये सवाल मेरे अंदर रहता था, बार बार ये सवाल मेरे अंदर उठता था कि मैं किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ। उसके बाद फिर इसके दौरान मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मैंने एक सिलाई सेंटर ज्वाइन किया, और मैंने वहां से स्टिचिंग कोर्स किया, काफी अच्छे से कोर्स किया, काफी मेहनत से, मन से, क्योंकि वो कोर्स सीखने के लिए मैंने, ये नहीं कि मैं शौक में कर रही हूँ, मुझे कुछ बनना है, आगे कुछ बनना है, कि सिलाई के करियर ही बनना है, लेकिन मुझे कुछ बनना है, ये सोचकर मैंने सेंटर ज्वाइन किया। और काफी मेहनत से, लगन से, जो लड़कियां मुझसे पहले की थी वहां पर, उनको भी पीछे छोड़ा मैंने, और इतनी मेहनत से मैंने वहां से कोर्स किया, और मुझे कहते बहुत खुशी है कि मैं वहाँ कोर्स आई। बहुत अच्छे से मुझे उन लोगों ने प्रेजेंट भी दिया, काफी लोग आए थे, उन्होंने मुझे सराहा, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिला जॉब का। उसी दौरान मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो गई, और शादी के बाद फिर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई। घर घर वालों ने जॉब के लिए नहीं मुझे सहारा दिया, उसके बाद फिर हम लोग रामपुर यहाँ आ गए, अब लोग हम शिफ्ट हो गए रामपुर। वहाँ उसी दौरान मेरे पापा काफी बीमार रहने लगे, उनको हार्ट

0: सेंटर में आने से पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था और काफी दिक्कत मुझे थी और लड़की से अच्छे से बोल नहीं पाती थी और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस मुझे सिखाने के साथ आया, मैंने जितना लड़कियों को सिखाया उतनी मेरी खुद की स्किल्स डेवलपमेंट होने लगी और मुझे लड़कियों से बात करने का तरीका आने लगा और सिखाने के साथ साथ लड़कियां मेरी काफी मेरी इज्जत करने लगी, मेरी वैल्यूज बढ़ी। मोहल्ले में मुझे कोई नहीं जानता था, मोहल्ले में मुझे काफी मेरी जान पहचान बढ़ गई और लोग मुझे जानने लगे। और मैंने 3 साल से सेंटर चला रही हूँ जिसमें मैंने 400 तक लड़कियों को सिखा दिया है और 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ गई। और इन 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ी है और वो 400 लड़कियां और 400 लड़कियों को लेकर आई थी। हमारे यहाँ का अभी माहौल वही है कि लड़कियों को निकलने नहीं देते, लड़कियों को आगे कुछ बढ़ने नहीं देते। लेकिन मैंने लड़कियों के घरों पे गई, उनके पेरेंट्स से बात की कि आप लोग अपनी लड़कियों को यहाँ भेजें और हमारे सेंटर भेजें, उनको कुछ सिखाएं। तो उन लोगों ने मेरी बात एग्री किया और मेरे बाद में लड़कियों को भेजा और यहाँ पर लड़कियों ने आकर सीखना शुरू किया जिससे काफी इंप्रूवमेंट आया। हमारे मोहल्ले में भी काफी लड़कियां ऐसी थी जो घरों से निकलना नहीं जानती थी, जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बातचीत करने का तरीका नहीं आता था, वो सब उन्होंने सेंटर से ही सीखा। और यहाँ से उन्होंने देने के बाद कमाना शुरू किया और अपने पैर पर खड़ी हुई है। उन लोगों ने अपनी फैमिली को सपोर्ट भी किया, काफी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छे से कमा भी रही
1: बहुत बढ़िया, बहुत
0: हैं। जी
1: बढ़िया। फरा आपके साथ बैठी है फरा,
0: मैम,
1: और आप तो रीट से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। जब आप बहुत छोटी थी तब से ही रीट से जुड़ी हैं, और ये स्टोरी जो अभिदा अपनी बता रही है, आपके क्या विचार हैं इस स्टोरी पे? और आपने अभिदा को अपने सेंटर में जोड़ा, कलघट में इन्हीं के घर में आपने सेंटर बनाया सी। जब आपके दिल में जुनून होता है तो नेचर भी आपको सपोर्ट करती है उसी काम को करने के लिए। अब जब पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे किसी भी रीजन से, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात बोल रही हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ, कि ये होता है कि लड़कियों को बाहर भेजने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है पेरेंट्स को, तो वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में भी टाइम से आता है, एकदम शुरू से नहीं आता है। और जब मैं अमिता की स्टोरी सुन रही हूँ तो मुझे फरा की स्टोरी भी याद आ रही है सामने। तो फरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी अमिता की स्टोरी में, क्योंकि आप इसको 2019 से देख रही हैं।
0: जी मैम, मैं ऐड करना चाहूंगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा। आबिदा की स्टोरी में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आबिदा बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है, जिनको मैं पहले दिन मिली थी और आज मिल रही हूँ। बहुत बड़ा फर्क है उनके अंदर। जैसे मेरी जर्नी थी रीट में, मैं यहाँ थी और अब यहाँ आ गई हूँ रीट से जुड़ने के बाद, ऐसे ही आबिदा ऐसी थी और आज यहाँ आ गई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो लाइव आप सबके सामने अपनी स्टोरी शेयर कर रही है। जो कुछ मतलब जब हम फर्स्ट डे आए थे तो कुछ बता भी नहीं पा रही थी, तो जब मेरी इनसे फर्स्ट डे मुलाकात हुई थी तो ये नकाब में और बुरके वगैरह में थी घर में ही, और ऐसे ही मतलब रहती थी। तो मैंने इनसे पूछा कि इन्होंने हमसे बोला कि हम यहाँ पर हमारा ये थोड़ा सा घर का हिस्सा है और यहाँ पर हम ऐसे से कोई कुछ चलाना चाहते हैं। तो हमने बोला यहाँ पर लड़कियां वगैरह कैसी हैं और लड़कियां आ जाएंगी यहाँ तक, क्या घर में से पेरेंट्स निकलने देंगे, क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि आप सिखा पाएंगी, लड़कियों से जुड़ पाएंगी और या लड़कियों से बातचीत कर पाएंगी। तो उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिया हमें कि हाँ हम करेंगे। मतलब इन्होंने मना नहीं करा, इनके पेरेंट्स मना कर रहे थे कि कोई जॉब नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करेंगे। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, फरा के जैसी भी कोई और है करने के लिए जज्बा रखती है। तो वहीं से इन्होंने स्टार्ट करा और हमसे हामी भरी करने के लिए। तो हमें लगा कि हमारा यहाँ पर सेंटर चल सकता है रीड इंडिया का, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आबिदा के जैसी बाहर निकल के कुछ कर सकती हैं। तो जब हमने इनसे बात करी और इन्होंने मोबिलाइजेशन करा, तो जब भी हमारे पास 100-150 लड़कियां आई बाहर निकल के, और इन्होंने घर घर में जाके मोबिलाइजेशन करा, पेरेंट्स को समझाया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स हैं, मुस्लिम इलाका है, जो घर से बिल्कुल लड़के नहीं निकल पाती है। तो इन्होंने घर घर जाके, हमने इन्हें 1 हफ्ते का टाइम भी दिया कि आप जाइए और हमें बताइए कि आप कर सकती हैं। तो इन्होंने हमें 150 लड़कियां लाके दी, और जब हमने उन लड़कियों से मुलाकात की तो वो फर्स्ट टाइम अपने घर से निकल के किसी सेंटर

0: आई थी, उन्होंने हमें बताया कि मैम हम फर्स्ट टाइम अपने घर से निकले हैं, हमें फर्स्ट टाइम इजाजत मिली है क्योंकि सिर्फ हम पढ़ाई के लिए जाते हैं और या फिर हम अपने घर पे रहते हैं, पढ़ाई के लिए भी हम अपने भाई या फादर के साथ जाते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं तो वो बाहर खड़े होते हैं और फिर हम देकर उन्हीं के साथ आ जाते हैं वापस। लेकिन ये एक पहला सेंटर है जो हमारे घर के करीब समझिए, या फिर एक टीचर के अंदर टीचर ने उनको किस तरीके से उनके पेरेंट्स को समझाया, वो एक विश्वास समझिए जो हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक भेज दिया। तो हमें बहुत खुशी हुई और मुझे ये भी खुशी हुई कि आबिदा उन लड़कियों को घर से निकाल के लाई, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, आगे बढ़ने का जुनून आया कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और इतनी लड़कियों के पास ये पहुंची और उनको समझाने में कामयाब रही। लड़कियां यहाँ धीरे धीरे आई और लड़कियां आज इतनी हैं कि 400 से लेके 500 लड़कियां तक आबिदा को जानती हैं और उनके घर वाले कभी भी किसी टाइम भी यहाँ भेज देते हैं, उनको कोई भी चिंता नहीं है। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आते हैं और हम लोगों ने पेरेंट्स से भी बात की है कि आप अपनी लड़कियों को बाहर तो कहीं जाने देते हो लेकिन हमारे सेंटर तक आप भेज रहे हो, क्या आपको हमारे सेंटर में ऐसी कौन सी अच्छी चीज लग रही है? तो उन्होंने यही हमसे बोला है कि आपके सेंटर के अंदर एक तो लड़की कुछ सीखने आती है, कुछ सीख के जाती है, और दूसरा ये एक विश्वास और एक लड़की के लिए सेफ्टी वाला सेंटर है जो हमें लगता है कि हमारी लड़की वहां जाके बिल्कुल सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमें बहुत खुशी हुई। कभी कभी लड़कियां ये भी होती है कि घर से पूरे दिन के लिए भी कही जाती है कि मम्मी हम वहाँ पूरे दिन रहेंगे, हमें मतलब कोई काम करना है या स्विमिंग का कोई काम है या फिर प्रोडक्शन में कुछ करना है या फिर कोई डिजाइनिंग सूट सिलना है तो उनके पेरेंट्स वो भी अलाउ कर देते हैं, जब उनके पेरेंट्स का फोन आता है तब वो दिन भर में जाती है। तो यहाँ तक लड़कियों के अंदर फर्क आया और वो फर्क लाने के लिए आबिता ने बहुत कोशिश की है और बहुत अच्छा कनेक्ट करती है लड़कियों से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जैसी और लड़कियां बन रही हैं, फरा से आबिदा, आबिदा से और 150, 150 से 400 लड़कियां बन जाएं और ऐसे ही हमारा सोशल वर्क कामयाब रहे हमेशा और हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों, औरतों और लड़कों तक पहुंचे और रीड का नाम बहुत रोशन। तो मैम ये आबिदा की जो अंदर की कॉन्फिडेंस था वो निकल के आया।
1: वेरी गुड फरा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि रीड का मॉडल ही ऐसे है। रीड का मॉडल ये है कि हम गांव में जाके कैसे गांव की लड़कियों के साथ मिलके काम करें जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और उन्हीं के एरिया में हम ऐसे सेंटर खोलें जहाँ पे लड़कियाँ बड़े कॉन्फिडेंस से आ सकें और अपने हम उम्र की लड़कियों से बहुत कुछ सीख सकें और अपने परिवार को भी सपोर्ट करें, अपनी लाइफ में भी चेंज लेके आएं और अपने आने वाले जिंदगी की सोच भी उनकी क्लियर बन जानी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है फरा। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरी ये सोच नहीं है कि हम घर से लड़के घर की रजामंदी ना होने की वजह से या हम अपनी जिद से कुछ करें। जैसे फरा की स्टोरी थी कि फरा ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, अपने गांव में ही सेंटर था और उस गांव के सेंटर में काम करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाई, अपनी सोच में बदलाव लाई, अपने पेरेंट्स की सोच में बदलाव लाई, अपने पैरों पे खड़ी हुई। ऐसे अबिदा ने भी किया। अबिदा बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बात मानती थी, कोई जिद नहीं थी कि मुझे घर से बाहर जाना है, पर ऐसे सरकमस्टांसेस में रीड का मॉडल उनके लाइफ के साथ इतना अच्छा तालमेल बिठाया उसने कि उसने अपने घर में ही जगह दी और अपने घर में ही उसने सिलाई मशीन रखने के लिए इजाजत मांगी अपने पेरेंट्स से। और देखिए उसके ब्रदर ने कितना सपोर्ट किया कि अपना काम बंद करके उसने अपनी बहन को जगह दी, क्योंकि उसकी भी यही सोच थी कि आज अगर मैं अपनी बहन को सपोर्ट करूंगा तो मेरी बहन बहुत आगे बढ़ जाएगी और उसके दिल की जो ख्वाहिश है उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा कुछ करने के लिए। तो ये खाली अबिदा का रोल नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अबिदा के पेरेंट्स का, अबिदा के भाई का, फरा एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हर एंड ऑल्सो फरार्स पेरेंट्स और आसपास का माहौल जो पॉजिटिव बना, ये सब चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इस सोच को समझने के लिए, इस सोच को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि जब हम अपनी सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो महिला को अपने दायरे में ही रह के अपने परिवार की सहमति से कैसे अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम सबका सलाम है, बिकॉज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत टफनेस अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करके, बहुत चैलेंजेस को फेस करके आता है। और हम जब आगे बढ़ते हैं और जो इसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, वो हम किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फरा और अबिदा, आपका जो जर्नी रही, जो दोनों ने जर्नी पार करी है, इस जर्नी को सलाम। और आपने जो लोगों को कन्विंस करा और जो लोगों को प्रोत्साहित करा आज के दिन में 400 लड़कियों को सिलाई सिखाना और उनके घर में इनकम ऐड करना, ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। इसको आप छोटा मत समझिए। आपने जो अपनी लाइफ में किया है, इसका बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारी लड़कियां जो आपसे डायरेक्ट जुड़ी हैं, उनका पेरेंट का फैमिली, जो उनके माँ बाप हैं, उनके बहन भाई हैं, और जब उनकी शादी के बाद ससुराल गए हैं और उनके माँ बाप, उनके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली पे इसका क्या असर पड़ता है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज करती हूँ। तभी रीड गांव गांव में जाके, गांव गांव में लोगों से बात करके, गांव में ऐसी लड़कियों को तराशते हैं जिनमें हुनर है पर वो कुछ कर नहीं सकती हैं। और आज हमारे सामने इस प्रोग्राम में दो लड़कियां बैठी हैं, फरा और अबिदा, जिनके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ था, उसके ऊपर धूल थी, हमने खाली उस धूल को हटाया है और आज ये ब्राइट स्टार बन के हमारे सामने बैठी हैं। थैंक यू अबिदा सो मच फॉर शेयरिंग योर, इस ये स्क्रीन पे शेयर करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ।
0: थैंक
1: अभी मुझे ये बताइए कि जो लड़कियां आपके पास सिलाई सीखने आती हैं, उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया?
0: यू मैम। ऐसा है जैसे यहाँ हमारी लड़कियां कुछ ज्यादातर ऐसी हैं जिनके फैमिली का सपोर्ट ज्यादा नहीं था उन पर, लेकिन हमने उनके घर बात की, उनके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने यहाँ भेजा। उनकी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, मजदूरी करती है, काफी लड़कियों के वालिद वालिद उनके पापा, तो लड़कियों को हमने वो हुनर दिया और स्किल्स दी उनको इतनी कि उन्होंने यहाँ सीखने के दौरान ही सिलाई करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने खुद के कपड़े सीकर और अपने पैसे बचाए और फिर उसके साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला गया और उन्होंने बाहर की सिलाइयां भी लेना शुरू कर दी, और जिससे उन्होंने घर में अच्छा सपोर्ट किया उन लड़कियों ने। और अपने पेरेंट्स जो उनको इजाजत नहीं देते थे, वो खुद उनकी अम्मियों ने आकर मुझसे बात की और शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी बेटियों को इस लायक बनाया है कि आज हमारी बेटियां इस लायक हैं कि अर्निंग कर रही हैं, अपना फर्ज भी उठा रही हैं और अपने घर का फर्ज भी उठा रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी थी और जिनकी पढ़ाई भी रुक गई थी, घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उनकी पढ़ाई रुक गई थी और उन्होंने इतना कमाने लगी है वो लड़कियां कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दोबारा स्टार्ट कर दी है और कुछ लड़कियों ने ट्यूशन वगैरह भी लगा ली है अपनी। और कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि मेरे पास एक दो लड़के ऐसे हैं जिनकी डिवोर्स हो चुकी है और वो अपने घर में थी, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन यहाँ सिलाई सीखने के बाद वो खुशी से ये बात कहती हैं कि अब हम किसी पर डिपेंड नहीं है और हम अपना फर्ज अपने बच्चों का फर्ज खुद खुद उठा रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया, आपने तीन पहलू यहाँ पे हमारे सामने शेयर करे हैं। एक तो लड़कियों ने सिलाई सीख के अपने पेरेंट्स की जो फैमिली की इनकम थी उसमें योगदान दिया, दूसरा उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी। ये बहुत बड़ा स्टेप है अपनी लाइफ में, फरा ने तो करा ही है पर और भी ऐसी लड़कियों ने करा जिन्होंने अपनी पढ़ाई आगे करी, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट किया, सेल्फ सपोर्ट किया। और तीसरा, जिनका डिवोर्स हो गया वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो गई। तो ये तीन मेजर लाइफ चेंजर्स जो हैं, जो आए उनके लाइफ में, इसका श्रेय आपको जाता है जो आपने बहुत सहनशीलता से, बहुत समझदारी से और बिना इसकी शोर मचाए, शोर मचाए मतलब कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है इस चीज की, तभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि गांवों में कैसे बदलाव आ रहा है। ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात, क्योंकि हम कोई मीडिया में स्टोरी नहीं देते हैं, हम कोई इसको शो ऑफ नहीं करते हैं, बट जो रियलिस्टिक चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बातों से सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज यू आर द चेंज मेकर। हम कहते हैं ना कि हमने सोशल कैपिटल बिल्ड करा, हमने सोशल गेन्स की बात की, हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये तीनों का श्रेय आपने इतनी सरलता से किया और अपनी इतनी समझबूझ और मेहनत से किया, मैं इसका भी आपको सल्यूट करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से काम किया। फरा, ये हम किन इनके एरिया की बात कर रहे हैं, आपका सिमिलर स्टोरी पटवाई में भी है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। पटवाई में ये तीनों चीजें जो मैंने बात की है, सोशल गेन्स, सोशल गेन्स मतलब कि समाज में उनको कैसे इज्जत मिली, कैसे उनकी इज्जत बढ़ी परिवार में, समाज में, और कैसे उनको धन का भी लाभ हुआ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और जो लड़कियां बहुत ही डिफिकल्ट सरकमस्टांसेस में थी, वो उन्होंने उन सरकमस्टांसेस को रिजॉल्व करा, उस कठिन समय से बाहर आई। तो फरा, आपके यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, क्या हमें सुना सकती हैं ऐसी स्टोरी आप?
0: जी मैम, बिल्कुल सुना सकती हूँ। पटवाई तो हमारा सेंटर अभी 6-5 ईयर्स हो गए हैं चलते हुए, और उसमें लगभग 1,000-1,200 लड़कियों ने वहां पर सीखा है, स्विंग ब्यूटी और कंप्यूटर है और लाइब्रेरी भी है। तो कुछ लड़कियों की मैं स्टोरी बताऊंगी कि जैसे अभी हमारे पास लॉकडाउन में क्या हुआ कि कुछ बच्चे जूम ऐप के जरिए पढ़ नहीं पा रहे थे और मतलब पैसों से भी परेशान थे। तो अभी हमें दीदी दिया ने ऑनलाइन सेलिंग की एक ट्रेनिंग दी थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की और साइबर सेफ्टी की। तो वही ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन के जरिए लड़कियों को दी, कंप्यूटर की लड़कियां हैं, स्विंग की लड़कियां हैं, ब्यूटी की लड़कियां हैं, क्योंकि साइबर सेफ्टी से भी बचना जरूरी है। और ऑनलाइन सेलिंग तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि घर पे रह के कोई भी लड़की कुछ भी अर्निंग कर सकती है। तो जब ये हमें ट्रेनिंग मिली तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगा कि ऑनलाइन के जरिए भी हम लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। अभी लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है, तो फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा उसके बाद हमारे सेंटर खुले, उसमें हमने वो ट्रेनिंग दी। सेकेंड लॉकडाउन बाद में लगा था, तो कुछ लड़कियों को हमने जूम ऐप की ट्रेनिंग दी। जिस तरीके से हमारी रीड में ट्रेनिंग होती थी कि मीटिंग्स होती थी, वो लड़कियां वहां पर आके कंप्यूटर भी सीखती थी और वो देखती थी कि मैम आप ये ट्रेनिंग लेते हैं, ये ऑनलाइन आप फेस टू फेस कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमने ऑनलाइन सेलिंग में ही उनको एक ये ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से हम अपनी जीमेल आईडी बनाएं, उसके बाद हमारे पास अगर टच फोन है एंड्रॉइड का तो हम किस तरीके से जूम ऐप के जरिए बच्चों को भी क्लासेस दे सकते हैं जो हमारे स्प्रिंगवुड स्कूल में चल रहा है, और किस तरीके से हम खुद भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लड़कियां बहुत खुश हुई, क्योंकि कुछ लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, वो नहीं पढ़ पा रही थी, वो अपने बुक से या फिर जो भी कॉपियां पहले की थी उससे पढ़ाई कर रही थी। जूम ऐप के बारे में उन लोगों को नहीं पता था। जब उनको इस जूम ऐप के बारे में पता चला तो धीरे धीरे हमने उनके घरों से उनके फोन मंगाए, मतलब पापा के या भाई के, जो भी घर में फोन रहते थे, उनके पास तो नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि आप 2 या 3 दिन के लिए हमारे सेंटर पे फोन लेकर आओ, हम वो जूम ऐप आपको डाउनलोड करके देंगे, आपको पूरी मीटिंग बताएंगे किस तरीके से लेंगी आप, और इससे आप अर्न भी कर सकते हो घर पर बैठ के। जो भी बच्चों की क्लासेस छूट रही है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो आपकी क्लास छूट रही है आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सारी ही लड़कियां अपने फादर, अपने भाई, अपनी मदर का फोन लेकर हमारे सेंटर पे आ गई। जब दूसरे दिन आई तो हमें लगा कि काफी इच्छुक हैं लड़कियां ये करने में, तो हमने उनकी सभी की जीमेल आईडी बनवाई और जूम ऐप के द्वारा ट्रेनिंग उनको बताया कि किस तरीके से हम लेते हैं। तो लड़कियां काफी खुश हुई। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक बच्चों का ग्रुप बना लिया, पांच पांच बच्चों का, और उनको फीस रख दी 100 रुपए कि हम आपको ये ऑनलाइन क्लासेस देंगे। गांव की लड़कियां जो मतलब बच्चे जो थे सिर्फ फेस टू फेस पढ़ते थे, उनको ऑनलाइन का पता भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने हमारे वहां से जूम ऐप की ट्रेनिंग ली तो उन्होंने देखा कि स्प्रिंगवुड स्कूल की भी क्लासेस ली जाती हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के सामने देती थी वो क्लासेस। तो उन्होंने 100-100 रुपए बच्चों से कहा कि आप फीस दो और हम आपके ऑनलाइन के जरिए आपकी पढ़ाई करेंगे। कोरोना के टाइम आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आपकी पढ़ाई बीच में रुकी हुई है। तो जब उन्होंने अपने गांव में एक एक देश बनाया, हर लड़की ने पांच पांच चार चार लड़कियों बच्चों का या दो दो बच्चों का, वो 200 भी कमा रही हूँ तो उनके लिए बहुत है, वो फर्स्ट टाइम था उनका, वो वो पेज बनाया और उन्होंने उससे स्टार्टिंग कर दी। जब जूम ऐप से स्टार्टिंग कर दी तो जब वो अगले मंथ हमारे वहां आई ये सारी चीजें सीखकर वो क्लासे लेके, तो बहुत खुश होकर आई और बोली मैम हमने तो अपनी क्लासेस इस पे स्टार्ट कर दी जूम ऐप के जरिए और हम बच्चों की क्लास ले रहे हैं इस पे, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई छूट गई थी वो भी हमारी कंटिन्यू रहती है, लिंक भेज देती है मैम, और हम बच्चों की भी इसमें ट्यूशन जारी रखे हुए हैं जिससे हमें 200 300 या 500 के लगभग हम बच्चों को क्लास दे देते हैं। अब हमने उनको इसके साथ साथ ऑनलाइन सेलिंग के बारे में भी बताया कि आपके अंदर कोई भी हुनर है आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक पे अगर आपके अंदर स्विंग का बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, वो सूट बना के आप सिर्फ अपने घर में टांगोगे तो आपके मोहल्ले वाले देखेंगे या आपके घर वाले देखेंगे या एक दो गांव के लोग और आ जाएंगे वो चीज देखने के लिए। लेकिन आप इसी चीज को फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे भी डालोगे तो पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। अब आप व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो अपने रिश्तेदारों को, तो चैटिंग करते हो हमने उन्हें बताया, बात करते हो फेसबुक से अपने दोस्तों को बात करते हो, तो आप बात करते करते आप उसको अपना प्रोडक्ट भी भेजो कि हमसे ये बहुत अच्छी कुर्ती बनानी आती है या हमें सूट आता है आप हमारे सूट भी देखो। वो अपने आगे और दोस्तों को भेजेगा, वो दोस्त उसके आगे को भेजेगा, तो इससे आपकी अर्निंग भी शुरू होगी और अपना काम आप स्टार्ट कर सकोगे। तो कुछ लड़कियों ने ये करना भी स्टार्ट किया था लेकिन उनको पैसे लेन देन में भी थोड़ी ज्यादा वो आई थी कि दिक्कत की कैसे ले, क्योंकि उन्हें गूगल पे का पता नहीं था, तो हमने धीरे धीरे उन्हें गूगल पे के बारे में बताया। अधिकतर लड़कियां जो पटवाई में हैं वो इतनी मतलब मेहनती हैं, एक जो हमारे यहाँ ये जो चुन्नी होती है माता की वो चुन्नी बनने के लिए आती है, तो वो जो 1 रुपया 1.5 रुपया तो दिन भर में लड़कियां 10 या 15 या 20 वो चुन्नियां निकाल लेती है उससे। तो एक लड़कियों ने ग्रुप बनाया और वो उन चुन्नी वाले अंकल से रामपुर में आई, बात करके गई और हम मेरे साथ ही गई, मतलब हमें किसी ने बताया था कि वो चुन्नी वहां वहां से लेनी है, तो हमने लड़कियों का ग्रुप बनाया कि ये काम स्टार्ट करके देखते हैं चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप घर भी ले जाना और सेंटर पे भी करेंगे। तो लड़कियों ने जब ग्रुप बनाया और हम लोग सब बस से रामपुर आए, रामपुर से हमने उन भैया से बात करी उस चुन्नी के लिए, तो उन्होंने बोला आप जितनी सिलवा सकते हो सिलवाओ और हमारे यहाँ से ये चुन्नी ले जाओ, तो उन्होंने हमें 500 चुन्नियां दी। वो 500 चुन्नियां लड़के हमारे पास पहुंचती और हमने आपस में 20-20-30 चुन्नी बांट दी। लड़कियों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो चुन्नियां तैयार भी कर दी मैम, और आज की कंडीशन है लड़कियां खुद जाके वो चुन्नियां ला रही हैं माता रानी की, खुद सिलती हैं, खुद उनको देती हैं और उससे जो भी अर्निंग होती है उनकी 1000-1500 ज्यादा तो नहीं हो पाती है उससे वो अपनी कमाई कर रही है। तो पटवाई सेंटर में लड़कियों के आने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो बात करने का तरीका, जब वो आती है तो उनके अंदर कुछ भी नहीं, उन्हें ये भी नहीं होता हमें बस सिलाई सीखनी है, हम पूछते हैं आप आगे क्या करना चाहती हो, मैम सिलाई सीखना है, उसके बाद हम अपने घर में करेंगे। उसके बाद मतलब मैंने उनसे पूछते पूछते हम लोग थक जाते हैं आगे क्या सोचा है लाइफ में, तो वो कुछ नहीं बता पाती है। फिर हमें उन्हें बीच बीच में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे लाइफ स्किल है, लीडरशिप की है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, आर्ट थेरेपी की है, तो हम उनको वो उनकी जो अंदर का जज्बा है ना वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और वो निकल के भी आता है। आज भी 1000 है हमारे वहां जो सीखी हुई है, 1000 में से हम सीना चौड़ा करके और मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 300 लड़कियां आगे बढ़ गई है, 500 लड़कियां आगे बढ़ गई है, 300 ऐसी हैं जो मार्केट से भी काम लाके चाहे छोटा सा ही कर रही है वो कर रही है, और 500 ऐसी हैं जो अपने घर बैठ के ही सिलाई कर रही है, बट कुछ ना कुछ कर रही है, उनके अंदर जज्बा निकल के आया है कुछ करने का।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फरा, आपकी आपकी स्टोरी सुन के और आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे ऐसे लगता है कि आप इतनी खुश होती हैं उसका आउटकम बयान करके कि आपकी मेहनत कैसे रंग ला रही है। और अभिदा, आपने जो 400 लड़कियों को और उससे भी ज़्यादा लड़कियों को सिलाई सिखाई है, तो वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं क्योंकि उनके जो फैमिली है उनको घर से बाहर तो जाने नहीं देती हैं, तो सीखने के बाद जो फरह ने बताया है वो आपके एरिया में भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं, अपने डिजाइन्स को प्रमोट कर सकती हैं, तो क्या अभी ऐसी कुछ शुरुआत हुई है या नहीं हुई?
2: जी मैम, मैं हमारे सेंटर में 10-12 लड़कियों ने ग्रुप कराया था जिसमें हमने प्रोडक्शन तैयार किए थे, लड़कियों ने आपस में ये ग्रुप बनाकर उसमें पैसे जमा किए और फैब्रिक लेकर आए, लेस वगैरह लेकर आए, और मैंने उनकी हेल्प की डिजाइन करने में, लड़कियों ने कुर्तियां डिजाइन की, प्लाजो दुपट्टे वगैरह डिजाइन किए, तो उन्होंने ऑनलाइन के जरिए अपने प्रोडक्ट सेल भी किए हैं काफी लड़कियों ने, और अभी कर भी रही हैं, उनको काफी अर्निंग भी हुई अच्छे से और लड़कियों का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा। तो एक दो लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी फिक्स हो गई थी और वो करना नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझसे बात की कि मैम हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, जब आपके बच्चों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है, सिलाई के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, तो आप घर में घर से नहीं निकलने दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के अंदर ही अपनी लड़कियों को सपोर्ट कीजिए। तो घर वालों ने उनको सपोर्ट किया, लड़कियों ने बस हफ्ते में एक दो बार मेरे पास आ जाया करती थी ताकि मैं उनके हेल्प कर दूँ। उन्होंने घर से ही काफी प्रोडक्ट बनाए और सेल करे, और अभी भी लड़कियां कर रही हैं, काफी लड़कियां कर रही हैं।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और मैं फरा को बोलूँगी कि अबिदा के साथ मिलके यहाँ भी ग्रुप्स बनाए और लड़कियों को ऑनलाइन सेलिंग की ट्रेनिंग दे, बिकॉज़ ये हमारा कोर है। कोर इसलिए मैं बोलूँगी कि रीड इंडिया का मॉडल ऐसे ही है कि हर लड़की को सक्षम बनाना, हर लड़की को बताना कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी एजुकेशन में कैसे वो आगे बढ़ सकती है, अपने हुनर को कैसे आगे लेके जा सकती है, अपनी इज्जत कैसे कमा सकती है समाज में, फैमिली में, और सोशल मीडिया अब हमारे लिए एक कंपल्शन बन गई है, बिकॉज कोविड ने हमें सोशल मीडिया के बारे में भी कंपेल कर दिया है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगी कि हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाएं और उनको हम सपोर्ट करें काम करने के लिए, और हम एक इतना बड़ा कलेक्टिव एंटरप्राइज खड़ा कर दें रामपुर एरिया में कि सब लड़कियां मिलके इसको आगे लेके जाएं। और रीड इंडिया की गुड विशेस भी हैं, और रीड इंडिया अभी कंटिन्यू कर रहा है प्रोग्राम, और इस थोड़ी सी ड्यूरेशन के अंतर्गत मिलके हम कैसे एक बड़ा उद्योग शुरू कर सकते हैं, ये आप अपनी सोच बनाइए और बहुत सारी लड़कियों को उसके साथ जोड़िए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपके अंदर जो जज्बा है वो जज्बा भी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक ट्विस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सिलाई की और कैसे हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं या कुछ, क्या कभी आपको ऐसे लगा है कि अच्छे डिज़ाइन्स की कमी है और आप हमें बताएं? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि किस तरह के वहाँ पे डिमांड आती है ड्रेसेस की या कुर्तीज की, या किस तरह के कपड़े वहाँ पे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उस तरीके की सिलाई आना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या वो जो डिमांड है आबिदा और फर्रा उसको पूरा कर पा रहे हैं या उनको कोई चैलेंजेस फेस होते हैं?
0: यहाँ पर जो डिमांड है मैम, ज्यादातर प्लाजो कुर्ती की ज्यादातर डिमांड आती है लड़कियों के लिए और गरारों की, कि पार्टी वियर में अगर वो जाती हैं तो वो गरारे बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पर, और अगर वो सिंपल घर में भी पहनते हैं तो प्लाजो। प्लाजो और गरारे बहुत यहाँ पर चल रहे हैं, बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ टीचर बहुत ही मतलब अच्छी हैं और इनको सारी ही चीजें आती हैं। हमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट से कुछ स्विंग करवाना हो या फिर कोई स्विंग के लिए यहाँ पर लेकर भी आता है तो हमें वापस भेजना हो, क्योंकि हमारी जो टेलर हैं और जो भी हमारी आविदा स्विंग टीचर हैं बहुत अच्छे से उनको मैनेज करती हैं, और पटवाई में भी फातिमा है, और जो चीज उन्हें नहीं आती है वो उसकी ट्रेनिंग लेने की भी कोशिश करती हैं। जैसे यूट्यूब पे हमारा बहुत अच्छा है कि हम कभी भी यूट्यूब पे कुछ भी डाल के देख सकते हैं। हमने इन्हें यही बताया है कि कभी भी उस चीज के लिए ना नहीं करो, अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है या फिर कोई भी चीज स्विंग के लिए आया है या फिर कोई सिलवाने के लिए आया तो उसको ना नहीं करना है। चाहे भले ही आपको नहीं आता हो तो उसकी ट्रेनिंग लो, उससे मतलब सोचो कि हमें कैसे करना है। आज आप एक को मना करोगे कल फिर दो नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो चाहे आप उसकी ट्रेनिंग लो या आगे बढ़ो या फिर आपके अंदर जो भी कमी है उसको पूरा करो, हमारे वहां जो भी आए गेस्ट उसको मना नहीं करो, जाना नहीं चाहिए यहाँ से।
1: बहुत
0: जी
1: बढ़िया
0: मैम,
1: फरा, आपने बताया कि ये भी एक नेटवर्क बनाने का टेक्निक है कि किसी को मना नहीं करना है, और हमारा इसी तरीके से नेटवर्क भी बढ़ता है। अभी तक आपने लड़कियों को क्या-क्या सिखाया है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे?
2: पहले मैं शुरुआत बेबी फ्रॉक से करवाती हूँ। बेबी फ्रॉक वगैरह अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुर्ती सलवार और डिजाइनिंग, फिर उसके बाद डिजाइनिंग नेट वगैरह, ये काफी पसंद है यहाँ पर, काफी डिमांड आती है इस चीज की। लड़कियाँ बस यही कहती है मैम हमें सिलाई के बाद अच्छे से हमें नेक डिजाइन सिखाई है, नेक डिजाइन लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, और ब्लाउज पेटीकोट करारे और पटियाला सलवार, ट्यूलिप सलवार, धोती सलवार, और यही सारा कुछ साड़ी में फॉल लगाना, ब्लाउज वगैरह करना, और लहंगा और शादियों के गरारे और चुनिया तैयार करना, ये सब हम सिखाते हैं।
1: वेरी नाइस। तो आपने पूरा ही एक कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो नहीं सिखाई, मेरा ये कहने का मतलब है,
2: जी
1: और बहुत अच्छे से सिखाई है। और क्या हम जरी जरदोजी को और सिलाई को मिक्स करके बना सकते हैं कुछ ऐसे ड्रेसेस, या आप ऑलरेडी बना रही हैं?
0: जैसे अभी जरी वर्क के हमने कुशन्स कवर बनाए थे, तो स्विंग इन लोगों ने ही की थी, और अभी जैसे कुर्तियां मैंने भेजी थी ऑफिस में, तो जो मैंने जरी वर्क का करवाया तो स्विंग इन्होंने की। बट ये हो जाता है कि हम लोग यहाँ से जरी वर्क करवा रहे हैं और ये लोग हमें स्विंग करके देते हैं।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक तालमेल बैठता है, जरी वर्क जो है, आप तो शादी के लहंगे से लेके बहुत भारी दुपट्टे से लेके एक नेक लाइन पे भी जरी करते हैं। ये जो आर्ट है ये बहुत कमाल का है, और इसको भी हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जो लहंगे, जहाँ तक मुझे पता है, जो भी करोल बाग में या चांदनी चौक में लहंगे मिलते हैं, वो सारे ज्यादातर रामपुर से भी बनकर आते हैं, और लड़कियां बहुत इसमें अपना कौशल दिखाती हैं कि कैसे अच्छे बना सकते हैं। और जो दुपट्टे बनाती हैं आप, जाल वाले दुपट्टे या बॉर्डर वाले दुपट्टे, या अलग से बॉर्डर भी डिजाइन कर देती हैं, और ऐसे गले में भी काट देती हैं डिजाइन थोड़ा सा करके, तो ये जो हुनर है इसको बहुत आगे जाने की जरूरत है। और कैसे हम इसको आगे लेके जाएं, ये एक टीम वर्क होता है। जैसे अबिदा है, फरा है, अकबर है, और भी बहुत सारा एक टीम है आपके पास, इसको आप आगे ले जाने की प्लानिंग करें, सोचें कैसे करेंगे, तो फिर पीछे मुड़ के देखने की कभी भी आपको अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। अभी ये हमारा पुश्तों से चलता आ रहा है, आज आप कर रही हैं, और आगे भी इसको ले जाने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप बनाए रखिए, आगे लेके जाइए। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीड मॉडल का एक कंपोनेंट है, वो एजुकेशन। अभी अबिदा ने भी बोला, फरा ने भी बोला, अबिदा ने भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी, फरा ने भी कंटिन्यू करी, ये हमें पता। और आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिए कि लड़कियां अपनी फीस खुद भर के अपनी एजुकेशन को आगे लेके जा रही हैं। पर एक बात का ध्यान आप रख भी रही हैं और आगे भी रखेंगी, कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आके स्किल्स की ट्रेनिंग लेती हैं, वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी और अपने बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन की डिग्री तो चाहिए चाहिए, पर डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल लिटरेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसको कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन, एंड्रॉयड फोन चलाना नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे पिछड़ जाएगा। और उसकी भी हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उस ट्रेनिंग में कितने लोगों का इंटरेस्ट है, रुझान है, और कैसे हम इसको स्केल कर सकते हैं इस ट्रेनिंग।
0: ऑनलाइन वाली ट्रेनिंग को ना मैम,
1: ऑनलाइन ट्रेनिंग को, टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर सीखना, लैपटॉप में सीखना, काम करना, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना, और आगे बिजनेस को भी लेके जाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक टूल है, और उस टूल को हम कैसे यूज करें जिससे हम अपनी बात भी रख सकें, जैसे ऑडियो विजुअल की ट्रेनिंग है, लैपटॉप को यूज कर सकें आगे एजुकेशन और ट्रेनिंग करने के लिए, कैसे सोशल मीडिया को यूज कर सकें फोन के द्वारा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का और आपके हुनर का तालमेल बैठना आने वाले समय में बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे, और जो 2 साल हम पीछे रह गए हैं, उस 2 साल की जो टाइम है उसको भी पूरा करने की बहुत जरूरत है, तो डबल मेहनत करने की जरूरत है। तो वो मैं जानना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी में कितना रुझान है लोगों का।
0: टेक्नोलॉजी में मैम ज्यादातर रुझाव नहीं दिखा पाती हैं लड़कियां, उनको बहुत समझाना पड़ता है। ज्यादातर वो सोचती हैं कि हमें स्विंग आ जाए तो हम अपने घर पे बैठ के सिलाई करते रहें, जो भी हमें 100-200 रुपए घर के आस पड़ोस के कपड़े आ जाएं या फिर थोड़े से गांव के दूर के आ जाएं, हम यहीं पर करते रहें। बट जब उनसे बात करते हैं कि हम इस चीज से बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप ये सूट सिल के आपके घर में ही मतलब 2-3 लोगों को अर्न कर सकती हो, यही आप अगर टेक्नोलॉजी के जरिए बेचेंगी तो दिन में 10 सूट, 15 सूट, 20 सूट, 50 सूट, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो 100 सूट भी बेच सकती हैं। तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता है कि इसमें ज्यादा रुचि मतलब अपनी लगाइए। और जैसे ही अभी लॉकडाउन में सारी चीजें आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगा रहे थे, हमें उनसे ये भी बताना पड़ता है, हम किसी दुकान पे भी नहीं जा पा रहे थे कोई भी चीज लेने के लिए, तो हमें क्या याद आ रहा था, सिर्फ ऑनलाइन की हर चीज याद आ रही थी कि हमारे पास क्रीम नहीं है तो हम ऑनलाइन पे कर दें, या फिर हमारे फोन में बैलेंस खत्म हो गया तो हम ऑनलाइन पे करेंगे, या फिर हमें घर पे कोई भी खान पीने की चीज चाहिए तो हम ऑनलाइन मंगाएंगे। तो हर चीज का जरिया कहाँ था, ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन वाले ये सोचते कि हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो हमारे पास कोई जरिया नहीं रहता और वो ऑनलाइन जो हम मंगा रहे थे वो भी नहीं मंगा पाते। तो हम हर लड़की को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर इतना अच्छा हुनर है, इतना अच्छा काम है, तो आप बस सिर्फ इसको आगे बढ़ाइए, अपने चाहे फोन से बढ़ाइए। कंप्यूटर है यहाँ पर, रीड इंडिया ने इतने सारे कंप्यूटर लैपटॉप दे रखे हैं, आपको सिखाया भी है कि किस तरीके से हम टेलिंग कर रहे हैं, हम सब आपके साथ भी हैं। तो बस हमें बहुत ज्यादा उन्हें यही समझाना पड़ता है कि इसमें आइए, वो ऑनलाइन पे आने में बहुत ज्यादा घबराते हैं, आते हैं बहुत कम रुचि दिखाते हैं।
1: पर फरा, अगर हम अगले 6 महीने इसके ऊपर फोकस करें और मेहनत करें, और मुझे लगता है कि जब आपने इतने पड़ाव पार कर लिए, और ये पड़ाव कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप जरूर कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अभिदा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। फरा का फ्यूचर तो हमें पता है कि फरा अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, फरा के प्लान्स, फरा के थॉट्स बहुत क्लियर हैं। और आज मेरे को ये कहते हुए भी खुशी होती है कि फरा हमसे भी आगे निकल गई है, और फरा इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ। और अमिता, आपके क्या प्लान्स हैं?
2: मेरे प्लान यही है कि मैं आगे और आगे बढ़ूं। अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ रीट के जरिए हूँ और मैं रीट के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रीट इंडिया जैसे मेरा परिवार है, मुझे सपोर्ट किया हर तरीके से, ऐसे ही मुझे रीट इंडिया हमेशा सपोर्ट करे और मैं रीट इंडिया के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मेरी शादी फिक्स हो गई थी लेकिन मैंने खुद से फैसला किया घर वालों से कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी आगे और बहुत कुछ करना है और अपना नाम की तरीके से रोशन करना है। जैसे मुझे मेरा यहाँ मोहल्ला और पड़ोस जानता है, मैं चाहती हूँ कि पूरा शहर मुझे अच्छे से जाने, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे बुलंदियों तक पहुंचूँ और रीड इंडिया का नाम रोशन करूँ और अपने ख्वाब पूरे करूँ, अपने और अपने घर वालों के।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबिदा, मैं थोड़ा सा इधर अगर बात करूं तो यूएन ने कुछ गोल्स डिफाइन करे हुए हैं जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये है कि हम इस तरीके से आगे बढ़े कि हमारे प्रोग्राम्स सस्टेन हो जाएं। जैसे एजुकेशन है, आप एजुकेशन पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट है, आप तो रोल मॉडल हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तो लाइवलीहुड आप बहुत आगे लेके जा चुकी हैं। देखिए, अगर हम गांव की स्थिति को गांव से ही कंपेयर करें तो आप एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच चुकी हैं। कभी भी आंकड़ों को अर्बन और रूरल से जब हम कंपेयर करते हैं, वो रिसर्च के लिए होता है कि कैसे हम और डेवलप कर सकते हैं। बट अगर हम गांव के आंकड़े गांव के लेवल तक ही एनालाइज करें, तो अगर आप 3,000 या 5,000 या 10,000 कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया कमाई है। इसको आप कभी भी शहर की कमाई के साथ कंपेयर नहीं करिएगा, नहीं तो आपके माइंड में हमेशा यही रहेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर रही हैं और आगे बहुत कुछ करने का जज्बा भी रखती हैं। और जो मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप नोइंगली अननोइंगली उनको ग्रास रूट्स पे इस तरीके से एड्रेस कर रही हैं की डेवलपमेंट है जो वो रूट से हो रही है, और जब रूट मजबूत होती है तो उसको कोई भी उखाड़ के फेंक नहीं सकता उस पेड़ को, और उस पेड़ पे फल लगने ही लगने हैं, और उस फलों का जो जो उसका फायदा है वो बहुत सारे लोग जो जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, वो उनसे कलेक्टिव फायदा उठाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और आपको सैल्यूट भी करूंगी कि आपने अपनी लाइफ में जिस तरीके से मेहनत की, जैसे मेहनत करके अपने सरकमस्टांसेस से आप बाहर आई, ऐसे आगे चल के बहुत सारी औरतों को सिखाएं और बहुत सारी औरतों को अपने साथ जोड़ें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनको बताएं कि आने वाले टाइम पे एजुकेशन भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस करे हैं, आने वाली जनरेशन उन चैलेंजेस को फेस नहीं करे। तो इसी मैसेज से मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
3: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
4: माय नेम इज प्रियंका चंदेलिया। बाय प्रोफेशनली मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैगजीन शूट्स करती हूँ ग्रह शोभा के, एंड रेड इंडिया से मैं कोर्स कर रही हूँ, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग ले रही हूँ, जहाँ मैं दीक्षा मैम से मिली हूँ। दीक्षा मैम बहुत अच्छी है, इनका नेचर बहुत अच्छा है, सिलेबस भी काफ़ी अच्छे से रीड करा रही हैं मैम, एंड प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे से समझा रही हैं मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एक्चुअली सर मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, शाहबाद मोहम्मदपुर विलेज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, एंड मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब पे है, एमसीडी डिपार्टमेंट में क्लर्क है। मैं मदर भी एमसीडी डिपार्टमेंट में ही है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। सर मुझे मॉडल बनना था बट मैं अभी उस लेवल तक जा नहीं पाई, बट मुझे लगा अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 4-5 ईयर्स हो चुके हैं मॉडलिंग लाइन में, बट मुझे इतना उसमें कुछ नहीं लग रहा। मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग से कुछ सीख सकूं, अच्छा कर सकूं, बट यहाँ पे आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई है, एंड दीक्षा मैम ने बताया है मुझे कैसे क्या होगा, और एक्चुअली मैं यहाँ पे आने के बाद जॉब के लिए भी अप्लाई कर चुकी हूँ, पासवर्ड रेस्टोरेंट द्वारका सेक्टर 23, कुछ टाइम बाद मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ पे। एक्चुअली सर रीड इंडिया से मैंने एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया था, कुछ टाइम आई थी मैं यहाँ पे 4-5 ईयर्स से पहले, तब से ही मैं रीड इंडिया को जानती हूँ, एंड रीड इंडिया बहुत बेस्ट है। रीड इंडिया से सीखने को काफ़ी कुछ है, अगर हमें उस लायक बनना है तो हम किसी को, मैं बाहर जाके किसी को बता भी सकती हूँ रीड इंडिया से मुझे क्या क्या मिल रहा है, एंड मुझे क्या क्या सिखाया जा रहा है। जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, एंड रीड इंडिया की जो कोर्सेज है वोकेशनल्स वगैरह के, वो बहुत बेस्ट है, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।
5: मैं पूनम तनवर शाहबाद गांव में रहने वाली, दिल्ली में, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मुझे अपने पेरेंट्स पे इतना प्राउड है, उन्होंने मेरे लिए आज तक जो किया, सीरियसली उन्होंने जो भी किया सिर्फ मेरे लिए किया, और मैं अब उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ, जो लोग बोले कि ये उनकी बेटी है। मैं अपनी पहचान अपने पेरेंट्स के साथ बनाना चाहती हूँ, उनके लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ कि लोग देख के बोले कि यहाँ इन्होंने के लिए कुछ किया, बहुत अच्छा किया। उन्होंने मेरा एडमिशन पूर्णिमा स्कूल, इशावाद गांव के एक पूर्णिमा स्कूल में कराया, वहाँ यहाँ पर मैं बचपन से पढ़ी 5th क्लास तक, फिर उन्हीं के साथ मैं हर काम, ऐसा एक काम नहीं था जो मैंने उनके बिना आज तक किया, हर चीज़, स्कूल भी, यहाँ तक कि स्कूल लेने जाना, मुझे छोड़ने जाना, मेरे स्कूल सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा मिल्क शेक भी वही बनाते थे, मतलब स्टडीज़ करना, अपने स्कूल से आके जो स्कूल में मैं पूरे दिन मस्ती करती थी, पढ़ाई करती थी, टीचर के साथ फ्रेंड्स के साथ हर बात आके उनसे शेयर करती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी सबसे पहले अपने पा के पास जाके अपनी शेयर करती थी, आज भी अगर वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं चले जाते हैं तो मन उदास हो जाता है। मुझे अपनी मम्मी से भी बहुत लगाव है, बट लेकिन पापा से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने मतलब सारा दिन मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा रहती हूँ। मम्मी मतलब स्कूल के लिए अगर ट्यूशन छोड़ाना है या फिर और कुछ कर देना, बट लेकिन मैं पापा के साथ जो मैं करती हूँ, सीरियसली वो बेस्ट मोमेंट मेरे पापा के साथ जो है, बहुत अच्छे मोमेंट है। मैं अपने लाइफ टाइम अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ, लाइफ टाइम। उनके लिए जितना करूँ मैं, जितना करूँ उतना ही कम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है। गर्ल पावर जो होती है, वुमेन पावर, वो एक सबसे बेस्ट पावर होती है। वो गॉड ही उनको पावर देके भेजता है। अगर गर्ल्स बनाई है, वुमेन बनाई, तो उनके लिए भी एक स्पेशल पावर भी उनको दी है। ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, बाहर जाके पढ़ नहीं सकती है, कॉलेज नहीं जा सकती, या फिर ये वाला काम उनके लिए नहीं बना है। हर काम गर्ल्स के लिए बना है। अगर भगवान ने गर्ल्स को, वुमेन्स को बनाया है, तो उनके लिए भी हर काम बनाया है। वो पावर उनके लिए उनको दी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि गाँव की लड़कियाँ ये नहीं कर सकती है, शहर की लड़कियाँ ये कर सकती है। हर काम लड़कियाँ कर सकती है, हर चीज़ पॉसिबल है। हाँ, रीड इंडिया सेंटर पे आके मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बनाए मैंने, टीचर्स के साथ बहुत मस्ती की। यहाँ पे आके मेरा कोई एम नहीं था कि मैं ये सीखे जाऊँगी, बस मस्ती के लिए आ गई थी। बट लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ सीखने को भी मिला, इतनी अच्छी टीचर्स मिली। उनके साथ जब मतलब वो डांटती भी है तो भी अच्छा लगता है। एक दिन बात ना करो तो टीचर भी परेशान हो जाती है, जिसको क्या हो गया। मतलब हर चीज़ यहाँ की, हर चीज़ अच्छी है।
6: I am Priyanka Jaiswal. I belong UP Allahabad and living Sahabad Mohammadpur. मैं यहाँ पे दिल्ली में कोर्स करने के लिए आई हूँ, फैशन डिजाइनर कोर्स। एंड वहाँ पे यूपी में अप्लाई नहीं था जॉब, मतलब कोर्स करने के लिए। हमारे पापा यहाँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं उसके उन्हीं के साथ रहती हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलाई इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं अपने गाँव वाली लड़कियों को जो घर से बाहर नहीं निकल सकती ना, मैं उनको घर के बाहर निकालने के लिए सिलाई सेंटर खोलना चाहती थी, और भी फ्री कोर्सेज के लिए। मैं इतना ही कहूँगी अपने हर लड़की माँ बाप को कि प्लीज उन्हें बाहर भेजें, कुछ करने के लिए उनको भेजें। अधिकतर यहाँ पे उसके हस्बैंड यही सोचते हैं कि ये बोझ है, तो ऐसे ना करें, उसे मतलब समझे कि ये बोझ है। कम से कम अगर वो कुछ करेगी बाहर जाके, तो कम से कम उसके घर में हेल्प ही होगा, अच्छा ही होगा जो होगा। मेरी बचपन से यही हॉबी थी कि मैं पुलिस बनूं, लेकिन मेरी लंबाई छोटी होने के कारण मैं पुलिस नहीं बन सकी। इसलिए मैं ऐसे ही अपने गांव में ही हेल्प करना चाहती हूँ छोटा मोटा। और मेरी स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, जो अभी तक नहीं मिली, शायद न मिल पाएगी कभी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी अपनी लाइफ अच्छे बनाने के लिए, कोर्स करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यही अच्छा मौका है। अपने माँ बाप से कहें हमें घर से बाहर करने के लिए, कोर्सेज के लिए जारी रखें। दिल्ली में पहले हमारे पापा लोग रहते हैं, हम तो बचपन से गांव में थे। तो इंटर मतलब 12th क्लास पास होने के बाद हम दिल्ली आए। जब दिल्ली यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज थे, अच्छे अच्छे भी थे, तो इसलिए मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्सेज अप्लाई कर लिया।

0: हमारे सभी व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ एक और कार्यक्रम में, रिकग्नाइजिंग द लीडर्स फ्रॉम आवर ग्रासरूट्स। ये एक यूनिक कहानी है जहाँ पे आर एस दलाल, उनका जो दिल है वो इतना बड़ा है कि वो अपने गांव को जितना देना चाहते हैं उससे भी ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो वक्त अपनी कम्युनिटीज को गिव बैक कर सके। तो यही एक स्टोरी है जो हम आज आपके साथ लेके आए हैं, और इस स्टोरी को और अपनी कहानी को नरेट करने के लिए हमारे साथ ऋतु हमारे साथ हजर से जुड़ी हैं। वेलकम ऋतु।
1: मैम, मैं सोनीपत से हूँ। मैंने बीए बीएड किया हुआ है, और मैम मेरी शादी यहाँ पे हुई 2012 में। मेरी शादी हुई उस टाइम यहाँ पे हवेली की रिनोवेशन चली हुई थी। 2014 में यहाँ पे रीड इंडिया ने सेंटर ओपन किया। यहाँ पे रीड इंडिया ने मल्टी टास्क लेडीज के लिए रखा।
0: व्यूअर्स को बताना चाहूंगी जो पिक्चर्स शशांक अभी शो कर रहे हैं वो हमारी कम्युनिटी लाइब्रेरी जो झज्जर में है, जो मिस्टर दलाल के जो एंसेस्ट्रल हवेली है उसमें सेटअप है। इसमें एक लाइब्रेरी है जिसकी लाइब्रेरियन ऋतु है, वो बात कर रही थी कि उन्होंने किस तरीके से सेंटर पे काम करते हुए ही अपना जो है लाइब्रेरी में ही उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया है इस सेंटर के दौरान, इस सेंटर के साथ जुड़े रहने के दौरान। तो इसमें जो बच्चों के कार्यक्रम हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। अभी हम मिस्टर दलाल की फोटो भी हमने अपने व्यूअर्स को दिखाई थी। वी विल कम बैक टू दैट अगेन। तो ऋतु आप बताइए कि किस तरीके से सेंटर से कम्युनिटी को बेनिफिट हुआ है, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और बाकी जो हमारे संसाधन चल रहे हैं इसमें लाइवलीहुड को लेके, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को लेके, उसमें थोड़ा आप शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ।
1: मैम, जैसे कि 2014 में जब सेंटर की ओपनिंग तब हुई थी तब गांव कुछ और था, और आज 2021 में गांव कुछ और है। स्टार्टिंग में मैम यहां पे जो लेडीजें थी उनको ये नहीं पता था कि ये सेंटर किस लिए खुला है, क्या इसका पर्पज है। उन्होंने यहाँ पे आके सिलाई सीखी, क्योंकि गांव का जो एरिया होता है वहां पे 11th और 12th में ही लड़की को सिलाई सिखा दी जाती है और फिर बाद में उसकी शादी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे आके लोगों ने इंटरनेट से कनेक्ट हुए, समाज को देखा, यहाँ पे विजिटर्स आए उनके बिहेवियर को देखा कि वो कितना स्टडी कर चुके हैं, आज समाज कितना ऊपर जा चुका है। वो समाज में एक मतलब एक आईना है ये सेंटर समाज का। यहाँ की औरतों ने शुरुआत में सिलाई सीखी, महिलाओं ने सिलाई धीरे धीरे सीखी, फिर उसको एक रोजगार बनाया कि हम सीख रहे हैं तो साथ ही साथ हम अपने घर परिवार के लिए कुछ ना कुछ कमाएं। वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले उनके सामने कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई ऐसा स्किल नहीं था। स्किल था बट वो बाहर उभर के नहीं आया था, सेंटर ने उस स्किल को उभारा है।
0: इसी तरीके से हम स्पोर्ट्स का भी काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे कैसे गांव में स्पोर्ट्स को, एक स्पोर्ट्स की पूरी टीम बनी है आपकी एरिया में, और एक बहुत ही बड़े दर्जे पे मैच भी हुआ था फुटबॉल का, तो उसके बारे में आप कुछ शेयर करेंगी कैसे फोकस।
1: मैम यहाँ पे टाइम टू टाइम टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें बॉयज गर्ल्स जितने भी यूथ हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं, और वो स्टेट लेवल तक भी जा चुके हैं। और यहाँ तक कि सर हर साल में जो वुमेन्स डे होता है उस पे लेडीज के लिए कि लेडीज भी आगे आए, वो भी स्पोर्ट्स को देखे कि स्पोर्ट्स क्या है जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, यहाँ पे सर उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स रखवाते हैं, जैसे रनिंग का हो गया, मटका कंपटीशन हो गया, साइकिलिंग कंपटीशन हो गया। मैम जैसा कि हर इंसान के मन में पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग होती है, जब स्टार्टिंग में सेंटर ओपन हुआ था तो हम लोगों को लेकर काफी नेगेटिव थिंकिंग थी कि ये तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, हर मंथ इनको सैलरी मिल जाएगी बस काम खत्म। लेकिन अब जब हम हर बार सर्वे करते हैं वो देखते हैं कि ये अपने नियर बाई जो विलेज है वहां पे भी वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ की औरतें बहुत खुश होती हैं। हम पहले हाउस वाइफ के उसमें जाने जाते थे कि ये उसकी पत्नी है, ये उसकी उसकी लड़की है, इस तरह से जाने जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे औरतों को खुद के उनके नाम से जाना जाने लगा है कि ये जो है प्रोडक्शन की यूनिट है इसमें 20 महिलाएं हैं, इस महिला का नाम ये है, इस महिला का नाम ये है, तो मैम बहुत ज्यादा चेंज आया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट हमने कम्युनिटी को देखा है कि इंडिपेंडेंट हो गई है, और हमारे लिए भी पॉजिटिव थिंकिंग आई है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भी सोशल वर्क कर रही हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं निस्वार्थ काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो निस्वार्थ काम करते हैं।
0: वेरी नाइस। और आपकी जो हवेली है वो भी सस्टेनेबल है, क्योंकि जिस तरीके से इसका आर्किटेक्चर बना हुआ है और डिजाइन है, ये ज्यादा बिजली खर्च नहीं करते। तो जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये कल्चर को भी प्रिजर्व करने की बात करता है, कि किस तरीके से हमारे गांव में हमारे जो रीड के सेंटर्स हैं, वो नॉट ओनली क्राफ्ट्स एंड कल्चर, बल्कि जो हमारे रहन सहन का तरीका है, खान पान का तरीका है, उसके ऊपर भी हम जितना हो सके नेचर और सस्टेनेबल तरीके से काम कर सके।
1: अभी जैसे कोरोना टाइम में घर में लाइट्स की प्रॉब्लम थी, नेटवर्क्स की प्रॉब्लम थी, सेंटर पे वाईफाई होने के कारण यहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे, एक दिन में कम से कम 60 60 70 70 स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करते थे, अपने प्रैक्टिस करते थे, टेस्ट देते थे, उसी टाइम उनके एग्जाम भी होते थे, तो उनके लिए बाहर नेटवर्क में आना बहुत मुश्किल हो गया था, तो यहाँ पर बैठकर वो अपना काम पूरा करते थे। और मैम जैसे कि कोरोना की वैक्सीनेशन है, तो सेंटर पर इतनी सफाई है, यहाँ पर टॉयलेट्स हैं, वाटर की फैसिलिटी है, लाइट्स की फैसिलिटी है, वाईफाई की फैसिलिटी है, तो ये सब कुछ कोरोना की जो वैक्सीनेशन टीम है उनको ये सब फैसिलिटी चाहिए थी, तो यहाँ पे आके हम उन्होंने यहाँ पे हर हफ्ते हफ्ते में 2 बार या 1 बार यहाँ पे कैंप लगता है, सिर्फ वो इस हवेली में जो फैसिलिटी है उनके लिए नहीं आते, कि वो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, यहाँ पे 2 गांव हैं मैम, मेहंदीपुर है और डाबोदा है, दोनों अलग अलग गांव हैं, तो दोनों गांव के लोग इस सेंटर से कनेक्ट हैं, उनको हर गांव में रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो किसी को बोलेंगे कि यहाँ पे वैक्सीनेशन चली हुई है, तो वो एक बंदा 10 लोगों को बताएगा कि आज वैक्सीनेशन शुरू हो रखी है, तो मैम इससे उन लोगों को भी बहुत फायदा है कि उनको घर घर जाकर बताना नहीं पड़ता, हम भी उनको बताते हैं कि आज के टाइम में वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है। और मैम एक सेंटर एक मतलब उनके लिए भी एक बहुत ज्यादा गॉड गिफ्टेड बन गया, मतलब हर बंदे के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि कोरोना का टाइम ऐसा था जिसमें हर व्यक्ति निराश बैठा था कि हम क्या करें, बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएं, लेकिन यहाँ पर आकर बच्चों ने पूरा पूरा दिन वाईफाई वाईफाई यूज किया, क्योंकि घर में नेट का पैकेज खत्म हो जाता है, और एक घर में ये है कि फोन की दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, तो हम भी अपना पर्सनल फोन उनके साथ शेयर कर देते थे कि आप अपना लिंक इस पे डालिए और आप पढ़ाई कीजिए।
0: वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग रितु। आपके यहाँ पे शुरुआती तौर में एक CSC भी चला था, जिसमें कि पेंशन और जितना भी अकाउंट बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज थी, वो भी आपने गांव में उपलब्ध कराए, तो थोड़ा उसका भी आप चर्चा करें।
1: मैम सीएससी और सीएसवी सेंटर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन यहाँ पे आती है, और यहाँ पे कम से कम 450 या 500 के करीब लोगों का अकाउंट ओपन हो चुका है, जो कि यहाँ से पेंशन लेके जाते हैं, अपना जो बजट है उनका, अपनी बचत यहाँ पे डाल के जाते हैं, ऑनलाइन जितनी भी सर्विस है, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, किसी को ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो वो यहाँ से करवा के जाते हैं, यहाँ से एकदम से, जैसे मैम ट्रेवल की मैंने आपसे कहा था कि ट्रेवल की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो बुजुर्ग वहां पे जा नहीं सकते और हर मंथ उनको पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि पेंशन से कुछ घर ऐसे हैं जिनका पेंशन से ही गुजारा चल रहा है, जो बुजुर्ग हैं अकेले रहते हैं, तो वो यहाँ पे आके पेंशन लेते हैं और उन्हें टाइम टू टाइम पेंशन मिलती है, और ऑनलाइन सीएससी सीएसपी उनको इतना प्रॉफिट दे रही है कि बच्चों के जैसे ऑनलाइन एडमिशंस हैं, तो वो यहाँ पे आके ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, एडमिशन लेते हैं, फीस पे करते हैं, ऑनलाइन टिकट ट्रैवल टिकट बुक कराते हैं, तो मैम ये भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। और मैम यहाँ पे एक फोटोकॉपी की भी मशीन रखी हुई है। फोटोकॉपी के लिए दूसरे गांव में कम से कम 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था उनको फोटोकॉपी के लिए, लेकिन जब से सेंटर ओपन हुआ है तब से मशीन यहाँ पे होने के कारण लोगों का इतना इतना मतलब उनको प्रॉफिट मिला है इससे भी, कि क्योंकि फोटोकॉपी ऐसी चीज है कि आज के टाइम में हर फॉर्म के लिए किसी ना किसी कॉपी की जरूरत होती है, तो वो यहाँ से कॉपी करवा के जाते हैं और यहाँ से फायदा उठाते हैं। और हम भी उनसे बहुत कम प्राइस में उनकी फोटोकॉपी करते हैं, जिससे कि वो यहाँ पे खुश होके आते हैं।
0: थैंक यू हमारे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हमारे साथ हमारी मेंटर डॉक्टर गीता मल्होत्रा जुड़ी हैं। मैम वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू स्मिता। मैं इसी प्लेटफॉर्म पे याद करना चाहती हूँ कि डॉक्टर मिस्टर दलाल से मैं कैसे मिली थी। हमने एक सेंटर बनाया था खनसा में जो कटिंग ब्लॉक में है, तो उसके इनॉग्रेशन के लिए मैंने मिस्टर दलाल को बोला था कि आप आए। वो पूरे पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पे सेंटर लॉन्च करने के लिए आए थे, और तब से उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे गांव में मैं अपनी हवेली लेता हूँ और वहाँ पे आप सेंटर बनाए। और 2012 में मैंने खालसा का सेंटर लॉन्च किया था, और 2014 में शायद हमने मैंने पुलिस काम करना शुरू किया था। तो इट टुक मी 2 years टू फाइनलाइज द प्रपोजल, बिकॉज इट वॉज नॉट दैट वेरी इजी टू स्टार्ट द हील सेंटर। सो मेनी फॉर्मेलिटीज एंड सो मेनी डॉक्यूमेंटेशन आर टू बी डन। सो बट आई वुड लाइक टू से दैट दिस प्रेजेंटली दिस पार्टनरशिप एसोसिएशन हैज गिवन सो मच टू दी इंडिया फ्रॉम मिस्टर।

0: किया कि आप अपनी भी हमें। तो 2 साल पहले कांदाखेड़ी एक गांव है जो मैंने उसके साथ लिया, और वहां पे जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपनी हवेली हमें दे दी और बोला कि यहाँ पे भी आप इनका सेंटर बना सकते हैं। और वहाँ पे भी हमने स्टाफ रखा, स्कूल चलाया, सल्ला भी है जो वहाँ पे सिटिंग एंजिन चलाती है, और उर्वशी मैम है जो उस हवेली की ओनर है और वो भी हमारे साथ जुड़ी है वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट का काम करने के लिए। द पॉइंट हियर आई एम मेकिंग इज द विलिंगनेस टू गिव बैक टू योर कम्युनिटी, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर ये थॉट हर एक के मन में हो तो हमारे गांव तो कभी भी पिछड़े नहीं रह पाएंगे, वो हमेशा शहरों से भी आगे बढ़ जाएंगे और वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं जो यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जैसे ही गांव में अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वुमेन कम फॉरवर्ड इन अ ग्रेट वे, दे आर द रोल मॉडल्स, दे आर द मेंटर्स। आई शुड नॉट से दैट आई एम द मेंटर, आई जस्ट प्ले द रोल, बट दीज वुमेन लाइक रितु एंड मेनी अदर, कविता जी, मेनी अदर हैव टेकन द पोजीशन ऑफ मेंटर्स नाउ, मेंटरिंग द रूरल वुमेन हु आर रिजाइडिंग विद देम इन द विलेजेस। और सेंटर में वो खाली रूरल सीखते नहीं आती है, बट सेंटर में वो अपने माइंड को स्ट्रांग करने आती है, अपने परिवार के लिए वो क्या कर सकती है वो सीखने आती है, और एक कोहेसिवनेस बनती है गांव में कि यस ये हमारा हमारा सेंटर है। और जैसे अभी एक वीडियो शशांक ने दिखाई थी, उसका टाइटल था हमारा हरियाणा, पर मैं ये कहूंगी कि ये लोग अभी ये नारा बोल सकते हैं हमारा मंदिर, हमारा चर्चर, हमारी कामनाखेड़ी। वो सिचुएशन आ गई है अब, और सच में मैं बोल रही हूँ कि एज अ ह्यूमन बीइंग आई हाईली हाईली अप्रिशिएट मिस्टर दलाल्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द टीम हु हैज रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड सो वेल एंड नर्चर्ड द सेंटर लाइक देयर ओन हाउस। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे जो आई शुड से हमारा जो नेटवर्क है, हमारे जो क्लीग्स हैं जो सेंटर में काम करते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं रितु और कविता में देख रही हूँ पिछले 6-7 साल से, वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पक्का विश्वास है बहुत सारी औरतों में भी हुई है गाँव लेवल पे। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक जील है उनके मन में कि हमें कुछ करना है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो रितु जी, मैं आपसे एक बस यही सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने हजारों में औरतों को प्रेरित किया है, आप मेहंदीपुर गांव से आगे भी गई हैं और आसपास के गांव में भी आपने औरतों को मोटिवेट किया है कि आपके सेंटर में आए और जो ट्रेनिंग लिए, बहुत लड़के भी कंप्यूटर सीखने आ रहे हैं, बहुत लड़कियां भी आती हैं वहाँ पे। सबसे बेस्ट प्रोग्राम आपके सेंटर में कौन सा चला है और मैक्सिमम औरतों और बच्चों ने उसको एंजॉय किया?
1: मैम, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक करना चाहूंगी कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया, सर ने दिया, आप दोनों ने मिलकर एक खंडर में जान डाल दी है। क्योंकि जैसे एक शरीर और आत्मा का मिलन होता है, वैसे ही सेंटर, अगर अकेला एक सेंटर होता और उसमें और कुछ नहीं होता तो वो एक अकेला सेंटर कुछ नहीं कर पाता। वैसे ही कम्युनिटी है मैम, अगर हम हैं, हमारे साथ कम्युनिटी नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है। हमारे साथ कम्युनिटी ने मिलकर इतना हम लोगों को भी सपोर्ट किया है, जो हम उनसे बोलते हैं कि आप आइए, हमारी एक रिक्वेस्ट करने पर वो हमारे सेंटर पर आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो औरतों में है, औरतों को स्टिचिंग का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा लगता है कि वो उसमें मगन हो जाती हैं। हम उनका 1.5 घंटे का बैच बनाते हैं, लेकिन वो 1.5 घंटे में यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि कम से कम हमें 3-4 घंटे आप लोग यहाँ पे बैठने दीजिए। तो जब हम लोगों के बैच फिनिश हो जाते हैं तो वो सैटरडे को आती हैं, हमसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मैम, आप कविता से भी रिक्वेस्ट करती हैं कि मैम थोड़ा सा और ज्यादा टाइम दीजिए, मुझे ये करना है। जो हमारे पुराने जो यहाँ पे जा चुके हैं, जैसे 2016 में या 17 में जो बेनिफिशरी रह चुके

0: हैं वो यहाँ पे आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आज भी सेंटर पर आकर कविता से बात करते हैं, उनसे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ये न्यू फैशन चला हुआ है हमें ये बताइए। तो मैम हम लोगों को इतना अच्छा लगता है कि लोग यहाँ की औरतें हैं जो सिलाई से इतनी जुड़ी हुई हैं वो एकदम कपड़े में इतना मगन हो जाती हैं, प्रोडक्शन का जब हम लोग काम करवाते हैं, कुर्तियां जब लेडीज सीलती हैं तो वो इतनी मगन हो जाती हैं कि कविता उनको बोलती है कि आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लगता है, तो वो बोलते हैं हम बताएंगे नहीं हम आपको करके दिखाएंगे। तो मैम वो इतना इतना अच्छा काम करती हैं कि बहुत ज्यादा कि उनके बगैर हम कुछ नहीं है। लेडीजों ने हम लोगों को आगे बढ़ाया है, हमारे सेंटर को आगे बढ़ाया है, सेंटर में जान उन औरतों ने डाली है क्योंकि वो इतना मेहनत करती हैं, इतना परिश्रम करती हैं, इतना खुश होती हैं, यहाँ पे बच्चों को लेके आती हैं, तो मैम वो भी आपको बार बार थैंक करती।
1: बहुत अच्छा लग रहा है सुन के रितु और कविता जो आप कह रही हैं, क्योंकि ये ही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हम सब की, मैं तो ये बोलूँगी, नॉट हमारी ओनली, हम सब की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या करना चाहते हैं आप लोग, आप सबको बताइए कि आपके दिल में क्या है और इसको कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं। बिकॉज इतना जील है, इतना कमिटमेंट है, बहुत सारी औरतें जुड़ी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और क्या करना चाहते हैं, आपकी सोच क्या है वो थोड़ा हमें बताएं।
0: मैम जैसे कि हमारे यहाँ पे मल्टी फैसिलिटीज हैं तो मैम हम हर फैसिलिटी से कुछ ना कुछ इनकम ले सकते हैं। हम औरतों को ये बोलते हैं कि आप आज हमारे पास प्रोडक्शन की 20 की यूनिट है तो हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर वो हमारी 50 या 100 की यूनिट हो जिससे कि हम बड़े लेवल पर हम वर्क कर सकें। क्योंकि अभी हम जो क्लॉथ मार्केट में लेके जाते हैं वो कम प्राइस में सेल होता है तो उसको हम चाहते हैं कि और हम उसको मार्केट में ना सेल करके अपना खुद का नाम दें। क्योंकि मैम मार्केट में जो हम लोगों ने जितना रिसर्च किया है, मार्केट में जो एक शॉप वाला होता है वो इतना पैसा उनसे कमाता है हमसे बिल्कुल सस्ते प्राइस में, जो कि जो मेहनत करते हैं उन बंदों को कम पैसा मिलता है और जो खरीदता है उसको, जो उसको पीस को खरीद कर बेचता है वो इतना इनकम कमाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी एक ऐसा बड़े लेवल का वर्क हो कि हम खुद इंडिपेंडेंटली अपना नाम उससे जोड़ें, एक बड़ी यूनिट बनाएं और हम लोग जितने भी नियर बाय विलेज में गए हैं वहां पे भी हम लोगों की यूनिट्स हो, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं या ऑफलाइन कोर्सेज हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ हर किसी चीज से अगर हमें थोड़ा थोड़ा भी पैसा मिलता है तो हम और हमारे जो साथ वर्क कर रहे हैं बेनिफिशियरी हैं उनको भी प्रॉफिट हो और ये हवेली इसी तरह रनिंग करती रहे। और जो आने वाला फ्यूचर है उसमें अभी जो औरत यहाँ से 100 रुपए कमा रही है हम चाहते हैं कि वो यहाँ से 50,000 कमाए।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बड़ी सोच है रितु, और हम मिलके इसको पूरा करेंगे, मैं इसकी एश्योरेंस देती हूँ। तो सिर्फ अगर कमिटमेंट है आप में और मेहनत करने की क्षमता है तो ड्रीम्स तो फुलफिल हो ही जाते हैं। मैं रितु को बोलना चाहूंगी कि अगर वो कोई एक मैसेज हमारे सारे रीट की वुमेन के लिए कहना चाहे तो प्लीज शी शुड शेयर विद अस।
0: मेरा यही मैसेज है कि हमारा जितना भी रीड का स्टाफ है हम मिलकर अलग-अलग ना हो, मिलकर कुछ ऐसा प्लान करें जिससे जितनी भी कम्युनिटी है उसको फायदा हो और वो जैसा कि अभी मैम कर रही हैं हमें भी गीता मैम जैसा और रणजीत दलाल सर जैसा लीडर बनना चाहिए कि इन फ्यूचर में जब हमारे हम ना रहे तो लोग हमें याद करें कि इन लोगों ने क्या किया है। गीता मैम इतना बड़ा एम लेकर चली हुई हैं निस्वार्थ भाव से, क्योंकि आज का जो टाइम है वो अपने लिए सोचता है, न्यू जनरेशन सिर्फ अपने लिए काम करती है, तो हम जो है हमें भी मैम ने ऐसा बना दिया है, सर ने ऐसा बना दिया है कि हम ये मैसेज हर किसी तक पहुंचाए कि निस्वार्थ भाव का से काम करें, अपने लिए नहीं समाज के लिए जिए, जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए जिए, उनके लिए कुछ करें जितना आप कर सकते हो, क्योंकि शिक्षा हर किसी के पास है, लेकिन शिक्षा को बांटना बहुत जरूरी है। शिक्षा से व्यक्ति शिक्षित तो हो जाता है, लेकिन जब तक वो अपनी शिक्षा को दूसरों तक नहीं बांटता, वो इंसान अनपढ़ है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जितना जिसके पास जो स्किल है वो हमें समाज में बांटना है, और आगे हमें अपनी जनरेशन को भी यही सिखाना है। एक कोरोना ने हमें इतना बड़ा मैसेज दे दिया है कि जब तक हम हैं, हमारे शरीर में जान है, तब तक सब कुछ है। जब हम नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो अभी समाज में देखा गया है कि लोगों ने कोरोना ने लोगों को अकेला कर दिया है। तो हमें अकेला नहीं रहना है, हमें मिलकर रहना है, हमें ऐसा काम करना है जिससे पूरा समाज को बेनिफिट हो। थैंक यू मैम।
1: थैंक यू सो मच। इतना अच्छा मैसेज रितु आपने दिया, एंड सेल्फलेस लाइफ इज द मैसेज विच यू हैव गिवन टू एवरीवन। एंड मुझे पक्का विश्वास है कि जितनी भी औरतें, जितना भी लोग रीड इंडिया के साथ जुड़े हैं, उन्हीं सब उन सबकी सोच यही है कि कैसे हम दूसरों के लिए सर्विस कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों के साथ अपनी एजुकेशन को शेयर कर सकते हैं। वंडरफुल मैसेज रितु, एंड थैंक यू सो मच। स्मिता, यू वुड लाइक टू कंक्लूड द प्रोग्राम?
2: So I'm very, very thankful to Dalal sir for taking that initiative, and of course to Dr. Geeta Malhotra for, so many resources are required. इसके पीछे बहुत काम होता है जो कभी कभी हम recognize नहीं कर पाते। बहुत मेहनत लगती है लोगों को जोड़ने में, इस मुकाम तक लाने में कि इस सेंटर को आज इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। 8-9 सर्विसेज इस एक अकेले सेंटर से प्रोवाइड हो रही हैं, और कोशिश ये है कि इसको धीरे धीरे करके सेल्फ सस्टेन किस तरीके से बनाया जाए, और बिल्कुल जो है सेल्फलेस होके, निस्वार्थ जिसकी हम बात कर रहे हैं, दोनों ही हमारे मेंटर्स जो हैं मिस्टर दलाल एज वेल एज डॉक्टर गीता, इसी इसी जुट में जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से ये कम्युनिटी सेंटर सेल्फ सस्टेन हो और ये आगे बढ़ता जाए, और एक रोल मॉडल की तरीके से हम इसको भारतवर्ष में प्रेजेंट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच टू आवर व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस। दिस वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी दैट वी वांटेड टू शेयर विद यू। थैंक यू सो मच।
3: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
4: मेरा नाम प्रियंका है, मैं शाबान मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मेरा जन्म यही हुआ है। हम परिवार में 5 सदस्य हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और 3 बहन भाई। मेरा भाई 9th क्लास में है, बहन मेरी जॉब करती है, पापा टूरिज्म में है, और मम्मी ने यहाँ से रीड इंडिया सेंटर से नर्सिंग का कोर्स किया था। आज वो जॉब कर रही हैं हॉस्पिटल में। मैंने 5 साल पहले रीड इंडिया सेंटर से कंप्यूटर कोर्स किया था, उसके बाद मैंने एनटीटी किया, और आज मैं एज अ लाइब्रेरियन रीड इंडिया सेंटर में जॉब कर रही हूँ। मेरा जो एम था वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना था। अब मैं रीड इंडिया सेंटर की मदद से, यहाँ से कोर्स करने के बाद मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ काम करने के साथ साथ मैं अपने घर पे भी बहुत सारे काम करती हूँ। जैसे मैं अपनी जिम्मेवारी घर पे निभाती हूँ, वैसे ही मैं अपनी जिम्मेवारी यहाँ रीड इंडिया सेंटर के साथ निभाती हूँ। अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से करती हूँ। मेरे परिवार में सभी वर्किंग है, तो भाई की, छोटे भाई की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाती हूँ। मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, स्कूल से लेके आती हूँ। उसके अलावा मैं उसका उसकी स्टडी में हेल्प करती हूँ, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ, और उसके अलावा उसकी सारी जिम्मेवारियां मैं निभाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, उनके काम भी करती हूँ।
5: हेलो, मेरा नाम निशा सैनी है। मैं जब छोटी थी 10 साल की थी और 6 क्लास में थी, तो मैं शुरू से ही यहीं पे आना शुरू किया है। एनजीओ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू से पसंद रहा है मेरे लिए, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, मैं ना पिछले 7 साल से आती रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मतलब एनजीओ में बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं कर लूँगी अगर कर सकी तो कर लूँगी, अगर जो मुझे इंटरेस्ट रहा जिस चीज़ में मैं वो करूँगी। और एनजीओ में आऊँगी, शुरू से आती रहूँगी। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैंने पढ़ा भी है, लेके भी गई हूँ घर, बहुत अच्छी बुक्स हैं। और टीचर्स भी अच्छे हैं, यहाँ के मैम सब अच्छे हैं। अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब जो बॉयज़ होते हैं ना, पेरेंट्स ना सिर्फ बॉयज़ की मानते हैं, आजकल के ना बॉयज़ की बहुत डिमांड वगैरह है, और गर्ल्स से जो कुछ कर दे जैसे बॉयज़ के तरह जॉब करना चाहती हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके पेरेंट्स पता नहीं क्यों पीछे रोकते हैं, क्यों मना करना चाहते हैं। आखिर लड़की भी तो है, करके दिखा सकती है वो लड़की, जो लड़के काम कर सकते हैं ना वो करके दिखा सकते हैं। लड़की को सब लोग कमज़ोर पता नहीं क्यों समझते हैं, आज के देश में नहीं समझना चाहिए। और वो लड़की ताकतवर होती है, वो अच्छी भी होती हैं और वो समझ सकती हैं, वो पेरेंट्स को खुद अच्छे से कमा के खिला सकती है, जितने बॉयज़ कमा के नहीं खिला सकते। और बॉयज़ से ना बहुत मतलब भी होते हैं, बड़े होते होते ना अपने पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। मुझे बॉयज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बॉयज़ ना पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते और ना ही गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना जानते। जो अच्छे से बात करते हैं पता नहीं कैसी नज़रों से देखते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। वो बॉयज़ है ना बहुत गंदे होते हैं, बॉयज़ की तरफ तो बहुत ही कमी जितना होता है उतना ही तक बात रखें, फ्रेंड है तो फ्रेंड ही तक रहे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बॉयज़ से ना एकदम जैसे आगे आगे अपना करियर करते हैं वैसे वैसे ना लोग नए नए मिलते हैं, और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया। शादी हो जाती है तो उसके बाद अपनी वाइफ की ही सुनते हैं, पता नहीं क्यों सुनते हैं। मेरा मानना है कि जो हमें पढ़ाया लिखाया हमारे पेरेंट्स ही है, जो कुछ है उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी अच्छे से देखभाल करें, जैसे हमें बचपन से पेरेंट्स ने रखा हम उनकी तरह बड़े होके अच्छे से रखें। मैं एक महिला और लड़की के ऊपर एक कविता है मैं सुनाने जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि जींस पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं जो सूट पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं सब सारी ज़िंदगी जीऊँ, पर पेरेंट्स ने मेरे को ये सब करने नहीं दिया। जो बॉयस होते हैं उन सबको आज़ादी दी। शादी होने के बाद ससुराल में गई, शादी होने के बाद मैं ससुराल में गई, सास ने बोला ये करो वो करो, लेकिन कुछ भी करने ना दिया। जो कुछ था सब उसके नाम का था, सिंदूर उसके नाम का, चूड़ी उसके नाम की, पायल उसके नाम का, और साड़ी उसके नाम की, बिछिया उसके नाम का, नाम प्लेट भी उसके नाम का, नेम भी उसके नाम का, आखिर मेरा क्या है मेरे नाम का। थैंक यू।
6: रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है, और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना, और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े BBA और MBA की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो BA कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: Good evening, everyone. Welcome to today's episode of Nurturing Grassroot Leaders, Branding the Local Culture with Development. Today's guest will be Mrs. Sana from Barabanki, UP, who's here to share her story with us. As for a little background about her, she did her schooling in Barabanki but got married at a very early age, so had to wait for a while before continuing her studies. She did MA in English Literature and started teaching in Central Academy School. While working there, she and her husband got involved in an organization named ASI, which now goes under the name of Tanager. And while working in ASI, she was given a project regarding different farming communities. And through that, she got to know about Read India organization. She later joined Read India in March 2018 and is currently working as a center coordinator. Her current goal is to make sure that Read India is providing facilities and benefits to as many people as possible. This was just a little background about her, and she is going to explain that in much greater detail. So with that being said, I would like to request Smita ma'am to continue the program.
1: Thank you, Shashank. Thank you for the brief introduction about Sana. I welcome everybody, all our viewers, to another exciting episode of Nurturing Grassroot Leaders. Jaisa ki Shashank ne bataya, humare saath aaj Sana hai. So welcome, Sana. Welcome to our show. तो सना और देर ना करते हुए हम आपके बारे में और जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे. आप थोड़ा बताएंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में. ब्रीफ में शशांक ने बताया, बट आप भी बताएं कि कहाँ पे आपका बर्थ हुआ, कहाँ पे आपने एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर आपकी जैसे जर्नी आगे बढ़ी उसके बारे में आप बताना चाहेंगे.
2: गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. थैंक यू मुझे ये चांस देने के लिए कि मेरी जर्नी हम शेयर कर सकें रीड इंडिया के थ्रू. जितने भी लोग अब सुन रहे हैं, रीड इंडिया में के वजह से आज हम यहाँ तक लाइफ में पहुँच पाए हैं. आज मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और मेरे नाम से जानते हैं. थैंक्स, वेरी थैंकफुल टू रीड इंडिया फॉर दिस. सो स्टार्टिंग माई जर्नी, मेरी जो बर्थ हुई थी वो मेरे नानी के घर में हुई थी, बरेली में. वो एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में ही है, बट वो दैट इज नियर रामपुर. तो मेरी बर्थ बरेली में ही हुई थी मेरे नानी के घर पे. उसके बाद जब वापस आए दादी के घर पे हम लोग, तो मेरी स्कूलिंग शुरू हुई बाराबंकी से. हम एट्थ में ही थे, तो सामने सर्कमस्टेंसेस की वजह से थोड़ा सा, एज मेरे फादर फॉरेन में रहते थे, ही वॉज डूइंग हिज जॉब देयर, ही वॉज नॉट लिविंग विद अस. हम लोग अपने दादी के घर में रहते थे बट पापा बाहर काम करते थे. तो ऐसे हमारी लाइफ शुरू हुई. बट जब हम एट क्लास में थे तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स घर में होने लगी थी, मम्मी पापा का ये, तो थोड़ा बहुत इसकी वजह से. फिर जब मेरा नाइन्थ था, जब टेंथ में मेरे क्लासेस शुरू होने वाले थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे बाराबंकी छोड़कर अपने फादर के साथ शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी स्कूलिंग एक रेगुलर CBSE स्कूल से होल्ड होकर के एक प्राइवेट टेंथ की मुझे ऑप्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी CBSE रजिस्ट्रेशन होता है कुछ प्रोसेस, तो वो चल रहा था. तो टेंथ में हमको एक्सपेक्ट करना पड़ा. फिर टेंथ में होते होते ही मेरी शादी फिक्स कर दी गई, और फिर ना चाहते हुए भी उस एज पर, एट द एज ऑफ 16 and a half, आई हैड टू गेट मैरिड ड्यू टू दैट. मेरी शादी हुई थी, बट एक विल पावर था कि नहीं, ऐसे तो नहीं बैठ सकते, मतलब दिस इज नॉट फॉर मी. तो मेरी शादी हुई टेंथ में. मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया टेंथ का एग्ज़ाम देने, वो मुझे लेकर जाते थे. शादी के 3 महीने बाद ही मार्च, जनवरी में शादी हुई, मार्च में एग्ज़ाम आ गए. उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया कि मैं पढ़ें, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें. फिर वो मुझे एग्ज़ाम्स के लिए लेकर जाते थे. फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मुझे 12th भी करना है, तो उन्होंने इमिडिएटली हाँ कर दिया विदाउट एनी थिंग. इवन दो आई वॉज मीन लाइक मेरा बेबी था ऑलरेडी, अब्दुल्ला वॉज बॉर्न, बट अगर तुम्हें करना है तो यू कैन गो फर्दर. तो फिर उन्होंने मुझे 12th करने, फिर ग्रेजुएशन मैंने इस तरह पूरा किया. 12th के बाद एक्चुअली मेरी बेटी डॉटर भी, फिर मुझे 2 साल के लिए पढ़ाई अपनी रोकनी पड़ी, होल्ड कराना पड़ा, बिकॉज इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू स्टडी विद 3 of the kids और 2 twins के साथ. इट वॉज वेरी टफ. सो ऐसे 12th हुआ, उसके बाद हमारा फिर ग्रेजुएशन, फिर मैंने MA किया. इस सारे प्रोसेस के दौरान आई वॉज हैविंग माई फैमिली सपोर्ट अ लॉट. इंटर के बाद MA का फाइनल ईयर का रिजल्ट आया, तो मुझे लगा कि अब क्या करना है. तो फिर मैंने यही सोचा कि अब स्टडी को ब्रेक लगा देते हैं, बिकॉज आई मीन कि मुझे बाहर जाना चाहिए। घर में बैठकर हमने पढ़ाई तो कर ली, घर में बैठकर सब कुछ कर लिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आई एम मतलब मैं पूरा टाइम फ्री हूँ। देन आई स्टार्टेड मैंने सीरीज दी, मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि आपने कहीं पर भी आप इतने बड़े स्कूल में आपने अप्लाई कर दिया सेंटर में, आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने बोला मैम एक्सपीरियंस तो पढ़ाने से ही आएगा, कोई भी फ्रेशर कभी एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता, एंड एवरीबडी नीड अ चांस कि वो कुछ अपने आप को प्रूव करे। तो आप एक डेमो दे दो, उसके बाद हम देखते हैं। फिर मैंने उन्हें डेमो दिया तो थैंकफुली मेरा हो गया सिलेक्शन वहाँ पर। इस तरह हमने जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब स्टार्ट करने के 3-4 साल के बाद ही मेरा रीड इंडिया के साथ कनेक्शन हुआ थ्रू ऑब्वियसली थ्रू मैनेजर और अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर इस तरह से हम रीड में स्टार्ट की। रीड में जॉब स्टार्ट करने का सबसे फर्स्ट रीज़न जो मेरा था कि शायद ये बहुत मुझे मतलब हमेशा से एक इनर फीलिंग आती थी कि मुझे सोशल वर्क करना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए। सोशल वर्क करने की जो विल थी उससे ही हमको टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट किया था। बिकॉज आप थोड़ा सा सोशलाइज हो जाते हो जब आप इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप क्लासेस लेते हो, उनमें से कुछ हर बच्चे की एक अलग स्टोरी होती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। मेरा रेसेस का टाइम भी मेरा क्लास में ही जाता था, हम कभी स्टाफ रूम में बैठकर लंच नहीं करते थे, हम बच्चों के साथ क्लास में, इवन दो वो 10-12 के सीनियर स्टूडेंट्स थे, बट मेरा लंच टाइम क्लास में ही होता था। तो बाकी टीचर ऑप्शन भी करते थे कि आपको स्टाफ रूम में आना चाहिए, मैंने बोला नहीं, मेरा एक वो है कि मेरा उनके साथ कुछ है इंट्रैक्शन क्योंकि वो मेरी क्लास है। तो इस तरह से चलता रहा। फिर जब रीड इंडिया के साथ हम कनेक्ट हुए तो रीड इंडिया में के लिए मैंने अपनी जॉब को इमीडिएटली, स्मिता मैम से मेरी पहली मुलाकात दिसंबर में हुई। स्मिता मैम जब पहली बार आई थी यहाँ पर जगह देखने के लिए, गीता मैम, स्मिता मैम एंड नाइट सर, तब भी हम जॉब पर थे, मेरी स्मिता मैम से फर्स्ट टाइम मुलाकात भी नहीं हुई थी। तब जब सेकेंड टाइम में मैम गीता मैम और नाइट सर आए तब हम घर पे थे, इट वॉज डिसम्बर। तो जब मैं गीता मैम से मिली और मैंने उनकी बातें सुनना शुरू की, मैं शी वॉज लाइक मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है, ये भी यहाँ के वीमेन से रिलीज किया है, हम लोग ऐसे काम करते हैं। तो एट द टाइम मतलब मुझे आई वॉज लाइक ब्लैंक, मैम कह रही है क्या ये रियलिटी है, ऐसा होता है, जो ऐसा काम करते हैं? बिकॉज एक इमेज थी, तो भी वेरी ऑनेस्ट एक इमेज थी, आप न्यूज़ देखते हो, आप आस पास का अपने माहौल देखते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, एनजीओ वाले ऐसा तो काम कर ही नहीं सकते, बस नाम का एनजीओ, मतलब दैट वॉज एन इमेज। अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन से पूछो तो यही इमेज है एनजीओ की। आई वॉज लाइक दैट, मतलब आज शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए बिकॉज आई एम वर्किंग इन एनजीओ टू, बट वो इमेज थी, रियलिटी यही थी मेरे लिए। तो मैम बोल रही थी और मैं सुनी थी ऐसे बैठकर, मैम सामने बैठे हुए थे, बट मैम बोल रही थी और मैं सोची थी अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। देन मैम हमारा गुसाईगंज का भी सेंटर सब दिसंबर में ही खुला था हमारे सेंटर के सीमा पर, तो मैम ने बोला कि आप आइए आप देखिए सेंटर हमारा क्या है। फिर मैंने एक बार को इमीडिएटली बोला कि मना मत करिएगा, हम लोग जाएंगे क्योंकि मुझे देखना है क्या है, रियलिटी ऐसी है मैम का सेंटर कहता है। एक बार को भी ये था कि हाँ अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज दैट। जब हम लोगों ने स्टेप इन किया, जब हमने स्टेप इन किया गोसाईगंज के सेंटर के अंदर, मैं इट वाज लाइक मतलब मैं देख रही थी कि स्कूल है, कि ये स्किल सेट्स हैं, मतलब लाइब्रेरी भी है, उसमें कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, मतलब लाइब्रेरी इट वॉज लाइक अ ड्रीम, क्योंकि लाइब्रेरी तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। जैसे लाइब्रेरी होती है हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे गाँव में लाइब्रेरी है, हमारे शहर में लाइब्रेरी है। और आई वॉज लाइक कि यार लाइब्रेरी है यहाँ पे, इन्होंने कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, इन्होंने मशीन भी लगाई, इन्होंने गाँव में ला के प्रोजेक्टर भी लगा रखा है। मीन्स ये सारी चीज़ें एक बंदे के माइंड को बहुत इम्पैक्ट करती है जिन्हें इसकी वैल्यू पता होती है। तो आई वॉज लाइक कि मतलब मैंने बहुत अच्छे से
3: आप थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को, शायद आइडिया नहीं होगा कि ये जो गांव की आप बात कर रहे हैं गोसाईगंज बाराबंकी, इनकी लोकेशन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दीजिए, बिकॉज ऑल ओवर द कंट्री और समटाइम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर व्यूइंग द प्रोग्राम। तो आप थोड़ा बताएंगे जो आप विलेज के, ताकि वो भी विजुअलाइजेशन कर सकें कि जिन गाँव की आप बात बता रहे हैं वो शहर से कितनी दूर है, वहां पे क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि कई बार सुनने वाला ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि शायद एक कंप्यूटर को देखना, हाथ लगाना भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप उसके बारे में भी दीजिए सना।
2: यस यस, तो गुसाई बाराबंकी जो सेंटर है यूपी में है, गुसाईगंज सेंटर भी यूपी में ही है। इंडिया में यूपी एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश यूपी के सिटी है लखनऊ, विच इज़ वेरी वेल नोन बाई एवरीबडी। लखनऊ के बाहर जब हम आते हैं तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर आता है, बाराबंकी सेंटर जो बड़ा गाँव में जिस पे अभी हम वर्क कर रहे हैं करेंटली। और गुसाईगंज सेंटर में है वो अदर रूट पर है, वो लखनऊ से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर की रेंज में है। तो ये बड़ा गाँव सेंटर है जिसके पिक्चर्स अभी डिस्प्ले हो रहे हैं। ये वो सेंटर है, ये पूरी लोकेशन है सेंटर की। तो इस तरह से फिर हम जब बस्तिया गए, बस्तिया में मैंने देखा सारी चीजें, फिर मैंने वहाँ के लोगों से बात करना शुरू की कि ये सेंटर के बारे में आपको पता है, आप लोग यहाँ आए हैं इनॉग्रेशन में, आपको क्या लगता है सेंटर में क्या, क्योंकि मतलब मेरे अंदर क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, तो यहाँ आया है तो क्यों आया, उसे क्या बताया गया, वो क्यों आया, सेंटर कैसे ही सर्वाइव करेगा, लोगों को इम्पोर्टेंस पता है। तो उन्होंने कहा कि जी जी मैम यहाँ पे सब गए थे बताने के बारे में, हम लोगों को बताया गया सेंटर खुलने वाला है। तो हमने पूछा आप लोग आएंगे सेंटर, क्योंकि गांव में शायद आपने कभी देखा नहीं। बोले मैम यही तो बात है कि हमने तो कभी कंप्यूटर देखे ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं कंप्यूटर होता कैसा है, खाली नाम ही सुने। तो गुसाईगंज जो सेंटर है ना बस्तिया, दैट इज वेरी फार फ्रॉम लखनऊ, और वो बहुत ज्यादा ही मतलब बैकवर्ड है, यू नो मतलब प्रॉपर विलेज, विच इज कॉल्ड अ प्रॉपर विलेज, दैट इज दैट प्रॉपर विलेज, मतलब जहाँ पे बच्चों को प्राइमरी स्कूल भी शायद वहाँ उनके घर से थोड़ी दूर पर ही होगा, उन्हें स्कूल भी जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो ये सेंटर तो उनके लिए वॉज लाइक अ चांस कि उन्हें लाइफ में कुछ अचीव होने वाला है, वो ऐसे सेंटर पे खुला हुआ था वो जगह। तो वहां से वो मुझे मतलब दिमाग में आ गया कि नहीं ये बेस्ट है जो बड़ा गाँव में होने वाला है, इट विल चेंज बड़ा गाँव, इट विल गिव आर ट्रांसफॉर्मेशन टू द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन बड़ा गाँव। सो वी वर लाइक ओके, मतलब मी एंड इवान वर सो सैटिस्फाइड कि नहीं अब आप करते हैं, बस अब यही करना है। तो से जाने के बाद मैंने जाके सबसे पहले अपना रेजिग्नेशन लिखा, मैंने कहा मुझे अब काम नहीं करना स्कूल में, मुझे अब यहाँ काम करना है। दैट वाज सो मतलब एक बार वो शायद पहले सोच तो लो, मैंने कहा नहीं मुझे अब यही करना है, मुझे वो जॉब देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है, मतलब मुझे करना ही।
3: हम व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये हमारे ये बाराबंकी सेंटर की है जिसकी बात सना कर रही है, जो हाँ जहाँ पे सना बेस्ड है। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं सेटअप है पूरे सेंटर का, और जो विजिटर्स आए हैं ये कैलिसंस के ग्रुप के मेंबर्स हैं, और भी फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं, लोकल टीम से भी बहुत लोग आते हैं। जो ये सेंटर है ये कैलिसंस नाम की एक कंपनी है जो मिंट फार्मर्स के साथ काम करती है, ये उनके सपोर्ट से ये सेंटर चल रहा है। करीबन 3 साल से ये सेंटर इस एरिया में चल रहा है, जिसको कि सना अपनी टीम के साथ और अपने टीम ऑफ वॉलंटियर्स टीम ऑफ स्टाफ के साथ मैनेज करती हैं, जिसकी स्टोरी सना बताई। तो सना हमने शुरू से ही देखा आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रोल उन्होंने प्ले किया, स्पेशली अर्ली मैरिज हुआ, अर्ली आपके बच्चे हो गए, देन इवन देन यू हैव नॉट गिवन अप। सो ये फीलिंग कैसी थी जब आपको, बिकॉज हमने देखा है स्पेशली इंडिया में सर्टन ग्रुप्स में सर्टन एरियाज में तो बिल्कुल इनकरेज ही नहीं करते, स्पेशली शादी के बाद तो ये एकदम ऐसे ड्रीम कम ट्रू हो गया जिस तरह का माहौल, जिस तरह का यू नो सपोर्ट आपको मिला है। सो यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट?
2: Yes, ma'am. Ma'am, being in a community, in a Muslim community, is very tough to come out of the house. मतलब हमारे यहाँ का तो culture नहीं है वो कि हम घर से बाहर भी जाएं. But education changes everything. I believe in that. और ये क्योंकि जो लोग इसकी importance ज़्यादा जानते हैं, जिसे इकबाल को ये लगता था कि चलो कुछ तो अगर वो करना चाहती है तो करने देते हैं. और हमको ये था कि हमें करना है तो करना है, अगर कोई कुछ बोलता भी है कुछ रोक भी रहा है तो वो अपने रोक रहा है, एक दिन बोलेगा, दो दिन बोलेगा, तीन दिन बोलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। और वो ही हुआ मैम, दो बार तीन बार सबने ऑब्जेक्शन किया फिर सब सारे चुप हो गए मैम। और अब तो ये है मैम, लोग मेरा नाम लेके अपने घर में लोगों को मोटिवेट करते हैं कि सना मैम को देखो, सना मैम को देखो, कुछ सीख जाते हैं उनसे कैसे वो के साथ रहती है, कैसे वो सेंटर का काम करती है, वो घर का भी काम करती है, छोटे बच्चे को भी देखती हैं, बाहर के बच्चों के साथ भी वो ऐसे बिहेव करती है। तो मैम सुनने में खुद को भी अच्छा लगता है, वेरी ऑनेस्ट, खुद को भी सुनने में बहुत और फील होता है कि मेरे लिए लोग ऐसी बात करने लगे हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है तो सिर्फ रेड इंडिया की वजह पे, रेड इंडिया नहीं होता तो डेफिनेटली मेरे बारे में कोई आज ऐसी बात ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि लोग मुझे जानते ही नहीं कि हम कौन हैं।
3: कि ये पॉइंट हम इसीलिए लाना चाहते थे बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है नर्चरिंग ग्रास रूट लीडर्स, तो आप जैसे लीडर्स जो हैं एक इमेज, पॉजिटिव इमेज बना रहे हैं कम्युनिटी में, जो कि चेंज एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो कैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से, तो ये मैसेज हम आपके माध्यम से ये भी देना चाहते हैं कि अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो महिलाएं लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, एंड आप उसका जीता जागता एक एग्जाम्पल है जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, आपके जैसे बहुत लोग होंगे। So that is what I wanted to bring to the audiences. Special mention to you and your family for this initiative जो आपने life changing अपने लिए और अपनी community के लिए लिया है, कि एक second नहीं लगाया और आपने कहा कि मैं अपना job resign कर रही हूँ और मैं रीड के साथ जुड़ के ये कार्यक्रम करना चाहती हूँ। So we congratulate you for this effort and we want to know more about your center now. बाराबंकी में आपका जो ये सेंटर है, इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, कैसे आप कम्युनिटी में जाते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं आपको कम्युनिटी में जाने में?
2: मैम, कैलेसेंस जो हमारा प्रोजेक्ट है, तो दिस इज बेसिकली फॉर मेन फार्मर्स। हम मेन फार्मर्स को उतना ही टारगेट करते हैं जितना हम बाकी कम्युनिटीज को करते हैं। तो मेन फार्मिंग की अगर हम बात करें, तो मेन फार्मिंग कम्युनिटीज में हमें चैलेंज काम करने में जो हमारे साथ पहला चैलेंज है वो ये था कि वहाँ पर लोग बच्चों से मिंट की फार्मिंग कराते हैं क्योंकि वो उनका काम है, तो उन्हें सेंटर तक लाना वो अ बिग चैलेंज, क्योंकि उनको समझा के कन्विंस करना कि आप काम छोड़ कर आओ। तो कभी कभी जो हमारे सेंटर पे जो एक्टिविटीज चल रही थी स्टार्टिंग में, जब हमने 2018 में स्टार्ट किया था, तो हमारे पास बेसिक सेविंग, बेसिक कंप्यूटर कोर्स एंड ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स एंड लाइब्रेरी, हमारी चार कॉम्पोनेंट्स तब थे। अभी तो हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमें ज्यादा मेहनत तब नहीं करनी पड़ी 2018, बिकॉज नया नया सेंटर खुला था यहाँ पर और ऐसा कोई भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी जो जिससे इनको ये बेनिफिट मिलता। तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास बहुत अच्छी फुटफॉल थी 2018, इट वॉज वेरी नाइस। हम लोगों को बहुत कम मोबिलाइजेशन के लिए जाना पड़ता था बिकॉज इतने सारे एडमिशन, 6-7 महीने तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ी, बट आफ्टर 7 मंथ्स आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये तो सिर्फ गांव के ही लोग गा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। और मैं कि एक कैलिसेंस उसका हमारा डोनर है, तो वी शुड फोकस मोर ऑन मिंट फार्मिंग कम्युनिटी, दैट दे शुड कम टू द सेंटर एंड लर्न समथिंग। तो हमने फिर हमने बासा एक पॉइंट है यहाँ पर 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जहाँ पर बहुत मतलब टोटल कम्युनिटी वहाँ पर फार्मिंग ही करती है और मेन फार्मर्स ही हैं। तो हमारे एक SHGs के ग्रुप्स थे पहले, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो उन ग्रुप्स में जाकर वहाँ पर सारी फीमेल्स आती हैं, वो अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती हैं। उन ग्रुप्स के अंदर मैंने जाकर के मीटिंग से लेना स्टार्ट किया, हमने उन लोगों से जाकर बात करना शुरू किया कि आप लोग क्यों अपने लड़कियों को बाहर नहीं निकालती हैं। तो वो कहती है, मैडम हमारे पास, हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो स्कूल जाते हैं फिर वो खेत जाते हैं। तो मैंने कहा कभी ऐसा होता होगा कि वो स्कूल नहीं जाते होंगे, कभी ऐसा होता होगा कि आपका मिंट का सीजन 3 महीने ही रहता है, उसके बाद आप तो आप ही रहते हो, मतलब मार्च टू जून एक टाइम है, आप उस टाइम मत भेजो सेंटर पर, बट आप जब भेज सकते हैं, जब आपके बच्चे फ्री रहते हैं, आप उन्हें तब स्किल्स लर्न करने के लिए सेंटर में भेजिए, क्योंकि वो एक ऐसे स्किल्स आप सीख जाएंगे जो आपके लाइफ टाइम के लिए है। एक बार सेंटर विजिट कर लीजिए, आप देख पाएंगे कि सेंटर में क्या क्या है। लोगों को गांव से के घर से निकाल कर सेंटर लाना ही पहले हमारे लिए चैलेंज बना, 7 महीने बाद जब वो लोग नहीं आ रहे थे, तो उन उसके लिए हम लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा था वो सेंटर, क्योंकि आप पूरे गाँव में जाओगे आपको पूरा दिन लग जाएगा, बट एक ग्रुप जहाँ पर कम से कम 40-45 औरतें मौजूद हैं, मतलब उनकी प्रेजेंस है और वो हर वुमेन एक अलग फैमिली से आ रही है। तो कहते हैं ना, अगर आपने मदर को एजुकेट कर दिया तो पूरी फैमिली एजुकेट हो गई। तो हमने मदर्स को पकड़ा, मदर्स को बताया कि आपने ये करना है अपने बच्चों के साथ, कि मैम बच्चों को अकेला तो नहीं भेजेंगे, हमने कहा तो आप आइए, आपको आपके लिए भी सेंटर है, सेंटर तो सबके लिए है, आप आइए, आपको हम अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप आइए, आपके हस्बैंड आएंगे, हम उनको भी अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप हमसे भी सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम कंप्यूटर सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम ट्यूशन्स पढ़ाएंगे। इतना इतना बताने के बाद मैम जो स्टार्ट हुए हैं उस गांव के लोग आना, हम लोग को लग रहा था कि हम शायद कम मोबिलाइज करना चाहिए था, तो हम उसको संभाल पाते इतना स्टाफ होने के बाद भी हमारे लिए वो चैलेंज हो गया कि अभी ने कैसे संभालेंगे। फिर ये हो चीज होती रही, फिर हमारे यहाँ मैम एक मैम सीनियर मैम हमारी आती थी, उन्होंने बोला कि कम्युनिटी एक्टिविटीज करते हैं। फिर हम सब लोगों ने कम्युनिटी एक्टिविटी स्टार्ट करी। हम लोग कम्युनिटीज में गेम्स लेकर जाते थे, कम्युनिटी के बच्चों के साथ वहीं पर गेम खेलते थे। उसके बाद जब हमारा गेम पूरा हो जाता था तो फिर हम अपने मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि अगर हम मोबिलाइज करने जा रहे हैं तो हम एक ही बंदे से बात कर पाते। उसमें क्या होता था, गेम खेलना स्टार्ट किया, आसपास वाले देख के इकट्ठे हो गए, सारे सोचते थे कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। कभी कभी म्यूजिक बजा देते थे लाउड, लोग घर से निकल के आ जाते थे। फिर मोबाइल लाइब्रेरी की एक्टिविटी हमने स्टार्ट करी, हम लोग वैन में सारी बुक्स स्पीकर्स लैपटॉप्स लेकर जाते थे कम्युनिटी में, वहां पर सारे बच्चों को इकट्ठा करना। मैम वहां पर बच्चे तो किनारे रह जाते थे और उनके पेरेंट्स बाहर निकल के आ जाते थे, अच्छा आपके पास ये भी बुक है। हमारे पास ब्रेल्स तक की डिमांड आई थी कि आप ब्रेल्स लेकर आइए मैम, बिकॉज क्योंकि वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ब्रेल्स की जरूरत थी, तो वहां पे पॉसिबल ही नहीं हुआ दोबारा जाना क्योंकि कुछ टाइम की वजह से। फिर ये कोविड आ गया तो वो चीज़ थोड़ी सी बीच में रह गई, बट अब वो हम लोग प्लान करेंगे कि हम ब्रेल्स मंगा करके हमको जाके प्रोवाइड करें। एटलीस्ट उनकी भी तो विश है कि वो पढ़ें, अब वो नहीं पढ़ सकते नॉर्मल बुक्स, तो ऑफकोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें वो प्रोवाइड करा सकें।
3: अभी हम ऑडियो बुक्स भी लेके आ रहे हैं, सम हमने टाई अप किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्पेशली फ्रॉम फॉर द कम्युनिटी हु आर नॉट एबल टू रीड, ये ऑडियो बुक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं आपके सेंटर में, सो दैट जो नहीं पढ़ सकते किताबें वो ऑडियो बुक्स भी सुन सकें। वेरी वेरी वास्ट वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे चल रहे हैं सना। आपने मैंने ये देखा कि आपने हेल्थ के ऊपर और लाइफ स्किल्स के ऊपर भी काफ़ी काम किया है, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड। थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि विद स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ स्किल्स आपने क्या काम किया?
2: यस मैम, तो हमने हेल्थ के सेशन हमारे यहाँ जनवरी 2019 से स्टार्ट हुए थे, तो उसमें डॉक्टर निधि भाटी जो हमारी हेल्थ कंसल्टेंट है, उन्होंने आकर हमारे सेंटर्स पर सेशंस लिए थे। सेंटर के जो बच्चे सेंटर पर मौजूद होते थे वो उन्हें कनेक्ट कर लेते थे अपनी फैमिलीज को ऑनलाइन, तभी भी वो रिकॉर्ड कर लेते थे सेशन अपने फोन्स में हम लोगों, और वो जाकर अपने मम्मी को बताते थे कि देखिए मैम ने बताया सब्जी ऐसे धो के बनाते हैं, हमने बताया कि ऐसे वॉश करना है, खाना ढक के रखते। तो ये सारी चीज़ें जो मैम ने बहुत मेहनत करी इन बच्चों के साथ, मैम क्योंकि मैम डॉक्टर है तो जब वो बताती थी तो हम लोग जितना बताते थे उससे ज़्यादा उनके बताने से उन्हें समझ आता था कि ये उनको बताते थे बच्चों को, ये डॉक्टर है स्पेशली आपसे मिलने आए हैं, आपके लिए सेशन लेने आए हैं। तो सारे बच्चे मतलब एक मैम के एक सेशन में 20-25 ऐसे बेनिफिशियरी हो जाते थे। मतलब फिर उसके बाद मैम ने सेशन लिए, मैम ने हर टॉपिक पर सेशन लिया, उनकी मेंस्ट्रुएशन पर, उनकी फिजिकल फिटनेस पर, उनके हाइजीन पर, उनके न्यूट्रिशन पर। मैम ने तीन साल में मैम कॉन्टिन्यूसली सेशन ले रही थी और मैम के सेशन से काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ मैम बच्चों पर, स्पेशली जो गर्ल्स आती थी ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकल कर आते थे निधि मैम के सामने कि मैम मुझे भूख ही नहीं लगती, तो मैम उनको बेस्ट सोल्यूशन बताती थी कि आप ऐसे खाओ, आप टाइम मत बनाओ, आपको इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, फिर आपको धीरे धीरे भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैम से बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, मैम उनके आंसर्स करती थी क्वेरीज उनकी, मैम सारी चीज़ें वो करती थी जो वो बेस्ट अपना दे सकती थी। तो निधि मैम के सेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे सेंटर पर।
3: थैंक यू सना। जब हम आपके सेंटर पे आए तो हमने ये भी देखा कि बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी का काम वहाँ पे चल रहा था, चिकनकारी जो क्राफ्ट लखनऊ का तो फेमस है ही और ये आपके एरिया तक भी काफ़ी स्प्रेड आउट है, सो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपने लाइवलीहुड को कैसे प्रमोट किया? बिकॉज मिंट एक बहुत ही कैश क्रॉप की तरह लिमिटेड जो है लाइवलीहुड प्रोग्राम है, सो कैसे आपने और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड कैसे अगर महिलाओं को हेल्प हुआ, एक एडिशनल स्किल थी उनके पास, सो क्या इस चीज से उनको थोड़ा बहुत मदद हुई स्पेशली ड्यूरिंग दिस टफ टाइम?
2: चिकनकारी हम लोगों ने स्टार्ट करा था जब हमारा सेटअप हुआ था, तो चिकनकारी में पहले लोगों को लग रहा था कि यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे दिखेगा क्योंकि लखनऊ के बहुत करीब है, तो फिर हम लोगों ने ये बोला कि आप सीख लो, आपको नहीं पता कि टाइम कैसा आएगा, आपका हमेशा आप खेती नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगी कि जब जो बारिश हो रही है इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँ, तो मैंने उनको यही बोला था कि आप सीखो, आप पहले देखो चिकन क्या है, आप समझो चिकन का काम कैसे होता है, वो कहाँ सेल होगी नहीं होगी वो हमारी एडिट है, ओरिएंट इंडिया लिखेगा वो हम देखेंगे कि हमें कैसे फैलआउट करता है। आप पहले काम सीखो। तो जो जितनी भी लड़कियां थी, जो बहुत सारे बच्चे मैम ऐसे भी थे जो कहते थे कि मैम हम खेती नहीं करना चाहते, बट हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम खेती ना करें तो हम क्या करें। तो मैंने बोला कि ये ही आंसर है आपके जवाब का कि आप स्किल सीखो, आप चिकनकारी का वर्क सीखो, आप हमारे प्रोडक्शन यूनिट में जो डिजाइनर कुर्ते बन रहे हैं आप उन कुर्तों को सीखो, आप स्टिचिंग सीखो, आप एडवांस स्टिचिंग सीखिए, और आप लिमिट मत रखिए कि अगर आपने सेविंग सीखा है तो आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते। आप डेफिनेटली कंप्यूटर के कोर्सेज भी करिए। आप अलग अलग जगह पर वैकेंसी निकलती है, शायद आप हमारे से सीखकर आप कहीं पर काम करने लग जाओ, या चिकन मकारी का वर्क ऐसा है हम आपको काम देते रहेंगे, आपको हम उसका पैसा भी देंगे, हम आपको पे करेंगे, आप जो भी पीसेस बनाओगे जितने बनाओगे हम उसके अकॉर्डिंग आपको पे करेंगे। तो वो लोग पीसेस बनाते थे, हमारे पास थोड़ा सा माल इकट्ठा हुआ, फिर सेलिंग का पॉइंट आया, तो जितने हमारे यहाँ नाम अभी आपने पिक्चर डिस्प्ले करे हमारे इतने सारे विजिटर्स आते थे, तो हम लोग हर विजिटर के सामने मिंट, चाहे हमारे कैलसंस के डोनर्स आए या हमारे कोई भी विजिट सेंटर पर होती थी, हम सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते थे, और वो उन्हें और ऐसा मैम होता भी था कि वो जनरली विद अ गुड हार्ट को बाई भी करते थे उस चीज़ को। मैंने कितनी बार ये चीज़ रिपोर्ट भी करी है कि वो आते थे और वो हमारे प्रोडक्ट्स बाय करते थे। तो उससे उन लड़कियों के फेस पर जब वो प्रेजेंट होती थी कि ये मैंने इन्होंने खरीद लिया, हमने कहा हाँ तुमने मेहनत करी इसलिए इन्होंने खरीदा है, इनको ये बाहर भी मिल जाता, ये लखनऊ जाएंगे ये लखनऊ में ले सकते थे, ये दिल्ली जाएंगे दिल्ली में ले सकते थे, बट इन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि तुम लोगों ने मेहनत करी। मैम दैट वो वर्ड्स उन्हें इतना कॉन्फिडेंस देते थे, उनको मोटिवेशन मिल जाता था कि नहीं मैम आप सही कहती हैं, हम सीख ले हम सीखेंगे इसको।
3: वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसी कोई स्टोरी जो आप इतने सारे बेनिफिशरीज के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ आप काम करें, इतने सारे आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसी कोई एक दो लाइफ चेंजिंग स्टोरी या इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं?
2: श्योर मैम। मैम चिकन की स्टोरी पहले आपको बताते हैं। मैम हमारी जो ट्रेनर थी, ट्रेनर से स्टार्ट करते हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी सेंटर पे ज्वाइन करने से एक साल पहले। मैम मैंने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया, बाद में उनको ही मैंने फाइनलाइज करा जस्ट बिकॉज उनकी क्राफ्ट बहुत अच्छी थी, और जब उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया मैम उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड नहीं है, बिकॉज ही सेड कि अगर मैम हम आपको ये पहले बता देते तो शायद आपको लगता कि नहीं इन्हें रख लेते, बट उनके अंदर वो चीज थी कि नहीं मुझे मेरे स्किल जॉब मिलनी चाहिए, मेरे रीजन के लिए जॉब नहीं मिलनी चाहिए, एंड दैट थॉट चेंज माई माइंड कि नहीं शी इज राइट, उनमें स्किल है। मैम जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कुर्ता बनाया और जो मैंने मैम को दिया था गीता मैम को, एंड मैम शी वॉज सो हैप्पी कि मैम ये पहले ही मैम इतनी बड़ी, हम 2 कुर्ते देते सॉरी, एक कुर्ता मैम आपको और एक गीता मैम को, तो हम शी वॉज लाइक कि ये दोनों मैम इतनी हाई मैम, इतनी हाई प्रोफाइल मैम है, ये हमारे पहले कुर्ते पहनेंगे। मैंने कहा डेफिनेटली पहनेंगी मैम, पहन कर आएंगे और आप देखोगे। तो हम शी वॉज लाइक मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं थी खुशी की कि वो कैसे कुर्ता खुश थी। फिर मैम उन्होंने यहाँ पर 1 साल 1.5 साल तक की जॉब की, ड्यूरिंग कोविड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट उन्होंने यहाँ पर 1 साल जॉब किया, एंड मैम शी वॉज एबल टू फीड हर किड्स, उनकी 2 बेटियाँ हैं एक बेटा है, मैम शी वॉज सो हैप्पी कि मैम आपने मुझे जॉब दिया, मैम मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर पा रही हूँ। दिस मैम हमारे यहाँ एक सेकेंड स्टोरी है, एक सेकेंड स्टोरी है मैम जिसको हम लोगों ने महिपाल जी ने जिसकी स्टोरी कवर की थी, गायत्री पाल मैम उसके, वो यहाँ पर सीविंग पहले करने के लिए आई थी बेसिक सीविंग का कोर्स, मैम उसने बेसिक सीविंग में एडमिशन लिया, उसने बेसिक सीविंग किया, फिर उसने कंप्यूटर्स देखे, बोला कि मैम मैं सीखूँ कैसे, मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती। मैम मैंने खुद उसे 3 महीने बैठकर इंग्लिश पढ़ाई है और इतनी मेहनत से पढ़ाई है कि मैम उसने फिर कंप्यूटर कोर्स किया है, देन उसने एडवांस टीचिंग में एडमिशन लिया, फिर मैम उसने एडवांस टीचिंग सीखा, उसके बाद बोलते हैं कि मैम मुझे मेरे पास पैसे नहीं है मुझे मशीन खरीदनी है। मैंने कहा ठीक है तुम मुझसे ले लो, तुम मशीन खरीद लो। तो बोलते मैम आप वापस ले लेंगी? मैंने कहा नहीं हम वापस ले लेंगे, ठीक है तुम जॉब मशीन खरीद लो। फिर दूसरे दिन आके बोलती मैम थैंक यू बट मैंने मशीन ले ली है, एंड मैम एट दिस टाइम उसके पास इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं, पूरे गांव के मैम वो कपड़े बनाती है, एंड शी इज सो हैप्पी बिकॉज उसके फादर भी नहीं है अभी जल्दी फायर हो गए, तो शी इज सपोर्टिंग हर मदर हर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर फॉर इन देयर एजुकेशन। तो मैम खुद को भी ये फील होता है कि रीड इंडिया के थ्रू हम लोग ये कर पा रहे हैं कि रीड इंडिया ने इतना अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रखे हैं कम्युनिटी के लिए कि जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत है मैम। ये इसे हम नहीं एनालाइज कर सकते पैसों के साथ, ये जो खुशी होती है हम यहाँ कभी एनालाइज नहीं कर पाएंगे पैसे के साथ, कि हम पैसे तो कोई भी दे सकता है मैम किसी को। मैम ये स्किल उनके साथ लाइफ टाइम है।
3: ये स्किल उनके पास हमेशा रहेगी लाइफ में, कभी भी कोई भी मुसीबत आए, जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं कुछ बारिशों के बारे में, आई थिंक अभी जो रेन्स आ रही हैं उसके बारे में, चाहे कोविड हो चाहे ऐसा कोई।
2: मैम ये दोनों चीजों ने यहाँ की मतलब पूरी कम्युनिटी को हिला दिया था। पहले तो कोविड पूरा 20 जैसे गया मैम, सबके बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गए, सबके जो भी स्मॉल स्टार्टअप है वो खत्म हो गए, जो जो हालत मैम जो रेट फार्मर्स को यहाँ पर मिला है, मतलब उनको तो ये था कि फसल में ना ऐसे आग लगा देते हैं, इसको बेचेंगे नहीं। मैम इतना वो मायूस हो गए थे बिकॉज क्योंकि रेट ही नहीं आ रहा था। अब इतनी बुरी हालत चल रही है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता था मैम, गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं थी वो चीज, बिकॉज वो बिल्कुल हो गया था। और मैम कोविड खत्म हुआ फिर दूसरा वेव आया, सेकेंड वेव में मैम जो बचा था जिसके पास वो भी खत्म हो गया। उसके बाद से मैम ये रेगुलर रेन अभी हो रही है, आपको न्यूज में देखते होंगे यूपी में इतने जबरदस्त तरीके से अलर्ट जारी हो गए थे, इतनी ज्यादा बारिश हुई मैम जिसने जो क्रॉप लगाया था वो सब वेस्ट हो गया, पूरा पूरा पानी भर गया। और एक बार ही हो गया, दो बार के मैम कॉन्टिन्यूसली 15-15 दिन बारिश हुई है, 1-2 दिन बारिश हुई है। ये सारे स्टाफ और बच्चे सेंटर में कैसे आते थे मैम हम लोग जानते, और उससे भी बढ़कर उनके सारे क्रॉप्स बर्बाद हो गए।
3: वेरी हार्टनिंग टू हियर दैट। इस दौरान में अगर किसी की भी कोई कला उनके काम आई है तो शायद जो हमारा मुद्दा है कि एक स्किल आपके पास होना चाहिए, चाहे आज आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ने पे वो काम आ सके उनकी फैमिली के लिए, उनकी लाइफ को जारी रखने के लिए। तो वी होप कि हमारे सेंटर से जिन बच्चों ने या जिन महिलाओं ने कुछ सीखा है उसको वो यूज़ कर रहे हों। सो जी
2: यस मैम, मेरे पास मैम बच्चों के कॉल आने स्टार्ट हुए, बच्चे मिलने भी आए थे सेंटर पर कि मैम आप हमें कुछ काम दे दीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है हम आपको चिकन का देते हैं, आप चिकन का स्टॉक बनाकर आप हमें चिकन करके दो कुत्तों पे, हम उनका स्टॉक करेंगे फिर हम उन्हें सेल आउट करके आपको हम आपके अमाउंट देते हैं, एटलीस्ट कुछ हेल्प आपकी हो जाएगी। मैंने उन्हें बोला देखो इसीलिए मैंने बोला था कि चिकन सीख लो शायद तुम्हें कल काम आए। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये पैंडेमिक आएगा, फिर ये रेन आएगी, फिर पैंडेमिक सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा। तो मैम ये सब चीज़ें वो खुद रियलाइज करने लगे कि स्किल सीखना कितना जरूरी है। फिर मैम वो बाकी अपने फैमिली वाले बच्चों को भी लेके आते कि मैम इनका भी एडमिशन कर लीजिए आप इन्हें भी सिखाइए।
3: वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं सभी को बताना चाहूंगी कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग वही कपड़ों को हम भी इनकरेज करते हैं कि इवन विद इन द रीड एंटायर टीम हम लोग चाहते हैं कि हमारे सेंटर्स में जो बन रहा है हम भी उसके क्या कहते हैं, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ दोज प्रोडक्ट। तो हम बहुत खुश होते हैं अगर सेंटर से हमें कुछ ऐसा लेने को मिलता है। जिस चिकनकारी कुर्ते की सना बात कर रही थी हमने उसे बहुत पहना है, आप प्लीज अपनी ट्रेनर को बता दीजिएगा। इनफैक्ट मैम जो है हमारी वो तो कोशिश करती हैं कि जिस सेंटर पे जाएं वो जरूर वहां से एक कुर्ता स्टिच करवाएं, क्योंकि ये जो आपने बात कही थी ना कि जब उस औरत को लगता है कि उसके हाथ का बना हुआ कपड़ा कहीं बाहर जा रहा है और इतना अप्रिशिएट हो रहा है, उसकी सेल्फ एस्टीम जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसके, उसको हम किसी भी लीडरशिप सेशन और किसी भी मोटिवेशनल सेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। सो इनफैक्ट हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम इन प्रोडक्ट्स को अपने सर्कल में, अपने मार्केट में, जो हमारा नेटवर्क है, रीड का जो नेटवर्क है, उसमें प्रमोट करें, चाहे हमारी फैमिलीज हैं चाहे हम लोग खुद हैं। सो प्लीज पास दिस मैसेज टू योर टीम आल्सो दैट आपके प्रोडक्ट्स काफी जो है मतलब मार्केट में अप्रिशिएट होते हैं। सो कीप अप द गुड वर्क एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू कॉल आवर कोर मेंटर डॉक्टर गीता मल्होत्रा, बिकॉज उन्हीं की ये विजन है जिसको हम सब मिलकर आगे लेके जा रहे हैं। सो I welcome ma'am to the show. Good evening ma'am. We have Sana from Barabanki today.
4: Yeah, I have been listening the discussions. Sana, your answers were very, very encouraging. Good afternoon. And I highly appreciate your dedication and the commitment you have given to the Reed Community Library and Resource Center in Barabanki in Barabank. सना बिकॉज मुझे पूरी मेमोरीज मेरी रिवाइव हो गई हैं जब से मैं बाराबंकी जाना शुरू करा था और जगह ढूंढनी शुरू करी थी सेंटर बनाने के लिए व्हेन इंटरैक्टेड विद कैलिसन्स टीम इन यूएस and then we thought that we have to start the work there. जो सबसे पहली कंडीशन हमारी थी कि हम मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज को अल्टरनेटिव लाइवलीहुड देंगे, बिकॉज तब हमें पता नहीं था कि पैंडमिक आएगा या कुछ और चैलेंजेस आएंगे लाइफ में. सो वी स्टार्टेड दैट वी विल गिव सेकेंड लाइवलीहुड टू द मिंट फार्मिंग कम्युनिटी, बिकॉज मिंट इज अ सीजनल क्रॉप, राइट. And I would like to know from you that how many mint farming communities you reached through your interventions and how many have been benefited from that.
2: Ma'am, we have, as per you know, ma'am, we have reached to till 25 to 30 villages and they have maximum population of mint farmers there. So ma'am, if we calculate like this, that 80% of the population in each village is committed to the center, they are connected. They are coming to the center, they have learned the skills and they have moved out. Ma'am, there are many children in mint. I remember one boy was there, his name was Ram, I think. So he was from mint farming communities and he was working in the farms earlier. But when he came to the center and he said, ma'am, I have passed out my 12th, now what should I do? So I asked him to learn computers, because you're a boy, you can learn computer and do something and you can search for a job also. But not only computer, but you should continue with your studies. So he asked me, ma'am, should I do graduation? So I said, yes.

0: और बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी, फिर बुक के लिए हमने डाला था, फिर अप्रूवल होके मैम बुक्स भी आ गई थी हमारे पास। एंड मैम वो लाइक ही वो सिटिंग इन द लाइब्रेरी फॉर 3 to 4 आवर्स रेगुलरली, एंड आफ्टर दैट आई वोंट बिलीव ही वाज इन सेकंड ईयर ओनली एंड ही गॉट द जॉब इन लखनऊ इन फन मॉल एंड ही इज अर्निंग 15 to 18,000 पर मंथ राइट नाउ। एंड ही वाज लाइक ही केम विद टू मी विद अ बॉक्स विद अ स्वीट बॉक्स एंड ही वाज लाइक मैम ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ। मैंने कहा ये मैंने नहीं कहा, ये दीदी ने कहा, प्लीज से थैंक्सफुल। मैम दीज आर द स्टोरीज दिस इंस्पायर मी अ लॉट।
1: No, Sana, this is your contribution. Teed India is just a facilitator because you are sitting there and you are in touch with the villages. I also wanted to know ki bada gaon mein to bahut sare log aate hain wahan pe. To aas paas ke kitne aur gaon hain jisse community itni door door se chal kar aati hai aapke center pe, aur koi aise public transport bhi nahi hai jahan tak mujhe knowledge hai. So I would also like to listen back to revive my memories about that.
0: Yes, ma'am. Ma'am, today only I visited one place, Hasnapur, ma'am, and that, ma'am, I was tired by going by Thar. But ma'am, the children, the girls from that village is coming to the center on bicycles. मैम आई वॉज सो शॉक कि मैम आज मैं सोच रही थी कि वो जब बच्चे आएंगे तो मैंने पूछूंगी कि आप 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर आते हो सिर्फ सेंटर के लिए। तो अभी तो वो आए भी नहीं, बारिश होने लगी, बट मैम इतने ऐसे ऐसे विलेजेस है, दिस इज द लेटेस्ट डिस्टेंस मैं टेलिंग यू कि ये 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर मैम 25 to 30 किलोमीटर बहुत टफ है साइकिल चलाकर सेंटर तक आ पाना। एंड मैम दे आर कमिंग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर मैम इतने इतने डिस्टेंसेस से लड़कियां आती हैं और मैम वो आके बस इतना ही करती है, मैम प्लीज हमारा टाइमिंग मॉर्निंग के बैचेस में लगा दीजिए, हम इवनिंग में जाएंगे तो देर हो जाएगी हमें। तो मैम वो सारे बच्चों को हम लोग मॉर्निंग में एंटरटेन करते हैं, सॉरी क्लासेस की हम लोग मॉर्निंग में ही लेते हैं।
1: सना ये बात सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके पेरेंट्स भी कितने सपोर्टिव हैं, बिकॉज वो भी अलाउ करते हैं कि हमारी बेटियां इतनी दूर साइकिल चला के चली जाए और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि एक सेफ स्पेस पे जा रहे हैं और रास्ते में भी क्योंकि वो ग्रुप में आती है इकट्ठी तो उनको कोई ऐसा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता। दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम योर साइड बिकॉज you motivate them for continuing their education and they find this space safe, protected, support itna milta hai, books unko yahan se milti hain, knowledge support milta hai, aap unke issues resolve karti hain, to yahi ek community library ka jo services hain you are providing more than what is needed actually, so that is highly appreciated. Main और भी मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पर मैं थोड़ा और भी आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ तो आप कम्युनिटी को हैंडल करती हैं जिनको समझाना मोटिवेट करना एनकरेज करना और फिर उनको टाइम भी देना और दूसरी तरफ है आपके विजिटर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल डोनर्स हैं और जो विजिटर्स हैं क्योंकि कैलिसंस हैव द ऑफिस इन पुणे they come to UP quite often before COVID. So, aap kaise apna dono taraf balance bana ke rakhte hain?
0: Ma'am, sometimes so we have the information that they are coming and sometimes they come like this only. So, because ma'am, I'm very punctual. I'm regular in the office. Because I don't like taking leaves at all and I don't allow the staff also to take leaves unnecessarily. So, this is the thing that when they come without any information, we all are here. We all are present in the center. So we know that abhi wo aaye hain, toh I have to give my, at least they take my 1 hour. So I have to stop all the children, ki aap log library mein jaake baithiye, abhi main koi session nahi lungi, abhi main in logon se baat kar rahi hoon. Phir main unke saath pura unko explain karna, pure center ke baare mein, kaise hum kaam karte hain. And they ask so much about everything. About Green India, about, because they are not the donors exactly, because they are coming with the donors, so they are from different companies also, so they don't know what is Green India. So I have to explain them each and everything about Green, about the community, about the children coming to the center, what services we are giving at the center, what are the facilities that are being offered to the students in Green India. So this happens every time. And the visitors are very frequent in Badagaon Center. So last year, like 10

0: पेंडेमिक से तो अभी तक सिर्फ दो ही विजिट हुई है, बट 2018 एंड 19 वाज फुल ऑफ विजिटर्स. एवरी मंथ देयर इज समबडी हैज टू कम टू द सेंटर एंड वी समटाइम्स फील लाइक सरप्राइज दैट दे आर सीइंग विजिटिंग ओवर हियर इन द ऑफिस एंड वी सी समबडी मूविंग इनसाइड द ऑफिस एंड आई वाज लाइक गुड आफ्टरनून सर, तुम भी आप काम कर रहे हो तो एकदम डिस्टर्ब माइंड में एंड एवरीबॉडी कोई आगे सामने से खड़ा हो जाता है. लाइक आई टेक 2 मिनट टू थिंक दैट हु आर देयर इज लाइक कभी कभी चेहरा ही नहीं याद आता कि कौन है ये. So it happens sometimes with me.
1: And when you deal with the community, then you just simply motivate them, encourage them, listen to their issues, problems, and then you, inspire them to come to the center regularly, right? So these yes. two things go parallel, right?
0: Exactly, ma'am. I remember one story.
1: Yeah, please continue.
0: Ma'am, I remember one story. There was one girl in my beauty section. She was a trainer in beauty and bar. So she was coming from 7 to 8 kilometers far away. Ma'am, the one boy was there. He was continuously उसको परेशान करने जा रहा था मॉर्निंग में आने के टाइम पे मॉर्निंग शाम को जाने के टाइम पे. तो मैम शी कंप्लेन 2-3 times टू मी कि मैम मैं नहीं आऊंगी सेंटर, मैम मुझे नहीं सिखाना बिकॉज अभी घर में पता चल जाएगा तो मैम बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए. And she was a trainer, so even though she was a student, also then I had to take care of it. Then, ma'am, हमारे पास एक trainer था हमारा जो हमारे लिए community में जाके session लेता था. I asked, I told her कि अभी घर पे कुछ मत बोलो. Then I have told Deepak, आप जाओ आज ma'am को लेके घर bike से और आप देखो कि ma'am को कौन परेशान कर रहा है. फिर ma'am उन्होंने वो जाके घर पे छोड़ के आया, फिर उसने मुझे आकर बताया कि ma'am ये है. फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला एक बार को कि आप जाइए आप इनके घर में जाकर कंप्लेन करके आइए कि ये क्यों परेशान कर रहे हैं. मैम बार हिमसेल्फ वेंट टू फ्रेंड देयर और उसके बाद ही रिजॉल्व दैट इशू. तो मैम ये सारे चैलेंजेस गांव में बहुत आते हैं क्योंकि मैम बिल्कुल सन्नाटा होता है, एकदम रास्ता अंधेरा होता है, बाघ होती है आस पास, बहुत सारे फार्म होते हैं, बाघ होती है जिसमें रोड पे भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता, सारे पेड़ इधर उधर से कवर होते. तो मैम वी फेस दीज चैलेंजेस एवरी टाइम विद गर्ल्स विद बॉयज.
1: Sana, major of the population in Barabanki and Vadagam are Muslim population, right? And many girls come from these families to your center. Are there any stories of delayed age at marriage or continuing higher education, convincing their parents that they want to learn more from the REIT center and establish themselves, then they'll get married?
0: Yes, ma'am. And there was one girl. She was coming to the center from 2018 only. So in 2019, when she was about to get married, she came to me, ma'am, मैंने तो पहले अपने मम्मी पापा को बोल दिया कि आप शादी तो मेरी कर रहे हो, but मैं जब तक अपना अपना एडवांस टीचिंग का कोर्स सेंटर से मेरा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना वहाँ. तो मैम शी वॉज लाइक शी स्टेड हियर फॉर 6 months, शी लर्न कम्प्लीटेड हर कोर्स एंड देन शी वेंट बैक. मुस्लिम कम्युनिटीज में तो स्पेशली जैसे बच्चे 10th 12th में लड़कियाँ आ जाती हैं, पेरेंट्स स्टार्ट सर्चिंग फॉर देयर मैरिज. बट मैम अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन हैज आल्सो कम हियर इन बड़ागांव. आई हैव आल्सो अर्लियर डिस्कस्ड दैट कि अभी तो पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे बिकॉज दे सी ऑल अदर कम्युनिटीज की उनके घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं देन दे गेट मैरिज. यहाँ पर भी मैम लोगों का काफ़ी माइंड ट्रांसफॉर्म हुआ है. जितने मेरे कम्युनिटी विजिट से जितना मेरा पेरेंट्स के साथ इंट्रैक्शन हुआ है, हम सब लोगों ने उनको यही बोला है कि आप पहले अपने बच्चे को एटलीस्ट फिजिकली फिट हो जाने दीजिए देन लेट हर गेट मैरिड. एजुकेशन तो बाद में आती है, आपको ये स्किल्स सीख रहे हो वो भी बाद में आता है, बट लेट हर गेट फिजिकली फिट टू गेट मैरिड. एटलीस्ट वो 18-19-20 साल की होनी चाहिए किसी की भी शादी करने के लिए. मतलब 20 इज वेरी यंग इफ यू काउंट एज पर द करंट सिचुएशन, 20 इज ऑल्सो वेरी यंग टू गेट मैरिड. सो दिस हैपेंस एवरी टाइम that we have to counsel the parents, we have to counsel the girls and they come and they discuss with me everything, especially the Muslim communities.
1: Very nice. It's very satisfying to know all these things because it's not only about Muslim community or a Hindu community. The jo hamare regulations bane hue hain ki mentally, physically, socially, the girl should be prepared to get married, only then she should get married. और जो जो कंपोनेंट जो अभी ऐड हो रहा है कि शी शुड बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ऑल्सो बिकॉज कोविड हैज टॉट अस मेनी थिंग्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड बी रेडी टू यू नो सपोर्ट द फैमिली व्हेन एनी एमरजेंसीज कम इन द फैमिली. सो वो भी हमारे सेंटर की तरफ से आप हमेशा उनको कन्वे करती रहती हैं. सना अभी हम जो फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम सैटेलाइट्स भी बना देंगे, राइट? और जब हम सैटेलाइट्स बनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, और बाय चांस अगर थर्ड वेव आ जाती है और जो बच्चे 25-30 किलोमीटर दूर से आपके सेंटर में आते हैं शायद वो ना आ पाए, तो उनके लिए जो हम सैटेलाइट्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप तो कम्प्लीटली तैयार हैं उस काम को करने के लिए,
0: from everywhere after 1 year here and after 1 year in the different villages, because that will help us to build good relations with the community. We will get more people benefit from the center, because it will be moving, like it will be a mobile center, then it will help many people over there. And if you talk about the district library, it will be a very, very good option if we are going with them and we are partnering with them, because that will make an image of Read India more powerful and more accessible to people, because they will know what Read India is and what facilities what we are giving to the children everywhere.
1: Very nice. Actually, the thought process which we are having is also matching, and we can do much more whatever we are committed to. And I'm sure that Barabanki Community Library and Resource Center can do wonders. That I'm sure, under your guidance and commitment, what you're showing to Read India from the past 3 years, and we will also do the impact studies and collect the stories what you are sharing on this platform,
0: sure.
1: So that we can share with the wider community also. At this point, thank you so much for having the brief discussion with me. I would hand over to Smita now.
2: Thank you, ma'am. Thank you for your inspiring interaction with Sana. So, Sana, बहुत ही अच्छा लगा आपकी जो जर्नी है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करके. आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. Anything that you want to share with your children? कैसे आपके बच्चे, I know you have 4 beautiful children, so इतनी strong mother को, इतनी strong family को देख के how they are feeling, especially both of your girl, the twins, the beautiful twins that you have, anything that you want to share about them, how their lives have been impacted due to this entire, Read initiative being in your village and you being an inspiring person in your own community.
0: Yes, ma'am. From last year, if you talk about COVID only, and they were like, kuch karne ke liye nahi hai, mama, kya karenge? मैंने बोला कुछ नहीं, जब सेंटर खुल रहा है आप सेंटर में आके बैठो, अब बच्चे आते हैं आप उनको पढ़ाओ. इससे क्या होगा, आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी, उन बच्चों को भी आपसे सीखने का मिलेगा, बिकॉज आप लोग अच्छे स्कूल्स में जाते हो तो आप उन्हें ज्यादा बेटर पढ़ा सकते हो, आप उनका पर्सपेक्टिव समझ सकते हो कि जो क्या है दैट वर्ल्ड. सारे छोटे बच्चों को अभी तक देवर टेकिंग द क्लासेस एंड दे टेक सो गुड क्लासेस ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन एंड दे आर लाइक, मैम आप पढ़ाइए, दीदी को बोल दीजिए पढ़ाने के लिए. So I'm like, okay, जाओ पढ़ा दो आप. So it has happened, ma'am. Yes, ma'am. And it helps, ma'am. Every child, if they share their knowledge with each other, they learn also, and everybody learns. I am learning till date, ma'am. I have learned so much from you, from Vita, ma'am, from everybody. So the learning is never ends. I believe that.
2: And आपके parents को कैसा लगता है, जो सना है जो शायद कहीं पे अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पा रही थी और आज वो लोगों तक एजुकेशन को पहुंचा रही है?
0: मैम एक्चुअली माय पेरेंट्स आर सेपरेटेड, दैट वाज अ रीजन आई गॉट मैरिड अर्लियर. सो मैम पापा के साथ सच कोई कनेक्शन ही नहीं है, बट माय मदर फील्स वेरी प्राउड ऑफ अस बिकॉज़ वी थ्री ऑफ अस आर वेरी you know, active. And my other sister, you know, my sister who's living in Hong Kong also, she's also working for an NGO only. And very she's working nice. From past 7 years. So we both are very social and we help each other a lot in everything.
2: Very nice, Anna. Any last message that you want to give to young girls or women who are in the same position or your community?
0: Yes, ma'am. Ma'am, only I can say only one thing. If you're getting married, if your parents want you to get married early, maybe any because of any reason, आपको ये चाहिए कि आप गिव अप मत करो किसी भी लाइफ का किसी भी लाइफ के स्टेज पर जस्ट डोंट गिव अप एंड कीप लर्निंग दैट विल हेल्प यू फॉर योर एंटायर लाइफ नथिंग मच मैम
2: ऑन दोस इंस्पायरिंग लाइंस इफ देयर इज नथिंग एल्स देन वी कैन यू नो क्लोज दिस सेशन फॉर टुडे थैंक यू सो मच सना फॉर शेयरिंग योर सच अ ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग जर्नी थैंक यू गीता मैम for constantly mentoring us and thanks to Shushank for moderating the session. We wish you all the very best, Anna. Hopefully, you reach all the communities ko reach and your satellite centers are also as successful as your present center. Hai. Thank you so very much.
0: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you.
2: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We can end the session. We will join you again on Friday with another exciting program on culture knowledge.

ये डेंगू डेंगू क्या है, ये डेंगू डेंगू जब आसपास पानी जमा होता है तो एडिस पैदा होता है ये डेंगू मच्छर।

0: तेज बुखार, सर दर्द, जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द, जी मचलना, त्वचा पर चकते और थकावट, यह हो सकता है डेंगू। डेंगू एडिस मच्छरों से फैलता है। अपने घरों और आसपास मौजूद गमलों, बाल्टियों और कूलर्स और गड्ढों में पानी जमा न होने दें और मच्छरों के काटने से बचें।
1: हेलो, मेरा नाम तनु है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे कंप्यूटर्स कोर्स के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर रीड इंडिया सेंटर में आई। मुझे नई योजनाओं के बारे में पता चला, नई नई चीज़ सिखाई जा रही है, बट मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट था तो इसलिए मैं कंप्यूटर सीखना चाहती थी। तो मुझे कंप्यूटर के बारे में पहले कुछ नहीं पता था, बट अब मुझे कंप्यूटर के बारे में पता है और कंप्यूटर के न्यू ऐप्स के बारे में टीचर ने मुझे बताया। पर पहले मुझे नए ऐप्स के बारे में पता नहीं था, पर अब मुझे पता है। और यहाँ की जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे से समझा रही है, मुझे समझ में आ रहा है। मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया, उन्होंने कहा कि ठीक है कर लो कोर्स।

0: నా పేరు సరిత. మా గ్రామం పేరు కలుగుట్ట గ్రామం. నేను కడతెట్లపల్లి గ్రామంలో రీడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ద్వారా సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ నేర్చుకున్నాను. దానివల్ల నాకు చాలా లాభం జరిగింది. ఎందుకంటే ఫేక్ కాల్స్ నమ్మకూడదని, ఈమెయిల్ ఐడి, గూగుల్ పే, బ్యాంక్ అకౌంట్ లాంటివి చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవచ్చు. ఇంకా దీనిని నేను మా ఫ్రెండ్స్ కి, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి, మా చుట్టుపక్కల వాళ్లకు నేర్చుకోవాలని చెప్పాను. దీని వల్ల మనకు చాలా లాభం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రీడ్ ఇండియా.
1: పేరు ధనశ్రీ. మా ఊరు పేరు రంగంపల్లి. మా ఊరు నుంచి నేను 5 కిలోమీటర్స్ వరకు నడిచి కడపనాకంకి వెళ్లి చదువుకునేదాన్ని. అప్పుడు మా కడపనాకం పక్కనే కడతెట్లపల్లి ఉంది. మా ఊరు నుంచి 2 కిలోమీటర్లు. అక్కడికి వెళ్లి నేను కంప్యూటర్ నేర్చుకున్నాను. అంతకుముందు అయితే అసలు నాకు ఓపెన్ చేయడం అసలు టైపింగ్ చేయడం అసలు ఏమీ రాదు. మా స్కూల్లో ఉంది కానీ అది ఎక్కువగా యూజ్ చేయరు, అసలు నేర్పిరు. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా నాలెడ్జ్ పెరిగింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 9th లో ఉన్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ కాబట్టి మాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో కూడా చాలా యూజ్ అవుతా ఉంది. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది వెళ్లారు, వాళ్ళకు కూడా నేను అర్థమయ్యేలా చెప్పాను. కాబట్టి కంప్యూటర్ క్లాసెస్ వెళ్ళినందుకు చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంది నాకు. ఎంఎస్ ఆఫీస్ ద్వారా పెయింటర్, పవర్ పాయింట్ ఇంకా చాలా నేర్చుకున్నాను. నాకు కంప్యూటర్ నేర్చుకున్న ద్వారా చాలా యూజే ఉంది, కానీ ఏమీ నష్టం లేదు. కాబట్టి నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది చెప్పాను. చెప్పి వాళ్ళని కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఇంకా చాలా రీడ్ ఇండియా సెంటర్ మాకు పక్కనే ఉంది కాబట్టి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దానివల్ల మాకు చాలా యూజ్ ఉంది కాబట్టి మా ఫ్రెండ్స్ తో పాటు మేము అందరూ వెళ్ళి కంప్యూటర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ రీడ్ ఇండియా.
2: హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ షామి ఫ్రమ్ బారెట్పల్లి. డ్యూరింగ్ కోవిడ్ పీరియడ్ ఐ అటెండెడ్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ క్లాస్ కండక్టెడ్ బై రీడ్ ఇండియా. Before this class, we had no idea about such thoughts. This class helped me and surrounding people a lot. We got to know that we should not share the OTP and passwords with others. Before this class, one of my friends lost 2000 rupees, but now we all are aware of such thoughts. This class was really very helpful. We all are thankful to Read India. Thank you very much.
3: Mera naam Rekha Singh hai. Katahum Katahri gaon mein rehte hain. Hamari umar 40 saal hai. Hum high school tak padhe hain. Ye hamare yahan Read India ka center khula hai. Wahan par computer silai sab se juda hai. Hum logon ko pata chala to hum log apna bhi registration karaye aur padhe seekhne bhi aate the. वैसे हम लोगों को बहुत सारा चीज सिलने और काटने का आ गया है, हम लोग कुछ नहीं जानते थे, तो इतना सब बहुत कुछ आ गया है. मास्क वगैरह, फ्राक और बेबी मेकर और बहुत से सलवार कुर्ता कुर्ची ब्लाउज पेटी को बताया गया. सब कुछ काटे, अच्छे से सिले, अपना भी सिले, अपने घर वालों का सिले, थोड़ा सा हम लोगों का बचत भी हुआ.
4: मेरा नाम आकांक्षा शुक्ला है. मेरी उम्र 20 साल है. हमने यहाँ रीड इंडिया के सेंटर समराइज से सिलाई सीखी है. पहले हमें थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, उसके बाद हम जब यहाँ सीखने आए तो हमें पूरी तरह से सिलाई आने लगी है. और पहले अपने कपड़े कहीं टेलर के यहाँ सिलवाते थे, अब हम अपने आप सिल सकते हैं. इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आया. जब हम यहाँ सिलाई सीखने आए तो हमें कई सारी ट्रेनिंगें मिली और उससे मेरे जीवन में व्यक्तित्व में सुधार भी आया. और हम अब अपने जैसी लड़कियों को ट्रेनिंग देना चाहती हूँ.
5: मेरा नाम नैन्सी गुप्ता है. मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ. मेरी उम्र 16 साल है. रीड इंडिया सेंटर के जो कटहरी में खुला है उस पर मुझे पर्चे के द्वारा पता चला. जो रीड इंडिया सेंटर के पर्चे छपे थे वो मेरे तक पहुँचे, तो मैं यहाँ पर आई और इससे जुड़ी. मेरा एडमिशन हो गया और फिर मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ, जिससे मुझे फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलने पर मैं इससे जुड़कर काम कर सकती हूँ. पहले मुझे कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट लगता था क्योंकि मेरे आसपास कहीं भी कंप्यूटर सेंटर नहीं थे, लेकिन जब यहाँ रीड इंडिया सेंटर खुला तो मैं कंप्यूटर में सीखी और मुझे लगा कंप्यूटर बहुत आसान होता है और मुझे कंप्यूटर के सारे डर खत्म हो गए। और मैं रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत थैंक यू सो मच करती हूँ और यहाँ पर जो मैम है और टीचर है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
6: मैं विनीता मौर्य है, मैं ग्राम कटहरी में रहती हूँ, मेरी उम्र 35 साल है, एक अच्छा तक पढ़ी हूँ। मेरे गांव में रीड इंडिया सेंटर खुला है, जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ आई, अपना एडमिशन कराया और फिर सिलाई सीखना शुरू कर दिया। मुझे सिलाई करना लगभग आ चुका है, जैसे कि मास्क बनाना, बच्चों के कपड़े सिलना, औरतों के ब्लाउज सिलना, ये सब मैं कर लेती हूँ। अगर अवसर आया तो ये सब मैं सिलकर बाहर को निर्यात कर सकती हूँ।
7: कोमल पाल है, मेरी उम्र 17 साल है, मैंने रीड इंडिया सेंटर सिमराई बाराबंकी ट्रेनिंग ली है। पहले मुझे मतलब सिलाई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, उसके बाद मैंने मतलब अपने कपड़े स्वयं सिल सकते हैं अपने पूरे घर परिवार के, और जो मतलब जो पहले था जो पैसे दूसरे को देते थे, अब वो पैसे मतलब खुद मतलब बचत कर सकते हैं। और मेरे ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया।
8: मेरा नाम बिंदेश सिंह है। हमें अनेक प्रकार के हमारे जीवन में बदलाव आए हैं इस सिलाई को लेकर, और जब मैं जो भी चाहती हूँ सिलाई से संबंधित जो ग्रुप बनाकर वो आगे काम भी कर सकती हूँ, अपना सिलाई का कोई सेंटर खोल सकती हूँ या समूह बनाकर मैं इकट्ठे कपड़े सिल सकती हूँ, सिलकर मार्केट में भेज सकती हूँ, जो भी चाहती हूँ सिलाई संबंधित कार्य कर सकती हूँ।
9: मासूम है, मेरी उम्र 21 ईयर है, मैं बी ए द्वितीय वर्ष में पढ़ती हूँ। मेरे ग्राम का नाम कटारी चंदाय है। जैसा कि मुझे पता चला कि मेरे गांव में रीड इंडिया का सेंटर खुला, उसके बाद हमने इसमें एडमिशन लिया और आज हम अच्छे से कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों को कंप्यूटर सीखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के घर से 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर सेंटर है और वहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ता था, इसलिए घर के पेरेंट्स भी इसकी इजाज़त नहीं देते थे। उसके बाद जब से ये सेंटर खुला तब से हम लड़कियाँ आत्मनिर्भर हुए और कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जान सके, और आज स्थिति ये है कि हम लोग कंप्यूटर को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, अच्छे से चला भी रहे हैं, और ऐसा रीड इंडिया सेंटर की वजह से हुआ। कंप्यूटर को सीखकर हम आगे अपने रोजगार के अवसर अच्छे से खोज सकते हैं।
10: आई एम राखी फ्रॉम केलवाड़ा। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और इसे लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। निधि मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया इस ट्रेनिंग में, जैसे कि हेल्थ वर्कर क्या होते हैं, वह समूह जो हेल्थ की जानकारी रखता है उसे हेल्थ वर्कर कहते हैं। इसमें हेल्थ वर्कर का कार्य रहता है कम्युनिटी डेटा इकट्ठा करना, उसमें मतलब जन्म और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब जानकारियाँ ली जाती हैं। हमारे आसपास की सफाई भी जरूरी होती है, शारीरिक हाइजीन में होता ही है। और मैम ने बताया था कि हमें हैंड वॉश कैसे करना चाहिए, तो हैंड वॉश के मैम ने 5 चरण बताए थे जिसका हमें रेगुलर यूज करना चाहिए। यदि हम रेगुलर हाथ धोएंगे तो हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी, हम स्वच्छ रहेंगे। तो मैम ने बताया कि हमें वो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में हमें कॉफ़ी की मात्रा लेनी चाहिए क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है जो हमारे लिए अच्छी होती है। मैम ने बताया शारीरिक क्रियाएं वगैरह जो होती हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में बहुत कुछ बताया है जो हमने अच्छे समझाए, सबको समझाया भी है। हमारे आसपास जो व्यक्ति थे हमने उनको हमारे मतलब संपर्क में उनको बताया कि मैम ने हमें ये बताया है, आप भी इसका उपयोग करें, समय पर एंटीबायोटिक दवाएँ लें। मैम ने हमें ये जल्द से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया है, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, ORS घोल हैजा में लिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसे हमें लेना चाहिए, ये अच्छा होता है। और मैम ने COVID-19 के बारे में भी बताया था जो चल रहा है, इसे हमें बचना चाहिए, ये खांसी और छींक के माध्यम से फैल रहा है, इसलिए हमें मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा होगा। मैम ने अस्थमा के बारे में बताया था कि ये सांस की बीमारी होती है जिससे मतलब हमारी जो सांस नली होती है वो उसमें सूजन आ जाती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है और बलगम आता है तो मतलब सांस लेने में मतलब सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो इसके उपचार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करना चाहिए। और बस मैम ने बहुत कुछ बताया है, हमें बहुत अच्छा लगा और मैं इस संस्था को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा है और हमें बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू।
11: आई एम पूनम कश्यप फ्रॉम जेलवाड़ा। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और हमें इस ट्रेनिंग में कई प्रकार की बीमारियों के बारे में बताया गया है और उनकी रोकथाम के बारे में और हमें किस प्रकार से उनका उपचार करना चाहिए वो भी बताया गया है। रीड इंडिया संस्था द्वारा हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। इसमें हमें मीना दीदी ने कई प्रकार की बातें समझाई हैं। उन्होंने हमें संस्था पर बुला करके कई प्रकार से बीमारियां जो चल रही हैं कई प्रकार की उनके बारे में जानकारी दी है। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी बट हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। मैं रीड इंडिया का धन्यवाद करती हूँ।
12: मेरा नाम सरोज सुमन है, मैं खाकरा की रहने वाली हूँ। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इसमें दीदी ने बताया कि हमें किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और कैसे हमें बीमारियों से लड़ना है और कोरोना के बारे में भी बताया और हमें ब्लड प्रेशर हाई व लो के बारे में बताया। कोरोना काल में हमें किस प्रकार से अपनी सावधानी बरतनी है, साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगाना है, इस प्रकार हमें बताया। इससे हमें बहुत कुछ लाभ हुआ है और हमने गांव में जो लोग जानते नहीं थे उन्हें जाकर घर घर जाकर उन्हें बताया समझाया किस प्रकार हमें रहना है। धन्यवाद।
13: मेरा नाम मीना पांचाल है, मैं खाकरा गांव से रहने वाली हूँ। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है। इसमें दीदी ने कोरोना के बारे में जानकारी दी है, कोरोना काल में कैसे हमें अपना सावधानियां रखनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताया है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, उसके बारे में बताया दीदी ने। और हमें ब्लड प्रेशर में बीपी लो हाई कैसे चेक करना चाहिए उसके बारे में, पल्स रेट के बारे में भी बताया कि हमें कैसे नापनी चाहिए, पल्स रेट का पता कैसे लगता है वो बताया। और उन्होंने पानी से होने वाली बीमारियां, हवा से होने वाली बीमारियां, घर की सफाई आदि के बारे में हमें बताया है, शारीरिक स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आया और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। धन्यवाद।
14: हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशी ठाकुर है, विलेज कांकरा राजस्थान से हूँ। मैंने रीन इंडिया के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है जो डॉक्टर निधि गुलाटी द्वारा ली गई थी। निधि गुलाटी मैम ने हमें सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ वर्कर क्या होता है और कम्युनिटी से कैसे जुड़ना होता है इसके बारे में हमें बताया। साथ ही मैम ने हमें कोरोना काल में स्टे सेफ के बारे में बताया। फिर मैम ने हमें हाउ टू हैंड वॉश के बारे में बताया और फर्स्ट स्टेज इसके हमें अच्छे से डिटेल्स में समझाए और हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया और अगर हम पर्सनल हाइजीन नहीं करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ाए। शारीरिक क्लीनिंग एंड हाइजीनिंग के बारे में हमें डिटेल में समझाया और ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें पल्स कैसे चेक करते हैं इसके बारे में समझाया। मैम ने हमें अच्छे से बताया कि हमें 2 फिंगर्स को थंब के नीचे रखकर कैसे हमारी 1 मिनट तक हमें हमारी पल्स चेक करनी चाहिए। साथ ही अपना बीपी बढ़ने पर हमें ज़रूरी पल्स चेक कराने के बाद ही अपना बीपी के बारे में श्योर होना चाहिए और नॉर्मल बीपी कितना होता है, हाई बीपी कितना होता है इसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने हमारे बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया और बॉडी टेम्परेचर हमारा 2 तरीके से नापे जाता है, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट से। इसके बारे में हमें मैम ने बहुत डिटेल से बताया और इसके बाद मैम ने हमें ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कब होता है। मैम ने हमें बताया कि ब्लड प्रेशर हमें 1 मिनट तक चेक करवाना चाहिए और हमारा दिल 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। साथ ही वर्कआउट या कॉफ़ी टी पीने पर हमारा ब्लड प्रेशर हमें नहीं चेक कराना चाहिए क्योंकि ये एज यूजली सही नहीं आएगा, ये गलत ही आएगा। और साथ ही हमें बताया कि ब्लड प्रेशर 2 तरीकों का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके साथ ही मैम ने हमें बताया कि ग्रामीणों में नॉर्मल क्या क्या बीमारियां होती है और उनके बारे में डिटेल से समझाया, जैसे टीवी, शुगर, पीलिया, चिकन पॉक्स, निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, ऐसी कैंसर जैसी और भी कई बीमारियों के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, लीवर, किडनी, इसके बारे में मैम ने हमें बताया। साथ ही हमारी बोन्स किस तरह से काम करती है और ये कैसे हमारी बॉडी में जुड़ी हुई है और भी काफ़ी सारी जानकारी मैम ने हमें डीपली समझाई। ये बहुत ही अच्छी जनरेट थी, अच्छे से मैम ने हमें समझाया। एंड थैंक यू वेरी मच हमें इतनी सारी डिटेल्स।

0: कराई गई थी, उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। हमें टैली के बारे में पहले कुछ भी मालूम नहीं था कि टैली क्या होती है, इसमें क्या सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई सूचना मतलब कोई जानकारी नहीं थी हमें। लेकिन उस ट्रेनिंग में हमें बहुत सारी जानकारी मिली है और हमने बहुत कुछ सीखा है, ऐसे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने बीए कर रखी है और जैसे कि इसमें लागत मूल्य के बारे में सिखाया गया है। लागत मूल्य वह होता है जिसमें कोई माल अथवा सेवाएं से जो करे वह प्राप्त किया जाता है, उसको लागत मूल्य कहा जाता है। वसूली मूल्य वह होता है वसूली मूल्य जिसे बाजार में कोई चीज या कोई संपत्ति को बेचकर जो राशि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, उसको वसूली मूल्य कहा जाता है। और जैसे कि संपत्तियां के बारे में बताया गया था, संपत्ति तीन चार प्रकार की होती है जैसे कि चल अचल द्रश्य अदृश्य। द्रश्य संपत्ति वह होती है जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं, वो द्रश्य संपत्ति होती है। अदृश्य संपत्ति उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, एहसास नहीं कर सकते, तो वह अदृश्य संपत्ति होती है। बहुत सारी चीजें की जानकारी दी गई मैम ने और बाद में हमें सभी प्रकार के जो अकाउंट होते हैं उनकी एंट्री करना सिखाया है मैम ने।
1: हेलो, मेरा नाम रिंकू कुमारी है, मैं बारा जिले के मुसिन माता गांव की रहने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते ना तो कोई कहीं जा सकता है और ना ही कहीं से आ सकता है, तो इस माहौल में रीड इंडिया के द्वारा टेली हमें जूम ऐप पर घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई गई और उसमें हमें खाता खोलने के बारे में, लेन देन के बारे में, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इन सब के बारे में बताया गया। और मान लो जैसे कोई बिजनेस करना हो या फिर दुकान खोलनी हो तो उसका हिसाब किताब कैसे रखते हैं, और साथ ही ये भी बताया गया कि डेली डायरी मेंटेन करनी चाहिए। और भी टेली के बारे में जैसे हमें पहले कुछ नहीं आता था और कुछ समझ में नहीं आता था, फिर हमसे पहले जो लड़कियां थी उन्होंने इसके बारे में सीखा और हमें इसके बारे में बताया विस्तार से सब कुछ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप की परचेज कैसे करते हैं, माल खरीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, और लेन देन के बारे में बताया और उसकी एंट्री कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमें बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और हमने उनसे क्वेश्चन भी किए और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमें सब कुछ बताया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी रीड इंडिया को, टेली को और मैम्स को, जिन्होंने हमें घर बैठे ही कोरोना काल में भी ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई। थैंक यू।
2: हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते और रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम वर्षा है और बारा जिले के पास ही के गांव की मैं रहने वाली हूँ, समरानिया से। रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद इसलिए क्योंकि ऐसे लॉकडाउन में टेली की ट्रेनिंग घर पर ले पाना बहुत मुश्किल था, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन फिर भी हमने टेली की ट्रेनिंग करी रीड इंडिया की तरफ से, जो कि बहुत अच्छे से कर पाए हम लोग। इतना सब कुछ सीखने को मिला हमें घर रहकर, कैसे क्या खरीदना है, कैसे क्या बेचना है, क्रय विक्रय परचेज करना, लेन देन कैसे करना चाहिए, कैसा क्या देखना चाहिए, जो कि हम पहले नहीं सीख पाए थे। मैंने बहुत कोशिश करी थी सीखने की लेकिन मैं नहीं सीख पाई थी, लेकिन इसमें रीड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनर थे हमारे मैडम, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से सिखाया, जो हम भूल जाते थे वो भी बार बार उन्होंने हमें बताया। उनकी मदद से हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए, पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया। मैडम सर सभी ने बहुत अच्छे से सिखाया। टीड इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूछे सवाल, जिनके ट्यूशन जो कि हम नहीं कर पाते थे वो ट्यूशन उन्होंने पूछकर हमारी कमियां भी दूर करी हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिली है।
3: हेलो, मेरा नाम मुस्कान मलर्जी है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रही हूँ और मैंने जब डिड इंडिया के बारे में सुना, मेरे पापा ने आके मुझसे बोला कि वहाँ पर डिड इंडिया की ट्रेनिंग हो रही है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आके मैंने फॉर्म भरा और एडमिशन किया। एडमिशन करने के बाद मुझे पहले से कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी थी, फिर भी मैंने यहाँ पे फोटोशॉप और भी कई चीज़ें सीखी है। सीखने के बाद मैं यहाँ से लैपटॉप लेके गई थी, मुझे बोला गया कि यहाँ से लैपटॉप ले जाओ और तुम और भी बच्चे, रिश्तेदार, तुम्हारी मम्मी, इनकी जो भी महिलाएं हैं उनको तुम सिखाओ। तो मैं यहाँ से ले गई और उनको मैंने सिखाया। मैंने भी उनको वही सिखाया जो मैंने सीखा था, जैसे कि यहाँ से फोटोशॉप के अंदर जैसे फिल्टर, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर करना, उसके बाद वो शरीर को अलग करने करके वहाँ पे चेहरा लगाना, ये सब मैंने सीखा था। जो जो मैंने वो सब अपने बच्चों को, इनके अपने स्टूडेंट को मैंने सिखा दिया।
4: हेलो नमस्कार रेडी इंडिया वाले, मैं मंजू हूँ। मैं गांव परानिया की रहने वाली हूँ और मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ी हुई हूँ। मैं महिला समूह की सदस्य हूँ और मैं राजविका से जुड़ी हुई हूँ। हमें पता चला है कि ये रेडी इंडिया वाले फ्री में कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना सिखा रहे हैं महिलाओं को, लड़कियों को। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर कुछ सीखा है, हमने जानकारी ली है यहाँ पर, हमने यहाँ पर फोटोशॉप वगैरह सीखा है हमें। और मुझे राजीव वालों ने CSC ID बनाकर दे दी है, तो हम मैं पैसे की लेन देन कर रही हूँ। थैंक यू रेड इंडिया।
5: मैंने रेड इंडिया माध्यम से मैं जुड़ी हुई थी और ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था, जो उसमें मुझे बहुत जानकारी मिली है, जैसे कि मोबाइल के बारे में, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना और बैंक का जो है, जो उसमें खाता नंबर, आधार कार्ड का नंबर किसी को नहीं देना चाहिए, उसमें नुकसान हमको ही होगा, इसलिए इसका जानकारी हमको मिला है। हम पहले से, मान लो किसी ने फोन कर दिया कि जे तुम्हारा मोबाइल में इतना पैसा है, लॉटरी लग गया तुमको, जो नंबर दे दो बैंक का या आधार कार्ड का नंबर, इसे नहीं देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जैसे मोबाइल में फोन आए कि तुम्हारा फोटो भेजो या कुछ और भी भेजो, नहीं भेजना चाहिए, उसमें हमारा ही खराब होगा, इसलिए हम नहीं भेजते हैं, हम इसमें सतर्क रहते हैं। और भी है बहुत सारे, जो अभी मीटिंग में हम मिला हुए थे जो ट्रेनिंग में, जो उसमें अभी हम बढ़िया तरह से सीख गए हैं। और मोबाइल में ऐसा करना चाहिए, उसमें स्टोर पासपोर्ट लगाना चाहिए, जो कोई लेके छेड़छाड़ी ना करे, और कहीं पे भी जाओ फिर भी नेट नेट मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत खांसी भी आए लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कम करो और अपने मोबाइल को सुरक्षित रखो। ट्रेनिंग से हमें बहुत सारी जानकारी मिला है, जो इसलिए आप सबको धन्यवाद।
6: नमस्ते, मेरा नाम काजल बाला, गांव नाटे से। मैं रीड इंडिया संस्था साइबर सेफ्टी से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे हमें हमारे जैसे पर्सनल नंबर, मैसेज, OTP, ये सब किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग नहीं करनी चाहिए। हमें बैंक संबंधी ऐसे कोई मैसेज आए उस पर हमें क्लिक नहीं करनी चाहिए। हमें जैसे और भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिले जो भविष्य में हमारे काम आएंगे। और इसके अंतर्गत हम जैसे शॉपिंग करते हैं, उसके लिए अलग अलग वेबसाइट का हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए जो हमें पता ना हो, और ना ही हमें इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ जानकारी ऐसी, मतलब जो ज़रूरत ना हो ऐसी चीज़ की जानकारी भी नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज़ हमने इस संस्था में सीखी है, और ये खुद मैंने भी, मतलब ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है, और मैं इसके बारे में जैसे अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड सभी को मैं इसके बारे में जागरूक करूँगी कि कैसे सेव रखा जा सकता है हमारे बैंक अकाउंट, हमारी OTP, ये सब मैं उनको भी इस सब करके जागरूक करवाऊंगी।
7: मेरा नाम अंकिता बंसल है, मैं भवरगढ़ 12 राजस्थान से हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन में अभी तक BSc किया है। मैंने रीड इंडिया से साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी है। इस ट्रेनिंग में मुझे साइबर क्राइम से कैसे बचे के बारे में बताया गया था और हम किस तरह से अपने मोबाइल के डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं इसके बारे में बताया था। हम जैसे कि हमें किसी भी फर्जी ईमेल को नहीं खोलना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं जिनमें होता है कि तुम इस लिंक पे क्लिक करो तो तुम्हें वाउचर मिलेगा, कोई गिफ्ट फ्री मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ फर्जी होता है। वो कुछ हैकर्स होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। उन लोगों के द्वारा बनाई गई साइट होती है जो कि आपके फोन में आपके डाटा को चुरा सकती है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को उनके पास पहुंचा के वो आपको एक साइबर क्राइम के थ्रू ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपसे किसी भी तरह का कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से आपको कोई भी लिंक या फिर ईमेल जो भी है उन्हें नहीं खोलना चाहिए। इस ये लिंक्स कभी कभी हमारे फोन में एंटीवायरस भी ला देते हैं। इसके अलावा जो हमारा पासवर्ड होता है वो लंबी डिजिट का होना चाहिए, लाइक तुम्हारा नाम भी छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। उसमें हैशटैग, @ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए ताकि कोई उन्हें हैक ना कर सके। और इसके अलावा हमें सोशल मीडिया के सभी जो भी एप्स होते हैं उनमें प्राइवेसी रखनी चाहिए ताकि आपके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना चले। इस तरह से हम हमारे मोबाइल डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू।
8: राठौरे, मैं गोबरगढ़ की रहने वाली हूँ और रीड इंडिया से हमें होम मेकिंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी गई थी और इस पे हम घर पर बैठकर इस ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और इससे हमें रीड इंडिया पर हमें बॉडी बैग्स और बॉडी बटर ये चीज़ें हमको सिखाई गई थी और इनमें वो शहद, घी और वो ग्रीसलीन और डिबाम ये चीज़ों से हमने वो प्रोडक्ट बनाया था। इसको पैकिंग किया था और इसको 3 तरीके से हमने पैकिंग किया था, लिपस्टिक के शेप में और डिब्बी में और वो पोटली वाले में और रीड इंडिया में। यह सब चीज़ हमको रिया दीदी ने सिखाया था और इसमें मीना दीदी भी थी और हम 8-10 लड़कियों ने ये चीज़ सीखी थी। थैंक यू रीड इंडिया।
9: मेरा नाम लीना यादव है, ग्राम हरिद्वार पोस्ट भोयल तहसील सावर डिस्ट्रिक्ट 12 से बिलोंग करती हूँ। मैंने रीड इंडिया ऑनलाइन सेलिंग से ट्रेनिंग ली थी जिसमें हमें बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर करना, प्रोडक्ट सेलिंग करना, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया था। हमको प्रोडक्ट कैसे सेल करना चाहिए ये हमें आना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा कैसे शेयर कर सकते हैं, इन सब चीजों को लेके हमको उस ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था। जैसा कि हमको सीखने को मिला, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कई सारे वेबसाइटें होती हैं जिनसे हमको ये सब कुछ शेयर करना होता है। फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर डालकर हम उसको शेयर कर सकते हैं, किसी भी जानी मानी वेबसाइट से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अनजानी वेबसाइटों से ऑनलाइन शॉपिंग ना करें और सार्वजनिक वाईफाई से बचें। और भी कई सारी चीजें थी उसमें, पेज बनाना ये सब कुछ था उसी में, और अपना ऑनलाइन अपना मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब अप टू डेट रखें और OTP वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें। ये कई सारी चीजें हम लोगों को उसी के अंतर्गत सीखने को मिली। मैं बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन सेलिंग के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारियां मिली हैं। थैंक यू।
10: मेरा नाम जया बंसल है और मैंने रीड इंडिया से सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखा है। इसमें मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब पर किस तरह से मार्केटिंग की जाती है वो सब सीखी है और फेसबुक पर पेज बना कैसे बनाया जाता है ये सब सीखा है, किस तरह से फेसबुक पर मार्केटिंग की जाती है और व्हाट्सएप पर किस तरह से प्रोडक्ट डाले जाते हैं, किस तरह से सेलिंग की जाती है और इस तरह से, और मैं करती भी हूँ, प्रोडक्ट्स डालती भी हूँ, इससे मेरी इनकम भी बढ़ी है। और इस तरह से मैंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू रीड इंडिया।
11: मेरा नाम सुनीता, मैं ग्रेटर नोएडा से आती हूँ। मैंने सीखा है यहाँ पे तुड़पाई करना सीख लिया, प्लाजो बनाना सीख लिया और पेंटिंग बनाने के लिए पेंटिंग ये बना ली मैंने और अब वो बना के आई अम्ब्रेला वाले बाद वो प्लाजो।
12: अभी जो यहाँ पे रीड के माध्यम से राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो भी उसमें भी आप थे?
11: हाँ, दो बार ले गए थे।
12: दो बार आप लेके गए।
13: मेरा नाम मीसा सिंह गौतम है और मैं तुगलपुर की रहने वाली हूँ और यहाँ मैं सिलाई मशीन सीखना चाहती थी पर वहाँ कहीं दुकान वकान भी नहीं थी और घी तो बहुत महंगे होंगे उसमें सिखाते थे। आसपास की लड़कियाँ सिलाई मशीन सीखने के लिए जाती थी और मैंने उनसे पूछा भी कि आप कहाँ जाती है तो उन्होंने बताया कि एक केंद्र खुला पड़ा है विनटेक केंद्र, तो मैं भी उनके साथ जाने लगी यहाँ से सीखने लगी और मुझे आता भी कुछ नहीं था। मैंने तुरपाई से स्टार्ट किया था और मुझे अब सूट सलवार में बना लेती हूँ और यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अनजान इंसान मतलब अनजान जो लड़कियाँ बढ़ती आती हैं वहाँ कैसे रहा जाता है और कोई भी मतलब बुरा उरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब सही है। जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ से हमें मतलब बहुत काम वाम भी मिला था और मैं जब भी सीखने आती थी क्योंकि यहाँ मतलब बहुत कम उसने सिखाया था और हमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं कि बाहर जाके क्या करना है। और यहाँ से मैंने अपनी एक मैंने सोचा है कि मैं जब यहाँ से पूरी मशीन सीख लूंगी, जब मुझे वो डिप्लोमा मिल जाएगा तो मैं एक दुकान भी खोलूंगी अपनी जिसमें मैं औरों को भी सिखा सकूँ और अपना काम भी वो कर सकूँ।
14: नमस्ते आप सभी को, मेरी तरफ से मैं तनु सैफी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने यहाँ के बहुत कुछ सीखा है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था और यहाँ सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि यहाँ मतलब बहुत अच्छे सिलाई सिखाते हैं और यहाँ सबकी केयर भी बहुत अच्छे से होती है, सबकी हैप्पीनेस का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीख ली बनाने में, कपड़े में बहुत सारे कपड़े सीख लिए जैसे सूट सलवार प्लाजो पैंट बहुत सारे।
12: खुद कटिंग कर लेती हूँ? पहले आपको कटिंग आती थी या पहले सिलाई आती थी?
14: कैंची भी चलाने नहीं आती थी।
12: कैंची भी चलाने नहीं आती थी। अच्छा, तो अभी सीखने के बाद आपका क्या है कि मैं क्या करना चाहती हूँ आप लाइफ में?
14: मैं ये दूसरों की हेल्प पहले तो,
12: हाँ,
14: और फिर अपनी छोटी सी शॉप
12: बुटीक टाइप की। अच्छा, बुटीक खोलना चाहती हैं आप यहाँ सीखने के बाद?
15: मेरा नाम गीता है और मैं यही पास ही तुगलपुर गाँव से आती हूँ। पहले मैं यहाँ पढ़ने के लिए आती थी और लेडीजों के साथ, बहुत लेडीज पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी यहाँ और फिर पढ़ते पढ़ते एक साल सा हो गया। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे मुझे सिलाई का शौक था, थोड़ा थोड़ा घर में ही मतलब करती रहती थी और मैंने सीखा भी था कहीं थोड़ा बहुत। रीड इंडिया की तरफ से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे काम भी यहाँ रीड इंडिया की तरफ से ही मिला है। पहले घर में रहती थी ना, मन नहीं लगता था बिल्कुल भी, ऐसे लगता था कहाँ कैद में रहती हूँ और यहाँ आके तो एक नई जिंदगी सी मिली है। बस यही है कि उन्होंने हमें काम दिया, यहाँ बच्चों के लिए सेंटर खोला और फ्री चल रहा है यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़े खुशी से आते हैं बच्चे। कौन सिखाता है, नहीं तो हजार हजार रुपए देते हैं मंथ के यहाँ पे, तो बच्चे गरीब बच्चे नहीं सीख पाते। बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो मतलब टाइम से पहले आ जाते हैं सीखने के लिए, मतलब उनको लगन है सीखने की।
12: लगन है सीखने की।
16: उनसे मुझे कुछ लोगों से पता चला कि हमारे गांव में रीड इंडिया सेंटर है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कोर्सेज होते हैं जिनमें से कि मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में सीखा है। इसके बारे में पहले मुझे कुछ नहीं पता था बट अब बहुत कुछ पता है, मैं इसके बारे में सीख रही हूँ, सीख चुकी हूँ और जानकारियाँ मैं देती रहूंगी। और इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक इन सब पे कैसे हम ऑनलाइन सेविंग कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चल रहा है।
17: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूनम नाथ का जिन्होंने मुझे रीड इंडिया सेंटर से जुड़ने का मौका दिया। फिर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ महिपाल सर का जिन्होंने मुझे रीड इंडिया फैमिली का हिस्सा बनाया और उससे जोड़ा, सभी को जानने का एक मौका दिया। रीड इंडिया के बारे में मैं नहीं जानती थी बट जब यहाँ पे जुड़ी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और जो जो मैंने सीखा वो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि फोटोज वगैरह, एडिटिंग वगैरह, वीडियोस, शॉर्ट्स फोटोज ये सब लेना मुझे नहीं मालूम था। जब मैं रीड इंडिया सेंटर से जुड़ी मुझे मालूम हुआ, इन सब चीजों से मैं अनजान थी पर जुड़ी तो मैंने एडिटिंग सीखी, वॉइस स्किल। जरूरी नहीं कि हमारे बोलने का तरीका कैसा है, हमारी वॉइस स्किल कैसी है ये मायने रखता है, हम कैसे बोलते हैं, कितना उतार चढ़ाव हमारी आवाज में है, किस तरीके से हम बोल रहे हैं, जरूरी ये है। जैसा कि अब वॉइस स्किल में मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ कितना ठहराव रखना है, लेकिन जब महिपाल सर ने हमें इतना सब कुछ सिखाया, हमने सीखा भी और बहुत कुछ किया भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक में हम सभी के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। हम सभी ने आज से पहले ऐसा जीवन कभी नहीं देखा था, बट इस दौर में हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। जैसे कि सब अपने घर में हैं, हम भी हैं, हमने इस समय में हम खाली नहीं बैठे, रीड इंडिया सेंटर से हम लोग जुड़े, फिर हमने सीखा कि ऐसे दौर में हर इंसान जब घर में बैठता है तो हर इंसान बोर होता है, दम घुटने लगता है लोगों का घर में बैठ के, लेकिन इस दौर में हमने घर में बैठ के नहीं बल्कि हमने सीखा, ऑनलाइन क्लास ली, सर से हमने बहुत कुछ सीखा। अब जैसा कि हमने बहुत सारे एफएम रेडियोस को सुना होगा, बट हमने सुना ही था लेकिन कभी उन्हें करीब से नहीं जाना था, लेकिन रेडियो सेंटर के जुड़ने के कारण हमने इसे करीब से जाना और उसे देखा और किया। और जैसा कि हम जानते लोगों की आवाजों को सुनते हैं पर ये नहीं जानते कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, जब हम इससे जुड़े तो हमने किया तो हमें पता चला कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम लोगों को सिर्फ वॉइस के थ्रू हम सुनते हैं बट कभी जाना नहीं, जब किया तो लगता है कि हाँ कितनी मुश्किल है ये चीजें। बहुत अच्छा लगा ये सब चीजें जानकर, करने के बाद बहुत मतलब कि हमने किया तो बहुत एक्सपीरियंस मिला। अब जो मैं आपके सामने जो बोल पा रही हूँ ये सब महिपाल सर, पूनम मैम की, इन सभी की बदौलत है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बोलने का ला पा रही हूँ आप सभी के सामने। इससे पहले मैं बहुत नर्वस हुआ करती थी, बोलने मेरी आवाज भी नहीं निकलती थी। इसी के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद लेना चाहती हूँ और रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सब कुछ सीखने का मौका मिला।
18: हेलो, मेरा नाम तनु है, मैं शाहबाद में रीड इंडिया सेंटर से बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो और ऑडियो एडिटिंग का कोर्स किया है। पहले हमें नॉलेज थी बट इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी अभी हमारी डेवलप हो गई है। अभी हमें यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स सीखने को मिली है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अब हम यहाँ से वीडियो खुद बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे आकर बहुत फ़ायदा हुआ है, सीखने को मिला है। थैंक यू।
19: मेरा नाम रितिका है, मैं 16 साल की हूँ और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर की हूँ। मैंने रीड इंडिया से एडिटिंग का कोर्स किया है। ये कोर्स करने के बाद मैंने इसको अपनी स्कूल लाइफ में यूज किया है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जितनी भी वीडियोस एडिटिंग होती हैं क्लास की, वो सब मैं ही करती हूँ। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है, अब मैं कोई भी काम आसानी से कर लेती हूँ। हमारी स्कूल असेंबलीज होती हैं, हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो सब मैं ही देखती हूँ एडिटिंग करने के लिए। और फ्यूचर में मैं इसको अपनी करियर में यूज करना चाहूंगी। थैंक यू।
20: मेरा नाम माया श्री है, मैं 32 साल की हूँ। मैं रीड इंडिया सेंटर द्वारका सेंटर से टैली का कोर्स कर रही हूँ। मुझे टैली के बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ रीड इंडिया सेंटर पर आने के बाद टैली के बारे में मेरी नॉलेज इम्प्रूवमेंट हुई है। इसलिए मैं अब अपनी नॉलेज को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आती हूँ।
21: मेरा नाम वंशिका जैन है, मैं 17 साल की हूँ। मैं यहाँ रीड इंडिया द्वारका सेंटर में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीख रही हूँ। मैंने यहाँ बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखा और मैं फोटोज एडिटिंग आसानी से कर सकती हूँ। और मैंने पोस्टर डिजाइन करना सीखा और पैम्पलेट्स बनाना सीखा और मैं इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर रही हूँ। और मैं अपना करियर ग्राफिक डिजाइनर में बनाना चाहती हूँ और मैं ग्राफिक डिजाइनर बनाना चाहती हूँ।
22: मेरा नाम उपासना है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर के बारे में अपनी एक फ्रेंड से सुना। यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स मैंने किया जहाँ पे मुझे सिखाया गया कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू अपना प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाए, वो भी सेफली। थैंक यू।
23: मेरा नाम रेशमा वर्मा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। जब पहले मैं यहाँ रीड इंडिया सेंटर में एडवांस्ड कोर्स कर रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती थी पर मेरे हाथ में सफाई नहीं थी और ना मुझे इतनी ज्यादा चीजें आती थी जो आजकल चल रही है। अब मेरे हाथ में सफाई भी आ गई है, जैसे जिप लगाना और चैन वगैरह लगाना, सब प्लाजो में जेब लगाना, इन सब चीजों में। और अब मैं मुझे यहाँ आके बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिला है, जैसे पैंट प्लाजो फ्रॉक सूट ये सब। और अब मैं बहुत खुश हूँ सीखने के बाद, मैं अपने सूट अपने आप सिलती हूँ और मैं अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताती हूँ कि मैं वहाँ रीड इंडिया सेंटर से सिलाई सीखी है और वहाँ के मैडम और बाकी स्टाफ सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं, चाहे कितनी बार भी पूछो बहुत अच्छे से बताते हैं। और अब मैं बहुत खुश हूँ आगे

0: अपना एक बुटीक खोलना चाहूंगी जिसमें मेरे पास थोड़े बहुत पैसे या कुछ भी होगा, जिससे मैं अपना कुछ कर सकूंगी, अपना काम निकाल पाऊंगी और अपना कुछ करियर कर पाऊंगी। जॉब भी करना चाहूंगी, अगर मेरे को फैसिलिटी मिलेगी आगे चल के तो मैं उसको जरूर अप्लाई करूंगी।
1: मेरा नाम अर्चना तिवारी है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर गांव में रहने वाली हूँ। मैंने रेड इंडिया से स्टिचिंग, एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले मुझे फिनिशिंग नहीं आती थी, अब मैंने सब कुछ सूट वगैरह, गले की डिजाइन, बाजू, सब कुछ करना सीख लिया है। अब मैं खुद से अपना कुछ करना चाहती हूँ।
2: मेरा नाम बेबी श्वेता है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रेड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले भी मुझे सिलाई आती थी, लेकिन जब से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, जब से मेरे कपड़ों में और अच्छी फिनिशिंग आती है, मुझे बहुत कुछ नया नया सीखने के लिए मिला। जैसे कि चोली कट ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, अम्ब्रेला कट बाजू, बोट नेक, और पहले मुझे गले की डिजाइन वगैरह, सूटों के डिजाइन, ये सब अच्छी तरीके से सिलना नहीं आता था। जब से मैंने ये एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, मुझे बहुत अच्छे से सिलना आता है। मेरे कपड़े में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के कपड़े खुद ही सिलती हूँ। मेरे पास बाहर से भी कुछ कपड़े सिलने के लिए आते हैं, जिससे मेरे अपने खुद की जरूरतें पूरी हो जाती है। इस एडवांस स्टिचिंग करने से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। थैंक यू।
3: मेरा नाम मंजू है, मेरी उम्र 28 साल है। रीड इंडिया से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी निजी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले मेरे पास स्टिचिंग के लिए कपड़े आते थे, लेकिन उनमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पाती थी। लेकिन रीड इंडिया में आने के बाद मैंने फिनिशिंग के साथ साथ बहुत सारे नए नए डिज़ाइन बनाने सीखे। हाँ, मुझे नए डिज़ाइन सीखने को मिले जो मुझे पहले नहीं आते थे। लेकिन ये कोर्स करने के बाद मेरे पास बाहर से कपड़े सिलने के लिए भी आने लगे। रेड इंडिया में आने से पहले मुझे पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे दूसरों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ और खुद ही अपना पैसे कमा सकती हूँ। और अब मैं बाहर से गारमेंट स्टिचिंग करके अपने इनकम पा रही हूँ। रेड इंडिया में आने के बाद मुझे बहुत खुशी और सफलता मिली है।
4: मेरा नाम नीनू है, मैंने रेड इंडिया सेंटर से ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। पहले मैं इतनी कैपेबल नहीं थी, जो मेरे इसके पास बोल नहीं पाती थी, बट मैं बोलती भी हूँ और मैं एक रिसेप्शन की जॉब भी करती हूँ शाहबाद मोहम्मदपुर में। थैंक यू सो मच।
5: मेरा नाम किरण राजपूत है, मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने रेड इंडिया से मार्केटिंग ऑनलाइन का कोर्स किया था, जिसका बेनिफिट ये हुआ है मुझे कि मैं अपने जो काम मैं कर रही थी उसको मैं अच्छी तरह से और प्रेजेंट कर पाई हूँ और मार्केटिंग स्केल को और अच्छे से समझ पाई हूँ कि किस तरह से हम लोग मार्केटिंग को ऑनलाइन के साथ क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स और अपनी क्वालिटीज़ को किस तरह से हम और ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों के आगे प्रेजेंट करने में हमें मुझे आसानी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रीड इंडिया का, जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स चलाया, जिससे कि हम मुझे बहुत बहुत बेनिफिट फ़ायदा हुआ है। थैंक यू फॉर द रीड इंडिया।
6: हेलो, मेरा नाम आशु है, मैं शाहबाद की रहने वाली हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के बारे में मेरे फ्रेंड से पता लगा। मैं यहाँ आई, फिर मेरी सुमन मैम से बात हुई। सुमन मैम ने मुझे बताया यहाँ पर मैं पार्लर एंड सिलाई सेंटर का भी काम सिखाया जाता है। फिर मैंने हर्बल के प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैंने हर्बल के प्रोडक्ट में लिप स्क्रब, लिप बाम एंड बॉडी लोशन, फेस क्रीम और साबुन बनाना सीखा। मैंने उसको खुद घर पे यूज़ किया और मेरी फैमिली में भी यूज़ किया। उसके बहुत ही बेटर रिजल्ट आया। एंड थैंक यू सुमन मैम, एंड थैंक यू रीड इंडिया सेंटर। थैंक यू सो मच।
7: नमस्कार, मेरा नाम सरिता सुबेदी, मैं शाहबाद के रहने वाली हूँ। मुझे अपने फ्रेंड से पता चला रेड इंडिया के बारे में। जैसे मैं वहाँ जाके पता करी तो वहाँ मुझे पता चला कि हर्बल प्रोडक्ट के अलावा वहाँ पर सिलाई, कंप्यूटर और पार्लर के कोर्स भी सिखाई जाती है। जैसे मैं सुमन मैम से मिली और सुमन मैम से जानकारी ली कि यहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट बनाने सिखाई जाती है, तो मैंने ज्वाइनिंग किया और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से नेचुरल, बिल्कुल बिना केमिकल के प्रोडक्ट बनाना सिखाया, हर्बल प्रोडक्ट, जिसमें

0: से बॉडी सोप, बॉडी वॉटर, लिप बैम, लिप स्क्रब, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाना सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बॉडी लिप बैम, बॉडी स्क्रब एंड फेस क्रीम मैंने बनाया भी खुद और यूज किया, मेरी फैमिली को भी यूज कराया, सबको बहुत अच्छा लगा और सब ने मतलब बहुत तारीफ किया। इसलिए थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रेड इंडिया इतने अच्छे प्रोडक्ट सिखाने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: मेरा नाम सोनिया है और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना था तो मैं ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए पूछने गई तो मुझे वहाँ फीस बहुत महंगी बताई जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाती। तो मुझे किसी से रेड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं रेड इंडिया सेंटर में गई और मैंने वहाँ जाके मैम से पूछा कि मैम मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। तो मैम ने मुझे ब्यूटिशियन के कोर्स के बारे में बताया और साथ में वहाँ स्टिचिंग, कंप्यूटर और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सिखाया जाता है। तो मैंने वहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स करना स्टार्ट कर दिया और मुझे 3 मंथ्स हो गए ब्यूटिशियन का कोर्स करते करते और मुझे बेसिक पार्लर पूरा आ चुका है। तो मैं रेड इंडिया सेंटर को और सुमन मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिसके वजह से मुझे मेरा ब्यूटिशियन का कोर्स पॉसिबल हुआ हो पाया है क्योंकि महंगी फीस की वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रेड इंडिया सेंटर।
2: हाय, माझं नाव सामी आहे, मी जयपूरला आहे, माझं शिक्षण 11वीपर्यंत झालेलं आहे। मी रेड इंडियामध्ये 3 महिन्यामध्ये कोर्स करते, त्यामध्ये मी ब्लाऊज, साधा ब्लाऊज, कटोरी ब्लाऊज, वरण प्रिन्स कटोरीवाला ब्लाऊज वगैरे सर्व शिकते।
3: हाय, मेरा नाम है रेशमा अग्रव जोगिनकर, मैंने 12वीं की हूँ साइंस से, गोरेगाव से, और मैं 3 महीने से रेड इंडिया से कोर्स कर रही हूँ बेसिक टेलर कोर्स का। और उसके बाद मैंने उसमें सीखी हूँ झबला, बिनबाही का, सादी चड्डी, फैंसी बॉनेट, उसके बाद प्रिंस कटोरी ब्लाउज, फ्रॉक और पंजाबी सूट। थैंक यू।
4: हाय, माझं नाव अक्षता अशोक कांबळे, मी ऍग्रीकल्चर डिग्रीमध्ये डिग्री करत आहे आणि इथे खामगाव मंडी इंडियामध्ये मशीन शिवण क्लास करत आहे। त्याच्यामध्ये जे दररोजच्या लग्नासाठी जे कपडे आहेत त्याच्यामध्ये शिकवलं जात आहे आणि इथे खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या, रेड इंडियामध्ये खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या मिळाल्या, त्यामुळे त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करते। थँक्यू।
5: नमस्कार, माझं नाव मनवा जीवन आडवीलकर, माझं शिक्षण टीवाय बी ए मधून झालेलं आहे। मी इथे रेड इंडिया सेंटरमध्ये 3 महिन्यापासून कोर्स करत आहे। त्या कोर्समध्ये मी बिनबाईचा झबला, कटोरी ब्लाऊज, प्रिन्स कटोरी, साधा ब्लाऊज, ड्रेस हे सगळं शिकले आहे। थँक्यू रेड इंडिया।
6: माझं नाव नौशीन वजीर जोगिरकर, माझं शिक्षण 12वी, मी रेड इंडिया सेंटरमध्ये कोर्स केला आहे शिवण क्लास, 3 महिन्याचा कोर्स आहे। त्याच्यामध्ये बिनभाईचा झबला, चड्डी, सलवार कमीज, ब्लाऊज हे सर्व शिकवले गेलाय। हा कोर्स भेटण्यामधून तुमचे आम्ही आभारी आहोत।
7: आपकी उम्र
8: 22।
7: रेड इंडिया सेंटर से आपने कौन सी ट्रेनिंग ली?
8: कंप्यूटर के पार्लर की।
7: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में बताएं।
8: ट्रेनिंग लेने से हमें ये फायदा हुआ है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, उससे हमारी इनकम बढ़ सकती है, ट्रेनिंग बच्चों को दे सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं।
7: आप आगे क्या करना चाहती हैं?
8: कंप्यूटर ही कोचिंग ले रही हूँ, कंप्यूटर में ही स्कोप है, कंप्यूटर से ही जॉब कर रही हूँ यहाँ पे।
7: आपका नाम क्या है?
8: स्वाति।
7: आपकी उम्र?
8: 24।
7: रेड इंडिया सेंटर से आपने कोई ट्रेनिंग दी?
8: यस मैम, हमने 2 ट्रेनिंग ली थी, पार्लर का और कंप्यूटर का।
7: तो आपने कंप्यूटर में क्या क्या सीखा?
8: कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्किंग
7: बेसिक सीखा आपने। और पार्लर में?
8: पार्लर में मैम कटिंग, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग।
7: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं?
8: कंप्यूटर सीखने के बाद घर पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं कंप्यूटर के बारे में, उससे अच्छी खासी इनकम हो रही है।
7: और पार्लर का?
8: पार्लर में मैम बस साइड में चल रहा है।
7: अच्छा, जीवन के निर्णय और पारिवारिक निर्णय लेने की आपकी क्षमता में कोई सुधार हुआ?
8: यस मैम, पहले से
7: गुड। आप आगे क्या करना चाहती हैं?
8: मैम पार्लर नहीं कर रहा है, पार्लर खोलना है।
7: अपना पार्लर खोलना है? अच्छा, तो पार्लर की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद मतलब आप चाहते हो अपना पार्लर?
9: माझे नाव आदिती संजय वाळंदकर, माझ्या गटाचे नाव महालक्ष्मी गट, गाव विनेरे, आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड मेणबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण घेतले। तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनविण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवी उमेद मिळाली। रीड इंडिया सेंटर विनेरे व टाटरे मॅडम यांचे आम्ही आभार मानतो।
10: जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे। आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले। तेथे टाटरे मॅडमनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे सुद्धा मार्गदर्शन केले। मार्केटिंगचे आश्वासन मॅडमनी आम्हाला दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आम्हाला नवीन उमेद मिळाली आहे। त्यामुळे आम्ही टाटरे मॅडम आणि रीड इंडिया संस्थेचे विनेरेकडून आभार मानत आहोत।
11: माझे नाव शर्मिला मंगेश विसापूरकर, माझ्या गटाचे नाव जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे। आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले। तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवीन उमेद मिळाली। या वतीने टाटरा मॅडम रीड इंडिया व टाटरा मॅडम यांचे मी आभार मानतो।
12: माझे नाव श्वेता संतोष सकपाळ, वय 24 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरे येथून मी ग्राफिक डिझाईनचा कोर्स केला। यामध्ये मला फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझाईन आणि व्हिडिओ बनवायला शिकवलं। त्याचा आम्ही नक्कीच भविष्यात उपयोग करू व रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला जे फ्रीमध्ये कोर्स प्रोव्हाइड केले त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद।
13: माझं नाव श्वेता रोशन सप्पा, वय 29 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरेकडून आम्हाला ग्राफिक डिझायनिंगचा कोर्स शिकवण्यात आला। या कोर्समध्ये आम्ही फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझायनिंग आणि व्हिडिओ कशा बनवायचा हे शिकलो। या शिक्षणाचा उपयोग आम्ही भवितव्यात नक्कीच करू। रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला हा जो कोर्स फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केला त्याबद्दल त्यांचे मनापासून धन्यवाद।
14: मेरा नाम लक्षा है, मैं रीड इंडिया पडवाई सेंटर सिलाई सीखी है। मैं पडवाई में रहती हूँ और मैं सेंटर में आती जाती रहती हूँ। इस सेंटर से मैंने अच्छी सिलाई सीखी है, अपने घर के कपड़े सिलती हूँ और मोहल्ले के भी कपड़े सिलती हूँ। इस रीड इंडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। इस रीड इंडिया में सिलाई सीख कर और सिलाई करती हूँ मैं और कपड़े सिलती हूँ, उससे जो पैसा आता है मैं अपनी कॉलेज की फीस करती हूँ, जमा करती हूँ।
15: मेरा नाम निशा है, मैं पढ़वाई रीड इंडिया से सिलाई सीखी है। मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ और तरह तरह के डिजाइन के कपड़े सीना चाहती हूँ। और मेरा एक सपना ये है कि मैं एक सेंटर खोल सकूँ जिससे बच्चों को अच्छे से डिजाइन के कपड़े सिखा सकूँ। मेरे तरफ से सेंटर को धन्यवाद।
16: मेरी एज 21 है, मैं लास्ट ग्रेड पर रहती हूँ। मैं रीड इंडिया सेंटर में एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। मुझसे काफी कपड़े सिलाई के आ गए हैं, जैसे कि डिजाइनिंग कुर्ती, डिजाइनिंग पैंट, प्लाजो, गरारा, फरारा, लहंगा, चोली वगैरह वगैरह काफी सिलाई आ चुकी है। और मेरे डिजाइनिंग मैं अपने डिजाइन खुद करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपना डिजाइन सिलाई करना। और मेरे डिजाइन सिलाई के लोग भी मतलब कहते हैं मेरे भी सीधे, इस वजह से मेरे मतलब काफी सिलाई आती है घर पर। और मैं सिलाई की वजह से अपने घर में काफी हेल्प कर सकती हूँ। और मैं पहले मतलब अपनी कुछ नहीं कह सकती थी अपने बारे में, पर अब मैं सबसे कुछ भी कह सकती हूँ और मैं अपना खर्च खुद ही उठा सकती हूँ। पढ़ाई वगैरह का भी काफी कुछ अपने लिए कर सकती हूँ। मैं एडवांस सिलाई सीख के मुझे काफी लाभ हुआ है।
17: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा है, मैं कलघर में घोसियान मोहल्ले में रहती हूँ। रीड इंडिया कलघर सेंटर हर्बल कॉस्मेटिक का कोर्स कर रही हूँ जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, जैसे कि लिप बाम, बॉडी वैक्स, बॉडी बटर और वगैरह काफी कुछ सीखने मिला है और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं रीड इंडिया कलघर सेंटर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ।
18: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनब है और मेरी एज 18 ईयर्स है। और मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर आरी डिडिया सेंटर आने से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी यहाँ आने के लिए भी बहुत ज़्यादा, और मेरी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इनकम की प्रॉब्लम थी। मेरे पापा प्लम्बरिंग का काम करते हैं, मम्मी सिलाई करती हैं, तो मैं सोचती थी कि शायद मैं कुछ कर सकूँ अपने मम्मी पापा के लिए या अपने खुद के लिए, कि मैं अपना खुद खर्च अपना खुद लूँ, मम्मी पापा से नहीं लूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने खुद काम करूँ, खुद कुछ भी करके अपना खुद ही निकालूँ खुद भी। फिर मैंने मुझे यहाँ पर रेड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आई। मैंने यहाँ पर आके बेसिक सिलाई का भी कोर्स किया है और ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। इसके वजह से मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल्स और मेंटल हेल्थ का कोर्स है, और ये सब लेने के बाद मेरा माइंड बहुत फ्री रहता है। पहले मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी, और अब अच्छे से मैं सबसे बोल पाती हूँ, बात कर पाती हूँ। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट जागा है, दूसरों के सामने बोलने का, कुछ करने का एक हिम्मत आई है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था बिल्कुल, यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे, बहुत अच्छा लगता था यहाँ आके। और अब भी मैं पूरी कम्प्लीट फेस स्टिचिंग कर चुकी हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इससे मैं अपनी इनकम भी अच्छे से कम कर लेती हूँ और मैं अपना खर्च खुद निकालती हूँ, किसी से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और पहले मैं मेरी पढ़ाई रुक चुकी थी इस काम पैसों की वजह से ही और पापा की मजदूरी के काम की वजह से ही, मगर जब से मैंने अपना काम शुरू किया है या मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया है, उसके बाद मैं अपने खर्च और स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई खुद में करती हूँ, खुद अपना खर्च निकालती हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैंने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैंने अपने डिज़ाइन अपलोड किए और मैं उसको अपसेल करती हूँ इस पर, उससे मुझे बहुत अच्छी इनकम हो जाती है और अपने में इस वजह से अपने घर में भी पूरी हेल्प देती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई वगैरह भी खुद कर लेती हूँ। और मेरे डिडिया सेंटर आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है और मेरे डिडिया सेंटर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच डिडिया सेंटर। अच्छा।

0: से तकरीबन 100% लोग जो है वो मर जाते थे, मगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट के साथ ये ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल हो गया। अच्छी से अच्छी सेफ दवाइयां आ गई। जब तक पूरा इलाज नहीं था तब तक सेनेटोरियम का इलाज किया जाता था ताकि आसपास के लोगों को बीमारी ना फैले और मरीज को ताजी हवा में पहाड़ में अच्छी तरह से खुराक दी जाए और धीरे धीरे वो नेचुरली अगर हील हो सकता है तो हो जाए, अदरवाइज कम से कम वो पूरे शहर में बीमारी ना फैलाए। परंतु टीबी के अच्छे इफेक्टिव ट्रीटमेंट की डिस्कवरी के बाद इस तरह के सेनेटोरियम ट्रीटमेंट बंद हो गए, तकरीबन सारे सेनेटोरियम बंद हो गए हैं और घर पे रह के आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं आप अच्छी से करवा सकते हैं। इस इलाज से तकरीबन 100% लोग ठीक हो जाते हैं। टीबी के पेशेंट के संग रहने से टीबी होने का खतरा होता है, परंतु जैसे ही आप इलाज शुरू करते हैं 7 से 10 दिन में पेशेंट टोटली नॉन इन्फेक्शियस मतलब बिल्कुल सेफ हो जाता है, आपको बीमारी नहीं दे सकता। 7 से 10 दिन में जो टीबी के कीटाणु हैं वो इतने क्षीण हो जाते हैं कि वो आपको बीमारी नहीं दे पाते हैं। टीबी के पेशेंट के संग रहने से खाना खाने से कोई भी टीबी नहीं फैलती है, सिर्फ आपको एक प्रिकॉशन लेनी होगी कि वो जो अपनी स्पूटम या थूक है उसको किसी कंटेनर में जिसमें एंटीसेप्टिक है उसमें डिस्पोज करे, घर में इधर उधर ना फेंके, और अपनी बलगम से बने जो क्लोथ्स होते हैं जो रुमाल है या कोई तौलिया है उसको भी अच्छी तरह से गर्म पानी में धोए। तो टीबी के पेशेंट्स को घर पे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा इलाज हो सकता है।
1: वैसे कहा जाता है कि टीबी एक गरीब तबके के समाज के लोगों को ज्यादा असर करता है, क्या ये सही है?
0: टीबी सोसाइटी के हर प्रकार के आदमी को इफेक्ट करता है, इसमें गरीब और अमीर का फर्क नहीं है। आपको अपनी हाइजीन लेवल को मेंटेन रखना है। अगर आप स्वस्थ वातावरण में ताजी हवा में रहते हैं, अपनी खुराक का पूरा ध्यान रखते हैं, अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको मेंटेन रखते हैं, तो टीबी आपको होने के चांसेस कम है। तो इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं है कि गरीब को होगा टीबी जिसके पास अमीर है या पैसे वाले हैं, हर प्रकार के पेशेंट को, इट्स इन्फेक्शन, किसी को भी हो सकती है।
1: डॉक्टर बॉबी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सब बहनों भाइयों को यही एडवाइस करूंगा कि अगर किसी को भी 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो तुरंत डॉट केंद्र में जाके अपना जांच करवाएं। जांच करने के बाद अगर टीबी निकलती है तो मेडिकल अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करके अपना कोर्स कंप्लीट करें। ये कंप्लीटली क्योरेबल डिजीज है तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपना हिम्मत मत हारें और पूरा डट के इलाज करवाएं।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: आज जो मैं आप लोगों के साथ सेशन लूंगा वो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का। तो आई थिंक ये मॉड्यूल जो है आप सबके पास ऑलरेडी है, एंड इसी से हम स्टार्ट करेंगे। एंड टोटल 10 सेशन हम लेंगे। आज इसका फर्स्ट सेशन है, एंड प्लीज इसको इंटरेक्टिव बनाइएगा। क्वेश्चंस पूछिएगा, मैं भी पूछूंगा, और अगर कोई आंसर नहीं करेगा तो फिर मैं किसी को भी पूछ बोल दूंगा अनम्यूट करके बोलने के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डज बिजनेस मीन्स टू यू। बिजनेस का मतलब क्या होता है? आप लोग एक सिंपल हिंदी में या जैसे भी लेमेन टर्म्स में क्या बोलोगे? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है धंधा, यही कहते हैं ना,
1: हाँ सर, बिजनेस मतलब धंधा, व्यापार।
0: व्यापार करना, धंधा करना। तो उसमें इसका इसका ये होता है, या तो आप कोई चीज खुद बना रहे हो, खुद बना के उसको एंड यूजर तक बेच रहे हो, जितनी आपकी लागत लगी है उससे थोड़ा सा ऊपर मार्जिन रख के आप उसको बेचते हो, जिससे आपको एक मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप कोई चीज ऑलरेडी जो बना हुआ प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है उसको आप कहीं से खरीद रहे हो, होलसेल पे खरीद रहे हो, क्योंकि आप जब एक बल्क क्वांटिटी खरीदोगे तो वो आपको कम रेटों में मिलती है, और फिर उस चीज को आप रिटेल करते हो, मार्केट करते हो और एंड यूजर तक पहुंचाते हो। जो एंड यूजर मतलब जो लोग होते हैं जो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। समझ आ गई आप लोगों सबको या नहीं आई?
2: यस सर,
0: इजी इजी लैंग्वेज थी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी को?
2: नो सर।
0: चलो अब इसको पढ़ भी लेते हैं। द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है इसमें भी, कि एक एक्टिविटी ऑफ मेकिंग मनी जिसमें हम या तो कोई गुड है या कोई सामान है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई थिंग है जिसको हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कहीं से उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी खरीदते हैं और उसको थोड़ा सा रेट बढ़ा के बाहर बेचते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी जैसे दिवाली का टाइम चल रहा है, तो या तो आप क्या करोगे, दिए सारे जो दिए हैं अगर आप मार्केट में बेचोगे, या तो आप उसको खुद बनाओगे, खुद बना के मोम लगा के उसमें बत्ती ऐड करके वो आपका खुद का बना हुआ हो गया, आपने खुद प्रोड्यूस करा है उसको और फिर उसको आप मार्केट कर रहे हो, या फिर आप क्या करोगे किसी से ऑलरेडी दिए जहाँ पे बने हुए हैं उस दिए को आप उठाओगे, बहुत बल्क क्वांटिटी में उठाओगे कम रेट। जब आप ऑब्वियसली बल्क क्वांटिटी में लोगे तो क्या होगा, आपको रेट कम मिलेगा, कम आप सस्ते में खरीद लोगे, और उसको जब आप सस्ते में खरीदोगे उसको बाहर आप मार्केट करोगे तो क्या होगा, उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी टू बी अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिस स्तर पे आप लोगों को काम करना है, जो कम्युनिटी में हम जैसे हम काम करते हैं, जिस स्तर पे आप लोगों को काम करना है उसके लिए आपको बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है या सोचने की जरूरत नहीं है या परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपको एक कंपनी ही फॉर्म करनी पड़ेगी या एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी या एक पार्टनरशिप किसी के साथ करना पड़ेगा। आप कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है जो आपको, अगर आप एक कंपनी बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या पार्टनरशिप के साथ करते हैं तो ये अच्छी चीज है। इसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं, एक आपको लीगल एड मिल जाती है, आप लोन ले सकते हो, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हो तो आपको जो लागत लगानी है वो भी आप लोगों का डिवाइड हो जाता है, तो ये अच्छी चीज है। बट ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि अगर आप जिस स्तर पे काम कर रहे हो उस स्तर पे आपको इन चीजों को करने की जरूरत है। आप एक सोल प्रोपराइटर जैसे होता है अपना, अलग से अपने आप भी ये काम स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप एक अच्छे स्तर पे पहुंच जाओगे, धीरे धीरे आपका काम चलने लगेगा, मार्केट होने लगेगा, लोग आपको जानने लगेंगे, तो आप इसको एक चैनलाइज वे में, इसको एक पूरा फ्रेमवर्क देके कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप इसको चला सकते हो। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है?
1: नो
0: अगर आप बोल नहीं पा रहे तो आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। इतना कष्ट अगर आपको लग रहा है अनम्यूट करने में तो आप प्लीज चैट में भी लिख सकते हो।
1: अभी जो आपने समझाया एकदम मतलब आसान भाषा में, तो सबको क्लियर हो गया मतलब।
0: अच्छा, थैंक यू।
3: जी
0: अच्छा
3: पहचान
0: जी,
3: जी नमस्ते सर।
0: जी नमस्ते।
3: वैसे आपके जो समझाने का तरीका बिल्कुल ठीक है सर, और सरल भाषा में है, तो अगर लगेगा कहीं समझ में नहीं आएगी तो हम आपसे बात कर लेंगे।
0: ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो आप चैट बॉक्स में लिख देना यस, जब भी मैं कुछ
3: बिल्कुल
0: पूछूंगा तो।
3: बिल्कुल सर।
0: ठीक है, अच्छा, इसमें एक एक एक लाइन और ऐड हुई हुई है, इट इज एन एक्टिविटी विच जनरेट्स प्रॉफिट बाय एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। तो इस लाइन का भी वही मतलब है जो मैंने अभी तक वो समझाया, अल्टीमेटली जो आदमी बिजनेस कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि उसको प्रॉफिट कमाना है, तो इसीलिए उसमें एक लाइन ऐड हुई है कि इट इज एन एक्टिविटी विच जनरेट्स प्रॉफिट बाय एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। कोई भी चीज आप खरीद रहे हो या बना रहे हो, उसकी लागत निकाल के उसके ऊपर की जो कमाई है वो आपकी प्रॉफिट होती है, जिससे आप अपना घर चलाते हो। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस किस किस प्रकार के बिजनेस होते हैं, हम उस पर बात करते हैं। अभी तक आप लोगों के सब सबने यही बोला है कि ये होता है बिजनेस, उसके बारे में आप लोगों को पता लग गया है, तो अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस किस तरीके के बिजनेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा है सर्विस बिजनेस, एज द नेम सजेस्ट, जो नाम ऑलरेडी इसमें लिखा है सर्विस बिजनेस, उसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इट इज अ बिजनेस वेयर प्रोडक्ट हैव नो फिजिकल फॉर्म एंड दे आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। ये वो बिजनेस है जिसमें आप कोई चीज या कोई सामान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप कुछ उसमें बना नहीं रहे हो और बना के बेच नहीं रहे हो, ना कि कोई चीज आप किसी से होलसेल में खरीद के सामान और आगे बेच रहे हो, ये प्योरली एक सर्विस का बिजनेस है। एक आपको बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अब मुझे, चलो अगर ये मुश्किल होगा तो मैं चेंज भी कर दूंगा। अभी फिलहाल क्या है, कुछ लोग जैसे फ्रिज होता है या एसी होता है, लोगों के लगे हुए हैं, टीवी लगे हुए हैं लोगों के, तो जब आप नया नया कोई टीवी खरीदते हो तो 1 साल के बाद जब उसकी वारंटी एक्सपायर हो जाती है तो कंपनी आपको फोन करती है कि सर हमसे एएमसी ले लो। एएमसी क्या होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें क्या हो रहा है, आपको वो बार बार फ्रिज नहीं दे रहा है, लेकिन आपको वो कुछ पैसे लेते हैं कि भाई हमारे साल के 1,000 रुपए हैं, आप 1,000 रुपए हमें दो, और इस दौरान, इस पूरे 1 साल के दौरान आपके फ्रिज में कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो हम आपको फ्री में फ्रिज या एसी या टीवी वो सब आपको ठीक करके देंगे। होता है कुछ लोग हैं ऐसे जो एग्री करेंगे इस चीज के लिए। एएमसी पता है, इवन ये मशीन्स में भी होता है, जो आप सिलाई मशीन जो हम सेंटरों पे यूज करते हैं, कंपनी जो होती है वो आपको ऐसा एक वो बोलती है कि आप हमें मशीनों के इतने पैसे दे दो साल में, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी 500-1,000 रुपए, और इस पूरे 1 साल में कोई भी प्रॉब्लम आएगी मशीनों में तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको ठीक करके देंगे। आप प्लीज कुछ, कोई अनम्यूट करके बताएगा, ऐसा कुछ है?
3: इसमें सर एडवांस जमा का तो नहीं करवाया, बाकी जैसे फ्रिज की सर्विस करवानी है तो उनको फोन करके और वो घर पे सर्विस करके तो
0: है
3: जाते हैं। ये तो 2-4 बार मैंने भी बुलवाया टीवी का और फ्रिज के लिए, तो वो जो सर्विस की बात है ना, तो वो मतलब अपन ने कॉल किया उनको और वो अपने घर पे आके और जो भी उनको
0: राइट
3: पे कर देती हैं
0: चलिए
3: एडवांस
0: ठीक है।
3: वाला। जी
0: हाँ, वही वही मैंने आपको बोला कि शायद ये गांव के स्तर पे इतना नोन नहीं होगा, तो मैं वो बता देता हूँ। जैसे आप एसी लेते हो, मान लो एसी या फ्रिज ले सकते हो, तो उसके बाद आपको
3: बिल्कुल
0: कुछ सर्विस दी जाती है। अगर एसी का सीजन खत्म हो गया तो वो ठंड के टाइम या गर्मी के टाइम पे जब दोबारा हमें स्टार्ट करना होता है तो वो दोबारा आके उसकी सर्विस करते हैं। तो शुरू में कुछ सर्विस क्या रहती है, फ्री रहती है। उसके बाद क्या है, एसी आपका सेम है, लेकिन 1 साल बाद भी जब आप उसकी सर्विस कराते हो तो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं और आपको वो सर्विस देते हैं कि आपके फ्रिज को, ये एसी या फ्रिज को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसको दोबारा से बढ़िया से वो चालू करके देते हैं कि दोबारा से वो काम करने लग जाए। ऐसा तो सबने करा होगा ना।
3: जी हाँ
2: जी सर
0: इसमें देखो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, रिपेयर शॉप, स्कूल, बैंक और रेस्टोरेंट। तो इवन ये रिपेयर शॉप का वही हो गया, मान लो चलो कोई चीज आपकी खराब हो गई तो उसके लिए आपको कुछ मिल नहीं रहा, कुछ आपको वो, आप पैसे दे रहे हो तो आपको कुछ वो सामान नहीं दे रहा, लेकिन आपको सर्विस दे रहा है। मान लो आपकी बाइक ही खराब हो गई, स्कूटी खराब हो गई, साइकिल खराब हो गई, तो वो क्या कर रहा है उसमें, उस चीज को वो आपको सर्विस दे रहा है, आपकी बाइक ठीक करके दे रहा है। ये हो गया, इसमें समझ आ गया सबको? ठीक
2: यस
0: है,
2: सर
0: ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट। इसमें क्या लिखा है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। तो इसके बारे में पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बारे में हम प्लेन करेंगे अच्छे से। इट इज अ बिजनेस विच बायज प्रोडक्ट एट अ होलसेल प्राइस एंड सेल इट एट रिटेल प्राइस, इट इज कॉल्ड एज बाय एंड सेल अ बिजनेस। तो जैसे हम जब बिजनेस को डिफाइन कर रहे थे स्टार्टिंग में, तभी हमने शायद इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली थी, तो थोड़ा सा हम इसको इन डिटेल फिर से बात कर लेते हैं। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस जो होता है उसमें क्या होता है कि आप सामान जो उठाते हो वो बल्क में उठाते हो, किसी किसी होलसेलर से या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे आप सीधे चले जाते हो, वहां से आप सामान उठा लेते हो। जो चीज़ मान लो मार्केट में आपको 100 रुपए की बिकती है, आप अगर होलसेल से भी लोगे तो वो आपको पड़ेगी 60 रुपए 70 रुपए में। तो आप क्या करते हो, उसको बल्क क्वांटिटी में बहुत सारा सामान एक ही बार जो होलसेलर होता है उससे खरीद लेते हो कि हाँ भाई मैं तो बल्क में क्वांटिटी में खरीद लूंगा और इसको अपने इलाके में जाके, कम्युनिटी में जाके, बाजार में जाके इसको बेचूंगा, क्योंकि इसका रेट तो 100 रुपए है। तो आराम से आपका उस एक प्रोडक्ट पे 30 से 40 रुपए बचेगा। होता है, करते हैं लोग या नहीं करते? और अगर आप एज अ कस्टमर भी देखोगे तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है या हमें कोई चीज ज्यादा चाहिए होती है, मैं अभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हो, आप ऐसे मार्केट जाते हो, होलसेल मार्केट जाते हो ताकि आपको वो चीज सस्ती मिले। ये एग्री करेंगे सब लोग इस चीज के बारे में?
2: यस
1: करते हैं सर, ज्यादा सामान के लिए तो भी बड़े मार्केट में ही जाते हैं, होलसेलर भी।
0: हाँ, तो जैसे आप जाते हो, ऐसे ही जब आप एक धंधा करोगे या बिजनेस करोगे तो आपका वो रेगुलर बन जाएगा जाना, क्योंकि आपका और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको सर्वाइव करना है, बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो आपको बड़े मार्केट या होलसेल मार्केट ही जाना पड़ेगा। वहां से आप सामान लाके जब मार्केट में बेचोगे अपने कम्युनिटी में, तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन यही मैंने कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, इसलिए बोला ताकि आप लोग समझ जाओ कि जब आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है, शादी भी होते हैं, जब आपको बहुत सारी चीजें बल्क में लेनी होती है, तो आप खुद भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के से नहीं, लेकिन खुद अपने यूज के लिए भी उसी मार्केट में जाते हो, क्योंकि वहां पे आपको चीजें सस्ती मिलती है। ठीक है, सबको समझ आ गया? अभी हम
1: यस सर,
0: थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसमें इसमें पहले पढ़ देता हूँ, फिर आप लोगों इसके बारे में बताऊंगा। इट कंसिस्ट ऑफ बाइंग अ रॉ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट, प्रोसेसिंग इट विद द हेल्प ऑफ लेबर मशीन एंड प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट। तो अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लिखा है, इसका आप नाम से ही देखेंगे तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि इसमें एंड टू एंड चीजें जो हो रही हैं, ये भी शायद स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन करा था। एंड टू एंड चीजें जो है वो आप ही कर रहे हो। मान लो आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो उसमें आप क्या करोगे, एंड टू एंड चीजें आप ही कर रहे हो। मतलब कोई भी चीज ले लो, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है व्हीकल, स्टील, मशीनरी, क्लोथ। गीजगढ़ से है कोई यहाँ पर? गीजगढ़ से किसी ने ज्वाइन करा हुआ है?
3: नहीं फैजान, कहीं कोई ज्वाइन नहीं किया गीजर से।
0: ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे अगर मैं गीजगढ़ का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाकियों को भी पता होगा, जैसे गीजगढ़ में हमारे पास पूरा एक यूनिट सेट हुआ है जिसमें हम रुई से धागा बनाते हैं, धागा से कपड़ा बनाते हैं, फिर कपड़े से उसको, अगर हमारा ही कोई डिजाइनर है तो उससे शर्ट भी बन रही है, जवाहर कट भी बन रही है, वेस्ट कोट भी बन रही है, पैंट भी बन रही है। तो इसका ये है कि एक तरह से सारी चीजें जो है वो हम ही कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो रुई से धागा बनाना हो, धागे से कपड़ा बनाना हो, और कपड़े से उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में तैयार करना हो जो कि हम लोग नॉर्मली आम दिनों में पहनते हैं। तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस। अब समझ आ गया सबको?
1: यस सर,
2: यस
0: ठीक है, तो अब कौन मुझे टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में एक बार नाम बताएगा सारे?
2: सर। सर मैं रिया बंसल फ्रॉम भवदर।
0: ठीक है, पहला मैंने क्या बताया था आपको?
2: सर आपने फर्स्ट सर्विस बिजनेस बताया था।
0: ठीक है, सर्विस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताइए।
2: सर इसमें हम कोई भी, जैसे हमें कोई भी, जैसे हम कोई मशीन वगैरह खरीदते हैं तो वो हमें पैसे देने की जगह कोई सर्विस देता है जिससे कि वो हमें प्रॉफिट हो सके, उसको
0: नहीं
2: भी
0: पैसे,
2: प्रॉफिट
0: हाँ
2: हो सके हमें भी।
0: मतलब बेसिकली क्या है कि आप कोई प्रोडक्ट उसमें नहीं खरीद रहे, उसमें ऑलरेडी आपने एक प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, आप जो पैसे दे रहे हो उससे कुछ सामान नहीं मिल रहा आपको, लेकिन उसकी सर्विस मिल रही है। ठीक
2: हाँ
0: है,
2: सर, जैसे कि अभी गांव लेवल पे, जैसे सर हम गैस वगैरह खरीदते हैं तो उसमें क्या है, मतलब वो गैस देते नहीं है लेकिन उसकी सर्विस कर देते हैं वो लोग।
0: बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट राइट। और
2: मैचिंग, वो मैचिंग डायनेस बिजनेस जिसमें हम
0: चलो,
2: बना
0: हाँ
2: हुआ सामान खरीदते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही, बना हुआ सामान हम लेते हैं, बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, जिसमें हमें जो मार्केट प्राइस उसका हो है उससे कम पैसों में मिलता है, एंड जब हम उसको
2: यस
0: मार्केट करते हैं तो हम हमें जो मार्केट प्राइस है उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। मान लो
2: हाँ
0: कोई
2: सर,
0: चीज़ 10 रुपए की है तो हम उसको बड़े बाजार
2: तीस
0: से, जैसे
2: या
0: आपने
2: फिर
0: बोला,
2: फिफ्टी, हाँ हम उससे पैसे अर्न कर सकते हैं।
0: राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड क्या है? अच्छा कोई और बताओ, आपने तो बोल दिया, बाकी आप कोई और बताओ,
2: ओके सर, थैंक यू।
0: कौन बताएगा?
2: मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हम रॉ मटेरियल्स किसी भी मार्केट से जहाँ पे हमको सस्ता मिल रहा है वहां से उठाते हैं, फिर अपने यहाँ पे मशीन वगैरह लेबर की मदद से हम उसे तैयार करते हैं, और फिर फाइनली जब वो हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है तो हम उसे मार्केट में उसके उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जितना हमारा खर्च हुआ है और उसके इनकम यानी हमारी जो प्रॉफिट आएगी उसको लगा करके फिर हम मार्केट में सेल करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो, अगर आपको बिल्कुल एक शॉर्ट नोट में उसको याद रखना है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब क्या है कि सब चीजें जो भी वो आपको प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसको पूरा एंड टू एंड जो है वो आप ही ने बनाया है, चाहे वो लेबर की मदद से बनाया हो, मशीन की मदद से बनाया हो, जो भी है, मतलब सारा, मतलब छोट आपको कोई चीज शर्ट बनानी है तो आपका उसका कपड़ा वकड़ा जो भी चीज है वो सब आपने ही अरेंज कराए, और फिर उसको एक कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट में उसको तैयार करा और फिर उसको बेचा है आपने। ठीक है जी, और किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अभी अभी हमने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ ली है, उसमें हमने एक चीज देखी होगी, सब चीजें जो कॉमन है वो ये है कि चाहे आप मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कर लो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर लो या सर्विस बिजनेस कर लो, अल्टीमेट एम जो होता है एंटरप्रेन्योर का इन सब बिजनेस में वो क्या है, मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अभी तक ये सबको समझ आ गया?
1: यस सर,
0: ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें लिखा है व्हाट इज द मिशन एंड विजन ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मिशन जो है वो एज कंपेयर टू विजन, मतलब लेमेन टर्म में बता रहा हूँ, मिशन छोटा है और विजन बड़ा होता है। मिशन क्या है, मिशन एक कंटिन्यूस चीज है ताकि आप अपने विजन तक पहुंच सको। तो व्हाट इज द मिशन एंड विजन ऑफ अ बिजनेस में हम मिशन के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज अ शॉर्ट टर्म गोल ऑफ बिजनेस, इट आउटलाइंस व्हाट बिजनेस वांट्स टू एंड हाउ इट वांट्स टू अचीव इन शॉर्ट स्पैन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप ही की ट्रेनिंग जैसे होती है, अभी एक फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग होती है, उसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर आप एक बेकरी शॉप सेटअप करना चाहते हो, तो बेकरी शॉप अगर आप सेटअप करते हो तो उसका एक मिशन ये रहेगा कि भाई जिस भी कम्युनिटी मैंने खोला है मेरी बेकरी बहुत अच्छी चले, और अच्छी कैसे चलेगी, जिसमें आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, आपकी जो पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, जो बिस्किट्स हैं, जो भी आप उस बेकरी में सामान रख रहे हो वो सारा फ्रेश रहे। ये जो भी चला रहा है प्लीज दीपाली दोखले प्लीज को नहीं करें। तो मिशन में अगर आप, मैंने जैसे भी बेकरी का एग्जांपल ले रहा था, तो अगर आप अपनी कम्युनिटी में, अपने एरिया में वो बेकरी खोल रहे हैं, तो आपका मिशन यही रहेगा हमेशा कि डेली मेरा जो सामान है वो एक तो बिक जाए, और वो जो भी मैं बनाऊं वो क्वालिटी प्रोडक्ट रहे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप क्वालिटी दोगे तभी आपके पास लोग आएंगे, वरना कोई भी नहीं आएगा। तो ये तो आपका एक डेली एम रहेगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का क्या है कि 24 घंटे का बिजनेस रहता है, ऐसा नहीं है कि आपकी एक छुट्टी है, आपको तो काम करना ही करना है, और एक साइकिल सी बन जाती है, रोज काम करना है, कमाना है, काम करना है, कमाना है। तो अगर हम बेकरी के एग्जाम्पल में आए, तो उसका काम यही रहेगा कि आप जो भी अपने प्रोडक्ट बना रहे हो वो एक तो फ्रेश बनाओ, अच्छे बनाओ, खाने में अच्छे लगे, लोग उस पे उसके टेस्ट से अट्रैक्ट हो, तभी आपकी चीज बिकेगी। अब अगर हम विजन पे आते हैं, तो विजन के बारे में पढ़ता हूँ। इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ अ बिजनेस। जैसे मैंने बताया, विजन आपको कंटिन्यूस अपने विजन पे, मिशन पे रहना होगा, तभी आप अपना विजन अचीव कर पाओगे। तो विजन की बात करते हैं, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ अ बिजनेस, इट आउटलाइंस द पर्पस, गोल, वैल्यू एंड ड्रीम स्टेट ऑफ द बिजनेस। अब ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड इसलिए क्योंकि मिशन में, जब मैंने बोला कि आपका एक मिशन बन जाता है, आपको अपनी कम्युनिटी में अच्छा से अच्छा सामान सर्व करना है कम्युनिटी को, और विजन क्या है, जब आपको बड़ा बनना है बिजनेस, हमेशा आप जो भी एक मुनाफा कमा रहा है, काम कर रहा है, वो यही चाहेगा ना कि आज अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ तो कुछ टाइम बाद मैं इतनी मेहनत करूँ कि वो उसको मैं 20 कर सकूँ, फिर उसको मैं 40 कर सकूं, फिर उसको मैं 80 कर सकूं, या जो भी है एक एक रेट पे आप अपना चाहोगे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहे, तो उसके लिए वहां पर आपका विजन आ जाता है। जब आप अपनी कम्युनिटी में अच्छा काम करोगे, तो आपका अपने आप और वो नेटवर्क से जब आपकी चीजें फैलेंगी, तो आपका विजन एक तरह से आप अपने विजन पे चलने लगोगे, आपको अब एक कम्युनिटी के अलावा आपको दूसरे कस्बे में भी या दूसरे एरिया में भी अपना एक ब्रांच खोलनी है, आपको और बढ़ना है, यही चीजें होती हैं विजन के अंदर। अब अभी यहां तक सबको समझ आ गया?
1: जी सर,
0: बाकी
1: इसलिए
0: लोग कम से कम चैट बॉक्स में तो लिख दिए कि हाँ समझ आ गया, यस नो कुछ नहीं, अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई भी अभी तक कोई भी चीज है अगर समझ नहीं आई है तो।
4: यस सर, समझ में आ गया सर।
0: आ गया समझ सबको? ठीक है, तो अभी हमने पार्ट वन कवर कर लिया है, अब हम पार्ट टू पे चलते हैं। पार्ट टू में सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। अब ये क्या कह रहा है कि पूछ रहा है कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जो होते हैं उसके बारे में आप क्या समझते हो। कोई बोलेगा कुछ? लिखा हुआ तो है ही आगे, कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस?
4: सर इसमें
0: कोई
4: प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हम रॉ मटेरियल लेके एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको मार्केट में या फिर अपने लोकल स्तर पर उस प्रोडक्ट में जो मटेरियल लगाया है वो लोकल ही होगा और उस प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी एक प्रोडक्ट फिक्स कर ले, एक मिशन फिक्स के ये हमारा प्रोडक्ट हमको सेल करना है।
0: ठीक है, पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में। द प्रोडक्ट बिजनेस सेल्स फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। इट इंश्योर्स दैट द कस्टमर कैन फील एंड टच द प्रोजेक्ट प्रोडक्ट दैट देन टेक अ डिसीजन अबाउट बाइंग इट। इट कैन बी एडवर्टाइज इजिली इन द मार्केट। तो अभी जैसे अभी कुछ टाइम पहले, 5-10 मिनट पहले, जब हमने एक सर्विस बिजनेस के बारे में बात करा था, तो उसमें ये लिखा था कि जब कस्टमर कोई सर्विस बिजनेस अवेल करता है तो वो कुछ सामान नहीं खरीदता, उसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, आप सिर्फ सर्विस लेते हो। अब जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है वो ये है कि द प्रोडक्ट बिजनेस सेल्स फिजिकल, मतलब कोई सामान आप ले रहे हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल दिया ही हो गया, अगर आप एक दिवाली का जैसे टाइम है तो एग्जाम्पल दिए का ले लेते हैं। आप मार्केट में जाओगे तो अगर आप दिया लोगे तो दिए को आप एक वो फिजिकल फॉर्म में है, टेंजिबल चीज है, उसको अगर आप छुओगे आप फील कर सकते हो, हाँ ये कोई चीज है, हार्ड सरफेस पे बनी हुई है। तो उससे उसका मतलब हो गया टेंजिबल भी हो गया, और फिजिकल मतलब जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। इट इंश्योर्स कस्टमर कैन फील एंड टच द प्रोजेक्ट, मतलब जिस चीज को भी आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो आपके हो गए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। एंड देन डिसाइड, अब आप अगर मार्केट में जाओगे तो मार्केट में आप दसियों तरीके की वैरायटी की चीजें देखोगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप दिए लेने जा रहे हो तो हर दुकान पे आपको सेम दिए मिलेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना।
2: नो सर।
0: हाँ, तो आप जब भी कभी दुकान पे जाओगे तो आपको दिए भी 10-10 तरीके के मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी के मिलेंगे। सिंगल सिंगल 4 दिए रखे होंगे, सिंगल सिंगल 2 का पैक रखा होगा, कहीं कहीं पे 4, 5, 6 दिए एक साथ जुड़े हुए होंगे। अब उसमें क्या लिखा है, इसीलिए उसने एक लिखी है ये चीज, इट एश्योर्स दैट कस्टमर कैन फील एंड टच द प्रोडक्ट एंड देन डिसाइड अबाउट बाइंग। अब उसमें से आप उसको टच करोगे, फील करोगे, उसकी क्वालिटी देखोगे, मटेरियल देखोगे किस तरीके का लगा, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या चीज बाय करनी चाहिए। इट कैन बी एडवर्टाइज इजिली इन द मार्केट। तो यहां तक अभी सबको समझ आ गया या नहीं आया?
2: यस
1: यस
2: सर।
1: यस सर।
0: चलो ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के बारे में कौन बताएगा मुझे जो मैंने अभी समझाया? दीपांशु और
1: मैं
0: अंकुश।
1: दयाराम बोल रहा हूँ।
3: दयाराम, दयाराम तुमको छोड़ करके मैं देख रहा हूँ कि दो ही लोग बोल रहे हैं, बाकी भी बोले। दयाराम तुमको छोड़ करके कोई और बोलना चाहे तो बोले, बहुत सारे लोग हैं।
0: अगर समझ नहीं आ रहा तो बता दिए आप लोग, मैं दोबारा समझा दूंगा।
2: सर मैं खुशी जैन।
0: हाँ
2: सर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में ये होता है कि किसी
0: कहाँ
2: भी
0: से हो आप,
2: चीज
0: कहाँ से हो?
2: को हम सर समरानिया से 12 डिस्ट्रिक्ट से जैसे अपन किसी चीज को प्रोडक्ट है उसका अपन फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी क्वालिटीज मालूम कर सकते हैं और अलग अलग तरह टाइप्स के होते हैं।
0: हाँ ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, जिसको आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, खुद अपने हाथों से पता कर सकते हैं, आंखों से देख के कि हाँ भाई ये क्वालिटी कैसी है, अच्छी है बुरी है, ये हमें लेना नहीं चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसका वो होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। ठीक है, और कोई कोई बोलना चाहेगा प्लीज? अब बारान के अलावा प्लीज और लोग भी हैं यहाँ पर, वो बताएं। सेम चीज अभी उन्होंने आपके सामने बोली भी है, मैंने भी आपको समझाई है। कौन प्लीज, प्लीज कोई अनम्यूट करके बोली।
3: महाराष्ट्र से भी लोग हैं, तो महाराष्ट्र से कोई बोलना चाहे तो।
0: जब हम ये आपको सेशन देंगे तो हम ये चाहते ही नहीं कहीं पे भी आप लोगों को कोई डाउट रहे, हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ हम आपको यहाँ पे बताएंगे वो प्लीज आप अच्छे से समझ के आगे कम्युनिटी में बताइए। इसीलिए हम लोग ये सब सेशन ले रहे हैं आप लोगों के साथ।
5: हेलो सर,
0: जी
5: मैं
0: जी
5: रत्नावली महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी,
2: हमें काफी मतलब आप काफी अच्छे से समझा रहे हैं, सारी चीजें समझ में आ रही है, जैसे बिजनेस
0: चलिए अच्छा,
2: क्या
0: आपको
2: क्या
0: समझ आ गया सारा।
2: है,
0: एक
2: सर्विस
0: बार
2: बिजनेस, यस सर।
0: जो
2: लेकिन
0: मैंने स्टार्टिंग
2: हाँ
0: में बताया था टाइप्स ऑफ बिजनेस, एक बार वो बताएंगे कौन कौन से होते हैं? दो तो देखो सामने लिखे हैं।
2: एक सर्विस बिजनेस था, एक
0: हाँ
2: मर्चेंडाइजिंग बिजनेस था, मर्चेंट डिजाइनिंग, और एक
0: हाँ ठीक
2: मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस
0: है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए, थोड़ा सा बस, जल्दी जल्दी।
2: जी सर।
0: हाँ
2: सर्विस बिजनेस वो होता है जिसमें हम सर्विस देते हैं, जैसे फ्रिज रिपेयरिंग का हो, या फिर ब्यूटी पार्लर का भी हम बोल सकते हैं, तो
0: हाँ बिल्कुल
2: हम
0: बिल्कुल राइट,
2: होम सर्विस भी दे सकते हैं, और जो हमारे पास आते हैं कस्टमर उनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
0: ठीक है, थैंक यू
2: और
0: सो मच।
2: जो
0: ऐसे ही
2: मर्चेंट
0: थोड़ा सा
2: डिजाइनिंग
0: बस बस
2: है
0: बस,
2: जी सर,
0: आप बस बस, ठीक है ठीक है, आप बाकी बाकियों को भी मौका देते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग प्लीज अनम्यूट करके थोड़ा सा बोलेंगे, अच्छा लगेगा, हमें भी पता लगेगा कि आपको समझ आ रही हैं चीजें, क्योंकि
2: जी
0: ये आपको
2: सर,
0: मॉड्यूल शेयर कर दिया जाएगा, आप लोगों को ये सेशन आगे लेने होंगे बेनिफिशरीज के साथ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पार्ट टू में प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कवर करा है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड इन योर बिजनेस। मतलब अगर आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग आगे जब इस चीज़ को बताएंगे बेनिफिशरीज को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड इन योर बिजनेस। मतलब आपको कौन कौन सी स्किल की जरूरत पड़ेगी जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और कोई भी आप काम शुरू करते हैं या कोई जॉब भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी जो स्किल होगी वो अगर आपकी जॉब प्रोफाइल से मैच होगी, या आपकी जो स्किल होगी वो जिस बिजनेस में काम आएगी, आप वही काम करेंगे, आप वही जॉब करेंगे, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं बनता कोई जॉब भी करने का या बिजनेस करने का। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा है लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कम्युनिकेशन, एक एंटरप्रेन्योर के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि आपकी जो डीलिंग होती है, वो इंट्रैक्शन जो होता है, वो आपका लोगों से होता है, कस्टमर से होता है, एंड यूज़र से होता है, जो आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ कम्युनिकेशन स्किल इसलिए लिखा है क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उन लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे नहीं, उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं बताएंगे, ड्यूरेबिलिटी के बारे में नहीं बताएंगे, उनको ये नहीं बताएंगे कि वो प्रोडक्ट उनसे आप वो लोग आप लोगों से ये प्रोडक्ट क्यों लें, तब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मैं तो मानता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, देखो इम्पोर्टेंट सारे ही होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप उसको किस किस जगह पे फिट करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे अभी हम इतने टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं इतनी देर से, कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट बनाना होता है तो उसमें एक लागत लगती है। अब आपको जो समझ आ रहा है कि भाई हमने एक एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें 6 रुपए की लागत आई है, तो जाहिर सी बात है आपको अपना मुनाफा भी कमाना है, तो उसमें आप 2-4 रुपए ऐड करके तब उसका एक मार्केट प्राइस निकालोगे। अगर आपने मान लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टाइम उस चीज़ को करा ही नहीं, आपने मान लो लागत तो लगा ली, लेबर कॉस्ट लगा ली, लेकिन जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसका रेंट नहीं लगाया बिल्डिंग का, या उस जगह का रेंट नहीं लगाया, तो वो क्या है? आपका आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट फेल हो गया ना, क्योंकि आपने उस रेंट को, एक एक चीज़ जब आप एक प्रोडक्ट बनाओगे तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग होती है कि एक एक चीज़ आपको उसमें डालनी पड़ेगी। आप जो एक रॉ मटेरियल लेकर आए उसका, जब कहीं से तो रॉ मटेरियल लेकर आओगे ना, जब वो आएगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा, आपको उस ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी आप प्रोडक्ट बनाओगे उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी उस चीज़ पे आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। लेबर की कॉस्ट हो गई, लेबर का टाइम हो गया, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है वो भी आप उसमें डालोगे, रेंट भी हो गया। तो आपको इसीलिए आपको हर चीज को बहुत ही ध्यान से लेके चलना पड़ेगा, इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक ये 2 पॉइंट सबको समझ आ गए? ठीक
2: यस
0: है, तो अभी तक कोई डाउट? आप लोग, अगर मैं आप लोगों को कोई चीज बता रहा हूँ आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट भी है इसमें, तो वो आप लोग भी ऐड कर सकते हो, आपके इनपुट भी बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप इस सेशन में दोगे। इसीलिए मैंने बोला कि हम एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने जो चीज बताई है उसका और कोई और तरीके से भी मतलब आ सकता है, तो आप भी उस चीज़ को शेयर करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे भी वो चीज़ पता लगेगी और इवन और बाकी लोग जो बैठे हैं यहाँ पे 20-22, उनको भी ये चीज पता लग जाएगी। सिर्फ मेरी नॉलेज इस चीज में काम नहीं आनी चाहिए। आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं ये भी चीज ऐड कर सकते हैं, तो आप वो भी बताइए प्लीज। तो अभी हमने दो चीजें कवर करी हैं, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर बिजनेस, उसमें हमने कवर करा है अभी कम्युनिकेशन स्किल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकेंड आ गया प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। जब भी आप कोई चीज करोगे तो उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों क्यों होता है, एक बार कोई एक्सप्लेन करेगा इस चीज को, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है?
1: सर, अगर हम अगर अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं करेंगे ना तो हमारा बिजनेस फेल हो सकता है।
0: हाँ मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या क्या ऐसा और क्या करना है, और क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं?

0: सर, ये सर बिजनेस ग्रोथ ग्रोथ के लिए सर
1: क्या कर सकते हैं?
0: एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं सर इसमें जो
1: बिल्कुल
0: बिजनेस
1: बिल्कुल
0: का।
1: कर सकते हैं। अभी हमने उसको इसलिए ऐड नहीं कर रखा क्योंकि अभी जो हम फिलहाल जिस लेवल पे बात कर रहे हैं वो एक छोटे स्तर पे काम शुरू करने की बात कर रहे हैं इसलिए। लेकिन अगर आप इसका एडवांस मॉड्यूल देखेंगे तो उसमें हर चीज़ लिखी रहती है, ये वाली चीज़ होती है,
0: यस
1: ठीक है। और अगर आप एक
0: ये
1: प्लानिंग कर लोगे तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि एफिशिएंसी एफिशिएंसी भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप प्लानिंग करके रखोगे तो आपकी एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ जाती है।
0: और
1: आप
0: प्रोडक्ट की
1: इस चीज़ों
0: एक्यूरेसी
1: से
0: भी सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी दोनों चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और किसी को कोई चीज़ ऐड करनी है?
0: जी सर, एक
1: हेलो,
0: इसमें ये है, जैसे हम मान लो फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये भी जरूरी होता है कि जैसे हमारे पास लाइसेंस है उसका या नहीं है, सारा कुछ ऐसे भी प्लानिंग करना पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मीना जी, आप कुछ बोल रही थी?
2: जी, नमस्ते सर।
1: नमस्ते।
2: हाँ, जैसे हम कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें काम कौन करेगा, कितनी
1: राइट
2: महिलाएं उस काम को करने के लिए होंगी, फिर उसमें जो भी चीज हम बना रहे हैं
1: राइट
2: उसमें कितनी लागत आएगी, कितना फिर उस चीज से हमको प्रॉफिट होगा,
1: राइट
2: ये भी
1: तो
2: देखना
1: ये
2: पड़ेगा हमको भी, क्योंकि अभी हम जो भी काम कर रहे हैं तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो कौन सी उसमें ऐसी महिलाएं होंगी जो इस बिजनेस को करेंगी,
1: बहुत
2: तो
1: बढ़िया। तो
2: वो
1: मतलब आप ये
2: सारा।
1: कहना चाह रहे हैं कि प्लानिंग में हमें रिसोर्स मैनेज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कभी पता
2: जी
1: लगा डिमांड एकदम से बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल, क्यों मैं बार बार दिए का एग्जांपल ले रहा हूँ, दिवाली के टाइम पे दिए की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, खपत होती है। तो मान लिया आपका पूरे साल का दिए का काम है, लेकिन दिवाली पे ऑब्वियसली आप क्या करोगे, उस 1-2 महीने पहले से आप ह्यूमन रिसोर्स बढ़ा दोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर मेरे पास महीने में 1,000 दिए का ऑर्डर आता है तो दिवाली पे वो ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना अमीना जी? ठीक
2: जी सर।
1: है जी। और फिर हम आगे बढ़े या इसमें कुछ आप लोगों को और ऐड करना है?
2: नहीं सर, बढ़ सकते हैं आगे।
3: सर इसमें टाइमिंग का, सर वो समय अवधि का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमारा
1: बिल्कुल
3: दिवाली नजदीक और हम उस प्रोडक्ट को बनाते बनाते दिवाली निकल जाए, तो एक टाइमिंग का
1: बिल्कुल
3: भी बहुत सर बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: राइट राइट बिल्कुल सही बात कही आपने। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ये आपके मैनेजमेंट में आ जाते हैं, चाहे आप वो फाइनेंशियल लें या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लें, दोनों को ऑलमोस्ट ये दोनों इंटीग्रेटेड ही रहते हैं। अच्छा, सेकंड फोर्थ पॉइंट जो है वो है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्यों आपके अंदर ये डिसीजन मेकिंग की स्किल होनी चाहिए, इसके बारे में कोई कुछ बोलेगा? मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे डिसीजन बहुत सही टाइम पे और सही तरीके से डिसीजन लेना भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो वो आपके बिजनेस को नीचे भी ले जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये सब जो है सारा का सारा रिस्क पे होता है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि रिस्क ज़रूर होता है, लेकिन इसीलिए फिर उसमें प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होता है। तो अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो उसमें क्यों डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए, क्योंकि डिसीजन जो होते हैं वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको जो अपना मिशन विजन है, जो आपका गोल है, आप वो तभी अचीव कर सकते हैं जब आप उसके जो डिसीजन है वो बहुत टाइमली लें और बहुत सोच समझ के लें। ऐसा एग्री करेंगे इससे या नहीं करेंगे? एंड डिसीजन मेकिंग ही चीज़ होती है जिससे आपके सारे फाइनेंस या लोग कब रखने हैं, कब हटाने हैं, क्या करना है, कितने लोगों को क्या काम देना है और टाइम आर एलोकेटेड, इसको हम उसी हिसाब से फिर अगर आप करेक्ट डिसीजन लोगे तो वो इसी में आता है। आपका रिसोर्स एलोकेशन जिसे कह सकते हैं वो चीज़ होती है कि कोई भी बिजनेस है, कोई स्टार्ट आप कुछ कर रहे हो, आप अगर डिसीजन लोगे वो आपका ही इसी इसीलिए लिया जाता है कि जो आपके सारी पेमेंट हैं, फाइनेंसेस हैं, लोग कितने काम करेंगे या नहीं करेंगे, किस टाइम पे कितने लोग होंगे, क्या टाइम रखना है, तो वो आपका इफेक्टिव डिसीजन से ही निकल कर आता है। लास्ट पॉइंट इसका है जो स्किल्स में हम लेते हैं वो आता है आपका नेटवर्किंग का। ये आपकी बिजनेस में इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि भाई आपका बिजनेस तभी बढ़ सकता है जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग है, और क्योंकि जब तक आपको लोग जानेंगे नहीं तो आप लोगों से कोई चीज़ खरीदेंगे कैसे, या आपके बिजनेस को नहीं जानेंगे तो लोग

0: आपके पास आएंगे कैसे, कस्टमर कैसे आएगा, क्वेरी तक नहीं लेंगे लोग अगर आपका नेटवर्क बड़ा नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत जरूरी होता है कि जब भी आपके कोई चीज आप स्टार्ट करो तो कस्टमर को जो है वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना होता है, ताकि अगर आपसे कोई सामान ले, प्रोडक्ट ले, या आप कोई सर्विस का काम कर रहे हैं, सर्विस का बिजनेस है, अगर कोई सर्विस ले तो वो चीज आपसे इतना खुश हो जाए कि जब नेक्स्ट टाइम कहीं बात हो या कुछ आपके बिजनेस को वो जरूर लोगों में रेकमेंड करे। इस पे कोई और कुछ बोलना चाहेगा नेटवर्किंग पे, क्योंकि हम तो ये काम करते ही हैं ना। आपके पास अगर एक बैच बनता है ट्रेनिंग का, तो कितने हम स्टोरीज देखते हैं जिसमें बेनिफिशियरीज हमें सक्सेस स्टोरीज में ये बोलते हैं कि हमें इस ट्रेनिंग रीड सेंटर के बारे में, रीड लाइब्रेरी के बारे में अपने दोस्तों से पता लगा कि वो वहां जाते थे। तो इस पे कोई कुछ बोलना चाहेगा?
1: जैसे सर कि हम नेटवर्किंग को इम्प्रूवमेंट ला नेटवर्किंग में इम्प्रूवमेंट लाने के सर सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो मॉड्यूल का नाम है वो यही है, एंटरप्रेन्योरशिप इंटीग्रेटेड विद टेक्नोलॉजी। तो क्योंकि फर्स्ट सेशन था, हम बिल्कुल इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल गए हैं। आपने देखा होगा हर कोई आजकल घर से भी अगर काम कर रहा है तो उसने फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम आजकल बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, इन सब चीज़ों में लोग रील्स बना बना के डालते हैं। तो हम इसको नेटवर्क को सोशल मीडिया के थ्रू भी हम बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि वाई इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट, वाई इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट, इसके बारे में पहले पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द क्लाइंट एंड कस्टमर नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू बाय और सेल। इट इन्फॉर्म्स कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस यू आर सेलिंग टू देम एंड हाउ इट विल सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वॉन्ट्स। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ये शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करा हुआ है कि क्यों कम्युनिकेशन, क्योंकि जब हम स्किल्स की बात कर रहे थे तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा था वो यही है कि लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको बताया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे नहीं, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपसे कस्टमर पूछेगा कि मैं ये चीज़ क्यों खरीदूं, तो आपके पास उसके आंसर आने होने चाहिए। क्योंकि आजकल एक ही प्रोडक्ट के सिर्फ आप ही नहीं बैठे मार्केट में कि आप ही एक चीज़ बना रहे हो, मार्केट में उसी प्रोडक्ट को लेके 100 ही व्यापारी बैठे होंगे। इवन अगर आप जिस जैसे आप विलेज लेवल के स्तर की बात करोगे तो आप जो चीज़ बेच रहे हो, बराबर वाला भी आपकी दुकान के बराबर में जो बैठा है वो भी वो चीज़ बेच रहा है, बस थोड़ा सा फर्क होगा कुछ ना कुछ। तो उसमें आपको कैसे कस्टमर को कन्विंस करना है कि हाँ भाई आपका प्रोडक्ट उससे कैसे अलग है, और आप उससे ना लेके मेरे से लोगे तो उसमें क्या फायदा होगा। तो ये चीजें, ये इसको कहते हैं यूनिक सेलिंग प्राइस, कि आपका जो वो है ये मतलब क्यों उससे अलग है। यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, आपको लोगों को बताना आना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट जो आप मेरे से अगर लोगे तो ये दूसरे प्रोडक्ट से इसलिए अलग है, इसमें ये, और आप अपनी तरफ से क्या बेनिफिट दे सकते हो उसको कि बाय चांस अगर इसमें कुछ खराबी आ गई तो आप मेरे पास ला सकते हो, सर्विस भी साथ साथ देनी दे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ भाई अगर आपके आप इसको ले जाते हो अगर 3 महीने 6 महीने में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई प्रोडक्ट में तो आप प्लीज़ उसको मेरे पास लाइए, मैं उसको ठीक सही करके दूंगा। और अगर 6 महीने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनको बोल सकते हैं एक मिनिमम कॉस्ट आएगी, इतना ही लगेगा और मैं उसको ठीक करके दे दूंगा, कोई रिटर्न पॉलिसी भी रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें अगर आप ऐड करोगे तो आपका एक कस्टमर अच्छा बेस बन जाएगा। इसको कस्टमर रिलेशनशिप में भी अकाउंट करते हैं, क्योंकि सिर्फ यही नहीं होता कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो बेचने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कस्टमर के लिए। क्योंकि कभी ना कभी प्रोडक्ट या फिर कोई चीज़ में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, लेकिन उस प्रोडक्ट की सेल के बाद आप कस्टमर को किस तरह से हैंडल कर रहे हो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में, जो भी जर्नी होती है इसकी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की। अब आपको कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं, बाकी फिर मैं थोड़ा से क्वेश्चंस पूछना शुरू करता हूँ। कोई सा भी
1: जी सर,
0: पॉइंट आप ले लो, कोई सा भी
1: जी
0: पॉइंट के
1: सर,
0: बारे में
1: जैसे
0: बता
1: कि
0: दो।
1: जी सर, जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है जो मार्केट में सेल होगा कि नहीं होगा।
0: राइट
1: तो उसी हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट की मतलब प्रोडक्ट की, कि ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे सेल होगा कि नहीं होगा, और इसमें जितना जितना हम खर्चा कर रहे हैं उसमें प्लस करके इसमें कुछ मुनाफा होगा या नहीं होगा, ये सारा कुछ आता है इसमें।
0: ठीक है ठीक है। और ऐसा कोई काम कुछ मतलब अभी तक किए हैं आपने? क्योंकि आपने तो बहुत सारी ट्रेनिंग करी है, बहुत सारी चीजें बनाई है, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचा हो जो इसमें जो सारी चीज जो भी बताया गया वो इन्वॉल्व हो उसमें, जैसे लीडरशिप भी हो, फाइनेंशियल भी हो, डिसीजन मेकिंग भी हो, प्रोडक्ट जो सर्वे वाली बात है, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया अभी तक इन
1: जी
0: सब
1: सर,
0: चीज
1: हमें
0: को अप्लाई करते हुए?
1: टेक्निक
0: क्या बनाया?
1: बनाइए सर।
0: पुष्पेंदर तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है,
1: इक्विपमेंट
0: पुष्पेंदर तुम्हारा आवाज क्लियर
1: मैनेजमेंट
0: नहीं है। आवाज कट रहा है पुष्पेंदर आपकी। हाँ कुछ लता बताओ कोई भी।
1: की है,
0: क्या
1: प्लानिंग की है। जी सर, हाँ इसमें हमने दरियां भी आती हैं सर इसमें, और हमारे पिकल्स भी आते हैं सर, क्योंकि जो हमने जो नींबू का अचार बनाया था उसमें हमने वो क्वालिटी भी अच्छी आई थी, और वो हमारा इतना जितना बनाया था वो यहीं से सेल हो गया, और उसमें हमने कुछ मुनाफा भी अपने सेंटर के लिए किया है।
0: वेरी गुड। और बाकी और लोग कहाँ हैं? ये तो 5 पॉइंट हैं, एक को सुमलता ने एक्सप्लेन कर दिया प्लानिंग का, बाकी और कौन? नेटवर्किंग कौन बताएगा? बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी खत्म हुआ है।
2: स्वाति
1: जी सर, गुड आफ्टरनून सर।
2: गुड आफ्टरनून। आप ये जो 5 पॉइंट बताए हैं ना, तो आप अगर प्रोडक्शन किए हो, कुछ चीजें सेल की हो, तो ये कौन सा
1: जी
2: पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाहोगे? आपने कैसे किया था उस चीज का मैनेजमेंट?
1: सर, इसमें मैं डिसीजन मेकिंग का एक्सप्लेन करना चाहूंगी। बाकी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सभी
0: बताइए।
1: पॉइंट्स भी जरूरी है, लेकिन डिसीजन मेकिंग भी है कि टाइम पे, अगर कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉफिट के मामले में जब भी हम सोचते हैं तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमाने की भी बात करते हैं, या फिर हमारा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे हो ये सोचते हैं, लेकिन जब भी मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है या फिर टाइम पे उसके सेम ही प्रोडक्ट अगर अवेलेबल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे मार्जिन कितने रहेगा, हमने जो बैकग्राउंड में जो भी पैसा लगा है वो भी निकलना चाहिए, हमारा लॉस भी नहीं होना चाहिए, या फिर एंड टाइम पे अगर हमें मार्केट चेंज करना पड़े, हमें मार्केट स्ट्रैटेजी हमें चेंज करनी पड़े, तो इस तरीके के छोटे छोटे डिसीजन हमें लेना आना चाहिए, और उस बात का हमें ख्याल भी रखना चाहिए कि प्लान बी भी हमारे पास होना चाहिए हर बात, कि अगर ये नहीं हुआ तो उस टाइम पे मैं ये डिसीजन लेके इसको सुधारूंगी। थैंक
0: ठीक है।
1: यू सर।
0: तो बस एक छोटा सा नीचे लिस्टिंग, जैसे अभी कम्युनिकेशन के बारे में बात करी हमने, तो पार्ट टू हम खत्म कर देंगे आज, आज पार्ट टू तक ही रखेंगे। तो बस ये लास्ट है, इसका ये जो है लिखा हुआ, इसमें लिखा है डू यू थिंक लिसनिंग इज वाइटल फॉर कम्युनिकेशन? मतलब आप कोई चीज़ अगर कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप अपना प्रोडक्ट है तो आप ही हमेशा उनको बताओगे इस चीज़ के बारे में कि मेरा ऐसा प्रोडक्ट है, इसलिए अलग है, मैं ये चीज़ देता हूँ, मैं उनसे अच्छी सर्विस देता हूँ बाकी लोगों से। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, वो आता है लिसनिंग टू द कस्टमर। क्योंकि आप भी अगर कोई काम कर रहे हो तो आप भी एक वैरायटी बेच रहे होगे ना, हमेशा जो कस्टमर जाएगा वो वैरायटी पे ही जाएगा, जिसमें आप एक अगर कोई चीज़ आपसे लेना है तो आप उसमें वैरायटी रखोगे कि ये वैरायटी है, अगर आप इस क्वालिटी भी होती है, ये लो क्वालिटी है, ये मीडियम क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, इसी हिसाब से उसके रेट्स भी डिसाइडेड होते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी है तो रेट भी ऊपर होगा, मीडियम क्वालिटी तो रेट ठीक ठाक होगा, लो क्वालिटी है तो प्राइस भी कम होगा, फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ भी कम होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि लिसनिंग, अब मैं पढ़ता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। वी हैव टू लिसन टू आर कस्टमर्स नीड एंड वॉन्ट एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट इज टू बी अलाइंड विद द कस्टमर। तो हमेशा आप अपना कोई प्रोडक्ट है वो सीधे कस्टमर पे नहीं थोप सकते। आपके पास जब कस्टमर आएगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी नीड लेकर आएगा आपके पास कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप उसी हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट दिखाओगे। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप चीज़ें दिखा रहे होते हो लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर को वो चीज़ समझ नहीं आती, तो वहाँ पे इसका रोल आता है, लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप उससे पूछोगे कि आप अपनी खुद रिक्वायरमेंट बता दो, मैं उसी हिसाब से चीज़ आपको दे दूंगा। होता है ना सबके साथ कि वो पहले वो अपने हिसाब से दिखा रहा होता है, चीज़ें बता रहा होता है, लेकिन आप फिर उसे बताते हो कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, तो आपसे वो डायरेक्टली पूछता है फिर कि सर या मैम आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दो, क्वालिटी कैसी चाहिए, बजट क्या है, किस तरह से। तो आप जब उस चीज़ को ध्यान में रख के फिर आप अगर चीज़ें देखो निकालोगे तो तो शायद आपको इतना टाइम भी नहीं लेगा और कस्टमर इजीली उस प्रोडक्ट को आपसे खरीद भी लेगा। सबको समझ आ गया यहाँ पर, या अभी कोई डाउट है किसी को?
3: जी सर, आ गया। यस
0: तो इसको हम अभी कंक्लूड इसी यहीं तक करेंगे कि लिसनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब अपने कस्टमर, कोई आपके पास क्लाइंट आता है दुकान पे, कोई कस्टमर आता है, कोई ग्राहक आता है आपके पास, तो आप उसको सुनो कि वो क्या चीज़ आप लोग आपसे चाह रहा है, किस क्वालिटी का चाह रहा है, किस बजट में चाह रहा है, कितनी लाइफ की चीज़ चाह रहा है, या जो भी चीज़ें हैं वो आप सुन के उसको फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट दिखाओ और उसमें वेराइटी दिखाओ। तो ये इसलिए लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने आज पार्ट वन एंड पार्ट टू खत्म करा है, जिसमें हमने बिजनेस की डेफिनेशन वगैरह, उसके टाइप्स, उसमें क्या क्या स्किल जरूरी होती है एक बिजनेस के लिए, मिशन विजन एंड आपको कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें हमने, पांच सात चीज़ें हमने आज कवर करी हैं। तो आज वाला सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी अब जो नेक्स्ट सेशन है वो नेक्स्ट मंडे को सेम टाइम पर होगा, ठीक है? तो बाकी अब जब नेक्स्ट सेशन हम शुरू करेंगे तो पहले प्रीवियस सेशन का थोड़ा सा रिकैप करेंगे एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने पार्ट वन एंड पार्ट टू कवर करा है इसमें, ठीक
3: ओके सर,
0: है?
3: ओके सर,
0: थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
3: थैंक यू सर।
4: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, महात्मा गांधी के लिए स्वच्छता केवल व्यक्तिगत आदत नहीं थी, वे साफ सुथरे शरीर, साफ मन और स्वच्छ वातावरण को एक बेहतर समाज का जरूरी हिस्सा मानते थे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया था। लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़े, आबादी बढ़ी और हमारी खपत बढ़ी, कचरे की मात्रा भी बढ़ती गई। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य कचरे को केवल हटाना नहीं बल्कि उसकी पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 किस तरह कचरे के प्रबंधन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही समझेंगे कि शहरों में वर्षों से जमा कचरे के पहाड़ को हटाने की दिशा में क्या काम हो रहा है और कचरे को किस तरह ऊर्जा, खाद और दूसरे उपयोगी संसाधनों में बदला जा सकता है। श्रोताओं, शहरों में बढ़ती आबादी और बदलती जीवन शैली के साथ कचरे की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन समस्या केवल कचरे की बढ़ती मात्रा की नहीं है। जब कचरे को सही तरीके से अलग, कलेक्ट और प्रोसेस नहीं किया जाता तो इसका असर हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ता है। कचरा खुले में पड़ा रहे या बिना छंटाई के एक जगह जमा होता रहे, इससे हवा और पानी के प्रदूषण के साथ साथ बीमारियों और आग जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ता है। दूसरी ओर कचरे में मौजूद कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकल किया जा सकता है। लेकिन जब अलग अलग तरह का कचरा एक साथ मिल जाता है तो इन चीजों को वापस उपयोग में लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कचरा प्रबंधन की शुरुआत वहीं से जरूरी है जहां कचरा पैदा होता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए ये नियम वर्ष 2016 के नियमों की जगह लेते हैं और कचरे के कलेक्शन से लेकर प्रोसेसिंग तथा डिस्पोजल तक पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। आइए अब समझते हैं कि नए नियम इस व्यवस्था में क्या बदलाव लेकर आए हैं।
6: इनका सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कचरे को चार अलग अलग हिस्सों में बांटना। पहला है गीला कचरा, इसमें रसोई का कचरा, फल सब्जियों के छिलके और खाने से जुड़ा दूसरे तरह का जैविक कचरा आता है। इसे खाद बनाने या बायोगैस तैयार करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है सूखा कचरा, इसमें कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच और लकड़ी जैसी चीजें आती हैं। इन्हें अलग करके दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिलिंग के लिए भेजा जा सकता है। तीसरा है सैनिटरी वेस्ट, जैसे इस्तेमाल किए गए डायपर्स और सैनिटरी पैड्स, इसे अलग और सुरक्षित तरीके से रखना जरूरी होगा। चौथा है स्पेशल केयर वेस्ट, इसमें दवाइयाँ, बल्ब, मरकरी वाले उपकरण और पेंट कैंस जैसी चीजें शामिल हैं। इन्हें सामान्य कचरे के साथ मिलाने के बजाय अधिकृत एजेंसियों या तय किए गए केंद्रों तक पहुंचाना होगा। नए नियमों में बड़े स्तर पर कचरा पैदा करने वाले संस्थानों की जिम्मेदारी तय की गई है। जिन संस्थानों का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा है, या जो रोज 40,000 लीटर या उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, या प्रतिदिन कम से कम 100 किलोग्राम कचरा पैदा करते हैं, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर्स माना गया है। इनमें बड़े सरकारी कार्यालय, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और रेसिडेंशियल सोसाइटीज जैसे स्थान शामिल हैं। इन संस्थानों को अपने कचरे के कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी निभानी होगी। जहां संभव हो, गीले कचरे को उसी परिसर में प्रोसेस करने पर जोर दिया गया है। नए नियमों में टेक्नोलॉजी को भी महत्वपूर्ण जगह दी गई है। कचरे के पैदा होने से लेकर उसके कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल तक की जानकारी एक सेंट्रल ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ट्रैक की जा सकेगी। वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन होगा। फैसिलिटीज का ऑडिट किया जाएगा और की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। अगर कोई व्यक्ति या संस्थान नियमों का पालन नहीं करती, गलत जानकारी देती है, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लैंडफिल के मामले में भी सोच बदली गई है। अब लैंडफिल में वही कचरा जाना चाहिए जिसे न रिसाइकिल किया जा सकता है, न उससे एनर्जी हासिल की जा सकती है और न ही उसका कोई दूसरा उपयोग संभव है।
5: श्रोताओं, नए नियम आज से व्यवस्था तो सुधार सकते हैं, लेकिन शहरों में पिछले कई दशकों से जमा कचरे का क्या होगा? भारत के कई शहरों में कचरे के बड़े बड़े ढेर आज भी मौजूद हैं। ये केवल पुराने कचरे के ढेर नहीं हैं, इनसे जमीन, हवा और भूजल पर असर पड़ता है। इनमें आग लगने और हानिकारक गैसें निकलने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए कचरे के प्रबंधन की नई व्यवस्था तभी पूरी मानी जाएगी जब हम पुराने डंप साइट्स को भी खत्म करें और नए डंप साइट्स बनने से भी रोकें। इसी सोच के साथ सामने आता है लक्ष्य जीरो डंप साइट। ये सिर्फ सफाई का अभियान नहीं है, इसे ऐसे विकास की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है जिसमें शहर साफ भी हों और कचरे से संसाधन भी तैयार हों।
6: भारत में करीब 2479 लेगेसी डंप साइट्स की पहचान की गई है। इनमें वर्षों से करीब 25 करोड़ मीट्रिक टन कचरा जमा है और ये करीब 15,000 एकड़ जमीन पर फैले हुए हैं। इन पुराने डंप साइट्स को हटाने के लिए नवंबर 2025 में डंप साइट रिडेम्पशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी अभियान का नाम है लक्ष्य जीरो डंप साइट। इसके तहत पुराने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से हटाया जा रहा है। इसे बायो माइनिंग कहा जाता है। सरल शब्दों में समझे तो पुराने कचरे को खोदकर बाहर निकाला जाता है और फिर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। अब तक 60% से अधिक लेगेसी वेस्ट को प्रोसेस किया जा चुका है। जीरो डंप साइट की दिशा में 214 हाई इंपैक्ट डंप साइट्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें देश में बचे हुए लेगेसी वेस्ट का करीब 80% हिस्सा मौजूद है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, डंप साइट हटाना अपने आप में अंतिम हल नहीं है। अगर आज पुराना डंप साइट हटा दिया और कल फिर उसी जगह नया कचरा जमा होने लगा तो समस्या वापस आ जाएगी। इसलिए जीरो डंप साइट की रणनीति दो हिस्सों पर काम करती है, पुराने कचरे को हटाना और नए डंप साइट्स बनने से रोकना। इस रणनीति के तहत शहरों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज, कंपोस्ट प्लांट्स और वेस्ट टू एनर्जी जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। यानी कचरे की यात्रा अब लैंडफिल तक पहुंचने की नहीं बल्कि रिकवरी और रीयूज तक पहुंचने की होनी चाहिए। यही सोच हमें सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ले जाती है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है है किसी चीज के इस्तेमाल के बाद उसे सीधे कचरा मानने की बजाय उसमें मौजूद संसाधन को फिर से उपयोग में लाया जाए। ये सोच केवल शहरों के कचरे तक सीमित नहीं है, कृषि में भी हर साल बड़ी मात्रा में वेस्ट पैदा होता है। भारत में हर साल करीब 350 मिलियन टन कृषि कचरा पैदा होने का अनुमान है। इसमें फसल के अवशेष, भूसा, धान की भूसी, पशुओं का गोबर और फूड प्रोसेसिंग से निकलने वाला कचरा शामिल है। अगर इन्हें जला दिया जाए या खुले में छोड़ दिया जाए तो इससे प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बढ़ सकते हैं, लेकिन यही कचरा खाद, बायोगैस, बायोफ्यूल और दूसरे उपयोगी उत्पादों का स्रोत भी बन सकता है। इसी सोच के तहत गोबरधन जैसी पहल पशुओं के गोबर, फसल के अवशेष और फूड वेस्ट से बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करने को बढ़ावा देती है। 14 जनवरी 2026 तक देश के 51% से अधिक जिलों में 979 बायोगैस प्लांट्स काम कर रहे थे। इसी तरह क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के तहत किसानों को फसल के अवशेष जलाने के बजाय उन्हें खेत में मिलाने और खेत की मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया यानी मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करने या दूसरे उपयोगों के लिए बाहर ले जाने में मदद दी जा रही है। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
5: श्रोताओं, स्वच्छता सरकार, नगर निकायों और उद्योगों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इसकी शुरुआत हम नागरिकों से होती है। हम घर से निकलने वाले कचरे को अलग करते हैं या नहीं, सड़क पर कचरा फेंकते हैं या नहीं, सिंगल यूज चीजों का इस्तेमाल कितना करते हैं और अपने आसपास सफाई बनाए रखते हैं या नहीं, इन छोटे फैसलों का असर पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। स्वच्छ भारत का लक्ष्य केवल साफ सड़कें और साफ शहर नहीं है, ये ऐसी व्यवस्था बनाने का लक्ष्य है जिसमें स्वच्छता हमारी आदत बने और विकास के साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सरफिरोजी। श्रोताओं, आज देश भर में विश्वकर्मा दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष कन्या संक्रांति के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा के प्राकट्य पर्व के रूप में ये दिन मनाया जाता है। भारतीय परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, शिल्प और तकनीकी कौशल का देवता माना जाता है। यही कारण है कि विश्वकर्मा दिवस उन कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल और योगदान को सम्मान देने का भी अवसर है, जो अपने हाथों और औजारों से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को आकार देते हैं। इसी अवसर पर आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 3 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को एक ही व्यवस्था के तहत पहचान, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक औजार, ऋण और बाजार तक पहुंच जैसी सहायता देना है। योजना के 3 वर्ष पूरे होने के साथ इसका 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में समझेंगे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की रूपरेखा क्या है, इसमें किन कारीगरों को शामिल किया गया है और पंजीकरण से लेकर औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने तक की प्रक्रिया क्या है। इसके बाद जानेंगे कि 3 वर्षों में योजना के तहत कितनी प्रगति हुई है और लाभार्थियों के अनुभव क्या बताते हैं। श्रोताओं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना परंपरागत कारीगरों के कौशल और आज की आर्थिक जरूरतों के बीच एक कड़ी बनाने की कोशिश है। देश के अनेक कारीगर पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान और हाथ के हुनर के आधार पर काम करते हैं, लेकिन उनका काम अक्सर छोटे स्तर और असंगठित क्षेत्र तक सीमित रहता है। ऐसे में जरूरत केवल आर्थिक सहायता की नहीं, बल्कि कौशल की पहचान, बेहतर औजार, प्रशिक्षण, सस्ता ऋण और बाजार तक पहुंच की भी है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इन जरूरतों को एक ही ढांचे में जोड़ती है। आइए अब समझते हैं कि योजना के तहत कारीगरों को क्या क्या सहायता मिलती है और इसमें शामिल होने की प्रक्रिया क्या है।
2: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, इन 3 आधारों पर काम करती है। इसकी शुरुआत होती है पहचान से। पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थी को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिया जाता है। यानी पारंपरिक काम से जुड़े कारीगर को योजना के तहत एक औपचारिक पहचान मिलती है। इसके साथ ही योजना का जोर कौशल उन्नयन पर है। लाभार्थियों को 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाता है। बुनियादी प्रशिक्षण 5 से 7 दिन का होता है, जबकि उन्नत प्रशिक्षण 15 दिन या उससे अधिक का हो सकता है। प्रशिक्षण के दौरान हर दिन 500 रूपए का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में कारीगरों को आधुनिक औजारों, काम करने के बेहतर तरीकों और नए डिजाइन की जानकारी दी जाती है। साथ ही डिजिटल लेनदेन, बाजार और छोटे व्यवसाय को बेहतर तरीके से चलाने से जुड़ी जानकारी भी दी जाती है। पहचान और कौशल के साथ कारीगरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया गया है। पात्र लाभार्थियों को आधुनिक टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रूपए तक की सहायता ई वाउचर के रूप में दी जाती है। कारीगरों के काम को आगे बढ़ाने के लिए ऋण सुविधा भी योजना का अहम हिस्सा है। इसके तहत बिना किसी गारंटी के कुल 3 लाख रुपए तक का एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन 2 चरणों में मिल सकता है। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का ऋण 18 महीने की अवधि के लिए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का ऋण 30 महीने की अवधि के लिए दिया जाता है। इस ऋण पर ब्याज की दर 5% तय की गई है, जबकि सरकार की ओर से 8% तक की ब्याज सहायता दी जाती है। पहले चरण का ऋण लेने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करना जरूरी है। दूसरे चरण का ऋण पहले ऋण के पुनर्भुगतान और डिजिटल लेन देन अपनाने या उन्नत प्रशिक्षण पूरा करने से जुड़ा है। अब जानते हैं कि इस योजना के लिए पात्रता की शर्तें क्या है। योजना के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे कारीगर और शिल्पकार पात्र हैं जो अपने हाथों या औजारों से 18 चिन्हित पारंपरिक कामों में से किसी एक में लगे हैं। इन 18 कामों में बढ़ई, नाव बनाने वाले, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर का काम करने वाले, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी और चटाई बनाने वाले, पारंपरिक खिलौना बनाने वाले, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले कारीगर शामिल हैं। एक परिवार से केवल एक सदस्य को पंजीकरण और लाभ की अनुमति है। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। साथ ही पिछले 5 वर्षों में इसी तरह की सरकारी ऋण आधारित योजनाओं का लाभ लेने वाले आवेदक सामान्यतः इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। पंजीकरण केवल कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी CSC के माध्यम से किया जाता है। आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान के बाद 3 स्तरों पर सत्यापन होता है।
1: श्रोताओं, किसी भी योजना की वास्तविक तस्वीर केवल उसके प्रावधानों से नहीं बनती, ये देखना भी जरूरी है कि इन सुविधाओं का लाभ जमीन पर कितने लोगों तक पहुंचा और उससे उनके काम में क्या बदलाव आया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 3 वर्ष पूरे होने पर इसके तहत प्रशिक्षण, टूलकिट, ऋण और डिजिटल सहायता से जुड़े आंकड़े सामने हैं। साथ ही अलग अलग राज्यों के कारीगरों के अनुभव ये बताते हैं कि योजना का इस्तेमाल किस तरह अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
2: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 15 सितंबर 2026 तक 24,37,000 से अधिक कारीगरों को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं 18,16,000 से अधिक कारीगरों को टूल किट मिल चुकी थी। संस्थागत ऋण तक पहुंच की बात करें तो योजना के तहत 6,19,000 से अधिक ऋण मंजूर किए गए हैं। इनकी कुल राशि करीब 5,316 करोड़ रुपए है। ये ऋण सहायता कारीगरों को कच्चा माल खरीदने, औजारों को बेहतर बनाने और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। डिजिटल लेनदेन की दिशा में भी योजना के तहत काम किया गया है। 8,11,000 से अधिक लाभार्थियों को डिजिटल प्रोत्साहन मिला है और इसके लिए 42 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। इसके अलावा 12,000 से अधिक कारीगरों को ब्रांडिंग, उत्पाद डिजाइन, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल्स के इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दिया गया है। बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए देश भर में 1500 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम और कैंप, 50 से अधिक कार्यशालाएं, 82 व्यापार मेले, 37 राज्य स्तरीय प्रदर्शनियां और 50 से अधिक फ्लैश मोब आयोजित किए गए हैं। जनवरी 2026 में दिल्ली हाट में पहला प्रधानमंत्री विश्वकर्मा राष्ट्रीय प्रदर्शनी और व्यापार मेला आयोजित किया गया। इसमें देश भर के 117 से अधिक कारीगर शामिल हुए और 2 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री दर्ज की गई। इस मेले में 60,000 से अधिक लोगों की आवाजाही हुई। बाजार से जुड़ने के लिए रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों जैसे स्थानों पर भी कारीगरों के उत्पादों को जगह दी जा रही है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल के तहत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 42 से अधिक दिव्यांग विश्वकर्मा लाभार्थियों को स्टॉल उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तरह पैकेजिंग और ब्रांडिंग को बेहतर बनाने के लिए 6 शहरों में कार्यशालाएं आयोजित की गयी, जिनमें 1500 कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया। अब बात करते हैं उन लोगों के अनुभवों की जिनके लिए ये योजना बनाई गयी है। नागालैंड के जुन्हे बोटों की टोकरी बनाने वाली श्रीमती विली ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण पूरा किया और 1,00,000 रुपए का बिना गारंटी वाला ऋण लिया। उन्होंने इस राशि का इस्तेमाल कच्चा माल खरीदने और अपने काम को बढ़ाने में किया। उनके अनुसार इससे उनकी मासिक आय करीब 40% बढ़कर लगभग 15,000 रुपए हो गई। उत्तराखंड के चमोली के लकड़ी पर नक्काशी करने वाले दर्शन लाल 3 दशक से अधिक समय से इस काम से जुड़े हैं। उनके परिवार की परंपरा बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़े कारीगरों से जुड़ी रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत उन्हें कौशल प्रशिक्षण, टूल किट और सस्ते ऋण सुविधा मिली। वर्ष 2026 में उन्होंने दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट में भी हिस्सा लिया। ये राष्ट्रीय राजधानी में उनकी पहली प्रदर्शनी थी और इससे उन्हें अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुँचाने का अवसर मिला। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्रोताओं, पारंपरिक कारीगरी केवल एक पेशा नहीं बल्कि पीढ़ियों से आगे बढ़ता आया कौशल और ज्ञान है। बदलती तकनीक और बाजार की जरूरतों के बीच इस हुनर को जीवित रखने के लिए कारीगरों की आजीविका को मजबूत करना जरूरी है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 3 वर्षों का सफर इस प्रयास को आगे बढ़ाता है। कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक थे अरुणदीप सिंह।

आज का जो सेशन है मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग हमेशा एक परफेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट? और जब हमें परफेक्ट आंसर नहीं मिलता है किसी भी चीज का, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये मेरे साथ भी होता है और ये हर एक इंसान के साथ होता है कि हम परफेक्ट आंसर अपनी लाइफ में नहीं ढूंढ पाते हैं। तो उस स्टेज में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे किसी के साथ होते हैं कि परफेक्ट आंसर ही नहीं पता चलता कि क्या गलत है क्या ठीक है, बट हम करते हैं कुछ भी, अपनी तरफ से हम बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड, जो पिछले सेशंस में मैंने बोला है कि माइंड इतना स्ट्रांग होते हैं कि माइंड हमें गाइड करता है। वो बच्चे की स्टोरी मॉन्स्टर से लड़ने की, उसका माइंड ही उसको इंस्टिगेट कर रहा था, और माइंड में जो थॉट्स आ रहे थे कि मुझे एप्पल देना है, मुझे पानी देना है, मुझे स्माइल करनी है, तो माइंड वॉज एक्टिंग। तो हम बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में आती हैं कि हम वेदर वी आर डूइंग इट राइट, वेदर वी आर टेकिंग अ राइट डिसीजन, बट फिर नॉर्मली हमारी ये टेंडेंसी हो जाती है कि हम परमात्मा पे छोड़ देते हैं। अच्छा, जो होगा ठीक ही होगा, गलत क्या होगा, हम एक्शन तो ले ही लेते हैं, राइट? मैं इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी, अगर आप ये स्लाइड्स में देखेंगे कि मेरे पास एक गाड़ी है और मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैंने नई गाड़ी खरीदी है और उस पे स्क्रैच आ गया, तो मुझे बहुत एक अजीब सी फीलिंग होती है कि ओहो, मैंने इतने लाख की गाड़ी खरीदी और उस पे ये स्क्रैच आ गया। तो हमारी जो फीलिंग है वो बड़ी आई शुड से दैट नेगेटिव सी हो जाती है कि ओहो सच अ लॉस, वाई दिस स्क्रैच हैज कम। तो हम दूसरों से बात करते हैं तो हर कोई अपना अपना ओपिनियन देता है। नीचे देखो मैंने लिखा हुआ है, समवन वुड से यू शुड ड्राइव स्क्रैचलेस कार। अरे ये तो आपकी पर्सनालिटी के साथ सूट ही नहीं करता कि आपकी गाड़ी पे डेंट लगे हुए हैं। हमारे में भी ये फीलिंग आती है, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने दिया है। और कोई दूसरा कहेगा तो क्या हुआ, गाड़ी सड़क पे लेके जाओगे तो स्क्रैच नहीं आएंगे, तो और क्या होगा, हवा में थोड़ा उड़ानी है आपने गाड़ी, स्क्रैच तो आएंगे ही आएंगे, इट हार्डली मैटर्स, व्हाई यू आर लिंकिंग दिस विद योर स्टेटस और पर्सनालिटी। अब क्या हुआ, एक ने कह दिया अरे तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ तो स्क्रैच गाड़ी पे हो तो सूट ही नहीं करता, और दूसरा कह रहे क्या फर्क पड़ता है। तो हम जिसकी गाड़ी है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं स्क्रैच को ठीक कराऊं नहीं कराऊं, और लगने दो फिर एक ही बार करा लूंगा, या कोई बात नहीं ऐसे ही चलता रहे। तो हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम क्या करें, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन लाइफ देयर इज सेल्डम वन राइट आंसर। हमें आंसर सही नहीं मिलता है, बहुत डीप बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ, पर सिचुएशन तो हमारे हाथ में है। हम आंसर अगर ठीक नहीं ले पा रहे हैं पर सिचुएशन हमारे हाथ में है, हमारा माइंड हमारे हाथ में है, हमारी सोच हमारे हाथ में है, हमारी एनालिटिकल पावर्स हमारे हाथ में है, और ये सब कुछ जब सिंक्रोनाइज हो जाता है तो हम कॉन्शियसली राइट डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ, है ना? तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, हम किसको सुनते हैं? यू मे स्टैंड अलोन, मतलब कि तुम कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। लीडरशिप की क्वालिटीज में मैंने ये भी बताया था कि लीडर्स को कभी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे उसको स्टैंड अलोन करना पड़ता है, बट ही इज लिसनिंग टू हिज और हर इनर कॉन्शियंस। वो अपनी कॉन्शियंस को सुनता है और वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ और मैं ठीक कर रहा हूँ। तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम अपने अंदर जो व्हाट इज राइट फॉर यू, यू को मैंने कैपिटल वर्ड्स में लिखा है, जो मेरे लिए सही है वही मेरे लिए सही आंसर है। इज इट ओके? कोई इसके रिलेटेड कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहेगा?
ये बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है। बहुत बारी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि यू फेस द पीपल हु डोंट हु वोंट लेट यू ग्रो, हु वोंट अप्रिशिएट व्हाट योर वाइडर विजन इज, हु विल नॉट इवन थिंक अ पिन पिन, जितना भी वो नहीं सोचते जो तुम सोच रहे हो, और वो इतनी बड़ी हर्डल खड़ी कर देते हैं आपके सामने। उस सिचुएशन में एक लीडर को क्या करना है, 10 लोग अगर वो बात सुन रहे हैं तो 10 लोग अपनी अपनी परसेप्शन रखते हैं, पर आपको क्या करना है, आपको वही करना है जो सच है, जो आपका जो इनसाइड यू है, जो आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको सुनना है और वही एक्शन लेना है। एम आई राइट? ये बात समझ में आ गई सबको? हम करते हैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करते हैं, पर इसको रिपीट करना और इसको बार बार इस सिचुएशन में जब हम आते हैं और इस स्लाइड को याद करना हमें बहुत मदद करेगा, बहुत ज्यादा मदद करेगा, अगर हम इसकी एक हैबिट बना लें और हम अपने आप को हमेशा एनालाइज भी करते रहें, सेल्फ एनालिसिस करें। यू लिसन टू योर इनर वॉइस, व्हाट योर इनर वॉइस इज टेलिंग यू, ये बहुत जरूरी है। और इनर वॉइस जो कहती है वो कभी भी ये नहीं कहती है, अगर हम लीडर हैं और अगर हम वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर को याद करें जिसमें पहला पॉइंट था कि ट्रुथफुलनेस, और अगर हम सच्चे हैं अपने साथ और अपने लोगों के साथ, तो जो हमारी इनर कॉन्शियस है वो हमेशा राइट डिसीजन लेने के लिए कहेगी। हम किसी की बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें किसी भी बात का हम ये नहीं कह सकते कि राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है, हमें हमेशा अपने ही कॉन्शियस को सुनना है। हम सलाह जरूर करें, हम लोगों से बात जरूर करें, और हमेशा जो अंदर से आवाज आती है उसको अगर हम सुने तो मुझे ये लगता है कि हमारे लिए वही राइट आंसर होता है। तो अगर मैं अपने कम्युनिकेशन को बिगाड़ लेती हूँ, नेगेटिविटी में ले जाती हूँ या आर्गुमेंट में आ जाती हूँ, तो शायद काम बिगड़ेगा ही, काम सुधरेगा नहीं। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और क्लैरिटी, कम्युनिकेशन के साथ क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम घुमा फिरा के बात नहीं करें, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, क्योंकि हमारा गोल बहुत क्लियर है, हमारी विजन बहुत क्लियर है, हमारा मिशन बहुत क्लियर है, हम अपनी आईज को एक फोकस्ड रख रहे हैं, हम इधर उधर देख ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है। इधर उधर देखना है इसलिए क्योंकि कोई नेगेटिविटी हमें इम्बाइब ना कर ले, अदरवाइज अगर हमारा मिशन क्लियर है, विजन क्लियर है, तो हम अपने गोल पे फोकस्ड ही रहते हैं। राइट? क्रिएटिव थिंकिंग, आप सब लोग कर रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग, अपने काम में भी कर रहे हैं, अपने सेंटर्स को कैसे चलाना है, कैसे करना है, ये अडेप्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं राइटली, और फिर उसको क्रिएटिव थिंकिंग से आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। देन डिपेंडेबिलिटी, बहुत जबरदस्त हम डिपेंडेंट है। अगर आज के सेशन में 55 लोग हैं तो मैं ये कहूंगी कि मैं 55 लोगों पे ही डिपेंडेंट हूं अपनी बात सुनाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए, अपने मिशन को रियलाइज करने के लिए। आई कैन नॉट स्टैंड अलोन टू डू ऑल दीज थिंग्स। हम एक दूसरे पे इतने निर्भर हैं, और हमारा समाज ही ऐसे बना हुआ है कि हम एक दूसरे पे निर्भर होके रहते हैं। कोई भी इंसान आइसोलेशन में अकेले अपनी जिंदगी नहीं जी सकता है, ये तो पता ही है। वर्क एथिक्स, वर्क एथिक्स हम बहुत बार ही चर्चा करते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं, अपने काम को उसमें एथिकली कर रहे हैं या नॉन एथिकली कर रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, इन ये चीजें सब आपको पता है। बट सिर्फ हर एक पॉइंट को अपने कॉन्शियस के साथ जोड़ने की जरूरत है। टीम वर्क, हर कोई टीम में काम कर रहा है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग से कर रहे हैं। देखो रोज एक नेगेटिविटी आ जाती है जब हम काम करते हैं, पर उसको सहज भाव से सोचना, उसको एनालाइज करना,
फिर अपनी सोच को बदलना कि मैं नेगेटिव ना होके इसको पॉजिटिव किस नजर से देख सकती हूँ, उस नजर से उसको देखना और फिर एक्शन लेना। ये चार स्टेप्स बहुत बहुत जरूरी हैं पॉजिटिविटी को मद्देनजर रख के और अपने गोल पे पहुंचने के लिए। टाइम मैनेजमेंट यस बहुत जरूरी है। मोटिवेशन, एक दूसरे को मोटिवेट करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम मींस अकेले अगर हमें नहीं समझ में आ रही, टीम वर्क में हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और कैसे अगर मैं इसको पहले वाली स्लाइड के साथ लिंक करूं तो हम अगर कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और अगर हमें दूसरे जो हमारा टीम मेंबर है उसकी बात से हम समहाउ नहीं कॉन्फिडेंट हैं तो हम बड़े सहज भाव से बोल सके हैं कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से सोच लें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग इस एनालिटिकल स्किल कि उसके अच्छाइयाँ क्या होंगी, बुराइयाँ क्या होंगी, और फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये सब, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं 10-12, इनके ऊपर कितनी बुक्स लिखी गई हैं, कितने ऑथर्स ने इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसको हम पढ़ भी सकते हैं। आजकल तो हिंदी वर्जन्स भी बहुत मिलते हैं इन किताबों के। तो ये हमें आई वुड से दैट कि अपने सबकॉन्शियस लेवल पे ये एक डिसिप्लिन में ले आना चाहिए कि ये हमारा एक डिसिप्लिन है हमारी पर्सनालिटी का, हमारी लाइफ का, और हम इन पॉइंट्स को अगर हर रोज अपने एक्शंस में एक्सपीरियंस करें तो आप देखना कि बड़ी जल्दी आप लोग एक डिफरेंट लेवल पे एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाओगे। आप लोग हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं हो, पर हर चीज को एक रिमाइंडर देने की जरूरत होती है क्योंकि हर रात के बाद एक सवेरा होता है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को एनालाइज करते रहे और अपने आप को एक रिमाइंडर देते रहे तो हमारी हमारी पर्सनालिटी ग्रो करेगी, हमारी पर्सनालिटी शाइन करेगी और हमारा जो नेचुरल प्रोसेस है थिंकिंग का वो एक बहुत ऊंचे स्थान पे चला जाएगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, एक और स्लाइड है, मैं उसके ऊपर भी चर्चा करती हूँ। सॉफ्ट स्किल्स और नॉन टेक्निकल स्किल्स, जो जहाँ पे हम ये अब लीडरशिप की बात कर रहे हैं और मैंने सॉफ्ट स्किल्स की बात की है, ये तो नॉन टेक्निकल है, इसमें कोई हम डिग्री तो पास नहीं करते हैं, पर हमारी परफॉर्मेंस पे ये इतना इम्पेक्ट करती हैं सॉफ्ट स्किल्स हमारे वर्क प्लेस पे अगर हम इनको रोज प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, राइट। और ये कॉर्पोरेट सेक्टर में और हम लोग भी सेशंस करते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इसके ऊपर अभी बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बिकॉज दैट इज द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन विच डिफाइंस। तो यू लाइकली ऑलरेडी हैव सॉफ्ट स्किल्स फ्रॉम योर स्कूल एंड वर्क एक्सपीरियंस, पर हम उसको कितना यूज करते हैं, हम उसको बॉक्स में बंद करके नहीं रखें, क्योंकि ये शिक्षा तो हम जब स्कूल जाते हैं हमें मिलनी शुरू हो जाती है, थोड़े थोड़े लेवल की इंक्रीज होती रहती है जब हम जाते हैं, पर हम जब बड़े होते हैं कहीं ना कहीं हम पीछे उस शिक्षा को छोड़ते आते हैं तो हम आगे आके कंफ्यूज पर्सनालिटी बन जाते हैं। पर अगर हम उसको अपने आप को रिमाइंडर देते रहे, अपने आप को डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते रहे, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे उन्होंने सोशल सेक्टर में काम करने का मौका दिया जिसमें मैं अपनी ये सारी सॉफ्ट स्किल्स को हर रोज सुधारने का भी मुझे मौका मिलता है, इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलता है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मैं कैसे इस पर्टिकुलर जो सॉफ्ट स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। और ये हमें सबको सोचना चाहिए। यू कैन ऑल्सो डेवेलप सॉफ्ट स्किल्स एट वर्क, स्कूल, वॉलेंटियर एक्टिविटीज एंड इन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आप सब लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही कर रहे हो, आप सब लोग ज्ञान ही बांट रहे हो, आप सब लोग दूसरों को सक्षम ही बना रहे हो, और अगर ये सॉफ्ट स्किल्स आप
अपने सेंटर पे एक चार्ट में लिख के रख दोगे तो दैट इज अ रिमाइंडर टू एवरीवन, राइट। और इस पे अगर 10 मिनट रिफ्लेक्ट भी कर लेंगे तो पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो जाती है। सो इंक्लूड योर सॉफ्ट स्किल्स इन योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर ऑल्सो। जब आप एम्प्लॉयबिलिटी की, यूथ डेवलपमेंट की वर्कशॉप्स करते हो तो आप उनको बोलो, क्योंकि आप नॉर्मली, आप एक लाइन आती है रिज्यूमे में कि मुझे क्या हॉबीज हैं, मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और सॉफ्ट स्किल्स की हार्डली कोई लाइन होती है। पर अगर हम इनको भी इक्वली इम्पोर्टेंस दें, जो यूथ है आजकल का, जो जॉब ढूंढ रहा है, जो हमारे सेंटर्स पे आके ट्रेनिंग्स लेते हैं, कैरियर काउंसलिंग की क्लासेस होती हैं, इसके ऊपर भी हमें इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो हम अपनी टेक्निकल स्किल्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेट योर सॉफ्ट स्किल्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज ऑल्सो। कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, एक हरियाणा की लड़की आईएएस ऑफिसर की इंटरव्यू में बैठी थी। 6 लोग बैठे थे और कमरे में, और शी वॉज आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। और मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हाईलाइट करना चाहूंगी जो इंटरव्यूअर था जिसने उस लड़की को बोला। जब सबने क्वेश्चंस पूछ लिए तो उसने बोला, आप नर्वस हो रही थी। तो लड़की ने बोला, हाँ मैं नर्वस हो रही थी। तो उसने बोला, ये आपका पर्सनालिटी ट्रेट है या आप फर्स्ट टाइम नर्वस हो रही थी? आप देखिए सॉफ्ट स्किल्स से कितना लिंक करती है ये बात। उसने बोला कि ये मेरा पर्सनालिटी ट्रेट है, जब मेरे ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है तो मैं नर्वस हो जाती हूँ। पर उस लड़की ने उस पे अगर पहले काम किया होता तो उसका आंसर कभी और भी हो सकता था। पर शी थॉट कि दैट इज द राइट आंसर, बिकॉज मैं क्यों बताऊं कि मैं इंटरव्यू के दौरान नर्वस हो रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन, एक लड़की भी बैठी थी इंटरव्यूअर बोर्ड में, उसने उससे बोला कि आपको कुछ आंसर्स नहीं आते थे, पर आप 5-6 सेकेंड, 10 सेकेंड्स ले सकती हैं आंसर मतलब कि याद करने में, और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ओपनली बोल भी सकते हैं कि सॉरी मुझे ये आंसर याद नहीं आ रहा है, इंस्टेड ऑफ गिविंग रॉन्ग रॉन्ग आंसर। तो उस लड़की ने उसको एक्सेप्ट किया कि यस यू आर राइट, मुझे टाइम देना चाहिए अपने आप को सोचने के लिए। तीसरा क्वेश्चन एक लड़की ने जो उसको किया, आई वॉज रियली अमेज्ड। और हम अपने ऑफिस में भी कई बार ये कल्चर की बात करते हैं। उसने उसको बोला कि आप आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग मतलब कि इंटरव्यू के लिए आए हैं, आपको इतने हाई हील्स पहनने की क्या जरूरत है? आप नॉर्मल चप्पल पहन के भी आ सकती थी या शूज पहन के भी आ सकती थी, और आप अगर फाइनल राउंड पे आएंगी तो आप अपने इस चीज का ध्यान रखिए। इट वॉज नॉट अ बैड सजेशन, इट वॉज वेरी गुड सजेशन कि हम जिस कल्चर में रहते हैं, जिस कल्चर में हम काम करते हैं, हमें उस कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस कल्चर की इज्जत करनी चाहिए, और कल्चरली ओरिएंटेड हमें अपना लाइफस्टाइल भी बनाना चाहिए। तो ये जो आजकल हम बात करते हैं कि हम वेस्टर्निज्म को बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, करिए, मैं भी करती हूँ, मेरी फैमिली भी करती है, बट जब हम ऐसी सिचुएशन में ऐसा ट्रैवल करने जाते हैं, मैं क्यों ये आपको बता रही हूँ कि आप लड़कियों को बताइए ये सारी बातें जब आप उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, तो अपने कल्चर को कभी भी मत छोड़िए, अपने कल्चर को हमेशा बांध के रखिए, वही आपको कहीं ना कहीं आगे लेके जाएगा। दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर टुडे।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नईम अख्तर। श्रोताओ, भारत कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जूट केवल एक फसल या उद्योग नहीं है, इससे देश के करीब 40 लाख किसान परिवार जुड़े हैं और जूट मिलों तथा इससे जुड़े उद्योगों में लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में 76 लाख गांठ कच्चे जूट का उत्पादन हुआ और करीब 12,80,000 मीट्रिक टन जूट उत्पाद तैयार किए गए। इसी अवधि में भारत ने करीब 1,71,000 मीट्रिक टन जूट उत्पादों का निर्यात किया, जिसकी कीमत 3,155 करोड़ रुपए से अधिक रही। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि भारत में जूट उत्पादन की शुरुआत कैसे हुई, समय के साथ ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बना और सरकार की नीतियों, तकनीक और नए उत्पादों के जरिए गोल्डन फाइबर को एक टिकाऊ और आधुनिक उद्योग के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रोताओ, भारत का गोल्डन फाइबर इंडस्ट्री यानी जूट उद्योग एक लंबे इतिहास से जुड़ा है। भारत में जूट के इस्तेमाल का इतिहास 3rd शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है। ब्रिटिश काल में जूट का व्यावसायिक महत्व तेजी से बढ़ा। खासतौर पर सेना से जुड़े कामों में इसके इस्तेमाल के कारण जूट की मांग बढ़ी और बंगाल में बड़ी संख्या में जूट मिलें स्थापित हुईं। लेकिन 1947 में देश के विभाजन के बाद जूट उद्योग के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। जूट उगाने वाले करीब 80% इलाके पूर्वी पाकिस्तान में चले गए, जबकि ज्यादातर जूट मिलें भारत में रह गईं। यानी कच्चा माल एक तरफ था और उसे तैयार करने वाली मिलें दूसरी तरफ। इससे भारत में कच्चे जूट की कमी हुई। इसके बाद सरकार ने सितंबर 1949 में ग्रो मोर जूट अभियान शुरू किया। किसानों को धान की जगह जूट की खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बाद के वर्षों में सरकार ने जूट के लिए बाजार बनाए रखने पर जोर दिया। वर्ष 1987 का जूट पैकेजिंग एक्ट इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके जरिए जरूरी वस्तुओं की पैकिंग में जूट की बोरियों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिला और किसानों के लिए जूट का एक स्थिर बाजार तैयार हुआ। आज पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे आगे है। इसके बाद बिहार, असम, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्य आते हैं। जूट की बुआई आम तौर पर मार्च और अप्रैल में होती है और फसल लगभग 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। आइए अब समझते हैं जूट आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
2: जूट जैव अवक्रमणीय यानी प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाला और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला फाइबर है। ये तेजी से बढ़ता है, आसानी से उपलब्ध है और इसकी लागत भी अपेक्षाकृत कम है। इसके रेशे मजबूत और टिकाऊ होते हैं, इनमें नमी सोखने की क्षमता होती है और जूट से बने उत्पादों में तापमान और आवाज को रोकने जैसी उपयोगी खूबियाँ भी पाई जाती है। इसी वजह से जूट का उपयोग खेती, निर्माण, उद्योग, सजावटी सामान और कपड़ों में भी हो रहा है। जूट को दूसरे प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के साथ मिलाकर भी नए उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। जूट की एक और खास बात है जिसका संबंध सीधे हमारे खान पान से है। जूट के पत्तों को अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में सब्जी के रूप में खाया जाता है।

0: सतह खुरदरी होती है और शुरुआती दौर में इसकी पकड़ मजबूत होती है, इसलिए इसे ढलानों, सड़क किनारे की मिट्टी, नदियों के किनारों और नहरों जैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जूट का इस्तेमाल अब केवल पैकेजिंग के लिए नहीं हो रहा, ये ऐसे बुनियादी ढांचे का भी हिस्सा बन रहा है जिसमें पर्यावरण और विकास दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जाती है।
1: श्रोताओं, ऐसे समय में जब दुनिया प्लास्टिक और दूसरे कृत्रिम पदार्थों के टिकाऊ विकल्प तलाश रही है, तब जूट की उपयोगिता और बढ़ रही है। साथ ही जूट के लिए नए बाजार और नए अवसर तैयार हो रहे हैं। इसका फायदा किसानों और जूट से जुड़े उद्योगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। यही वजह है कि सरकार का ध्यान केवल जूट का उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। कोशिश ये है कि किसान से लेकर बाजार तक जूट की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत किया जाए। किसानों को बेहतर कीमत देने, खेती की प्रोडक्टिविटी और गुणवत्ता बढ़ाने, जूट से नए उत्पाद तैयार करने, छोटे कारोबारियों और कारीगरों को बाजार से जोड़ने और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि इन सरकारी प्रयासों से जूट उद्योग में क्या बदलाव आया है और इसका असर किसानों, कारीगरों और उद्योग तक किस तरह पहुंच रहा है।
0: जूट किसानों के लिए सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कच्चे जूट का MSP 5,925 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह अखिल भारतीय औसत लागत के मुकाबले करीब 61.8% का लाभ देता है। MSP पर खरीद के लिए जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। जब बाजार में जूट की कीमत MSP से नीचे जाती है, तब JCI किसानों से सीधे जूट खरीद सकती है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में डिपार्टमेंटल परचेज सेंटर्स बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा में ऐसे करीब 110 केंद्र काम कर रहे हैं। नेशनल जूट डेवलपमेंट प्रोग्राम जूट क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ी योजना है। वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक इसके लिए 485,58,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका जोर जूट की खेती, किसानों की आय और जूट के नए उत्पादों को बढ़ावा देने पर है। इसी के तहत जूट आई केयर योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक खेती, बेहतर बीज, मशीनों और बेहतर रेटिंग यानी जूट के रेशे को पौधे से अलग करने की प्रक्रिया के जरिए उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाना है। जूट के रेशे को पौधे से अलग करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के साथ मिलकर रेटिंग के लिए तालाब तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन जूट उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए केवल खेती बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। जरूरत है कि जूट से ऐसे उत्पाद बनाए जाएं जिनकी बाजार में अधिक कीमत हो। इसी सोच के साथ जूट डाइवर्सिफिकेशन स्कीम के जरिए जूट की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सेल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। जूट रॉ मटेरियल बैंक छोटे उत्पादन केंद्रों, कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूहों और MSMEs को नियमित और अच्छी गुणवत्ता का कच्चा जूट उपलब्ध कराने में मदद करता है। जूट के बाजार को मजबूत करने के लिए क्वालिटी और ब्रांडिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जूट मार्क इंडिया लोगो जूट उत्पादों की गुणवत्ता और ऑथेंटिसिटी देने का काम करता है। जूट स्मार्ट नाम का ई गवर्नेंस पोर्टल जूट की खरीद और फूड ग्रेन पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली जूट बोरियों की सप्लाई को डिजिटल बनाने में मदद करता है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने JCI और नेशनल जूट बोर्ड के साथ मिलकर जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया है। रिमोट सेंसिंग और फील्ड डेटा के जरिए जूट की खेती की निगरानी की जाती है। भुवन जंप मोबाइल ऐप और पटसन वेब प्लेटफॉर्म के जरिए फील्ड लेवल इंफॉर्मेशन जुटाकर खेती से जुड़े फैसलों के लिए डेटा उपलब्ध कराया जाता है। समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
1: श्रोताओं, इन सभी प्रयासों को एक साथ देखें तो जूट उद्योग में बदलाव की एक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। पहला बदलाव है किसान के स्तर पर। MSP और सरकारी खरीद से किसानों को कीमत में सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है। वहीं बेहतर बीज, वैज्ञानिक खेती और मशीनों के इस्तेमाल से उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर है। दूसरा बदलाव है उद्योग के स्तर पर। जूट को केवल बोरी और पैकेजिंग तक सीमित रखने के बजाय जियो टेक्सटाइल्स, हैंडलूम और दूसरे उत्पादों के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। तीसरा बदलाव है छोटे कारोबारियों और कारीगरों का। जूट रॉ मटेरियल बैंक्स, ट्रेनिंग सेंटर्स और मार्केट लिंक।

जिसके जरिए छोटे उद्यमों को वैल्यू चेन का हिस्सा बनाया जा रहा है। यानी जूट की कहानी अब केवल खेत से मिल तक की कहानी नहीं है, ये किसान से शुरू होकर प्रोसेसिंग, छोटे उद्यम, महिला समूह, टेक्नोलॉजी, डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट्स तक पहुंचने वाली पूरी वैल्यू चेन की कहानी बन रही है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं प्राची प्रिया। श्रोताओं, शहर के बाजार में मिलने वाला बांस का एक साधारण सा थैला अपने भीतर बदलाव की एक बड़ी कहानी समेटे हो सकता है। ये कहानी एक छोटे से गांव के पारंपरिक शिल्प से शुरू होकर आधुनिक उद्यम, रोजगार और राष्ट्रीय नीति में बदलाव तक पहुंच सकती है। गुरुग्राम में आयोजित सरस आजीविका मेले में असम की विशाखा दीदी की ऐसी ही कहानी सामने आई। वर्ष 2014 में उन्होंने बांस का थैला बनाया। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने अपने ससुर के बांस शिल्प उद्यम को नए डिजाइनों के साथ फिर से आगे बढ़ाया। सरकारी सहायता और प्रदर्शनियों के जरिए उन्हें बड़े बाजारों तक एक बड़ी लंबी चौड़ी पहुंच मिली। वर्ष 2025 में उन्होंने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया और बांस उत्पादों की बिक्री से 2 लाख रुपए की कमाई की। विशाखा दीदी की यात्रा बताती है कि पारंपरिक संसाधन और स्थानीय हुनर को सही अवसर, बाजार और सरकारी सहयोग मिले तो वो एक सफल उद्यम का रूप ले सकता है। श्रोताओं, बांस भारत के अनेक समुदायों की पारंपरिक आजीविका से लंबे समय से जुड़ा रहा है, लेकिन एक समय पुराने नियामक प्रावधानों के कारण इसकी आर्थिक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था। वर्ष 2017 में सरकार ने बांस को पेड़ की श्रेणी से हटाकर इसे कड़े वन नियमों से मुक्त करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस बदलाव ने बांस क्षेत्र में नवाचार, उद्यमिता और मूल्यवर्धन के नए रास्ते खोले। आज इसका प्रभाव विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में दिखाई दे रहा है, जहां बांस रोजगार, व्यवसाय और नवाचार का माध्यम बन गया है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि किस तरह बांस पारंपरिक शिल्प से आगे बढ़कर आधुनिक उद्यम, कृषि, विनिर्माण और टिकाऊ आजीविका का आधार बन रहा है।
2: श्रोताओं, बांस क्षेत्र में बदलाव की कई कहानियां देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। सिक्किम में गैंगटॉक के पास फैशन डिजाइनर और सतत विकास की प्रणेता चिमी ओंगमू भूटिया का लक्सटल डिजाइन स्टूडियो इसका एक उदाहरण है। महिलाओं द्वारा संचालित ये विनिर्माण उद्यम बांस से हस्तशिल्प, अगरबत्ती, फर्नीचर और आंतरिक सज्जा की वस्तुओं सहित कई उत्पाद तैयार करता है। त्रिपुरा में विजय सूत्रधार ने बांस उत्पादों के निर्माण को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया है। नागालैंड में दीमापुर के आसपास स्वयं सहायता समूह बांस आधारित खाद्य उत्पादों में मूल्यवर्धन कर रहे हैं। वहीं खोरोलो क्रिएटिव क्राफ्ट्स जैसे स्थानीय उद्यम फर्नीचर और हस्तशिल्प का उत्पादन कर रहे हैं। मिजोरम के मामित जिले में बांस के ऊतक संवर्धन यानी पौध तैयार करने की तकनीक और पॉलीहाउस प्रबंधन के जरिए वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये उदाहरण बताते हैं कि बांस का क्षेत्र अब केवल कच्चे बांस या पारंपरिक हस्तशिल्प तक सीमित नहीं है। इसमें तकनीक, डिजाइन, प्रसंस्करण और आधुनिक बाजार के जरिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। लेकिन इतने बड़े बदलाव के लिए केवल कुशल कारीगर पर्याप्त नहीं है, इसके लिए प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण सुविधाएं, प्रशिक्षण और मजबूत बाजार संपर्क भी जरूरी है। यहीं पर सरकारी सहायता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रीय बांस मिशन बांस किसानों, विनिर्माताओं और विक्रेताओं के लिए खेती, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुँच पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नर्सरियों को भी सहायता दी जाती है। मध्य प्रदेश के विजय पाटीदार का अनुभव बताता है कि बांस किस तरह से किसानों के लिए दीर्घकालिक आजीविका का साधन बन सकता है। वर्ष 2019 में पारंपरिक खेती से लगातार नुकसान होने के बाद उन्होंने बांस की खेती शुरू की। बांस मिशन के सहयोग से उन्होंने करीब 4000 बांस के पौधे लगाए। 2 वर्षों के भीतर उन्होंने बांस की बल्ली यानी पोल्स बेचकर लगभग 75,000 रुपए कमाए। बांस की खेती के साथ साथ उन्होंने अंतर फसल के रूप में मिर्च, शिमला मिर्च, अदरक और लहसुन भी उगाए। इस तरह बांस उनके लिए केवल एक फसल नहीं बल्कि दीर्घकालिक आजीविका का माध्यम बन गया। श्रोताओं, बांस से जुड़े बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू इसके प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक उपयोगिता का विस्तार भी है। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच यानी NCTAR ने खाद्य और कृषि कृषि प्रसंस्करण, निर्माण सामग्री, विनिर्माण मशीनरी, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक उत्पादों सहित कई व्यावसायिक अनुप्रयोगों में बांस प्रौद्योगिकी को समर्थन दिया है। इन प्रयासों से प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं और बांस उत्पादों का मूल्य संवर्धन 10% से बढ़कर 70% तक हुआ है। बांस की नई संभावनाओं का एक उदाहरण इंजीनियर्ड बांस है। इसे कच्चे बांस के रेशों, पट्टियों या छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़कर और दबाकर तैयार किया जाता है। इंजीनियर्ड बांस और नए डिजाइन से फर्नीचर को वास्तुकारों, डिजाइनरों और इंटीरियर डेकोरेटरों का ध्यान मिल रहा है। आपदा राहत और पुनर्वास के लिए अब तक 42 लाख वर्ग फुट से अधिक इंजीनियर्ड बांस संरचनाओं का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ में करीब 20,000 बच्चों के लिए 576 स्कूल कक्ष इंजीनियर्ड बांस से बनाए गए हैं। ये दिखाता है कि बांस अब उन निर्माण क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना रहा है जो कभी मुख्य रूप से पारंपरिक औद्योगिक सामग्रियों से जुड़े माने जाते थे।
1: श्रोताओं, बांस क्षेत्र में बदलाव की कहानी केवल उत्पादों और तकनीक तक सीमित नहीं है। इसकी मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बांस आधारित उत्पादन और उद्यमों के जरिए आय, रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि बांस आधारित उद्यमों ने महिलाओं की आजीविका को किस तरह मजबूत किया है और प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास इस बदलाव में किस तरह मददगार साबित हो रहे हैं।
3: श्रोता, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बांस आधारित अगरबत्ती पहल महिलाओं की बदलती आजीविका का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। गढ़चिरौली अगरबत्ती परियोजना यानी GAP ने वर्ष 2012 में जिले भर में उत्पादन केंद्र शुरू किए। वर्ष 2020 तक इस परियोजना के 32 केंद्र थे। इनमें लगभग 90% श्रमिक महिलाएं थी। प्रत्येक महिला की मासिक आय लगभग 5,000 रुपए तक पहुंच गई। रोजगार के दिनों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जहां पहले महिलाओं को साल में करीब 45 से 60 दिन का काम मिलता था, वहीं ये बढ़कर 225 दिनों से अधिक हो गया। काम घर के करीब होने लगा और शारीरिक रूप से कम थकाऊ भी हुआ। इसके साथ महिलाओं को नए कौशल, आत्मविश्वास और नेतृत्व के अवसर मिले। इस पहल ने आय के स्रोत के रूप में वनों पर निर्भरता को भी कम किया। श्रोताओं, ऐसी कहानियों के पीछे क्षमता विकास और प्रशिक्षण की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। CSIR राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी CSIR NERI नागपुर ने जून 2026 में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए बांस हस्तशिल्प पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इस प्रशिक्षण का विषय था फ्लाई एश डंप पर उगाए गए बांस से बने हस्तशिल्प के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह का सशक्तिकरण। प्रशिक्षण में बांस की कटाई, उपचार और प्रसंस्करण, हस्तशिल्प उत्पादन, मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास, उद्यमिता, ब्रांडिंग, विपणन और उत्पाद डिजाइन जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक कौशल प्रदान किए गए। इस पहल ने ये भी दिखाया कि पुनः प्राप्त फ्लाई एश डंप स्थलों को उत्पादक परिदृश्यों में बदला जा सकता है। इससे स्थानीय समुदायों के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक दोनों तरह के लाभ पैदा हो सकते हैं।
1: श्रोताओं, बांस की पूरी कहानी को देखें तो इसमें एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ कारीगर और स्वयं सहायता समूह है। इनके साथ तकनीक, प्रशिक्षण, प्रसंस्करण और बाजार जुड़ रहे हैं। यही जुड़ाव बांस को एक पारंपरिक संसाधन से आगे ले जाकर आधुनिक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बना रहा है। वर्ष 2017 में नियामक बदलाव के बाद बांस क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता के लिए नए अवसर खुले। राष्ट्रीय बांस मिशन जैसे प्रयासों ने खेती, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच को समर्थन दिया। वहीं NECTAR जैसी संस्थाओं के माध्यम से बांस के नए व्यावसायिक उपयोगों को बढ़ावा मिला। आज बांस से थैले और हस्तशिल्प ही नहीं बल्कि अगरबत्ती, फर्नीचर, आंतरिक सज्जा की वस्तुएं, खाद्य उत्पाद, निर्माण सामग्री और इंजीनियर्ड संरचनाएं भी तैयार हो रही हैं। इससे बांस की मूल्य श्रृंखला अधिक विविध और मूल्य संचालित बन रही है। श्रोताओं, बांस की कहानी अब केवल एक पौधे या पारंपरिक शिल्प की कहानी नहीं रह गई है। ये लोगों, संभावनाओं और परिवर्तन की कहानी बन रही है। पूरे भारत में बांस आज आजीविका, उद्यम और स्थायी अवसरों का माध्यम बन रहा है। इसलिए भारत में बांस की कहानी अब केवल इस बारे में नहीं है कि बांस से क्या बनाया जा सकता है, ये इस बारे में है कि जब किसी पारंपरिक संसाधन को प्रौद्योगिकी, उद्यम और अवसर से जोड़ा जाता है तो स्थानीय समुदायों के लिए कितने नए रास्ते खुल सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह। नमस्कार।

0: सभी श्रोताओं को मंजू
1: और महिपाल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे हैजा बीमारी पर।
0: हैजा रोग वीबीओ कोलेरी बैक्टीरिया से फैलता है
1: और इसका असर आपकी आंतों में होता है, जिससे उल्टी दस्त लग जाते हैं।
0: अभी कल की ही तो बात है, मेरी सहेली सुनीता अपने बच्चों को लेकर कल इंडिया गेट पर घूमने गई थी, मगर वहाँ पर उसने न जाने क्या खा लिया कि वो और उसके बच्चे सभी बीमार हो गए, उनको अस्पताल तक जाना पड़ा।
1: आप ठीक कह रही है, आजकल गर्मियों के मौसम में सभी बच्चों का दिल ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कटे हुए फलों को खाने का करता है,
0: और यहीं पर वो गलती कर बैठते हैं। गंदे पानी का सेवन और दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से यह बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है।
1: हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया मनुष्य के मल में पाए जाते हैं, और जब मक्खियाँ उस मल पर बैठती हैं तो उनके पैरों की गद्दियों में ये बैक्टीरिया चिपक जाते हैं।
0: ये मक्खियाँ खाने की वस्तुओं पर बैठती हैं, और जब कोई इन वस्तुओं को खाता है तो यह उसकी आंत में पहुंचकर बीमारी पैदा करती हैं।
1: देखिए, यह बीमारी खुले में फल, खाद्य पदार्थ व अन्य प्रकार की खाने की वस्तुओं के सेवन से फैलती है। दूषित पानी ना पिएं, खुली जगह पर मल त्याग ना करें, और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकने का प्रयास करें।
0: इस रोग में जबरदस्त दस्त होने के कारण शरीर के पानी के साथ ही द्रव व लवण भी निकल जाते हैं। इनकी पूर्ति शरीर में फिर से करना जरूरी होता है। यदि दो दिन तक ऐसी ही स्थिति व इलाज में कोताही की जाए तो रोगी की मौत भी हो सकती है।
1: तो मंजू जी, सबसे पहले आप तो हमारे श्रोताओं को यह बताओ कि इस बीमारी के लक्षण क्या है, और श्रोताओं को यह कैसे पता चलेगा कि स्वस्थ व्यक्ति को हैजा हुआ है या नहीं।
0: हैजा के बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, और जब यह पर्याप्त संख्या में हो जाते हैं तो वहाँ पर विष पैदा करते हैं। यही विष रोग का कारण बनता है। इसमें जबरदस्त उल्टियाँ व दस्त होते हैं। उल्टी में पानी बहुत अधिक होता है और उल्टी के साथ पतले दस्त लग जाते हैं, जिससे कि शरीर का सारा पानी दस्तों के कारण शरीर से निकल जाता है।
1: इस कारण तो शरीर कमजोर हो जाता होगा और मरीज की हालत तो बहुत बुरी हो जाती होगी।
0: आपने सही कहा, इस बीमारी में बुखार नहीं आता, बस रोगी निढाल, थका थका सा, कमजोर व शक्तिहीन हो जाता है। प्यास जल्दी लगती है, पल्स मंद पड़ जाती है, यूरिन कम आता है व बेहोशी सी महसूस होने लगती है।
1: तो फिर मंजू, हमारे श्रोता को क्या करना होगा? क्या इसका कोई वैक्सीन भी बना है? अगर हाँ तो जरा इसके बारे में तो बताओ।
0: देखिए महिपाल, यह एंटीबायोटिक दवाएं बीमारी को फैलने से रोकती हैं, मगर इसका एक वैक्सीन भी बना है जो कि 6 माह तक ही क्रियाशील रहता है।
1: तो मंजू, सबसे पहले डॉक्टर से इसका इलाज लेना चाहिए, और जब तक मरीज को बार बार नमक शक्कर का घोल बनाकर पिलाना चाहिए, जिसे हम ORS का घोल भी कहते हैं। यह किसी भी डिस्पेंसरी व अस्पताल में मुफ्त मिल जाता है। इसे पिलाकर भी रोगी के शरीर में लवणों की पूर्ति की जाती है।
0: हैजा से बचने के लिए खुले में बिकने वाली वस्तुओं को ना खाएं और हमेशा अपना खाना ढककर रखें।
1: दोस्तों, उल्टी दस्त लगने पर तुरंत अपने नजदीक के अस्पताल या नर्सिंग होम में इसका इलाज करवाएं।
0: और हाँ, जहाँ भी जाए साफ सुथरा खाना ही खाएं।
1: मंजू, हैजा बीमारी पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, चलिए सुनते हैं उनके विचार।
2: मेरा नाम शालिनी है और मैं विवेक विहार से हूँ। हैजा फैलने का मुख्य कारण ये है कि हम जब साफ सुथरा खाना ना खाएं और बाहर की कटे हुए फल जिन पे मक्खियाँ बैठती हैं उनको खाने से जो कीटाणु आते हैं उन सब की वजह से हैजा फैलता है।
3: मेरा नाम अमी है। सड़ी गली चीजें अगर कहीं खाते हैं या उससे हैजा हो जाता है, या कहीं गंदगी फैली होती है वहाँ अगर आप रहते हैं, या उस जगह से भी हैजा होता है, मतलब जहाँ भी गंदगी होती है बस वहाँ से मतलब हैजा हो जाता है बस ये।
4: मेरा नाम सिल्वी है, मैं साकेत में रहती हूँ। हैजा मेली खुले में खाना रखने से और उसको खाने से होता है, तो जितना हो सके अपने आसपास सफाई रखें और खुला खाना को हमेशा ढक के रखें।
5: मेरा नाम निर्णय है, मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद से हूँ। हैजा बीमारी का मुख्य स्रोत गंदगी होता है, और जो मक्खियाँ जो भी बाहर खाने से वो हैजा बीमारी फैल जाता है।
6: I'm Madhu, I live in Kutub Enclave, and as far as my knowledge goes, cholera is caused by the pathogen called Vibrio cholerae. It's a waterborne disease, and we have to be careful about the kind of water we drink. In our home, we've got the Zero B fitted onto the drinking water tap, so that we are able to drink filtered water.
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हैजा बीमारी पर।
1: मंजू, इस विषय पर आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर संजीत, जो कि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं, और उनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी गीता जी।
7: डॉक्टर संजीत, आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये बीमारी बच्चों को ज्यादा होती है, बच्चे शिकार हो जाते हैं, बिकॉज बच्चों को पता नहीं होता कि खुला सामान जो मार्केट में बिक रहा है उसको नहीं खाना है। तो इसके बारे में आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे?
8: देखिए, एक तो है कि ये जो बीमारी है ये मेनली अनहाइजीनिक और इनसैनिटेशन कंडीशन में ज्यादातर ये फैलती है, और पेरेंट्स इसके सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो इनको सिखा सकते हैं कि कैसे सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन किया जा सकता है। सिंपल एक्सरसाइजेस लाइक वॉशिंग ऑफ द हैंड्स, हाथ धोने का, कैन रिड्यूस दिस एपिडेमिक बाय लीप्स एंड बाउंड्स। और ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि बाय सिंपल मैकेनिज्म्स, नो कॉस्ट, जस्ट बाय अवेयरनेस और बाय बिहेवियरल चेंज हम इसे कॉम्बैट कर सकते हैं।
7: इसका मतलब संजीत जी कि बच्चों को जो माता पिता हैं वो ज्यादा शिक्षा दे सकते हैं कि वो खाना खाने से पहले हाथ धोएं, बाजार से खुला खाना न खाएं, ज्यादातर जहां मक्खी वगैरह हो उस जगह को साफ रखना चाहिए, भोजन ढक के रखना चाहिए
8: और गर्म भोजन खाना चाहिए। जहां आप कट फ्रूट्स और जहां ज्यादातर फ्लाइज बैठते हैं वहां से ये ज्यादा फैलती है। ये बीमारी इज ओनली ट्रांसमिटेड इन मैन, इट इज मैन इज द बेस्ट पर्सन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
7: डॉक्टर साहब, एडल्ट्स भी इसका शिकार हो जाते हैं, ये मेरे को लगता है कि टोटल इग्नोरेंस है।
8: हाँ जी, और ये एडल्ट्स में ज्यादा प्रेवलेंट भी नहीं है क्योंकि उनका इम्यूनिटी भी ज्यादा होता है बच्चों से, बट ये एडल्ट्स में भी होता है क्योंकि एडल्ट्स ज्यादातर आजकल बाहर खाना भी पसंद करते हैं और कट फ्रूट्स और ज्यादातर अनकुक फूड या कुक्ड फूड जो कोल्ड हो गया है और उसपे मक्खी बैठा है उसमें भी ये ट्रांसमिट होता है।
7: और बीमारी का अगर सही तरीके से उसकी प्रिवेंशन के बारे में नहीं पता है कि इससे कैसे बच सकते हैं और इलाज के बारे में नहीं पता है तो ये घातक भी हो सकती है।
8: हाँ जी, इसका मेन कारण है कि इससे बहुत ज्यादा लॉस ऑफ वाटर होता है, इसमें बहुत ज्यादा दस्त होते हैं, इसके कारण शॉक होता है और शॉक के कारण एक आदमी मर भी जा सकता है। और ये एक बहुत लिमिटेड टाइम विद इन 24 आवर्स एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर से डेथ देखा गया है। आजकल हैजा घट गया है पर ये एक एंडेमिक साइकिल होता है और ये साइकिल, लास्ट साइकिल हमने जब देखा था वो 1967 में देखा था और ये इंडोनेशिया में हुआ था, पर उसके बाद स्पोराडिक केसेस हर टाइम देखा गया है। भारत में बहुत ज्यादा है अभी भी और इसका प्रिवेंशन के लिए अभी वैक्सीन्स भी है और बच्चों में ज्यादातर जब मेले होते हैं या रथ यात्रा होता है तो मास वैक्सीनेशन होता है, पर ये एक ज्यादातर इम्यूनिटी उसी टाइम के लिए ही देती है। बट टू हैव टू वैक्सीनेशंस अपार्ट इन अ मंथ्स टाइम गिव्स फुल इम्यूनिटी, पर एडल्ट्स में एक ही बार वैक्सीन की प्रयोग से कॉलेरा कॉम्बैक्ट किया जा सकता है।
7: तो ये बच्चे को इसका वैक्सीनेशन कब लगता है?
8: देखिए, जैसे दूसरा वैक्सीन है वैसे इसका कुछ फिक्स टाइम नहीं है।
7: अच्छा,
8: ये एज इन वेन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दे सकते हैं। जैसे मान लो आप जा रहे हैं कि तीर्थ में और जहां बहुत लोग जा रहे हैं तो वैसे आप 1 month अहेड आप एक वैक्सीन ले सकते हैं एंड देन जस्ट बिफोर यू लीव यू कैन टेक अनदर वैक्सीन।
7: तो ये एडल्ट्स भी ले सकते हैं?
8: हाँ, एडल्ट्स भी ले सकते हैं, पर एडल्ट्स में 2 doses की जरूरत नहीं होता है क्योंकि उनका प्रीवियसली कुछ इम्यूनिटी डेवलप्ड हो रहता है, तो इसमें एक ही डोज ऑफ वैक्सीन इज गुड एनफ।
7: तो ये तो आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी बात बताई कि जब भी बाहर जा रहे हैं या जहाँ पे बहुत सारे लोग हों तो अपने बचाव के लिए 1 महीना पहले वैक्सीन ले सकते हैं इसकी, तो हम कुछ हद तक बीमारी से बच जाते हैं। तो डॉक्टर संजीत, ये जो प्रिवेंशन है वो तो इट्स ऑफकोर्स बेटर देन क्योर, पर आप थोड़े से सिम्टम्स बताएंगे हमारे श्रोताओं को कि जैसे बच्चा अगर हैजे का शिकार हो जाता है तो माता पिता को एकदम क्या लक्षण से पता चलता है कि ये हैजा का शिकार हुआ है।
8: इसमें बहुत ज्यादा दस्त होते हैं और उल्टियां भी होते हैं, और ये जो दस्त होता है ये बहुत वाटरी होता है और बॉडी वेट का जितना वजन होता है उसका ऑलमोस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है इसमें। और ये जो दस्त होता है इसको हम लोग राइस वाटर स्टूल बोलते हैं, क्योंकि वो आप रिलेट कर सकते हैं, जब आप राइस बनाते हैं तो उसका
7: उसकी माड़ का जो कलर होता है वैसे दस्त का कलर होता है।
8: और इसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है सॉल्ट्स का, ये लीड करता है जनरली हाइपो वॉल्यूमिक शॉक को, जिससे आदमी का डेथ भी हो सकता है।
7: ये शॉक इंसान को या बच्चे को लगता है कि जैसे ही बॉडी में पानी की मात्रा कम हो गई है और उसको बहुत ही कमजोरी सी महसूस होती है।
8: हाँ, कमजोरी तो महसूस होती है, पर इसमें सबसे ज्यादा पहले देखा जाता है कि मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं।
7: हाँ,
8: और क्रैम्प्स के बाद आपको आपका जो पल्स है
7: हाँ,
8: वो बहुत थ्रेडी हो जाता है।
7: थ्रेडी मतलब?
8: थ्रेडी मीन्स आप फील करना मुश्किल हो जाता है। और कई जगहों में तो आप फील भी नहीं कर सकते हैं। और आपका जो स्किन का टेक्सचर भी है वो भी लॉस होता है इसमें।
7: पीलापन आ जाता है इसके?
8: नहीं, पीलापन तो नहीं आता है इसमें, पर इसमें ज्यादातर जब क्रैम्प्स होता है तो आप फेंट भी कर सकते हैं, आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है।
7: तो इसका मतलब इमीडिएटली पेशेंट को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। और ORS घोल भी पिलाते रहने की जरूरत है घर पे।
8: वो बहुत जरूरी है ORS घोल पिलाने में, जितना जल्दी हो डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये जो लॉस है हम तो घोल जो पिलाते हैं उससे तो बहुत ज्यादा है, तो इंट्रावीनसली भी फ्लूइड्स देके इसको बैलेंस मेंटेन करना होता है।
7: और कितने दिन का ये इलाज होता है? 2 दिन या 3 दिन या ज्यादा समय भी लग जाता है इसको ठीक होने में?
8: ज्यादा दिन नहीं लगते हैं, जनरली 4 to 6 days में आप सही हो जाते हैं,
7: अगर आप समय पे डॉक्टर के पास पहुंचे।
8: एंटीबायोटिक्स भी लेना पड़ता है, पर देर आर 2 schools of thought वेदर टू गिव एंटीबायोटिक्स और वेदर नॉट टू गिव एंटीबायोटिक्स, पर क्योंकि खाली फ्लूइड रिप्लेसमेंट में भी वेदर इट कैन बी टेकन केयर ऑफ,
7: तो वो तो उस समय डॉक्टर के जजमेंट पे डिपेंड करता है। पर ये तो पक्का है कि जैसे ही उल्टी और दस्त हो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है।
8: और पेशेंट को आइसोलेट करना का भी बहुत
7: अलग से उसको रखने की जरूरत होती है। इसका क्यों ऐसे है?
8: क्योंकि ये ट्रांसमिट होता है मैन टू मैन, सो इट इज बेटर टू आइसोलेट देम फॉर अ वाइल। तो उससे क्या होता है कि यू आर एबल टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द डिजीज।
7: बस एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देते हैं इसके ऊपर?
8: एक है कि खाना खाने के पहले हाथ धो के खाना खाना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, पानी को उबाल के पीना चाहिए, और ज्यादातर बाहर के कटे हुए जो फ्रूट्स होते हैं उसको खाना नहीं चाहिए, उसको घर लाके धो के खाना चाहिए। ये मेरा सुझाव होगा।
1: तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मंजू और महिपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्ते मास्टर जी।
1: नमस्ते नमस्ते बच्चों। अरे कामाक्षी, मनीषा आज भी नहीं आई।
2: मास्टर जी, मनीषा की तबीयत खराब है और 2-3 हफ्तों से उसको खांसी भी हो रही है।
1: क्या उसके मम्मी पापा उसका इलाज करवा रहे हैं?
2: मास्टर जी, मुझे नहीं पता।
1: तो ठीक है, स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ उसके घर चलूंगा।
3: कामाक्षी, तुम मास्टर जी के साथ?
2: हाँ मनीषा, तुमसे मास्टर जी मिलने आए हैं।
1: मनीषा तुम कैसी हो?
3: मास्टर जी मैं ठीक हूँ।
4: क्या करूँ मास्टर जी, इसकी खांसी बंद ही नहीं हो रही। मैंने अदरक और शहद का घोल इसे बार बार पिलाया है पर फिर भी कोई असर नहीं।
1: क्या आपको लगता है कि घरेलू नुस्खों से इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? देखो सुलेखा बहन, आप मनीषा को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि खांसी अगर 2 या 3 सप्ताह से अधिक हो तो वो टीबी का खतरा हो सकता है।
4: हाँ आपने सही कहा, मैं आज ही इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ।

0: लड़की तो है एक वरदान,
1: इनका करें सभी सम्मान,
0: खूब पढ़ाकर इन्हें समझदार बनाएं,
1: स्वस्थ रहकर इनका विवाह करवाएं,
0: सही उम्र में इनका विवाह करवाकर हमको अपना फर्ज है निभाना,
1: लड़की को मिले बेहतर भविष्य हमको उनका यह हक है दिलाना,
0: बाल विवाह अब और नहीं लड़की का सही उम्र में विवाह करवाएं।
1: रीड एविजन केंद्र जामवास तावड़ू द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महिपाल और मेरे साथ हैं आज आशा।
1: श्रोताओं, मेरा भी आपको प्यार भरा नमस्कार।
0: हम अपने कार्यक्रम से नए जुड़े दोस्तों को भी बता दें कि इस कार्यक्रम में हम खासकर उन विषयों पर बात करते हैं
1: जो हमारे समाज और स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं।
0: तो आशा, आज हम कौन से विषय पर चर्चा करने वाले हैं?
1: महिपाल, हमारे देश में ऐसे कई ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिनके सपने भी बहुत हैं, वह रिश्ते भी बनाना चाहते हैं पर बना नहीं पाते। उनका दुनिया को देखने का अपना ही तरीका है।
0: आज हम अपने कार्यक्रम में ऑटिज्म विषय पर ही बात करेंगे।

0: दोस्तों, ऑटिज्म एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें बच्चे अलग ढंग से अपने आप में खोए रहते हैं और चीजों के प्रति उनका अलग तरह का लगाव होता है। कई बार पास बुलाए जाने पर भी वे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।
1: साथ ही वे दूसरे बच्चों के साथ मेलजोल और खेलने में कठिनाई महसूस करते हैं। भय, संकट या वास्तविक खतरों की समझ से अनजान होते हैं।
0: आशा, ऑटिज्म की अक्सर मानसिक असंतुलन या बीमारी से तुलना की जाती है, लेकिन ऑटिज्म के लक्षण और इलाज पूरी तरह से अलग होते हैं।
1: दोस्तों, यह लक्षण बचपन में ही दिखने शुरू हो जाते हैं और फिर ये सारी जिंदगी रहते हैं, लेकिन बच्चा देखने में आम बच्चों की तरह ही दिखता है।
0: आशा, कई बार देखा जाता है कि ऑटिस्टिक बच्चे और उनके परिवार वालों को कई सामाजिक मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हो महिपाल। ऑटिस्टिक बच्चों को आम बच्चों से अलग रखा जाता है, चूंकि इन बच्चों के विकास का मापदंड दूसरे बच्चों से अलग होता है और इनकी विकासात्मक असमर्थता के कारण ही इन्हें समाज हीन दृष्टि से देखता है
0: और इस कारण उनके परिवार वाले काफी चिंतित और मायूस हो जाते हैं।
1: ऐसे में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे के माता पिता के सामने चुनौतियों की कमी नहीं होती।
0: दोस्तों, ऐसे ही एक माँ से हमने बात करी जिनका नाम है पूनम।
2: मेरे बेटे को बहुत थोड़ा सा है ऑटिज्म, मतलब उसका ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है माइल्ड ऑटिज्म, तो इसलिए उसका सिर्फ स्पीच इफेक्ट हुआ है और कुछ एक उसका व्यवहार में जो कुछ अलग है दूसरों से। तो इसके लिए क्या होता है, कई बार जैसे लोग हैं सोचते हैं कि ये बच्चा ऐसे है और अब ठीक दिख रहा है, लेकिन इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, इस तरह से इसका व्यवहार अलग सा क्यों है, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पर कि इस बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम है। लेकिन और मेरे बच्चे का जो सामाजिक व्यवहार है वो उसको सिखाने में मुझे काफी वक्त लगा उसको।
1: दोस्तों, हमारे साथ शिखा जी भी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं।
2: मेरे बेटे को जब डायग्नोसिस मिला था वो 4 साल का था, वो स्कूल जाता था, तो वो स्कूल की अगर मैं बात करूं तो मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। टीचर्स की लगातार कंप्लेन्स आती थी, प्रिंसिपल ने मुझे कई बार बुलाया कि आपका बेटा ये नहीं करता, उसका जॉइंट अटेंशन में प्रॉब्लम है, क्लास में लेट जाता है और दूसरे बच्चों को पुश करता है, इस तरह की दिक्कतें थी। वो उसको समझ नहीं पा रहे थे कि वो इस तरह क्यों करता है। जैसे ही उसका जब डायग्नोसिस मिला मुझे, तो मैंने बिल्कुल भी देर नहीं करी और मैंने खुद को अपने आप को ट्रेन करना शुरू करा और उसको समझने के लिए मैंने काफी बुक्स पढ़नी शुरू करी ऑटिज्म रिलेटेड, और काफी लोगों से मिलके और जो लोग इसके बारे में ज्यादा जानते हैं उनसे बात करना शुरू किया, ट्रेनिंग करना शुरू करा। और उसके बाद मैंने देखा, जब मैंने स्कूल वालों से जाके मिली, उनको बताया, उनको डिस्क्लोज करा कि ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरे बेटे को ये चीजें फेस करनी पड़ी है, तो फिर मुझे जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला स्कूल वालों की तरफ से वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसलिए जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, डायग्नोसिस बहुत जरूरी है और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपना बच्चे को जैसा है उसी तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे, सोसाइटी भी एक्सेप्ट करने में कोई देर नहीं करेगी। जरूरत सिर्फ ये है कि आपको भी कदम बढ़ाना है, और आप कदम बढ़ाएंगे तो सोसाइटी अपने आप रिस्पॉन्स पॉजिटिव देना शुरू करेगी।

0: ऑटिस्टिक बच्चे का अभिभावक होना अपने आप में एक चुनौती है।
1: श्रोताओं, इस बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है शुभांगी वैद्य।
2: मेरा खुद का बच्चा ऑटिस्टिक है और मैंने अपने शोध के दौरान कई ऐसे परिवारों से बात की है जिनके बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है, और इन सारे अनुभवों के दौरान मुझे ये बात देखने को मिली है कि ऑटिज्म के बारे में लोगों की जानकारी बहुत सीमित है। हमारे बच्चों के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो लोगों को बहुत विचित्र टाइप के लगते हैं। मिसाल के तौर पर हाथ फड़फड़ाना, एक जगह पे गोल गोल घूमना, खुद से बातें करना, बिना किसी वजह हंसना या रोना, और इसकी वजह से पेरेंट्स भी काफी हद तक मायूस हो जाते हैं। वो अपने बच्चों को कहीं पब्लिक प्लेसेस में लेके जाना ही पसंद करते हैं क्योंकि उनके अंदर ये एक एहसास होता है कि लोग हमारे बच्चे को देख रहे हैं, हंस रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं, उसको पागल के नाम से मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत अधिक डिप्रेसिंग एक्सपीरियंस होता है। और जब तक पेरेंट्स और बच्चों के साथ रहने वाले लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि जो हमारा बच्चा है वो जैसा भी है वो पहले हमारा बच्चा है, इस एक्सेप्टेंस तक आने में नेचुरली टाइम लगता है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन इस बात को अपने डे टू डे लाइफ में इसका अनुकरण करना ये बहुत मुश्किल होता है। एक और बहुत अहम मुद्दा जो ये है कि बच्चे का जो केयर है, बच्चे की परवरिश, और सिर्फ बचपन में नहीं उम्र भर, जीवन भर जो बच्चे का केयर है ये पूरी तरह से परिवार के ऊपर निर्भर है, और परिवार के अलावा और ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो ऐसे मतलब डिसेबल लोगों की सहायता करता है या उन्हें सपोर्ट देता है। हम लोगों के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, इसका जिम्मा कौन लेगा।

0: आशा, कल मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कैसे समझौता करते हैं। उस किताब में एक माँ ने लिखा है कि साज की अगर एक तार भी टूट जाए तो संगीतकार उसे छोड़ता नहीं, बल्कि उसे और भी सुंदर तरीके से बजाता है।
1: इसी संदर्भ में मुझे एक पिता द्वारा अपने बेटे के लिए लिखी बात याद आ गई है। उन्होंने अपने बेटे पर लिखा है कि बेशक मेरा बेटा कुछ दूसरे बच्चों की तरह नहीं कर पाता, पर वो मुझे पूरी सहानुभूति प्यार देता है और अपनी जिंदगी की परिस्थिति से जूझता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा ही मेरा हीरो है।
0: श्रोताओं, ऑटिज्म एक ऐसी आजीवन रहने वाली जटिल विकासात्मक असमर्थता है जिससे आज भारत में लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हैं।
1: और महिपाल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑटिज्म लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में 4 गुना ज्यादा पाया जाता है।
0: दोस्तों, इस विषय पर और अधिक बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंदु जैसवाल, जो एक्शन फॉर ऑटिज्म ओपन डोर स्कूल के एजुकेशन डायरेक्टर हैं। इंदु जैसवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, इसका क्या उद्देश्य है?
2: ऑटिज्म जो है ये एक काफी कॉमन विकार है, परंतु इसके बारे में सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सारे विश्व में देखा जाए तो ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इसीलिए हम मनाते हैं वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, लेकिन इसको डे न कह के इसको वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का नाम दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज के दिन हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता जो है, अवेयरनेस जो है ऑटिज्म की क्रिएट कर सके, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है, परंतु इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है।
0: इंदु जी, क्या ऑटिज्म वंशागत है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है?
2: कई परिवार हैं जिनमें एक से अधिक बच्चे पाए जाते हैं जिनमें ऑटिज्म है, या कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनमें कुछ लक्षण ऑटिज्म से मिलते जुलते हों, परंतु आज तक ये सिद्ध नहीं हुआ कि ये पारिवारिक है। बहुत अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च बहुत चल रही है, और ये माना जा रहा है कि ऑटिज्म जो है किसी एक कारण से नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और हाँ, शायद उनमें से एक कारण पारिवारिक भी हो सकता है।
0: इंदु जी, माता पिता को कैसे पता लगेगा कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है?
2: ये कई बार बहुत कठिन होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो सामान्य बच्चों की तरह लगता है, क्योंकि उसमें कोई, उसको देखने में कुछ अटपटापन दिखता नहीं है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस आम बच्चों की तरह होती है। जब बच्चों की उम्र होती है बात करने की, लोगों से संपर्क बनाने की, रिलेशनशिप्स बनाने की, तब पेरेंट्स नोटिस करते हैं, माता पिता ये देखते हैं कि उनके बच्चों के व्यवहार कुछ अजीब से हैं। जैसे जब उसे नाम से पुकारा जाए तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, माता पिता को ऐसा लगता है कि वो सुन ही नहीं रहा, परंतु वो म्यूजिक तो सुनता है और दूसरी आवाजों के प्रति भी वो संवेदनशील होता है। फिर अपना नाम सुन के वो एक रिएक्शन या एक रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता? उसके बाद आंख मिलाकर संपर्क बनाने में, जिसे हम आई कॉन्टैक्ट कहते हैं, उसमें इन बच्चों को दिक्कत आती है। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में, उनके साथ खेल में उनको परेशानी होती है, और माता पिता देखते हैं कि 1-1.5 साल का बच्चा हो गया, 2 साल का भी हो गया, खिलौनों से वो नए नए खेल नहीं रचा पा रहा, वो एक बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं रूढ़िबद्ध, एक स्टीरियोटाइप्ड मैनर में खेल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे माता पिता थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, और इस उम्र तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बोलने भी लगेगा, और यहाँ पे वो बोल भी नहीं पाता, या बोलता है तो बहुत अटपटे ढंग से बोलता है। तो लगभग 2 साल की एज पे आकर माता पिता थोड़े से अवेयर होते हैं कि शायद बच्चा थोड़ा अलग है।
0: इंदु जी, क्या ऑटिज्म को रोका जा सकता है?
2: ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई रोकथाम भी नहीं है। बच्चा इस दुनिया में ऑटिज्म के साथ ही आता है, और ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। कोई दवा ऐसी नहीं है जो इसका उपचार हो। हाँ, कई बार ऑटिज्म के लक्षण बहुत तीव्र हो जाते हैं और माता पिता को और दूसरे लोगों को काफी दिक्कतें आने लगती हैं, तो कुछ ऐसी दवाएं हैं जो उन लक्षणों को कुछ कम कर देंगी, लेकिन ऑटिज्म हमेशा रहेगा।
0: इंदु जी, ऑटिज्म और मंद बुद्धिता में क्या अंतर है?
2: ऑटिज्म और मंद बुद्धि में काफी अंतर है। पहली चीज तो ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को ऑटिज्म है उसकी उसे मंद बुद्धि भी होगी, हो सकता है कि उसकी जो इंटेलिजेंस है वो उसकी उम्र के और लोगों की तरह हो। जो मुख्य दोनों चीजों में फर्क है वो ये है कि जब किसी को मंद बुद्धि होती है तो उसका जो इंटेलिजेंस होता है और यहां बोल सकते हैं उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसका विकास हर एरिया में एक ही तरह से अफेक्टेड होगा। आपके पास एक 10 साल का बच्चा है और जिसका मानसिक विकास अभी 4 साल पर चल रहा है, तो उसका सभी कुछ, उसका उठना बैठना, बात करना, अपने शरीर का इस्तेमाल करना, बोलना, उसका सामाजिक व्यवहार, सब कुछ 4 साल के लगभग होगा। परंतु ऑटिज्म में हम कहते हैं एक बहुत ही उतार चढ़ाव वाली डेवलपमेंट होती है। बच्चे के विकास में हम देखते हैं कि कई बार ये देख कि उसकी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसकी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह ही होती हैं, जैसे कि उसने उठना बैठना चलना सही एज में स्टार्ट किया है और वो अपना शरीर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कुछ उसके कौशल ऐसे भी हो सकते हैं जो उसकी उम्र से बहुत अधिक भी हो। बहुत से ऐसे ऑटिस्टिक व्यक्ति हैं कि जिनमें बहुत ही गणित के बहुत ही गुण होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशंस और नंबर्स में बहुत स्किल होती है उनकी, तो कुछ उनके ऐसे स्पेशल स्किल भी हो सकते हैं जो उनकी एज से बढ़कर हों। और जैसे हमें मालूम ही है कि कम्युनिकेशन में और सामाजिक व्यवहार में उनके जो कौशल हैं वो बहुत कम रहते हैं अपनी एज से। तो मेन फर्क दोनों चीजों में ये है कि जहां मानसिक मंदता होने से बच्चे का विकास एक ही तरह से, हम बोलते हैं एक इवन तरह से वो अफेक्टेड है, लेकिन ऑटिज्म में उसकी डेवलपमेंट ऊपर नीचे होती है और इससे कई बार उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसका लेवल है क्या।
0: इंदु जी, ऑटिस्टिक बच्चों को जीवन की मुख्य धारा में किस हद तक शामिल किया जा सकता है और उनके लिए कौन से विशेष प्रावधान हैं?
2: कोई भी बच्चा हो जिसे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे वो ऑटिज्म हो या कुछ और हो, हम जानते हैं कि आजकल UNCRPD और सर्व शिक्षा अभियान और इन सभी चीजों के अंतर्गत पूरी कोशिश की जा रही है कि इन्हें मुख्य धारा में जितना शामिल किया जा सके कोशिश करनी है। परंतु ये स्थिति हम लोग पूरी तरह यहाँ पहुंचने में काफी समय लगाएंगे और हर एक बच्चा जिसे ऑटिज्म है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दिखा सकता है और उसे मुख्य धारा में हम लोग शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसे कुछ सपोर्ट जरूर चाहिए होगा इस समाज में एडजस्ट करने के लिए। हम जानते हैं कि कितना कठिन है समाज में एडजस्ट करना। जो चीजें हम लोग इतनी आराम से कर लेते हैं वो बुनियादी चीजें भी इन बच्चों को सिखानी पड़ती हैं। तो उनको एक, हम जो बोलते हैं कि साथ साथ एक और प्रोग्राम चाहिए होता है जो उन्हें हेल्प करता है मुख्य धारा में बने रहने के लिए। और स्पेशल प्रावधान इन बच्चों के लिए है। ये बड़े दुख की बात है कि अभी ये खाली मेट्रोज में ही उपलब्ध हैं और छोटे शहरों में अभी भी ऑटिज्म की जानकारी नहीं है। इन बच्चों को सिखाने के तरीके अलग होते हैं। इनको हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा विजुअल्स की हेल्प से सिखा सके और इनकी ट्रेनिंग में जितना हम भाषा लैंग्वेज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर सके उतना अच्छा होगा।
0: इंदु जी, सरकार की ओर से क्या इस दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं?
2: जी हाँ, हाल ही में ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पहले काफी दिक्कत थी सर्टिफिकेट कोई बना नहीं पा रहे थे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए असेसमेंट का, तो अब पिछले साल इनके लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिल रहा है और उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर काफी जो ऑटिस्टिक व्यक्ति हैं उनको सुविधाएं भी मिल रही हैं, जैसे कि इनकम टैक्स में रिबेट मिलना, और दूसरी चीज है कि अगर ये कोई लाइक यात्रा पे जा रहे हैं, रेल यात्रा पे जा रहे हैं, तो उसमें कंसेशन मिल पाना। नेशनल ट्रस्ट में ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी के रूप में इसको रिकग्निशन मिला है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ऑटिज्म के लिए टीचर ट्रेनिंग का कोर्स चला रही है। तो इस प्रकार से काफी कुछ हो रहा है। कुछ संस्थाएं जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं उनके प्रोग्राम्स को थोड़ी बहुत सहायता भी मिलती है सरकार से, तो इस दिशा में कार्य शुरू तो हुआ है, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि नंबर्स बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऑटिज्म है, तो और भी सुविधाओं की जरूरत है, लेकिन प्रयास अभी आरंभ हुए हैं।
0: इंदु जी, ऑटिज्म के लिए कोई हेल्पलाइन है जिनसे लोग जानकारी प्राप्त कर सकें?
2: ये जो अर्थ आस्था नाम से एनजीओ है, नेशनल ट्रस्ट की हेल्पलाइन इनके संस्था से चलती है, इसका नंबर है 011-264-66-250। और एक बार और दोहराती हूँ, 011-264-66-250, ये है नंबर अर्थ आस्था का। इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हैं जो ऑटिज्म के लिए काम कर रही हैं। एक्शन फॉर ऑटिज्म का नंबर लिया जा सकता है, ये दिल्ली में है, और इनका फोन नंबर है 011-40-54-0991। और इन नंबर्स पे फोन करें तो जरूर सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
0: इंदु जी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑटिज्म जो है ये एक काफी, जो हम बोलते हैं कि व्यापक स्थिति है, कि बहुत हम लोग देखते हैं कि हर 150 में से एक व्यक्ति में कुछ न कुछ ऑटिज्म के लक्षण होते हैं। हालांकि ये जो आंकड़े हैं ये हिंदुस्तान से नहीं, हमारी कंट्री में नहीं मिले हैं, क्योंकि कभी कोई ऐसा सर्वे ही नहीं हुआ, कोई डेटा ही नहीं कलेक्ट हुआ, अब ये सब काम शुरू हो रहे हैं। तो जब ये कॉमन डिसऑर्डर है तो बहुत जरूरी है कि लोगों में इसकी जागरूकता हो, ताकि जिन लोगों को ऑटिज्म है वो भी हमारी सोसाइटी में आराम का जीवन व्यतीत कर सके और दूसरे लोगों की तरह इसकी, इसमें हर चीज में शामिल हो सके, और जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, जो वो कर सकते हैं, उसका वो पूरा योगदान हमारे समाज को दें और उस समाज का एक हिस्सा बन के रहें। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी अवेयरनेस, जितनी जानकारी ऑटिज्म की दे सके हम दें।
0: इंदु जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी, हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: दोस्तों, इंदु जी से हमने ऑटिज्म के बारे में जाना कि यह क्या है और किस तरह से ऑटिस्टिक लोग भी जिंदगी की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं।
1: आशा सरकार के साथ बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जैसे एक्शन फॉर ऑटिज्म, तमन्ना, राजकुमारी अमृत कौर चाइल्ड स्टडी सेंटर, स्कूल ऑफ होप, आसमान आदि। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस विषय पर कार्य कर रही हैं।
0: दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ऑटिज्म एक आजीवन रहने वाली जटिल विकासात्मक असमर्थता है,
1: पर प्रारंभिक निदान और उचित प्रशिक्षण द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति और विकास देखे जा सकते हैं।
0: ऑटिस्टिक बच्चे भी अपने आप में बहुत सारी काबिलियत रखते हैं, पर वे अपनी काबिलियत को साबित करते हैं तो इनके माता पिता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती।
1: दोस्तों, ऑटिस्टिक लोगों की काबिलियत को पहचानते हुए उनके खास गुणों को समाज के साथ जोड़ना जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दोस्तों, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशा और महिपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: राजीव जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम शाहबाद की आवाज में।
1: धन्यवाद शाहिल जी।
0: तो सर, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा दिवस के ऊपर, तो आपके जीवन में शिक्षक या फिर शिक्षा दिवस क्या महत्व रखता है?
1: शाहिल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज अगर मैं शिक्षक हूँ तो मुझे भी किसी शिक्षक ने मुझे शिक्षक बनाया है। मैं भी एक टाइम में एक विद्यार्थी रह चुका हूँ और आज मैं एक अध्यापक हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं वो चीज़ें जो मेरा जीवन का अनुभव है या जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने गुरुओं से, वो मैं अपने बच्चों को बता सकूँ या उनको वो अपना अनुभव शेयर कर सकूँ। शिक्षा एक मतलब त्रिवेणी की तरह है, तीन पैरों पे खड़ी हुई एक इमारत है जिसमें एक शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है, एक पढ़ने लिखने की सामग्री होती है जिसको आप पढ़ते हो। शिक्षक आपको एक मार्गदर्शन देता है कि किस तरीके से आप इस पथ पे चल करके या इस रास्ते पे चल करके अपने जीवन के उद्देश्य को अचीव करो या अपने गोल को जो है प्राप्त कर लो। तो मैं मानता हूं कि हमारे जीवन के अंदर एक शिक्षक का जो है, चाहे वो अर्ली एज में माँ बाप बच्चे के शिक्षक हैं, चाहे वो कम्युनिटी के लोग हमारे शिक्षक हैं, हर एक व्यक्ति जिससे आप सीखते हो वो आपका शिक्षक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा रहता है हमारे पूरे जीवन में, वो एक स्कूल टीचर का रहता है। मैंने कल अपने गुरु को फोन किया जो मुझे संस्कृत पढ़ाते थे, उसके बाद मैंने एक दो मेरे और जो बहुत करीब हैं, जो आज भी मेरे संपर्क में रहते हैं, जो शिक्षक मेरे, जिनसे मैं टाइम टू टाइम गाइडलाइन लेता रहता हूँ कि आगे मैं क्या करूँ। तो हम अपने गुरु को अपने साथ जोड़े रखेंगे तो अपना हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं और अच्छा दिन ब दिन निखरता जाएगा।
0: तो जैसे कि शिक्षक दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण बच्चे को पढ़ाने वाले साधारण टीचर और स्पेशल टीचर। तो जैसे कि आप एक स्पेशल टीचर हैं जो स्पेशल बच्चों को ट्रेंड करते हैं, पढ़ाते हैं, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको स्पेशल बच्चों को ट्रेंड करते या फिर पढ़ाते समय?
1: बहुत अच्छी बात आपने कही कि दो तरह के अध्यापक होते हैं, और आज जो है हमारे विश्व भर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं हमारे समाज की कुछ कमियां हैं, ये कह लो कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो हैं जिनकी वजह से इन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, कि कुछ कुछ ऐसे इश्यूज हैं हमारे समाज में, जैसे कि चाहे वो लोगों का अवेयर ना होना, बहुत ज्यादा कम उम्र में शादी कर देना, पहले बाल विवाह होते थे, कहीं ना कहीं बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी आज जो है एक और नई चीज है कि लोग 35 प्लस होकर के शादियां कर रहे हैं, वो भी एक चैलेंज है। दवाई है, नशा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐसे

पर जो बच्चा है स्वालीनता जिसको कहते हैं कि बच्चा अपने अंदर लीन रहता है कि वो समाज के अंदर नहीं आता है, समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, वो अपने अंदर रहता है, कम्युनिकेशन नहीं करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर करता है कि और जो है बोलना उसका बहुत लिमिटेड होता है कि वो कम्युनिकेशन बहुत कम करता है, बातचीत का बहुत कम करता है। तो ऑटिज्म के ये लक्षण हैं काफी सारे जो हम किसी दिन डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं जिन छोटे बच्चों के साथ काम करता हूँ वहां पे मेरा काम रहता है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को देखना। विकास तभी होगा जब हम एक बच्चे को उस तरह का माहौल देंगे। आप चुनौतियों की बात करें, चुनौती तो हम एक साधारण बच्चे को पढ़ाते हैं तो भी आती है, क्योंकि बच्चा एक एज के बाद जो है पर्सन पूछने की जो तादा वो पर्सन पूछने का जो उसका दायरा है वो बढ़ता जाता है कि बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होगा जितना समझदार बच्चा होगा वो आपको हर एक चीज के बारे में पूछेगा कि माइक क्या है, इससे कैसे बात करते हैं, कैसे बनता है, ये है ये। तो चैलेंज आपको आता है, आपकी नॉलेज होनी चाहिए। एक बच्चा मैंने मेट्रो में देखा अपनी मम्मी को बोल रहा है, पॉइंट कर रहा है, ये नॉर्मल बच्चा साधारण जिसको आप कह रहे हो कि किसी तरह की कोई भी उसके अंदर मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांगता नहीं थी, तो वो बच्चा जो है एक मेट्रो के अंदर इतना चंचल और इतना शातिर बच्चा जिसको हम कहते हैं, इतना इंटेलिजेंट बच्चा कि वो हर एक चीज के बारे में पूछ रहा है, और उसकी मम्मी पापा इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने जिस तरीके से बात किया तो मैंने उनको रोका कि नहीं, ये आपकी कम जानकारी है जिसकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हो, बल्कि बच्चा आपका बिल्कुल सही है, आप इसकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हो, उनके जो प्रश्नों के उत्तर है वो नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आप परेशान होकर के आपने इस तरह का व्यवहार किया, ये बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। अब आप स्पेशल बच्चों की बात करें तो अभी हमारा जो रीड इंडिया है वो एक प्रोजेक्ट लेके आया है PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो मुझे जब इस प्रोजेक्ट में लाया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम यहाँ पे गांव के अंदर उस स्तर पे काम कर रहे हैं जहां पे लोगों की पहुंच बहुत कम है। बहुत अच्छा आपने बोला कि बहुत कम है, कम तो होता है कि कोई चीज नहीं है, मतलब बहुत कम है लिमिटेड, यहाँ पे बिल्कुल वो सोर्सेज है ही नहीं, बल्कि जो हमारे सेंटर है वहां पे ऑलरेडी वो NCR के टच में है, लेकिन फिर भी जब मैं लोगों घरों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनके उनसे बात करता हूँ, जब मैं उनके घरों को देखता हूँ, उनके माँ बाप से बात करते, तो हमें ये लगता है कि इस NCR के अंदर रह करके भी माँ बाप जो है कहीं ना कहीं आज जो हम मानते हैं कि ग्रामीण स्तर में क्षेत्र में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वही हालात है कि एक किसी विशेष गांव या शहर को हम ये नहीं कहेंगे वो पढ़े लिखे हैं वहां अनपढ़ है नहीं, लेकिन जहाँ पे जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर, चाहे वो शहर है चाहे गांव है, एक जैसा ही हाल है। तो मैं जब द्वारका, गुड़गांव, नोएडा के गांव में जाता हूँ, जब मुझे बोला जाता है कि हम आज मोबिलाइज करने जा रहे हैं, लोगों को अवेयर करने जा रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि लोगों को सच्ची में नहीं पता है। बच्चे हैं उनके पास, लेकिन उनकी अपने बच्चों के प्रति काफी माँ बाप जो हमें पॉजिटिव मिलते हैं कि अच्छा सोचते हैं कि हाँ ये कोशिश कर रहे हैं, काफी माँ बाप जो है वो कोशिश ही नहीं करते हैं, या फिर उनको कोशिश करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती है, क्योंकि हर जगह पे विशेष शिक्षक अवेलेबल नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है और हो सकता है कि टाइम लगे उसके अंदर, बट हमारे NGO ने जो अभी ये PWD का अभी शुरू किया हमने, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो हम चाहते हैं कि हम तीनों सेंटरों के अंदर हर एक डोर टू डोर जाकर के लोगों को अवेयर करें, उनको हमारे सेंटर तक लेके आए, चाहे वो किसी भी तरह से हमें उसको उनको बुलाना पड़े कि चाहे आप लेकर के आओ बैठो, या फिर हमें काम करने का एक मौका दो। तो हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, हम आप भी देखते होंगे, आप एक विद्यार्थी हैं, आप देखते हो ज्योति एक लड़की है और उसके साथ दो शाइना एक गुड़िया है और एक और दो तीन लड़कियां और भी हैं, तो आप देखते होंगे वो बच्चे भी आपके साथ बैठ के कंप्यूटर सीख रहे हैं, वो बच्चे भी लाइब्रेरी में आ रहे हैं, वो बच्चे भी एक क्लासरूम के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे भी ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाह रहे हैं, सब चीजें वो बच्चे कर रहे हैं। तो आप उनको कैसे कह सकते हो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं? चैलेंज आते हैं, बच्चे को लाना सबसे बड़ा चैलेंज है, उनके माँ बाप को ये समझा पाना कि नहीं ये कोई रोग या किसी पिछले जन्मों का कर्म पाप नहीं है, ये एक हमारी ही गलतियां हैं जो कहीं न कहीं हमसे हुई है, चाहे वो बच्चे के जन्म से पहले है, चाहे वो बच्चे के जन्म के दौरान है या जन्म के बाद है, तो ये गलतियां हमारी हैं, लेकिन हम उनके अंदर दवाइयों से सुधार नहीं कर सकते, लेकिन हम एक थेरेपी एक स्कूल सेटअप के अंदर डाल करके बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, और कई सारी टेक्निक हम इसमें यूज करते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। वो तो डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से स्तर का है, क्या बच्चा डिसेबिलिटियों के साथ आ रहा है, क्या क्या वो इश्यूज अपने साथ लेके आ रहा है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसकी गोल सेट करते हैं, फिर उनके

0: हम काम करते हैं।
1: तो जैसे कि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, अगर इस प्रकार की सिचुएशन मेरी क्लास में किसी बच्चे को है कि वो पढ़ने में असक्षम है, तो मैं किस प्रकार से उसकी सहायता कर सकता हूँ?
0: आप कह रहे हो कि पढ़ने लिखने में बच्चे को समस्या आ रही है, वो समझ नहीं पाता है, मैं उसको कैसे पहचानूं? तो पहली बात तो ये है कि एक विद्यार्थी अपने सहपाठी को एक सहयोग दे सकता है, लेकिन आपको लग रहा है तो आप, मैं मानता हूं कि आप पढ़ने, अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो उसमें होता है कि आप लिखना पढ़ना गणित को समझना या भाषा के अंदर किसी तरह की असमानता ना हो, तो आप लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे को पहचान सकते हैं। आप उसकी नोटबुक देखो, क्या उसका लिखता है वो सही लिखता है, आपके आपका सहपाठी है क्या वो बोर्ड से देख करके लिख पाता है, लिख पाता है तो क्या वो कितनी गलतियां करता है, वो ट को ठ तो नहीं लिख रहा, ए को आ तो नहीं लिख रहा, कि आप ये समझो कि मेरा नाम राजीव है तो वो खाजीव बोल दे, रा को खै बोल रहा है, मतलब उसको शब्दों की पहचान नहीं है, बिना देखे लिख नहीं पा रहा है। आप देखते हो कि क्लास के अंदर एक अध्यापक ने एक पाठ पढ़ाया लेकिन उसको याद नहीं रह पा रहा है, तो आप ये मान सकते हो कि किसी तरह की उसके अंदर अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, लेकिन आप पहले अध्यापक को बताओ, कि कभी कोई बच्चा खुल करके नहीं बता पाता है। अध्यापक का काम ही होता है, जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां पे एक काउंसलर है आपके स्कूल में,
2: जी हाँ,
0: आप काउंसलर को बता सकते हो, क्योंकि आपका काम पहचानना नहीं है, आप एक विद्यार्थी हो, आप एक अपने साथी का या अपने सहपाठी का जो वीक पॉइंट है उसको आप सबके सामने उजागर मत करो, आप जाके डायरेक्ट अपने काउंसलर को बताओ, अपने टीचर को बताओ, ताकि उसकी उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अब काउंसलर जो है एक प्रोसीजर में आएगा, एक प्रक्रिया में आएगा, वो क्या करेगा, वो बच्चे से मिलेगा। देखो, हम किसी को आपने देखा ज्योति इतना अच्छा कर रही है, अगर वो एक किसी स्पेशल स्कूल में जा रही होती तो उसे इतना अच्छा ना कर पाती, क्योंकि उसको सब डिसेबल्ड बच्चे अपने सराउंडिंग दिखते, यहाँ पे वो नॉर्मल बच्चों को देखती है, आपको देख के भी सीखती है और वो दूसरे बच्चों को देख के भी सीखती है, उसके पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, हर चीज में। आप, मैंने 2 महीने में इतने बदलाव देखे हैं जो शायद एक विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय के अंदर जाके बच्ची लर्न नहीं कर पाती जितना वो यहाँ कर पाती है। सरकार भी चाहती है कि हमारा जो समाज है वो समेकित शिक्षा होना चाहिए, मतलब हमारे जो विद्यालय है जो इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, कि जहाँ पे सब बच्चों को एक समान भागीदारिता मिले। आपने सबको शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, उसी तरीके से इन बच्चों का भी अधिकार है। तो आपने कहा कि मैं क्या करूं, आपका सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है वो यही था कि आपने बच्चे को देखा, अब आपने विशेष शिक्षा का टॉपिक आपने लिया है, इस पे आपने मुझसे बात की, तो आपकी कुछ ना कुछ जानकारी बढ़ी है, तो आपको इस तरह के बच्चे लगते, तो आप उनको, आप पहले अपने लेवल पे देखो कि क्या उनको सच्ची में इस तरह की दिक्कत है, कोई और है। आप एक दोस्त हो तो कभी कभी बच्चा जो है ना, माँ बाप या घर के हालात ऐसे हो जाते हैं कि बच्चा जो है घर से इतना सारा बर्डन लेके आता है, कभी कभी होता है ना कि माँ बाप के झगड़े, बाप का शराब पीना या इस तरह की घर की कई सारी समस्याएं होती है जो बच्चे को पढ़ने में बाधाएं डालती हैं। तो क्या आप उससे बात करके देखो, अगर आपके गली मोहल्ले का, तो आपका, आप उसके घर का सिचुएशन देखो कैसी है, ये चीज अपने तक रखो, गुप्त रखो। उससे क्या होगा कि आप जो है पहले बच्चे का जो स्तर है क्या वो डिसेबिलिटी में आता है या फिर कोई और समस्याओं के साथ वो ये इन सब चीजों से संघर्ष कर रहा है। अगर ये सब चीज नहीं है तो आप एक काउंसलर को बता सकते हो जो आपके स्कूल में है, आप उनको बताओ कि मैं उस बच्चे को, मुझे लग रहा है कि इस तरह की कोई समस्या है, मैं उसको परेशान देखता हूँ, उसको पढ़ने में भी समस्या आ रही, तो आप एक काउंसलर जो है फिर उसका असेस करेगा, उसको देखेगा, उसके माँ बाप को बुलाएगा, उनसे बातें करेगा, तो फिर एक प्रोसीजर आएगा। फिर आपके स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर भी होते हैं आजकल, जो एनसीआर के स्कूल है उनके अंदर ज्यादातर स्पेशल एजुकेटर हैं, तो फिर धीरे धीरे एक प्रोसीजर शुरू होगा, फिर काउंसलर जो है स्पेशल एजुकेटर के पास भेजेगा, फिर वो आइडेंटिफाई करेगा, असेसमेंट करेगा, देखेगा बच्चा कहाँ अटका हुआ है। तो एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन इसके अंदर पूरे समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: तो ये बात तो ही, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, फिर आसपास में हम जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे बच्चों के बारे में, आज भी हमारे आस पड़ोस में जैसे मजदूर भाई होते हैं, उनके बच्चे भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं, तो हम उन बच्चों की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा जो होते हैं इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं कि वो बच्चा किस प्रकार से विकसित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और उनको ये पता भी नहीं रहता कि हाँ, हम अपने बच्चे को किस प्रकार से ट्रेंड करें या फिर हम उसको कहाँ भेजें कि उसका मानसिक विकास हो सके।
0: आपने जो बात बड़ी अच्छी बोली है, क्योंकि आप बहुत होशियार हो और आप चीजों को पकड़ पा रहे हो, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, पर्सन बहुत अच्छा है ये, कि उनको हम कहाँ भेजें। देखो, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं
2: जी,
0: तो मैं आपके इस गांव की बात करूं शाहबाद की, तो वहां पे हमारे पास अभी रीड इंडिया के जरिए प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट जो जो हमारे डायरेक्टर है गीता मैम, उन्होंने बोला था कि अगर ये रहे ना रहे लेकिन पीडब्ल्यूडी हमेशा रहेगा, कि ये हमने रीड इंडिया के साथ जोड़ दिया है। तो अगर आपके गांव के अंदर आपको ऐसा बच्चा दिखता है तो आप उसके माँ बाप को बात नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, आप हमें बताओ, हम उनसे जाके बात करेंगे, हम हमारे सेंटर के अंदर उस बच्चे के साथ काम करेंगे। यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर भी है, काउंसलर भी है, स्पीच थेरेपिस्ट भी है, हमारी एक पूरी टीम है, जैसे कि आप भी हो। अगर मैं आपको कहूंगा कि बेटा इस बच्चे को आप कंप्यूटर का कुछ सिखा दो या इसको कुछ कलरिंग करा दो, तो आप मना नहीं करोगे, क्योंकि आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा था ना, वो हमने पार्ट शुरू कर दिया ऑलरेडी। भारत सरकार की जो नई नई शिक्षा नीतियां आ रही हैं या फिर पुरानी जो शिक्षा नीति है वो स्कूलों तक है, लेकिन कहीं अच्छे तरीके से काम हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। जो आपने कहा कि उन बच्चों को हम कहां पहुंचाएं, तो अभी तो मैं ये कहूंगा कि आपके आसपास अगर कोई स्पेशल स्कूल है तो वहां बता सकते हो। अगर जैसे कि हमारा रीड इंडिया है तो आप यहाँ पे हमें बताओ, हम उनसे मिलेंगे, उनके माँ बाप से बात करेंगे और उनको हमारे सेंटर में लेके आएंगे। और जब वो बच्चे हमारे सेंटर में आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने इस बच्चे को पहचाना और ये आज यहाँ पे आ रहा है। और जब वो चीज़ सीखेगा तो आपको और ज्यादा खुशी मिलेगी। तो जरूरत है आज के युवा को विशेष शिक्षा से जुड़ने का, विशेष शिक्षा वाले, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचानने का और उनके साथ एक प्रेम से रहने का, कि ये ना हो कि आप उनसे नफरत करें। आप जिस तरीके से, मैं आपके अंदर ये एक उमंग देख रहा हूँ कि आप इस मतलब स्पेशल एजुकेशन या विशेष शिक्षा के बारे में जानने के लिए उत्तेजित हैं या इतने भावुक हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लास के 30 और बच्चे भी इस चीज को जानने की कोशिश करें और आप उनको भी मोटिवेट करो, क्योंकि आपके अंदर जो है, मुझे भी वो शिक्षक वाली चीजें नजर आ रही है कि आप चीजों को जल्दी पकड़ पा रहे हो। और एक अच्छे शिक्षक की ये खास बात होती है कि वो वातावरण के अंदर अपने आप को या वातावरण के अंदर जो समस्याएं हैं उनको निपटने के लिए उसी वातावरण के अंदर सोर्सेज ढूंढता है, मतलब स्रोत ढूंढता है कि किस तरीके से मैं इस समस्या को इसी वातावरण के अंदर खत्म कर दूं या इसको सॉल्व कर दूं।
1: तो अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: तो मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि हमारे हर घर के आस पड़ोस में, हर गली में लोगों को बच्चों की समस्याओं के बारे में नहीं पता है कि ये विशेष आवश्यकता है या बच्चे के विकास में देरी हो रही है या बोल नहीं पा रहा या किसी तरीके से वो जो है अनजान है। जिन जिन श्रोताओं ने आज हमें सुना है, मैं चाहूंगा कि अगर वो थोड़ा भी उनको समझ में आया है, अगर उनके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे हैं, तो अपने नजदीकी किसी भी एनजीओ में या उन माँ बाप को उस एनजीओ का पता बताए या फिर ये देखें कि इन बच्चों के लिए समाज की कौन सी संस्था, कौन सी इकाई, कौन लोग जो काम कर रहे हैं। समाज सेवी भी होते हैं, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, जैसे रीड इंडिया जो इस प्रोजेक्ट को लेकर के आया है और वो इस पे काम कर रहा है। तो जैसे कि अगर शाहबाद, वजीराबाद और नोएडा के एक गांव की बात करूं, तो हम अगर वहां के श्रोता सुन रहे हैं तो हमारा सेंटर है जहां पे आप वहां पे बच्चों को भेज सकते हैं। और अगर जो जहां पे अभी हमने शुरू नहीं किया है, आगे चल करके हम करेंगे, तो वहां के जो लोग हैं वो अपने आस पास ऐसे स्रोत ढूंढे कि जहां पे इन बच्चों के लिए कुछ हो रहा है, चाहे स्कूल है, स्पेशल स्कूल है या फिर कोई एनजीओ है। अभी तो बहुत सारे एनजीओ वगैरह काम कर रहे हैं, या फिर एक सरकार ने एक ना शिक्षक रखा हुआ है, घुमक्कड़ जिनको कहते हैं, वो सरकारी स्कूलों के अंदर आते हैं वीक में 3 दिन 4 दिन। आपके स्कूल में स्पेशल एजुकेटर है
1: जी।
0: हाँ, तो वो कभी कभी आते हैं इन बच्चों को एक रिसोर्स रूम, मतलब एक संसाधन कक्ष जिसको बोलते हैं, जहाँ पे इन बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिनसे कि बच्चा पढ़ता है, जिनसे सीखता है,
1: विकास
0: हो जल्दी। हाँ हाँ, तो वो एक रूम होता है हर स्कूल के अंदर, तो आप वहाँ पे भेज सकते हो। और ज्यादा ज्यादा जो है जागरूकता की कमा जरूरत है हमें आज समाज के अंदर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, उनके माँ बाप के लिए और समाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर हम सब मिलकर के इससे लड़ेंगे और इसको डट के इसका मुकाबला करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल नहीं है। और हम अकेले से नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम है। तो मैं ये कहूंगा कि पूरे समाज को एकजुट होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और इस चीज को जागरूकता के लिए हर स्कूल के अंदर एक एजुकेटर जो है होना चाहिए, और उसको भी गांव के अंदर जागरूकता बढ़ानी चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए कि हाँ, इस तरीके के बच्चे हैं तो आप हमारे पास लेके आइए। चाहे आप उनको गृह आधारित काम दे दो या फिर उनको आप रेगुलर क्लासें लो या जो भी है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को ऐसे स्रोत ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि हम इन बच्चों को कैसे और कहाँ भेज सकें।
1: तो राजीव जी, आप हमारे कार्यक्रम शावाद की आवाज में आए, आपने हमें स्पेशल बच्चों के बारे में बताया कि आप उनको कैसे ट्रेन करते हैं। धन्यवाद।
0: धन्यवाद शाहिल जी।

नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट खेती में। मैं आपको लेकर आया हूं आज चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में आप यहां पर देखेंगे बैम्बू फार्मिंग। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये रॉकेट की गति से तेजी से बढ़ने वाला बांस है जगेंडिस, और आप देख करके आपको लगेगा कि ये कहीं अमेजन के जंगलों में खड़े हुए इतने मोटे बांस है, लेकिन नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है, ये चंडीगढ़ है और ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूरे देश में कहीं भी हो सकता है। हम आपको बता दें कि बांस की करीब 1600 वैरायटी हैं पूरे हिंदुस्तान में, कुछ वैरायटी कहीं भी हो सकती हैं। और इस तरह से ये जगेंडिस जो है, यहां पर हमें पता लगा कि इसकी उम्र मात्र 3 महीने है, 3 महीने में भी ये इतना ऊंचा चला जाता है। उसके बाद जैसे ही वो ड्राई होता है, सूखता है, उससे पहले उसको काट लिया जाता है। उसके क्या उपयोग हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। बांस को लेकर जो सरकार ने जो अपना प्रोजेक्शन दिया था, उसे जो एक तरह से लकड़ी से घास में की कैटेगरी में उसको रखा, और बांस की खेती पर किसी तरह का प्रतिबंध, उसे काटने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध न हो, ये एक नियम बना दिया गया, तब से पूरे देश में बांस को प्रमोट किया जा रहा है।

0: हमारे साथ चंडीगढ़ में जो एनवायरमेंट सोशियोलॉजी के हेड हैं डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, आप यहाँ पर हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब से सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो बांस है उसका इस एनवायरमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद आगे चलेंगे।
1: देखिए, बांस एकमात्र ऐसा पौधा है जो आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है। बाकी पौधों से अगर कंपेयर करें तो 135% तक ज्यादा ऑक्सीजन देता है।
0: क्या बात,
1: और ये बढ़ता इतनी तेजी से है कि आप जैसे देख रहे हैं कि 3-4 महीने में ये 90-100 फीट तक चला जाता है।
0: रॉकेट साइंस है,
1: रॉकेट है। और ये एक दिन में 3-3 फीट तक बढ़ सकता है। आमतौर पे 1 फीट तो रेगुलर बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन 3-4 फीट तक भी बढ़ सकते हैं। और इसमें 1600 के करीब वैरायटी है जो नॉर्थ इंडिया में है, वो अभी लगभग 30-35 वैरायटी अच्छे से चल रही है।
0: और ये आपने सिर्फ यहाँ पर डैमो के लिए, यहाँ पर ही ये हम सब देख रहे हैं कि इसका एक्सपेंशन भी किया गया है।
1: हम सैकड़ों एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं, मैं अपने खेत में भी कर रहा हूँ, मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े इलाकों में हम लगा रहे हैं।
0: एक्यूरेट कितने एकड़ में किया होगा?
1: लगभग 500 एकड़ में पहुंच चुका होगा।
0: क्या बात, कौन कौन से एरिया स्पेशली कवर किए?
1: इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्से हैं जो तेजी से लग रहे हैं, और हिमाचल में भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो लगा रहे हैं। और इसको लगाने के पीछे कारण ये रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी घोषित किया, जो बांस पहले पेड़ की कैटेगरी में था उसको अभी घास की कैटेगरी में लगा दिया है। इससे क्या हुआ कि जो नॉर्थ इंडिया के किसान थे उनको भी बांस में इंटरेस्ट जागा है। पहले हमें ये लगता था कि बांस को कल्टीवेट करना, इसको आगे बढ़ाना, ये इलीगल है, तो अभी इसको लीगल कर दिया है सरकार ने, उसकी वजह से ये बहुत तेजी से अभी फैल रहा है। ये CNG, चारकोल, एथेनॉल इससे बनना चालू हो चुका है, और इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही सुपीरियर होता है, और ये बर्निंग के लिए काम आता है, जो बड़ी बड़ी भट्टियां चलाने के लिए, तो ये डीजल, पेट्रोल और कोयले का एक अच्छा रिप्लेसमेंट है।
0: बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपको पता है कि अब बांस लकड़ी नहीं है, वो घास की कैटेगरी में है, उसको उगाना, उसको काटना, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, और इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में भी किसानों ने इसको उगाना शुरू किया है। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस इलाके में भी करीब 500 एकड़ जमीन पर तो उनके अकेले के प्रयास से ये शुरू हो चुका है, और इसके अलावा भी किसान अलग अलग तरीकों से उसे पहले से ही कर रहे हैं। यहां पर जो वैरायटीज हैं, हम उन वैरायटीज को जानेंगे, उनकी खासियत क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस रॉकेट बैम्बू से। जी,
1: इसको नाम जाइगेंटस है, और चाइनीज बैम्बू भी बोलते हैं, लेकिन चाइनीज बैम्बू थोड़ा डिफरेंट होता है। चाइनीज बैम्बू में क्या होता है, 5 साल तक वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, और 5 साल के बाद वो तुरंत 90-100 फीट का चला जाएगा विद इन 3 महीने में, और ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन उसके जैसा ही है। ये जाइगेंटस बोलते हैं इसको, और इसकी खास बात यह है कि ये बहुत मोटा होता है। इसकी जो फर्नीचर बनने का, घर बनाने के लिए, पैलेट्स बनाने के लिए, और एक जो खूबसूरत फर्नीचर होता है उसके लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये बहुत महंगा भी बिकता है। अगर प्रोसेस करके बेचा जाए तो किसान कई गुना ज्यादा मुनाफा इससे कमा सकते हैं।
0: यहाँ पर हम देख रहे हैं इससे उतर उतर कर इस तरह के प्लेट्स गिर रही हैं, आप इनको नेचुरल प्लेट कह सकते हैं, इनका क्या उपयोग?
1: देखिए, इसके हजारों उपयोग हैं। ये इसका पैकिंग मटेरियल बनता है, गत्ता बनता है, पेपर बनता है, कटोरियां बनती हैं, चम्मच बनते हैं, डिस्पोजल आइटम बनते हैं, ये सीधे भी पैकिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं अभी, इसकी पैलेट्स भी बनती हैं, खाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, और ये हर पोरी पे एक गिरता है। तो किसान मान लो कि एक बैम्बो है उसके पास और 50 पोरियां, तो 50 ऐसे गत्ते उसके पास गिरने वाले हैं, तो ये एक्स्ट्रा इनकम है किसान की। और इसका मल्चिंग के लिए भी किसान अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं।
0: हम यहाँ से कुछ और वैरायटीज हैं उधर चलते हैं, और डॉक्टर साहब से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सामने हम एक और वैरायटी देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है, और ये क्या उतनी ही तेजी से बढ़ता है जिस तेजी से जगंडिस बढ़ता है? जी डॉक्टर साहब,
1: देखिए, लगभग सारे बांस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और ये न्यूटन, टोल्डा और बालकोआ, ये 3-4 वैरायटी हैं जो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चलती हैं, उन्हीं में से ये एक है, और इसका भी बढ़ने का जो रफ्तार है वो बहुत तेज होता है। और इसमें आप देखेंगे, जैसे हमने जाइगेंटिस में देखा, एक ही पौधे में हजारों डंडे निकले हुए हैं, इसमें भी उसी तरीके से हजारों निकलते हैं। और इसको संभालना और इसको मैनेज करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है और आप जितना चाहें इसको जिस तरफ चाहें बढ़ा सकते हैं।
0: आमतौर पर हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया की जो मार्केट है जिसमें बल्लियों की, जब आप बल्लियों की बात करते हैं तो उसमें ये बांस जो है ज्यादा इस्तेमाल में आता
1: जी, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है और ये भरा हुआ निग्गर बांस जिसको बोलते हैं वो है, वो खोल अंदर से खाली होता है, ये पूरी तरह भरा होता है तो इसमें वजन जाता होता है। तो अगर किसान इसको पर किलो के हिसाब से या पर टन के हिसाब से बेचे तो इसमें मुनाफा ज्यादा होता है।
0: बांस की तीसरी वैरायटी आई है हमारे साथ और ये आप पीछे देख रहे हैं, ये कुछ पतला बांस है, इसका क्या नाम है, इसकी खासियत क्या है? जी डॉक्टर साहब ये भी बताइए।
1: इसको टुल्डा रॉक्स बोलते हैं और इसकी खास बात यह है कि यह भी बहुत तेजी से बढ़ता है और ये बंच में बढ़ने वाला बांस है, इसको जितना काटेंगे उतना ज्यादा फैलता रहेगा ये। और जिस मान लो कि आपको कच्चा बांस है उसमें 50% आपने तोड़ के अगर उसका अचार मुरब्बा बना लिया तो 50% डंडे और ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, तो तुरंत आपको पैसा मिल गया अचार मुरब्बा से और जो 50% बाकी बचा वो आपके डंडे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के तैयार हो जाते हैं।
0: यहाँ पर बांस की उपयोगिता जो है वो बांस की वैरायटीज के साथ में बदलती रहती है और इस उपयोगिता में आप कुछ और बांस देखेंगे। बांस खेतों की बाढ़ लगाने के भी काम में आता है, आपको बाढ़ लगाने में नेट पर अवेलेबल है कि इतने हजार रुपया लगेंगे पर एकड़, लेकिन यहाँ पर आप ये देखेंगे क्या शायद ये बाढ़ के लिए उपयोग आने वाला बांस है?
1: ये अर्बन हाउसेज में जो दीवारों के साथ में लगाते हैं, हेज बेम्बो बोलते हैं इसको, तो ये बहुत ही खूबसूरत हेज बनाता है क्योंकि यहाँ पे इसको धूप नहीं मिल रही है तो बहुत कम बढ़
0: खेतों की भी हेज बना देता है।
1: हाँ खेतों की भी बना सकते हैं लेकिन खेतों की हेज बनाना चाहिए आपको टुल्डा न्यूटन या बालकोआ से और या एक डी स्टिक्टस बेम्बो है उसके पीछे लगा हुआ है उस तरीके से, क्योंकि वो पैसे ज्यादा देते हैं, ये केवल देखने के लिए काम आता है। इसके चटाई वगैरह मैट और ये सब चीजें बनती हैं। जो पीछे हमारा लगा हुआ है उसको बुद्धा वैली बोलते हैं, उसका इससे पीछे वाला उसका डेकोरेशन के लिए
0: बुद्धा वैली, ये है हम बुद्धा वैली के पास में ही आते हैं, ये बुद्धा वैली है जो गांठदार बांस है जी, इसके बारे में आप बता रहे हैं।
1: इसको बेम्बुसा वल्गरिस या बुद्धा वैली बोलते हैं, इसमें गांठें होती हैं छोटी छोटी और ये देखने में खूबसूरत लगता है, अर्बन हाउस होल्ड में भी लगाते हैं इसको। इसी तरीके से इसको व्हाइट बेम्बो भी बोलते हैं, पॉलीमार्फा बोलते हैं इसको वैसे अंग्रेजी में, तो ये व्हाइट कलर का रहता है और इसकी जो यूज है वो फर्नीचर में सीढ़ियां बनाने के लिए।
0: इसकी खास बात ये है कि इसमें जो है स्मूथनेस ज्यादा है।
1: हाँ स्मूथनेस ज्यादा है, इसमें फालतू जो कांटे होते हैं जो डंडियां होती है वो नहीं निकला होता है। टुल्डा में न्यूटन में और बालकोआ में थोड़ी बहुत डंडियां निकलती हैं।
0: बांस की एक और वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसका बनता क्या है स्पेशली, ये भी हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहब
1: ये बेम्बुसा न्यूटन वॉल बोलते हैं इसको, वॉल इसलिए क्योंकि इसके कांटे आपस में फंस के और एक दीवार बना लेते हैं, जैसे किसान ने अपनी मेड़ पे चारों तरफ लगा दिए तो उसका फायदा क्या होगा कि कोई जानवर इंसान अंदर नहीं आ पाएगा।
0: आप कह रहे हैं कि किसान को अगर अपनी मेड़ तैयार करनी है तो बेम्बुसा सबसे अच्छा है।
1: हाँ इसको बोलते हैं लाइव फेंसिंग या लाइव वॉल, तो ये पशुओं को भी रोकता है इंसानों को भी रोकता है और इससे पैसे भी आते हैं। ये दुनिया की एकमात्र बाउंड्री है जो पैसे खर्च नहीं करवाती, पैसे देती रहती है।
0: और स्पेसिफिक यही वाला बांस है वो?
1: हाँ यही वाला है और इसके अलावा भी दूसरी वैरायटी लगा सकते हैं लेकिन ये पूरी तरह आपकी जो बाउंड्री है उसको कवर कर लेगा।
0: तो क्या ये ऐसे फैलता नहीं है जैसे जगेंडिस वगैरह फैलता है इतना इस तरह से चूड़ा?
1: फैलते सारे हैं लेकिन आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जिस साइड से आपको नहीं फैलाना उसके साइड से ट्रैक्टर निकाल देंगे तो वो नहीं फैलेगा। और आप एक पीढ़ी लगाएगी इसको बांस को, मान लो कि मैं लगा रहा हूँ तो मेरी 3-4 पीढ़ियों के लिए मौज है, ये लगभग 60 से 70 साल चलता है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है।
0: मतलब ये घास जरूर है लेकिन ये घास 70 साल तक आपके लिए उपयोगी रहती है। यहाँ पर ये भी पेड़ है, ये इसका नाम क्या है, ये भी हैज की तरह दिखता है कुछ कुछ लेकिन इसे भी समझेंगे।
1: हाँ ये वाइल्ड बेम्बो है और इनको भी न्यूटन के आसपास की ये वैरायटी है, जैसे वहां पे काट के भी हमने डाले हुए हैं, तो ये सारे बेम्बो ऐसे हैं जिनको कहीं पे भी लगाया जा सकता है, खारा पानी मीठा पानी अच्छी जमीन खराब जमीन का भी इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। एक बार लगाने के बाद में 70 साल तक ये नॉन स्टॉप चलते हैं।
0: राजस्थान में जैसलमेर जैसी जगहों पर जहां खारा पानी नीचे बहुत है वहां पर भी?
1: अभी BSF का एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के जो बाउंड्री है हमारी उसके साथ साथ में 1 किलोमीटर चौड़ाई और लगभग 200 किलोमीटर लंबाई में वो लगा रहे हैं बेम्बो। हाँ वो दुनिया
0: स्पेशली राजस्थान के बॉर्डर पर
1: बिल्कुल, ताकि उससे एक तो फेंसिंग हो जाए एक डेजर्ट ना फैले, दूसरा जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं उनके लिए भी आसान रहे डिमार्केशन करना, और उससे पैसा भी निकलता रहे, और जो बीएसएफ या बाकी जो आर्म फोर्सेज हैं उनको जो बांस के डंडे चाहिए जो हजारों लाखों की संख्या में चाहिए होते हैं वो भी उनको वहां से मिल जाएंगे, और वो एरिया भी हरा भरा होना चालू हो जाएगा।
0: मतलब आप ये जो बैम्बू है, जो बांस है, इसकी आप जो महिमा है उसको आप समझ सकते हैं। 1600 तरह की वैरायटीज हैं। यहाँ पर एक और वैरायटी है, और इस तरह की वैरायटी जो नॉर्थ इंडिया में आसानी से हो सकती हैं, और मैंने पहले बताया ये जो घास है ये 60-70 साल तक चलेगी और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ ना कुछ और बहुत कुछ लाभ देती रहेगी। ये वैरायटी जो है बहुत स्मूथ दिख रही है, इसका क्या नाम है, ये किस उपयोग में आती है, ये भी हम देखेंगे।
1: ये व्हाइट बेम्बो है, इसको टूल्डा व्हाइट भी बोलते हैं, इसको और भी दो तीन नामों से जानते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके कोई कांटा नहीं है, बिल्कुल सीधा होता है ये, और इसकी जो हाइट है वो बढ़ती रहती है, और ये चारों तरफ भी फैलता रहता है जितना हमें चाहिए, और ये बहुत ही नजदीक नजदीक ग्रो करते हैं, और इसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में, केन बनाने में, या फिर जो सजावटी सामान है उसमें, और पशुओं के लिए बाड़ा वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। वैसे बेम्बो की किसी भी वैरायटी को किसी भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनका स्पेसिफिक फीचर की वजह से किसी पर्टिकुलर काम में उनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर मान लो कि पशुओं के बाड़ा बनाना है, या फिर आपको उससे सीएनजी निकालना है, या फर्नीचर बनाना है, तो उसके हिसाब से वैरायटी में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। जैसे अभी हम ब्लैक बेम्बो देखेंगे, उसकी वैरायटी थोड़ी डिफरेंट है, हैमिल्टोनी बेमिल्टोनी करके तीन चार वैरायटी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बांस से लगभग 25,000 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो वो कैसे बनाएं और उसके बारे में हम बात कर सकते हैं।
0: यहाँ पीछे कम से कम 4-5 तरह के बांस के झुंड दिख रहे हैं, इनके नाम क्या हैं, इनकी खासियत क्या है, यहीं से एक बार डॉक्टर विनोद से हम जानने की कोशिश करेंगे, और उसी के साथ में फिर बांसों के अधिकतम उपयोग क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। जी डॉक्टर साहब,
1: ये डंडा बांस है, लाठी बांस है, इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, और हर क्षेत्र में इनके नाम बदल जाते हैं, साइंटिफिक नाम सेम रहते हैं, लेकिन जो डंडा बांस है उसकी खासियत, जैसे पुलिस वाले डंडे रखते हैं, या फिर मच्छरदानी लगाने के लिए रखते हैं, या बायोमास में भी इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हैमिल्टोनी, बेमिल्टोनी, और टूल्डा, न्यूटन, बालकोआ, इस तरीके से इनके एक पूरी फैमिली है, और इन फैमिली में दो तरीके के स्पेसिफिक बांस होते हैं, एक वो हैं जो दूर दूर फैलते हैं, और एक वो हैं जो बिल्कुल बंच में एक साथ में निकलते हैं। तो इसमें दो मेजर वैरायटी हैं, और ये कोई भी वैरायटी कहीं पे भी पैदा हो सकती है। जो ऐसी जगह है जहां पे बर्फ गिरती है वहां पे थोड़ा वैरायटी सोच के लगाना पड़ता है, और बहुत गर्म इलाकों में, उसके अलावा लगभग सभी वैरायटी सभी जगह पे चल जाती हैं।
0: बिल्कुल, यहाँ पर आखिर में मैं आपको ब्लैक बैम्बू की तरफ ले जाऊंगा, और वहीं से फिर बांस का पूरा का पूरी जो खासियत है, बांस की जो उपयोगिता है पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे।
1: इसको सिमेंसिस बोलते हैं। इस बांस की खास बात यह है कि ये पूरा बंच में उगता है, और ये बहुत ही गहरा होता है। आप देखेंगे एक पौधा लगाया था ये, और इस एक पौधे के कई हजार बन चुके हैं।
0: ये भी वॉल बनाने के काम आ सकता है।
1: हाँ, वॉल बनाने के लिए भी काम आ सकता है, लेकिन इसका ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है फर्नीचर में, अगरबत्ती की काड़ी बनाने में, या जो आपके चॉपस्टिक्स हैं, ऐसी सीधी चीजें जिनको मार्केट वैल्यू ज्यादा है उनमें इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये वाले जो बेम्बो हैं, इसके खास बात यह है कि ये हजारों की संख्या में उग जाता है, और जिस साइड में इसको पानी मिलेगा, जिस साइड में इसको नमी मिलेगी,
0: उधर
1: उस साइड में बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो ये भी जैसे व्हाइट बेम्बो का एक वैरायटी है। इसका जो खास बात है ब्लैक बेम्बो का, ये इसको दो वैरायटी हैं, हैमिल्टोनी बेमिल्टोनी, इसको ब्लैक बेम्बो भी बोलते हैं, और इसकी खास बात ये है कि इसके पत्ते चौड़े होते हैं, और इसकी जो बॉटनिकल जानकारी है वो हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पे। लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल ब्लैक कलर है, और इस ब्लैक कलर की खास बात यह है कि जो ही वो ग्रीन उगता है वो ताजा प्लांट है, और जो ही वो काला हो जाता है
0: तो काट
1: ये काट लेने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इसको बजा के देखते हैं कि अच्छा। जितना पुराना हो गया उतना अच्छा है। और इसको काटने के लिए किसान भाई को क्या करना चाहिए कि वो इसको तीन जनरेशन में डिवाइड कर ले, कि एक तो दादा है, एक बाप है, और एक पोता है। तो जो दादा है मतलब 3 साल पुराना जो हो गया उसको काटेंगे तो वो पूरी तरह पका हुआ है, तो पिछले साल वाले अगले साल तैयार हो जाएंगे, अगले साल तैयार हो जाएंगे, तो साल में एक बार इसकी अच्छे से कटाई करते रहें।
0: तो हमेशा आपको दादा को
1: निकालता रहना है क्योंकि उसकी उम्र हो गई है, उसको नहीं निकालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो बांस एक ऐसा पौधा है जो जबरदस्ती पैसा देता है, अगर आप नहीं भी लेंगे तो बोलेगा कि भाई काटो मेरे को, मेरे पास पैसे रखने का अभी टाइम नहीं है। तो किसान के लिए एक जबरदस्त चीज है ये, अपने आप बढ़ता रहता है, कोई देखभाल नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगता है, कोई बीमारी नहीं लगती है, तो ये किसान के लिए बहुत ही अच्छा एक चीज है।
0: शुरू में डॉक्टर साहब जब बांस की खेती करनी होती है किसी किसान को, उस समय तो कुछ समय के लिए उसका पानी, उसकी देखरेख, इस सब को थोड़ा सा समझना होता है।
1: इसमें ये घास की वैरायटी है, जैसे हरियाणा पंजाब राजस्थान में झुंडा एक उगता है, सरकंडा जिसको बोलते हैं, लगभग वही चीज है ये। ये इसकी हाइट और जो मोटाई है वो बढ़ जाती है, इसको ज्यादा देखभाल की जरूरत है नहीं। जब स्टार्टिंग में लगाएंगे तो अच्छे से इसको सोच समझ के, इसके बारे में जान के लगाना चाहिए और आपके लोकल मार्केट में किस चीज की डिमांड है उसके हिसाब से लगाना चाहिए, फिर किसान को बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी सरकार की तरफ से भी और गैर सरकारी बहुत सारी संस्थाएं इसका चारकोल, CNG पैलेट्स और तमाम सारी दूसरी चीजें बनाना चालू कर चुकी हैं, तो बेचने के लिए वैसे भी दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी ऐसी वैरायटी लगाएं जो लोकल मार्केट में जल्दी बिक जाती है, जैसे टूल्डा, न्यूटन, हैमिल्टोनी, बेमिल्टोनी, जैगेंटिस, तो ये फटाफट बिकने वाली वैरायटी है। और इसके साथ साथ में जब पहला 1 से 2 साल मान लें किसान की, उसको बेसिक देखभाल करनी चाहिए।
0: 1 एकड़ में कितने पौधे,
1: ये डिपेंड करता है कि फार्मर कितना जल्दी प्रोडक्शन चाहता है। तो कुछ फार्मर इसका 500 पौधे लगाते हैं, कुछ 600 लगाते हैं, कुछ 750, कुछ 1000 भी लगाते हैं। तो
0: आपका रिकमेंडेशन?
1: मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 600 से 750 के बीच में लगाने चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और आपके पास साइजेबल क्वांटिटी हो बेचने के लिए।
0: कुछ छोटी जोत के किसान इस देश में ज्यादा हैं, उनके लिए भी क्या ये लगाना जरूरी है या फिर आप उनको यही सलाह देंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री पर लगाएं? तो
1: बाउंड्री से चालू करें और जब उनको बाउंड्री से पैसे आने चालू हो जाएं तो वो अपनी बाकी सारी फसल से ज्यादा पैसा देना चालू करें।
0: कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़े,
1: बिल्कुल, जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए तो फिर अंदर भी लगाना चालू कर दें। और ये इसकी खास बात ये है कि मान लो कि कोई छोटा जोत का किसान है, मात्र 1 एकड़ का किसान है, उसने खेत के चारों तरफ बैम्बो लगाया, बीच में एक पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर का सिस्टम है जिसको PQNK भी बोलते हैं, तो उस मॉडल पे उसने फल सब्जियां लगा दिया, बीच में थोड़ी बकरियां छोड़ दी या बाकी जानवर छोड़ दिए, तो उसके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बन जाएंगे और उसकी दीवार भी उसको पैसा देना चालू करेगी। आपने और कोई दीवार नहीं सुनी होगी जो पैसा देती हो, लेकिन बैम्बो की दीवार पैसा देती है। इसके साथ साथ
0: दीवार के लिए ब्लैक बैम्बो भी अच्छा है,
1: कोई भी बैम्बो लगा सकते हैं। आपके खेतों में पशु का नुकसान कितना है उसके हिसाब से सोचना चाहिए।
0: आपने 500 एकड़ जमीन में किसानों को बांस लगवाया है अभी तक, इसको लेकर के आप कितना उम्मीद से हैं?
1: UN की एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा गया है कि पानी की भयंकर कमी होने वाली है हमारे देश में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, और हम पहले से ही ब्लैक जोन और डार्क जोन में, रेड जोन में आ चुके हैं, तो पानी आगे मिलेगा ही नहीं खेती करने के लिए। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जितना भी पानी अभी हमारे पास है उसका इस्तेमाल करते हुए बैम्बो लगाए जाए और एग्रीकल्चर की टेक्निक को समझ के पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर पे खेती की जाए, तो कम से कम पानी में किसान जिंदा रहेगा। इसके साथ साथ में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बांस भी जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी जड़ें लगभग 50,000 लीटर पानी को पकड़ के रखती हैं और हर बरसात में ये पानी ज्यादा पकड़ के रखती हैं और बाकी पानी जमीन में छोड़ती रहती हैं। जमीन को ये ऑर्गेनिक करते हैं, फर्टाइल करते हैं, इसके आप देख रहे हैं हर जगह पे पत्ते जो गिरे हुए हैं, ये पत्ते जमीन को ढक के उसको ज्यादा नेचुरल बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम जनरेट करता है और इससे रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, आप जो सोच सकते हैं वो सब बनता है। तो किसान को ये एक ATM मशीन जैसा है, जैसे बकरी को किसान का ATM बोलते हैं, वैसे ही ये भी ATM है। जब मर्जी उसको काटा और 200-300-400 रुपए का एक डंडा बिक जाता है, तो उसकी इनकम का एक स्टेबल जरिया ये रहेगा। इसके बाद में आपने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत सारी सरकारों का और इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में जो हल्ला मचा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी बांस है, क्योंकि कार्बन सिंक करने में बांस का कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। ये हवा से धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सबको कंज्यूम करके अपने अंदर संभाल लेता है।
0: बाकी पौधों के अलावा ज्यादा CO2 को कंज्यूम करता है?
1: जी, लगभग 130 से 135% ज्यादा लेता है ये, और उसका फायदा ये होता है कि हवा बहुत जल्दी साफ हो जाती है और ये ऑक्सीजन भी ज्यादा छोड़ता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ भी अनलिमिटेड है।
0: कार्बन क्रेडिट को लेकर के आपने डॉक्टर साहब कुछ काम किया है? मान लिया एक एकड़ में अगर 750 पौधे किसी किसान ने लगाए हैं, तो वो उसका कैलकुलेशन की भाई ये इतना CO2 कंज्यूम कर लेगा, और जो फैक्ट्री चलाने वाला आदमी है वो उसे इतना पैसा उसको मिल सकता है, ठीक है, क्या कंपनसेशन है उसका?
1: इसके लिए अभी यूरोप में चालू हो चुका है और इंडिया में भी कुछ कंपनियों ने चालू किया है, और लगभग $75 पर टन के हिसाब से कंपनियां इस पे स्पेंड करेंगी, ये कंपलसरी उनके लिए हो चुका है। और जो इनकम है कार्बन क्रेडिट सेल करके, वो काफ़ी अच्छा होने वाला है किसान को। एक मोटा मोटा अंदाज़ा मैं दूँ तो 10-15 हज़ार से लेके और 60-70 हज़ार पर एकड़ उसको मिल सकता है बिना कुछ और एक्स्ट्रा किए,
0: अकेले कार्बन क्रेडिट से।
1: और प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल इसको लॉन्च किया है 15 अगस्त को कि कार्बन क्रेडिट हम सेल परचेज कर सकते हैं, जैसे हम शेयर मार्केट में सेल परचेज करते हैं ठीक उसी तरीके से। तो ये कार्बन क्रेडिट का जो बिजनेस है इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ
0: मैं आपको बता दूं कि भारत में, जबकि उन्होंने डॉक्टर साहब का कहना है और हम भी मानते हैं कि कार्बन क्रेडिट जैसी बातें यूरोप में, पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में ज्यादा होती हैं, फिर भी भारत के अंदर 4,000 करोड़ रुपया जो है कार्बन क्रेडिट के मार्केट में वहां से वो उठाया गया है। तो एक बात यह है कि जमीन से लेकर के और पूरे इकोसिस्टम को कैसे डील करता है अकेला बांस, ये एक बात यह है। एक साथ में बहुत बड़ी बात है जिसको हर किसान समझना चाहता है, क्योंकि वो अपने वॉलेट की तरफ देखता है। आपने बैम्बू की इकोनॉमी को समझा है, एक एकड़ में अगर वो 750 पौधे लगाता है तो एक एकड़ से वो साल भर में कितना पैसा वो अपने घर में ला सकता है, इसका कुछ अंदाजा?
1: जी देखिए, लगभग 3 साल बाद में चौथी साल में कटना चालू हो जाता है, और ये एक पौधा लगाया गया था आपके सामने है, ये हजारों की संख्या में निकल चुके हैं इसमें, हम मान लें कि वो 10 से 15 डंडे ही काट पाएगा, तो अगर वो 10 डंडे भी काटेगा 7,500 डंडे उसके पास होते हैं, पर डंडा अगर 100 रुपए का भी बिक रहा है तो 7,500 रुपए का बनता है। तो आप 7,500 छोड़िए 6 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, तो उसकी इनकम ये स्टार्टिंग है और वो हर साल बढ़ता रहेगा, और कार्बन क्रेडिट भी मिलने की संभावना अभी बढ़ती जा रही है। उसके अलावा सब्सिडी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल बैम्बू मिशन के अंडर दे रही है, कुछ राज्यों में हम चालू करवाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो जल्दी ही सब जगह चालू होने की संभावना है। तो किसानों के लिए एक ये परमानेंट ATM जैसा है, और वो लगाएंगे तो इससे मल्टीपल फायदे उठाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ज्यादातर किसान सब्जी की खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, सब्जी की खेती में एक एकड़ में वो लगभग 20,000 के जो बांस के डंडे होते हैं वो खरीद के लगाते हैं। तो अगर उसके खेत में 2 बांस भी लगे हुए हैं तो उसको अपनी जो बेसिक जरूरतें उससे पूरा कर लेगा। अगर उसने थोड़ा ज्यादा लगाया तो मान लो 20,000 रुपए वहां पे सेव कर रहा है, पशुओं के बाड़े बनाने पे सेव कर रहा है, बाउंड्री को अच्छे से बना लेता है ताकि आवारा पशु उसके खेत खराब नहीं करें, तो उसको एक कंटिन्यूअस इनकम का स्ट्रीम चालू हो जाता है। इसके बीच में वो पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन और तमाम सारे दूसरे कार्य भी कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी को बढ़ई का काम आता है, इसका फर्नीचर बनाए, इसकी कटलरी बहुत अच्छी बनती है और डिस्पोजल आइटम बहुत अच्छे बनते हैं, तो अनलिमिटेड चीजें इसकी बना सकते हैं। और ये छोटे हथकरघा जो उद्योग होता है, इसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसका भी वो फायदा उठा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा वो स्वरोजगार की तरफ जाएगा, तो हर रोज उसके घर में बैठ के उसको अच्छे खासे पैसे आते रहेंगे जितना वो किसी नौकरी में नहीं कमा पाएगा।
0: कई बार बांस के ट्रीटमेंट को लेकर के बात होती है कि ट्रीटमेंट अगर उसका नहीं किया गया तो उसकी जो एज है वो कम रह जाएगी, वो उतना ज्यादा सक्सेस नहीं होगा।
1: इसमें बोरोक्स पाउडर वगैरह से इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, वो उस वजह से करनी पड़ती है। अगर आपको मान लो कि फर्नीचर बनाना है, घर बनाना है, तो आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज अगर कुछ और काम कर रहे हैं इसका, जैसे चारकोल, पैलेट, CNG, एथेनॉल, CD, ये सब बना रहे हैं, तो कोई खास जरूरत है नहीं उसके करने की, क्योंकि बांस की जो लाइफ है, आप उसको अगर हल्का सा वार्निश या पॉलिश करते रहे और हल्का सा ट्रीटमेंट भी कर लिया और उसका घर बना लिया, तो वो सैकड़ों साल में चला जाता है, है ना। तो बांस एक ऐसी चीज है जो रिन्यूएबल है, आप इसका घर अगर टूट भी गया तो दोबारा से आप बनाएंगे तो आपको सारी चीजें बांस से दोबारा मिल जाएंगी, और ये कार्बन नेगेटिव फुटप्रिंट वाला घर होगा। इसके साथ साथ में नेचुरल है, ब्रीदिंग हाउस होता है। आप नॉर्थ ईस्ट में अभी मेरे साथी जाके आए हैं, उन्होंने देखा कि बांस से खूबसूरत घर बना के अंदर से वो लिपाई कर देते हैं मिट्टी की।
0: नॉर्थ इंडिया में भी बांस से घर बनाने के कुछ मॉडल जो है, कुछ स्टार्टअप शुरू हुए हैं?
1: हाँ बहुत सारे हुए हैं, आप चंडीगढ़ में भी देखेंगे सेक्टर 15 में वो रेडी वगैरह लगा रहे हैं, पूरा बांस से डेकोरेशन किया है, बांस का ही बनाया है। फाइव स्टार होटलों में मैंने कई सारी जगह पे देखा उन्होंने बांस से बहुत अच्छा डेकोरेशन और जो रूफ टॉप है उसके ऊपर हट्स वगैरह बांस की बनाई है। इसके अलावा चंडीगढ़ के आसपास में बहुत सारे ऐसे जगह बनी हुई है जहाँ पे बांस से घर बने हुए हैं, और पटियाला में और भी कई सारी जगह पे लोगों ने फुल फ्लैज घर बनाए हुए हैं बांस के, और टूरिज्म इंडस्ट्री, नेचुरोपैथी सेंटर, कई बार खेतों में लोग हट्स बनाते हैं इसकी खूबसूरत वाली, तो इसकी दुनिया भर की चीजें ऑलरेडी बन चुकी हैं और बन रही हैं। पहले दिक्कत ये थी कि बांस अवेलेबल नहीं था, इसकी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत हाई है अगर आप नॉर्थ ईस्ट से लेके आएंगे तो उसकी वजह से इतना लोग ज्यादा एनकरेज नहीं फील कर रहे थे। अभी लोकल में जब हम बांस लगाएंगे तो इसकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो हजारों की संख्या में आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अगर सरकार भी सिग्नल दे चुकी है कि अब आपको बांस को काटने में, खरीदने में, ट्रांसपोर्ट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी जो है बैम्बू वॉल जो है वो राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर पर वो करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, और सबसे खास बात यह है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को डील करता है, सबसे खास बात यह है कि ये पानी से डील करता है, अगर आपका स्लाइन वाटर है तो भी ये उस पानी में भी ये हो सकता है, आपके नमकीन पानी में भी ये हो सकता है, उसे बिल्कुल 7 PH का वाटर ही नहीं चाहिए, तो इसको लेकर के, और दूसरा उसकी जो इकोनॉमी है पर एकड़ है, बाउंड्री को लेकर के है, ये सब इतना ज्यादा है कि अगर आपने बांस को अपना मिशन बनाया तो ये बैम्बू मिशन केवल सरकार का मिशन नहीं बल्कि हर परिवार का मिशन भी बन सकता है। तो स्मार्ट खेती में मुझे इजाजत दीजिए, अगर आपने किसी तरह का कोई बीड़ा उठाया है, अगर आपने अपने यहां पर किसी तरह की स्मार्टनेस दिखाई है खेती में, तो आप हमें जरूर बताइए, हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहां की स्मार्ट खेती।

नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी रसोई में मौजूद साधारण दिखने वाला ड्रमस्टिक, जिसे सहजन भी कहते हैं, सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। ये सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि पोषण से भरपूर एक सुपर फूड है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ड्रमस्टिक के जबरदस्त फायदे, इसे खाने का सही तरीका और कुछ खास टिप्स। ड्रमस्टिक, जिसे मुनगा या सहजन के नाम से भी जाना जाता है, एक पौष्टिक पेड़ का फल है। इसके पत्ते, फल, फूल और यहाँ तक कि इसकी छाल भी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसे आयुर्वेद में एक वरदान माना गया है और इसका उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। ड्रमस्टिक के स्वास्थ्य लाभ। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हड्डियों को मजबूत करता है। ड्रमस्टिक में कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। पाचन में सुधार करता है। ये फाइबर से भरपूर होता है, जिससे पेट की समस्याओं जैसे गैस, अपच और कब्ज से राहत मिलती है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। दिल की सेहत के लिए फायदेमंद। इसमें पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखते हैं और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। त्वचा और बालों के लिए लाभकारी। ड्रमस्टिक का सेवन करने से त्वचा चमकदार बनती है और बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। ड्रमस्टिक का उपयोग कैसे करें? अब जानते हैं कि इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल करें। सब्जी। ड्रमस्टिक को आलू, टमाटर और हल्दी के साथ मिलाकर स्वादिष्ट सब्जी बनाई जा सकती है। सूप। इसका सूप बनाने से आपको इसके पोषक तत्व पूरे मिलते हैं। पाउडर। ड्रमस्टिक की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बना सकते हैं, जिसे स्मूदी या दूध में मिला सकते हैं। चाय। ड्रमस्टिक की पत्तियों की चाय भी बहुत फायदेमंद होती है। ध्यान देने योग्य बातें। दोस्तों, हालांकि ड्रमस्टिक सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अत्यधिक सेवन से पेट में जलन या डायरिया हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। अगर आपको कोई एलर्जी हो तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। तो दोस्तों, ये थे ड्रमस्टिक के अद्भुत फायदे।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंटू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। ये वो किसान हैं जो कि कृषि स्टार्टअप, पशुपालन या फिर खेती में नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। आज के हमारे ऐसे ही सफल किसान हैं पवन कुमार कुशवाहा, जो कि वैसे तो विदेश में यानी ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी खासी नौकरी करते थे, लेकिन उनका मन था स्वदेश में और इसीलिए वापस वो भारत लौटे और कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में उन्होंने अपना हाथ आजमाया। हालांकि शुरुआती दौर में उन्हें काफी नुकसान भी झेलना पड़ा और यहाँ उनका मार्गदर्शन किया कृषि वैज्ञानिकों ने और उन्हें बताया कि कैसे वर्मी कंपोस्ट को अपनाकर वो इस राह में सफलता हासिल कर सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। पवन कुमार कुशवाहा ने इन वैज्ञानिकों की सलाह पर काम किया, आगे बढ़े और आज बन गए हैं हमारे आज के सफल किसान।
1: उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 65% भाग कृषि पर निर्भर है। इसी राज्य से हमारे सफल किसान पवन कुमार कुशवाहा भी आते हैं। कुशीनगर जिला मुख्य रूप से ऐतिहासिक स्थान के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। बात करें खेती किसानी की तो यहाँ की मुख्य फसल गेहूं, धान, गन्ना आदि है। कुशीनगर के रहने वाले पवन कुमार कुशवाहा भी इन दिनों खेती किसानी में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। कैसे, तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी।
2: मैं एक इंटरनेशनल जॉब जो मैं ऑस्ट्रेलिया में करता था, तो वहाँ से प्रेरणा मिली कि जॉब के अलावा भी जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, जो अपनी भविष्य की प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग गांव में भी कुछ व्यवस्था डेवलप किया जाए, कुछ फैसिलिटी डेवलप की जाए। तो उसी सोच के तहत मैंने गांव में गौशाला का शुरुआत किया। गौशाला जो जो आगे बढ़ा, चूँकि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि चूँकि शहर से दूर हम लोग काम कर रहे हैं, तो किसी वजह से मार्केट जो गौशाला का जो होना चाहिए दूध का जो डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्रॉपर हो नहीं पाया, जिसके वजह से मेरा जो बिजनेस था गौशाला वाला थोड़ा सा नुकसान में रहा। तभी उस समय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमको कुछ सहयोग मिला और जो गाय के गोबर से जो पैसे का इनकम किया सकता है, तो कुछ टेक्नोलॉजी कि गाय के गोबर का उपयोग कैसे किया जाए, स्पेशली बायोगैस में और उसका जो वर्मी कंपोस्टिंग जो होता है उसमें, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं उनके माध्यम से मुझे ये तरीका या टेक्नोलॉजी मिली, उन लोगों ने सिखाया और फिर मैंने वर्मी कंपोस्टिंग और बायोगैस का यूज गाय के गोबर से कैसे किया जाता है उसको शुरुआत किया।
1: पवन कुमार का प्रयास है कि खेती किसानी के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं इनके फार्म में ही उपलब्ध हों। इसी सोच के साथ पवन जी ने शुरुआती दौर में एक छोटे से गौशाला का निर्माण किया। अभी पवन अपने फार्म में गाय, बकरी, मुर्गी एवं मछली का पालन करते हैं। पवन ने कृषि विज्ञान केंद्र से परामर्श लेकर एक छोटी सी वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर नई शुरुआत की। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इन्हें बाहर से रॉ मटेरियल लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पशुओं के अवशेषों को प्रयोग में लेकर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। इससे इन्हें काफी फायदा होता है, लेकिन एक सवाल मन में ये भी आता है वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग को लेकर। तो चलिए मार्केटिंग के बारे में जानते हैं हमारे सफल किसान पवन जी से ही।
2: 2012 में मैं वर्मी कंपोस्टिंग किया, धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो मार्केटिंग भी हुआ, क्योंकि जागरूक जो किसानों को करना होता है, उनके साइंटिस्ट जो भी हैं उनके माध्यम से किसान लोगों को जागरूकता मिलती है कि कम से कम अपने वर्मी कंपोस्ट का खेत में उपयोग करके जो जैविकता है खेती बाड़ी का वो बढ़ाया जाए। तो जो जो समय बढ़ता रहा वैसे वैसे मेरा मार्केटिंग भी डेवलप करता रहा, मैं प्रोडक्शन भी होता रहा। शुरुआत में गाय के गोबर से रहा, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन की डिमांड ज्यादा आती गई तो मेरे लिए चैलेंज था कि भाई उतना मेरे पास गोबर का प्रोडक्शन था नहीं। तो फिर कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट लोगों के माध्यम से जो फसल अवशेष के माध्यम से कैसे वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है, फिर उसकी टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई, फिर उसके बाद से जो भी अन्य पशुओं के जो अवशेष हैं जैसे बकरी की मैगनी या मुर्गी का जो वेस्ट होता है, मलमूत्र होता है, उसके माध्यम से कैसे वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी मुझे प्राप्त हुई, उन लोगों के माध्यम से सीखा मैंने। और आज मेरा वर्मी कंपोस्टिंग का जो रॉ मटेरियल है वो गाय का गोबर भी है, बकरी का जो मैगनी है वो भी है, मुर्गी का खाद भी है, पुआल भी है, भूसा भी है, जो कुछ भी मतलब नेचुरली हमारे पास उपलब्ध है सबका मैं वर्मी कंपोस्टिंग करता हूँ और सक्सेसफुली उसका मार्केटिंग भी करता हूँ। हमारे से लगभग कुशीनगर और आसपास के जितने भी जिले हैं उस सारे जो किसान हैं जो जुड़े हुए हैं, लगभग मोर देन 1000 किसान मेरे पास जुड़े हुए हैं जो वर्मी कंपोस्टिंग का जो उपयोग कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद लेके अपने जमीन की जैविकता बढ़ा रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं और एक इकोनॉमिकल तरीके से खेती कर रहे हैं।
1: वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी प्रणाली है जिसे खेती किसानी के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। जैविक खाद मूल रूप से एक व्यवस्थित कीट पोषण प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के भीतर विद्यमान अन्य जैविक पदार्थों का अवशोषण कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। जैविक खाद विधि से बहुत कम समय में सामान्य तापक्रम के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जा सकती है जिसमें केचुओं की समुचित प्रजातियों का उपयोग होता है। इसमें केचुओं की आंतों में विद्यमान सेलुलाज तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर निगले हुए जैविक पदार्थों का बड़ी तेजी से विघटन करते हैं। ये केचुए अपनी पाचन क्रिया और जैव पदार्थों के संयुक्त मिश्रण के प्रभाव से एक अपशिष्ट पदार्थ बाहर छोड़ते हैं जिसे वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। किसान पवन का मानना है कि अगर सही रखरखाव के साथ केचुए को रखा जाए तो वर्मी कंपोस्ट के लिए फायदा होता है। इस बारे में पवन क्या बताते हैं सुनिए।
2: बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं कि ये केचुआ कितना हेल्दी है और यही मौसम है जिसमें केचुआ प्रजनन करके अपने बच्चे पैदा करते हैं, इनको जाड़ा बड़ा पसंद है। तो जैसे ही जाड़े का मौसम बीतता है उसके बाद से ये लोग अपना प्रजनन करके अपने अंडे का उत्पादन करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो अंडा है ये अंडा लगभग मैच्योर होने की स्थिति में है और इस अंडे में से 5 से 7 बहुत पतले पतले केचुए निकलेंगे और फिर उसके बाद से धीरे धीरे खाना खा के अपने आप को डेवलप करेंगे। तो इनकी जो जनरेशन होती है, पैदावार होती है, वो तो बहुत शानदार होती है। और लेकिन चूंकि यही एक बहुत नाजुक होते हैं, ये तो जल्दी मरते भी हैं दूसरे कारणों से, लेकिन यह है कि अगर उचित रख रखाव किया जाए, उचित इन लोगों का माहौल दिया जाए तो केचुए की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती है और बहुत शानदार उत्पादन करते हैं ये केचुए, खाद भी बनाते हैं, खुद भी डेवलप करते हैं। ये
1: केचुआ बहुत अधिक मात्रा में खाना खाने वाले होते हैं, वे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का अक्षरण करते हैं और उसका कुछ भाग अपशिष्ट पदार्थ या वर्मी कंपोस्टिंग के रूप में बाहर छोड़ते हैं। पोषक तत्वों से युक्त वर्मी कास्टिंग पौधों के लिए एक पौष्टिक खाद है। यह कृमि खाद पोषक तत्वों की आपूर्ति एवं पौधों में हार्मोन्स को बढ़ाने के अलावा मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाता है जिससे मिट्टी द्वारा पानी और पोषक तत्व धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है।
0: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद के बारे में और विस्तृत जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाएगा, देखते हैं सफल किसान।
3: खो गया इंतजाम।
4: किसका? गुड्डी की फीस का।
3: दिखा।
4: 20,000 का लोन तुरंत?
3: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
4: लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर।
3: हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: RBI कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आप तक कहानी पहुंचा रहे हैं पवन कुमार कुशवाहा की, यानी उनकी सफलता की कहानी। कैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नौकरी छोड़ी और भारत लौटे और यहाँ पर अब वो वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं पवन कुमार कुशवाहा का और जानते हैं वर्मी कंपोस्ट के तमाम पहलुओं के बारे में।
1: वर्मी कंपोस्ट एक प्राकृतिक उत्पादन प्रक्रिया है जो कीटाणुओं के सहयोग से जैविक अपशिष्टों को कंपोस्ट बनाने का काम करती है। यह एक पर्यावरण सौहार्दपूर्ण प्रक्रिया है जो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पवन कुमार कुशवाहा ने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई जो सिर्फ पवन को ही नहीं बल्कि आसपास के किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। सफल किसान पवन का मानना है कि मिट्टी की सेहत के लिए रासायनिक खाद को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे मिट्टी की उर्वरता काफी अच्छी होगी और फसल भी अच्छी होगी। इनका मानना है कि मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए केचुआ काफी उपयोगी है। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं।
2: इतने सालों से मैं ये वर्मी कंपोस्टिंग कर रहा हूँ, धरती माँ की सेवा कर रहा हूँ। जो मुझे अनुभव मिला है उस अनुभव के आधार पर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अगर मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना है तो सबसे बढ़िया जो साधन है वो ये केचुआ है। इससे बेहतर कोई संसाधन नहीं है केचुआ के अलावा जो मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार सके। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। इसलिए कम से कम इस केचुआ के महत्व को पहचाना जाए। हम ये कहते हैं कि केचुआ गाय का पूरक है। अगर गाय जमीन के ऊपर भगवान के रूप में है तो जमीन के नीचे ये केचुआ भगवान के रूप में है। अगर केचुआ जब तक जिंदा है तब तक धरती माँ स्वस्थ है और

0: अब और आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ किसान खेती करते हैं। हमारे सफल किसान पवन का मानना है कि अगर किसान वर्म फार्मिंग पर ध्यान दें तो इससे मिट्टी की सेहत में सुधार के साथ किसान की आय में भी वृद्धि होगी।
1: तो अमेरिका जैसे कंट्री में जो लोग थोड़ा जागरूक हैं तो वो लोग वर्म फार्मिंग करते हैं और वही वर्म्स जाके मिट्टी में डालते हैं और लगातार क्योंकि मिट्टी में भी इनका प्रोडक्शन होता रहता है तो 3 से 4 साल में 5 साल में जो मिट्टी जो बीमार हो चुकी होती है ना बंजर हो चुकी होती है वो दोबारा का उसमें जीवन आ जाता है जान आ जाता है और दोबारा सजीव हो जाती है। और जब मिट्टी सजीव हो गई तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो वातावरण का जो पेड़ पौधा है जो इकोसिस्टम है वो खुद ब खुद अपने आप सुचारू रूप से अपने नेचुरल वे में काम करने लगता है और पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है डेवलप हो जाता है स्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए वर्म फार्मिंग भी एक कंसेप्ट है जो अपने भारत में लोगों को जानना चाहिए करना चाहिए।
0: पवन कुमार कुशवाहा अपने गांव में ही पशुपालन के साथ साथ खेती भी कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी लगाए हुए हैं। इनका मानना है कि गांव में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ साथ गांव का भी विकास होगा। पवन के पशुपालन करने की मुख्य वजह है कि ये पशुओं के अपशिष्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। पवन ने अपने फार्म में वर्मीवास गोबर और गोमूत्र को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग टैंक लगाए हैं। पवन जीवामृत बनाने के लिए गोबर गौमूत्र बेसन प्याज का रस डीकम्पोजर नीम का पत्ता मिर्च लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती।
1: अपने खेती बाड़ी सिस्टम में हम लोग कहते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करना चाहिए एज ए टॉनिक। तो लिक्विड फर्टिलाइजर चूंकि एक तो रासायनिक भी मार्केट में उपलब्ध है लेकिन है क्या कि गांव का जो इकोसिस्टम है गांव का जो परिवेश है उसमें चूंकि गांव के लोग गांव के ही अगर हेल्प करेंगे तो कुछ गांव के लोगों का विकास होगा। तो हम चूंकि गांव में ही रह के ये जो पशुपालन है चाहे ये जो खाद का जो काम है वर्मी कंपोस्टिंग है मैं वो कर रहा हूँ तो जो मेरे पास जितने भी पशु हैं तो पशु का जितना भी अवशेष है चाहे वो मल के रूप में हो चाहे मूत्र के रूप में हो मैं उसका उपयोग जीवामृत बनाने में चाहे लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने में कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे पास वर्मीवास आ रहा है वो यहाँ पे टैंक में इकट्ठा हो रहा है जो गौमूत्र आ रहा है वो बगल के टैंक में इकट्ठा हो रहा है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जैसे कि वर्मीवास गौमूत्र से हम जीवामृत डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि इसमें जो गुड़ बनाने का जो अवशेष होता है जैसे बदर मैया हम लोग अपने भोजपुरी में बोलते हैं वो है बेसन है इसमें प्याज का रस है इसमें डिकम्पोजर भी डाले हैं उसमें नीम का भी पत्ता डाले हैं उसमें प्याज मिर्चा भी है लहसुन भी है जो सुरती का डंटल होता है वो डाले हैं। मतलब जो भी इजिली उपलब्ध है अपने गाँव समाज में जो अपने बाग बगीचे में सबका उपयोग करके जो जीवामृत बनाया गया है जो अपने फसलों के जड़ों पे भी दिया जाता है और साथ में किसी किसान को अगर स्प्रे करना हो तो 1 लीटर में 5 लीटर पानी मिला के वो अपने फूल पत्ती पे चाहे पेड़ पौधे पे स्प्रे करे बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। मतलब कि कुल मिला के ये पौधे का अमृत है इसलिए इसको हम लोग अपने भाषा में जीवामृत बोलते हैं। तो हम लोग सब डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे और इजिली किसानों के लिए बहुत ही उचित दाम पे उपलब्ध है अपने किसानों के लिए गाँव समाज के लिए।
0: अगर वर्मी कल्चर को पूर्ण रूप से अपनाया जाए तो खेती के लिए काफी मददगार साबित होगा। वर्मी कल्चर में पौधे और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने का एक लाभकारी तरीका है। वर्मी कल्चर मुख्य रूप से कीड़ों के प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि उनकी आबादी बढ़ाई जा सके। फिर फसलों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है।
2: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे पवन कुमार कुशवाहा ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को भी अपनाया है। जानेंगे इसके बारे में भी छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, देखते रहें सफल किसान।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं पवन कुमार के फार्म का, जहां पर वो एकीकृत कृषि प्रणाली को भी अपनाते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी विधि, एक ऐसा तरीका है कृषि का जिसमें तमाम घटकों को साथ लेकर हमारे किसान आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। कैसे की जाती है एकीकृत कृषि और कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग से पवन कुमार कुशवाहा को लाभ हो रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से।
1: एकीकृत कृषि प्रणाली या इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इसमें दो या इससे अधिक उद्यमों का एकीकरण शामिल होता है। इसमें किसान की अधिकतम जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि, कृषि अपशिष्टों का कुशल पुनर्चक्रण, संसाधनों का बेहतर उपयोग और रोजगार पैदा होते हैं। इसमें जोखिम कम होने के साथ स्थिरता भी सुनिश्चित होती है। एकीकृत कृषि प्रणाली का उद्देश्य संबंधित उद्यमों के साथ फसलों की गहनता और विविधीकरण के आधार पर प्रति क्षेत्र प्रति समय उपज को अधिकतम करना है। इसके अलावा यह पोषक तत्व पुनर्चक्रण सुनिश्चित करती है। तालाबों में मछलियों के साथ बत्तख या मुर्गी पालन के अलावा तालाबों के किनारे या तालाबों के ऊपर में पशुओं द्वारा तालाब का निरंतर जैविक निषेचन किया जाता है। इस प्रकार पशु और चारा अपशिष्ट के लाभदायक उपयोग से पशुधन, कृषि और मछली पालन की दक्षता बढ़ जाती है। ऐसे में किसान कई उद्यमों से एक साथ कम लागत में अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
2: जैसे आप देख रहे हैं, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें मुर्गा पालन और मछली पालन एक साथ करने का प्रयास किया जा रहा है। कहते हैं कि पशुपालन में अगर एक का वेस्ट मटेरियल दूसरे के लिए अगर रॉ मटेरियल फीड के रूप में काम आ जाए तो आपका इफिशेंसी या जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे मुर्गा पालन प्लस मछली पालन एक साथ ये हो रहा है। जैसे कि नीचे पोखरा है, पॉन्ड है और ऊपर हमारा कड़कनाथ मुर्गी फार्म है जिसमें जो साइज है उसमें 100-150 मुर्गियाँ आराम से रह लेती हैं। तो दिन में चूंकि हमारा जो ये मुर्गियाँ हैं बाहर चरती हैं क्योंकि उनको नेचुरल फीड मिलता है, साथ में धूप की भी आवश्यकता पड़ती है मुर्गियों को, तो वहाँ पे जाके अपना धूप सेकते हैं, खाना खाती हैं, दिन भर बाहर आती हैं। लेकिन जैसे होता है रात में वो अपने आप चली आती हैं और रात भर यहीं करती हैं। तो रात भर जो वो बीट करते हैं तो वो मुर्गी मछलियों के लिए वो फीड का काम करता है। लेकिन इसमें एक समस्या ये रहती है कि अगर 5 से 6 दिन लगातार अगर पानी को चेंज न किया जाए तो पानी गंदा हो जाता है और मछलियां मरने लगती हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रात में छोटा सा 1 घंटे के लिए हम लोग पानी चला देते हैं कि पानी का सर्कुलेशन हो जाए। इसका जो पानी का ओवरफ्लो होता है बगल में जो हमारा पॉन्ड है बड़ा वाला वहां चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा कभी भी पानी गंदा नहीं होता, मछलियों के अनुकूल रहता है।
1: पवन कुमार कुशवाहा अलग अलग देशों में नौकरी कर चुके हैं लेकिन नौकरी रास नहीं आई। कहते हैं ना कि मन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो कुछ करने की तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने साथ दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर आज पवन आसपास के लोगों को भी फायदा कर रहे हैं। पवन का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी नौकरी के पीछे भाग रही है, जबकि हम ठान लें तो नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं। पवन आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ संदेश दे रहे हैं, सुनिए।
2: मेरा एक जो खुद का अनुभव है मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं भी जॉब करता था, अभी ऑस्ट्रेलिया में जॉब किया, चाइना में जॉब किया। वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि नहीं कहते हैं कि भाई मन नहीं लगता था, जो मातृभूमि में अपना जो एक प्यार होता है ना वो खींच के लाता ही लाता है वापस। तो मेरा जॉब करने के साथ प्रयास था कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जो आफ्टर जॉब मतलब रिटायरमेंट के समय में भी अपना कुछ रोजी रोटी के संसाधन डेवलप हो। तो उसी के सिलसिले में जॉब के साथ मैंने ये डेवलप किया। तो लगभग मेरा 15 साल का ये अनुभव है।
1: कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी लगातार किसानों के हित के लिए काम करते हैं। बात करें एकीकृत कृषि की तो इसे बढ़ावा देने के लिए अधिकारी किसानों को हमेशा जागरूक करते रहते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में रसायन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इस कृषि प्रणाली में मुर्गी पालन के अपशिष्टों को बत्तख और मछली को आहार के रूप में उपयोग दिया जाता है। गोबर का इस्तेमाल खाद के लिए किया जाता है और खेतों में पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा गोमूत्र और नीम के अर्क को खेत में कीटनाशक के रूप में छिड़का जा सकता है। अनाज और इसके भूसे का उपयोग मुर्गी एवं गाय के आहार तथा चावल के भूसे को गाय के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पोल्ट्री की बेडिंग सामग्री का उपयोग खाद में भी किया जा सकता है। तालाब में जलकुंभी की तरह जलीय खरपतवार का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में बेडिंग सामग्री के रूप में किया जा सकता है।
3: आज बढ़ती आबादी को देखते हुए रोजगार की संभावनाएं कम हो चुकी हैं और जो छोटी होती जा रही है, तो ऐसे में हम यही सलाह देना चाहेंगे कि किसान भाई जो एकीकृत कृषि है, एकीकृत कृषि को बढ़ावा दें। इसमें बहुत सारी फसलें हैं, तालाब है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है। इन सबको एक संग्रहित एरिया में, संरक्षित एरिया में, छोटे से एरिया में आप कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से रासायनिक खादों का, उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग खेतीबाड़ी में हो रहा है, इससे हमारी जो जमीन है वो इन रसायनों से के दुष्प्रभाव से दूषित हो रही है, प्रदूषित हो रही है। इससे उत्पन्न होने वाले अनाज दूषित हो रहे हैं जिसको हम भोजन में ले रहे हैं, और इसको लेने से हमारी इम्यूनिटी, जो हमारी शक्ति है, वो क्षीण होती जा रही है। तो अगर हम अपने खेतों में एकीकृत रूप से खेती करें, तो इसमें इंटीग्रेशन के रूप में अगर खेती करें, तो जिन खेतों में हम रसायनों का प्रयोग कर रहे थे वहाँ पर हम अपने जो एकीकृत खेती हमारी है, जहाँ पर कि हम पशुपालन भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, इनके खाद का जो इनका वेस्ट है, इनको सड़ा गला करके अच्छे से खेतों में प्रयोग करेंगे, उस खेतों का जो प्रयोग करेंगे जिस खेत में, उसमें निश्चित ही तौर से जो रासायनिक उर्वरकों की डिमांड है वो कम हो जाएगी, उसमें रोग व्याधियां कम आएंगी और फसल का जो उत्पाद होगा वह बहुत ही अच्छा होगा, रसायन मुक्त होगा।
1: पवन कुमार कुशवाहा एकीकृत प्रणाली को संयमित तरीके से कर रहे हैं और इससे इन्हें काफी फायदा हो रहा है। इन्होंने केचुए के महत्व को समझा और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई। अभी इनके साथ करीब 1000 किसान जुड़े हुए हैं। आसपास के किसान इनके फार्म में बने जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। जैविक खाद की मार्केटिंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी काफी मदद करते हैं। इनकी इस सफलता को देख आसपास के किसान इनसे प्रेरित होकर सलाह भी लेने आते हैं।
0: तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें आपने जाना कि पवन कुमार कुशवाहा ने कैसे सफलता हासिल की। हालांकि वो विदेश में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्वदेश को ही चुना और वो भी वर्मी कंपोस्ट का क्षेत्र। आशा करते हैं कि उनकी सफलता की कहानी से आपको भी जरूर प्रेरणा मिलेगी। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी हम कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए, तो आप हमें ईमेल करें, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sfalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। सफलता की कुछ ऐसे ही प्रेरणादायी कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
4: रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है, और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम, हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े BBA और MBA की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीट इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो BA कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, महात्मा गांधी के लिए स्वच्छता केवल व्यक्तिगत आदत नहीं थी। वे साफ सुथरे शरीर, साफ मन और स्वच्छ वातावरण को एक बेहतर समाज का जरूरी हिस्सा मानते थे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया था। लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़े, आबादी बढ़ी और हमारी खपत बढ़ी, कचरे की मात्रा भी बढ़ती गई। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य कचरे को केवल हटाना नहीं बल्कि उसकी पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 किस तरह कचरे के प्रबंधन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही समझेंगे कि शहरों में वर्षों से जमा कचरे के पहाड़ को हटाने की दिशा में क्या काम हो रहा है और कचरे को किस तरह ऊर्जा, खाद और दूसरे उपयोगी संसाधनों में बदला जा सकता है। श्रोताओं, शहरों में बढ़ती आबादी और बदलती जीवन शैली के साथ कचरे की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन समस्या केवल कचरे की बढ़ती मात्रा की नहीं है। जब कचरे को सही तरीके से अलग, कलेक्ट और प्रोसेस नहीं किया जाता तो इसका असर हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ता है। कचरा खुले में पड़ा रहे या बिना छंटाई के एक जगह जमा होता रहे, इससे हवा और पानी के प्रदूषण के साथ साथ बीमारियों और आग जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ता है। दूसरी ओर कचरे में मौजूद कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकल किया जा सकता है। लेकिन जब अलग अलग तरह का कचरा एक साथ मिल जाता है तो इन चीजों को वापस उपयोग में लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कचरा प्रबंधन की शुरुआत वहीं से जरूरी है जहाँ कचरा पैदा होता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए ये नियम वर्ष 2016 के नियमों की जगह लेते हैं और कचरे की कलेक्शन से लेकर प्रोसेसिंग तथा डिस्पोजल तक पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। आइए अब समझते हैं कि नए नियम इस व्यवस्था में क्या बदलाव लेकर आए हैं।
2: इनका सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कचरे को चार अलग अलग हिस्सों में बांटना। पहला है गीला कचरा। इसमें रसोई का कचरा, फल सब्जियों के छिलके और खाने से जुड़ा दूसरे तरह का जैविक कचरा आता है। इसे खाद बनाने या बायोगैस तैयार करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है सूखा कचरा। इसमें कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच और लकड़ी जैसी चीजें आती हैं। इन्हें अलग करके दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिलिंग के लिए भेजा जा सकता है। तीसरा है सैनिटरी वेस्ट, जैसे इस्तेमाल किए गए डायपर्स और सैनिटरी पैड्स। इसे अलग और सुरक्षित तरीके से रखना जरूरी होगा। चौथा है स्पेशल केयर वेस्ट। इसमें दवाइयाँ, बल्ब, मरकरी वाले उपकरण और पेंट कैंस जैसी चीजें शामिल हैं। इन्हें सामान्य कचरे के साथ मिलाने के बजाय अधिकृत एजेंसियों या तय किए गए केंद्रों तक पहुंचाना होगा। नए नियमों में बड़े स्तर पर कचरा पैदा करने वाले संस्थानों की जिम्मेदारी तय की गई है। जिन संस्थानों का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा है, या जो रोज 40,000 लीटर या उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, या प्रतिदिन कम से कम 100 किलोग्राम कचरा पैदा करते हैं, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर्स माना गया है। इनमें बड़े सरकारी कार्यालय, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और रेसिडेंशियल सोसाइटीज जैसे स्थान शामिल हैं। इन संस्थानों को अपने कचरे के कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी निभानी होगी। जहां संभव हो गीले कचरे को उसी परिसर में प्रोसेस करने पर जोर दिया गया है। नए नियमों में टेक्नोलॉजी को भी महत्वपूर्ण जगह दी गई है। कचरे के पैदा होने से लेकर उसके कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल तक की जानकारी एक सेंट्रल ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ट्रैक की जा सकेगी। वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन होगा। फैसिलिटीज का ऑडिट किया जाएगा और उसकी की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। अगर कोई व्यक्ति या संस्थान नियमों का पालन नहीं करती, गलत जानकारी देती है, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लैंडफिल के मामले में भी सोच बदली गई है। अब लैंडफिल में वही कचरा जाना चाहिए जिसे न रिसाइकल किया जा सकता है, न उससे एनर्जी हासिल की जा सकती है और न ही उसका कोई दूसरा उपयोग संभव है।
1: श्रोताओं, नए नियम आज से व्यवस्था तो सुधार सकते हैं, लेकिन शहरों में पिछले कई दशकों से जमा कचरे का क्या होगा? भारत के कई शहरों में कचरे के बड़े बड़े ढेर आज भी मौजूद हैं। ये केवल पुराने कचरे के ढेर नहीं हैं, इनसे जमीन, हवा और भूजल पर असर पड़ता है। इनमें आग लगने और हानिकारक गैसें निकलने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए कचरे के प्रबंधन की नई व्यवस्था तभी पूरी मानी जाएगी जब हम पुराने डंप साइट्स को भी खत्म करें और नए डंप साइट्स बनने से भी रोकें। इसी सोच के साथ सामने आता है लक्ष्य जीरो डंप साइट। ये सिर्फ सफाई का अभियान नहीं है, इसे ऐसे विकास की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है जिसमें शहर साफ भी हों और कचरे से संसाधन भी तैयार हों।
2: भारत में करीब 2479 लेगेसी डंप साइट्स की पहचान की गई है। इनमें वर्षों से करीब 25 करोड़ मीट्रिक टन कचरा जमा है और ये करीब 15,000 एकड़ जमीन पर फैले हुए हैं। इन पुराने डंप साइट्स को हटाने के लिए नवंबर 2025 में डंप साइट रिडेम्पशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी अभियान का नाम है लक्ष्य जीरो डंप साइट। इसके तहत पुराने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से हटाया जा रहा है। इसे बायो माइनिंग कहा जाता है। सरल शब्दों में समझे तो पुराने कचरे को खोदकर बाहर निकाला जाता है और फिर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। अब तक 60% से अधिक लेगेसी वेस्ट को प्रोसेस किया जा चुका है। जीरो डंप साइट की दिशा में 214 हाई इंपैक्ट डंप साइट्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें देश में बचे हुए लेगेसी वेस्ट का करीब 80% हिस्सा मौजूद है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, डंप साइट हटाना अपने आप में अंतिम हल नहीं है। अगर आज पुराना डंप साइट हटा दिया और कल फिर उसी जगह नया कचरा जमा होने लगा तो समस्या वापस आ जाएगी। इसलिए जीरो डंप साइट की रणनीति दो हिस्सों पर काम करती है, पुराने कचरे को हटाना और नए डंप साइट्स बनने से रोकना। इस रणनीति के तहत शहरों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज, कंपोस्ट प्लांट्स और वेस्ट टू एनर्जी जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। यानी कचरे की यात्रा अब लैंडफिल तक पहुंचने की नहीं बल्कि रिकवरी और रीयूज तक पहुंचने की होनी चाहिए। यही सोच हमें सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ले जाती है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है किसी चीज के इस्तेमाल के बाद उसे सीधे कचरा मानने की बजाय उसमें मौजूद संसाधन को फिर से उपयोग में लाया जाए। ये सोच केवल शहरों के कचरे तक सीमित नहीं है, कृषि में भी हर साल बड़ी मात्रा में वेस्ट पैदा होता है। भारत में हर साल करीब 350 मिलियन टन कृषि कचरा पैदा होने का अनुमान है। इसमें फसल के अवशेष, भूसा, धान की भूसी, पशुओं का गोबर और फूड प्रोसेसिंग से निकलने वाला कचरा शामिल है। अगर इन्हें जला दिया जाए या खुले में छोड़ दिया जाए तो इससे प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बढ़ सकते हैं, लेकिन यही कचरा खाद, बायोगैस, बायोफ्यूल और दूसरे उपयोगी उत्पादों का स्रोत भी बन सकता है। इसी सोच के तहत गोबरधन जैसी पहल पशुओं के गोबर, फसल के अवशेष और फूड वेस्ट से बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करने को बढ़ावा देती है। 14 जनवरी 2026 तक देश के 51% से अधिक जिलों में 979 बायोगैस प्लांट्स काम कर रहे थे। इसी तरह क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के तहत किसानों को फसल के अवशेष जलाने के बजाय उन्हें खेत में मिलाने और खेत की मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया यानी मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करने या दूसरे उपयोगों के लिए बाहर ले जाने में मदद दी जा रही है। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: श्रोताओं, स्वच्छता सरकार, नगर निकायों और उद्योगों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इसकी शुरुआत हम नागरिकों से होती है। हम घर से निकलने वाले कचरे को अलग करते हैं या नहीं, सड़क पर कचरा फेंकते हैं या नहीं, सिंगल यूज चीजों का इस्तेमाल कितना करते हैं और अपने आसपास सफाई बनाए रखते हैं या नहीं, इन छोटे फैसलों का असर पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। स्वच्छ भारत का लक्ष्य केवल साफ सड़कें और साफ शहर नहीं है, ये ऐसी व्यवस्था बनाने का लक्ष्य है जिसमें स्वच्छता हमारी आदत बने और विकास के साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी, आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें।

0: I would now like to call upon Mr. Harsh Arora. He is a knowledge partner and he continues to, you know, help us build our capacities and help us build soft skills. So please, sir, share your views.
1: Thank you, Smita. Thank you, Geetaji. Thank you, Read India, for inviting me for this conference, and congratulations for completing 17 years. So being a leadership coach and trainer, आई थिंक मैं वही स्किल्स यूज करते हुए अगले 5 से 10 मिनट आपसे बात करूंगा. और क्योंकि हम एक थीम के ऊपर बात कर रहे हैं जो है पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उनमें से कुछ एलिमेंट्स के ऊपर मैं बात करने की कोशिश करता हूं. पहला एलिमेंट है ट्रस्ट, राइट? एंड हम बहुत सारे लोग बहुत लूजली इस वर्ड को यूज करते हैं. क्या हम किसी के ऊपर भी पूरी तरह से कभी भी आज तक ट्रस्ट कर पाए? कितने लोगों को लगता है कि आप पूरी तरह से किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं? ओके, वेरी फ्यू, राइट? लेट मी कंप्लीट द स्टेटमेंट नाउ. यूजली हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं फॉर समथिंग. मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूं जब तक आप मेरे पैसे नहीं चुराएंगे. मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूं जब तक आप मेरे ऑफिस में कोई धोखा नहीं करेंगे. मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूं जब तक आप मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट नहीं करेंगे, राइट? हम हर किसी पे ट्रस्ट किसी चीज के लिए करते हैं कि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक मेरा ट्रस्ट आपके ऊपर है. क्या वो ट्रस्ट है या एक सौदेबाजी है? वो एक बाटा सिस्टम है कि अगर आपने ये किया तो ट्रस्ट खत्म. जबकि ट्रस्ट की ट्रू डेफिनेशन क्या है? ट्रस्ट एक गिफ्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं, और वो सिर्फ गिफ्ट तब काम नहीं आता जब आप कुछ गलत नहीं करते. वो काम तब आता है जब आप एक्चुअली कुछ गलत कर देते हैं. सो इंग्लिश में इसकी सेइंग है, ट्रस्ट इज अ गिफ्ट बिस्टाउड ऑन द अदर फुली नोइंग दैट द अदर पर्सन कैन हर्ट. ट्रस्ट एक ऐसा गिफ्ट है जो हम दूसरों को देते हैं ये जानते हुए कि सामने वाला मुझे हर्ट कर सकता है. आपके पास हमेशा चॉइस है कि जब आपसे कोई गलत करे, झूठ बोले, धोखा दे, आप उसके ऊपर ट्रस्ट मत करिए. लेकिन अगर आपने चूज किया है कि आप उसे दोबारा ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो ट्रस्ट फुली होना चाहिए. आई थिंक दैट्स द फाउंडेशन ऑफ एनी पार्टनरशिप. यू नो, जब हम सब किसी जॉब में आते हैं, नौकरी में आते हैं, तो आपको ना कुछ 2-3 महीने की प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है, राइट? तो ऐसे ही जब कोई हमारा ट्रस्ट तोड़ता है ना, तो हम उस इंसान को यूजली प्रोबेशन पीरियड पे डाल देते हैं. हम एक सीसीटीवी बनकर उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं. अरे देखो, ये कुछ कर तो नहीं रहा, अरे गलत तो नहीं कर रहा. हम उसे हमेशा शक की नजर से देखते हैं फॉर सम टाइम. दैट्स नॉट ट्रस्ट. जब भी आप किसी पर ट्रस्ट करें, चाहे गलत करने के बाद या पहले, वो 100% अनकंडीशनल करें. एंड माय इनविटेशन टू यू इज ट्राई एंड स्टार्ट लिविंग लाइफ विद योर पार्टनर्स, वेंडर्स, विद योर एम्प्लॉयज, विद योर टीम मेंबर्स एंड इन योर फैमिलीज एंड सी हाउ लाइफ इज. सेकेंड, वी ऑल हैव हर्ड द वर्ड फॉर ऑनेस्टी. सबको पता है ऑनेस्टी क्या होती है? क्या है ऑनेस्टी? ईमानदारी. और ऑनेस्टी, बिल्कुल नेकेड ट्रुथ, राइट? बिल्कुल सच. एक और वर्ड है जिसका नाम है इंटेग्रिटी. कौन बताएगा मुझे इसका मतलब? इंटेग्रिटी, व्हाट इज इंटेग्रिटी? जी,
2: विश्वास.
1: ओके,
2: सॉरी,
1: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ड पॉलिसी. ओके, एनीथिंग एल्स? व्हाट इज इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी इज कि जो मैं इस समय बिल्कुल सही महसूस कर रहा हूं अपने बारे में. इसको एक उदाहरण की तरह समझते हैं, राइट? स्मिता, कैन आई टेक यू एज एन एग्जांपल? ओके, डिंपल आपको भी ठीक है, एंड आपको ठीक है. सो आपकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है और वो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है कैंसर या किसी भी एक डिसीज के लिए, ठीक है? और स्मिता जो है वो आपके मदर की बेस्ट फ्रेंड है, तो आपकी भी बेस्ट फ्रेंड है और आपकी मदर को बहुत अफेक्शनेट है, तो वो हॉस्पिटल आती है देखने के लिए। आप उन्हें बोलते हैं स्मिता मम्मी को ना बताना नहीं कि क्या हुआ, ठीक है, उनको डर लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, जितने दिन है उनको खुशी से जीने, तो प्लीज बताना मत उनको कैंसर हुआ है या उनके पास कुछ ही दिन है, ठीक है। तो स्मिता आप जब हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो मदर पूछती है कि स्मिता मेरी बेटी तो मुझे बता नहीं रही कि क्या हुआ, तू बता मुझे क्या हुआ है, क्या कहेंगे आप, क्या करेंगे आप?
2: नहीं बताएंगे,
1: राइट। सो सबकी लगभग यही सोच है। कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में जाकर मदर को सच नहीं बताएंगे? ऑलमोस्ट सभी, राइट। जब आप उस हॉस्पिटल के कमरे से बाहर आ रहे हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, राइट। कुछ लोग गिल्टी भी महसूस करेंगे ऑब्वियसली, पर जितने भी लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं क्या आप ऑनेस्ट थे? यू आर नॉट ऑनेस्ट, आप ईमानदार नहीं थे वहां पर, लेकिन आप अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पर उस मोमेंट पे आपको वो सही लगा। दिस इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का सिर्फ एक ही पैरामीटर है, जब वो इंसिडेंट में कोई भी इवेंट होता है आपकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस, वो ट्रिगर करती है आपको, आपकी चॉइस है कि आप उसको सुनिए या फिर ना सुनिए। अगर आप उसे सुनकर काम करते हैं तो यूजली जब आप वो इवेंट ओवर हो जाता है तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और अगर आप नहीं सुनते हैं तो आपको अंदर से गिल्ट महसूस होता है, एक लॉस ऑफ वेलबींग महसूस होता है। बस वही एक पैरामीटर है ये जानने के लिए कि आप इंटेग्रिटी में हैं या नहीं है। और किसी भी पार्टनरशिप में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप सब लोग रिमोटली काम करते हैं, आप इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट शहरों में डिफरेंट जगहों के सेंटर चलाते हैं और हिट इंडिया का ऑफिस गुड़गांव में है, वो 24 घंटे आपके ऊपर नजर नहीं रख सकते। मैं अभी कुछ महीने पहले एक रिटेल चेन जो मेरी क्लाइंट है जिनके साथ मैं ट्रेनिंग्स करता हूं, उन दो मैं उस एडमिन रूम में पहुंचा एक ब्रेक में, और वहां दो लोग आपस में बात कर रहे थे, और उस पर्सन के पास, एक पर्सन के पास उसी टाइम पे स्टेशनरी का स्टॉक आया था उस महीने का, तो जो दूसरा पर्सन था इसे तेरे बच्चे के एग्जाम होने वाले हैं इसी में से कुछ निकाल ले बाहर मार्केट में क्यों खरीदोगे, तो इसे नहीं नहीं गलत है ये, एंड दिस गाय सेड कौन देख रहा है, इसे मुझे तो पता है ना गलत है। आपको पता होता है कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और अगर आप किसी भी पार्टनरशिप को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के स्पेस को अगर आप समझ लेंगे तो वो पार्टनरशिप हमेशा लंबी चलेगी। एट सम मोमेंट्स यू कैन बी डिसऑनेस्ट बट एंश्योर दैट यू आर इन इंटेग्रिटी, आप हमेशा उस इंटेग्रिटी में रहें। मेक सेंस? एंड थर्ड, एंड इसके बाद आई लैंडेड, the most important parameter in any partnership is listening. हमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंग्स में सुना होगा कि there is a difference between hearing and listening. Hearing क्या होती है? What is hearing? Hearing भी सुनना होती है, तो what is the difference between hearing and listening?
3: When you don't give importance, that is hearing, and when you give the importance, it is
1: listening. Absolutely sir, thank you very much. Hearing means जब हम सब कुछ सुन रहे होते हैं, बाहर क्या साउंड आ रहा है, आसपास कोई शोर मच रहा है, हम सब कुछ सुन रहे हैं, वो हियरिंग है। और लिसनिंग है जब हम सारे साउंड्स को इग्नोर कर देते हैं और हम सिर्फ एक साउंड पे फोकस करते हैं, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, वो है लिसनिंग। इन एनी पार्टनरशिप, इन एनी रिलेशनशिप, क्या आप अपने कोवर्कर को, क्या आप अपने पियोन को भी, क्या आप अपने बॉस को भी ट्रूली सुन रहे हैं? क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आप समझते हैं, और वो एक थर्ड लेवल है पार्टनरशिप का, बिकॉज जब आप पूरी तरह से समझते हैं तो काम को गलत करने की गुंजाइश कम रहती है। लेकिन अगर आप इसको एक और लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट स्टेप कोशिश करिए। व्हाट इफ आई आस्क यू 17x8 17x8 कितने लोग बता पाएंगे बिना सोचे? आपको याद करना पड़ रहा है, राइट। कितने लोगों को साइकिल चलानी आती है, राइट। लास्ट टाइम कितने, पिछले ऑलमोस्ट एक साल में साइकिल कितने लोगों ने चलाई है? बहुत कम लोगों ने, राइट? लेकिन अगर आप में से सबको यह साइकिल दे दी जाए, आप बिना सोचे समझे उसका पैडल लेके आप उसे चलाना शुरू कर देंगे, राइट? बट क्या कोई यहां आकर मुझे ये समझा सकता है कि वो जो साइकिल का बैलेंस है उसका फॉर्मूला क्या है? कोई नहीं बता पाएगा कौन सी फिजिक्स केमिस्ट्री का फॉर्मूला लगता है, हमें नहीं पता, बट समवेयर किसी ना किसी तरह से वी गॉट द बैलेंस। जब भी हम जिंदगी में कोई भी चीज करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, एंड वी ट्राई एंड गेट थिंग्स, वी गेट इट फॉर लाइफ। पर जब हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें उस हर बार उसको याद करना पड़ता है। सो जब भी आप कोई पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं, ट्राई एंड गेट थिंग्स एंड यू गेट इट फॉर लाइफ, एंड दैट पार्टनरशिप विल बी फॉर इटर्निटी। एंड जब आप उस तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई भी लीडरशिप हो, कोई भी पार्टनरशिप हो, किसी भी तरह के वर्क एनवायरमेंट में हो, यू विल ऑलवेज एक्सेल। थैंक यू वेरी मच।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता से तय होता है। ऐसे में स्कूल सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की जगह नहीं बल्कि उनके ज्ञान, कौशल, सोच और व्यक्तित्व के विकास की आधारशिला होते हैं। इसी दृष्टिकोण को स्कूल स्तर पर लागू करने की दिशा में 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को आदर्श और उत्कृष्ट स्कूलों के रूप में विकसित करना है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि पीएम श्री योजना की जरूरत क्यों महसूस हुई, इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में कैसे विकसित किया जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को यहाँ किस तरह लागू किया जा रहा है और इन स्कूलों से आसपास के दूसरे स्कूलों में भी बदलाव लाने की क्या उम्मीद है। श्रोताओं, भारत में स्कूली शिक्षा का दायरा बहुत बड़ा है। देश में 14,71,000 से अधिक स्कूल हैं, जहां 24,69,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इतने बड़े शिक्षा तंत्र में केवल कुछ स्कूलों की सुविधाएं बेहतर करना पर्याप्त नहीं है। जरूरत ऐसे संस्थानों की है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ नई शिक्षण पद्धतियों, तकनीक, समावेशिता और संवहनीय विकास का उदाहरण भी पेश कर सकें। पीएम श्री योजना इसी सोच को स्कूल स्तर पर लागू करने की पहल है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि पीएम श्री स्कूलों की परिकल्पना क्या है और इस योजना के तहत अब तक किस तरह की प्रगति हुई है।
2: श्रोताओं, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। योजना की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके उन्हें ऐसे आदर्श संस्थानों के रूप में विकसित करना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने का उदाहरण पेश करें। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 14,500 से अधिक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कुल 27,360 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है। योजना के तहत स्कूलों में सिर्फ भवन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा बल्कि सीखने का सुरक्षित, स्वागतपूर्ण और उत्साह बढ़ाने वाला वातावरण तैयार करने पर इस योजना का जोर है। जुलाई 2026 तक 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,092 स्कूलों का चयन पीएम श्री स्कूलों के तौर पर किया जा चुका है। इनमें केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के अंतर्गत आने वाले स्कूल भी शामिल हैं। पीएम श्री स्कूलों को केवल अपने विद्यार्थियों तक सीमित संस्थान नहीं माना गया है। इन्हें अपने क्षेत्र के लिए मॉडल के तौर पर विकसित किया जा रहा है ताकि ये आसपास के स्कूलों के साथ अपने अनुभव और बेहतर तौर तरीके साझा कर सकें। मार्गदर्शन, सहयोग और क्लस्टरिंग के माध्यम से इन स्कूलों से व्यापक स्तर पर बदलाव लाने की परिकल्पना की गई है। यानी एक स्कूल में विकसित होने वाली अच्छी शिक्षण पद्धति और व्यवस्थाएं धीरे धीरे आसपास के दूसरे स्कूलों तक भी पहुँचें। इन स्कूलों में शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तक और परीक्षा तक सीमित रखने के बजाय सीखने के अधिक व्यापक अनुभव पर जोर दिया जाता है। अनुभवात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के साथ शुरुआती वर्षों में खेल और खिलौनों के माध्यम से सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। बस्ता मुक्त दिनों, स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप, स्थानीय कला और शिल्प के अध्ययन तथा पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी गतिविधियों को भी इसके अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाना है। पीएम श्री स्कूलों में गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समावेशी शिक्षा भी है। अलग अलग सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ शुरुआती कक्षाओं में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह पीएम श्री स्कूलों की अवधारणा में शिक्षा को स्थानीय आवश्यकताओं और भाषाई विविधता से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है।
1: श्रोताओं, पीएम श्री स्कूलों की अवधारणा का अगला महत्वपूर्ण पक्ष है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को स्कूल के रोजमर्रा के वातावरण में उतारना। इसके लिए शिक्षा के साथ तकनीक, कौशल, खेल, कला, जीवन कौशल और शिक्षक प्रशिक्षण जैसे पहलुओं को भी स्कूल विकास का हिस्सा बनाया गया है। आइए अब जानते हैं कि पीएम श्री स्कूलों में इन क्षेत्रों पर किस तरह काम किया जा रहा है और स्कूलों का चयन किन गुणवत्ता मानकों के आधार पर किया जाता है।
3: श्रोताओं, पीएम श्री योजना के केंद्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दृष्टिकोण है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ साथ 21वीं सदी के जरूरी कौशल विकसित करने पर जोर दिया जाता है। सीखने का वातावरण ऐसा बनाने का प्रयास है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लें और उन्हें सुरक्षित, समावेशी और सहयोगी माहौल मिले। तकनीक भी इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम श्री स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT सुविधाओं, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और स्टेम जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता और उनके आदान प्रदान को आसान बनाते हैं। इससे डिजिटल साक्षरता के साथ साथ तकनीकी दक्षता, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान जैसे कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा का दायरा खेल, कला और जीवन कौशल तक भी बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता, सामाजिक और भावनात्मक कौशल तथा संवाद की क्षमता को विकसित करना है। यानी विद्यार्थी केवल परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार न हो बल्कि भविष्य की शैक्षिक, पेशेवर और सामाजिक चुनौतियों के लिए भी सक्षम बने। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक और स्कूल नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण है। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के व्यावसायिक विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों यानी DIET के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रधानाचार्यों को शैक्षिक नेतृत्व, स्कूल प्रबंधन और योग्यता आधारित शिक्षण योजना से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षकों को समग्र प्रगति कार्ड, स्कूल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण तथा अन्य क्षेत्रों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। श्रोताओं, पीएम श्री स्कूलों की एक और विशेषता है इनका चयन गुणवत्ता मानकों के आधार पर किया जाना। इसके लिए चैलेंज मोड अपनाया गया है। चयन की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहले चरण में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU हस्ताक्षर करते हैं। दूसरे चरण में UDISE+ के आंकड़ों और निर्धारित मानकों के आधार पर पात्र विद्यालयों की पहचान की जाती है। तीसरे चरण में पात्र विद्यालय चैलेंज आधारित चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं और निर्धारित मानकों को पूरा करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय समिति के अधिकारी निरीक्षण के माध्यम से शर्तों के पूरा होने की पुष्टि करते हैं और चयनित विद्यालयों की सूची की सिफारिश शिक्षा मंत्रालय से की जाती है। अंतिम चयन के लिए शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। चयन के लिए स्कूलों को कुछ न्यूनतम मानक पूरे करने होते हैं। इनमें पक्की इमारत, सुरक्षित और सुगम आवागमन, सुरक्षा उपाय, अलग अलग शौचालय, पीने का पानी, हाथ धोने की सुविधा और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा पुस्तकालय या खेल सुविधाएं, पर्याप्त नामांकन और शिक्षकों के लिए पहचान पत्र जैसी व्यवस्थाएं भी चयन के मानकों का हिस्सा हैं। चैलेंज विधि के तहत शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को न्यूनतम 70% और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को न्यूनतम 60% अंक हासिल करना जरूरी है। इस मूल्यांकन में अवसंरचना के साथ साथ सीखने के परिणाम, शिक्षण शास्त्र, पीएम पोषण, व्यावसायिक शिक्षा, हरित पहल और विभिन्न हितधारकों की प्रतिबद्धता जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है।
1: श्रोताओं, पीएम श्री योजना के माध्यम से स्कूलों को हरित बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। स्कूलों की गुणवत्ता के एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में पर्यावरण के अनुकूल तौर तरीकों को बढ़ावा दिया जाता है। इसी तरह स्थानीय उद्यमिता, इकोसिस्टम से जुड़ाव और 21वीं सदी के कौशलों पर जोर विद्यार्थियों को भविष्य की दुनिया के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम श्री योजना केवल कुछ स्कूलों को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि ऐसे मॉडल विकसित करने की कोशिश है जिन्हें दूसरे स्कूल भी अपना सकें। आखिरकार किसी शिक्षा व्यवस्था की सफलता केवल स्कूलों की संख्या से नहीं बल्कि इस बात से तय होती है कि वहाँ पढ़ने वाला बच्चा कितना सीखता है, कितना सोचता है, अपने ज्ञान का कितना इस्तेमाल कर पाता है और भविष्य की चुनौतियों के लिए कितना तैयार होता है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अरुण दीप सिंह। नमस्कार।
4: है।

0: This bit is all about how our partnership has been, how this community concept is possible on ground with a strong partnership, strong community engagement, and how we are contributing to the 17th SDG, which is all about partnership. So I would like to start with Thankfulness Sirji, aapke saath. So would you, you know, share your views?
1: Namaskar. Jai Suraksha. मैं राम भागीरथी भाई दिगंबर दहीफले आई केम फ्रॉम महाराष्ट्र मुंबई. ये रीड इंडिया में मैं कैसे ज्वाइन हुआ उसके बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं. व्हेन आई वाज वर्किंग इन औरंगाबाद तो एक रीड इंडिया ने एंड परकिंस इंडिया जो औरंगाबाद में काम करती है उन्होंने एक लड़कियों के स्कूल में एक टॉयलेट बिल्टअप किया था और उसका इनॉग्रेशन के लिए मुझे बुलाया था. और उसके बाद में उन्होंने एक वहां एक नजदीक सेंटर रीड इंडिया चलाती है उसका सेंटर देखने के लिए मुझे लेके गए. सेंटर देखने के बाद मुझे अच्छा लगा कि मैंने फिर वो सेंटर के बारे में पूरा समझ लिया है वो मतलब उसको कौन चलाता है पार्टिसिपेंट कौन है उसके लाभार्थी कौन है और कंसेप्ट क्या है. तो वहां दो चार कोर्सेस मतलब अच्छे से चल रहे थे. वहां के जो सेंटर कोऑर्डिनेटर थे टीचर थे उन्होंने सारी चीजें दिखाई समझाई. छोटे बच्चों के लिए था लाइब्रेरी देन ड्रेस मेकिंग और कुछ दो चार कोर्सेस थे. तो उसके बाद में मैंने मेरे बड़े भाई से बात की उनको भी बुलाया वो सेंटर देखने को. फिर एक भाई मेरा प्रोफेसर है उसको भी बुलाया और उनको दिखाया. और बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि ऐसे कुछ अपने एरिया के लिए अपन कर सकते तो लेकिन क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा था. लेकिन सेंटर देखने के बाद लगा कि अपन कुछ मतलब कम्युनिटी के लिए अपने एरिया के लिए अपने गांव के लिए कर सकते हैं. जब बात कहे तो परकिंस वाले जो मैनेजमेंट के स्टाफ थे उन्होंने बताया कि सर हमारा जो ये है डिस्टेंस वो लिमिटेड है मतलब 15 किलोमीटर के दायरे में ही हम कुछ कर सकते हैं. फिर रीड का जो स्टाफ था उनसे भी बात किया तो बोला आपकी बात हम हमारी गीता मैम उसके बारे में सोचती है और आप जब औरंगाबाद में मैडम आएंगे तो आप उनसे हम आपको आपको उनको मिलाते हैं. तो बीच में फिर मैम आ गई हम भी मिले मैम को भी एक दो प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया और सिर्फ मैम को बताया कि मैम ऐसा ऐसा है हमारा गाँव औरंगाबाद से 300 किलोमीटर है और वहां जरूरत है. मैम ने उस समय सिर्फ सुन लिया मैं क्या कह रहा हूं कुछ भी बोली नहीं. तो मैम आई हमारा गांव देखा स्कूल देखा गांव के लोगों से मिली और बहुत अच्छा लगा. हमारे गांव के लोगों ने तो मैम को बोला गांव की बेटी आई है और तब से मैम 3-4 बार आ गई है. उसके बाद में बीच में कोविड आया और कोविड आने के बाद तो 2-3 साल अपने को कुछ मतलब सब दुनिया ही ठप हो गई थी. लेकिन कोविड की जैसी जो इंटेंसिटी थी वेव थी वो कम हो रही थी. तब एक दिन सुबह मैम ने मेरे को याद किया फोन पे और बोले सर आपने बोला था कि आपको ऐसा करना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने पूछा मैम क्या करना है तो मैम बोले आप सिर्फ जगह देखो बाकी मैं देख लेती हूँ. तो फिर जगह मेरे पास जो मतलब थी थोड़ी अनडेवलप थी तो मैम से समझ लिया क्या क्या करना है और जो औरंगाबाद का रीड का स्टाफ था मैम ने उन्होंने उनको काम पे लगाया और एक दो बार मेरे साथ भेजा और जो भी जगह थी उसको हमने डेवलप किया अच्छे से जो भी फैसिलिटी अपने को लगती है. और वो रेडी होने के बाद मैम ने पूरा जो बेसिक कोर्स थे तो उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भेज दिया और स्टाफ को भी मतलब लोकल स्टाफ को ही हमने मैम के गाइडेंस में ये तय कर दिया, मतलब थोड़ा डेवलप किया। और अभी शिवरात्रि को 2 साल कंप्लीट हो गए हमारे सेंटर को, और वहां पर अभी लगभग 7 कोर्सेज चलते हैं। मतलब आपको बता दो कि उसमें ड्रेस मेकिंग है, फिर जो ब्यूटी पार्लर बोलते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी है, उसके बाद छोटे बच्चों के लिए है, मसाला मेकिंग है, फिर जो हॉस्पिटैलिटी के लिए नर्स असिस्टेंट है, ऐसे 6 से 7 कोर्सेज चलते हैं। अभी जो लोग वहां पर मतलब जो स्किल टू सक्सीड, मतलब जिन्होंने स्किल सीखा है, दे आर डिमांडिंग, अभी हमको हमारे हाथ को काम दो या हमें कोई एम्प्लॉयमेंट दे दो। तो जब मैम अभी आई थी बीच में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उस समय भी वो लोग मैम को मिले, और मैम ने अभी ये अगला शब्द दिया है हमें कि तुम जगह डेवलप करो, हम कुछ ना कुछ मदद करते हैं, और जो मतलब क्या बोलते हैं स्टार्टअप, अभी स्टार्टअप करने जा रहे हैं हम लोग, तो हो सकता है अगले आने वाले साल में हमारे भी सेंटर से कोई प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले करने की मैं मतलब कमिटमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो थैंक यू गीता मैम एंड ऑल टीम फ्रॉम द रीड इंडिया, क्योंकि मेरा जो गांव है जो एकदम डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर है, मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर लगती है और एकदम एंड पे है, तो थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से या डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए वो नहीं है, सिर्फ लोग खेती है, बाकी कोई इंडस्ट्री नहीं है आजू बाजू में, या जो भी मतलब रोजगार रहता है उतना नहीं है, लोगों को आना है तो बाहर आना पड़ता है, मुंबई पुणे या औरंगाबाद जैसे सिटियों में। तो रीड इंडिया के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, अभी स्किल तो हमने शुरू किया है, आगे चल के स्टार्टअप करके अभी बहुत मतलब कुछ चंद दिनों में हम मसाला मेकिंग एंड टेलरिंग का ये कर

सम्मानित भी किया और दो शब्द बोलने का अवसर भी दिया। और इतने सारे मतलब ऑल ओवर इंडिया से जो अपने पार्टनर्स है, जो पार्टिसिपेंट है, जो स्टेक होल्डर्स है, उनसे मिलाया और बहुत अच्छा लगा कि और भी मतलब क्या क्या कर सकते हैं। ये दिन भर सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सिर्फ स्किल से मतलब मैंने बहुत सारे चीजें मैडम से सुनी थी, लेकिन आज वो हाँ मतलब सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे मतलब रीड इंडिया सिर्फ दो चार सेक्टर में ही नहीं है, लाइफ बनाने में बहुत मतलब जैसे खेती से निगड़ित है या एजुकेशन से निगड़ित है या जैसे हनी बीज है या और भी चीजें है उसमें मतलब अपन ये कर सकते हैं। तो मैं भी इसमें से बहुत सारा लेके जाके वो लोगों को पास ऑन करूंगा। और आपको सर शब्द देता हूं कि अगले साल हमारा एक दो प्रोडक्ट तो यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: कार्यक्रम सबला सुनने वाले सभी देव निवासियों को अलका की ओर से ढेर सारा प्यार एवं नमस्कार।
1: सभी सुनने वाले श्रोतागण को प्रीति की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
0: प्रीति, आज हम अपने श्रोताओं को किस विषय पर जानकारी दे रहे हैं?
1: अलका, आज हम अपने श्रोताओं को किशोरियों स्वास्थ्य और सफाई पर जानकारी देंगे।
0: हाँ तो प्रीति, आज के समय में अगर हम स्वच्छता और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे।
1: हाँ हाँ अलका, हम महिलाओं को तो अपने स्वास्थ्य एवं सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
0: तो दोस्तों, अपनी स्वास्थ्य और सफाई को लेकर लोग कितना जागरूक हैं, ये जानने की हमने बातें की देव भवानीपुर की लोगों से।
1: आइए सुनते हैं लोगों की राय।
2: नमस्कार, मैं मुन्नी बिहार से, औरंगाबाद से। मैं नारियों को आजकल तो जानते हैं कि मतलब कोई भी जिला में नारियों को ही सम्मान और मान मिलना चाहिए और नारियों को जागरूकता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल नारी अगर जागरूकता नहीं रहेंगी तो अपने बाल बच्चा को भविष्य को भी मतलब बढ़ावा नहीं दे सकती हैं। जिस घर में नारी अगर स्वस्थ नहीं है उनके बाल बच्चा भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगी।
3: मेरा नाम प्रियंका है, मैं यहाँ रीड इंडिया NMEW की तरफ से ब्यूटिशियन सिखाने का काम करती हूँ। नारियों को साफ सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि इस आज के जमाने में एक नारी है जो साफ सफाई में आगे बढ़ सकती है। और नारियों को खाना बनाते वक्त ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो खाना बनाती हैं तो सबसे पहले हाथ और पैर धो लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई काम करें, और बर्तन साफ होने चाहिए।
4: मेरा नाम किरण कुमारी है।

0: मैं रेव ब्लॉक पे रहती हूँ। सबसे पहले महिला लोग को साफ सफाई रहना चाहिए, हाथ धोना चाहिए और नहाना चाहिए, और उसके बाद साफ सुथरा होकर के खाना बनाना चाहिए, और खाना बनाते समय सब चीज का ध्यान रखना चाहिए, और खाना बनाने के बाद उसको खाना को ढक कर रखना चाहिए। जब भी जाए तो खाना पहले निकाले, हाथ साफ कर ले, उसके बाद खाना निकाले, खाना निकाल के फिर उसको बर्तन में, खाना बर्तन में से जो खाना निकाल रहे हैं वो बर्तन साफ होना चाहिए, और उसके बाद बर्तन में से खाना निकाल के सबको खिला करके फिर बर्तन को वहाँ पर साफ करके रख देना चाहिए ताकि मच्छी न लगे।
1: मेरा नाम है गीता कुमारी, ग्राम पोस्ट नगर थाना मज लगे, और अपना साफ सफाई के बारे में कुछ बता रही हूँ। किचन में अपना साफ सफाई रहना चाहिए और रखना चाहिए, ठीक है, और साफ से बर्तन ये तब धोना चाहिए, और हाथ अपना जब भी खाना खाने बैठे तब अपना साबुन से हाथ साफ से धो लेना चाहिए, और जो पानी निकलता है नली को जो पानी है वो अपना किचन गार्डन में ही उसका इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, ठीक है, उससे साग सब्जियां जो भी कुछ है वो निकलता है, वो घर में अपना प्रयोग होता है।
2: हाँ तो दोस्तों, आपने सुना है लोगों की क्या राय है।
3: हमें खुशी है कि देव भवानीपुर के लोग स्वास्थ्य एवं सफाई को लेकर बहुत जागरूक हैं।
2: श्रोताओं, किशोरियों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर साफ सफाई का क्या प्रभाव है,
3: ये जानने के लिए हमने बात की है आशा दीदी अंजू से, जिनसे बात कर रही हैं हमारी सहयोगी सविता जी।
4: मैं सविता के तरफ से सभी सुनने वाले दोस्तों को नमस्कार। सविता, इस सबला कार्यक्रम में आशा दीदी को स्वागत है।
5: धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों को प्यार भरा नमस्कार।
4: अरे आशा दीदी, मैं तो किशोरियों और महिलाओं के बारे में पूछ रहा हूँ, और कैसे स्वस्थ रखेंगे।
5: ठीक है सविता दीदी, मैं साफ सफाई के बारे में बताती हूँ। सविता दीदी, आप घर सफाई कैसे करेंगी? अपने घरों के कूड़ा कचरा को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसे कूड़ादान में डालना चाहिए ताकि बीमारी ना फैले।
4: अरे अंजू दीदी, आप शरीर स्वस्थ कैसे रखेंगे?
5: जी सविता दीदी, गंदा कपड़ा को यूज नहीं करना चाहिए, और प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। किशोरियों एवं महिलाओं को साग और हरी सब्जियों को उपयोग करना चाहिए।
4: अरे अंजू दीदी, आप कल के पास गड्ढा है तो आप उसे क्या करेंगी?
5: जी सविता दीदी, सबसे पहले गड्ढा को बंद करूंगी, अगर गड्ढा को बंद नहीं करूंगी तो गड्ढा का कीटाणु चापाकल में जाएगा, हम लोग पानी यूज करूंगी तो उसे बीमारी फैलेगा।
4: अरे अंजू दीदी, आप पानी का यूज कैसे करेंगे?
5: अरे सविता दीदी, हम सभी लोगों को बताती हूँ कि पानी को ढक कर रखना चाहिए, उसमें उंगली का उपयोग न करें, इस पानी का स्वच्छ रहेगा।
4: अरे अंजू दीदी, आप खाना खाने के पहले क्या करेंगी?
5: जी सविता दीदी, पहले हम साबुन लेंगे और 6 स्टेप से हाथों को साफ करूंगी, अच्छे ढंगों से साफ करूंगी।
4: अरे आशा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबला, जो आप तक पहुंचा रहे हैं सामुदायिक रेडियो भवानीपुर के साथी।
3: श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आशा दीदी अंजू की सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी।
2: दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत,
3: जिसे आप तक पहुंचा रही हैं हम सब साथी।

0: दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो आइए कार्यक्रम के अंत में एक सुनाते हैं साक्षरता गीत।
1: शिक्षा के दीपक जलाई बिजा हो जा।

0: I would like to now invite Sonal Bate, who's been, you know, part of this journey from the very beginning when we started, when he just started this journey, and this started with Geechkar, where she said that, you know, we can do something with weaving and spinning, which was difficult to you know, dream at that time, but she had that dream, and that dream has led us to this day where we are celebrating, you know, this event. So Sonal, please share your experiences.
1: वेलकम सबको, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इतना बड़ा मुहिम उठा रखा है, पढ़ाई का, स्किलिंग का, ग्रीन इकोनॉमी का, इतने सारे लेवल्स पे इतना सारा काम एक एकदम रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज में जाके रीड कर रही हैं और आप सब मिलके उनके साथ में कर रहे हैं. आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट रीड इंडिया टीम फॉर टेकिंग अप दिस ह्यूमंगस टास्क ऑफ गोइंग डीपेस्ट एंड डीपेस्ट इन टू द विलेजेस and implementing all of this. Smita had very rightly mentioned that it was a dream. और ये dream मेरा कहाँ से आया और क्यों ये important है? हम green economy की जो बात कर रहे हैं, green skilling की जो बात कर रहे हैं, इसकी importance क्या है? ये थोड़ा सा मैं आपको share करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए, जो आपको पता चलेगा इसकी importance क्या है. एक छोटी सी exercise करते हैं हम. If you can just hold your breath for 10 seconds and you can start the time now. And I'll count back. Please hold your breath. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सांस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे लाइफ में. बिना सांस के कोई जीवन नहीं है. तो मेरा काम टेक्सटाइल्स के अंदर काम हुआ 20 साल पहले, जब मैंने देखा कि बहुत सारे केमिकल्स पानी में जा रहे थे. और तब मैंने थोड़ा रिसर्च स्टार्ट किया तो पता चला कि सिर्फ 100 साल पहले ये सारे केमिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं. इसके पहले इंडिया में हजारों साल से सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके से काम होता था. सिर्फ सिर्फ हाथ से काम बनता था, सिर्फ हाथ से ही कपड़ा बनता था, सिर्फ नेचुरल कलर जैसे हल्दी है, अनार के छिलके हैं, जिसके अंदर दवाई का रूप है, उसी से ही होता था. बच्चों को हल्दी के कपड़े से लपेटा जाता था ताकि उनको वो एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिले. हजारों साल तक हमारे पूर्वजों के पास में इतनी ज्यादा नॉलेज थी इस चीज की, जो हमारे सामने आती ही नहीं है, वो हमें पता ही नहीं चलती है वो चीज. और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होता है? हमारी धरती को होता है. जो बनाता है उसको होता है और जो पहनता है उसको भी होता है. हर एक जन को इसकी इफेक्ट होती है. एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो एक टी शर्ट पे 2000 लीटर पीने का पानी बर्बाद होता है. 2000 लीटर्स ऑफ वाटर गेट्स डिस्ट्रॉयड इन जस्ट वन टी शर्ट फ्रॉम लैंड. जब से वो उगाया जाता है और जब तक कि वो हमारे हाथ में आता है, तब तक 2000 लीटर पीने का पानी, अगर आप एक मैथ करें तो हर दिन 10 लीटर से ज्यादा पीने का पानी हमें नहीं चाहिए होता है, खाना पीना हर तरीके से. अगर उसका आप रिविजन करें तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा कपड़ा इस चीज के अंदर बर्बाद किया जाता है. तो यही सपना था जो मैं गीता से मिली थी. दसरा में हमने एक सोशल लीडरशिप प्रोग्राम किया था और उसमें मेरी और गीता की मुलाकात हुई थी. हमने एक साल का हार्वर्ड का प्रोग्राम किया था उसके अंदर, और उसमें मैंने शेयर किया था ये विजन गीता के साथ में, क्योंकि मेरा काम ही इसी अंदर था. और मैं चाहती थी इस चीज को रिवाइज करना. आई वॉज ऑल्सो रीडिंग गांधी जी की, उनकी बायोग्राफी पे मैं पढ़ रही थी, और गांधी जी ने इस चीज को रिकग्नाइज किया कि अगर हर गांव में ये काम हो रहा होगा तो हमारा कोई इंसान भूखा नहीं जाएगा और कोई भी इंसान बीमार नहीं पड़ेगा. अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारी लैंड जिस तरह से रो रही है, वही उसी तरह से हमारा शरीर भी रो रहा है. अगर आप नोटिस करेंगे तो हम हर एक जन को जानता है जिसको कैंसर हुआ है आज की डेट में. ये 20 साल पहले नहीं था, ये 100 साल पहले भी नहीं था, ये आज है. हर एक जन को एलर्जीज की प्रॉब्लम होती है. हर एक जन जानता है कि किसी को एलर्जीज की प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिस्ट्रप्शन है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज है. रिप्रोडक्टिव इश्यूज 30-40 साल पहले सुनने में ही नहीं आती थी कि रिप्रोडक्टिव इश्यूज है. कि बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, बट अब ये हो रहा है। जब हमारी धरती नहीं उपज दे पा रही है, हमारा शरीर भी नहीं उपज कर पा रहा है, तो ये चीज की अंडरस्टैंडिंग गांधी जी को बहुत डीप में थी और उन्होंने ये चीज कहा। तब से मुझे ये सपना था कि हम किस तरह से गांव गांव में हैंड स्पिनिंग को, पेटी चरखा को या ऑर्गेनिक कॉटन को किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं ताकि गांव गांव में इस चीज को उगाया भी जाए, ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाए। तब मैंने गीता जी से ये चीज शेयर करी थी और हमारी डिस्कशन हुई थी इस चीज के बारे में। शी सेड कि अलाइन किया उन्होंने भी मेरे साथ ये विजन देखा, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू गीता टू बी एबल टू सी दैट विजन एंड टू हैव दैट विजन फॉर योर कम्युनिटीज। और इस चीज में उन्होंने जब मुझे इनवाइट किया तब हमने इनवाइट किया और भी मुझे हर चीज का नॉलेज नहीं था, तो हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जिन्होंने हमें हैंड स्पिनिंग सिखाई। माधव जी को हमने कैसे न कैसे ढूंढ के निकाला जो हमें सिखा सके हैंड स्पिनिंग, क्योंकि ये भूल चुके थे लोग हैंड स्पिनिंग कैसे करना है, वीविंग कैसे करना है, ये चीज लोग भूल चुके हैं, तब इसको वापस किस तरह से लेके आए। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोगों ने कोशिश की कि किस तरह से हम स्टार्ट करें। तो हमने कई गांव में, अलग अलग गांव में हमने जाके असेसमेंट किया कि कहां पे ये चीज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और हमने इसको हैंड स्पिनिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया, फिर वीविंग को प्रोसेस को स्टार्ट किया। और आज मुझे कहते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि ये इतने एडवांस लेवल पे चला गया है कि ये इंटरनेशनल सेल्स में भी जा रहा है। हमने इसको कई कस्टमर्स को भी दिखाया है एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी टू सी द क्वालिटी, किस तरह की क्वालिटी बन के आई है और ये किस तरह से इसको इसकी एक आप देख रहे हैं इसका गिफ्ट हो रहा है। आप इतनी ब्यूटीफुल तरीके से ये चीज को इम्प्लीमेंट कर पाए हैं और जहां पे जैसे स्मिता ने मेंशन किया कि हैंड स्पिनिंग का और किसी भी चीज का कोई नॉलेज ही नहीं था और कहां से कहां तक ये सब आ गए। और सबसे ज्यादा असर इस चीज को कम्युनिटी के लिए होता है। मैंने सोचा कि हम जाएंगे, हम कुछ चीज समझाएंगे सिखाएंगे, पर हम कितना ज्यादा कुछ सीख के आए हैं। जब हैंड स्पिनिंग प्रोसेस स्टार्ट किया गीता, हम सोच भी नहीं सकते थे कि 70 साल की औरतें इसके साथ में जुड़ेंगी, 70 साल की औरतें इसके साथ जुड़ेंगी, जो सोच भी नहीं सकती हैं कि वो कुछ कमाई कर सकती हैं। अगर हम सोचें कि सबसे ज्यादा हायरार्की में सबसे लोएस्ट कौन होता है, वो एक बूढ़ी औरत घर में होती है जिनके ना दवाई का, ना कपड़े का, ना किसी भी चीज का लास्ट अगर इनकम पहुंचेगी तो उनके पास पहुंचेगी। और जब वो एक औरत कमाती है और जब हम बैठे हैं और वो एक कहानी बताती है अपनी कि मैं अपने पोते के लिए गिफ्ट खरीद के लेके आई और उसकी आंखों में आंसू आते हैं और मुस्कुराहट आती है, तब लगता है कि हाँ हमने कुछ अचीवमेंट्स हुई हैं इस चीज के अंदर। तो ये ट्रूली ग्रीन इकोनॉमी की हम बात करें तो ग्रीन इकोनॉमी अब बोलना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हर चीज में केमिकल घुसा दिया है। हमारे इंडिया में कभी भी ये चीज नहीं थी, हम हर चीज को एकदम नेचुरल तरीके से बनाते थे। तो ये जो चीजें हैं अब हमें ग्रीन इकोनॉमी बोलनी पड़ रही है इस चीज को, और दुनिया भी अब रिकग्नाइज कर रही है। कोविड ने हमें दिखाया कि हेल्थ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सांसें रुक जाती हैं जब, और सांसें जब रुक रुक के आती हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन की कितनी महत्व है। जब हम केमिकल्स यूज करते हैं तो धरती की सांस नहीं होती है, हम खुद भी सफोकेट होते हैं। अगर आप एक केमिकल को अपने नाक के पास रखेंगे, केमिकल में अगर आप पेंट का एक कमरे में आप खड़े नहीं हो सकते एक घंटे के लिए भी, तो आप इमेजिन करिए अपने शरीर के ऊपर अगर पूरा केमिकल पहन रखा है या जो भी जन काम कर रहा है इस चीज के ऊपर, उसने अगर वो केमिकल के साथ ही काम कर रहा है तो उसकी हालत कैसी होगी, क्या दिशा होगी, ऑब्वियसली हम इतने बीमार पड़ेंगे। तो ये सब ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई है। अब तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा जोर दे रही है इस चीज के ऊपर कि ग्रीन की तरफ हम जाएं। कई कई कंपनीज तो एकदम कंपलसरी हो गया है कि आपको कई चीजें केमिकल्स आप यूज ही नहीं कर सकते हैं, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा टाइट हो रही है। तो ये फ्यूचर, ये हमारा हमेशा से इंडिया का पास्ट रहा है और इंडिया हम दिखा सकते हैं दुनिया को कि किस तरह से इस चीज को वापस मेनस्ट्रीम में लाया जा सकता है। आठ रीड का तो इतना ज्यादा रीच है और एकदम रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज में जाके आप ये चीज कर रहे हो, तो ये और आपका विजन इतना अच्छा है कि आप लोग एक लाइवलीहुड का भी इतना बड़ा मुहिम उठा के रखा है इसके अंदर। तो इसमें वो सोसाइटी को इतना एम्पावर किया है आपने, आप एक एनवायरमेंटल एजेंडा भी आपने एक ले रखा है इस चीज के अंदर। सो इट्स अ वंडरफुल इम्पैक्ट दैट यू हैव क्रिएटेड। एक सोशल इम्पैक्ट है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट है, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोर्स तो है. इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज अ पार्ट ऑफ इट, उसके बगैर कुछ भी नहीं आगे बढ़ता है क्योंकि सब काम रुक जाता है. बट द ह्यूजेस्ट इम्पैक्ट दैट कम्स इज द सोसाइटी इम्पैक्ट, लाइक आई सेड, लाइक हाउ इट इम्पैक्ट द कम्युनिटीज, हाउ दे कम टूगेदर. वेन आई वॉज टेलिंग द वुमेन कि आप घर जाके काम करिए, तो बोलते हैं नहीं हमें साथ में बैठ के काम करना है. तो हम पंचायती नहीं करते, हम गलत बातें नहीं करते, हम अच्छी प्रोडक्टिव बातें कर पाते हैं. तो एक मेंटल वेलबींग की भी एक चीज आती है इसके अंदर जो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो हमने जो ये खादी का प्रोग्राम स्टार्ट किया इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, नॉट ओनली फ्रॉम ट्रेनिंग द वुमेन और पूरी कम्युनिटी को ट्रेन करना है, उसके इम्पोर्टेंस समझाना क्यों ये चीज करनी है और क्या इसका वैल्यू है, कौन खरीदेगा. आज भी पूछते हैं हमें कि कौन खरीदेगा, इससे यही है जो चीज लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं. एक बार जो ये चीज को यूज करने लगता है फिर वो दूसरा चीज चेंज नहीं करता है. इसके अलावा हमारे पास में चैलेंजेस है रिसोर्सेज के, सोर्स करना, कहीं से कहां कहां से हमने इसको सोर्स किया है, क्योंकि अब बनना बंद हो गया तो इसकी रॉ मटेरियल मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया. तो उस चीज को वापस रिवाइव करना, किस तरह से हम रॉ मटेरियल्स को लेके आए. बहुत सारे सालों से हम इस चीज को धीरे धीरे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस चीज को. Concluding me, I would like to say that the communities that Reed is working with, the remote areas mein hai aur hum bahut sara baat kare migration ka, I think men, women, everybody needs to be included. Nobody should be left alone. Women ko jab hum empower karte to puri society empower hoti hai, but men also need to be empowered to empower the women. Thank you so much.
0: Thank you, Sonal ma'am. Men needs to be empowered to empower women. अगर हम दूसरे को empower, खुद empower होंगे तो खुद दूसरे को empower करेंगे.
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत. मैं हूं विशाल शर्मा. श्रोताओं, आज सेमीकंडक्टर यानी चिप हमारे आसपास मौजूद लगभग हर आधुनिक तकनीक का एक जरूरी हिस्सा बन गई है. आपका मोबाइल फोन हो, कार हो, अस्पताल के उपकरण हो, विमान हो या उपग्रह, इन सब के पीछे चिप काम करती है. 17 सितंबर से नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 का आयोजन हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे. 17 से 19 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन में दुनिया भर की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां, विशेषज्ञ, निवेशक, शिक्षण संस्थान और नीति निर्माता एक मंच पर आएंगे. इस वर्ष कार्यक्रम की थीम है सिलिकॉन से सिस्टम तक, इकोसिस्टम का निर्माण. ये थीम भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा के अगले चरण को दिखाती है. अब लक्ष्य सिर्फ चिप बनाना नहीं बल्कि डिजाइन, निर्माण, पैकेजिंग, उपकरण, शोध और कुशल प्रतिभा से जुड़े पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करना है. आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि भारत ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अब तक का सफर कैसे तय किया है. समझेंगे कि सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम ने इस दिशा में किस तरह आधार तैयार किया और अब सेमीकॉन 2.0 के जरिए इस व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है. श्रोताओं, भारत का सेमीकंडक्टर सफर एक दिन में शुरू नहीं हुआ. इसके पीछे वर्षों की कोशिशें, शुरुआती अनुभव और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को मजबूत करने की प्रक्रिया रही है. लंबे समय तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने की क्षमता तो विकसित हो रही थी लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी पूरा तंत्र एक साथ तैयार नहीं हो पाया था. इस स्थिति को बदलने की दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियों, निवेश और उत्पादन क्षमता पर जोर दिया गया. इसका असर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में दिखाई देने लगा. आइए अब समझते हैं कि इस सफर ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की नींव कैसे तैयार की.
4: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा को समझने के लिए हमें उस आधार को देखना होगा जिस पर ये पूरी व्यवस्था तैयार हुई. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही थी. मोबाइल फोन से लेकर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों तक देश में उत्पादन का आधार तैयार हो रहा था. लेकिन इन उत्पादों के पीछे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देश की अपनी क्षमता अभी सीमित थी. यहीं से सेमीकंडक्टर को लेकर एक व्यापक रणनीति की जरूरत सामने आई. बनाई ऐसी व्यवस्था जिसमें केवल चिप का निर्माण ही नहीं बल्कि उसकी डिजाइन, पैकेजिंग, जांच, जरूरी मशीन और सामग्री, शोध और कुशल प्रतिभा तक पूरी मूल्य श्रृंखला को विकसित किया जा सके। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में हुई प्रगति ने इस दिशा के लिए मजबूत आधार तैयार किया। वर्ष 2014-15 में भारत में करीब 1,90,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2025-26 तक ये बढ़कर 13,11,000 करोड़ रुपए हो गया। मोबाइल फोन के क्षेत्र में बदलाव और भी स्पष्ट रहा। मोबाइल फोन का उत्पादन 18,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। आज भारत में इस्तेमाल होने वाले 99.2% मोबाइल फोन देश में ही बनाए जाते हैं। इन आंकड़ों का महत्व केवल इतना ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बढ़ा, इससे ये भी पता चलता है कि भारत में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए जरूरी आधार तैयार हुआ और यहीं से सेमीकंडक्टर की अगली कड़ी जुड़ती है। अगर मोबाइल फोन, वाहन संचार व्यवस्था और दूसरी आधुनिक तकनीकों का उत्पादन बढ़ रहा है तो उनके भीतर इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण घटक यानी चिप की अपनी क्षमता विकसित करना भी जरूरी हो जाता है। इसी सोच के साथ वर्ष 2021 में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस कार्यक्रम की सोच केवल कुछ चिप निर्माण इकाइयां स्थापित करने तक सीमित नहीं थी। इसका उद्देश्य भारत में एक मजबूत और भरोसेमंद सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले व्यवस्था तैयार करना था। इस पूरी व्यवस्था में चिप डिजाइन से लेकर फैब यानी चिप निर्माण, पैकेजिंग और जांच, मशीन और सामग्री, शोध तथा कुशल प्रतिभा, सभी कड़ियों को साथ लेकर चलने पर जोर दिया गया। इसी दिशा में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने इस कार्यक्रम को जमीन पर लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब इस प्रयास का असर परियोजनाओं के रूप में भी दिखाई दे रहा है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता है। इनमें से 3 इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन भी शुरू हो चुका है। इन परियोजनाओं में सिलिकॉन और दूसरे प्रकार के सेमीकंडक्टर की फैब इकाइयों के साथ डिस्प्ले निर्माण और उन्नत पैकेजिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल है। 15 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी। इसके लिए 1,27,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सेमिकॉन 2.0 का उद्देश्य भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता को आगे बढ़ाने के साथ साथ डिजाइन, मशीन और सामग्री, शोध एवं विकास तथा प्रतिभा के क्षेत्र को भी मजबूत करना है।
3: श्रोताओं, सेमिकॉन 2.0 सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के पहले चरण से तैयार आधार को आगे बढ़ाने का प्रयास है, लेकिन किसी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को खड़ा करना इस पूरी प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है। चिप बनाने के लिए पहले उसे डिजाइन करना पड़ता है। इसके लिए प्रशिक्षित इंजीनियर, आधुनिक डिजाइन उपकरण, शोध और नए विचारों की आवश्यकता होती है। इसीलिए भारत के सेमीकंडक्टर सफर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है प्रतिभा और डिजाइन क्षमता का विकास। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को विस्तार से समझते हैं।
4: चिप्स टू स्टार्टअप यानी C2S कार्यक्रम के तहत 320 शैक्षणिक संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन यानी EDA उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं और 68,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अलावा 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी गई है। 105 स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को भी EDA उपकरणों के लिए सहायता दी गई है। अप्रैल 2026 तक 75 संस्थानों ने मिलकर 211 चिप डिजाइन तैयार कर लिए थे। इनमें से 7 चिप अलग अलग तकनीकी स्तरों पर भी तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें 12 नैनोमीटर तक की उन्नत तकनीक शामिल है। इस पूरी प्रक्रिया में चिप इन सेंटर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसे CDAC में स्थापित किया गया है ताकि देश भर के इंजीनियरों, शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप को चिप डिजाइन के जरूरी उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध हो सके। चिप इन सेंटर की सुविधाओं का लाभ 500 से अधिक संगठनों के 1,00,000 से ज्यादा इंजीनियरों तक पहुंच चुका है। इनमें 400 शैक्षणिक संस्थान और 100 स्टार्टअप शामिल हैं। इन संगठनों ने 300 से अधिक चिप डिजाइन तैयार किए हैं। इसका मतलब साफ है, सेमीकंडक्टर उद्योग केवल बड़ी फैक्ट्रियों से ही नहीं बनता। इसके लिए डिजाइन करने वाले इंजीनियर, शोधकर्ता, स्टार्टअप और ऐसे संस्थान भी चाहिए जहां नई चिप पर काम किया जा सके। इसी सोच को सेमिकॉन 2.0 में भी जगह लगा दी गई है। इसके 6 स्तंभों में शोध और विकास तथा प्रतिभा विकास को अलग स्थान दिया गया है। साथ ही चिप डिजाइन, मशीन और सामग्री, फैब और उन्नत पैकेजिंग पर भी ध्यान दिया गया है। भारत का सेमीकंडक्टर प्रयास अब केवल घरेलू जरूरत तक सीमित नहीं है। वर्ष 2026 में भारत पैक्स सिलिका गठबंधन में भी शामिल हुआ। ये गठबंधन वैश्विक सिलिकॉन आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर चिप निर्माण और उन्नत एआई व्यवस्था तक पूरी श्रृंखला को सुरक्षित रखने पर जोर है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: श्रोताओं, 17 से 19 सितंबर तक यशोभूमि में होने वाला सेमिकॉन इंडिया 2026 इस पूरे बदलाव के कई पहलुओं को एक ही जगह सामने लाएगा। 3 दिनों के इस आयोजन में 600 से अधिक प्रदर्शक और 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा लेंगी। करीब 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में 150 से अधिक वक्ता अपने अनुभव और विचार साझा करेंगे। 6 देशों और 12 राज्यों के पवेलियन भी यहाँ होंगे। इसके साथ स्टार्टअप शोकेस, छात्र हैकाथॉन, वर्कफोर्स डेवलपमेंट पवेलियन और महिला मंच जैसे कार्यक्रम भी होंगे। यानी सेमिकॉन इंडिया 2026 केवल नई मशीनें और तकनीक दिखाने का मंच नहीं है, ये उस पूरे तंत्र की तस्वीर सामने रखने का अवसर भी है जिसे भारत पिछले कुछ वर्षों से तैयार कर रहा है। एक चिप को डिजाइन करने से लेकर तैयार करने तक कई चरणों से गुजरना पड़ता है, लेकिन तैयार होने के बाद यही छोटी सी चिप मोबाइल से लेकर मिसाइल तक सभी महत्वपूर्ण प्रणालियों का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

0: Now I'd like to call upon Dr. Rangashree to share her.
1: Thank you so much, dignitaries on the dais, all my colleagues, friends and people from Read India. I'm really grateful to Dr. Geeta Malhotra, Smita and the team here and everybody who has come from different parts of Read India. I am associated with Read India since 2020. I'm a librarian by profession and also a mental health worker by avocation. Why I want to now briefly share four ideas for a community library, how community libraries should work. Thoda bahut Hindi mein koshish karungi bolne ke liye. Before that, I'll just read out a few surveys that has been done. According to a survey, India's organized sector has only 34 million people, which forms a very small strata of the total population. And there is a report that says, this is the annual status of education report that is. It's more than 50% of the students in 5th standard attending rural schools are not capable of reading a 2nd standard textbook and are not able to solve basic mathematics. This is the survey report. So based on this, I think Read India is doing amazing work trying to, you know, bridge the gap between this, that gap that exists, by helping children to learn in their own communities. So some of the key issues that are prevalent are shortage of sufficient number of schools in the rural areas, lack of student-friendly learning institutions, insufficient infrastructure, rural-urban divide, and method of teaching. So coming to some of these issues, I was working as a library director of Ashoka University, where I found that Ashoka University is an isolated campus surrounded by many villages in the rural areas. So we thought we should open up some programs for the children surrounding the universities, which, you know, in the villages. So we initiated a program of mobile library. I wrote a proposal and it was to a US organization, and they funded it, and this mobile library, we touched for nearly 3 years, 10 different villages, conducted storytelling sessions. We had a colleague called Anil who was throughout with me in that storytelling session. We trained him in Kathalia. Anybody who is interested in getting trained to do good storytelling sessions in Hindi, they are welcome to, you know, approach Kathalia. The organization is in Bangalore, and they can take training there to conduct storytelling. And this had a major impact. 70% of the children went back to school, the dropouts. So this was referred, this was brought to notice by the IFLA's SDGs program, and they put it in the library map of the world as one and only story to be covered from India at that point of time. And so this is one thing that I thought, in your rural areas, you might have certain universities, colleges, schools. Please network unke saath, jo librarians wahan kaam kar rahe hain. Aap unke saath judiye aur unke saath baat kariye. Unke saath milke aap unko motivate kariye unke books ko, unke library ko open karne ke liye, aapke bachon ke liye. Ye ek suggestion hai. दूसरी बात, मैं गई थी कैम्ब्रिज. जब कैम्ब्रिज में एक बहुत साल पुराने लाइब्रेरीज हैं, 600 साल पुराने रेन लाइब्रेरी है, और मैं बहुत आश्चर्य हुआ जो 600 साल से उन्होंने सारी किताबें जो भी है इतना अच्छा प्रिजर्व करा है, और वहां का जो लाइब्रेरियन है वो बिल्कुल हर चीज का जानकारी है उसको. मैं कहती हूँ कि आपके यहाँ जो लाइब्रेरीज आपने आपके पास है, बुक्स हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल, अपने आप को एजुकेट करिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके क्या किताबें हैं आपके पास, जो भी अगर कोई आता है तो तुरंत बिना कंप्यूटर ओपन करे आप बता पाएंगे, आपको अपने आप को इतना सक्षम कर सकते हैं, क्योंकि किताबें आपके पास तो 2000 होंगे ना मैक्सिमम किसी एक लाइब्रेरी में, कितना है आप एनी नो मैक्सिमम हाँ 1000 से 2000 बुक्स होंगे, तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है कि आपके पास क्या चीज है, आप क्या रख रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं बच्चों को, क्या सिखाना चाहते हैं, वो उसके बारे में जानकारी रख लेना अच्छी बात है। वो किताब क्या बात कर रहा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन उस किताब के बारे में थोड़ा जानकारी रख लीजिए, पर आप भी उसको पढ़ सकते हैं, इससे आपके भी जानकारी अच्छी रहेगी। तो ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रेड लाइब्रेरी है, 600 साल पुराना लाइब्रेरी, जब मैं गई थी तो उसमें जो भी किताब हमने टच करा उस बिना उसको निकाले वो उस किताब के बारे में पूरा जानकारी मुझे बता रहा था। मतलब इतने सारी किताबें हैं वो हर चीज, देयर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, बट ही वाज वेरी नॉलेजेबल अबाउट व्हाट वाज इन हिज लाइब्रेरी। ये स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है एक लाइब्रेरियन के लिए। दूसरी बात, मैंने वहां देखा कि हर कस्बे में पब्लिक लाइब्रेरी है, छोटे छोटे पब्लिक लाइब्रेरीज हैं दुकानों के पास, मार्केट के पास, और पेरेंट्स जो है बच्चे को वीकेंड ले जाते हैं, खुद बैठ के पढ़ते हैं अपने बच्चों के साथ, एक घंटा वीकेंड उसके लिए लाइब्रेरी विजिट के लिए निकालते हैं। तो आप अपने कम्युनिटी में लोगों को ये बताइए कि वो आए आपके बच्चों के साथ और बैठ के उनके साथ किताब पढ़ें, वो जब साथ बैठेंगे तो बच्चे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक ये है, और दूसरी बात, जो बच्चा वहां खुद ही इश्यू कराता है, उसको सिखाते हैं कैसे बुक इश्यू करना है, कैसे रिटर्न करना है, वो खुद जाके, ऑफकोर्स दे हैव टेक्नोलॉजी, बट इफ यू डोंट हैव टेक्नोलॉजी मैन्युअली भी आप उनको सिखा सकते हैं कैसे वो इश्यू कराना है, कैसे रिटर्न लेना है, ड्यू डेट डालना है, उनको बताना है कि कब वापस करना है। तो एंड जितनी भी बुक्स वो दे आर अलाउड टू टेक एज मेनी बुक्स एज दे वॉन्ट, बट यहां अगर रेस्ट्रिक्शन है तो कोई बात नहीं, तीन बुक या जो, बट जो बच्चा मैक्सिमम इश्यू कराता है और जाके लेके वापस आके उस किताब के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है, उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ बेस्ट रीडर का मिलता है बाय द काउंसिलर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। तो एक और एक दिन उनको बुलाते हैं और उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो इससे मोटिवेटेड रहता है बच्चा कि उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा बेस्ट रीडर। तो ये सम एग्जांपल्स दैट आई हैव गिवन। और जरूरी नहीं है मोबाइल लाइब्रेरी हमने प्रपोजल डाल के बड़ा बड़ा गाड़ी के लिए मंगवाया, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि क्रिया यूनिवर्सिटी में जहां मैं काम करती थी आफ्टर अशोका जॉइंट क्रिया इन आंध्र प्रदेश, देयर ऑल्सो वी हैव रीड इंडिया टू सेंटर्स, एंड ये जो पैंडेमिक के टाइम वहां ऑटो रिक्शा एक आता था, ही हेल्प्ड इन टेकिंग बुक्स टू द कम्युनिटी, एंड ऑटो रिक्शा में बैनर लगा दिया रीड इंडिया का, बस उससे बच्चे वहां ओपन लाइब्रेरी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे, और हमारे जो यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी टीम थे वो जाके ये प्रोग्राम सब करते थे। तो ये फ्यू आइडियाज एंड सजेशंस दैट आई थॉट आई विल शेयर। एक और है, एक आई थिंक रीड इंडिया हैज लॉट ऑफ इंक्लूसिविटी इन देयर सिस्टम। तो जैसे किबो ऐप एक है जो बहुत यूजफुल है, कई मेरे ख्याल से वी हैव गिवन देम, सम ऑफ द लाइब्रेरीज हैव ऑलरेडी गॉट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो किताब मान लीजिए इंडिया इज हैविंग लॉट ऑफ डाइवर्स पीपल, मान लो एक गुजराती बच्चा कर्नाटका में है बट वो रीड इंडिया के सेंटर में आता है, उसको सिर्फ कन्नड़ा की बुक्स देखते हैं, वो समझ नहीं आता उसको, इज न्यू टू द लैंग्वेज, बट किबो ऐप से वो स्कैन करके वो रीड आउट करता है, पढ़ने का जरूरत नहीं, टेक्स्ट ट्रांसलेट भी होता है तो, बट वो पढ़ता है उसकी लैंग्वेज ऑफ चॉइस में, इफ ही वॉन्ट्स टू गेट द इन्फॉर्मेशन इन गुजराती ही गेट्स इट इन गुजराती। एंड ऑल्सो दिस टूल इज वेरी यूजफुल नॉट ओनली फॉर द विजुअल इम्पैक्ट, बट गांव में जो फार्मर्स हैं उनको एक लीगल डॉक्यूमेंट आता है उनके पास, उनको पढ़ने का पता नहीं क्या है, उसमें क्या लिखा है साइन करने से पहले, ये किबो ऐप से वो उसको स्कैन कर लेंगे तो वो सुन सकेंगे अपनी भाषा में क्या लिखा है बिफोर ही कैन साइन द डॉक्यूमेंट. सो दिस हेल्प्स पीपल ऑफ ऑल स्ट्रेटा टू यूज दिस टूल. And this is one thing I just thought of sharing. I think that every child should have a tool that helps them to learn. Another thing is that I had written a article called Voice of India's Disabled Demanding Equality in Library Services sometime in 97. This was translated in 5 foreign languages. About 1,250 people have cited it in, even today that I wrote it in 97, but even today I don't see any library having implemented completely whatever ideas that were recommended. But please, वो आप एक बार पढ़िएगा, जानिएगा और जो आपसे हो सकेगा उसको implement करने की कोशिश कीजिएगा. Thank you very much.

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: in there, and Jessica has been patiently, you know, listening to all our experiences and stories. So we would, you know, request you also to share about, you know, how you feel about this whole journey. And you are a volunteer with the volunteering exchange program with Accenture. So we would love to hear from you. Thank you.
1: आप लोग ये देख सकते हैं क्या है ये? या अगर मैं आपको बोलूं कि इस पैरेट ने मुझे आईआईटी आईएम क्लियर करने में मदद किया है तो आप क्या बोलेंगे? शायद कुछ लोग मुझे पागल बोलेंगे या मे बी मैं अपने सेंसेस में नहीं हूं, बट दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट दिस पैरेट बट द वीमेन एम्पावरमेंट. हाउ आई टेल यू, तो कुछ समय पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, आई थिंक 10-12 साल पहले की बात होगी. मेरे पापा एक नॉर्मल लेबर क्लास है, उनकी मंथली इनकम 2-3 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होगी, एंड पांच बहन भाइयों को पालना दिल्ली जैसे जगह पे काफी डिफिकल्ट था. उस केस में मेरी मदर यूज टू मेक दीज टॉयज, और इनसे क्या होता था कि एडिशनल 1000 रुपए या 1500 रुपए इनकम जनरेट होता था, जिसके थ्रू आई कैन गेट गुड ट्यूशंस. ठीक है, इवेंचुअली मेरा Super 30 में हुआ, Super 30 पटना का स्टूडेंट हूं मैं, आईआईटी आईएम सब क्लियर हुआ, बट जो स्टार्ट हुआ जो जर्नी वो एक एम्पावरमेंट जर्नी से था. ठीक है, और उसको मैं वीमेन एम्पावरमेंट बोलता हूं. मतलब मैंने मल्टीपल टाइम वीमेन एम्पावरमेंट वर्ड सुना, बट मैं उसको वीमेन एम्पावरमेंट नहीं बोलता हूं, मैं उसको नेशन बिल्डिंग या हिंदी में राष्ट्र निर्माण बोलेंगे. ठीक है, तो ये मेरा स्टोरी है, और हम एक्सेंचर में, बिकॉज एक्सेंचर इज वेरी मच रिलेटेड टू दिस, एंड हम एक्सेंचर में हर तरीके से कोशिश करते हैं कि जो राष्ट्र निर्माण है स्पेशली वीमेन के द्वारा जो बनाया गया है उसको हर तरीके से सहयोग करें. तो हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसमें 4-5 चीजें कर रहे हैं. जैसे मैं अभी बख्शी सर से स्टार्टिंग में बात कर रहा था, तो वो एक सप्लाई चेन होता है उसका पूरा. तो पहला सप्लाई चेन स्टार्ट होता है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तो हमारा प्रोग्राम्स है बहुत सारा जिसमें हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है मेंटरशिप, तो एक्सेंचर इज प्रेटी मच इन्वॉल्व इन द मेंटरशिप प्रोसेस. तो उसमें हम काफी एनजीओस में जाके रेड इंडिया के साथ जो वीमेन ग्राउंड पे काम कर रही है उनसे बात करना, उनकी प्रॉब्लम समझना और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो सोल्यूशनिंग पे काम करते हैं. इसके अलावा हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं, इनफैक्ट जैसिका इज लीडिंग, मतलब जैसिका एक प्रोग्राम रन करती है एक्सेंचर के अंदर, जिसमें हम वेरियस टॉपिक्स पे, जैसे नेगोशिएशन कैसे करना है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है उसका करेक्ट प्राइस क्या होना चाहिए, या फिर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये सारा ज्ञान हम अपने इम्प्लॉइज के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक VX पोर्टल पे हमारा काफी बड़ा पार्टनरशिप है, तो आर टेक टीम इज इन्वॉल्व इन दैट. तो उसमें क्या होता है कि वीमेन स्मॉल बिजनेसेस, वीमेन हु आर रनिंग स्मॉल बिजनेसेस, दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ ऑन VX, एंड वहां पर वो एक वन स्टेप सोल्यूशन है. तो जो मेलास कंडक्ट होते हैं जहां पे वो अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, वेरियस टीचिंग इनिशिएटिव या गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स है, वहां पे एक जगह पे उनको सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं. तो इस तरीके से एक्सेंचर 4-5 चीजों में इसको प्रमोट कर रहा है. और एज आई राइट लाइक इन द स्टार्टिंग आई सेड कि मैं इसको वीमेन एम्पावरमेंट नहीं मानता हूं, मैं इसको देश का निर्माण मानता हूं, और आई एम प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव. इसके अलावा हमारी आई थिंक बहुत सारी बातें हुई सस्टेनेबिलिटी पे. तो सस्टेनेबिलिटी आई थिंक अमित जी ने गांधी जी का कोट, नहीं आई थिंक या सोनल मैम ने गांधी जी का एक कोट बोला था, मैं दूसरा कोट बोलूंगा कि आपकी नीड के लिए इस धरती पे इनफ है बट आपकी ग्रीड के लिए इनफ नहीं है. तो इन द सेम वे मेरे को भी ये लगता है कि जो आज की जनरेशन है उनको अपनी लाइक दे शुड वर्क एट देयर 100% एफिशिएंसी, मतलब पूरा 100% एफर्ट मार के काम करना चाहिए. बट जब आता है कि आप उसमें से क्या लोगे तो उतना ही लेना चाहिए जितना आपको नीड है. ठीक है. और जस्ट कुछ बातें बताना चाहूंगा. हम एक्सेंचर में हम क्या करते हैं कि जैसे पानी का कच में आपने बताया पानी की कमी है, तो हम अपना 100% वाटर जो हमारे टॉयलेट्स और ऑफिसेस के टॉयलेट्स वगैरह में यूज होता है, हम उसको 100% रीयूटिलाइज करते हैं क्लीन करने के बाद. इसके अलावा हमारा 99% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो जनरेट होता है वी यूटिलाइज दैट, हम उसको रीयूज कर लेते हैं. पेरिस अग्रीमेंट में जो हमारा एक कमिटमेंट था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस हमको इससे ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, तो वी आर कमिटेड टू दैट. जो उसमें हमारा प्रॉमिस था उसमें हमने 2016 बेस लाइन है जो हमारा, उससे 70% कार्बन रिडक्शन किया है. 99% ऑफ आर ऑफिसेज इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग इज रन बाय रिन्यूएबल एनर्जी, जो ऊर्जा के परंपरागत सोर्सेज, मैं सॉरी अगर मुझको शायद भूल गया हूं मैं, तो परंपरागत सोर्सेज बोलते हैं शायद वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, जो नए वाले सोर्सेज आ रहे हैं हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं. ठीक है. और यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सुमिता मैम ने बोला कि वी आर ईगरली वेटिंग, हम काफी ऐसा नहीं, हम वेट कर रहे हैं. बिकॉज मेरे को तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा. जब मैं आया शायद मैं थोड़ा लेट हो गया था, गीता मैम बोल चुकी थी, देन सिंधु सर ने बोला, शर्मा जी ने बोला, शर्मा सर ने बोला, पक्षी सर बोल रहे थे उस समय, एंड उन्होंने इतनी सारी बातें बताई है ना कि मेरे लिए वो सारी बातें मैं लेके जाऊंगा. और मैं तो ये सोच रहा हूँ पहले, मैं कई बार होता है कि हाँ यार मैंने ये आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया, इसका एग्जाम दिया है, वो ईगो आ जाता है. बट मैं जब इस स्टेज पे आया और मैं लोगों को सुन रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा नॉलेज कुछ भी नहीं है इनके आगे. एंड इतना अच्छा अच्छा बातें बोला है ना इन्होंने, तो मैं लेके जाऊंगा और आई विल शेयर इट विथ माई मदर. ठीक है. शी इज वन ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ रीड इंडिया एक्चुअली, तो उनको बताऊंगा, शी वुड बी रियली प्राउड. एंड या आई डोंट हैव वर्ड्स एक्चुअली, तो थैंक यू सो मच. एंड एक लास्ट में यही बोलूंगा कि भगवान ने आपको एबिलिटीज दी है. बहुत बार होता है आपको सेल्फ डाउट होगा, बट आप सेल्फ डाउट मत करिए कोई भी सिचुएशन हो. ठीक है. देयर वुड बी सिचुएशन जब पूरा संसार आपके पीछे पड़ा होगा, बट वहां पे आपको हार नहीं माननी है और एक स्टेप आगे लेके उसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा. आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी जो ताकत है, ये तोते वाली ताकत मेरे में आई ना, तो आपको भी वो ताकतें आके वो सॉल्व करवा देगी. थैंक यू सो मच एवरीवन. या थैंक यू सो मच जैसी ओवर टू.
2: तो आने से पहले मैंने काफी पॉइंटर्स बनाए थे कि ये बोलना है वो बोलना है, फिर मैंने सबकी कहानी सुनी और सच में जैसे इंदर कह रहा है कि बिल्कुल स्पीचलेस है. सर आपने बोला था कि आपको बोलना नहीं आता, आपने मेरे को बिल्कुल खामोश कर दिया आपकी कहानियों से. मतलब मैं बस कहना चाहूंगी कि इतना इंस्पिरेशन इस रूम में है सबने, पक्षी सर, शर्मा सर, कल्पना मैम, गीता मैम, आप सबने इतनी अच्छी बातें बोली. तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जैसे कल्पना मैम सोसाइटी की बात कर रही थी कि सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ जो औरतें होती है उनको उनका हक देने में. तो मेरी भी कुछ ऐसी कहानी है कि मेरी मम्मी एक सिंगल मदर है और वो एक टीचर है, और जैसे ही वो उम्र आई तो मेरे भी पढ़ने पे बहुत वो लगाया गया कि इसको पढ़ना नहीं चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक लड़की है और ये लड़की है, इसकी तो शादी हो जाएगी, ये चली जाएगी, तो आप इसे क्यों पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहे हो. लेकिन वहां मेरी मम्मी ने मुझे हिम्मत दी और आज मैं यहाँ हूँ उनकी बदौलत. तो ये दिखाता है कि जैसे बख्शी सर ने कहा कि जो औरत होती है वो एक कम्युनिटी को बढ़ाती है, एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर वुमेन. सो बस मैं यही कहना चाहूंगी और शुक्रिया आप सबने बुलाया रीड इंडिया. आप जो काम कर रहे हो वो बहुत बहुत इंस्पिरेशनल है और हम लोग प्राउड है आपके साथ एसोसिएट होते हुए. और मैं तहे दिल से शुक्रिया आप सबको कहना चाहूंगी आप सबके काम पे. और बस एक लास्ट लाइन में कहना चाहूंगी जो बहुत क्लोज है मेरे से, कि जो औरतें होती है, एक औरत के अकम्प्लिशमेंट के लिए कोई लिमिट नहीं होती है. आप जितना आगे जाना चाहो आप उतना आगे जा सकते हो, और जिस दिन आप आगे जाओगे आप पूरी सोसाइटी को साथ में आगे लेके चलोगे.
1: आई मेड इट यस्टरडे बिकॉज आई लर्न दिस. आई डोंट नो टाटा पावर का आई थिंक वहां पे सेंटर है, तो माई मदर यूज टू गो, इट इज इन एसोसिएशन विथ रीड इंडिया. तो मेरी मदर ने सिखा था एंड आई वॉज वेरी यंग जब मैंने ये बनाना सीख लिया था, तो मेरे को सिलाई कढ़ाई सब कुछ आता है. तो अगर मैं कुछ और नहीं करता तो मैं कुछ कर लेता. थैंक यू सो मच. थैंक यू रीड इंडिया.
0: Thank you so much to Indra and Jessica for opening your heart out and sharing your, you know, inspiring stories with us. I think we are so, so privileged and proud to have you join us today, and Accenture, our, you know, core partner on this mission.

सन 1769 और 1799 के बीच 30 साल की अवधि में ब्रिटिश सेना और हैदर अली तथा उसके बेटे टीपू सुल्तान के बीच 4 मैसूर युद्ध लड़े गए। इन युद्धों के दौरान अंग्रेजों को 2 अत्यंत महत्वपूर्ण भारतीय तकनीकों, रॉकेट निर्माण और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी मिली। बाद में इन दोनों ही भारतीय तकनीकों का पहले इंग्लैंड में और तदनंतर यूरोप के अन्य देशों में तेजी से विकास हुआ। अंग्रेजों ने भारतीयों से किस तरह प्लास्टिक सर्जरी की विद्या सीखी, ये एक दिलचस्प दास्तान है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच तीसरा मैसूर युद्ध एक संधि के द्वारा समाप्त हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद की ही घटना है। अंग्रेजों की खिदमत करने वाला कवसाजी नाम का एक मराठा गाड़ीवान और 4 तिलंगे मैसूर राज्य की सीमा में दाखिल हुए, तो टीपू सुल्तान के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ, नाक, कान सभी कुछ काट दिए। फिर उन्हें अंग्रेज कमांडर के पास वापस भेज दिया गया। उसके कुछ दिन बाद की बात है, वहां अंग्रेज कमांडर एक भारतीय व्यापारी से कोई और सौदा तय कर रहा था, तो उसने देखा कि व्यापारी की नाक कुछ अजीब तरह की है और उसके ललाट पर जख्म के निशान भी हैं। कमांडर के पूछने पर व्यापारी ने बताया कि परस्त्री गमन के अपराध के दंड स्वरूप उसकी नाक कान काट दी गई थी और कुम्हार जाति के एक मराठा वैद्य से उसने नाक कान बनवा लिया था। अंग्रेज कमांडर ने उस वैद्य को बुला लिया और उससे कवसाजी तथा 4 तिलंगों की नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया करने को कहा। शल्यक्रिया पुणे के पास एक स्थान पर हुई। उस समय 2 अंग्रेज डॉक्टर थॉमस क्रूसो और जेम्स फिंडले वहां मौजूद थे। कुछ दिन बाद उस सनसनीखेज शल्यक्रिया का सचित्र विवरण मद्रास गजट में प्रकाशित हुआ। फिर लंदन में प्रकाशित होने वाला जेंटलमैन मैगजीन नामक पत्रिका के अक्टूबर 1794 के अंक में वो विवरण पुनः मुद्रित हुआ। 200 से भी कुछ अधिक साल पहले भारत में की गई नाक की प्लास्टिक सर्जरी के उस विवरण की प्रमुख जानकारी को यहाँ प्रस्तुत करना उपयोगी होगा। सर्वप्रथम नाक का सही माप लेने के लिए मोम की एक परत तैयार की गई, फिर ललाट से उसी आकार की त्वचा काटी गई पर आंखों के बीच थोड़ा हिस्सा रक्त संचार के लिए ललाट से जुड़ा रहने दिया गया। उसके बाद नासा छिद्रों के लिए ठीक से स्थान बनाकर नाक की चतुर्दिक सीमा की त्वचा में चीरा लगाया गया। फिर ललाट से काटी गई त्वचा को आधा मोड़कर नीचे नाक पर लाया गया और चीरे से फंसा दिया गया। फिर कपड़े की पट्टियों पर भीगे कत्थे का लेप लगाकर उसकी 4-5 परतें त्वचा की जोड़ पर लगा दी गईं। जख्म को भरने के लिए कत्थे के उस सीमेंट के अलावा और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। 4 दिन बाद उन्हें हटाकर घी में डुबोई हुई पट्टियां जख्म पर लगाई गईं। 20वें दिन ललाट से जुड़ी हुई त्वचा को काट दिया गया। इस शल्यक्रिया के बाद मरीज को 5-6 दिन तक पीठ के बल बैठाया गया। नासा छिद्र पर्याप्त खुले रहे, इसीलिए 10वें दिन उसमें मुलायम कपड़े के टुकड़े रखे गए। अंत में इस शल्यक्रिया के विवरण में एक टिप्पणी है, नाक की ये प्लास्टिक शल्यक्रिया हमेशा सफल रही है। ये बनावटी नाक मजबूत होती है और काफी हद तक कुदरती नाक की तरह दिखाई देती है। कुछ अरसे बाद ललाट का दाग भी काफी हद तक मिट गया है। भारत में ही की गई नाक की प्लास्टिक सर्जरी का ये विवरण लंदन में प्रकाशित हुआ, तो इसे पढ़कर वहां के अनेक सर्जन चकित रह गए। उस सचित्र विवरण ने 30 साल के तरुण सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेन कारपूर को सबसे अधिक प्रभावित किया। उससे इस प्रकार की शल्यक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। फिर उसने साहस करके लंदन में 23 अक्टूबर 1814 को नासिक संस्थान की ठीक वैसी ही शल्यक्रिया की जैसी भारत में कवसाजी और तिलंगों पर की गई थी। उसके साथ ही यूरोप में आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का युग शुरू हुआ। लंदन में नाक संस्थान की वह पहली शल्यक्रिया करने में कारपूर को कुल 37 मिनट का समय लगा। उस पहली सफलता के बाद कारपूर ने जल्दी ही नाक संस्थान की दूसरी शल्यक्रिया की भी, जिससे उसे खूब प्रसिद्धि मिली। भारतीय नाक यूरोप में मशहूर हो गई। समीप के अंग से त्वचा लेकर

अंग भंग के स्थान पर जोड़ी जाती है, तो उस विधि को आज भी भारतीय प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। कारपुए ने नासिका संधान के अपने अनुभवों के आधार पर सन 1816 में एक छोटी पुस्तक भी प्रकाशित की थी। उससे प्रभावित होकर जर्मन सर्जन ग्रोएफ ने हाथ की त्वचा लेकर नासिका संधान की प्लास्टिक शल्यक्रिया शुरू कर दी थी। इस जानकारी से सहज स्पष्ट हो जाता है कि आज बहुत अधिक इस्तेमाल होने वाला संश्लेषित प्लास्टिक पदार्थ से प्लास्टिक सर्जरी का कोई सारोकार नहीं है। प्लास्टिक शब्द यूनानी भाषा के प्लास्टिकोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सांचा बनाना या आकार देना। प्लास्टिक शल्यक्रिया में शरीर के खोए हुए अंग को पुनः स्थापित किया जाता है अथवा विरूपता या विकृत अंग को दुरुस्त किया जाता है। हालांकि प्लास्टिक शल्यक्रिया एक बहुत पुरानी तकनीक है, परंतु तेजी से इसका विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुआ है। प्राचीन यूरोप से प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। बाइबल में इसका कोई उल्लेख नहीं है। होमर ने अपने महाकाव्यों में युद्ध जनित अनेक जख्मों और उनके उपचारों की जानकारी भी दी है, परंतु अंग भंग कहकर प्लास्टिक सर्जरी का कोई भी जिक्र नहीं है। रोमन चिकित्सक सेल्सस होंठ, कान और नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया उल्लेख करता है, मगर लगता है कि स्वयं उसने कोई शल्यक्रिया नहीं की थी। रोमन साम्राज्य के अवसान के बाद फिर हमें मध्ययुग तथा यूरोप से प्लास्टिक शल्यक्रिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी के उल्लेख 15वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। दरअसल कॉफ्रे के पहले ही नासिका संधान की भारतीय विधि की जानकारी दक्षिण यूरोप के देशों में पहुंच चुकी थी। सिसली द्वीप के सर्जन ब्रांका ने 1442 ईस्वी में नासिका संधान की शल्यक्रिया की थी। उस शल्यक्रिया में उसने गाल की त्वचा का उपयोग किया था। बाद में ब्रांका के पुत्र एंटोनियो ने पिता के कार्य को जारी रखा। हाथ से त्वचा लेकर नासिका संधान की शल्यक्रिया करने वाला एंटोनियो यूरोप का पहला सर्जन था। पिता पुत्र ब्रांका के बाद 16वीं सदी के आरंभ में इटली के बोयानी परिवार ने प्लास्टिक सर्जरी का काम किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इटली के बोलोना विश्वविद्यालय में शल्य चिकित्सा के प्राध्यापक जास्पारो ताग्लियाकोजी ने नाक संधान के सर्जन के रूप में खूब ख्याति अर्जित की। उसने हाथ से त्वचा लेकर नाक संधान की शल्यक्रियाएं की। उसने कर्णबंद और ओष्ठबंद की शल्यक्रियाएं भी की। ताग्लियाकोजी ने 1597 ईस्वी की कागड़ा की प्लास्टिक सर्जरी की परंपरा के बारे में जानकारी दी है। पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में कांगड़ा के बिधा नामक एक वैद्य ने नासिका संधान की शल्यक्रिया की थी। ईसा की 7वीं या 8वीं सदी के प्रख्यात चिकित्सक बाणभट्ट के ग्रंथ अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में भी प्लास्टिक शल्यक्रम के बारे में जानकारी मिलती है, परंतु सबसे प्राचीन जिस भारतीय ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है वो है सुश्रुत संहिता। प्राचीन भारतीय चिकित्सा ज्ञान के दो महान विश्वकोश हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इसमें चरक संहिता अधिक प्रसिद्ध है और अधिक प्राचीन भी है। सुश्रुत संहिता की रचना कोई 2000 साल पहले हुई। चरक संहिता प्रमुख रूप से औषधि विज्ञान का ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता में मुख्यतः शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी दी गई है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में एक ग्रंथ प्रकाशित किया गया था, उसे आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का पहला वैज्ञानिक ग्रंथ भी माना जाता है। हाथ से त्वचा लेकर ताग्लियाकोजी ने नासिका संबंध की जिस विधि का विकास किया था वो अब इटालवी विधि के नाम से जानी जाती है। ताग्लियाकोजी ने चिकित्सा विज्ञान की अमूल्य सेवा की थी, फिर भी उसे ईसाई चर्च का कोपभाजन बनना पड़ा। उसे धन से बहिष्कृत कर दिया गया और उसके शव को चर्च के कब्रिस्तान से निकालकर दूसरे सामान्य स्थान पर गड़वा दिया गया। मगर बोलोना के नागरिकों के दिल में अपने इस देशवासी के लिए अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने ताग्लियाकोजी की स्मृति में एक मूर्ति स्मारक खड़ा किया। उस मूर्ति के एक हाथ में नाग है। ताग्लियाकोजी के बाद उसके शिष्य प्लास्टिक शल्यक्रियाएं करते रहे।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने अपनी आर्थिक क्षमता को मजबूत किया है और विकास के नए अवसर तैयार किए हैं। भारत की इस आर्थिक यात्रा में निर्यात की भूमिका लगातार बढ़ रही है। कभी बड़े पैमाने पर आयात करने वाले देश के रूप में देखे जाने वाला भारत आज वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों और सेवाओं की पहुंच लगातार बढ़ा रहा है। इस बदलाव में भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में MSME किसान, कारीगर और छोटे कारोबारी ऐसे उत्पाद तैयार करते हैं जिनकी घरेलू बाजार के साथ साथ वैश्विक बाजार में भी मांग है। इसलिए भारत के निर्यात को बड़े औद्योगिक केंद्रों से आगे बढ़ाकर छोटे शहरों, कस्बों और जिलों तक ले जाना जरूरी है। यहीं पर डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स यानी DEH पहल की भूमिका सामने आती है। इसका उद्देश्य देश के अलग अलग जिलों की आर्थिक ताकत और वहाँ मौजूद निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें वैश्विक बाजार से जोड़ना है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स पहल की शुरुआत कैसे हुई, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP की सोच से किस तरह आगे बढ़ती है और स्थानीय MSMEs किसानों तथा कारोबारियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने में इसकी क्या भूमिका है। श्रोताओं, भारत के अलग अलग जिलों में स्थानीय उत्पादों की अपनी एक अलग पहचान रही है। कहीं कृषि उत्पाद महत्वपूर्ण है तो कहीं हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग सामान या दूसरे स्थानीय उद्योग। इन्हीं स्थानीय क्षमताओं को आर्थिक अवसर में बदलने की सोच से उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आगे चलकर इसी कार्यक्रम ने एक समूचे अभियान का रूप ले लिया। आइए इस विकास क्रम को विस्तार से समझते हैं।
2: वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की एक राज्य पहल के रूप में हुई थी। इसे मुरादाबाद के पीतल उद्योग को आधार बनाकर शुरू किया गया और बाद में इसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मुख्य विचार था कि हर जिले से एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान की जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए, उसकी ब्रांडिंग की जाए और उसकी बाजार पहचान मजबूत की जाए, यानी स्थानीय उत्पाद और स्थानीय पहचान को आर्थिक अवसर से जोड़ा जाए। लेकिन किसी उत्पाद की पहचान और उसकी ब्रांडिंग के बाद अगली चुनौती ये थी कि उसे बड़े बाजार तक कैसे पहुंचाया जाए और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए किस तरह तैयार किया जाए। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए 2019 में डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स की शुरुआत हुई और 2023 की विदेश व्यापार नीति में इसे औपचारिक रूप दिया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जोर मुख्य रूप से स्थानीय उत्पाद की पहचान, ब्रांडिंग और प्रचार पर था, जबकि डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स पहल ने इसका दायरा बढ़ाकर निर्यात को बढ़ावा देने और पूरे स्थानीय तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान दिया। इस नए अभियान के तहत वाणिज्य विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT की अगुवाई में अलग अलग सरकारी योजनाओं, संस्थाओं और उद्योगों के बीच तालमेल पर जोर दिया जा रहा है। इस पहल को एक अलग वित्तीय योजना के बजाय ऐसी व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया है जिसमें केंद्र और राज्य की मौजूदा योजनाओं, संस्थाओं और उद्योगों के बीच तालमेल बनाकर जिलों में निर्यात का माहौल तैयार किया जाता है। इसी व्यवस्था को कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क कहा जाता है। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज यानी DEPCs काम करती है। ये समितियाँ जिले में निर्यात की संभावनाओं की पहचान करती हैं, स्थानीय समस्याओं को समझती हैं और उद्योग, निर्यातकों तथा दूसरे संबंधित पक्षों के साथ मिलकर उनके समाधान की दिशा में काम करती हैं। जनवरी 2026 तक DEH पहल देश के 770 से अधिक जिलों को अपने दायरे में ला चुकी थी। ये इस बात को दिखाता है कि निर्यात की योजना अब कुछ बड़े औद्योगिक केंद्रों तक सीमित रखने के बजाय देश के अधिक से अधिक जिलों तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
1: श्रोताओं, इस पहल के तहत कृषि, विनिर्माण, हस्तशिल्प और GI टैग वाले उत्पादों सहित अलग अलग क्षेत्रों की निर्यात क्षमता की पहचान की जा रही है। उदाहरण के लिए गुजरात के साबरकांठा में सेरेमिक, टाइल और आलू, अरावली में खनिज, कृषि प्रसंस्करण और ग्लास, महाराष्ट्र के जलगांव में केला और बैंगन, मध्य प्रदेश के आगर मालवा में संतरा तथा छत्तीसगढ़ के बस्तर में लौह, शिल्प, चावल, ज्वार और मक्का जैसे उत्पादों में निर्यात की संभावना पहचानी गई है। लेकिन किसी उत्पाद का अच्छा होना उसे निर्यात योग्य नहीं बनाता। वैश्विक बाजार में पहुंचने के लिए गुणवत्ता के साथ प्रमाणन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग भी जरूरी है। इस योजना के तहत इन पहलुओं के बारे में स्थानीय कारोबारियों में जागरूकता और उनकी क्षमता बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। आइए इन प्रयासों को विस्तार से समझते हैं।
2: निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है बाजार तक पहुंच। डिजिटल माध्यमों और ई कॉमर्स ने छोटे कारोबारियों के लिए ये रास्ता आसान किया है। इस अभियान के तहत अमेज़न, शिप रॉकेट और DHL जैसे ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की गई है। इससे MSMEs को कम लागत वाली कूरियर और शिपिंग सुविधाओं तक पहुंच मिल सकती है। वहीं डाकघर, निर्यात केंद्र, छोटे कारोबारियों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले निर्यातकों के लिए कम लागत वाली डाक निर्यात सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इनमें दस्तावेज, पैकेजिंग और छोटे सामान भेजने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। निर्यात के लिए जरूरी जानकारी और कौशल बढ़ाने के लिए DGFT के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ मिलकर जिला प्रशासन जागरूकता और स्किलिंग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें लॉजिस्टिक्स की योजना, निर्यात की प्रक्रिया, पैकेजिंग और नियमों का पालन जैसे विषय शामिल होते हैं। इन कार्यक्रमों में ECGC, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, इंडिया पोस्ट और एक्सिम बैंक जैसे संस्थान भी सहयोग कर रहे हैं। इस अभियान के तहत जमीनी स्तर पर निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष पहल भी की जा रही है। DGFT ने एक्सिम बैंक के साथ मिलकर ग्रासरूट्स इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपमेंट यानी ग्रिड कार्यक्रम के तहत 6 जिलों अनंतपुर, रायपुर, सोलन, त्रिपुर, कानपुर और कोल्हापुर को चुना है। इसमें जिले की विशेष जरूरतों और उद्योगों के सामने आने वाली समस्याओं को समझकर उनके लिए अलग अलग उपाय तैयार किए जा रहे हैं। अगर कोई कारोबारी इस पहल का लाभ लेना चाहता है तो सबसे पहले वे अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान में शामिल उत्पादों और सेवाओं की जानकारी ले सकता है। नए निर्यातकों को इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड यानी IEC के लिए DGFT के माध्यम से पंजीकरण कराना होता है। इसके अलावा कारोबारियों के लिए सरकार द्वारा आयोजित बायर सेलर मीट्स, प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना भी वैश्विक बाजार की जानकारी और खरीदारों तक पहुंच बनाने का माध्यम है। समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
1: श्रोताओं, भारत की निर्यात यात्रा अब एक नए चरण में पहुंच रही है। 2025-26 में देश का कुल निर्यात 863 अरब 11 करोड़ अमरीकी डॉलर के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा। खास बात ये रही कि इस वित्त वर्ष की चारों तिमाहियों में अलग अलग स्तर पर अब तक का सबसे अधिक निर्यात दर्ज किया गया। देश के व्यापार इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। इसमें सेवा क्षेत्र की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। 2025-26 में भारत का सेवा निर्यात बढ़कर 421 अरब 32 करोड़ अमरीकी डॉलर हो गया, जो 2024-25 के 387 अरब 55 करोड़ अमरीकी डॉलर की तुलना में 8.71% अधिक है। वहीं वस्तु निर्यात 437 अरब 70 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर 441 अरब 78 करोड़ अमरीकी डॉलर हुआ, यानी 0.93% की वृद्धि। आने वाले वर्षों में भारत ने निर्यात को और बड़े स्तर पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। सरकार वर्ष 2030-31 तक कुल 2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसमें 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के वस्तु निर्यात और 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के सेवा निर्यात का लक्ष्य शामिल है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल बड़े उद्योगों और बड़े शहरों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। भारत के अलग अलग जिलों में मौजूद MSMEs, किसान, कारीगर और स्थानीय उद्योग भी इस निर्यात यात्रा का हिस्सा बने। यही डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब जैसी पहल का बड़ा महत्व है। ये अभियान आत्मनिर्भर भारत की व्यापक सोच से भी जुड़ता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलग रहना नहीं, बल्कि अपनी उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करके भारतीय उत्पादों को दुनिया के बाजार में मजबूती से पहुंचाना है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह।

0: गाजियाबाद भारत की राजधानी से सटे ऊपरी गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इसी जिले के गांव चोलस से आते हैं हमारे सफल किसान शिव कुमार, जो दूसरे किसानों के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं, जिन्होंने साधारण खेती नहीं बल्कि ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती और पशु पालन दोनों को एक साथ चुना। शिव कुमार जैविक खेती से मिले फल सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वो कैसे, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग करता हूं और नेचुरल फार्मिंग भी तो मैं अब से करने लगा हूं। पहले मैं जैविक खेती करता था। 2005-06 से मैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के संपर्क में आया, जहां से ये केंचुए पालन मुझे सीखने को मिला और मैंने इनसे ट्रेनिंग लेकर के विधिवत तरीके से अपने यहां पर केंचुए पालन शुरू किया, जिससे मुझे केंचुए पालन के साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट भी मिलता था और वर्मी वास भी मिलता था। इससे क्या हुआ कि जब मैंने अपने खेतों में विधिवत तरीके से अप्लाई किया तो मैंने वर्मी कंपोस्ट से कुछ किसानों को बेचा भी कि भाई इस विधि से हम जैविक पे आ सकते हैं, और जो हम जहरीली खेती कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं या ये केमिकल फार्मिंग से पेस्टिसाइड से जो हम खेत में लगा रहे हैं, इससे हम लोगों को निजात मिल सकता है, जिससे हम जहर मुक्त भोजन ले सकते हैं।
0: आज भले ही शिव कुमार अपने गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन रहे हों, लेकिन ये सब करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें मदद मिली गाजियाबाद के राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से, जिनकी मदद और सही सलाह अपनाने के बाद शिव कुमार आज एक सफल किसान बनने की राह पर अग्रसर है। कैसे शिव कुमार और उनके जैसे हजारों लाखों किसान खेत की मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के उप निदेशक जगत सिंह।
2: कुमार जी, वर्ष करीब 2005 से ही एक इनोवेटर के रूप में उभरे हैं और वर्ष 2014 से ये राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से जुड़े। तो जब इनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई तो इनसे मुझे पता चला कि इनके खेत की मिट्टी का पीएच हाई है और खेत में मोटे मोटे ग्रेवल्स हैं, माने कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर हैं, जो निशानी है ऊसर भूमि की या हाईली सैलाइन एल्कली की। तो उसी समय से हमने इनको जैविक खेती के परिपेक्ष में दो तीन चीजें बताई थी कि एक तो कंटिन्यू आपको ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करना है, पकी और पची हुई खाद का इस्तेमाल करना है, जहां जहां पे सैलाइन एल्कली के पैचेज हैं वहां पे गोबर डाल के और थोड़ा मीठा डाल के उसको गलाना है, और जहां पे ज्यादा खारी सॉइल है वहां की मिट्टी उठा के उसमें मीठी मिट्टी और गोबर डालना है। तो पहले बार में इन्होंने ये काम किया। दूसरी बार में हमारे केंद्र से कुछ कल्चर दिए जाते थे जो डिकम्पोज करने का काम करते थे, शिव कुमार जी ने उस कल्चर का अपने खेतों में प्रयोग किया और उस कल्चर के प्रयोग से जो खेत का जो सैलाइन एल्कली का जो नेचर था हाई पीएच, वो लो पीएच में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ जो खेत में 1.5 से 2 इंच मोटे पत्थर थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए।
0: अब ये जैविक खेती है क्या जिससे हमारे सफल किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जरा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जैविक खेती फसल उत्पादन की एक प्राचीन पद्धति है, जिसमें फसलों के उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध कई तरह के खनिज पदार्थों के जरिए पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि ऐसी खेती में प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने के साथ ही भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। जैविक खेती का मतलब एक ऐसी कृषि प्रणाली से है जिसमें फसलों के उत्पादन में रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के स्थान पर जैविक या प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती को लेकर शायद हमारे सफल किसान शिव कुमार ये जानते हैं कि जिस तरह जैविक खेती बीते कुछ समय में लोकप्रिय हुई है, उसी हिसाब से आने वाला समय जैविक खेती का भी है, इसलिए उन्होंने जैविक खेती को चुना।
1: जैविक हर किसी को चाहिए और नेचुरल उत्पाद हर किसी किसान को, हर किसी उसको चाहिए जिनको खाना है, तो उसको लेकर के जितना मेरे पास में उत्पाद था उससे डिमांड अत्यधिक थी मेरी, तो इसलिए मैं बंसी गोल्ड पहले से लगा रहा था। बंसी गोल्ड गेहूं मैंने एमपी वाला गेहूं लगाया था, उसका उत्पादन बहुत अच्छा आया और उसकी जो हमारी पैदावार थी वो थोड़ी सी इससे कम थी, लेकिन जो हमारा खाने में बहुत अच्छी गुणवत्ता देता था एचडी 226, उसका विकल्प एचडी 3226 वैरायटी करके मुझे राष्ट्रीय नेशनल सीड कारपोरेशन से प्राप्त हुई। केवल 6 क्विंटल बीज मुझे मिल पाया था, तो मैंने विधिवत तरीके से अपने खेत में नवम्बर में, यानी 17-18 नवंबर को मैंने इसको अपने खेत के अंदर लगा दिया था और इसको मैंने विजय सुपर सीडर से की, उसका सीड ट्रीटमेंट मैंने अपने जेल खाद से वही 1 चम्मच लेकर के और थोड़ा एक उसमें 1 लीटर पानी डाल करके, और मैंने लगभग 3 क्विंटल गेहूं को पर्याप्त मात्रा में उससे बीज शोधन किया था और थोड़ा सा उसमें मैंने हल्का सा 250 ग्राम गुड़ घोल कर भी उसको मिला लिया था। उसका मैंने विधिवत तरीके से उसका उपचार किया और उपचार करने के बाद में जो मेरे पास में वर्मी कंपोस्ट था तो मैंने अपने उर्वरक के फर्टिलाइजर की जगह वर्मी कंपोस्ट अगले टापे में भर करके पिछले में सीड डाल करके और मैंने अपने सुपर सीडर से इन खेतों की बिजाई कर दी है और यील्ड शायद इस बार बहुत अच्छा आएगा। सर मुझे रेट बहुत अच्छा मिल रहा है।
0: शिव कुमार का मानना है कि गांव में खेतीबाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ गांव का भी विकास होगा, तो वहीं सह फसली जैविक खेती पर सोने पर सुहागा का काम कर रही है जिससे शिव कुमार को 2 गुना लाभ हो रहा है। इस तरह सह फसली खेती करने से मेहनत मजदूरी के साथ साथ पानी, खाद, उर्वरक, बीज और कटाई का खर्चा निकल आता है।
1: पहले जैसे हम खेती कर रहे थे अभी भी और अच्छे तरह से उसको खेती को कर रहे हैं, हम फसल चक्र में लेकर आए हैं। तो फसल चक्र से फायदा क्या है कि जो हमारा ये जो वीड है ये वीड अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है फसल चक्र से। जैसे हमने अब तिलहन यानी तिलहन लगाया है तो तिलहन के बाद में फिर हमने इसके तिलहन के बाद में जैसे मक्का लगाया है, मक्का के बाद में हम और सब्जी वर्गीय यानी कद्दू वर्गीय फसल इस तरह से घिया, तोरई, ककड़ी, खीरा ये इस तरह से ले रहे हैं और इससे जो है किसान भाई समझें कि इससे अत्यधिक बेनिफिट है। सब्जी से जो आदमी उस किसान को जो मिलता है उससे बहुत ज्यादा कुछ मिलता है।
0: इन फसलों में धान और गन्ना जैसी फसल मुख्य है। गन्ने के साथ सह फसली करने के एक नहीं कई फायदे हैं। जहां गन्ने की फसल को पकने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं वहीं 60 से 90 दिनों में दूसरी फसलें पक जाती हैं। इस दौरान बीच बीच में सब्जियों और दलहनी फसलों की खेती करने से 2 से 3 महीनों में दूसरी फसलों की उपज से पैसे मिल जाते हैं। अच्छी बात ये भी है कि ऐसा कर हमारे सफल किसान अपनी जैविक खेती से दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: हेलो, मेरा नाम नीलम है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ। मुझे यहाँ पे एक बार रीड इंडिया वाले हमारे उधर सर्वे करने आए थे, उनके थ्रू मुझे रीड इंडिया के बारे में पता लगा, फिर मैं इधर आने लग गई, मैं रीड इंडिया से जुड़ गई। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ से पार्लर भी सीखा है और कंप्यूटर भी। इस टैग के कोर्स में मैंने IT बनाना और किसी की लोकेशन सेंड करना, और पहले मैं घंटों उसकी लाइन में, बैंक की लाइन में खड़ी रहती थी, बट जब से फ़ोन मतलब इसकी नॉलेज मुझे हुई है कंप्यूटर की, तब से मैं अपने फ़ोन में ये डाउनलोड करके कहीं भी पैसे सेंड कर सकती हूँ, पैसे भेज सकती हूँ, और उससे मतलब कैब करके मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और सबसे बड़ी बात जो रीड इंडिया से जुड़ने के बाद मेरे साथ हुई है वो ये कि मैं घर में रह के डिप्रेशन में रहने लग गई थी, अब मैं फ्री माइंड हो गई हूँ, मैं मतलब आज़ाद होके सोच सकती हूँ, और थोड़ा मेरा दिमाग भी मतलब सही रहने लग गया है। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी घर में रह के, मैं बाहर भी कहीं नहीं जाती थी, और घर में रह के यही रहने लग गया था, बस डिप्रेशन ही रहने लग गया था। अब यहाँ आके मैं बिल्कुल ठीक रहने लग गई हूँ। हाँ, मैं हाउसवाइफ के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बाहर आइए, आपको नहीं सीखना नहीं है वो ठीक है, बट आप आइए, सीखने के बहाने से ही आइए, ताकि आप मतलब मेंटली तौर पर सही रह सकें, और आपको एक दूसरे से बात करके कुछ नया पता लगे। मतलब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो कुछ अच्छा ही पता लगे अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में, बहुत कुछ आप यहाँ आके जान सकते हैं। थैंक यू रेड इंडिया।
2: Hello everyone, my name is Lancy and I passed 10th class. Then I think to join Read India Academy to improve my condition. मैंने Academy join की Read India, और उसमें हमारा course start हुआ TEG, Technology Empowering Girls. ये एक course है जो women और girls के लिए है, ये women और girls की बैड कंडीशन को इम्प्रूव करता है। जैसे पहले घरों में महिलाएं निकलती नहीं थी और कोई निकलने नहीं देता था, भाई और उनके पिता, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ये प्रोग्राम चला है तो इसके लिए सब यहाँ पे वुमेन और गर्ल्स आती हैं, कंप्यूटर कोर्स करती हैं और सिलाई करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं जिनसे वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, और आगे भी ये प्रोग्राम चल रहा है। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया है 21 डेज़ का भी, और मैं बेसिक कंप्यूटर भी कर रही हूँ, और मैंने इंटरनेट के थ्रू मेलिंग सीखी है, वेबसाइट से लिंक बनाना सीखा है, और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी है। पहले मतलब मुझे कुछ नहीं करना आता था, मुझे किस सब की ज़रूरत होती थी, लेकिन आज कल मैं खुद कर रही हूँ ये सब, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती, बस मैं बहुत इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया एकेडमी।
3: गुड आफ्टरनून, माय नेम इज तनु तनवर। आई पास 10th क्लास एंड आई जॉइन रीड इंडिया एकेडमी इन शाहबाद मोहम्मदपुर। दिस इज ओनली वन एकेडमी हु टीच अस कंप्यूटर। दिस एकेडमी हेल्प्स टू बी अ वुमेन इंडिपेंडेंट। रीड इंडिया स्टार्ट्स टैग प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स ओनली टू इम्प्रूव द बैड कंडीशन फॉर वुमेन्स, and it helps us in form filling, and also we helps our parents, then we also reserve tickets. Thank you.
4: I'm Shweta. I study in IGNU University, or I done NPTT course for Polytechnic Institute Rajouri Garden. और हमारे जो यहाँ पे शाहबाद में ये है ना NGO, मैं यहाँ से क्लासेस ले रही हूँ टैग की, तो इससे मेरे को काफ़ी चेंजेस आए हैं, और थोड़ा सा लगा के भाई यहाँ पे आके हाँ बाकी को भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी हेल्प है, मतलब टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, कोई दबाव नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, और दूसरा फिर इससे ये है कि नॉलेज बढ़ती है यहाँ पे आके एक दूसरे को, मतलब हम जाके जैसे हम आ रहे हैं किसी को बता रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, तो इससे काफ़ी चेंजेस आते हैं, मतलब किसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो पास में है, और ऊपर से यहाँ पे कोई ऐसे प्रेशर वाली बात नहीं, ऐसे कोई मतलब फोर्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए, कोई बता नहीं रहा, इसमें ये होता है। और मतलब होना चाहिए कि हर घर से कोई एक भी आए ना, तो ये नहीं मतलब कि सिर्फ घर में या एक फैमिली में, इसमें पूरे एरिया में चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लाना चाहें तो। और उसके बाद जैसे होती है ना फैमिली, टाइम से पहले मतलब लड़कियों को मतलब घर बिठा लेते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कंडीशन लगा लो, कुछ भी हो, जिससे लड़कियां घर बैठ जाती हैं, पढ़ाई कर नहीं पाती, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे, इसमें लाइन में आने से, क्योंकि इसमें मतलब इतना कोई ज़्यादा हाई फाई फीस वगैरह भी नहीं लगती कि जिससे भाई कोई अफोर्ड नहीं कर पाए। इसमें नॉर्मली होता है फाइनली, मतलब ये कि जैसे नॉर्मली फैमिली होती है वो भी कर सकती है, और जो मतलब बिल्कुल लो होती हैं वो भी कर सकती हैं। और जैसे मतलब भाई होती है कुछ फैमिली जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ लड़कों को करती हैं कि भाई लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ सकती, और शादी वादी कर देते हैं, उनकी पढ़ाना नहीं चाहते उनको आगे, तो उनके लिए भी मतलब है कि भाई वो कर सकती हैं आके, तो उनको लगेगा, खुद ही लगेगा मतलब चेंजेस आ जाते हैं। और इससे मतलब इतना कुछ सिखाते हैं हमें यहाँ पे ये कि मतलब हमें खुद लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग वर्क में, और हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन मतलब कुछ भी वर्क है वो हम कर सकते हैं। तो इससे हमें हमारे लाइफ में भी चेंजेस आते हैं और घर वालों के में भी आते हैं, और इससे ये आगे हमारा जो फ्यूचर होता है ना वो सेव हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज अपने पैरों पर खड़े तो तभी तो अपने बच्चों को हम बना सकते हैं मतलब इंडिपेंडेंट। अगर बच्चों को कुछ सिखाना तो उसके लिए पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इससे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ जानकारी होगी, हमें कुछ डिटेल्स होंगी, तभी हम किसी के सामने मतलब रख सकते हैं। एक शादी करना और मतलब लाइफ को घर में दबा के रखना, ख़त्म कर देना, सब कुछ नहीं होता आज के टाइम में। मतलब जितना बढ़ो आगे उतना कम है, और हर किसी को बढ़ना चाहिए, किसी एक को नहीं, हर किसी को, जहाँ से जैसी हेल्प मिलती है, जो मिलती है वो करनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ यही कर सकता है, यही बोल सकता है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। सबको है मतलब एक फ्रीडम होती है अपने आप में, लाइफ अपनी है, किसी का प्रेशर नहीं होता कोई के मतलब हम किसी के प्रेशर में आके अपनी लाइफ ख़राब कर दें, या मतलब बोल ले नहीं, कुछ नहीं करें, आगे नहीं बढ़े। एक दो बार मतलब होता है भाई, डर होता है एक, लेकिन बार बार निकलने से ना सब डर खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है ख़त्म करने से ख़त्म होएगा, ऐसे डरने से तो डर बढ़ता ही है, कोई मतलब दूसरा उसको ख़त्म नहीं कर सकता आके। अब हम हैं जैसे कुछ होती हैं लड़कियाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को फ्रीडम होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे सिर्फ पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया है, बाकी फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि सबको ये था ट्वेल्थ कर लिया, पास आउट हो गया, स्कूल शादी कर दो, ये वो। लेकिन मेरे पेरेंट्स शुरू से वर्किंग है, तो वो चाहते हैं, उनको पता है पैसे की कीमत क्या है, तो वो चाहते हैं मतलब तो बच्चे कुछ अच्छा करें, ताकि उनको इस लाइन में ना जाना पड़े, और वो अपने पैरों पे खड़े हो, मतलब अच्छे से अच्छा काम करें, और दुनिया में मतलब उनकी एक अलग पहचान हो। तो इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ हूँ। और एक शादी की तो एक लास्ट में एक वो होता है कि भाई अब तो करनी है, वो तो एक लास्ट मोमेंट होता है कि अब तो भाई स्टेप लेना ही है। उससे पहले ना सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना चाहिए, कैसे लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। ज़रूरी नहीं होता कि मतलब घर वालों ने बोल दिया आप सुन के बैठ गए, चलो भाई कोई नहीं, उनको समझाना चाहिए अपने तरीके से, ऐसे नहीं कि लड़ लो, ये कर दो वो कर दो, नहीं, प्यार से समझाओ, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है। और वैसे भी आजकल तो हर कोई लड़का भी अच्छा नहीं मिलता, हर कोई फैमिली भी अच्छी नहीं मिलती, वो तो किस्मत की बात है, सुख दुख तो किस्मत का होता है। तो इसलिए हमें जितना हो सके ना अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिपेंडेंट होकर मतलब सोचना चाहिए, लास्ट एक मोमेंट होता है जो स्टेप लेना है, उससे पहले अपनी लाइफ बनाओ, जो करना है वो करो, बाकी करो सिर्फ ऐसा ही कि घर वालों को भी अच्छा लगे और खुद का भी एक स्टैंड और दुनिया में अपनी पहचान हो।
5: इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी शैलजा जी को। शैलजा जी आगरा से आए हैं हमारे साथ और करीबन पिछले 10 साल से जुड़ के हमारे साथ काम कर रहे हैं, सो शी शेयर हर एक्सपीरियंसेस विद ऑल ऑफ अस।
6: आई एम शैलजा फ्रॉम आंध्र प्रदेश। I'm a coordinator and a small gist I would like to tell about my center. My center is on the fence of a forest called Kaundinya, which runs across Chittoor district. So as we all, many of my friends were talking about their health. So as we all know, it's a need of the hour where we have to awaken ourselves and go into a better life. For a better life, we need a better food. So I would like to take you all across millets, which is being spoken widely these days. So I'll just introduce you all to the millets and their benefits. I have a small PPT done. I will just talk to you all. Millets are these small seeds which are grown with a very less water. So my place is a place where we do not have water. We depend on rain-fed crops. So this is one of the things, these millets, could you, these are the different types of millets. We have foxtail millet, ragi, which is a staple food of South India. This is little millet, we call it samlu in our language. So these are grown in parts of Asia. These are very rich in food, and they are very rich in protein, fiber and minerals. They are used in traditional foods of South India like pongal, idli and dosas. Then pearl millet. Pearl millet is also known as bajra. I think most of the North Indians also use bajra, which is rich in protein again and essential minerals like iron and magnesium. It is gluten-free, making suitable for individuals with gluten intolerance. This helps in reducing risk of cardiovascular diseases and diabetes due to high fiber content. Then this also provides sustained energy due to the slow digestion of carbohydrates. This is our staple food in South India, especially in Karnataka and parts of Andhra Pradesh where I live. This is exceptionally rich in calcium, making it beneficial for bone health. Today, most of the people are struggling with vitamin D deficiency, calcium D deficiency. So particularly vegetarians who may have limited source of calcium, we can get in this. This can be consumed in many various ways. We can make, which is called as a ragi bowl, or you can make a bread out of it, or you can even have a porridge out of it. So this also helps in weight management as it digests very slowly. It helps in controlling blood sugar, making it suitable for individuals with diabetes. This also contains amino acids, making complete protein source. Then foxtail millet. This is again very good for diabetes, low glycemic index, making it suitable for individuals with diabetes and controlling sugar levels. It is also rich in antioxidants, which helps in reducing oxidative stress and inflammation in the body. This contains good amount of iron and calcium, supporting overall health and preventing anemia and bone-related issues. Most of the millets are very rich in fiber and aiding to digestion. Barnyard millet. This is also widely cultivated in India. This is also rich in fiber, minerals and particularly zinc and iron. This also can be used in porridge, upma and idlis. So as I already said, these are the benefits, nutritional benefits which millets have. They are gluten-free, low glycemic index and nutritional benefits. Another thing is, this does not need any pesticides to grow. So it is chemical-free and cultivated with a very less water, unlike wheat or rice. And I'm a farmer too, so I do know all this. And as many people have said, even I'm an award winner of Andhra Pradesh as the best women farmer of 2018.
7: Thank you so much, Devji Bhai, Aarti, Seema, and Ahmed, Sonal, Shailja, and Inder and Jessica. It was a wonderful session. I just want to make one statement here. We call about sustainability. We think and we act. But sustainability cannot be achieved if stomach is not full. That was the REAP's agenda. Going to the people who really need us the most and make them earn money to serve their family, to get good food, and then provide good education to their children. That we were able to achieve when we were addressing the sustainability goals. The second point I just wanted to make here is empowerment. Empowerment, just creating opportunity at their doorsteps. Again, helping them to save money. They don't have to send their children out, have dual houses, spend more money for their residing outside the village. So we created the opportunity in their villages. The third point which I would like to emphasize, enable women to realize the importance of education. When they are visiting the library and engaging themselves with our livelihood component so that they can save money for the higher education and the continuous education of their children. That is the third thing we achieved during this process. Fourth was delayed age at marriage. Girls are very smart in rural areas. They say, now I am earning 5,000, so I have to marry that girl who is earning 10,000. तो ये बहुत बड़ा साइलेंट इम्पैक्ट है जो हम नहीं रियलाइज करते. और ये मैं जहां जहां जाती हूँ, जिस विलेज में जाती हूँ, ये मुझे अचीव होता है. और द लास्ट पॉइंट हियर इज कि इवन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, बिकॉज शी इज एंगेज नाउ, शी वॉन्ट्स टू मैनेज हर टाइम एंड शी इज द डिसीजन मेकर for giving birth to the children and bearing them. These are the goals which are attached not only with education and livelihood, but directly, indirectly, we are creating the impact for the holistic development of the community. I would also take this opportunity to share one thing here. When I went to Devji Bhai's house in Bhuj, I met his father. मैं इनके पिताजी को मिली वहां पे, जो बहुत बुजुर्ग है, 90 प्लस इयर्स के हैं. और मुझे उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. उन्होंने ये स्टोरी सुनाई कि हमें जब गांव में कीर्तन होता है, जहां पे सत्संग होता है, वहां पे हमें जाने नहीं दिया जाया था. और मैं क्या करता था, एक पिलर से चढ़ के ऊपर बैठ के सब कुछ सुनता था, क्योंकि लाउड स्पीकर लगा होता था. और उस लाउड स्पीकर से सुन के जो मैं वैल्यूज लाता था, वो मैं अपनी कम्युनिटी में सुनाता था. एंड दैट इज व्हाट रीड इज डूइंग, बिकॉज रीड इज अ वेरी डीप कल्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड वी प्रोवाइड वैल्यूज टू द कम्युनिटी आफ्टर प्रैक्टिसिंग दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. That is the impact we are creating, which doesn't come on the paper. So I really wanted to share this. You meet people here, you tell any girl, any participant to stand, she is full of culture, knowledge and practice values at home. When we say we are empowering women, we are not standing against their families. The first thing we tell, be supportive of your family. If you are learning, contribute to the development of your family and be supportive with your husband, with mother-in-law and the whole family, whether they are directly related or indirectly related, and they are the stalwarts in the community. They are respected. The stories are that earlier they were at home, now they walk in the village and people say, ये रीड की मेंबर है, ये रीड की टीचर है, ये रीड की ट्रेनर है, और लोग रास्ता खाली कर देते हैं और उनको हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि आप यहाँ से निकले. दीज आर द स्टोरीज विच आर हियर एंड व्हेन आई हियर आई रियली फील दैट आई शुड बी थैंकफुल टू द पर्सन हु स्टार्टेड रीड एंड गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स. भुज की जो इन्होंने बात करी कि वहां पे मैं औरतों को खुद मिलने गई थी, आधार कार्ड नहीं दिए थे उन्होंने. उन्होंने बोला, मैम आप आइए, पर हमारे इस क्षेत्र के बाहर जो बाउंड्री है, इसके अंदर लॉर्ड शिवा का इतना इम्पैक्ट है, अगर आप कुछ हमारे साथ करेंगे तो लॉर्ड शिवा आपके साथ गलत करेगा, तो इस बात को समझने के बाद हमारे साथ काम करिएगा. तो दैट इज द वैल्यू आई गेट व्हेन आई गो टू द कम्युनिटी. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग सच एक्सपीरियंसेस दैट यू यू नो एक्सपीरियंस्ड ऑन ग्राउंड.
8: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण.
9: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है. मैं हूं प्रियंका अरोड़ा. आज के कार्यक्रम का विषय है यूपीआई के 10 वर्ष भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति। भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने पिछले एक दशक में बड़ा बदलाव किया है। आज यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र की रीढ़ और वित्तीय समावेशन का एक अहम माध्यम बन चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक निगरानी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया यूपीआई अब अपने संचालन के 10 वर्ष पूरे कर रहा है। इन 10 वर्षों में यूपीआई के इस्तेमाल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां यूपीआई के जरिए वार्षिक लेनदेन की मात्रा 1,78,00,000 थी, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में ये बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है, यानी लेनदेन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री बताते हैं कि यूपीआई सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि ये नीति, प्रक्रिया और वितरण का एक शक्तिशाली संगम है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
10: साथियों, बीते दशक भारत के जिस रिफॉर्म ने दुनिया में हलचल मचा दी है वो है यूपीआई, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिसी, प्रोसेस और डिलीवरी के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है। जो लोग कभी बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े बेनिफिट्स के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, यूपीआई देश के ऐसे नागरिकों को सर्व कर रहा है। ये जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी है, ये रिफॉर्म किसी कंपल्शन से नहीं हुआ है, ये हमारा कन्विक्शन था।
9: तो सवाल है, यूपीआई ने भारत के भुगतान तंत्र को किस तरह बदला? छोटे से छोटे दैनिक भुगतान से लेकर बड़े धन हस्तांतरण तक इसकी भूमिका कैसे बढ़ी और भारत का ये डिजिटल भुगतान मॉडल किस तरह वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है? इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
11: भारत में डिजिटल भुगतान को आसान, तेज और व्यापक बनाने में यूपीआई की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यूपीआई का ऐसा अंतर संचालनीय भुगतान माध्यम है जिसके जरिए लाभार्थी को राशि रियल टाइम में उपलब्ध हो जाती है। एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से पीयर टू पीयर यानी दो व्यक्तियों के बीच सीधे पैसे भेजने और पीयर टू मर्चेंट यानी किसी दुकानदार या व्यापारी को भुगतान करने की सुविधा मिलती है। इस अवधि में यूपीआई लेन देन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR 188% रही। वहीं वार्षिक लेन देन मूल्य वित्त वर्ष 2016-17 में 0.07 लाख करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसकी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 155% रही। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई लेन देन की मात्रा में वर्ष दर वर्ष 30% और मूल्य में 21% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं। यूपीआई की पहुंच का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के डिजिटल भुगतान में इसकी हिस्सेदारी 84% रही और वर्ष 2025 में वैश्विक रियल टाइम भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 49% रही। यूपीआई का इस्तेमाल केवल बड़े शहरों या बड़े कारोबारों तक सीमित नहीं है, छोटे दुकानदारों, स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों के रोजमर्रा के भुगतान में भी इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। यूपीआई के शुरुआती महीने अगस्त 2016 में 90,000 लेन देन हुए थे। आज वही प्रणाली एक दिन में औसतन 66 करोड़ लेन देन संसाधित कर रही है। ये बदलाव केवल तकनीकी विकास का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये बताता है कि डिजिटल भुगतान किस तरह आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन यूपीआई की सफलता को समझने के लिए ये देखना भी जरूरी है कि इसका इस्तेमाल किस तरह के भुगतान में हो रहा है।
9: यूपीआई ने भुगतान को केवल तेज और आसान ही नहीं बनाया, बल्कि छोटे छोटे दैनिक भुगतानों को भी डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुकान पर भुगतान हो, किसी व्यक्ति को पैसे भेजने हो या किसी व्यापारी को डिजिटल भुगतान करना हो, यूपीआई ने इन सभी को एक ही डिजिटल ढांचे से जोड़ दिया है। लेकिन यूपीआई के लेन देन की प्रकृति क्या है? पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट लेन देन में क्या अंतर है और छोटे भुगतानों में यूपीआई की भूमिका कितनी बड़ी है? आइए सुनते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट।
12: यूपीआई की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है इसका व्यापक और विविध इस्तेमाल। यूपीआई के लेन देन के विश्लेषण से पता चला है कि व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन कुल लेन देन की मात्रा का 63% है। इससे पता चलता है कि छोटे और बार बार होने वाले खुदरा भुगतानों में यूपीआई का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी ओर व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P लेन देन मूल्य के मामले में सबसे अधिक है। कुल लेन देन मूल्य में P2P की हिस्सेदारी 71% है। यानी UPI एक तरफ रोजमर्रा के छोटे खुदरा भुगतानों का माध्यम है तो दूसरी तरफ लोगों के बीच बड़े धन हस्तांतरण का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। वहीं P2P लेन देन में 59% भुगतान 500 रुपए से कम के थे। इसके साथ ही 500 रुपए से अधिक लेन देन की हिस्सेदारी 41% रही। UPI ने डिजिटल विभाजन को कम करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने में भी भूमिका निभाई है। लेकिन UPI की कहानी केवल भारत तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में UPI ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। आज यह कई देशों में संचालित हो रहा है और सीमा पार डिजिटल भुगतान के वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है।
9: भारत में शुरू हुई UPI की डिजिटल भुगतान प्रणाली आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने UPI को लेनदेन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली माना है। वर्ष 2025 में वैश्विक रियल टाइम भुगतान में UPI की हिस्सेदारी 49% रही। तो किन देशों तक पहुंच चुका है ये UPI और आने वाले वर्षों में भारत के डिजिटल भुगतान के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है, आइए सुनते हैं हमारी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट।
12: वैश्विक मंच पर UPI और डिजिटल भुगतान का अगला दशक। भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में शुरू हुआ UPI आज वैश्विक स्तर पर पहचान बना चुका है। UPI की अभूतपूर्व वृद्धि, विश्वसनीयता और अंतर संचालनीयता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे लेन देन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली माना है। वर्ष 2025 में वैश्विक रियल टाइम भुगतान में UPI की हिस्सेदारी 49% रही। भारत में UPI के जरिए हर दिन औसतन 66 करोड़ से अधिक लेन देन संसाधित किए जा रहे हैं। इससे भारत त्वरित, सुरक्षित और समावेशी डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक प्रमुख देश के रूप में उभरा है। UPI अब सीमा पार डिजिटल भुगतान के वैश्विक मंच के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में UPI 11 देशों में संचालित है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल है। इसका अर्थ है कि UPI का प्रभाव अब केवल घरेलू डिजिटल भुगतान तक सीमित नहीं है, ये भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल की वैश्विक पहुँच को भी दर्शाता है। UPI की सफलता को केवल लेन देन की संख्या से नहीं मापा जा सकता। इसकी बड़ी उपलब्धि ये भी है कि इसने डिजिटल भुगतान को आम लोगों और व्यापारियों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ा है। आने वाले समय में नए उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को UPI पारितंत्र में शामिल करना महत्वपूर्ण होगा।
9: भारत में UPI के 10 वर्ष डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की कहानी बताते हैं। UPI से जुड़े सक्रिय बैंकों की संख्या वित्त वर्ष 2016-17 के 44 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 703 हो गई। आने वाले समय में नए उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को जोड़ना, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना और वित्तीय समावेशन को और व्यापक बनाना UPI के अगले दशक की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं होंगी। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी

0: मैं अब ऋतु को बुलाना चाहूंगी. ऋतु प्लीज कम ऑन माइक.
1: मैं आप सभी को नमस्ते करती हूँ. गुड इवनिंग एवरीवन. थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि एकदम से बोल दिया गया कि आपको बोलना है, और ये हमारे लिए एक गिफ्ट भी है कि एकदम से बगैर प्रिपरेशन के हमें बोलना, सबके सामने आना, ये एक बिग चेंज है हमारी लाइफ का. क्योंकि प्रिपरेशन करके तो बोलना बहुत इजी होता है, एकदम से कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल होता है. तो मेरे लिए बहुत सारे वर्डिंग है. अभी मैं बैठ के सोच रही थी कि क्या क्या बताऊं, क्योंकि मैम ने इतने लोगों की लाइफ चेंज की है, हम लोग बता नहीं सकते. सबसे पहले मैं अपने बारे में ही बताऊंगी. मेरी लाइफ इतनी ज्यादा चेंज हो गई है. मेरी शादी हुई थी 2012 में, और 2014 में हमारा सेंटर ओपन हुआ था मेहंदीपुर झज्जर डिस्ट्रिक्ट के गांव में. तो मैं बिल्कुल भी किसी को भी नहीं जानती थी वहां पे, और जो हमारी हवेली है उसको सभी गांव वाले अभी लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं. रीड इंडिया सेंटर बहुत कम बोलते हैं, सभी लोग लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं. और ये बहुत अच्छा भी है कि एक बंजर घर, वो एक बिल्कुल बंजर घर पड़ा था वहां पे, लोग उस गली में जाना भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो हवेली ऐसी थी कि लोग वहां पे जाने से डरते थे. तो फर्स्ट टाइम मैं उस हवेली में गई, वो हमारे पूर्वजों की हवेली थी. तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि जो हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, तो सबका जन्म यहाँ पे हुआ है. तो मैं भी देख के शौक हो गई. उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में शायद यहाँ पे कुछ ओपन हो, जैसे लाइब्रेरी है, या फिर देखते हैं क्या ओपन होते हैं. क्योंकि उस टाइम पे बातें ही चल रही थी 2012 में, जो रंजीत दलाल सर हैं उन्होंने बताया था. तो मैं देख के एकदम शौक हो गई कि ऐसी हवेली में कुछ खुलना, और फिर यहाँ इतने बीच गांव में वो चलना बहुत टफ है. तो मैंने देखा कि ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो गया. तो फिर जैसे ही वो लाइब्रेरी ओपन हुई, तो मैं कंटिन्यू स्टडी कर रही थी अपनी शादी के बाद भी. तो मैंने देखा कि लाइब्रेरी ओपन हुई है, तो क्यों ना मैं बीएड कर रही थी. तो मेरे बीएड के एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि लाइब्रेरियन का ही कोर्स क्यों ना कर लेती हूँ मैं. तो वो मैम ने ही मेरी लाइफ में इतना चेंज डाला है कि एकदम से लाइन चेंज हो गई. मैंने बिलीव किया, और उस टाइम मेरी जैसे कंटिन्यू स्टडी हो रही थी, तो मैं सेंटर पे आके ही मैं पढ़ती थी, और वहां से मुझे बहुत हेल्प मिली. जैसे घर पे गीता की बुक्स नहीं थी, तो मैम ने वहां पे गीता रखवाई हुई है. मतलब काफी सारी बुक्स हैं जो कि हेल्प मिलती है कि किसी भी टाइप की आप बुक पढ़ो. तो मैं उस टाइम गीता की बुक पढ़ती थी, और फिर उसके बाद अपने एग्जाम्स की तैयारी करती थी. तो इस तरह से डिलीवरी होनी थी मेरी, और ऑपरेशन के बाद 6 दिन के बाद मैंने एग्जाम भी दिया. क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं, मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप एग्जाम छोड़ दो, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप एग्जाम दो. लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं एग्जाम छोड़ दूंगी तो फिर लोग ये कहेंगे कि लिया था एडमिशन और छोड़ दिया. तो मैंने कहा नहीं, मैं एग्जाम दूंगी, कैसे ना कैसे करके मुझे एग्जाम देना है. तो मैंने एग्जाम दिया और मेरे अच्छे मार्क्स आए. मेरे 80% मार्क्स मैंने उस टाइम मेरे फिल्म में आए थे. तो मैं बहुत खुश हुई कि मैम ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वहां बैठ के पढ़ी. क्योंकि घर पे नेट भी इतना अवेलेबल नहीं होता, वहां बैठ के नेट से नोट्स निकालती थी मैं और तब पढ़ती थी. फिर उसके बाद मैंने एमलिब किया. एमलिब में भी ऐसे ही मैंने सेंटर पे बैठ के पढ़ाई की, क्योंकि घर पे हम लोग काम होता है इतना सारा, फैमिली मेंबर्स होते हैं, सबको संभालना. तो एक सेंटर ही ऐसा था जहां पे बैठ के पढ़ती थी मैं. वहां से मेरी लाइफ चेंज

गई बिल्कुल ही, मतलब मुझे स्टडी मिली हर एक चीज, चाहे मुझे किसी भी चीज का कोई भी बुक्स, अभी मेरा स्टाफ है अगर वो बोलता है कि हमें हमें क्या डिजाइन करना है तो हम लोग वहीं से सब कुछ सीखते हैं, नए नए डिजाइन सीखते हैं, तो मेरी लाइफ तो बहुत चेंज हुई है। दूसरा जो हमारी हवेली है वो किसी ने नहीं सोचा था कि एक बंजर जगह इतनी अच्छी बन जाएगी, और आज गांव का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो वहां पे नहीं आता है, क्योंकि जो हमारा गांव है वो बिल्कुल अप्रोच रोड पे है, तो ट्रैवल के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और बच्चों को शौक होता है कि स्टोरी बुक्स पढ़ना, या फिर कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं जिनको वो बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए मैंने जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स की बुक्स मंगवाई हैं, ऑनलाइन मैं ऑर्डर करती हूँ और उनके लिए लेके आती हूँ, और उन बच्चों ने 15-15 दिन में आते हैं वो, लेकिन पूरा साल मेरे से उन्होंने बुक ली है और वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये उनकी लाइफ का बिग चेंज है, क्योंकि वो ऐसे बच्चे हैं कि वो बुक नहीं खरीद पाते अगर लाइब्रेरी नहीं होती, और उनको बहुत हेल्प मिल रही है लाइब्रेरी से, और दलाल सर ने भी इतना सपोर्ट किया है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। सर हर टाइम बोलते हैं कि आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो प्लीज आप मुझे बताइए बगैर झिझक के, अगर आप मुझे रात को 10 बजे भी फोन करोगे तो भी मैं आपका फोन उठाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम पूछूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या करना है कैसे करना है। दलाल सर और गीता मैम, हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन प्रॉब्लम्स गीता मैम और सर ही सॉल्व करते हैं। थैंक यू मैम सबकी इतनी लाइफ चेंज करने के लिए। अभी एक और स्टोरी बताती हूँ मैं, हमारी बेनिफिशियरी है, उन्होंने हमारे सेंटर से कंप्यूटर कोर्स किया था, और उनके हस्बैंड की एक साल के बाद डेथ हो गई जब उन्होंने कंप्यूटर सीखा था, तो उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था कमाने के लिए, तो वो मतलब तैयारी करती थी घर बैठ के, तो उन्होंने कंप्यूटर के थ्रू ही बैंक में गई, वो उन्होंने हमारे सर्टिफिकेट्स दिखाए, तो उनको अभी आज इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, वो बैंक में काम करती हैं, और वो थैंक करती हैं मैम को कि मैंने सही टाइम पे कंप्यूटर सीखा, कि अब मैं जो कमा रही हूँ मेरे कमाने का जरिया ये सेंटर है, इसने मुझे इतनी ज्यादा मेरी मदद की है कि मैं यहाँ से सीख के अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अपने घर को चला रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी आपको हमारे गांव में, हम सभी के गांव में, क्योंकि वहां पे बहुत गरीब लोग हैं, किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो सेंटर पे आके स्टाफ के साथ शेयर करता है, और हम लोग भी अगर उनकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कि सभी की प्रॉब्लम सोल्व करें किसी ना किसी तरह। और अभी मैम को देख के ही हम लोगों में भी ये थॉट्स आए हैं कि शायद हम अगर कहीं प्राइवेट और जगह जॉब करते तो शायद हम लोग सेल्फी होते, हम अपने बारे में सोचते, लेकिन अभी हम रीड के साथ मैम को इतना अच्छा कि मैम सबके बारे में सोचती है, अभी हमारे भी बिल्कुल ही वैसे हो गई है हॉबी कि सबकी प्रॉब्लम्स अपनी प्रॉब्लम लगती है, हम सबके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। थैंक यू।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज के कार्यक्रम का विषय है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, स्वस्थ पशुधन समृद्ध किसान। भारत में पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में पशुओं को संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखना केवल पशु स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध किसान की आय, दुग्ध उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी NADCP की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश भर में टीकाकरण और वैज्ञानिक निगरानी के जरिए खुरपका और मुंहपका रोग यानी FMD तथा ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करना और इनके उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ना है। NADCP के तहत अब तक 147 करोड़ 16 लाख FMD वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है, जिससे 8 करोड़ 4 लाख किसानों को लाभ मिला है। वहीं वर्ष 2019 में FMD के 132 मामले सामने आए थे, जो वर्ष 2025 में घटकर 40 रह गए। ब्रुसेलोसिस के मामले भी 2019 के 22 से घटकर 2025 में 15 रह गए हैं। तो सवाल ये है, भारत में पशु रोग नियंत्रण के इस बड़े अभियान को किस तरह लागू किया जा रहा है, इसका किसानों और पशुधन की उत्पादकता पर क्या असर पड़ा है, और बदलते समय में तकनीक, डिजिटल निगरानी और वन हेल्थ जैसी अवधारणाएं इसमें क्या भूमिका निभा रही हैं? इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
2: रोग मुक्त पशुधन की दिशा में राष्ट्रीय अभियान। भारत में पशुधन लंबे समय से ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में मवेशियों की कुल संख्या 535.78 करोड़ थी, जिनमें 302.79 करोड़ गौवंशी मवेशी शामिल थे। इतनी बड़ी पशुधन आबादी के लिए बीमारी की रोकथाम और समय पर इसका इलाज बेहद जरूरी है। खुरपका और मुंहपका रोग यानी FMD एक अत्यंत संक्रामक वायरल बीमारी है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर जैसे विभाजित खुर वाले पशुओं को प्रभावित करती है। इस बीमारी से पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता, विकास, प्रजनन और काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए FMD का प्रभाव केवल पशु तक सीमित नहीं रहता, बल्कि किसान की आय पर भी पड़ता है। दूसरी प्रमुख बीमारी है ब्रुसेलोसिस, यह गाय और भैंसों में होने वाला प्रजनन संबंधी रोग है। इससे पशुओं के सामान्य प्रजनन कार्य प्रभावित होते हैं और दूध तथा मांस उत्पादन पर भी इसका असर पड़ सकता है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सितंबर 2019 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत FMD से बचाव के लिए योग्य पशुओं का हर 6 महीने में टीकाकरण किया जाता है। वहीं 4 से 8 महीने की बच्चियों को ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए उनके जीवन काल में एक बार टीका लगाया जाता है। कार्यक्रम केवल टीकाकरण तक सीमित नहीं है, इसमें पशुओं के कान टैगिंग, पंजीकरण, डिजिटल रिकॉर्ड, सिरो निगरानी, बीमारी की पहचान, नमूना परीक्षण और टीकों के लिए कोल्ड चेन जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य है कि बीमारी की पहचान समय पर हो, टीकाकरण का प्रभाव पता चलता रहे और जरूरत के अनुसार आगे की रणनीति तैयार की जा सके। NADCP के तहत अब तक FMD के 147.16 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इसका लाभ 8.04 करोड़ किसानों को मिला है। टीकाकरण के बाद की निगरानी से भी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वर्ष 2025 में टीकाकरण के बाद की निगरानी में गायों की बच्चियों में 75.63% और भैंस की बच्चियों में 67.17% सेरो कन्वर्जन दर दर्ज की गई है। यानी टीकाकरण के बाद बड़ी संख्या में पशुओं में बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हुई है। पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम है दूर दराज के क्षेत्रों तक चिकित्सा सेवाओं की पहुँच। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4019 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां संचालित हैं। ये टोल फ्री नंबर 1962 के माध्यम से किसानों के घर तक पशु चिकित्सा सेवाएं पहुंचाती हैं।
1: पशु रोगों पर नियंत्रण के लिए ये जरूरी है कि सरकार के पास पशुओं की संख्या, टीकाकरण और बीमारी से जुड़ा सही और समय पर उपलब्ध डेटा हो। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पशुधन से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अनुसंधान, वैक्सीन की गुणवत्ता, निगरानी और किसानों की सेवाओं की पहुँच को भी मजबूत किया जा रहा है। आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट।
2: आज के समय में किसी भी बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता के लिए सही डेटा और वैज्ञानिक निगरानी बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में भी डिजिटल तकनीक और वैज्ञानिक निगरानी को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस दिशा में भारत पशुधन पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस पोर्टल पर पशुओं का पंजीकरण किया जाता है और प्रत्येक पशु को 12 अंकों की विशिष्ट टैग आईडी दी जाती है। जुलाई 2026 तक इस पोर्टल पर 39 करोड़ से अधिक पशु पंजीकृत किए जा चुके थे। इससे पशुओं की पहचान, टीकाकरण और बीमारी से जुड़ी जानकारी को एक जगह दर्ज करने में मदद मिल रही है। डिजिटल रिकॉर्ड का फायदा यह है कि किसी बीमारी के फैलने की स्थिति में प्रभावित पशुओं और क्षेत्रों की पहचान करना बेहद आसान हो जाता है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, रियल टाइम डैशबोर्ड और टीकाकरण की ट्रेसिबिलिटी जैसी व्यवस्थाएं इस निगरानी को और मजबूत कर सकती हैं। टीकों की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इन प्रयासों का संबंध केवल बीमारी को कम करने से नहीं है। सरकार का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रति पशु प्रति वर्ष औसतन 3000 किलोग्राम दूध उत्पादन हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना है। इससे स्पष्ट है कि पशु स्वास्थ्य को अब केवल बीमारी की रोकथाम के नजरिए से नहीं बल्कि पशुधन की उत्पादकता और किसान की आर्थिक स्थिति से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
1: वन हेल्थ का मतलब है मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानना। अगर किसी पशु बीमारी की समय पर पहचान हो जाए और उसे नियंत्रित कर लिया जाए तो इससे इंसानों में संक्रमण का जोखिम भी कम किया जा सकता है। महामारी के अनुभवों ने हमें ये भी दिखाया है कि भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है। इसी पहलू को समझते हैं हमारी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट में।
3: आज दुनिया के सामने संक्रामक और जूनोटिक बीमारियों का खतरा एक महत्वपूर्ण चुनौती है। जूनोटिक बीमारियां वे होती हैं जो पशुओं से मनुष्यों में फैल सकती हैं। इसलिए पशुओं में बीमारी की जल्द पहचान, प्रभावी निगरानी और समय पर नियंत्रण मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम इसी व्यापक सोच को मजबूत करता है। वन हेल्थ दृष्टिकोण मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य की आपसी निर्भरता को स्वीकार करता है। भारत में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन को 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई थी। इस मिशन का उद्देश्य देश में वन हेल्थ से जुड़ी गतिविधियों को समन्वित और एकीकृत करना है। सरकार ने पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश भी तैयार किए हैं। इनका उद्देश्य वैज्ञानिक पशु चिकित्सा पद्धतियों, दवाओं के तर्कसंगत इस्तेमाल और एंटी माइक्रोबियल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही पशु रोगों के लिए संकट प्रबंधन योजना तैयार की गई है ताकि बीमारी के प्रकोप की स्थिति में तेजी से कार्रवाई की जा सके। वित्तीय वर्ष 2026-27 में पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कुल 2010 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय रखा गया है। इसमें रोग नियंत्रण, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह NADCP ने भारत में पशु स्वास्थ्य को एक व्यापक और डेटा आधारित व्यवस्था से जोड़ने की नींव रखी है।
1: भारत के लिए पशुधन केवल कृषि से जुड़ी संपत्ति नहीं है, ये करोड़ों किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार और देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अब तक 147 करोड़ 16 लाख FMD वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है और इससे 8 करोड़ 4 लाख किसानों को लाभ मिला है। विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ते हुए पशु स्वास्थ्य में निरंतर निवेश किसानों की समृद्धि के साथ साथ भविष्य की महामारियों से निपटने की राष्ट्रीय क्षमता को भी मजबूत कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने और तकनीक की सहयोग दिया है अरुणदीप सिंह ने। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: नमस्कार श्रोताओं, चेतना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी शांति तिवारी।
1: और मैं हूं जगबंधु। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम हर बार आपके लिए सामाजिक विषयों पर एक नाटक सुनवाएंगे।
0: हमारा आज का नाटक सच्ची घटना पर आधारित है। इस नाटक का विषय है नारी का संघर्ष।
1: आज हमारे समाज में इतनी भ्रांतियाँ फैली हुई है कि हमारे समाज में आज भी लड़कियों को वो अधिकार नहीं दिया जाता जो उन्हें मिलना चाहिए। आए दिन एक से एक घटनाएं सुनने को मिलती है। कहीं दहेज के कारण लड़कियों की हत्या, तो कहीं कम उम्र में शादी कर उनको प्रताड़ित किया जाता है, जिससे वो अपना बौद्धिक विकास और मौलिक अधिकार सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाती। आज भी लड़कियों की उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी कर दी जाती है। ऐसी ही एक घटना भलसवा जे कॉलोनी में एक लड़की के साथ घटित हुई है। तो दोस्तों, प्रस्तुत है ये नाटक।
2: सीमा की माँ, अरे सीमा की माँ,
3: क्या है, क्यों शोर मचा रखा है?
2: अरे आज मुझे मेरा दोस्त मिला, उसने हमारी सीमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया है।
3: अच्छा?
2: हाँ, लड़का मुंबई का ही रहने वाला है। मुंबई जैसे बड़े शहर में उनका अपना मकान है, और तो और लड़का 2 साल दुबई में भी रह गया है। अब मुंबई में खराता काम करता है। अच्छा परिवार है, 2 भाई और 1 बहन है। लड़के के माता पिता भी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, और तो और उन्होंने हमारी सीमा का हाथ स्वयं मांगा है। अरे हमारी सीमा राज करेगी, राज।
3: अजी, परिवार का तो सब कुछ ठीक है, परंतु हमारी सीमा की उम्र भी तो कम है। अभी पढ़ रही है, 10वीं की परीक्षा ही तो पास की है, आगे और भी पढ़ना चाहती है। इतनी जल्दी करके उसका भविष्य खराब करना है क्या?
2: अरे भाग्यवान, उसका भविष्य खराब नहीं, सुधर जाएगा। लोग शादी के बाद भी तो पढ़ते हैं, अगर ना भी पढ़ी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, और बाद में घर का काम ही तो करना है।
0: इस तरह सीमा के माता पिता अच्छे लड़के के चाह में जगह जगह से पैसा उधार लेकर उसकी शादी की, ताकि बिरादरी में उनकी नाक न कटे और इज्जत बनी रहे। श्रोताओं, सीमा के गरीब माता पिता ने शादी कर उन्हें सीमा को ससुराल विदा कर दिया।
1: सीमा के ससुराल का परिवार तो बहुत सही था, लेकिन लड़के की आदत के बारे में किसी को पता नहीं था। शादी के कुछ दिनों के बाद पता चला, लड़का रोज घर पर शराब पीकर आता और सीमा को परेशान करता।
2: अरे सीमा, अरे सीमा, कहाँ हो सीमा?
4: तुम फिर पी के आ गए हो, तुम बिल्कुल मेरी सुनते नहीं हो। कब सुधरोगे तुम, रोज रोज पीते हो।
2: अरे अपनी कमाई की पीता हूँ, तेरे बाप से मांगने नहीं जाता हूँ। और हाँ, पीऊंगा, रोज पीऊंगा, ऐसे ही पीऊंगा। रहना तो रह, नहीं तो अपने घर जा।
4: एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे तुम्हारा घर छोड़ के जाना ही होगा।
0: आए दिन झगड़े, संजीव शराब पीकर आने लगा। इसी दरमियान सीमा 2 वर्ष में 2 बच्चों की माँ बन चुकी।
1: सीमा के लाख समझाने पर भी संजीव की आदत में सुधार नहीं आया। शराब की बुरी लत के कारण संजीव की नौकरी भी छूट गई।
4: देख लिया शराब पीने का नतीजा क्या निकला, गई ना आज नौकरी हाथ से। अब बैठे रहिए, मुझे ही जाना पड़ेगा लगता है नौकरी करने के लिए, या तो घर घर के बर्तन मांजूंगी। कैसे होगा बच्चों का पालन पोषण, कैसे पढ़ाएंगे बच्चे? हम सारी जिंदगी के तुम्हारी मम्मी पापा ने ठेका लेकर रखा हुआ है हमें पालने का, कहाँ से खर्च करेंगे वो लोग?
2: अरे तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर लूंगा। अरे मैं दूसरा काम ढूंढ तो रहा हूँ, अपने बच्चों पर ध्यान दे और घर में रह, मैं काम ढूंढ लूंगा और तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
4: झूठ है, तुम्हारी हर बात झूठ है, तुम्हारी रोज रोज की झूठे बातों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। अब सारी व्यवस्था तुम ही करो, आज ही मम्मी ने मुझसे कहा है कि तुम दोनों को अलग कर दूंगी, अपना बनाओ, अपना कमाओ, अपना खाओ, जैसे मर्जी करो।
2: अरे तू नहीं जानती मेरे माँ बाप को, एक दिन खर्चा बंद करेंगे, 2 दिन बंद करेंगे, तीसरे दिन खुद ही खर्चा हमें देंगे। मैं चिंता कर तो रहा हूँ, देखते हैं चिंता चक्कर में मैं दिन रात पीने लगा हूं। और सुन, मैंने अपने दोस्त से बात की है, रात में ऑटो चलाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। और सुन, मैं तेरे को पैसे दूंगा और अपने बच्चों को पूरा खर्चा दूंगा।
4: कैसे खर्चा दोगी, देखती हूँ मैं भी कैसे खर्चा देते हो तुम, कहाँ से होगा हमारा गुजारा। तुम्हारी झूठी बातों से तो मैं बिल्कुल ही तंग आ चुकी हूँ। इतनी रात को घर को आ रहे हो, वो भी शराब पीकर। पहले की बात थी कि तुम भारी पीकर आते थे, अब तो तुम घर में भी साथ में लेके आने लगे हो। तुम्हारी आँखों की शर्म तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है।
2: चुप। ये एक बात कान खोल के सुन ले, मैं शराब नहीं छोड़ सकता, रहना तो रह नहीं तो जा अपने घर। और मैं तेरे को छोड़ सकता हूँ, शराब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं शराब ना पीऊँ तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, और जाए पगबक्की तो तेरे दूंगा कान के नीचे।
4: ऐसे कैसे कान में दूंगा, मैं भी मम्मी को बोलती हूँ, हमेशा मेरे पे हाथ भी उठाने लग गए आजकल।
2: अच्छा मम्मी को बुलाएगी?
4: मम्मी मम्मी
2: बुलाएगी, मम्मी को बुलाएगी।
4: सुबह मैंने कितनी बार कहा है संजीव कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, तुम्हारे पेट में आजकल दर्द रहता है, तुमने रोटी खाना भी छोड़ दिया। संजीव कैसे होगा, मैं मम्मी को बुलाती हूँ।
0: इस प्रकार सीमा के लाख समझाने के बाद भी संजीव पीना नहीं छोड़ा। अब तो रात दिन शुरू हो गया, दिन व दिन शराब पीने लगा, शरीर की ताकत खत्म होने लगी, नई नई बीमारियों ने उसे घेर लिया। लगातार पीने के कारण अपने शरीर को बीमारी का घर बना लिया और लगातार कमजोर होता गया।
1: संजीव को बाहर वाले घर वाले सभी समझाते गए, पर किसी की वो नहीं सुना। इस प्रकार उसके फेफड़े खराब हो गए और उसे टीबी हो गई। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती गई। सीमा ने अपने पति को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया।
0: सीमा अपने पति के साथ एक महीने हॉस्पिटल में थी, वह अपने गहने तक बेच दिए पति के इलाज में। श्रोताओं आप सोच रहे होंगे कि टीबी का इलाज की बीमारी ठीक हो जाती है, वो तो ठीक है, संजीव सही ढंग से दवा लेता तो, वो तो दवा के साथ साथ शराब भी पीता रहा।
1: धीरे धीरे टीबी के कीटाणु उसके दिमाग में चले जाने से वह कोमा में चला जाता है, अंत में उसकी मौत हो जाती है। सीमा की शादी 6 वर्ष बाद ही उसके पति की मौत हो जाती है, उसकी कहानी तो खत्म हो जाती है। सीमा को 2 बच्चों के साथ रोता बिलखता जमाने की उठती सवालों से जूझने के लिए छोड़ गया। श्रोताओ सीमा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है।
0: तो दोस्तों आइए सुनाती हूँ अब सीमा के साथ क्या हुआ।
1: सीमा पढ़ी लिखी महिला थी, वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। एक दिन सीमा अपने सास ससुर से काम करने की इच्छा जाहिर की, मैं नौकरी करूँगी, जो उसके सास ससुर को पसंद नहीं था। अब सीमा के घर छोटी छोटी बातों का क्लेश होता रहता था,
0: जिससे सीमा को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। सीमा तो वही रहकर जीवन बिताना चाहती थी, वो अपने दोनों बच्चों के सहारे अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन उसकी सास ने उसकी जिंदगी के बारे में सोचते हुए उन्होंने दूसरी शादी का फैसला कर लिया था। क्योंकि सीमा 23 वर्ष की यंग महिला थी, उन्होंने जमाने को देखते हुए ये फैसला किया कि वह कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकती। वह दोनों बच्चों को अपने पास रख लिए, सीमा को अपने घर जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने ये भी कहा कि वह अपने दोनों बच्चों से जब इच्छा मिल सकती है। इस प्रकार सीमा अपने घर अपने दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली आ गई।
1: श्रोताओं सीमा अब आपके बीच है, अब उसी से जानिए उनकी जुबानी कि उसके साथ क्या होता है, वो कैसे आगे जीवन यापन करती है और अपनी जिंदगी सुधारती है।
0: सीमा जी स्टूडियो में आपका स्वागत है। सीमा जी आप तो काफी कठिन दौर से गुजरी हैं और आपने काफी स्ट्रगल किया है
4: जी,
0: तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ। सीमा जी आप जब मुंबई से अपने दोनों बच्चों के साथ दिल्ली लेकर आ गई तो क्या आपके ससुराल वालों ने आसानी से आने दिया?
4: जी नहीं शांति जी, आसानी से तो नहीं आने दिया उन्होंने मुझे, उन्होंने बहुत मना किया था मुझे यहाँ आने के लिए कि 2 रोटी ही तो खानी है, अपना घर संभालो, बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन मैंने ये जरूरी नहीं समझा ये ऐसे करना, मैंने अपने पिता को बुला लिया था दिल्ली से।
0: अच्छा।
4: कि मैं ऐसे सारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहती हूँ, कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ। ऐसे सारी जिंदगी घर के बर्तन झाड़ू पोछे करके तो मैं नहीं गुजार सकती, तो मेरे पिता आए थे मुझे लेने।
0: तो बच्चों के भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है?
4: जी वहाँ से तो मैं बच्चे ले आई थी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे स्कूल में भी उनको दाखिला करवा दिया था, 1 साल उन्होंने यहाँ पढ़ा भी। फिर अचानक में वहाँ से फोन आता है कि मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें पैरालिसिस अटैक हो गया था। बच्चों के बिना दोनों सास ससुर का मन ही नहीं लग रहा था, घर बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा था उन लोगों को। तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को भेजा मेरे पास, यानी मेरे देवर को। वो आए थे मेरे बच्चे लेके जाने के लिए जब बच्चों को छुट्टियां पड़ी थी। तो वो अपने 7 बच्चे ले गए और वहीं पे उन्होंने अच्छे स्कूल में उनको दाखिला दिलवा दिया। अब बच्चे वहीं रह के उन्हीं उस अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। और मैं जाती हूँ 6 महीने और साल में 2 बार जाती हूँ उनके पास उनको मिलने के लिए। वो बहुत अच्छी तरह उनका केयर कर रहे हैं, बच्चों में किसी चीज़ की कमी नहीं रख रहे हैं वो लोग।
0: सीमा जी, आगे आपने क्या अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? क्या आप दूसरी शादी करेंगी?
4: जी, दूसरी शादी के बारे में तो मैंने सोचा नहीं है, और मैं चाहती हूँ मैं ना ही करूँ तो अच्छा है, क्योंकि पहली शादी में जो मैंने कुछ नहीं पाया तो मैं दूसरी शादी करने के भी हक में नहीं हूँ। लेकिन मेरे घर वाले मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वो चाहते हैं भाई भाभी किसी के नहीं होते हैं, और मेरे ससुराल वाले भी चाहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम शादी कर लो तो ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी अकेले जीना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं दूसरी शादी करने के हक में तो नहीं हूँ बिल्कुल। अब देखेंगे, फिलहाल तो मैं नौकरी कर रही हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, कमा के अच्छी तरह खा रही हूँ, मुझे किसी की सपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी दुनिया है, देखिए माँ बाप पीछे पड़े हुए हैं कि शादी कर लो, पर मैंने सोचा नहीं है इस बारे में।
0: सुना दोस्तों आपने सीमा की बातें। श्रोताओं, अब हमारा समय समाप्त हो रहा है, अब आपसे हम विदा लेना चाहते हैं। नमस्ते।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नईम अख्तर। श्रोताओं, भारत कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जूट केवल एक फसल या उद्योग नहीं है, इससे देश के करीब 40 लाख किसान परिवार जुड़े हैं और जूट मिलों तथा इससे जुड़े उद्योगों में लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में 76 लाख गांठ कच्चे जूट का उत्पादन हुआ और करीब 12,80,000 मीट्रिक टन जूट उत्पाद तैयार किए गए। इसी अवधि में भारत ने करीब 1,71,000 मीट्रिक टन जूट उत्पादों का निर्यात किया, जिसकी कीमत 3,155 करोड़ रुपए से अधिक रही। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि भारत में जूट उत्पादन की शुरुआत कैसे हुई, समय के साथ ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बना और सरकार की नीतियों, तकनीक और नए उत्पादों के जरिए गोल्डन फाइबर को एक टिकाऊ और आधुनिक उद्योग के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रोताओं, भारत का गोल्डन फाइबर इंडस्ट्री यानी जूट उद्योग एक लंबे इतिहास से जुड़ा है। भारत में जूट के इस्तेमाल का इतिहास 3rd शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है। ब्रिटिश काल में जूट का व्यावसायिक महत्व तेजी से बढ़ा। खास तौर पर सेना से जुड़े कामों में इसके इस्तेमाल के कारण जूट की मांग बढ़ी और बंगाल में बड़ी संख्या में जूट मिलें स्थापित हुईं। लेकिन 1947 में देश के विभाजन के बाद जूट उद्योग के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। जूट उगाने वाले करीब 80% इलाके पूर्वी पाकिस्तान में चले गए, जबकि ज्यादातर जूट मिलें भारत में रह गईं। यानी कच्चा माल एक तरफ था और उसे तैयार करने वाली मिलें दूसरी तरफ। इससे भारत में कच्चे जूट की कमी हुई। इसके बाद सरकार ने सितंबर 1949 में ग्रो मोर जूट अभियान शुरू किया। किसानों को धान की जगह जूट की खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बाद के वर्षों में सरकार ने जूट के लिए बाजार बनाए रखने पर जोर दिया। वर्ष 1987 का जूट पैकेजिंग एक्ट इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके जरिए जरूरी वस्तुओं की पैकिंग में जूट की बोरियों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिला और किसानों के लिए जूट का एक स्थिर बाजार तैयार हुआ। आज पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे आगे है। इसके बाद बिहार, असम, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्य आते हैं। जूट की बुआई आम तौर पर मार्च और अप्रैल में होती है और फसल लगभग 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। आइए अब समझते हैं जूट आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
2: जूट जैव अवक्रमणीय यानी प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाला और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला फाइबर है। ये तेजी से बढ़ता है, आसानी से उपलब्ध है और इसकी लागत भी अपेक्षाकृत कम है। इसके रेशे मजबूत और टिकाऊ होते हैं, इनमें नमी सोखने की क्षमता होती है और जूट से बने उत्पादों में तापमान और आवाज को रोकने जैसी उपयोगी खूबियां भी पाई जाती हैं। इसी वजह से जूट का उपयोग खेती, निर्माण, उद्योग, सजावटी सामान और में भी हो रहा है। जूट को दूसरे प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के साथ मिलाकर भी नए उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। जूट की एक और खास बात है जिसका संबंध सीधे हमारे खान पान से है। जूट के पत्तों को अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में सब्जी के रूप में खाया जाता है। जापान में भी जूट की पत्तियों को स्वास्थ्य से जुड़े खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम और आहार फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जूट की पत्तियों से एंटीऑक्सीडेंट हर्बल ड्रिंक और स्वास्थ्य से जुड़े दूसरे उत्पाद बनाने की तकनीक पर भी काम हुआ है। जूट के आधुनिक इस्तेमाल का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जूट जियोटेक्सटाइल। जूट जियोटेक्सटाइल यानी जूट से बना ऐसा कपड़ा जिसका इस्तेमाल सड़क निर्माण और मिट्टी के कटाव को रोकने जैसे कामों में किया जाता है। इसे खास तरीके से बुना जाता है। इसकी सतह खुरदरी होती है और शुरुआती दौर में इसकी पकड़ मजबूत होती है, इसलिए इसे ढलानों, सड़क किनारे की मिट्टी, नदियों के किनारों और नहरों जैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जूट का इस्तेमाल अब केवल पैकेजिंग के लिए नहीं हो रहा, ये ऐसे बुनियादी ढांचे का भी हिस्सा बन रहा है जिसमें पर्यावरण और विकास दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जाती है।
1: श्रोताओं, ऐसे समय में जब दुनिया प्लास्टिक और दूसरे कृत्रिम पदार्थों के टिकाऊ विकल्प तलाश रही है, तब जूट की उपयोगिता और बढ़ रही है। साथ ही जूट के लिए नए बाजार और नए अवसर तैयार हो रहे हैं। इसका फायदा किसानों और जूट से जुड़े उद्योगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। यही वजह है कि सरकार का ध्यान केवल जूट का उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। कोशिश ये है कि किसान से लेकर बाजार तक जूट की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत किया जाए। किसानों को बेहतर कीमत देने, खेती की प्रोडक्टिविटी और गुणवत्ता बढ़ाने, जूट से नए उत्पाद तैयार करने, छोटे कारोबारियों और कारीगरों को बाजार से जोड़ने और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि इन सरकारी प्रयासों से जूट उद्योग में क्या बदलाव आया है और इसका असर किसानों, कारीगरों और उद्योग तक किस तरह पहुंच रहा है।
2: जूट किसानों के लिए सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कच्चे जूट का MSP 5,925 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। ये अखिल भारतीय औसत लागत के मुकाबले करीब 61.8% का लाभ देता है। MSP पर खरीद के लिए जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। जब बाजार में जूट की कीमत MSP से नीचे जाती है तब JCI किसानों से सीधे जूट खरीद सकती है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में डिपार्टमेंटल परचेज सेंटर्स बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा में ऐसे करीब 110 केंद्र काम कर रहे हैं। नेशनल जूट डेवलपमेंट प्रोग्राम जूट क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ी योजना है। वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक इसके लिए 485,58,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका जोर जूट की खेती, किसानों की आय और जूट के नए उत्पादों को बढ़ावा देने पर है। इसी के तहत जूट आई केयर योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक खेती, बेहतर बीज, मशीनों और बेहतर रेटिंग यानी जूट के रेशे को पौधे से अलग करने की प्रक्रिया के जरिए उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाना है। जूट के रेशे को पौधे से अलग करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के साथ मिलकर रेटिंग के लिए तालाब तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन जूट उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए केवल खेती बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। जरूरत है कि जूट से ऐसे उत्पाद बनाए जाएं जिनकी बाजार में अधिक कीमत हो। इसी सोच के साथ जूट डाइवर्सिफिकेशन स्कीम के जरिए जूट की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सेल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। जूट रॉ मटेरियल बैंक छोटे उत्पादन केंद्रों, कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूहों और MSMEs को नियमित और अच्छी गुणवत्ता का कच्चा जूट उपलब्ध कराने में मदद करता है। जूट के बाजार को मजबूत करने के लिए क्वालिटी और ब्रांडिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जूट मार्क इंडिया लोगो जूट उत्पादों की गुणवत्ता और ऑथेंटिसिटी देने का काम करता है। जूट स्मार्ट नाम का ई गवर्नेंस पोर्टल जूट की खरीद और फूड ग्रेन पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली जूट बोरियों की सप्लाई को डिजिटल बनाने में मदद करता है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने JCI और नेशनल जूट बोर्ड के साथ मिलकर जूट क्रॉप इन्फॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया है। रिमोट सेंसिंग और फील्ड डेटा के जरिए जूट की खेती की निगरानी की जाती है। भुवन जंप मोबाइल ऐप और पटसन वेब प्लेटफॉर्म के जरिए फील्ड लेवल इन्फॉर्मेशन जुटाकर खेती से जुड़े फैसलों के लिए डेटा उपलब्ध कराया जाता है। समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
1: श्रोताओं, इन सभी प्रयासों को एक साथ देखें तो जूट उद्योग में बदलाव की एक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। पहला बदलाव है किसान के स्तर पर। MSP और सरकारी खरीद से किसानों को कीमत में सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है। वहीं बेहतर बीज, वैज्ञानिक खेती और मशीनों के इस्तेमाल से उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर है। दूसरा बदलाव है उद्योग के स्तर पर। जूट को केवल बोरी और पैकेजिंग तक सीमित रखने के बजाय जियो टेक्सटाइल्स, हैंडलूम और दूसरे उत्पादों के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। तीसरा बदलाव है छोटे कारोबारियों और कारीगरों का। जूट रॉ मटेरियल बैंक, ट्रेनिंग सेंटर्स और मार्केट लिंकेजेस के जरिए छोटे उद्यमों को वैल्यू चेन का हिस्सा बनाया जा रहा है। यानी जूट की कहानी अब केवल खेत से मिल तक की कहानी नहीं है, ये किसान से शुरू होकर प्रोसेसिंग, छोटे उद्यम, महिला समूह, टेक्नोलॉजी, डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट्स तक पहुंचने वाली पूरी वैल्यू चेन की कहानी बन रही है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: न्यूज़ मेरा नाम कार्तिक है, मैं कक्षा 7वीं ए का छात्र हूँ। मैं शहबाज मोहम्मदपुर के रीड इंडिया लाइब्रेरी में आता हूँ। मैं आपके सामने पोएम प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सीखो फूलों से नित हंसना, सीखो भोरों से नित गाना, दिनकर की किरणों से सीखो जगना और जगाना, चिड़ियाओं से हंसकर सीखो सबसे हिल मिल करना।
4: आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम शहबाज की आवाज में।
5: धन्यवाद शाहिल जी।
4: तो सर, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा दिवस के ऊपर, तो आपके जीवन में शिक्षक या फिर शिक्षा दिवस क्या महत्व रखता है?
5: शाहिल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज अगर मैं शिक्षक हूँ तो मुझे भी किसी शिक्षक ने मुझे शिक्षक बनाया है। मैं भी एक टाइम में एक विद्यार्थी रह चुका हूँ और आज मैं एक अध्यापक हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं वो चीज़ें जो मेरा जीवन का अनुभव है या जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने गुरुओं से, वो मैं अपने बच्चों को बता सकूं या उनको वो अपना अनुभव शेयर कर सकूं। शिक्षा एक मतलब त्रिवेणी की तरह है, तीन पैरों पे खड़ी हुई एक इमारत है जिसमें एक शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है, एक पढ़ने लिखने की सामग्री होती है जिसको आप पढ़ते हो। शिक्षक आपको एक मार्गदर्शन देता है कि किस तरीके से आप इस पथ पे चल करके या इस रास्ते पे चल करके अपने जीवन के उद्देश्य को अचीव करो या अपने गोल को जो है प्राप्त कर लो। तो मैं मानता हूं कि हमारे जीवन के अंदर एक शिक्षक का जो है, चाहे वो अर्ली एज में माँ बाप बच्चे के शिक्षक हैं, चाहे वो कम्युनिटी के लोग हमारे शिक्षक हैं, हर एक व्यक्ति जिससे आप सीखते हो वो आपका शिक्षक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा रहता है हमारे पूरे जीवन में, वो एक स्कूल टीचर का रहता है। मैंने कल अपने गुरु को फोन किया जो मुझे संस्कृत पढ़ाते थे, उसके बाद मैंने एक दो मेरे और जो बहुत करीब हैं, जो आज भी मेरे संपर्क में रहते हैं, जो शिक्षक मेरे, जिनसे मैं टाइम टू टाइम गाइडलाइन लेता रहता हूँ कि आगे मैं क्या करूँ। तो हम अपने गुरु को अपने साथ जोड़े रखेंगे तो अपना हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं और अच्छा दिन ब दिन निखरता जाएगा।
4: तो जैसे कि शिक्षक दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण बच्चे को पढ़ाने वाले साधारण टीचर और स्पेशल टीचर। तो जैसे कि आप एक स्पेशल टीचर हैं जो स्पेशल बच्चों को ट्रेन करते हैं, पढ़ाते हैं, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको स्पेशल बच्चों को ट्रेन करते या फिर पढ़ाते समय?
5: बहुत अच्छी बात आपने कही कि दो तरह के अध्यापक होते हैं, और आज जो है हमारे विश्व भर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं हमारे समाज की कुछ कमियां हैं, या ये कह लो कि कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो हैं जिनकी वजह से इन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, कि कुछ कुछ ऐसे इश्यूज हैं हमारे समाज में, जैसे कि चाहे वो लोगों का अवेयर ना होना, बहुत ज्यादा कम उम्र में शादी कर देना, पहले बाल विवाह होते थे, कहीं ना कहीं बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी आज जो है एक और नई चीज है कि लोग 35 प्लस होकर के शादियां कर रहे हैं, वो भी एक चैलेंज है। दवाई है, नशा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐसे एबनॉर्मल बच्चों को जन्म दे रही है। तो आपने कहा कि आप स्पेशल अध्यापक हैं तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहले जब मैं इस विशेष शिक्षा के अंदर आया था तो मुझे लगा था कि यार क्या मैं इसमें कभी कुछ कर पाऊंगा, लेकिन इसके अंदर धैर्य, संयम और आप ये कह लो कि बहुत ज्यादा लगन अपने अंदर भी होनी चाहिए और बच्चे में भी वो लगन जगाने की कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है एक प्रेरणा होनी चाहिए कि मैं इस बच्चे को करवा पाऊंगा। मैं अर्ली एज के बच्चों के साथ काम करता हूँ, जैसे कि एक ऑटिज्म डिसेबिलिटी होती है, वो ऑटिज्म के अंदर जो बच्चा है, स्वालीनता जिसको कहते हैं, कि बच्चा अपने अंदर लीन रहता है, कि वो समाज के अंदर नहीं आता है, समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, वो अपने अंदर रहता है, कम्युनिकेशन नहीं करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, कि और जो है बोलना उसका बहुत लिमिटेड होता है, कि वो कम्युनिकेशन बहुत कम करता है, बातचीत का बहुत कम करता है। तो ऑटिज्म के ये लक्षण हैं काफी सारे जो हम किसी दिन डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं जिन छोटे बच्चों के साथ काम करता हूँ वहां पे मेरा काम रहता है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को देखना। विकास तभी होगा जब हम एक बच्चे को उस तरह का माहौल देंगे। आप चुनौतियों की बात करें, चुनौती तो हम एक साधारण बच्चे को पढ़ाते हैं तो भी आती है, क्योंकि बच्चा एक एज के बाद जो है पर्सन पूछने की जो तादा वो पर्सन पूछने का जो उसका दायरा है वो बढ़ता जाता है, कि बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होगा, जितना समझदार बच्चा होगा वो आपको हर एक चीज के बारे में पूछेगा कि माइक क्या है, इससे कैसे बात करते हैं, कैसे बनता है, ये है ये, तो चैलेंज आपको आता है, आपकी नॉलेज होनी चाहिए। एक बच्चा मैंने मेट्रो में देखा, अपनी मम्मी को बोल रहा है, पॉइंट कर रहा है, ये नॉर्मल बच्चा, साधारण जिसको आप कह रहे हो कि किसी तरह की कोई भी उसके अंदर मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांगता नहीं थी, तो वो बच्चा जो है एक मेट्रो के अंदर इतना चंचल और इतना शातिर बच्चा जिसको हम कहते हैं, इतना इंटेलिजेंट बच्चा कि वो हर एक चीज के बारे में पूछ रहा है, और उसकी मम्मी पापा इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने जिस तरीके से बात किया तो मैंने उनको रोका कि नहीं, ये आपकी कम जानकारी है जिसकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हो, बल्कि बच्चा आपका बिल्कुल सही है, आप इसकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हो, उनके जो प्रश्नों के उत्तर है वो नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आप परेशान होकर के आपने इस तरह का व्यवहार किया, ये बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। अब आप स्पेशल बच्चों की बात करें तो अभी हमारा जो रीड इंडिया है वो एक प्रोजेक्ट लेके आया है पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो मुझे जब इस प्रोजेक्ट में लाया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम यहाँ पे गांव के अंदर उस स्तर पे काम कर रहे हैं जहाँ पे लोगों की पहुंच बहुत कम है। बहुत अच्छा आपने बोला कि बहुत कम है, कम तो होता है कि कोई चीज नहीं है, मतलब बहुत कम है, लिमिटेड, यहाँ पे बिल्कुल वो सोर्सेज है ही नहीं, बल्कि जो हमारे सेंटर है वहां पे ऑलरेडी वो एनसीआर के टच में है, लेकिन फिर भी जब मैं लोगों घरों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनके उनसे बात करता हूँ, जब मैं उनके घरों को देखता हूँ, उनके माँ बाप से बात करते, तो हमें ये लगता है कि इस एनसीआर के अंदर रह करके भी माँ बाप जो है कहीं ना कहीं आज जो हम मानते हैं कि ग्रामीण स्तर में क्षेत्र में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वही हालात है कि एक किसी विशेष गांव या शहर को हम ये नहीं कहेंगे वो पढ़े लिखे हैं वहां अनपढ़ है, नहीं, लेकिन जहाँ पे जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर, चाहे वो शहर है चाहे गांव है, एक जैसा ही हाल है। तो मैं जब द्वारका, गुड़गांव, नोएडा के गांव में जाता हूँ, जब मुझे बोला जाता है कि हम आज मोबिलाइज करने जा रहे हैं, लोगों को अवेयर करने जा रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि लोगों को सच्ची में नहीं पता है, बच्चे हैं उनके पास, लेकिन उनकी अपने बच्चों के प्रति काफी माँ बाप जो हमें पॉजिटिव मिलते हैं कि अच्छा सोचते हैं कि हाँ ये कोशिश कर रहे हैं, काफी माँ बाप जो है वो कोशिश ही नहीं करते हैं, या फिर उनको कोशिश करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती है, क्योंकि हर जगह पे विशेष शिक्षक अवेलेबल नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है और

0: देखते होंगे कि वो बच्चे भी आपके साथ बैठ के कंप्यूटर सीख रहे हैं, वो बच्चे भी लाइब्रेरी में आ रहे हैं, वो बच्चे भी क्लासरूम के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे भी ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाह रहे हैं, सब चीजें वो बच्चे कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे कह सकते हो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं? चैलेंज आते हैं, बच्चे को लाना सबसे बड़ा चैलेंज है, उनके माँ बाप को ये समझा पाना कि नहीं ये कोई रोग या किसी पिछले जन्मों का कर्म पाप नहीं है, ये एक हमारी ही गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं हमसे हुई है, चाहे वो बच्चे के जन्म से पहले है, चाहे वो बच्चे के जन्म के दौरान है या जन्म के बाद है, तो ये गलतियां हमारी हैं, लेकिन हम उनके अंदर दवाइयों से सुधार नहीं कर सकते, लेकिन हम एक थेरेपी या एक स्कूल सेटअप के अंदर डाल करके बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। और कई सारी टेक्निक हम इसमें यूज करते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो तो डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से स्तर का है, क्या बच्चा डिसेबिलिटी के साथ आ रहा है, क्या क्या वो इश्यूज अपने साथ लेके आ रहा है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसकी गोल सेट करते हैं, फिर उनके ऊपर हम काम करते हैं।
1: तो जैसे कि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, अगर इस प्रकार की सिचुएशन मेरी क्लास में किसी बच्चे को है कि वो पढ़ने में असक्षम है, तो मैं किस प्रकार से उसकी सहायता कर सकता हूँ?
0: आप कह रहे हो कि पढ़ने लिखने में बच्चे को समस्या आ रही है, वो समझ नहीं पाता है, मैं उसको कैसे पहचानूं? तो पहली बात तो ये है कि एक विद्यार्थी अपने सहपाठी को एक सहयोग दे सकता है, लेकिन आपको लग रहा है तो आप, मैं मानता हूं कि आप पढ़ने, अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो उसमें होता है कि आप लिखना पढ़ना गणित को समझना या भाषा के अंदर किसी तरह की असमानता ना हो, तो आप लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे को पहचान सकते हैं। आप उसकी नोटबुक देखो, क्या उसका लिखता है वो सही लिखता है, आपके आपका सहपाठी है क्या वो बोर्ड से देख करके लिख पाता है, लिख पाता है तो क्या वो कितनी गलतियां करता है, वो टै को ठह तो नहीं लिख रहा, ए को आ तो नहीं लिख रहा, कि आप ये समझो कि मेरा नाम राजीव है तो वो खाजीव बोल दे, रा को खै बोल रहा है, मतलब उसको शब्दों की पहचान नहीं है, बिना देखे लिख नहीं पा रहा है। आप देखते हो कि क्लास के अंदर एक अध्यापक ने एक पाठ पढ़ाया लेकिन उसको याद नहीं रह पा रहा है, तो आप ये मान सकते हो कि किसी तरह की उसके अंदर अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, लेकिन आप पहले अध्यापक को बताओ, कि कभी कोई बच्चा खुल करके नहीं बता पाता है। अध्यापक का काम ही होता है कि जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां पे एक काउंसलर है आपके स्कूल में,
2: जी हाँ,
0: आप काउंसलर को बता सकते हो, क्योंकि आपका काम पहचानना नहीं है, आप एक विद्यार्थी हो, आप एक अपने साथी का या अपने सहपाठी का जो वीक पॉइंट है उसको आप सबके सामने उजागर मत करो, आप जाके डायरेक्ट अपने काउंसलर को बताओ, अपने टीचर को बताओ, ताकि उसकी उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अब काउंसलर जो है एक प्रोसीजर में आएगा, एक प्रक्रिया में आएगा, वो क्या करेगा, वो बच्चे से मिलेगा। देखो हम किसी को, चाहे आपने देखा ज्योति इतना अच्छा कर रही है, अगर वो एक किसी स्पेशल स्कूल में जा रही होती तो उसे इतना अच्छा ना कर पाती, क्योंकि उसको सब डिसेबल्ड बच्चे अपने सराउंडिंग दिखते, यहाँ पे वो नॉर्मल बच्चों को देखती है, आपको देख के भी सीखती है और वो दूसरे बच्चों को देख के भी सीखती है, उसके पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, हर चीज में। आप, मैंने 2 महीने में इतने बदलाव देखे हैं जो शायद एक विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय के अंदर जाके बच्ची लर्न नहीं कर पाती जितना वो यहाँ कर पाती है। सरकार भी चाहती है कि हमारा जो समाज है वो समेकित शिक्षा होना चाहिए, मतलब हमारे जो विद्यालय है जो इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, कि जहाँ पे सब बच्चों को एक समान भागीदारिता मिले। आपने सबको शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, उसी तरीके से इन बच्चों का भी अधिकार है। तो आपने कहा कि मैं क्या करूं, आपका सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है वो यही था कि आपने बच्चे को देखा, अब आपने विशेष शिक्षा का टॉपिक आपने लिया है, इस पे आपने मुझसे बात की है, तो आपकी कुछ ना कुछ जानकारी बढ़ी है, तो आपको इस तरह के बच्चे लगते, तो आप उनको, आप पहले अपने लेवल पे देखो कि क्या उनको सच्ची में इस तरह की दिक्कत है, कोई और है। आप एक दोस्त हो तो कभी कभी बच्चा जो है ना, माँ बाप या घर के हालात ऐसे हो जाते हैं कि बच्चा जो है घर से इतना सारा बर्डन लेके आता है, कभी कभी होता ना कि माँ बाप के झगड़े, बाप का शराब पीना या इस तरह की घर की कई सारी समस्याएं होती है जो बच्चे को पढ़ने में बाधाएं डालती हैं। तो क्या आप उससे बात करके देखो, अगर आपके गली मोहल्ले का तो आपका, आप उसके घर का सिचुएशन देखो कैसी है, ये चीज अपने तक रखो, गुप्त रखो। उससे क्या होगा कि आप जो है पहले बच्चे का जो स्तर है क्या वो डिसेबिलिटी में आता है या फिर कोई और समस्याओं के साथ वो ये इन सब चीजों से संघर्ष कर रहा है। अगर ये सब चीज नहीं है तो आप एक काउंसलर को बता सकते हो जो आपके स्कूल में है, आप उनको बताओ कि मैं उस बच्चे को, मुझे लग रहा है कि इस तरह की कोई समस्या है, मैं उसको परेशान देखता हूँ, उसको पढ़ने में भी समस्या आ रही है। तो आप एक काउंसलर जो है फिर उसका असेस करेगा, उसको देखेगा, उसके माँ बाप को बुलाएगा, उनसे बातें करेगा, तो फिर एक प्रोसीजर आएगा। फिर आपके स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर भी होते हैं आजकल, जो एनसीआर के स्कूल है उनके अंदर ज्यादातर स्पेशल एजुकेटर हैं, तो फिर धीरे धीरे एक प्रोसीजर शुरू होगा, फिर काउंसलर।

0: जो है स्पेशल एजुकेटर के पास भेजेगा, फिर वो आइडेंटिफाई करेगा, असेसमेंट करेगा, देखेगा बच्चा कहाँ अटका हुआ है। तो एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन इसके अंदर पूरे समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: तो ये बात तो जैसे कि हम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं या फिर आसपास में हम जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे बच्चों के बारे में, आज भी हमारे आस पड़ोस में जैसे मजदूर भाई होते हैं उनके बच्चे भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं, तो हम उन बच्चों की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा जो होते हैं इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं कि वो बच्चा किस प्रकार से विकसित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और उनको ये पता भी नहीं रहता कि हाँ हम अपने बच्चे को किस प्रकार से ट्रेंड करें या फिर हम उसको कहाँ भेजें कि उसका मानसिक विकास हो सके।
0: आपने जो बात बड़ी अच्छी बोली है, क्योंकि आप बहुत होशियार हो और आप चीजों को पकड़ पा रहे हो, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है पर्सन, बहुत अच्छा ये कि उनको हम कहाँ भेजें। देखो वो स्कूल नहीं जा रहे हैं
1: जी,
0: तो मैं आपके इस गांव की बात करूं शाहबाद की, तो वहां पे हमारे पास अभी रीड इंडिया के जरिए प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट जो जो हमारे डायरेक्टर है गीता मैम, उन्होंने बोला था कि अगर ये रहे ना रहे लेकिन पीडब्ल्यूडी हमेशा रहेगा, कि ये हमने रीड इंडिया के साथ जोड़ दिया है। तो अगर आपके गांव के अंदर आपको ऐसा बच्चा दिखता है तो आप उसके माँ बाप को बात नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, आप हमें बताओ, हम उनसे जाके बात करेंगे, हम हमारे सेंटर के अंदर उस बच्चे के साथ काम करेंगे। यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर भी है, काउंसलर भी है, स्पीच थेरेपिस्ट भी है, हमारी एक पूरी टीम है, जैसे कि आप भी हो। अगर मैं आपको कहूंगा कि बेटा इस बच्चे को आप कंप्यूटर का कुछ सिखा दो या इसको कुछ कलरिंग करा दो, तो आप मना नहीं करोगे, क्योंकि आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा था ना, वो हमने पार्ट शुरू कर दिया ऑलरेडी। भारत सरकार की जो नई नई शिक्षा नीतियां आ रही हैं या फिर पुरानी जो शिक्षा नीति है वो स्कूलों तक है, लेकिन कहीं अच्छे तरीके से काम हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। जो आपने कहा कि उन बच्चों को हम कहाँ पहुंचाएं, तो अभी तो मैं ये कहूंगा कि आपके आसपास अगर कोई स्पेशल स्कूल है तो वहां बता सकते हो, अगर जैसे कि हमारा रीड इंडिया है तो आप यहाँ पे हमें बताओ, हम उनसे मिलेंगे, उनके माँ बाप से बात करेंगे और उनको हमारे सेंटर में लेके आएंगे, और जब वो बच्चे हमारे सेंटर में आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने इस बच्चे को पहचाना और ये आज यहाँ पे आ रहा है, और जब वो चीज़ सीखेगा तो आपको और ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो जरूरत है आज के युवा को विशेष शिक्षा से जुड़ने का, विशेष शिक्षा वाले, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचानने का और उनके साथ एक प्रेम से रहने का, कि ये ना हो कि आप उनसे नफरत करें। आप जिस तरीके से, मैं आपके अंदर ये एक उमंग देख रहा हूँ कि आप इस मतलब स्पेशल एजुकेशन या विशेष शिक्षा के बारे में जानने के लिए उत्तेजित हैं या इतने भावुक हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लास के 30 और बच्चे भी इस चीज को जानने की कोशिश करें और आप उनको भी मोटिवेट करो, क्योंकि आपके अंदर जो है मुझे भी वो शिक्षक वाली चीजें नजर आ रही है कि आप चीजों को जल्दी पकड़ पा रहे हो, और एक अच्छे शिक्षक की यही खास बात होती है कि वो वातावरण के अंदर अपने आप को या वातावरण के अंदर जो समस्याएं हैं उनको निपटने के लिए उसी वातावरण के अंदर सोर्सेज ढूंढता है, मतलब स्रोत ढूंढता है कि किस तरीके से मैं इस समस्या को इसी वातावरण के अंदर खत्म कर दूं या इसको सॉल्व कर दूं।
1: तो अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: तो मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि हमारे हर घर के आस पड़ोस में, हर गली में लोगों को बच्चों की समस्याओं के बारे में नहीं पता है कि विशेष आवश्यकता है या बच्चे के विकास में देरी हो रही है या बोल नहीं पा रहा या किसी तरीके से वो जो है अनजान है। जिन जिन श्रोताओं ने आज हमें सुना है, मैं चाहूंगा कि अगर वो थोड़ा भी उनको समझ में आया है, अगर उनके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे हैं, तो अपने नजदीकी किसी भी एनजीओ में या उन माँ बाप को उस एनजीओ का पता बताए, या फिर ये देखें कि इन बच्चों के लिए समाज की कौन सी संस्था, कौन सी इकाई, कौन लोग जो काम कर रहे हैं, जो समाज सेवी भी होते हैं, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, जैसे रीड इंडिया जो इस प्रोजेक्ट को लेकर के आया है और वो इस पे काम कर रहा है। तो जैसे कि अगर शाहबाद, वजीराबाद और नोएडा के एक गांव की बात करूं, तो हम अगर वहां के श्रोता सुन रहे हैं तो हमारा सेंटर है जहां पे आप वहां पे बच्चों को भेज सकते हैं, और अगर जो जहां पे अभी हमने शुरू नहीं किया है, आगे चल करके हम करेंगे, तो वहां के जो लोग हैं वो अपने आस पास ऐसे स्रोत ढूंढे कि जहां पे इन बच्चों के लिए कुछ हो रहा है, चाहे स्कूल है, स्पेशल स्कूल है, या फिर कोई एनजीओ है, अभी तो बहुत सारे एनजीओ वगैरह काम कर रहे हैं, या फिर एक सरकार ने एक ना शिक्षक रखा हुआ है, घुमक्कड़ जिनको कहते हैं, वो सरकारी स्कूलों के अंदर आते हैं वीक में 3 दिन 4 दिन, आपके स्कूल में स्पेशल एजुकेटर है
1: जी।
0: हाँ, तो वो कभी कभी आते हैं इन बच्चों को एक रिसोर्स रूम, मतलब एक संसाधन कक्ष जिसको बोलते हैं, जहाँ पे इन बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिनसे कि बच्चा पढ़ता है, जिनसे सीखता है, हाँ हाँ, तो वो एक रूम होता है हर स्कूल के अंदर, तो आप वहाँ पे भेज सकते हो, और ज्यादा ज्यादा जो है जागरूकता की कमा

0: जहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि हम इन बच्चों को कैसे और कहाँ भेज सकें।
1: तो राजीव जी, आप हमारे कार्यक्रम शाहबाद की आवाज़ में आए, आपने हमें स्पेशल बच्चों के बारे में बताया कि आप उनको कैसे ट्रेन करते हैं। धन्यवाद।

0: ज्ञानवाणी लखनऊ प्रस्तुत करता है कार्यक्रम जीवी ऑनलाइन।
1: स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का एफएम 105.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ज्ञानवाणी लखनऊ पर, और आज मैं ज्योत्सना हूं आपके साथ लेकर आपका अपना फोन इन कार्यक्रम बात पते की। श्रोताओं, युग परिवर्तन के साथ विचारों के मापदंड ही नहीं बदलते बल्कि रीति और नीतियां भी करवट ले जाती हैं। एक समय था जब स्त्रियों के विषय में कहा जाता था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन श्रोताओं, आज का युग ऐसा नहीं है। विधि की ये कैसी विडंबना है कि एक ही वृक्ष पर लगे दो पुष्पों में से जो एक अधिक सुरभित और सुरम्य होता है उसको अभिशाप समझ लिया जाता है, वहीं दूसरी ओर दूसरे को कष्टमय होते हुए भी वरदान। पुत्र के जन्म पर घर में तवे ढोलक और नपीरी बजने लगती है, लेकिन वहीं जब एक कन्या का जन्म होता है तो माता पिता के चेहरे पर उदासी की छाया क्यों छा जाती है। आज इन्हीं सब प्रश्नों को अपने मन में रखते हुए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रीड इंडिया की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर गीता मेहरोत्रा को, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं इग्नू के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह जी। तो मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी ज्ञानवाणी के स्टूडियो में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी ज्ञानवाणी के स्टूडियो में। और अपने श्रोताओं को एक बार हम अपना विषय फिर से बता दें, हमारा आज का विषय है महिला सशक्तिकरण। तो अगर आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें फोन कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0522298787 यानी 0522-2987-847। और मैम, आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न आपसे है वो ये है कि महिला सशक्तिकरण क्या है।
2: महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं लगता है महिला सशक्तिकरण का मापदंड करने के लिए। ये सबसे बड़ी बात जो इसके पीछे है, और मैं बहुत बार इस बात के ऊपर चर्चा भी करती हूँ कि ये हमारा अपनी सोच है, अपना एटीट्यूड है जो हमारे बिहेवियर में बदल जाता है, और हम अपने बिहेवियर को थोपने की कोशिश करते हैं समाज पे। तो अगर हमारी सोच बदल जाए, हमारा एटीट्यूड बदल जाए, हमारे एक्शंस बदल जाएं और हमारा बिहेवियर बदल जाए तो हम इक्विटी की बात कर सकते हैं, हम बराबरी की बात कर सकते हैं, हम महिलाओं को उतना ही दर्जा दे सकते हैं जितना हम पुरुषों को देते हैं।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात। और मैम, जैसा कि हम महिलाओं को ढेर सारे नाम देते हैं, देवी, सती, सीता, दुर्गा, है ना, न जाने कितने सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिवेश में ये कहाँ तक चरितार्थ होता है?
2: माने तो भगवान, नहीं माने तो मिट्टी, है ना। बिल्कुल, ये तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर इंसान को

0: दूसरे इंसान की इज्जत करनी आ जाए और उसकी रिस्पेक्ट करनी आ जाए तो ये जो अंतर है महिला और पुरुष में ये एकदम खत्म हो जाएगा।
1: बिल्कुल मैम, और जैसे प्राचीन काल में तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी और महिलाएं शास्त्रार्थ भी करती थी, हर क्षेत्र में वो थी, लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति कह सकते हैं कि उसमें बहुत अंतर अब आ गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है?
0: देखिए, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात भी नहीं करूंगी और बहुत रिसर्च की बात भी नहीं करूंगी। जो हम कहते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियों के हाथ में शस्त्र थे, या जैसे झांसी की रानी की बात करें या कुछ और महिलाओं की बात करें, पर आप देखिए कि मदर टेरेसा भी थी। मदर टेरेसा के हाथ में कोई शस्त्र नहीं थे, पर मदर टेरेसा ने साइलेंटली कैसे औरतों को सपोर्ट किया और अपने कार्यक्रम करते हुए दिखाया, अपने जीवन की पूरी रचना के बारे में लोगों को बताते हुए बताया कि एक महिला भी इस लेवल तक पहुंच सकती है। तो मैं उसमें कहूंगी कि महिलाओं को अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती तो स्काई इज द लिमिट फॉर अ वुमेन, बहुत ऊंचा उठ सकती हैं वो, और अगर परिवार उनको सपोर्ट करे तो समाज भी कहीं पीछे हट जाता है।
1: बिल्कुल मैम, और लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हमें महिला सशक्तिकरण जैसे दिवस मनाने की जरूरत पड़ी?
0: महिला सशक्तिकरण का दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने समाज को बार बार बार बार रिमाइंड करें कि जो आपका इक्वल पार्टनर है, हकदार है इस समाज का, उनका राइट है अपनी जिंदगी जीने का, अपना इवन जन्म लेने का, जिंदगी जीने का, माँ बाप से उतना ही प्यार लेने का जितना हम बेटों को करते हैं, उनको भी उतनी ही एजुकेशन चाहिए जितना हम बेटों को देते हैं, उनको भी उतने अधिकार चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रिसर्च की बात करती हूँ तो आज का युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, और महिलाओं को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। और आप देखिए अभी समय में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, इंजीनियरिंग भी कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें वो काम करती हैं, पर स्टिल अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो 48% जो हमारा पोर्शन है महिलाओं का, उसमें से मैं कहूंगी कि 40% भी उस लेवल तक नहीं है जो फुल्ली एजुकेटेड है और टेक्नोलॉजी में आगे अपने कदम बढ़ा रही हैं। तो ये जो फर्क हम देख रहे हैं आधुनिक समाज में और पिछड़े समाज में, इस गैप को भरने की जरूरत है। और जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और अगर हम इस गैप को नहीं समझेंगे, ये जो इतनी बड़ी विनम्रता हमारे सामने आके खड़ी हुई है कि हम जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम खाली शहरों की बात करते हैं, हम गांव को भूल जाते हैं। और गांव में अगर महिला से आप चर्चा करें तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी उसकी सोच बड़ी है, पर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक रिमाइंडर देने की जरूरत है समाज को कि उन महिलाओं की तरफ भी देखिए जिनको कुछ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती हैं। तो सोच और अपॉर्चुनिटी का आपस में बहुत गहरा तालमेल है, इस तालमेल को समझने की जरूरत है।
1: और मैम, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है?
0: ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और शिक्षा अपने में ही एक संपूर्ण, मैं बोलूंगी कि एक टॉपिक है, और सशक्तिकरण एक अलग है। हम कहते हैं कि महिला पढ़ जाएगी तो वो एम्पावर्ड हो जाएगी, पर ये बात नहीं है। बहुत सारी महिलाएं पढ़ के भी अपने परिवार में बहुत ही डिफरेंस महसूस करती हैं। और जब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सेक्स रेशियो महिलाओं की बच्चों की जो गर्ल चाइल्ड है उसकी बहुत कम है, और 2011 के जो आंकड़े हैं, आज हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और मैं आंकड़ों के ऊपर अभी थोड़ी सी बात करना चाह रही हूं कि जो हमारे देश में अलर्ट हुआ था कि 2011 में जब हमारी सेंसस हुआ और हमें पता चला कि चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारा जो गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बहुत ही डाउन है और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हमारे सामने आए थे जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड देवर अदर स्टेट्स ऑल्सो, पर उसमें क्यों गिरा हमारा सेक्स रेशो? क्योंकि ये अर्बन एरिया में जो बहुत ही सक्षम थे, पैसे वाले थे और पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने एबॉर्शन अपना एक राइट समझ लिया था जो बहुत ही गलत था। इसीलिए चाइल्ड सेक्स एबॉर्शन पे भी सरकार ने कानून बनाया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो गैप है ये पढ़ाई की वजह से आया। पढ़े लिखे लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स किए हैं जिसमें लड़कियों की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही कम हो गई और उनको वो राइट भी नहीं मिला कि वो इस समाज में अपना जीवन व्यतीत कर सके और उनके पैदा होने से पहले ही उनको एबॉर्शन से खत्म कर दिया गया।
1: बिल्कुल। और जैसा कि हमारे साथ सर भी हैं तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे इग्नू से जुड़ी हुई कुछ जानकारी कि इग्नू का एडमिशन सत्र कब से शुरू हो रहा है।
2: जी मैडम, इग्नू के अगर हम जुलाई 2021 सेशन की बात करें तो एट प्रेजेंट हमारे एडमिशन इस साइकिल के लिए ओपन है और जिन लर्नर्स को इग्नू से यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम ज्वाइन करना हो तो उनके पास अवसर है कि वो 15th ऑफ जुलाई तक ऑनलाइन मोड से फॉर्म्स भर सकते हैं। जो विश्वविद्यालय का लिंक है एडमिशन का वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे है, तो कोई भी स्टूडेंट अगर उसको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, नॉलेज को अपग्रेड करना है तो वो इग्नू के प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकता है। और अभी बहुत सारे नए प्रोग्राम्स विश्वविद्यालय ने लॉन्च किए हैं जैसे एमए इन उर्दू, एमए इन ज्योतिष और जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज पे तमाम कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, फिर डेवलपमेंटल स्टडीज पे पीजी डिप्लोमा इग्नू ऑफर कर रहा है, सीएसआर में इग्नू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नया कोर्स हमारा लॉन्च हुआ है डिप्लोमा लेवल पे, और उर्दू लैंग्वेज में पीजी हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जो मैं समझता हूं कि लर्नर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होंगे और जो डिस्टेंस मोड में अभी तक नहीं ऑफर हो रहे थे उनको विश्वविद्यालय डिस्टेंस मोड में ऑफर कर रहा है। कुछ पाठ्यक्रम हमारे खास तौर से सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑनलाइन मोड में भी इस समय ऑफर हो रहे हैं। तो जिन लर्नर्स के पास समस्या है कि वो डिस्टेंस से भी नहीं कर पाते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम घर बैठे अपनी पढ़ाई करें अपने स्मार्टफोन को यूज करते हुए, अपने लैपटॉप्स को यूज करते हुए, तो उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज जो इग्नू के हैं वो काफी अच्छा ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि लर्नर्स को समय नहीं गंवाना चाहिए और एडमिशन के लिए जो लिंक हमारा खुला है उसमें उसका लाभ उठाना चाहिए और अपना एडमिशन लेना चाहिए।
1: बिल्कुल सर। और टर्म एंड एग्जामिनेशंस जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गए थे
2: जी,
1: तो उसके बारे में सर।
2: जी, टर्म एंड एग्जामिनेशन हमारा जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था वो 3rd ऑफ अगस्त से शुरू होने वाला है। तो जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको इस एग्जाम में बैठने का अवसर मिलेगा।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी। और मैम, हम बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण की, तो इसमें आपने बताया कि शिक्षा की क्या भूमिका है, अब इसमें परिवार का क्या योगदान होता है?
0: सबसे बड़ा योगदान परिवार का है और उससे बड़ा योगदान है कि जो मैरिड कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, और एक हस्बैंड को स्टैंड लेना है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बैन क्यों हुआ कि हमें स्क्रीनिंग नहीं करानी बच्चे की कि वो लड़की है या लड़का, जो सेक्स सेलेक्टिव स्क्रीनिंग है वो भी नहीं करानी, अबॉर्शन भी नहीं कराने, और जब परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं अगर उनकी सोच अभी नहीं बदली है तो एक हस्बैंड और वाइफ मिलके अगर स्टैंड लेते हैं तो ये बहुत बड़ा स्टैंड है माइंडसेट को चेंज करने का। क्योंकि हम बहुत सारे अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हस्बैंड वाइफ मिलके डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और हमें ये स्टेप्स लेने हैं, तो क्यों नहीं इस संदर्भ में भी। और जब शिक्षा की बात है तो अब बहुत समय बदल गया है, बहुत परिवारों की सोच बदल गई है, यंग कपल्स की सोच बदल गई है। वो डिफरेंस है जो लड़की और लड़के की शिक्षा में, अभी मुझे शहरों में तो इतना नजर नहीं आता है, पर हाँ उसका बहुत बुरा हाल है गांवों में। गांवों में अगर हमने अभी भी इस चीज को नहीं पकड़ा और नहीं शिक्षा की तरफ पेरेंट्स की सोच बदली, तो ये गैप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के आने से, टेक्नोलॉजी उनके लिए एक ड्रीम है, एक सपना है, उसको हाथ से छूना भी उनके लिए बहुत दूर की बात है, और टेक्नोलॉजी को यूज करना तो आई थिंक मैं इसके बारे में पिछले 15 साल से चर्चा कर रही हूं, और अभी भी वो गैप एक ड्रॉप इन द ओशियन की लेवल पे फिल हुआ है, और उसमें भी ड्रॉप का जो साइज है वो डिफाइन करना मेरे लिए इतना मुश्किल है कि जस्ट अ सिंपल ड्रॉप। तो अगेन आई वुड से कि ये सब माइंडसेट की बात है, और जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हैं आज, और अपने पैरों पे खड़े होके जब उनको मौका मिलता है कि वो अपने आप को इतना सक्षम समझती हैं कि वो अपने परिवार की देखभाल कर सकती हैं, और उनके जो हस्बैंड्स हैं वो भी इस बात को समझते हैं, तो द ओनली थिंग इज दैट कि कैसे हम जो एक्सपीरियंसेस हैं, देखिए पीयर लर्निंग भी बहुत बड़ी एजुकेशन है हमारे देश में, और अगर एक महिला अपने एक्सपीरियंसेस दूसरी महिला के सामने शेयर करती है कि कैसे उसने अपने बच्चों की देखभाल की और अपने गर्ल चाइल्ड को उन्होंने हायर एजुकेशन दी, और उसको हायर एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि 12th पास करा दी, हायर एजुकेशन की पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, तो ये सोच आस्ता आस्ता शहरों में तो बहुत सीख आ रही है, पर गांवों में सोच है, सपना है, पर उस सपना को पूरा करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यहां तक तो हम पहुंच गए हैं।
1: बहुत अच्छी बात। और जैसे आपने कहा कि गांव में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इसी तरह महिला सशक्तिकरण में स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ आप बताइए।
0: बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम सरकार भी चला रही है जहां पे वो स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, और गुड़गांव में तो मैंने एक यूनिवर्सिटी भी देखी है जिस यूनिवर्सिटी का नाम ही स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, और इग्नू जैसे भी ऐसे बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और अगर मेरा आप एक्सपीरियंस जाने तो जिस संस्था की मैं कंट्री डायरेक्टर हूं, रीड इंडिया, हमने 30,000 से ज्यादा औरतों को सक्षम बनाया है लाइवलीहुड ट्रेनिंग पे, जो वो आज अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, और इससे आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन मैं ये जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको बताना चाह रही हूं कि लड़कियां, क्योंकि ये महिलाओं के लिए कार्यक्रम था, और मैं दावे से इस बात को कह सकती हूं कि 30,000 औरतों को अगर हमने सक्षम बनाया है तो 15,000 औरतें तो अपने पैरों पे आज खड़ी हैं, जिनका डिले इन मैरिज भी हुआ है, अभी 25 साल की लड़कियों ने भी शादी करने की थोड़ी सी रोक लगाई है, अपने पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज किया है, क्योंकि पहले हमने अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, तभी हम शादी करेंगे। तो डिले इन मैरिज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्टिलिटी ऑफ अ वुमेन, कि वो बच्चे नेचुरली सोच बनेगी कि कम पैदा करने हैं, और इतना प्रेशर नहीं होगा कि अगर कम बच्चे करने हैं, और लड़की भी चाहिए और लड़का भी चाहिए एक बैलेंस्ड परिवार के लिए, तो ये सोच अपने आप बदल जाएगी। तो शिक्षा का और रिलेशन जो है, जब हम एम्पावरमेंट का करते हैं तो इस तरह से हमें उनको कंपेयर करना है और लोगों को समझाना है।
1: बिल्कुल मैम। और जैसे कि भारतीय समाज में स्त्रियों की जो घटती संख्या है इस समय, उसके क्या दुष्परिणाम है?
0: देखिए, हमारे यहाँ पे हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, तो 2011 का जो सेंसस था उन्होंने हमारे सामने अलार्म खड़ा किया कि सेक्स रेशियो में बहुत डिफरेंस आ रहा है, और अभी 2021 में सेंसस होना चाहिए, और मुझे नहीं पता कि कोविड की वजह से सरकार इसको कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, पर चाहे सेंसस हो या ना हो, सरकार को नॉन गैर सरकारी संस्थाओं का साथ देकर लोगों का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, जहां पे हम कहें कि लड़की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना लड़का। और मैं हरियाणा में रहती हूँ, हालांकि मैं पैदा और पढ़ी और बड़ी तो दिल्ली में हुई हूँ, पर आज के समय मैं हरियाणा में रहती हूँ और हरियाणा में अभी भी सोच बदलने की बहुत बहुत जरूरत है, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, सही बात है, लेकिन शिक्षा बहुत ज्यादा रिलेटेड है इन सारी चीजों से, क्योंकि केरला में देखिए ज्यादातर लोग जो हैं एजुकेटेड हैं, तो वहां पे मतलब गर्ल चाइल्ड का रेशियो भी ज्यादा है ना, तो शिक्षा तो मैटर बहुत ज्यादा करती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि लोगों की जो सोच है ये कैसे, क्योंकि परिवेश जो हमारा माहौल होता है, परिवेश होता है, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे परिवार में रह रहे हैं जो बहुत कंजर्वेटिव माइंड है, और लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे लिए बेटा इम्पोर्टेंट है, और पहले यही चाहिए, लड़की बहुत ज्यादा एजुकेटेड है लेकिन उसके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में एक लड़की को या एक स्त्री को क्या करना चाहिए?
0: मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं दोबारा से ये रिट्रेट कर दूं बात, क्योंकि शिक्षा का अपना महत्व है, और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं और हम उस एज ग्रुप को लेते हैं जो 35 to 55 है महिलाओं का, या हम 40 से 65 तक की महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एम्पावरमेंट का मतलब भी नहीं समझा, उनको जो महिला सशक्तिकरण है उसके बारे में किसी ने बात भी नहीं करी, और ये मैं रूरल एरियाज की बात कर रही हूं, तो उस संदर्भ में मैं कह रही हूं कि अगर हम उनको इस बात के, उनके साथ बैठ के इस बात की चर्चा करें, और वो तो अब स्कूल भी नहीं गई हैं, एजुकेटेड ही नहीं है, तो मेरा ये कहने का मतलब है जो वर्ग एजुकेटेड नहीं है उनके साथ हम कैसे उनका माइंडसेट बदलें कि महिला को उतना ही दर्जा अपने परिवार में देना है जितना हम पुरुष को दे रहे हैं, तो वो चीज बातचीत करने पे आएगी, पीयर लर्निंग पे आएगी, और समाज में जब हम एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे तभी आएगी। और यहाँ पे गैर सरकारी संस्थाएं बहुत ज्यादा काम कर रही हैं गांव में जाके लोगों के माइंडसेट चेंज करने के लिए। जहां पे मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ, जब शिक्षा बहुत जरूरी है, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ कि शिक्षा जरूरी नहीं है, पर शिक्षा अभी जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है, जो आप कह रहे हैं कि चाइल्ड सेक्स रेशियो पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं, उसमें मैंने बोला कि वो भी करते हैं, पर जो माइंडसेट वुमेन एम्पावरमेंट की बात है वो एजुकेशन का उसका डायरेक्ट लिंक है, वो तो है ही है, तभी समाज बदलेगा। पर हमारा समाज बटा हुआ है जहां पे 70% ऑफ, और हमारा जो पॉपुलेशन है अभी यूथ है, क्योंकि हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से निकल रहे हैं, जहां पे 65% यूथ है और हमारी 70% पॉपुलेशन गांवों में रह रही है, और जब तक हम यूथ का माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, यूथ को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, यूथ के बिहेवियर में चेंज नहीं लाएंगे, तभी हमारा ये जो गैप है महिला सशक्तिकरण का ये कम नहीं होगा।
2: जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और आपकी जानकारी के माध्यम से हमारे श्रोता लाभान्वित हुए और उन्होंने ये समझा कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की आवश्यकता है, चाहे वो शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जागरूकता की बात करें तो जागरूकता भी इम्पॉर्टेंट है, और इसी तरह हमें समाज को भी सशक्त बनाना पड़ेगा, समाज में ये मैसेज देना पड़ेगा कि महिलाएं इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उनके भी अपने अधिकार हैं, खासतौर से अगर हम रूरल सोसाइटी की बात करते हैं, और हमें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और जहां तक रीड इंडिया के विषय में मैं जानता हूं, तो रीड इंडिया की जो अप्रोच है वो काफी मैं समझता हूं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच है, जिसमें आप विभिन्न आयामों पर काम कर रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रयासरत हैं, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आयाम रीड का जो है, रीड महिलाओं, जहां भी महिलाओं से रिलेटेड सेंटर्स हैं या स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करा रहा है, वहां पर लाइफ स्किल्स की चर्चा जरूर होती है, लाइफ स्किल्स के बारे में महिलाओं को बताया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो मैं चाहता हूं कि श्रोताओं को आप बताएं कि लाइफ स्किल्स क्या हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है।
0: लाइफ स्किल्स तो एक जीवन को व्यतीत करने की शिक्षा है, और जब हम आम जिंदगी में, ये जो आपने आज महिला सशक्तिकरण की बात करी है या एजुकेशन की बात करी है, ये लाइफ स्किल्स के एक आई शुड से दैट एक कॉइन के दो साइड्स हैं। हम एजुकेट तो कर देते हैं, एकेडमिक एजुकेशन दे देते हैं, पर बच्चों को कभी लाइफ स्किल्स के बारे में नहीं सिखाते हैं। जो संस्कार हैं, जो वैल्यूज हैं, वो उनको फैमिली से मिलती हैं, और फैमिली अगर उन संस्कारों को, उन कल्चर को पीछे ही छोड़ देती है, तो वो लाइफ स्किल्स की बात समझते नहीं हैं दूर दूर तक। तो आज हमारे देश में जहां पे कल्चर इतना रिच है, आप कह रहे हैं कि औरतों के हाथ में शस्त्र थे और हमारी हिस्ट्री ये कहती है,
2: शास्त्र दोनों थे
0: और अभी हमारी हिस्ट्री ये कह रही है, और पर आज के टाइम पे अगर हमारा कल्चर ही हमारी वैल्यू सिस्टम बनता है और वैल्यू सिस्टम ही हमारी लाइफ स्किल्स बनती है, तो कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को पीछे छोड़ते आ रहे हैं, अपनी लाइफ स्किल्स को भूलते आ रहे हैं। तो आज स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्यों हमें जरूरत पड़ रही है कि हम लाइफ स्किल्स के बारे में बात करें? और लाइफ स्किल्स क्या है? आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी क्या होती है उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, और वो जानना, होलिस्टिक डेवलपमेंट कोई साइंस नहीं है, उसके पीछे लाइफ की, जिंदगी को, अपनी जिंदगी को कैसे जीना है उसकी शिक्षा दी जाती है। कैसे माँ बाप की इज्जत करनी है, कैसे एक महिला की इज्जत करनी है, कैसे अपनी बहन की इज्जत करनी है, कैसे अपनी पहचान बनानी है सोसाइटी में, कैसे अपने आप को सक्षम बनाना है शिक्षा के द्वारा और स्किल्स के द्वारा कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। और इसके संदर्भ में मैं एक युवा पीढ़ी को ये भी मैसेज देना चाहूंगी कि उड़ान भरना तो बहुत आसान है, पर उड़ान की अगर डोर मजबूत नहीं है तो गिरना उससे भी आसान है।
2: जी,
0: तो इस चीज को, अपनी जिंदगी की उड़ान संभाल के चलने से, संभाल के उड़ने से, वैल्यू सिस्टम से, स्किल से अगर हम चलें, तो मुझे लगता है कि हम अपने देश को सोने की चिड़िया कहने में बहुत दूर नहीं रहेंगे।
2: जी मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने, और इस समय भारत सरकार इस विषय पे काम कर भी रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और बहुत ही मतलब प्राइमरी सेक्शन से ही वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इम्पार्ट करने की बात है, और मैं समझता हूं कि आगामी एकेडमिक सत्र से ये चीजें शुरू भी हो जाएंगी, तो ये बहुत शुभ संकेत है। मुझे लगता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके मन में ये सारी चीजें नहीं होंगी और महिलाओं को वो समान मतलब बराबर का दर्जा देगी। मैडम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फील्ड पे काम करती है, आपने महिलाओं को विभिन्न तरह की ट्रेनिंग्स दिलाई, उनको लाइफ स्किल्स के विषय में अवगत कराया है, और खासतौर से आपका जो मॉडल है रीड का, कम्युनिटी लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर का, तो वो भी एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को फोकस करता है। तो मैम, मैं कुछ जानना चाहूंगा आपसे कि जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है महिलाओं का, कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग्स जो आप लोग दिलवाते हैं या सरकार दिलवा रही है, कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल साबित होती है। तो आप अपने कुछ एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करना चाहेंगी जहां पर आपने कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी दिलवाई और महिलाओं ने समाज में एक अच्छा काम किया, अपना एंटरप्राइज शुरू किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
0: जो रीड का मॉडल है, हम एक गांव में जाते हैं, बात करते हैं, सीधा कम्युनिटी के साथ बात करते हैं, और कहते हैं कि रीड आपके लिए किताबें लेकर आ रहा है, कंप्यूटर्स लेकर आ रहा है, आपकी महिलाओं को कुछ स्किल्स की ट्रेनिंग देना चाह रहा है, क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? तो हम यहां पे एक कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर बना देते हैं। जो लोग संस्कारी हैं और इसके वैल्यू समझते हैं, विजनरी हैं, वो हमें कहते हैं ये हमारा घर खाली पड़ा है, आप इसमें बना दीजिए, और यहाँ पे हम सारे समाज को बुला के, जो हमारे गांव के लोग हैं, वो यहाँ पे आके सेंटर को चलाएंगे, लाइब्रेरी को चलाएंगे। तो ये प्रयास मैंने 2007 में शुरू किया था, और आज 2021 है, अभी तक तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मैं जिस गांव में जाती हूँ उस गांव में मुझे बहुत ही सहानुभूति कह लीजिए या इज्जत कह लीजिए या रिस्पेक्ट कह लीजिए, लीजिए, वो मिलता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल भी देना चाहूंगी, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर हैं हरियाणा के, उन्होंने जब देखा कि मैं मेवात में काम कर रही हूँ, और मैंने 2012 में या 13 में उनको बुलाया एक हमारी लाइब्रेरी को इनॉग्रेट करने के लिए, तो उन्होंने तब से मुझे बोला कि मेरी हवेली खाली पड़ी है मेहंदीपुर गांव में, हरियाणा में झज्जर में, तो आप उसको सेंटर बना दीजिए। और 2014 से उस हवेली में हम काम कर रहे हैं। तो जो विजनरी लोग हैं, जिनको पता है कि हाँ, अगर समाज ने हमें कुछ दिया है तो हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को कुछ वापस करें, तो वो लोग बहुत आगे बढ़कर आते हैं। और जहां तक कीर्ति जी आपने पूछा है कि महिलाओं ने कुछ किया है या नहीं किया, तो उत्तर प्रदेश का ही मैं एग्जांपल देती हूँ। हम एक कार्यक्रम चलाते हैं जो हम कहते हैं एम्बाइबिंग ग्रास वुमेन लीडर्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स। वो हर हफ्ते हमारा कार्यक्रम आता है। आज भी 4 से 5 था, हमने महाराष्ट्र की एक लड़की को उस कार्यक्रम में बुलाया था। और यूपी से पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते में 2 महिलाओं को हमने प्रोग्राम में बुलाया था। और एक लड़की जो मुस्लिम लड़की है, फर्रा उसका नाम है, और आज वो 25 साल की है, और वो कहती है मैंने अभी भी शादी नहीं करनी है। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। जहां वो 16 साल की थी, उसके पेरेंट्स शादी करना चाह रहे थे उसकी, आज वो 10वीं पास होने के बाद उसने कहा कि मैं ये कम्युनिटी लाइब्रेरी को चलाऊंगी और अपने गांव वालों को शिक्षित करूंगी। और उसने एक प्री स्कूल भी चलाया जिसमें 300 से ज्यादा छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और सेंटर भी चलाती है जिसमें महिलाएं सिलाई सीखती हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस का कार्यक्रम करती हैं, कंप्यूटर्स सीखते हैं बच्चे, और प्रोफेशनल कोर्सेस भी करते हैं। और जब पिछले हफ्ते मैं उससे चर्चा कर रही थी, तो उसने कहा कि मैंने अपनी कमाई से अपने माँ बाप के लिए घर भी बनाया है, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स कहते थे, जो समाज के लोग थे, कहते थे कि आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा घर इतना टूटा फूटा था कि हम रात को सोते थे तो पानी छत से गिरता था। तो मैंने अपने माँ बाप को समझाया कि आपका अगर दामाद घर में आएगा और पानी गिरेगा छत से, तो आपकी क्या इज्जत रहेगी। आज आपकी बेटी इतनी सक्षम है कि आपको घर बना के दे रही है, और कल को मैं शादी करती हूँ और दामाद आएगा तो आपको इज्जत की नजर से देखेगा। तो पहले मैं खुद सक्षम हूं, फिर मैंने अपने परिवार को सक्षम किया, फिर मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को सक्षम किया, आज मैं शादी के लायक हूं और मैं शादी कर सकती हूं।
2: बहुत अच्छी बात मैम आपने बताई। और ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मैं समझता हूं कि हमारे युवा साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, तमाम महिलाएं सुन रही होंगी, तो उनके लिए भी बहुत मोटिवेटिंग रहेगा ये। हाँ, और मैडम इसी क्रम में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कुछ सक्सेस स्टोरीज हमसे शेयर करी, आपने कमिश्नर साहब का एग्जाम्पल बताया, तो ये मॉडल रेप्लीकेट करें और महिलाओं के जो अधिकार हैं या महिलाओं से रिलेटेड जो तमाम सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या आपका ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यक्रम चला रहा है वो जनमानस तक पहुंचे, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
0: हम ये जितनी भी महिलाओं के प्रति स्कीम्स हैं
2: जी,
0: हम सारा अपने सेंटर के थ्रू महिलाओं को इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं अभी मेवात का एक एग्जांपल देती हूँ कि महिलाएं तो खुद इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके बच्चों की हायर शिक्षा के लिए सरकार पैसा देती है, और 70 महिलाओं के अकाउंट में वो पैसे डाले कि वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दें, और 70 से ज्यादा महिलाओं को सिलाई मशीन लेके दी सरकार के पैसे से कि वो अपने घर का कार्यक्रम चलाएं। और बहुत सारे ऐसे महिलाओं को पैसा भी दिया गया कि वो अपने बेटियों की शादी करें। तो स्कीम बताना एक बात है, पर स्कीम को प्रैक्टिकली लागू करके उनको बेनिफिट दिलाना ये अलग बात है। और बेनिफिट कौन दिलाएगा? वो समाज में जो लीडर्स हैं वो ही दिला सकते हैं। अगर हम सरकार के अगेंस्ट ही चलते रहेंगे तो हम कैसे महिलाओं को सक्षम बनाएंगे और कैसे हम उन तक ये जो कार्यक्रम है लेके जाएंगे? तो बहुत सारी ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैं कहती हूं आज का ये युग है, आप सरकार जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी अच्छा कर रही हैं, बट आज का समय हमें फिर हिस्ट्री रिपीट कर रहा है, हमें एक गांव में एक पुरुष और एक महिला की जान पहचान, जो जान पहचान है उनकी पूरे गांव के साथ होनी चाहिए और गांव की जान पहचान एक परिवार के साथ होनी चाहिए। अगर वो उनके साथ खड़े हैं, उनकी सहानुभूति उनके साथ है और उनको सक्षम बनाते हैं, यही एक मैसेज है आज के युग में सक्षमता की बात करने का। कोई भी इंडिविजुअल लीडर, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये रोल प्ले नहीं कर सकती है उस हद तक जहां हम पहुंचना चाहते हैं। हम इतनी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, पर जो ज्ञानी हैं, जिनको नॉलेज है, जिनको टेक्नोलॉजी आती है, वो हैंड टू हैंड अपनी कम्युनिटी में, अपने समुदाय में उनका हाथ पकड़ के चलें, तभी इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है।
2: जी मैम, और इस क्षेत्र में भी मैं समझता हूं कि सरकार काफी काम कर रही है। डिजिटल इंडिया की जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं आपके इस विजन को सपोर्ट करती है। मैम, इसी क्रम में ये जानना चाहूंगा मैम कि जैसे अभी कोविड का समय आया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थे, मगर उन्होंने वेबिनार्स आयोजित करने शुरू कर दी, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आयोजित करनी शुरू कर दी, जूम ऐप और तमाम बहुत सारी एप्स ऐसी हुई जिसका ऊपर यूज करना शुरू कर दिया गया, तो टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ा और बहुत अच्छे से यूज किया जाने लगा। तो मैम, रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और उपयोगी कैसे साबित हो सकती है हम सभी लोगों के लिए, इसकी जानकारी हमें दो।
0: पांच चीजें हैं जो मैं पिछले बहुत सारे सालों से ये बोलती हूं सबको। एक तो एक्सेसिबिलिटी इज अ बिग गैप, क्योंकि एक्सेस नहीं होगा टेक्नोलॉजी को तो वो समझेंगे कैसे। फोन खरीदने के लिए भी अगर पैसे नहीं है तो हम कैसे बात करेंगे कि हम टेक्नोलॉजी को लेके जा रहे हैं गांव में, और शहरों में तो लोगों के पास पांच पांच फोन है बिकॉज दे कैन अफोर्ड। और अफोर्डेबिलिटी दूसरी बात है कि पैसा होना चाहिए खरीदने के लिए। तीसरी बात है एडेप्टेबिलिटी, जो हम पॉपुलेशन के वर्ग को अगर हम डिवाइड करें, यूथ के पास फोन है पर 30-40 उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक टेक्नोलॉजी को यूज करना भी आना चाहिए। मैं यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं मलेशिया की कम्युनिटी लाइब्रेरीज में गई थी जहां पे ओल्ड पॉपुलेशन के लिए अलग से एक सेक्शन है, जहां पे वो ओल्ड पॉपुलेशन आती है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता पर वो सीखना चाहते हैं, और वहां पे टाइम डेडिकेटेड किया हुआ है कि आप 2 घंटे आइए, हम आपकी क्लास लेंगे, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान देंगे और कैसे मोबाइल को यूज करना है, कैसे मोबाइल बैंकिंग को यूज करना है, ये सारी जानकारी भी हम उनको देंगे। तो कौन कर रहा है ये? लर्नेड पीपल आर डिवोटिंग देयर टाइम कि वो दूसरे लोगों को सिखाएं। तो टेक्नोलॉजी की लर्निंग भी एक बहुत बड़ी बात है इसमें। और पांचवा जो पॉइंट है जो मैं यहां पे सबसे जरूरी कहना चाहूंगी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, लर्निंग स्किल्स और उसकी कॉन्टिन्यूटी। उसकी कॉन्टिन्यूटी भी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि पिछली टेक्नोलॉजी को सीखते ही वो डिप्लीट हो जाती है, और जब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, क्योंकि इट्स अ मार्केट ट्रेंड, अगर हम मार्केट ट्रेंड को अलग कर लें और सिखाने की कला को अलग कर लें, तो मुझे लगता है कि जो मैंने 5 पॉइंट्स यहां पे बताया हम उनको बहुत अच्छे से लागू कर सकते।
1: बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। और क्योंकि आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो क्या उससे जुड़े कुछ कानून हैं ऐसे जो आप हमारे श्रोताओं को बताएं? और जैसा कि समय भी है, बहुत कम रह गया है, तो एक बार अपने श्रोताओं को हम पुनः बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गीता मल्होत्रा को। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए, और अब तक जितने भी श्रोताओं ने सुना होगा वो अवश्य ही बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। तो अब
2: मैं, आपने जो सवाल पूछा उसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि अगर अपने प्रदेश सरकार की हम बात करते हैं, तो महिलाओं के लिए जो यूपी पुलिस है उसने काफी काम किए हैं, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो विंग है, महिलाओं के लिए तमाम हेल्पलाइंस उन्होंने लॉन्च करी है, डायल 112, विमेन पावर लाइन 1090, तो इस तरह की हेल्पलाइंस हर स्टेट में है। तो अगर महिला इन हेल्पलाइंस को यूज करती है तो मैं समझता हूं कहीं भी जो क्राइम है उनके अगेंस्ट वो अगर हो रहा है या नहीं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति बन रही है, तो ये हेल्पलाइंस कहीं ना कहीं उनके लिए उपयोगी साबित होंगी। और जो लीगल लिटरेसी की बात कर रही हैं आप या कानून से रिलेटेड जो भी सवाल आपने पूछा, तो मैं समझता हूं बहुत कम समय में इसका जवाब दे पाना मुश्किल है, तो वो लोग इस हेल्पलाइन से अगर हेल्प लेते हैं तो उनकी जो कानून के प्रति जो जिज्ञासा है या जानकारी वो करना चाहते हैं उनको जरूर मदद मिलेगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई।
0: ज्योत्सना जी, जब आपने कानून की बात करी है तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगी।
1: जी मैम,
0: हम कानून की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? मैंने सबसे पहले कार्यक्रम में यह बोला है कि हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच। एक महिला रात के 10 बजे के बाद सड़क पे अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती है, क्यों? कौन है समुदाय कौन बना रहा है, एक महिला और एक पुरुष? अगर पुरुष की सोच ठीक है तो महिला को डर की बात नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी है। हमने समुदाय में ऐसी सुरक्षा लानी है महिलाओं के लिए कि उनको कानून की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर हम कानून के पीछे भागते रहेंगे तो हम कानूनी शिक्षा के बारे में ही जानकारी दे पाएंगे, जो लाइफ स्किल्स हैं, जो हमने वैल्यू सिस्टम की बात करी है, जो कल्चर की बात करी है। मुझे लगता है कि मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड, और जो शिक्षा शुरू होती है वो परिवार से शुरू होती है। और अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा दें कि एक लड़की और लड़का समान है, और अगर आपको समाज में इसका कहीं पे ये नजर आता है कि रिलेशनशिप क्या है, अगर उसको संभाल के आगे चलना है, तो उतनी नॉलेज तो पेरेंट्स भी दे सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी आपने बात कही, और कुल मिला के बस यही है कि अगर हमें सशक्त होना है तो शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ जरूरी है कि हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का संचार हो, हमारे अंदर सभी सद्गुणों का संचार हो। और जैसा कि कहा, माँ पहली पाठशाला होती है बच्चों की, तो बिल्कुल ये एक माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाले। और सर, जैसा कि हम आज वेमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं, तो इसमें इग्नू का क्या रोल है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ
2: जी, क्योंकि समय कम बचा है तो मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। ये जानकारी मैं खास तौर से अपने लर्नर्स को देना चाहूंगा जिन्हें एडमिशन लेना है, जो ऑलरेडी जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। जैसा कि डॉक्टर गीता जी ने भी अपने फीडबैक के दौरान, अपने सेशन के दौरान बताया कि सबसे जरूरी है कि महिलाओं को उनके विषय में जो भी कदम उठाए गए हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो विश्वविद्यालय का भी ये प्रयास है कि जो भारत सरकार या राज्य सरकार जो महिलाओं को तमाम सहूलियतें दे रही हैं, तमाम योजनाएं उनके बेटरमेंट के लिए लागू हो रही हैं, उनके विषय में हम लोग बताएं। तो इसके लिए हम लोग तमाम अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसमें ग्रामीण महिलाओं को सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि वो इग्नू के कार्यक्रमों में जुड़े। इसके लिए हम लोग कम्युनिटी मीटिंग्स आयोजित करते हैं, और वहां पर हम लोग जो वहां उस समुदाय के जो नॉलेजेबल्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, और उनके द्वारा ये मैसेज देने का प्रयास किया जाता है कि शिक्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे जो है सोशल डेवलपमेंट किया जा सकता है, महिलाओं का उत्थान हो सकता है, महिला पुरुष मिलजुल के देश की उन्नति में, देश के प्रोग्रेस में समान रूप से भागीदार हो सकते हैं। तो ये हम लोग बताते हैं। और उसके बाद जो इग्नू द्वारा जो महिलाओं से संबंधित जो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जो उनके स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हमारे जो महिलाओं के लिए यूजफुल हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इग्नू फ्री ऑफ कॉस्ट संचालित कर रहा है, उसके विषय में जानकारी दी जाती है। और मैं समझता हूं 50-60% केसेज में लोग कन्विंस होते हैं और एडमिशन लेते हैं। महिलाओं के लिए हम लोगों ने स्पेसिफिक सेंटर्स भी बना रखे हैं जहां पर केवल महिलाएं ही पढ़ाई करती हैं, और उनसे संबंधित कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं जिससे उनका अध्ययन और जो उनके नॉलेज का लेवल है हम लोग उसको बढ़ा सकें। और जो वर्क प्लेस पे महिलाएं काम कर रही हैं, जो हमारे विमेन स्टूडेंट्स हैं, उनको सहूलियत मिले। तो जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस इस समय इम्प्लीमेंट कर रखी है, इग्नू उसको पूरा फॉलो करता है, वैसे ही सारे कानून जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से। तो ओवरऑल मैं मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों का ये प्रयास है कि महिलाओं को हम लोग ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करें, जैसे कि वो शिक्षित हो सकें और सशक्त हो सकें।
1: बिल्कुल सर, आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी और मैम हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं आपके कार्यक्रम का बहुत बहुत आई शुड से कि थैंक्स टू यू एंड डॉक्टर कीर्ति की जिन्होंने मुझे बुलाया, और मैं वैसे तो गुड़गांव में रहती हूँ, आज मैं लखनऊ में थी तो एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए अपनी बात कहने की, और मुझे लगता है कि जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो भी मैंने छोटी बात बोली अगर उसका अमल करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट उनको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं, आज जो बात निकलकर सामने आई है वो यही है कि शिक्षा हमारे जीवन में सबसे बड़ा हथियार है, तो अगर आप शिक्षित होते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सब के साथ जैसा कि मैम ने बताया मानवीय गुणों का होना बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों में ये संस्कार आप बचपन से डेवलप करिए कि बच्चे सुबह उठते ही करें सबसे पहले अपने ईश्वर का ध्यान, साथ ही साथ बड़ों का सम्मान करें और अपने बच्चों को एक अच्छा और नेक और सच्चा इंसान बनाएं, तो जीवन में हम सब प्रगति की ओर जरूर अग्रसर होंगे। और इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करने की अनुमति दीजिए अपनी दोस्त ज्योत्सना को, लेकिन सुनते रहिए ज्ञानवाणी लखनऊ FM 105.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर, जहां कार्यक्रमों का सिलसिला रहेगा जारी रात्रि 10 बजे तक।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजा हृदय शाह लोधी की।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: ये वतन का
2: 1857 का विद्रोह प्रथम स्वाधीनता संग्राम माना जाता है, लेकिन वीरभूमि बुंदेलखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल सन 1842 के बुंदेला विद्रोह में ही बज उठा था। ये विद्रोह ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का पहला संघर्षपूर्ण प्रयत्न था, जिसके अग्रणी नेता थे हीरापुर के राजा हृदय शाह लोधी। अपने लोगों पर उनका गहरा प्रभाव था, यही कारण है कि उनके आह्वान पर अनेक लोधी राजा, जागीरदार, मालगुजार, तालुकेदार और किसान अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो

के बहाने बुंदेलखंड के अनेक राजाओं और जागीरदारों से संपर्क कर अंग्रेजी राज के विरुद्ध योजनाएं बनाई गईं। मेले में जैतपुर महोबा के बुंदेला राजा परीक्षित, हीरापुर के राजा हृदय शाह, चिरगांव झांसी के राय बहादुर भगत सिंह, सागर जिले के मधुकर शाह बुंदेला जैसे कई जागीरदारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट हुए। विद्रोह को सफल बनाने तथा प्रजा का राज्य स्थापित करने का संदेश सावधानी पूर्वक सभी जगह पहुंचाया जाने लगा। बुंदेलखंड के दक्षिण में सागर नर्मदा क्षेत्र में क्रांति की आग सुलगाने का काम कर रहे थे राजा हृदय शाह और जागीरदार मधुकर शाह। इस अभियान में नरसिंहपुर के ढिल्लन शाह भी अपने क्षेत्र के असंतुष्ट जमींदारों और लोगों को लेकर विद्रोही बन गए। इस तरह बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग में विद्रोह की ज्वाला जल उठी।

राजा हृदय शाह के नेतृत्व में कंपनी सरकार के ठिकानों पर आक्रमण कर दिया गया। पहले आक्रमण में एक चौकी पर अधिकार कर अंग्रेजों को मार भगाया गया। इस आक्रमण से अंग्रेज तिलमिला उठे। पूरी तैयारी के साथ कैप्टन ब्राउन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हीरापुर पर चढ़ाई कर दी। भारी सेना को देखकर नगर खाली कर दिया गया। अंग्रेजी सेना ने हीरापुर को लूटकर तहस नहस कर दिया। राजा हृदय शाह अपनी सेना के साथ हीरापुर से तेजगढ़ आ गए। दरअसल तेजगढ़ में पहले राजा हृदय शाह के पूर्वजों का ही राज था और अब उनके वंश के एक लोधी जागीरदार की जागीरदारी यहाँ थी, इसलिए हृदय शाह को यहाँ से सहायता का विश्वास था। और हुआ भी ऐसा ही। तेजगढ़ में हृदय शाह और उनकी सेना का स्वागत हुआ और भरपूर सहयोग किया गया। राजा हृदय शाह ने नरसिंहपुर पर घेरा डाल दिया और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। हृदय शाह ने दमोह, जबलपुर और नरसिंहपुर के बहुत से हिस्सों पर अधिकार कर लिया। अब उनकी सेना आगे बढ़ी और उसने सागर के मुख्यालय को घेर लिया और अंग्रेजों को परास्त कर सागर को मुक्त करा लिया। जबलपुर अंग्रेजों का गढ़ था, वहां उनकी भारी सेना जमा थी, इसलिए राजा हृदय शाह उससे बचते हुए अपनी सेना को एक तरफ से निकालकर आगे बढ़ गए। उनकी सेना ने नर्मदा नदी को पार किया। स्थानीय किसानों ने हृदय शाह की सेना का साथ दिया। इस तरह राजा हृदय शाह की सेना ने कंपनी सरकार के अधिकारियों को परास्त किया और नगर गांव अंग्रेजों से खाली करवाते चले गए। राजा हृदय शाह अंग्रेजों के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े थे। उन्हें पकड़वाने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई। राजा हृदय शाह ने परिस्थितियों को देखा और भूमिगत हो गए। और अब भूमिगत होकर वो छापामार युद्ध का संचालन करने लगे। एक वर्ष तक वो इसी तरह अंग्रेजों से लोहा लेते रहे, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। वे लगातार छापामार युद्ध शैली से आक्रमण करते। उन्हें जनसमर्थन इतना था कि अंग्रेजों की गतिविधियों की पूरी जानकारी उन्हें मिल जाया करती थी, किंतु उनकी कोई भी जानकारी कंपनी सरकार तक नहीं पहुंच पाती थी। बड़े बड़े मालगुजार उनके भोजन आदि की व्यवस्था करते, साथ ही खतरों से सचेत भी कर देते। इस तरह स्वराज हेतु एक सघन संघर्ष जारी रहा।

राजा हृदय शाह की सक्रियता से गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो और ब्रिटिश सेना अध्यक्ष दोनों ही घबरा उठे। बुंदेलखंड क्षेत्र अंग्रेज सैनिकों के लिए कुछ अपरिचित भी था। अंग्रेजों ने मदन सिंह नामक एक व्यक्ति को अपने मार्गदर्शन हेतु नियत किया, लेकिन वो स्वयं देशभक्तों के साथ था। उसने अंग्रेजी सेना को जंगल में भटकाकर विद्रोहियों को इसकी सूचना दे दी। इस तरह अंग्रेजी सेना परास्त हुई। अब थक हार कर अंग्रेजों ने दमन और शक्ति के स्थान पर आत्मसमर्पण और क्षमादान की प्रक्रिया अपनाने पर विचार किया। लॉर्ड एलनबरो की ओर से घोषणा की गई कि जो विद्रोही अपराधी प्रवृत्ति का त्याग कर सामाजिक जीवन बिताने की इच्छा से आत्मसमर्पण करेंगे, कंपनी सरकार उन्हें क्षमादान देगी। इसके साथ ही दबाव बढ़ाने के लिए इलाहाबाद, बनारस, नागपुर, झांसी, कानपुर तथा इटावा से फौजें मंगवाई गईं। कुछ स्थानीय जागीरदारों से भी सहायता ली गई, साथ ही भारी इनाम की घोषणा कर फूट डालने का प्रयास भी किया गया। इस तरह विद्रोहियों का उत्साह गिरने लगा। पुरस्कार के लालच में भाई भाई का दुश्मन बन गया। 21 नवंबर 1842 को राजा हृदय शाह को इनाम के लालच में पकड़वा दिया गया। उन्हें चुनार दुर्ग में कैद कर बहुत यातनाएं दी गईं। उनकी गिरफ्तारी से इस पूरी मुहिम को बहुत क्षति पहुंची। उनका पूरा परिवार बंदी बना लिया गया। राजा हृदय शाह, राजा परीक्षित तथा मधुकर शाह इस विद्रोह के स्तंभ थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत से लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि ये विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन वो आग जो राजा हृदय शाह ने प्रज्वलित की थी, भीतर ही भीतर वो सुलगती रही और सन 1857 में भयंकर विस्फोट के रूप में फूट पड़ी। राजा हृदय शाह की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह की इतनी भीषण स्थितियां पैदा हुईं कि कंपनी सरकार के लिए इसे दबा पाना संभव नहीं था। इसलिए सन 1843 में उन्हें इस शर्त के साथ रिहा कर दिया गया कि भविष्य में वे विद्रोह नहीं करेंगे। लेकिन स्वतंत्रता प्रेमी और स्वाभिमानी राजा हृदय शाह भला किस शर्त में बंध सकते थे? अवसर मिलते ही 1857-58 के स्वातंत्र्य समर में उनका पूरा परिवार समस्त सैन्य बल के साथ पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में डट गया। उनके एक भाई सावंत सिंह ने 1857 के समर में अपने प्राणों की आहुति दी। दूसरे भाई गजराज सिंह भी गिरफ्तार हुए तथा फांसी पर लटका दिए गए। हृदय शाह के पुत्र मेहरबान सिंह ने भी 1857 के समर में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। इस तरह उनके पूरे परिवार ने स्वाधीनता आंदोलन में अपना बलिदान दिया। 28 अप्रैल सन 1858 को राजा हृदय शाह ने अंतिम सांस ली। नमन भारत के ऐसे महान वीर सपूत को।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार। आज का हमारा जो सेशन है जिसमें हमारा जो फोकस रहेगा वो एक तरह से जो पुलिस में जॉब्स होती हैं आपकी, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, उससे एसोसिएटेड है। ठीक है, वैसे तो हमने इससे पहले डिफेंस का या और भी कई टाइप के जो गवर्नमेंट जॉब्स को हमने पहले भी कवर किया है, तो आज का जो सेशन है वो प्राइमरी पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें चाहे आपकी ए क्लास जॉब्स है आईपीएस की, चाहे आपकी इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की या कांस्टेबल की, तो हम उस तरह की जॉब्स के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो लेटेस्ट में रिसेंट में जहां जहां पर ये वैकेंसीज निकली हुई है तो उसमें ये देखेंगे भी उसमें क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगी हुई है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, तो वो सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए, अब अभी से पहले अगर मैं सेशंस की बात करूं तो हम काफी बहुत टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं जिसमें हमने हर तरह की जो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, और ये सारा इंफॉर्मेशन आपको, अगर इतना सारा इंफॉर्मेशन अगर है आपके पास में अलग अलग कोर्सेज के बाद अलग अलग कोर्सेज के बारे में, तो आप अपना करियर एक तरह से चूज कर सकते हैं। अगर आप 10th में है, 12th में है, या बीए बीकॉम बीएससी जो भी आप कर रहे हैं, तो आपकी बिल्कुल राइट एज है एक करियर ऑप्ट करने की। और करियर ऑप्ट करने से पहले अगर आपको अलग अलग चीजों के बारे में पता है, अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में पता है, रास्तों के बारे में पता है, तो आप अपनी मंजिल सेट कर सकते हैं भी आपको इस लाइन में जाना है, और उसके बाद फिर आप उसे अचीव भी कर सकते हैं। चलिए, हम आज के सेशन से स्टार्ट करेंगे जिसका हमारा टारगेट है स्टेट पुलिस जॉब्स। देखिए, जनरली क्या होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है। इसमें मतलब आपका हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल कम है, क्योंकि स्टेट का डिपार्टमेंट रहता है पुलिस डिपार्टमेंट, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उस स्टेट में वैकेंसीज आती है। जो आपके बड़े बड़े स्टेट्स हैं जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तो वहां पर जब भी वैकेंसी आती है तो हजारों की क्वांटिटी में आती है, मतलब बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है, कंपटीशन भी उतना ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर वैसे तो देखिए आप मान के चलिए एम होता है सबका। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुलिस ऑफिसर की एक तरह से बड़ी प्रेस्टिजियस ही जॉब है, क्योंकि पावर तो है ही है इसमें, पावर के साथ साथ पैसा भी है, सैलरी भी आपकी ठीक ठाक होती है, और प्लस में आप हर तरह से मतलब अपने आप को एक पावरफुल फील करते हैं। ठीक है, और पुलिस में अगर आप हैं तो आसपास में भी आपकी एक टाइप से हम कह सकते हैं कि रिस्पेक्टफुल जॉब हो जाती है। तो बच्चों का एम होता है कि उन्हें पुलिस में जाना है, बट पुलिस में जाने के लिए हमें एक टाइप से जो फिजिकल फिटनेस आपकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाहे कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप सब इंस्पेक्टर का दें, चाहे आप इंस्पेक्टर का दें, चाहे आप कॉन्स्टेबल का दें, या आप अगर आईपीएस के लिए भी अप्लाई करेंगे तो वहां भी आपको जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको पास करने रहते हैं, जो भी इनका फिजिकल रहता है वो आपको क्वालिफाई करना रहता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं एक, ये जो आपने अगर स्क्रीन पे देखे, हिंट करूं आपको मैं, तो ये अलग अलग तरह की जॉब्स है। जैसे आप देखेंगे सबसे ऊपर जो है वो एसपी, जिसको हम सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, ये एक तरह से आईपीएस ऑफिसर होते हैं। ठीक है, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री रहती है। आपको ध्यान हो मैंने स्टार्टिंग में आपका सेशन लिया था जिसमें आपको मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में बताया था कंप्लीट कि, और ये एक तरह से सिविल सर्विसेज का ही पार्ट होता है, जो हमारा आईएएस का एग्जाम होता है उसी में ही आपकी आईपीएस की सर्विसेज होती है, जो एक टाइप का कैडर होता है आईपीएस का, इंडियन पुलिस सर्विसेज का। तो आज के सेशन में उसमें मैं बात करूंगा पूरा। ऐसे ही असिस्टेंट कमिश्नर या डीएसपी होते हैं। देखिए, जो डीएसपी होते हैं ये बेसिकली स्टेट वाइज वैकेंसी आते हैं, मतलब जो आईपीएस है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है। वही अगर हम डीएसपी की बात करें तो ये स्टेट वाइज वैकेंसीज आती हैं, क्योंकि जो स्टेट सिविल सर्विसेज है, जैसे आप हरियाणा में देखते हैं तो एचसीएस है, हरियाणा सिविल सर्विसेज है, ऐसी राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, आपका पीसीएस है, तो उसमें क्या होता है कि डीएसपी की वैकेंसी होती है, जो एक तरह से आपका डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, तो उसका भी पैटर्न ऑलमोस्ट आईएएस के पैटर्न का ही होता है, बट वो स्टेट वाइज वैकेंसीज होती है आपकी। फिर सब इंस्पेक्टर, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, और सबसे नीचे कांस्टेबल। ठीक है, तो
तो जो कॉन्स्टेबल होता है वो एक तरह से एंट्री पॉइंट है। अगर आप पुलिस में बिल्कुल एक टाइप से अगर आपकी भर्ती लोअर एंड से हुई है तो आप कॉन्स्टेबल ज्वाइन करते हैं, और ये जितने भी वैकेंसीज हैं चाहे वो एएसआई की है, चाहे वो पुलिस हेड कॉन्स्टेबल की है, चाहे वो कॉन्स्टेबल की है, वो सारी आपकी स्टेट लेवल वैकेंसीज होती है। ठीक है, वो स्टेट लेवल आपके रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अब जो लोअर वैकेंसीज है चाहे वो कॉन्स्टेबल है चाहे पुलिस हेड कॉन्स्टेबल है, तो 12th बेसिस पर होती है इनकी जॉब ज्यादातर। ठीक है, तो एज भी इनकी 25 ईयर तक होती है, अपर एज जो है 25 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरली स्टेट वाइज आती है वैकेंसी, तो साल दो साल में एक बार वैकेंसी जरूर आती है। जैसे अभी आपने देखा हो कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी कॉन्स्टेबल की, 5000 प्लस वैकेंसी आई है। ठीक है, तो जब भी आती है काफी ज्यादा क्वांटिटी में आती है, साल दो साल में एक बार वैकेंसी आती है इनकी। ठीक है, उसके लिए 12th क्लास आपकी मिनिमम एज है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो आज के सेशन में हम इन सब पर्टिकुलर जॉब्स के बारे में बात करेंगे, पेपर में क्या क्या आता है इनकी, ठीक है, क्या पैटर्न होता है। तो सबसे टॉप पे जो पहले एक बार मैं इनके बारे में और आपको एक्सप्लेन कर दूं, जैसे हम यहां पर अगर देखें, हाँ मतलब पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल से भी पोस्ट, बिल्कुल वो क्या रहता है, देखिए पुलिस डिपार्टमेंट में जब भी वैकेंसीज आती हैं तो वैकेंसीज आपकी दो तरह से फिल की जाती हैं। एक तो वैकेंसी होती है जिसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, और सेकंड वैकेंसी होती है जो आपकी प्रमोशनल होती है। जैसे मान लो 100 वैकेंसी अगर आई है तो 100 में से 60-70 वैकेंसी होती है जो डायरेक्टली एग्जाम से लिए जाते हैं बच्चे, और 20-30% ऐसा होता है जो एक तरह से प्रमोशनल होता है। तो दोनों तरीके से वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, तो ये हमारी अलग अलग पोस्ट है जो पुलिस डिपार्टमेंट में रहती है और जिसके बेसिस पे आप पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए जॉब कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये बात क्लियर है बेटे। सबसे लोअर पे पुलिस कॉन्स्टेबल की वैकेंसी होती है, उसके बाद हेड कॉन्स्टेबल है, फिर एएसआई है, फिर आपकी एसआई हो गया, फिर इंस्पेक्टर है, फिर आपका डीएसपी है, और सबसे ऊपर आपका एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब देखिए जब हम एसपी की बात करते हैं, जिसके लिए हमारा जो कैडर होता है, जो ए क्लास आपकी सर्विस होती है, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, जिसे हम आईपीएस कहते हैं। आईपीएस आपका एक तरह से आपको सिविल सर्विसेज का पेपर देना होता है, आईएएस का एग्जाम आपको देना है। और सिविल सर्विसेज के एग्जाम के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसकी जो मिनिमम एज है 21 ईयर है, 21 ईयर की एज से आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, 32 ईयर तक आपका एज रहता है। और इसमें आपको जो एग्जाम रहता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं आपके। फर्स्ट पार्ट आपका प्रिलिमिनरी होता है, सेकेंड आपका मेंस होता है, और उसके बाद फिर हमें इंटरव्यू अपियर करना रहता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन रहती है आपकी ग्रेजुएशन। एक बात और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सिविल सर्विसेज का पेपर होता है उसमें ग्रेजुएशन में आपको कोई भी स्ट्रीम आपकी हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने बीए बीकॉम बीएससी किया हो, और उसके साथ साथ आपने मार्क्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपका बीए बीकॉम बीएससी में कितने मार्क्स हैं, वो कहीं मैटर नहीं करेगा। हाँ ये है कि आप पास होने चाहिए उसके अंदर। अब ये जो आईएएस का एग्जाम होता है, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, जनरली मई के मंथ में होता है। अभी आपने रिसेंट में यू हैव हर्ड इनटू द न्यूज कि अभी 5 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, क्योंकि कोरोना के कारण मई का एग्जाम एक्सटेंड हो गया था, तो प्री का एग्जाम अभी अक्टूबर में हुआ है। और फॉर्म्स जो निकलते हैं आपके फेब मार्च में फॉर्म निकलते हैं आईएएस के एग्जाम के, ठीक है, तो उसमें आपको पहले प्री का पेपर देना है। जो प्रिलिमिनरी का पेपर है उसमें आपके 2 पेपर रहते हैं अलग अलग। एक पेपर आपका एप्टीट्यूड का रहता है जिसको हम सी सेट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और सेकंड पेपर जो आपका रहता है जनरल स्टडीज का, जिसमें आपके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और जीएस आप कह सकते हैं कि 10th to 12th लेवल तक का सारा जो जीएस है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके रहते हैं। और अगर आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आप मेंस के लिए अपियर करते हैं, ठीक है, तो जिसका जो सेकेंड स्टेज होता है वो आपका मेंस होता है, मेन एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन एक तरह से डिस्क्रिप्टिव होता है इसमें, और इसमें हमारे पेपर्स होते हैं, जैसे आपका लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा, इंग्लिश का पेपर रहेगा, एशे राइटिंग है,
आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, जनरल स्टडीज का एग्जाम रहेगा। तो ये आपको मैंने पहले भी जब मैंने आईएएस के बारे में आपको बताया था तो वहां मैंने आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना रहता है, चाहे आपने वो अपना यू हैव स्टडीड इन द ग्रेजुएशन, या फिर आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना रहता है और मास्टर डिग्री लेवल तक उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके बेसिस पे मेंस का एग्जाम रहता है। तो मेंस का जो एग्जाम रहता है वो रिटन टेस्ट रहता है, आपको लिखना होता है, और मेंस का जो रिजल्ट आ जाता है तो फिर उसके बाद आपको थर्ड स्टेज में जाना होता है जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। बट आईपीएस के लिए यहां पर आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है इन इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए। अगर आप आईएएस के लिए जा रहे हैं तो वहां आपका कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता, बट आईपीएस में होता है। और ये जो कैडर आपको मिलता है जब आप आईएएस का फॉर्म फिलअप करते हैं सिविल सर्विसेज का, तो उस टाइम पर आपसे ऑप्शन मांगा जाता है, आपसे च्वाइस मांगी जाती है, अभी आप किस उसमें अप्लाई करना चाहते हैं। वहां आपको प्रेफरेंस फिल करनी होती है, तो जिस प्रेफरेंस जिस ऑर्डर में आप अपनी फिल करेंगे उसी के हिसाब से ही आपको कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो मतलब अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो वैसे सबसे टॉप पे तो आपका इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि अगर आप आईपीएस के थ्रू आते हैं तो आपकी स्टार्टिंग पोस्टिंग ही आपकी एसपी की पोस्टिंग होती है। और अगर हम एसपी की बात करें, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब किसी भी जिले की सारी जो कानून व्यवस्था है, या हम ये कहें कि सारी पुलिस जो है वो एसपी की गाइडलाइंस पे काम करती है, ठीक है। तो एसपी एक तरह से हम ये कह सकते हैं जिले का सबसे ऊंचा पुलिस ऑफिसर होता है। तो अगर आपकी स्टार्टिंग ज्वाइनिंग एसपी से हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कुछ ही सालों में आप बहुत ऊंची पोस्ट पे जाएंगे। तो टारगेट तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का इंडियन पुलिस सर्विस ही होता है और होना भी चाहिए, पर उसके लिए उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टारगेट बनाना आसान है बट ऐसे टारगेट्स को अचीव करने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, अपने आपको मतलब अपना काफी हार्डवर्क करके स्टडीज में फोकस करना पड़ता है। बट ये है कि एक बार आप ऐसा कोई एग्जाम क्वालिफाई कर दें तो उसके बाद फिर आपका लाइफ बहुत ही सेट हो जाता है, एक अच्छी लाइफ में आप अपने आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला था आईपीएस के बारे में। फिर ऐसे ही आपकी एएसआई एसआई की वैकेंसी आती है, मतलब सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है। यहां जैसे मैंने अभी रिसेंट में आंध्र प्रदेश में वैकेंसी आई है, एपीपीएससी ने वैकेंसी निकाली है, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने, तो 123 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, ठीक है, जिसका फॉर्म जो फॉर्म निकला था 24 सितंबर को निकला, और फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 6 नवंबर है। तो आप लोग भी फिल कर सकते हैं, सॉरी ये अरुणाचल प्रदेश की है, सॉरी मैं पढ़ नहीं पाया, अरुणाचल प्रदेश की। तो इसमें क्या रहता है, देखिए चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, क्योंकि ये वैकेंसीज आपकी सब इंस्पेक्टर की होगी या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है ये एक तरह से स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है, ठीक है, और मतलब क्वांटिटी में 100+ जनरली वैकेंसीज होती है, डिपेंड करता है कि स्टेट कितना बड़ा है। इनमें रिजर्वेशन भी रहता है आपका, जनरल कैटेगरी का, शेड्यूल्ड कास्ट का, ट्राइब का, अदर बैकवर्ड क्लासेस का, तो वो सारी चीजें इसमें ध्यान दी जाती है। अब इसमें देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब जो एसआई एएसआई, क्योंकि ये सारी एक ही आपकी जो कैटेगरी होती है, इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम सबसे पहला आपका रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम के बाद फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होता है, और उसके बाद एंड्योरेंस टेस्ट का मतलब क्या है कि आपका एक टाइप से मेंटल चेकअप, ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, इसमें देखिए स्पेशल कोटा तो नहीं होता है, जैसे आप जैसे हरियाणा में वैकेंसी निकली, सपोज हरियाणा में एसआई की वैकेंसी निकली, तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ हरियाणा, ऐसा नहीं, बाहर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। पर जनरली क्या रहता है कि जो पेपर इस तरह का आएगा, जैसे मान लो हरियाणा में अगर पेपर है तो उसमें हरियाणा जीके का फोकस ज्यादा रहेगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि बाहर का बच्चा अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसी जैसे आपका महाराष्ट्र है, साउथ इंडिया है, तो वहां पर क्या रहेगा, जब भी वैकेंसीज आएंगी तो उसमें आपसे जो लोकल लैंग्वेज वहां की है,
वो आपसे मांगेंगे। जैसे महाराष्ट्र में मान लीजिए वैकेंसी आती है तो आपको लिखा होगा कि 10th क्लास तक आपने मराठी पढ़ी होनी चाहिए। अब देखिए ये बात तो क्लियर है कि हमारा हरियाणा पंजाब का तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसने मराठी पढ़ी हो। हाँ मतलब देखिए उसमें कॉन्स्टेबल में होता है, मतलब जैसे क्या रहता है ना, जो पीएस जो वैकेंसी आपकी पीएससी के थ्रू आती है ना, देखिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वैकेंसी आती है ना, उसमें कहीं कोटा नहीं होता। मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए और ग्रुप बी की वैकेंसी में कोई कोटा नहीं होता, उसमें स्टेट के लिए अलग से स्टेट का नहीं होता रिजर्वेशन। बट जो ग्रुप सी और डी की वैकेंसी होती है वहां स्टेट का थोड़ा बहुत रोल प्ले किया जाता है, क्योंकि ग्रुप ए और ग्रुप बी तो आपकी ऑफिसर वैकेंसीज है। अब ये आपकी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है तो सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी में आता है, तो ग्रुप अगर बी में आता है तो फिर उसका, अब जैसे मैं बहुत बच्चों को हम जानते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में लगे हुए हैं या जो दिल्ली पुलिस में है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के अंदर 80% बच्चा जो है वो हरियाणा से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये बड़ा होता है, इफेक्ट होता है इस चीज का। हाँ कोटा होता है बट उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, मतलब उसमें कोटा आपका इस तरह का तो होता है कि आपका एससीज का है, एसटीज का है, बैकवर्ड क्लासेस का है, तो ये सारी चीजें उसमें होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो उसके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है। मैंने यहाँ इसलिए इनकी मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा कि आपको ये पता हो कि मतलब क्या क्या चीज चाहिए। देखिए जैसे क्या है कि 165 सेंटीमीटर एंड एपीएसटी, मतलब भी आप इन जनरली चाहे हम हरियाणा की बात करें चाहे हम कहीं की वैकेंसी की बात करें, तो मेल के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर की हाइट मांगते हैं और फीमेल के लिए 157 की। बाकी ये स्टेट वाइज वेरी भी करता है। तो उसमें देखिए कुछ पैरामीटर्स हैं। पहली पैरामीटर आपका होता है बेटे हाइट, तो जिन बच्चों की हाइट कम है तो वो आप मान सकते हैं भी पुलिस सर्विसेज में, इस तरह की एएसआई में, या आप ये जैसे हम कांस्टेबल की बात करें तो वहां पर जॉब मिलना मुश्किल है। सेकंड होता है बेटे चेस्ट, भी चेस्ट हाइट के अकॉर्डिंगली आपकी मेजरमेंट होती है। फिर उसमें हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, उसके लिए आपका स्पेसिफाइड होता है कि हाई जंप इतना होना चाहिए आपका, लॉन्ग जंप इतना होना चाहिए, और उसके अंदर एक टाइप से रनिंग भी होती है, अभी इतने सेकंड में आपने इतना मीटर करना है, तो ये सारी चीजें इसमें मैटर करती है। तो अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि आप किसी भी पोस्ट के लिए जाना चाहे, अगर कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो, तो आपको अपने फिजिकल पे काफी ध्यान देना पड़ता है, उस पर आपको ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी पुलिस के एग्जाम के अंदर फिजिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब तो आजकल पहले टेस्ट होता है, नहीं तो पहले क्या हुआ करता था, आज से कुछ साल पहले पहले फिजिकल होता था फिर टेस्ट लिया करते थे, उसमें काफी बच्चा रिमूव हो जाता था, ठीक है। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता ही रहा था कि अभी रिसेंट में दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली थी, मेरे हिसाब से आप लोगों में से काफी बच्चों ने उसको फॉर्म को फिलअप भी किया होगा। कई बच्चों ने जो कांस्टेबल का वैकेंसी निकला था 5846 वैकेंसी आई है कांस्टेबल की, आपने फॉर्म भी फिलअप किया होगा जो उस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं। तो इसका एग्जाम अब कब होगा, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा इसका, ठीक है। और कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आई हैं इसमें आप देखेंगे तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अभी आपका पहले टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है कि पहले क्या होता था कि जनरली पुलिस के जो टेस्ट होते थे वो आपके पेपर पेंसिल बेस्ड होते थे, बट ये जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का जो टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो नवंबर दिसंबर में होगा आपका। और अब देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि टेस्ट में क्या आता है, क्योंकि पहली स्टेज तो आपकी टेस्ट है, अगर आपका टेस्ट ही वेरीफाई नहीं हुआ तो फिर सेकंड स्टेज के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो पहली चीज तो आपके लिए क्या है कि आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा जो भी कांस्टेबल का टेस्ट है। तो यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि ये तो मैं आपको दिल्ली के स्ट्रक्चर की बता रहा हूं, वही अगर आप यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो हर जगह पर ऐसे ही पैटर्न है। वैकेंसीज आती हैं, वैकेंसीज के बाद टेस्ट होता है, पहले एक तरह का आप ये कह सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन होता है। अब उसमें भी डिपेंड करता है स्टेट वाइज, ठीक है। जैसे अभी पहली बार यहां पर जैसे ऑनलाइन टेस्ट है दिल्ली के अंदर, ठीक है,
तो अब जो टेस्ट होगा उसमें देखिए क्या क्या आता है। ये टेस्ट का पैटर्न गिवन है, 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट रहेगा, जिसमें जनरल नॉलेज 50 मार्क्स। तो मतलब जीके का एक बहुत बड़ा रोल है, और जीके भी आप ये मान के चलिए जिसमें स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके का मतलब है कि वो सब्जेक्ट जो बच्चे 10th क्लास तक पढ़ते हैं, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीजें आती हैं पहली चीज। फिर उसके बाद में रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग के अंदर अभी मैं इसका कोर्स भी बताऊंगा अभी क्या क्या है इसके कोर्स में। फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें आपकी टेस्ट में आती हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली अगर आप पुलिस की बात करें, तो आपको जीके में कमांड बनानी पड़ेगी, करंट अफेयर्स पे काफी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा जो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसीज है। सिलेबस को अगर हम देखें तो रीजनिंग सेक्शन में नॉन वर्बल ज्यादा आता है। मतलब मैंने आपको पीछे भी बताया था कि रीजनिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है वर्बल पार्ट होता है, सेकंड होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल सेक्शन जो होता है वो एक तरह से पिक्चर बेस्ड होता है, जिसमें आप देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं विजुअलाइजेशन के होते हैं, विजुअल मेमोरी के होते हैं, एनालॉजी टाइप होता है, ठीक है। कई सारे टॉपिक्स हैं, आप कोई भी बुक उठा लीजिए नॉन वर्बल रीजनिंग की, या कोई भी एक जनरल बुक रीजनिंग की अगर आप फॉलो करते हैं। वैसे तो हम तो यही एडवाइस करते हैं कि अगर आपने 12th किया हुआ है या 11th में अगर आप है, मतलब 10th के बाद से आपको रीजनिंग की कोई ना कोई बुक लेके उसे सॉल्व करना चाहिए। रीजनिंग बहुत ही आसान टॉपिक होता है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, और एक बार अगर आपने रीजनिंग के टॉपिक किए हुए हैं फिर आपका एक प्रैक्टिस है उसमें, मतलब आप प्रैक्टिस करते रहिए धीरे धीरे धीरे धीरे, तो आप उसमें काफी इंप्रूव कर जाते हैं और उसमें स्पीड आपकी काफी इंप्रूव हो जाती है। चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, कुछ भी एनी एग्जामिनेशन, रीजनिंग उसमें आता ही आता है। चाहे आप रेलवे की बात करें, चाहे हम किसी गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें या पुलिस की बात करें, तो रीजनिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो रीजनिंग में तो आपको मेहनत करनी भी चाहिए, और ये आसान होता है इसलिए इजीली किया भी जा सकता है। ऐसी न्यूमेरिकल एबिलिटी है, अब हम किसी भी सरकारी नौकरी की बात करें तो यही चैप्टर्स हैं, ये अर्थमेटिक है, नंबर्स है, ये 5 से 6 चैप्टर्स होते हैं आपके, ये चैप्टर्स आपने प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे कॉन्स्टेबल की वैकेंसी है तो लेवल कम आता है, वही अगर और कोई एग्जामिनेशन हो तो उसमें लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट चैप्टर्स तो आपके सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको तैयार करनी है। अब आपके साथ एक बहुत बड़ा फायदा क्या है कि जैसे अभी कमलेश सर बता भी रहे थे कि हमने ई स्टडी प्रोग्राम जो लॉन्च किया हुआ है रीड इंडिया के साथ में, तो उसमें देखिए हमने मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी मीडियम में स्पेशली, क्योंकि हमारे पास बहुत बच्चा ऐसा है जो हिंदी मीडियम में है आप में से, कि जो आपका राजस्थान से है, चाहे उत्तर प्रदेश से है, जो बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमने हिंदी मीडियम के, मैथ्स के, रीजनिंग के, आप देखेंगे उसमें पूरा मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में आपको गिवन है। चाहे कोई भी चैप्टर आपको परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो है, वो सारी चीजें आपको हमने ई स्टडी प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप उसे अगर रेगुलरली यूज करते रहते हैं, हमने सारा जीके प्रोवाइड किया हुआ उसके ऊपर, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो वो आपके पढ़ने के ऊपर है कितना आप उसे यूज करते हैं, वीडियोज को कितना आप देखते हैं। उसके अलावा भी आजकल तो आप एक टाइप से YouTube को यूज कर सकते हैं, YouTube के माध्यम से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, हर सब्जेक्ट पे आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाते हैं हर टॉपिक के ऊपर। थोड़ा आपको फोकस करने वाली बात रहती है, क्योंकि चीजें बहुत कुछ है। आप देखेंगे पिछले 12 से 13 क्लासेस के अंदर हमने अलग अलग स्ट्रीम्स के बारे में बात किया, ठीक है। इन सब स्ट्रीम्स को सुनने के बाद में आपको ये तो फील हुआ भी चीजें बहुत कुछ है, नंबर ऑफ कोर्सेज आर देयर, कई तरह की जॉब्स आती हैं, कई तरह की वैकेंसीज आती हैं, तो हमें उन वैकेंसीज में, उन जॉब्स में अगर अपनी सीट पक्की करनी है तो उसके लिए हमें रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है सबसे पहली चीज, क्योंकि बिना टेस्ट के तो कोई आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगा, ठीक है। तो ये मैथ्स के आपके बेसिक टॉपिक है, ये आपको जरूर तैयार करने हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर का भी कुछ पेपर आता है इसमें 10 मार्क्स का, जिसमें कंप्यूटर के फंडामेंटल्स होते हैं, थ्योरी टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक्सेल का, वर्ड का, कम्युनिकेशन इंटरनेट का, वर्ड प्रोसेसिंग का,
ठीक है, तो उसमें अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है और कुछ कंप्यूटर की आपने बुक स्टडी कर रखी है, तो आप मल्टीपल च्वाइस में बहुत आसानी से उनके क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं अगर आप दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का पेपर दे रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, नेगेटिव मार्किंग होती है हमेशा। देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसका सबसे बड़ी उसमें खासियत यही है कि नेगेटिव मार्किंग उसमें होती है, तो आप अपनी ओर से तुक्के नहीं लगा सकते। तो अगर आपका पहला स्टेज क्वालिफाई हो जाता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो उसके बाद में उसके जो भी आपके जो कट ऑफ आएंगे उसके बेसिस पे आपका सेकेंड स्टेज के लिए सिलेक्शन होगा। और आप जनरल मान के चलना जैसे 100 मार्क्स का पेपर है तो कट ऑफ इसका 65 से लेकर 75 के बीच में रहेगा। जनरली इस तरह के एग्जाम में 65 से 75 मार्क्स अगर आपका स्कोर हो जाता है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका पहला स्टेज आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आता है फिजिकल टेस्ट। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुलिस के अंदर जितने भी एग्जाम है ना, चाहे वो किसी लेवल का है, ठीक है, डिपेंड करता है भी क्लास ए एग्जाम आईपीएस का जो है उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड कम होते हैं क्योंकि वो आपका ऑफिसर क्लास है। उसके बाद बी क्लास हो चाहे सी क्लास हो, उनमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स का काफी बड़ा रोल रहता है। जैसे ये मैं आपको जो दिल्ली पुलिस का है वो बता रहा हूं, मेल कैंडिडेट के लिए 30 ईयर्स तक की अगर आपकी एज है, वैसे तो 25 ईयर एज होती है, बट उसमें क्या है कि कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो डिपार्टमेंटल होती है फिल, या अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है 5 साल का 4 साल का, वो जो भी एक तरह से वो जो भी इनका पैरामीटर होता है। तो आप ये मान के चलिए कि 1600 मीटर आपने 6 मिनट्स में पूरे करने हैं। ठीक है, अब आप ये देखो भी आपकी स्पीड मतलब एक तरह से एक टाइप से जो रनिंग की स्पीड कितनी है कि 1600 मीटर आप 6 मिनट में पूरा कर पाए। लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट की होती है, हाई जंप आपकी 3 फीट 9 इंच की है। तो ये दिल्ली पुलिस के लिए है। और जनरली हमारे पास जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं या आपके नॉन में भी जो अभी पहली बार ट्राई करेंगे, तो जिनकी एज 25 ईयर से कम है, तो ये पैरामीटर उन्हें पूरा करना है। फीमेल्स के लिए भी थोड़ा पैरामीटर में चेंज होता है कि 1600 मीटर जो है 8 मिनट में पूरे करने होते हैं, लॉन्ग जंप 10 फीट का होता है, हाई जंप 3 फीट का होता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कि ये जो कांस्टेबल की वैकेंसीज या एसआई या एएसआई की वैकेंसीज मेल्स के लिए होती है, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं इसमें। ठीक है, तो वो भी आपकी अलग से वैकेंसीज आती है। तो आपको दो चीजों पर ध्यान रखना है, पहला टेस्ट आपने क्वालिफाई करना है, बिना टेस्ट क्वालिफाई करे आपको जो हमारा सेकेंड स्टेज है उसके लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप सेकेंड स्टेज क्वालिफाई कर देते हैं जिसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जब पूरा हो जाता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। ठीक है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें एक तरह से आपके सारे जो टेस्ट किए जाते हैं, आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब ये देखा जाता है कि कोई ऐसा डिसीज तो आपको नहीं है, तो मेडिकल टेस्ट के लिए दे हैव द मेडिकल बोर्ड और वो आपका टेस्ट करता है। और फाइनल स्टेज आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। ये तीनों स्टेज क्वालिफाई करने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंट किए हुए हैं 12th के, क्योंकि 12th के बेसिस पर वैकेंसी है तो 12th के डॉक्यूमेंट लगेंगे वहां पर। अगर आपका ग्रेजुएशन के बेस पर है तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स प्लस में कोई स्पोर्ट्स कोटा है या कोई आपकी जो कैटेगरी है उसका कोई भी जो डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाती है और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो आप देखिए इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं भी इंटरव्यू नहीं है, पूरे प्रोसेस में कहीं भी इंटरव्यू नहीं है और सारी स्टेजेस आपकी क्वालिफाइंग है, सारी स्टेजेस आपकी क्वालिफाइंग है। जैसे पहली स्टेज आपकी टेस्ट है तो टेस्ट क्वालिफाई किया तो आपको किसी अप्रोच की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड स्टेज आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है तो वो आपको जो भी पैरामीटर्स गिवन है उसके बेसिस पे आपने करना है। और अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी जॉब लग जाती है। तो थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ा फोकस चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद इन चीजों को क्वालिफाई किया जा सकता है। जैसे हम बहुत बच्चों को जानते हैं जो गांवों से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो अगर फिजिकली फिट है, फिजिकली एंड्योर है, ये टेस्ट पास कर सकते हैं, पर उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनका पेपर क्वालिफाई नहीं होता। हाँ, तो मतलब ये तो आपको हर चीज पर ध्यान रखना है,
हम मेरिट लिस्ट निकलते हैं इसकी पूरी की पूरी, जब आपके सारी टेस्ट हो जाते हैं तो मार्क्स ऐड होकर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, उसके अकॉर्डिंगली आपका फिर सिलेक्शन होता है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको हरियाणा पुलिस के बारे में बताया, दिल्ली पुलिस के बारे में बताया, ठीक है, क्योंकि ये तो स्टेट वाइज वैकेंसीज है, ठीक है। आप मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हिंदी स्पोकन पीपल है, आप हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ स्टेट्स में थोड़ा ये है भी, स्टेट वाले बच्चे को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ये हमेशा ही होता है, बट फिर भी ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहें कि स्टेट का बच्चा ही लगता है। बाहर के लोगों का भी ज्वाइनिंग तो होता है, वो डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, कितने टेस्ट आपने क्वालिफाई किया है उसके बेसिस पर, ठीक है। और जो दिल्ली पुलिस में तो वैसे भी बाहर के लोग ज्यादा है, अगर हम स्पेसिफिकली दिल्ली स्टेट की बात करें तो दिल्ली स्टेट के लोग तो काफी कम है, हरियाणा के, यूपी के, बिहार के तो काफी लोग हैं जो दिल्ली पुलिस में है। ऐसे ही रेलवे में भी वैकेंसीज आती हैं, रेलवे पुलिस फोर्स जिसको हम आरपीएफ कहते हैं, उसमें भी कांस्टेबल की वैकेंसी आती है। हाँ, पैरामिलिट्री फोर्सेज इंडिया लेवल की है, बिल्कुल। जो पैराम मैंने पीछे आपको बताया था, जो मैंने आर्मी के बारे में बताया था आपको, मैंने सीआरपीएफ का एक्सप्लेन किया था, तो वो आपकी इंडिया लेवल का टेस्ट होता है, बट जो आरपीएफ का टेस्ट होता है, रेलवे पुलिस फोर्स की वैकेंसी आती है, वो आपकी जोन वाइज आती है। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये रेलवे जो है ना, वो आपका जोन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो जोन अलग अलग है वो अपनी वैकेंसी अलग से निकालते हैं, ऑल्दो एक सेंट्रलाइज फॉर्म निकलता है, पर सेंट्रलाइज फॉर्म के बाद में वैकेंसी जो होती है वो आपकी जोन वाइज होती है, ठीक है। हर साल वैकेंसी नहीं आती है, साल दो साल में एक बार आरपीएफ की वैकेंसी आती है, तो वो भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में आती है, क्योंकि रेलवे अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है। और आप देखेंगे कि रेलवे में इंडिया में इतने स्टेशंस हैं, सभी स्टेशंस में पुलिस चौकी होती है, उनका रेलवे पुलिस फोर्स होती है, ट्रेन में भी पुलिस आती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो आरपीएफ के उसमें आता है, रेलवे पुलिस फोर्स के अंदर आता है। इसका भी जो प्रोसीजर है बिल्कुल सेम है, मतलब उसी पैटर्न पे रहता है। इसमें आपका पहले टेस्ट होता है, और टेस्ट जो होता है वो हमारा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, चार सब्जेक्ट उसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, फिर उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हो गया, जिसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, तीन चीजें जनरली होती हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग होती है। तो इनका प्रोसेस भी ऑलमोस्ट जैसे पुलिस का, जनरल पुलिस का प्रोसेस है, चाहे किसी स्टेट की हम बात करें, उसी पैटर्न पे रेलवे पुलिस फोर्स का भी, कॉन्स्टेबल का सेम पैटर्न पे रहता है, ठीक है। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर है। अब कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अगर आप पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, अगर आप पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, तो आपको दो चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो आपको अपनी हाइट देखनी है, पहले आपने ये देखना है भी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या पूरे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे की हाइट कम है, तो फिर क्लियर है भी, अगर हाइट कम है तो वो फिजिकल स्टैंडर्ड पूरे नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो फिर उसे पुलिस में जॉब लेने का सपना लेना ही नहीं चाहिए, पहली चीज, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सेकेंड थिंग इसमें क्या है कि फिर अगर आपकी हाइट और चेस्ट और हम ये कहें कि ये सारी चीजें उसके स्ट्रक्चर में है, फिर आप अपनी बात करिए कि उसके बाद में फिर आपको अगर पुलिस फोर्सेज में जाना है तो टेस्ट की और फिजिकल टेस्ट की दोनों की तैयारी आप साथ साथ रखें। मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, तो आप हरियाणा में या दिल्ली के आसपास के एरियाज में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एक टाइप से इसकी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं लग के, ठीक है, बट उनको फिर उसके साथ टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है। अगर टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा तो आप कितने भी स्पोर्ट्समैन हो, कितना भी फिजिकल आपका हो, तो वो बात नहीं बन पाएगी। तो दोनों चीजों पे आपने ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये टारगेट मेक करके करने वाली बात है, तो आप दो तीन स्टेट्स की पुलिस फोर्सेज में अपना ट्राई कर सकते हैं, और थोड़ी सी मेहनत की जाए तो क्वालिफाई भी किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आर्मी का कोई भी भर्ती है या आर्मी के थ्रू किसी भी टाइप की रिक्रूटमेंट है, तो वो भी आप उसको टारगेट कर सकते हैं साथ साथ, जिससे आपके चाहे आर्मी में हो जाए चाहे आपका पुलिस में हो जाए, तो दोनों पे आपका फोकस हो सकता है। बाकी जितने भी

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: सो अभी तक किसी को किसी सेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लास्ट टू सेशंस जो हमने करे थे उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
1: मैम अंजुम का जो कि स्टूडेंट है ब्यूटी की, उनका सवाल है, वो एक बार एक सवाल करना चाहती है मैम, आप प्लीज उनका आंसर दीजिए।
2: मैम अंजुम बोल रही हूँ। यस
0: आप टीवी के बारे में पूछना चाह रही हैं?
2: मैम, यस मैम।
0: क्या पूछना चाह रही है टीवी के बारे में?
2: मैम वो जो आपने कल बताया था ना, तो वो थोड़ा समझने क्लियर समझ नहीं आया। उसके लक्षण क्या है, उनके जैसे क्या कर सकते हैं उनसे बचने के लिए, थोड़ा क्लियर समझ नहीं आया।
0: टीबी जो है आपके फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, और टीबी के जो लक्षण होते हैं वो खांसी होती है लगातार 3 से 4 हफ्ते तक, उसके साथ अगर ब्लड आता है, और चेस्ट में जकड़न होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है, बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है, बुखार चढ़ना, थकावट होना, ये सब उसके लक्षण हैं। इससे कैसे बचा जाए कि आपके एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए टीबी जैसी बीमारी से लड़ने के लिए, और घर में रहना है, अगर किसी को भी टीबी होता है उसको घर में रहना है, मास्क पहनकर रहना है, बार बार अपने हाथ धोने हैं, खांसते छींकते वक्त अपने मुंह को कवर करना है। टीबी जो है उसमें आपको जो दवाई दी जाती है टीबी अस्पताल से उसको पूरी लेनी है, उसका कोई डोज मिस नहीं करना है। अगर हम मिस करते हैं तो टीबी हमको ठीक नहीं होता है और फिर से हो सकता है, या बहुत टाइम लग सकता है उसको ठीक होने में, पर टीबी की दवाई कोई मिस नहीं करनी होती है। सिर्फ इसका जो डायग्नो मतलब आपके अब कैसे पता चलेगा, अगर खांसी ज्यादा लंबे तक 1 महीना 2 महीना चल रही है, जकड़न भी है आपके फेफड़ों में और आपका सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो और चेस्ट एक्सरे करा सकते हो, जिससे आपको पता चलता है कि टीबी आपको है या नहीं। और ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इसकी मेडिकेशन है, जो आपको दवाइयां मिलेंगी उसको दवाइयों को लेना है, टाइम से टाइम लेना है, अपना अलग रहें, अपना अलग कमरे में जो भी टीबी का मरीज है उसको अलग कमरे में रखें, और उनके जो भी उनका देखभाल कर रहा है उनको भी सावधानी बरतनी है, कहीं इन्फेक्शन उन्हें ना हो जाए, इसलिए उन्हें भी सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जिसका प्रश्न था उसको समझ आ गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडोलेसेंस और प्यूबर्टी पे। एडोलेसेंस और प्यूबर्टी जो किशोर अवस्था जो स्थिति होती है, जो हर बच्चे के दौरान हर बच्चे की जिंदगी में आती है, हर इंसान की जिंदगी में मैं बोलूंगी आती है, हम भी उस स्टेज से गए हैं जिसमें एडोलेसेंस और प्यूबर्टी की जो स्टेज होती है, जिसमें बॉडी में चेंजेस आते हैं, मानसिक स्थिति में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो पीरियड होता है लाइफ का, ये बच्चा बच्चा नहीं रहता है और हम उसको बड़ा भी नहीं कर सकते, ये बच्चे और बड़ा होने के बीच का पीरियड होता है, जो हम कहते हैं 10 से 18 या 19 साल का पीरियड होता है। इसमें बहुत ज्यादा मानसिक चेंजेस होते हैं।

0: और आपके हाव भाव में आपका बिहेवियरल चेंजेस भी बहुत ज्यादा हमें दिखने को मिलते हैं, हर हर किसी में दिखने को मिलते हैं। तो इसके तीन स्टेजेस होते हैं, अर्ली, मिडिल और लेट। अर्ली की उम्र होती है 10 से 13 साल, मिडिल 14 से 16 साल और लेट की होती है 17 से 19 साल की उम्र। तो अर्ली जो एडोलेसेंस होता है, अर्ली मतलब जल्दी जो आता है हमारा 10 से 13 साल की उम्र में आता है, इसमें मूड चेंजेस बहुत होते हैं। मतलब आपकी बच्चे के मूड चेंज बहुत होगा, बच्चा जो है अपनी चैलेंज, अपनी इंडिपेंडेंट मांगता है, चैलेंजेस को फेस करता है, जो उसकी लाइफ में आते हैं चैलेंजेस उसको फेस करता है। फैमिली मेंबर्स, लोगों से दूर जाना पसंद करता है, अपनी प्राइवेसी चाहता है कि उनके काम में कोई उसको डिस्टर्ब ना करें, उनके काम में कोई उसको बोले ना। तो ये सब चेंजेस दिखते हैं अर्ली एडोलेसेंस में। फिर मिडिल एडोलेसेंस में क्या होता है, जब 14 से 15 साल के होता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस ये लोग बच्चे लेना शुरू कर देते हैं। एंड इसमें बहुत ज्यादा ख्वाब भी लेने शुरू कर देते हैं, बहुत ऐसे ख्वाब होते हैं जो कभी पॉसिबल हो पाते हैं, कभी नहीं हो पाएंगे। और खासकर दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा शुरू करते हैं कि दोस्त कैसे हैं, उनके दोस्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट है कि ये अच्छा है ये बुरा है। बहुत आपने सुना होगा कि बच्चे, आज मेरा ये नया दोस्त बना, कल वो आकर बोलेंगे कि नहीं आज मैं उससे नहीं बात करा, उसने ये कर दिया तो आज मैं दूसरे दोस्त बन गया। तो दोस्तों पे एक्सपेरिमेंट रिस्क हो जाता है, किस संगति में वो जा रहे हैं, किस फ्रेंड से वो मिल रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत होता है। खासकर ये स्टेज जो होती है लड़कों की या लड़कियों की, जो भी है, गलत संगति में जाकर गलत आदतें शुरू हो जाती हैं, ड्रग्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली ये स्टेज होती है। फैमिली के साथ लो, पेरेंट्स से दूर होना, पेरेंट्स से बातें छुपाना शुरू हो जाना, एक अपनी वैल्यू बनाना, किसी को कुछ ना बताना, शायद ये स्टेज आती है। फिर लेट एडोलेसेंस जो होती है 17 से 18 या 19 साल, उसमें वो लोग प्लान करते हैं कि उनको बड़े होकर क्या बनना है, तो उस गोल की तरफ वो लोग पढ़ाई भी और अपनी सोशल जिंदगी भी उस गोल की तरफ लेकर जाते हैं। अपनी फिजिकल चेंजेस जो उनकी बॉडी में आए हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उनकी जो शारीरिक चेंजेस बॉडी में आए हैं उसको एक्सेप्ट कर लो। उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों का। और अपनी हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना और अपनी एडल्ट लाइफ की तरफ आगे बढ़ना, ये एक एडल्ट लेट एडोलेसेंस में होता है। अब हम प्यूबर्टी की बात करते हैं, जिसको हम किशोर अवस्था बोलते हैं। किशोर अवस्था क्या होती है कि हमारी जो शारीरिक चेंज बच्चों में दिखते हैं उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी आपकी फिजिकल चेंजेस, आपकी शारीरिक चेंजेस बॉडी में जो होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको हम शारीरिक चेंजेस को प्यूबर्टी बोलते हैं। जब एक बच्चा बॉर्न होता है और जब जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ये चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं। कुछ के जल्दी आ जाते हैं, कुछ के लेट आते हैं। कोई जात नहीं देखी जाती, कोई रिलीजन नहीं देखा जाता, कोई नेशनैलिटी नहीं देखी जाती। हर बच्चे के, हर इंसान, दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनकी जिंदगी में ये चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं। लड़कियों में जो चेंजेस होता है, सबसे ज्यादा जो बड़ा चेंज है वो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना, पीरियड्स का शुरू होना 8 से 9 साल या 10 साल की उम्र में होता है। अब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि लड़कियों को 12 से 13 साल की उम्र में भी पीरियड्स नहीं शुरू होते। ऐसा है, ये हर एक की अपनी अपनी एक बॉडी होती है। आपकी, आपको शरीर जो भगवान ने दिया है और मुझे जो शरीर भगवान ने दिया है, हम दोनों को अलग अलग शरीर दिया है। चाहे चीजें अंदर सेम हैं, पर जो अंदर की फंक्शंस हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म, मेरा मेटाबॉलिज्म, आपकी इम्यूनिसिटी, मेरी इम्यूनिटी बहुत फर्क करती है। तो हर किसी की बॉडी पे ये फर्क पड़ता है कि कब पीरियड शुरू हो रहे हैं और कब जल्दी हो रहे हैं या लेट में हो रहे हैं। बहुत सी लड़कियों को ये पीरियड्स आठ नौ साल की उम्र, 10 साल की उम्र में हो जाते हैं, किसी किसी को 13-14 साल की उम्र में भी होते हैं। फिजिकल चेंजेस दिखती हैं, ब्रेस्ट का बढ़ जाना मतलब चेस्ट बढ़ना, हेयर ग्रोथ होना, आपका फेस पे पिंपल्स होना, बॉडी ऑडर, शरीर से स्मेल आना, और क्रैम्प्स पड़ना शरीर में, दर्द होना, ये सब हमें सारा दिखते हैं। हार्मोनल चेंजेस जब अंदर बॉडी में होते हैं तो ये सब चीजें हमें शरीर में दिखने को मिलती हैं। वेट में गेन होना भी एक मेजर शारीरिक चेंज है। प्यूबर्टी इन बॉयज क्या होता है, लड़कियों लड़कों में क्या चेंजेस हमें दिखते हैं? आवाज जो है उनकी वो भारी हो जाती है, उनके वेट गेन हो जाता है, उनके भी शरीर में एक्ने पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ, फेस पे हेयर ग्रोथ, दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस दिखने हैं, शरीर में बॉडी ऑर्डर भी आना शुरू हो जाता है। तो ये लड़के लड़कियों में अलग अलग चेंजेस होते हैं, पर ये हर एक किसी की जिंदगी में आता है। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है हर एक औरत को, हर एक लड़की को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। आप सबको ही पता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जब आती हैं तो एक औरत प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है, और ये हमारे हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं, बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं। और हर महीने ये साइकिल आती है, किसी का 25 दिन का साइकिल होता है, किसी का 30 दिन का साइकिल होता है, कि उनको 30th डे पे ही आता है, किसी को आगे भी बढ़ जाता है। पर मैं यही सबको एडवाइस करूंगी कि अगर किसी को मेंसेस में प्रॉब्लम है तो गायनिक गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं इसके लिए, उससे ही संपर्क कर कोई मेडिकेशन शुरू करें, अपने आप से कोई मेडिकेशन नहीं शुरू करें। अब मेंसेस जब पीरियड्स के दौरान हमें कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो हाइजीन होता है उसका ध्यान रखना है, और सैनिटरी नैपकिन्स, प्लीज सैनिटरी नैपकिन्स का बहुत ज्यादा ध्यान। आज भी बहुत सी औरतें जो हैं कपड़ा यूज करती हैं जिससे इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइज, कौन सा डिजाइन, और किस किस चीज आपको, किस चीज कंफर्टेबल है, कौन सा सैनिटरी नैपकिन आपके लिए कंफर्टेबल है, उससे आपको उसी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और first 2 days, पहले 2 दिन जो हैं, हमें 3 से 4 घंटे के बाद सैनिटरी नैपकिन को चेंज करना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि first 2 days बहुत ज्यादा फ्लो होता है, और जब फ्लो होता है तो बहुत गंदी स्मेल भी आती है बहुत लोगों के में से। तो फिर हमें हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, इन्फेक्शन हमारे यूट्रस में ना जाए दोबारा से, उसको मेंटेन करने के लिए हम 3 से 4 घंटे के बाद अपने सैनिटरी नैपकिन को चेंज कर सकते हैं। और सैनिटरी नैपकिन को चेंज करने के बाद उसको रैप कर डस्टबिन में थ्रो करना है, न्यूज़पेपर में रैप करके डस्टबिन में थ्रो करें। मेक श्योर डस्टबिन जो है आपके रूम में ना हो, किचन में ना हो, ऐसी जगह हो जहां पर स्मेल उस सैनिटरी नैपकिन में से स्मेल किसी भी घर के अंदर ना आए। और जो फ्रेश पैड लगाकर अपने हाथों को, सैनिटरी नैपकिन लगाकर अपने हाथों को पानी से और साबुन से वॉश कर लेना है। ये हमें हाइजीन मेंटेन करनी है। साथ ही साथ हमें नहाना भी है, रोज नहाए, ल्यूकवार्म वाटर गुनगुने पानी से जरूर नहाए, लूज कपड़े पहने, जितना हो सके लूज कपड़े पहने, टाइट कपड़े ना पहने, रैशेस पड़ने का डर रहता है। और बहुत सारा पानी पीना है, 8 से 10 ग्लास पानी पिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितना खाएंगे, आयरन खाएंगे, क्योंकि आयरन हमारे ब्लड में, ब्लड जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, अगर हम हाइजीन नहीं रखते हैं तो हमें एक सबसे बड़ी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, जो सबसे बड़ी डिजीज हो जाती है, वो होती है यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन क्या है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसको बोलते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन होता है। ये एक बैक्टीरियल टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि सैनिटरी नैपकिन हर 3 से 4 घंटे के बाद हमें चेंज करना चाहिए, चाहे आप कॉटन का यूज करो, चाहे आप दूसरा कोई भी मटेरियल का यूज करो। यूटीआई इन्फेक्शन जो बहुत सेंसिटिव होते हैं लोग, जो बहुत जिनको बहुत ज्यादा जल्दी इन्फेक्शन होता है, तो उनको यूटीआई इन्फेक्शन होने का डर होता है। ये यूटीआई इन्फेक्शन क्या है, व्हेन जो बैक्टीरिया है वो आपके यूरिनरी ट्रैक में एंटर करता है, तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स से ही ये ठीक हो पाता है, और हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यूटीआई इन्फेक्शन में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको जितना हो सके पानी पीना है, ताकि यूरिन के थ्रू वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी से बाहर जाए। अगर हम पैड्स नहीं चेंज करेंगे तो बैक्टीरियल पैड में इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो हमारे यूट्रस में जाकर इन्फेक्ट कर सकता है। और यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो, अगर हम हाइजीन भी नहीं मेंटेन करेंगे तब भी हो सकता है, तो इसलिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोगों का हेवी क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, क्या यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है वो इरेगुलर साइकिल, मतलब बहुत लोगों को साइकिल डिले होते हैं या बहुत टाइम के बाद होते हैं, ऐसा भी प्रश्न होता है। यूटीआई इन्फेक्शन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई लेना, मतलब आपस में लेना देना नहीं है। अगर आपने मिस किया है तो कहीं आपको स्ट्रेस है, एक एंजाइटी है, पर यूटीआई इन्फेक्शन से कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेना देना नहीं है। बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस या इमोशनल चेंजेस होते हैं तो हम लेट, हमारे जो पीरियड्स हैं वो लेट होने शुरू हो जाते हैं, तो हमें स्ट्रेस और एंजाइटी और इमोशनल, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इस दौरान बहुत होते हैं, तो हमें अपने आपको स्ट्रेस नहीं करना है, एंजाइटी नहीं लेनी है, ताकि हम जो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलरली होती रहे। क्या सिम्टम्स हमें दिखते हैं जब यूटीआई इन्फेक्शन होता है? बर्निंग सेंसेशन होता है जब आप यूरिन करेंगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, सडन मतलब एक अर्ज होती है यूरिन करने की पर आपको यूरिन नहीं आता है, और यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, इचिंग होती है बहुत ज्यादा उधर, तो ये सब लक्षण दिखते हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ यही यूटीआई का ट्रीटमेंट यही है कि हमें एंटीबायोटिक्स लेनी है और अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है। अगर हम अपनी हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो हम इन्फेक्शन, हमारा इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, और इट कैन बी डेंजरस, ये एक यूटीआई इन्फेक्शन डेंजरस भी हो सकता है। किसी को कुछ पूछना है?
1: हेलो मैम,
0: हाँ जी शशि जी।
1: मैम मेरी यहाँ पे काफी सारी गरिमा ग्राम में बहुत सारी लड़कियां हैं और ये
0: हाँ
1: सेशन आज का जो है बहुत अच्छा है मैम। और सभी लड़कियों के सवाल है वो वन बाय वन पूछना चाहती है मैम, उनके क्वेश्चंस के मैम आंसर वो क्लियर कीजिए प्लीज मैम। सबसे पहले पूछना चाह रही है अंजुम। हेलो मैम,
0: हाँ जी
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।
1: मैं पूछना चाहती हूँ कि मैम हमारे जो फिजिक्स आते हैं ना, तो मतलब कमर इतने तेज है, दर्द होते हैं, तो उसका मतलब क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, जो पीरियड्स में पेन होता है, क्रैम्स आते हैं, ये एक नॉर्मल हर एक लड़की को होता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। उसमें आप दवाई भी, मैं तो कहूंगी उसमें दवाई भी नहीं लेना चाहिए। ये जो पीरियड्स क्रैम्स या पेन होते हैं, ये एक नॉर्मल बॉडी का साइकिल है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है।
1: हेलो मैम, हाँ
0: हाँ
1: जी
0: जी
1: मैम, ऐसा होता है ना कि मतलब एक मतलब 1 महीने मतलब पीरियड नहीं आता है 1 महीने तक, वो क्यों क्यों होता है ऐसा?
0: देखिए, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अपनी अपनी शरीर है, अपना अपना बॉडी है। अगर मिस हुआ है पीरियड तो
1: हाँ मिस हो जाता है कई बार।
0: मिस हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, डॉक्टर से बात करनी है। आपका वो अगर ज्यादा मिस होता है तो अल्ट्रासाउंड होकर आपके जो
1: नहीं
0: प्रॉब्लम्स,
1: मैम, एक ही
0: हाँ
1: महीने
0: जी
1: मतलब मिस होता है, उसके अगले महीने आ जाता है।
0: तो वो आपकी बॉडी का जो हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, मैंने बताया, किसी को 15 दिन में भी दोबारा शुरू हो जाते हैं, किसी को 25 दिन में होते हैं, किसी को 30 दिन में होते हैं, किसी को 35 डेज में होते हैं। सो ये अपनी बॉडी पे डिपेंड होता है। पर अगर
1: डॉक्टर के
0: आप
1: पास
0: इसको
1: जाने के
0: आप अगर इसको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
1: ठीक,
0: बहुत
1: थैंक यू
0: अच्छा।
1: मैम। हेलो मैम,
0: हाँ
1: मैम
0: जी,
1: आप कि इसमें हमें साफ सुथरा मतलब नहाना चाहिए, तो मैम
0: हाँ
1: हम
0: जी। नहीं
1: बोलते हैं कि इसमें रोज नहाना नहीं चाहिए क्योंकि वो
0: नहीं
1: सरकार
0: आपको रोज नहाना है, रोज नहाना है, हाइजीन मेंटेन करना है, नहीं तो बीमारियां लग सकती हैं
1: मैम
0: शरीर
1: बोलते हैं
0: में।
1: सर्द होने से वो फिर से ज्यादा हो जाता है।
0: ये सब बातें हैं, इनको प्लीज आप, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप रोज नहाएं ऐसा नहीं है, सिर भी धो सकते हैं, रोज काम तो सारे ही करने हैं, ऐसा नहीं है ना, तो नहाना तो चाहिए, रोज नहाना चाहिए और सिर भी धोना चाहिए।
1: अब मैम वो जब इस टाइम पर इचिंग होता है तो क्या हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए?
0: इस टाइम पे अगर आपको ईचिंग होती है तो इसका मतलब आप जो सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हैं या आप अगर कपड़ा यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसको बंद कर दें। अगर आप सैनिटरी नैपकिन को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके जो सैनिटरी नैपकिन हैं वो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, तो आप स्विच कर सकते हो सैनिटरी नैपकिन को। और हाइजीन
1: थैंक
0: मेंटेन कर रखना है क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं।
1: यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। इतने सारे सवाल से बचा। हेलो मैम,
0: हाँ जी,
1: अगला क्वेश्चन सोनी का है जो थोड़ा सा पूछने में शर्मा रही है, तो मैं उसका क्वेश्चन मैं आपको मैं बता देती हूँ। मैम उनका क्वेश्चन है कि जैसे कपड़ा वो यूज कर रही हैं उस टाइम पे वो धो के इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या उससे भी इन्फेक्शन का खतरा होता है?
0: शशि जी सबसे पहले तो सोनी को बोलिए कपड़ा इस्तेमाल करना बंद कर दें,
1: ओके मैम,
0: क्योंकि कपड़ा धोकर इस्तेमाल करेंगे उससे तो 101% इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं।
1: ओके मैम।
0: तो कपड़ा नहीं इस्तेमाल करना है।
1: मैम वो बोल रही हैं कि पैड हम इस्तेमाल करते हैं तो पैड से उन्हें थोड़ा सा जैसे जलन के टाइप में या रैशेज हो जाते हैं, तो
0: तो
1: वो
0: इसका
1: उसके
0: मतलब उनको जो सैनिटरी नैपकिन वो यूज कर रहे हैं वो उनको सूट नहीं कर रहा है, आप कॉटन बेस्ड सैनिटरी नैपकिन भी यूज कर सकते हैं।
1: हेलो मैम,
0: हाँ जी,
1: गुड आफ्टरनून, मैं सरोज बोल रही हूँ मैम। क्या कहते हैं,
0: हाँ
1: मेरा तो पीरियड शुरू होता है ना, तो डेट से पहले ही हर बार ही आता है, 6 दिन 10 दिन पहले ही आता रहता है रेगुलर।
0: ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, 25 दिन की साइकिल होती है, लोग
1: मेरी
0: कहते हैं
1: मैडम
0: महीने की साइकिल है
1: हेलो
0: पर 25 दिन की साइकिल है ये।
1: मैम,
0: हाँ जी,
1: मैं मंजू शर्मा बोल रही हूँ मैम। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम बच्चों की मतलब प्रेगनेंसी के लिए कुछ यूज करते हैं, जैसे कॉपर्टी हो गया, जैसे मैंने फ्रीडम 5 यूज कर रखा है, तो मुझे ना डेट के दौरान मतलब काफी ब्लैडिंग होती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं आप?
0: आपने जो भी ये यूज किया है तो उसके लिए आपने डॉक्टर से संपर्क किया है या डॉक्टर्स ने आपको एडवाइस किया है?
1: हाँ जी मैम, डॉक्टर से ही मैंने लगवाया था प्राइवेट क्लिनिक से, तो मुझे और कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, बस डेट के दौरान ना पहले तो ब्लैडिंग कम होएगी, फिर उसके बाद अगर फ्लो बढ़ेगा तो मतलब लगातार मतलब 8-9 दिन तक चालू रह जाता है।
0: ये
1: जी
0: इसका एक साइड इफेक्ट है, मेजर साइड इफेक्ट है इसका, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। आप डॉक्टर से संपर्क, जिससे आपने लगवाया है या कराया है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत
1: जी
0: ज्यादा,
1: मैम,
0: इसका मेजर साइड इफेक्ट यही है कि मेंसेस बहुत ज्यादा, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होने लगता है,
1: हाँ जी, हाँ जी, मुझे ब्लड फ्लो
0: पेन
1: ही
0: भी
1: ज्यादा
0: होता
1: हो
0: है
1: रहा है।
0: बहुत।
1: जैसे हाँ, पहले तो मेरा मतलब प्रॉपर्टी लगी थी सफदरजंग से, एम्स से, तो मतलब उसमें मेरे को क्या था कि बीपी की प्रॉब्लम, मतलब मोटापा बढ़ना और मतलब कई सारे साइड इफेक्ट थे, लेकिन मैंने वो हटवाया तो ये यूज करा है, तो इसमें मुझे और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी और चीज नहीं होता, बस यही होता कि डेट के दौरान पहले तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दिखेगा 3-4 दिन तक, उसके बाद फ्लो बढ़ता है तो 10-11 दिन ले लेता, तो 5-6 दिन
0: हाँ, तो ये
1: नॉर्मल
0: इसका
1: रहता
0: साइड इफेक्ट है मैम, तो आप प्लीज डॉक्टर से संपर्क करें इसके बारे में भी।
1: है। जी मैम, एक बार डॉक्टर मैम ने मुझे दवाई भी दी थी, तो उससे भी कोई कमी नहीं हुआ, ये फिर मतलब वैसे ही है सेम टू सेम
0: हाँ जी, ये जो
1: वैसे चलता
0: आप हम लोग ये IUD लगा लेते हैं, कॉपर्टी लगाते हैं, तो वो उससे ये साइड इफेक्ट्स शरीर में आते हैं।
1: मैम। इसे आगे के लिए कोई दिक्कत हो सकती है या फिर मतलब कोई जैसे ये साइड इफेक्ट है इससे कोई कल को कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होगी इसमें?
0: अब देखिए, ये अगर आपने लगवाया है ये साइड इफेक्ट से, जरूर शरीर में तो कोई प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। ऐसा तो
1: जी
0: नहीं है
1: जी
0: कि नहीं आएंगे, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एनीमिक भी हो सकते हैं।
1: जी मैम, पहले तो मतलब जैसे ब्लड पतला आता था डेट के दौरान, अब गाढ़ा गाढ़ा ब्लड आता है मैम मेरे को। ठीक
0: तो ये सारी साइड इफेक्ट्स ही हैं उसके।
1: है मैम, तो मैं उन्हीं मैम से फिर जाके मतलब कंफर्म
0: हाँ
1: करती
0: जी,
1: हूँ।
0: डिस्कस कर
1: हाँ
0: लीजिएगा।
1: जी, उनसे डिस्कस करती हूँ। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू।
2: हेलो मैम, मेरा नाम सुनीता है। मैम,
0: हाँ जी,
2: मेरी एज 25 साल है। मेरे दो बच्चे हैं, लेकिन मेरे पीरियड्स में बहुत मतलब पेन होता है। कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सिर में ज्यादातर दर्द है, चिड़चिड़ापन रहता है मेरे।
0: क्योंकि हमारे शरीर में जो इस दौरान हार्मोन चेंजेस हो रहे हो, हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे होते हैं, वो हमारे शरीर में हमारे बॉडी में चेंजेस जो आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, किसी से
2: कमजोरी,
0: बात
2: हाँ
0: बात नहीं करना, पेन होना, ये एक आम है। ये हर हर औरत की जिंदगी में ये इस दौरान 6 दिन के दौरान जरूर होता है।
2: मैम, कमजोरी बहुत रहता है, थकान, ऐसे थकी थकी से
0: हाँ
2: रहते हर
0: जी,
2: टाइम।
0: हाँ जी, क्योंकि हमारे शरीर से, बॉडी में से ब्लड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से कमजोरी होती है। तो इसलिए आयरन हम लें, अच्छा
2: मैम
0: डाइट
2: खाने के लिए
0: लें,
2: क्या क्या इस्तेमाल करें इसमें?
0: प्रोटीन रिच डाइट जितना हो सके प्रोटीन खाएं, रोटी खाएं, दालों का इंटेक करें, अनार का जूस लें, अनार खाएं। आजकल तो अच्छा सैलेड आ रहा है, जो चुकंदर होता है वो ले सकते हैं। अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए।
2: मैम परहेज क्या करें इसके लिए?
0: परहेज ये है कि आपको स्पाइसी खाना नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, मिर्ची वाला नहीं खाना है, ऑयली खाना नहीं खाना है, ये सब परहेज हम कर सकते हैं।
2: थैंक यू मैम।
1: मैम, अगर सर में दर्द होता है तो पेन किलर लेना पड़ जाता है, तो इसमें ले सकते हैं क्या हम दवाई वगैरह?
0: हाँ जी, आप ले सकते हो, पर ज्यादा ना लें तो ज्यादा अच्छी बात है
1: मैम मेरा तो ऐसा होता
0: आपके।
1: पीरियड के दौरान कि मतलब 2-3 दिन लगातार हो जाता है सर दर्द, तो वो मुझे मतलब ड्यूटी पे आना पड़ता है, तो पेन किलर नाश्ते के बाद पेन किलर लेनी पड़ जाती है,
0: आप ले
1: क्योंकि
0: सकते
1: पूरा
0: हैं।
1: सर में प्रॉब्लम है ना, माइग्रेन की प्रॉब्लम है मेरे को, तो मेरे राइट साइड में नस में कुछ मतलब क्लॉक बता रखा है, गांठ वगैरह नॉर्मल, तो उसके लिए मेरी दवाइयाँ चलती हैं। बट पहले मेरे को सर दर्द नहीं होता था, मतलब हर एज में अलग अलग रूल हुए हैं मेरे साथ। पहले जैसे पैरों में दर्द होता था, फिर कमर और पेट में दर्द हुआ, फिर जैसे शरीर में दर्द हुआ, टांगों में दर्द हुआ, मगर जो है ये अभी जो है कुछ टाइम से मेरे सर में दर्द शुरू रहने लग गया है। ये सर में बहुत दर्द हो जाता है मैम, मुझे 2-3 दिन तक पेन किलर लेनी पड़ जाती है लगातार, कभी तो रोज रोज लेना पड़ जाता है।
0: हाँ, ये माइग्रेन के पीछे ही है आपका। माइग्रेन
1: हाँ
0: में
1: जी,
0: जब अटैक आता है, तो फिर वो 2-3 दिन तक लगातार हमें पेन किलर्स लेनी पड़ जाती हैं।
1: जी। और मैम
0: हाँ
1: सर ने मतलब डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आपको ये नहीं सोचना कि अभी मेरा सर दर्द थोड़ा है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, आपको जैसे ही दर्द शुरू हुए तो आपको दर्द की गोली लेनी ही लेनी है, तो मुझे
0: हाँ
1: तुरंत
0: क्योंकि
1: लेनी पड़
0: माइग्रेन में
1: जाती है।
0: डॉक्टर्स यही कहते हैं कि अगर आपने दर्द की गोली नहीं ली, तो फिर वो ब्रेन, मतलब सर बहुत तेज दर्द हो सकता है, तो ब्रेन
1: हाँ
0: जरा
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: भी।
1: तो वो बोलते हैं कि फिर रोकना मुश्किल हो जाता है दर्द को,
0: हाँ
1: इसलिए
0: जी,
1: आपको जैसे लगे कि मेरा सर दर्द हो रहा है तो आपको पेन किलर लेना ही लेना है। तो
0: हाँ जी, हाँ जी, वो तो माइग्रेन में का है ही है, लेना ही है।
1: हाँ, तो मैं मतलब अगर डेट के दौरान ले रही हूँ मैम, इसका कोई वो तो नहीं होगा ना साइड इफेक्ट आगे को मेरे
0: नहीं
1: को?
0: नहीं नहीं नहीं
1: ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू।
2: नमस्ते मैम, मैं संगीता बोल रही हूँ। मैम मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2-3 साल से ना, मैं पहले तो सही आती थी पीरियड से, 4-5 दिन लगातार,
3: लेकिन अब पिछले साल से 2 साल से ना मैं बस 2 ही दिन होती हूँ, तीसरे दिन मेरा पीरियड खत्म हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है मैम?
0: एज क्या है आपकी?
3: मैं 37 साल की हो गई मैम।
0: अच्छा,
3: जी
0: वैसे
3: मैम।
0: तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं।
3: बस 2 दिन आता है मैम, पैरों में थकान, बहुत कटन, और फिर तीसरे दिन बंद।
0: हाँ जी, हाँ जी।
3: ये 2 साल से हो रहा है मेरे साथ मैम।
0: ये हर किसी को होता है, देखिए, थकान, पैरों में दर्द, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, हर किसी को होता है। बॉडी टू
3: बस
0: बॉडी
3: दोस्तों के लिए
0: डिपेंड करता
3: बताता
0: है।
3: है।
0: तो अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो आप डॉक्टर से इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं।
3: जी मैम, थैंक
1: किसी और को कुछ पूछना है? नो मैम,
0: नामिका, इफ नोबडी हैज एनी क्वेश्चन, वी कैन कंक्लूड द सेशन।
1: सो मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू ऑल।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार।
1: ये वतन का राग।
0: किसी झील के ठहरे पानी में जो शांति होती है वो उनकी आंखों में थी। मुस्कुरा कर जागती एक सुबह में जो सादगी होती है वो उनके चेहरे पर थी। दूर तक फैले आसमान में जो धीरज होता है वो उनकी आत्मा में था। उनकी शालीनता अपनों को ही नहीं परायों को भी विमुग्ध कर देती थी। 5 फुट का छोटा सा कद और मात्र 39 किलो का वजन लिए चट्टान सा हौसला रखने वाला ये महान व्यक्तित्व था देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का, जिनके सामने बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी मुश्किल में पड़ जाती थीं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। मात्र 18 महीने की अल्पायु में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया। माँ राम दुलारी बच्चों के साथ अपने पिता के घर मिर्जापुर जा बसीं। अपने ननिहाल में रहते हुए बालक लाल बहादुर ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। कुछ समय के बाद उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकें। वे कई मील की दूरी नंगे पांव तय करके विद्यालय जाते, भीषण गर्मी, बरसात और ठंड में भी। कुछ बड़े होने के साथ ही आजादी के लिए देश में हो रहे संघर्ष में उनकी रुचि बढ़ने लगी। भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से वे अत्यंत प्रभावित हुए। शास्त्री जी जब केवल 11 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने देश के लिए कुछ करने का मन बना लिया था। वे गांधी जी से केवल प्रभावित ही नहीं थे बल्कि वे उनके आदर्शों का पूरी तरह से अनुसरण भी करते थे। सादा जीवन उच्च विचार उन्हीं आदर्शों में से एक है जो शास्त्री जी के संपूर्ण जीवन में झलकता है। सन 1927 में उनकी शादी ललिता देवी से हुई तो दहेज के नाम पर एक चरखा और हाथ से बुना हुआ कुछ मीटर कपड़ा ही घर आया। खादी से उनका प्रेम आजीवन बना रहा। एक बार घर पर उनकी अलमारी से फटे पुराने कुर्ते निकाल दिए गए। उन्होंने वो कुर्ते वापस मांगे और कहा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये कपड़े काम आ जाएंगे। ऊपर से कोट पहन लूंगा तो ये फटे हैं, ये दिखाई नहीं देगा। उन कुर्तों को सहेजते हुए वो बोले, ये खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बीनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए।

गांधी जी के विचारों का उन पर बहुत गहरा असर था। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने अपने नाम के साथ चला आ रहा जाति सूचक शब्द हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर की शिक्षा समाप्त करने के बाद वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1921 के असहयोग आंदोलन के समय उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि वो उसमें शामिल हों, लेकिन शास्त्री जी अपना मन बना चुके थे और उनके संकल्प चट्टान की तरह दृढ़ हुआ करते थे। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए जब दांडी यात्रा की तो इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी। लाल बहादुर शास्त्री भी विह्वल ऊर्जा के साथ इस संघर्ष में शामिल हुए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया। 1942 के दिन थे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था। देश के बड़े बड़े नेता जेलों में थे। शास्त्री जी आंदोलन को चलाने के उद्देश्य से अज्ञात स्थान पर जा बैठे थे। सरकार शास्त्री जी की गिरफ्तारी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, पर शास्त्री जी का कहीं भी पता नहीं लग रहा था। आखिर एक दिन अचानक इलाहाबाद में ये खबर बिजली की तरह फैल गई कि शास्त्री जी चौक की सार्वजनिक सभा में उपस्थित होंगे और आंदोलन की रूपरेखा पर प्रकाश डालेंगे। पुलिस ने चारों ओर से नाकेबंदी कर दी। सरकार का प्रयास था कि वो सभा में उपस्थित होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिए जाएं, पर शास्त्री जी को सभा से पूर्व बंदी बनाना सरल काम नहीं था। शास्त्री जी सभा में पहुंचे और ओजस्वी शब्दों में गांधी जी और नेहरू जी का संदेश सुनाने लगे। कुछ ही क्षण बीते थे कि वे गिरफ्तार कर लिए गए। इनकलाब जिंदाबाद और शास्त्री जी जिंदाबाद के नारों से आकाश गूंज उठा। करो या मरो, गांधी जी के इस नारे को शास्त्री जी ने बड़ी चतुराई से मरो नहीं मारो में बदलकर अप्रत्याशित रूप से क्रांति की दावानल को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया था।

स्वाधीनता संघर्ष के दौरान शास्त्री जी ने कुल 9 वर्ष का समय ब्रिटिश जेलों में गुजारा। इस दौरान लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जो गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक सहायता देती थी। सोसाइटी की ओर से 50 रूपये प्रतिमाह शास्त्री जी को भी मिलते थे। एक बार जेल से शास्त्री जी ने पत्र लिखकर पत्नी से पूछा कि 50 रूपये समय से तो मिल रहे हैं ना, और क्या ये पर्याप्त हैं? ललिता शास्त्री का जवाब आया कि घर का खर्च तो 40 रूपये में ही चल जाता है, वो 10 रूपये बचा लेती हैं। शास्त्री जी ने तुरंत सोसाइटी को पत्र लिखकर कहा कि उनकी आर्थिक सहायता घटाकर 40 रूपये कर दी जाए, 10 रूपये किसी और जरूरतमंद को दे दिए जाएं। उच्च आदर्शों से भरा उनका ये आचरण आजीवन बना रहा। शास्त्री जी ने न केवल आजादी के पहले बल्कि आजादी के बाद भी भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया। स्वाधीनता के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री रहते हुए उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति की। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ करवाया। 9 जून सन 1964 को उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो शास्त्री जी का लगभग 18 महीने का कार्यकाल बेहद कठिन किंतु अद्वितीय रहा। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश पर आक्रमण करने के फिराक में थे। देश में जब खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ तो अमेरिका ने प्रतिमाह अन्नदान देने की पेशकश की। शास्त्री जी तिलमिला उठे। उन्होंने देश का आह्वान किया कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ और सप्ताह में एक शाम उपवास करो। हमें जीना है तो हम इज्जत से जिएंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। और देश उनके साथ खड़ा हो गया। सन 1965 में अचानक पड़ोसी देश ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। इस युद्ध में शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। सबका मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। पड़ोसी देश को करारी शिकस्त मिली। देश ने याद किया 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिए गए उनके पहले भाषण को, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत सम्मान और गौरव के साथ किसी भी देश से बातचीत द्वारा अपने विवाद हल करने को उद्यत है, लेकिन अगर कोई धमकी या तलवार के बल पर हमें झुकाना चाहेगा तो हम अपनी सारी शक्ति से उसका मुकाबला करेंगे। और ये उन्होंने कर दिखाया। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर दस्तखत करने के बाद 11 जनवरी सन 1966 की रात में ही उनका असामयिक निधन हो गया। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने देश की सेवा की। गांधी जी को दिया वचन था, नहीं किया धन का संचय, अपरिग्रह का पालन करके किया विजित मन का संशय, शक्ति और साधन का सम्यक जनहित में करते उपयोग, आजीवन अनिकेत रहे पर सिद्धांतों से न था वियोग। नमन उनके योगदान को, नमन उनके सीधे सादे सरल पर विराट व्यक्तित्व को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने और स्वराज संस्थान संचालनालय के लिए इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं

आप सब जानते ही हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, मैक्सिमम मतलब इतना बड़ा एम्प्लॉयर है कि इतने एम्प्लॉयर्स हैं रेलवेज के अंदर कि जो एक किसी कंट्री की पॉपुलेशन के इक्वलेंट है, ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है काफी बड़ा है। कोई मुझे आप में से ये बता सकता है कि इंडिया में पहली बार ट्रेन कब चली थी? एनी वन आउट ऑफ यू? हाँ, 1853 में ट्रेन चली थी पहली बार, ठीक है। और आप देखेंगे कि इंडिया की डेवलपमेंट में रेलवे का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आप देखेंगे, आप किसी भी कॉरिडोर पे चले जाइए, बहुत ही लो प्राइस में ट्रेन्स जो है वो आपको एक तरह से ट्रैवलिंग के लिए या जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इतने स्टेशन हैं, हर स्टेशन पे स्टाफ है, तो मतलब रेलवे के अंदर बहुत ज्यादा एम्प्लॉय लोग किए जाते हैं, तो एक रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। तो आज के सेशन में हम यही समझेंगे कि रेलवे जो एम्प्लॉयर है सबसे बड़ा, तो उसमें किस किस टाइप्स की जॉब्स होती हैं और उन जॉब्स के लिए कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं, किस लेवल पे होते हैं, तो वो हम आज के सारे सेशन में डिस्कस करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक थोड़ा बहुत ये बताऊं भी क्या क्या चीजें हैं रेलवे के अंदर। अभी तो हम रेलवेज मतलब हम इंडियन रेलवेज जानते हैं। रेलवेज के अंदर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, मतलब चारों ग्रुप्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जॉब्स प्रोवाइड करता है। आपको ध्यान हो, मैंने आईएएस की क्लास जब लिया था यूपीएससी का, कैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन किया जाए, तो उसमें आपको मैंने इंडियन रेलवे सर्विसेज के बारे में बताया था। तो रेलवे में आप देखेंगे आईआरटीएस, आईआरपीएस, आईआरएएस, ईएससी, ये सारी उनकी फुल फॉर्म्स हैं। तो ये मतलब इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग। रेलवे पुलिस फोर्स है, रेलवे स्टोर सर्विसेज है, रेलवे मेडिकल सर्विसेज है, रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स है, मतलब इतने डिपार्टमेंट्स है रेलवे के अंदर, तभी ये एक तरह से हम ये कहते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, ठीक है। तो ये हमारा आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव रहेगा, भी कैसे आप इसमें जा पाए, कैसे आप इसमें जॉब्स ले पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी रेलवेज की ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाती है, मतलब कोई अलग से आपको प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है। आप चाहे एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो रेलवे में भी एग्जाम पैटर्न जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है। बट रेलवे में दो टाइप की इंपॉर्टेंट जो डिवीजन किया जाता है, एक रहता है टेक्निकल जॉब्स के लिए और सेकंड रहता है नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए। जो टेक्निकल जॉब्स हैं, उन टेक्निकल जॉब्स में जनरली जो क्वालिफिकेशंस बच्चे की मांगी जाती हैं, उसमें इंजीनियरिंग या उसने डिप्लोमा किया होना चाहिए। और वही अगर हम नॉन टेक्निकल जॉब्स की बात करेंगे, तो नॉन टेक्निकल जॉब्स में 12th या आपके ग्रेजुएशन के बेसिस पर वैकेंसीज निकलती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कैडर में, किस ग्रुप में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि जो बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो रेलवेज में जब भी वैकेंसीज निकले तो आप उनको जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि रेलवेज में जोन वाइज भी वैकेंसीज आती है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, देखिए आप जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, ऐसी बॉम्बे का मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, जयपुर का है, तो जहां जहां मेट्रो जा रही है तो वो भी एक तरह से रेल कॉरपोरेशन है, तो उनमें भी काफी तरह की वैकेंसीज आती है। तो मतलब अगर आपका रेलवेज में जाने का इंटरेस्ट है तो आप इन सभी वैकेंसीज को परस्यू कर सकते हैं, आपको ये सारा ध्यान रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि इम्पोर्टेंस क्या इन चीजों की, भी हम जैसे बात कर रहे हैं कि रेलवेज में जॉब्स काफी ज्यादा होती हैं, तो ये जो गवर्नमेंट जॉब्स रेलवेज की होती हैं उसका फायदा क्या है, थोड़ा मैं इस चीज पे बात करूंगा आज की क्लास में, फिर हम अलग अलग टाइप की वैकेंसीज पे आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज होती है ना कि जब हम कभी भी गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो आपकी रहती है जॉब सिक्योरिटी और एज वेल एज जॉब सेटिस्फेक्शन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। आप देखिए, आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो जॉब सिक्योरिटी का एक कंसर्न रहता है। वहीं अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो जॉब सिक्योरिटी इज ऑलवेज देयर। इसके साथ साथ काफी फायदे होते हैं, मैं एक एक करके सबकी बात करूंगा कि जॉब सेटिस्फेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फिक्स टाइम ओवर है आपका, ठीक है। दूसरा, जेन्युइन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन। देखिए, आज के टाइम में अगर आपके मन में ये है कि मुझे आई वॉन्ट टू सर्व द नेशन, आई वॉन्ट टू सर्व द कंट्री,
तो आप किसी भी जगह जहां भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी डिपार्ट

0: में किसी भी जॉब पे, तो अगर आप अपना काम पूरा कर दें तो ये एक तरह से दैट इज सर्विस टू नेशन है। इसके साथ साथ रेलवेज बहुत बड़ा सिस्टम है इंडिया में, रेलवेज है 17 जोन्स है, तो उसमें डिविजन्स है, फिर तो आपको मौका मिलता है हर जगह जाके काम करने का, ट्रांसफरेबल जॉब रहती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो सैलरी है वो आपकी कलीग के साथ सेम रहती है, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसे ज्यादा सैलरी मिल जाएगी, जिस कैडर में आपने ज्वाइन किया है उसी कैडर में आपकी सैलरीज मिलती है और एक सेम लेवल पे इंक्रीज होती है। तो ये मतलब बहुत ज्यादा चीजें हैं जो रेलवेज में आपको हेल्प करती हैं, आपको काफी नंबर ऑफ फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। तो मतलब एक तरह से फिर इंश्योरेंस है आपका, मेडिकल प्रॉब्लम में दे हैव द हॉस्पिटल्स, तो एक काफी ज्यादा चीजें हैं जो आपको असिस्ट करती हैं, एक तरह से अट्रैक्ट करती हैं फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स जो आप रेलवेज में ट्राई कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले जो बात करूंगा बेटे, जो आजकल आप में से काफी बच्चे तैयारी भी कर रहे होंगे एनटीपीसी के, ठीक है, 2019 के अंदर रेलवेज ने एनटीपीसी, जिसका नाम होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, अब ये एनटीपीसी आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन नहीं है, ये आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज है। मतलब जैसे रेलवेज में मैंने आपको पहले ही बताया कि जॉब्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक आपका टेक्निकल जॉब्स है और सेकंड नॉन टेक्निकल जॉब्स है। तो ये रेलवेज में 2019 में वैकेंसीज आई थी जिसमें 37,000 के अप्रोक्सीमेट जॉब्स आई थी, अभी एग्जाम भी है उसका, दैट इट इज नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जिसको हम कहते हैं। तो इसमें नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं, तो नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं तो उसमें क्या है कि आपकी कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो 12th के बेसिस पर है उसके अंदर, और कुछ जॉब्स आपकी ऐसी है जो ग्रेजुएशन के बेसिस पर है, और कुछ जॉब्स में डिप्लोमा मांगा गया है, तो उसमें बेसिकली ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, सीनियर टाइम कीपर, तो ये काफी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं जो एनटीपीसी के अंदर है, और एनटीपीसी का आगे एग्जाम भी है। और आप देखेंगे कि ये जो 35,000 वैकेंसीज थी, इन 35,000 वैकेंसीज के लिए 2 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया हुआ, मतलब आप देखिए, मतलब 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने इन जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी, अब इसमें एग्जाम है, अब एग्जाम जो है, हाँ अभी ये बता रहे हैं कि नवंबर में एग्जाम होगा, तो वो स्टेज वाइज है, उसमें 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज जो है आपकी, वो आपकी है एनटीपीसी पैटर्न जो है, फर्स्ट स्टेज है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक तो आपका ये, और जिसको हम प्रिलिमिनरी कहेंगे, प्रिलिम स्टेज है। सेकेंड स्टेज है मेंस, ठीक है, और फिर उसके बाद टाइपिंग और स्किल टेस्ट है, कुछ जॉब्स में टाइपिंग भी मांगा हुआ है, तो उसमें एक स्किल टेस्ट या टाइपिंग जॉब, जैसे आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसमें क्या है, जैसे इसकी सेकेंड स्टेज है मेंस की, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट है कुछ पर्टिकुलर जॉब्स में, जैसे आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन है। अब हमारे लिए सबसे पहला सवाल ये है कि जो प्रिलिमिनरी का एग्जाम है उसमें क्या आएगा, क्या उसका पेपर पैटर्न है, वो हम समझेंगे। कंप्यूटर बेस्ड है, ये आप मान के चलिए, मतलब आप ये कह सकते हैं कि COVID-19 का ये इफेक्ट मान लो, या पहले भी काफी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हो चुके थे, अब COVID-19 के बाद में तो आप देखिए, मान के चलिएगा कि कोई भी एग्जाम आप दें, चाहे आप किसी भी लेवल का दें, वो ऑलमोस्ट कंप्यूटर बेस्ड ही आपका रहेगा। अब देखो, जैसे ये एग्जाम पैटर्न क्या है, जो RRB NTPC है स्टेज वन और स्टेज टू का, पहले हम स्टेज वन की बात करेंगे। स्टेज वन में आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, और वो 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स है, 30 क्वेश्चंस है 30 मार्क्स के, और फिर इंटेलिजेंस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, ठीक है। 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा और 100 क्वेश्चंस आपने करने हैं, 100 मार्क्स के आप करेंगे। मैथमेटिक्स जो है वो मैथमेटिक्स है जो जनरल आप 10th स्टैंडर्ड तक आप पढ़ते हैं, ठीक है, और 10th स्टैंडर्ड तक के जो टॉपिक्स हैं जिसमें नंबर सिस्टम है, आपका मतलब अर्थमेटिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे बेसिक टॉपिक्स हैं, मैं उन पे बात करूंगा। ऐसे ही जनरल इंटेलिजेंस के टॉपिक्स हैं, ऐसे ही आपके जनरल अवेयरनेस, इसमें वेटेज ज्यादा है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके, जिसको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको मतलब ये सारी चीजें इसमें रहेंगी, राइट। अब देखो इसकी तैयारी आप कैसे करें, उसमें मैं आपको बताता हूं। जैसे जो बच्चे रीड इंडिया के ई स्टडी प्रोग्राम के साथ में कनेक्टेड हैं, तो आप देखेंगे बेटे आपको अगर आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, मेरे हिसाब से जितने बच्चे यहां पर हैं, जितने भी लोग हैं, सबको जरूर हमारे प्रोग्राम के साथ में कनेक्टेड है। तो वहां पर हमने दो कैटेगरी बना रखी है गवर्नमेंट जॉब्स की, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। ठीक है, अब रेलवे का जो पेपर है वो हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा, वही क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में रहेगा। तो आपके पास में दो कैटेगरीज हैं जिसमें हमने वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, अब अगर आप उसको यूज करते हैं, चैप्टर वाइज यूज करते हैं, क्योंकि उसमें तो हमने एसएससी बैंकिंग के हिसाब से सारे चैप्टर कवर किए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर्स, कुछ बेसिक चैप्टर्स आप एक एक करके वहां से अगर स्टडी करेंगे तो आपको काफी ज्यादा एडवांटेज होगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर ऐसा टाइम तो है नहीं कि आप कोचिंग ज्वाइन करिए कहीं जाकर। ठीक है, तो अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, लैपटॉप या फोन से आप यूज करते हैं, तो आपको सारे वीडियोस वहां से मिल जाएंगे, और मार्केट से आप कोई भी एनटीपीसी की बुक परचेज कर सकते हैं मार्केट से, और चैप्टर वाइज आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम अपनी ओर से जैसे आपको हेल्प कर सकते हैं इसके अंदर तैयारी करने के अंदर। अब देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, क्या मैथमेटिक्स में आपसे पूछा जाएगा, तो मैथमेटिक्स के अंदर हमारे जनरल टॉपिक्स हैं, जिसमें नंबर सिस्टम है, डेसिमल, फ्रैक्शन, बहुत बेसिक टॉपिक जो आप सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, एलिमेंट्री अल्जबरा है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, स्टेटिस्टिक्स है। तो आप देखेंगे ये सभी चैप्टर्स हमने कवर किए हुए हैं हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो जैसे जैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे वैसे आप इसे कर सकते हैं, और जल्दी हम उसमें बाइलिंगुअल वाला भी ऐड करने वाले हैं। मैं उसमें हम मतलब एक टाइप से बाइलिंगुअल वाला कोर्स भी ऐड करने वाले हैं। बाइलिंगुअल मतलब कि आपको समझा हमने हिंदी में रखा है, बट जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो हम इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं, तो जल्दी हम उसे भी ऐड करने वाले हैं, काम चल रहा है, तो जल्दी उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए मैथ्स का इसमें सिलेबस है। फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है। देखिए रेलवे में रीजनिंग की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, स्पीड आपको मेंटेन करनी रहती है। एडवांस मैथ आप कहिए कि देखो एडवांस मैथ में ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, अल्जबरा है, स्टेटिस्टिक्स है, ये कुछ पोर्शंस हैं। ज्यादा रेलवे का जो ज्यादा फोकस जनरली जो रहता है वो अर्थमेटिक पे रहता है, बाकी अभी कुछ ऐसा सेग्रीगेट नहीं किया इन्होंने, क्योंकि कई सालों बाद पेपर हो रहा है। मतलब जैसे अगर हम रेलवे की बात करें तो इतनी ज्यादा वैकेंसीज रेलवे कई सालों के बाद में निकाल रहा है, पहली चीज। और दूसरा क्या है कि पहले जो पेपर हुआ करते थे वो जोन वाइज होते थे, जोन वाइज में भी उसमें आपका पेपर पेंसिल बेस्ड रहता था, तो अब पहली बार ये ऑनलाइन होगा। और देखिए कई सारे वो बनेंगे, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कई स्लॉट्स में जाके पेपर होगा। तो ये है कि आप तैयारी करिए, अल्जेब्रा ज्योमेट्री पढ़ना चाहिए, एलिमेंट्री भी पढ़ लेंगे वो भी काम चल जाएगा। मतलब इसमें बहुत इनडेप्थ, जैसे हम एसएससी मेंस के लिए तैयारी करते हैं, काफी ज्यादा उसमें टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं। तो इसमें ये है कि अगर आप एलिमेंट्री अलजेब्रा, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की सॉल्विंग है, तो ये भी अगर आप कर लेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा और आप उससे अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी रीजनिंग का सेक्शन जो है आप देखेंगे बहुत ही जनरल से टॉपिक्स है रीजनिंग के अंदर, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, एनालिटिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग, कुछ ग्राफ, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें हैं। और आप देखेंगे अगर आप थोड़ा सा हमारा ई स्टडी प्रोग्राम यूज करें, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने उसमें सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। मतलब इसमें आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जो उसमें हमने वहां पर कवर नहीं किया हुआ है। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं भी मिलता है तो आप अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर के थ्रू हमारे पास अगर कोई मैसेज आता है कि सर ये टॉपिक उस पर नहीं अवेलेबल है, तो हम उस पर जल्दी ही वीडियो बना के उसे अपडेट कर देते हैं। अभी तक वैसे ऐसा कोई मैसेज आया नहीं है, मतलब ऐसी कोई हमारे पास कोई ऐसा फीडबैक नहीं आया है कि सर ये टॉपिक ऐड करा दीजिए। बाकी हम तो चाहेंगे आपसे कि कमलेश जी के पास में ऐसा पहुंचे और फिर हम उसे ऐड करें, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका 40 मार्क्स का पेपर जो है वो जनरल अवेयरनेस का आएगा, इसमें करंट अफेयर्स पिछले 6 से 8 महीने का, ठीक है, उसके लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन कवर कर सकते हैं, फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स, ठीक है, मतलब हम तो ये कहेंगे अगर आप 10th लेवल तक का एनसीईआरटी पढ़ पाए तो उससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी आपको समझाया था जब आपको मैंने स्टार्टिंग में गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया था, अभी कैसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, तो वहां पर आपको मैंने इस बात के बारे में बताया था कि 10th क्लास तक का जो एनसीईआरटीज है, चाहे आपका मैथमेटिक्स का है, चाहे आपका एसएस का है या आपका साइंस का है, तो ये 3 सब्जेक्ट का अगर आप एनसीईआरटी भी कर लेंगे तो जीएस का पेपर आपका बहुत इजीली कवर हो जाता है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी, यूएन, ये सारी चीजें 10th क्लास तक आपको मिल जाती है। या अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप कोई भी जीके का बुक खरीद सकते हैं या रीड की लाइब्रेरीज में आप देखते हैं, अगर आप जाते हो, आजकल तो चलो कई सेंटर में शायद नहीं ओपन होंगी पर पहले जैसे आप जाते थे तो सेंटर्स पे लाइब्रेरी के अंदर जीके की काफी बुक्स अवेलेबल है, तो आप उन बुक्स को भी यूज कर सकते हैं। या आप उपकार पब्लिकेशन की या अरिहंत पब्लिकेशन की कोई भी जीके की बुक आप खरीदिए, उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत करने वाली बात है, थोड़ा टाइम लगाने वाली बात है, अगर आप थोड़ा टाइम लगा लेंगे तो आप ये प्रिपरेशन इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनटीपीसी का प्री का पेपर ऐसा होगा, तो प्री के पेपर में आपको जैसे मैंने बताया कि 3 ही सेक्शन रहेंगे, मैथ्स 30 मार्क्स का, फिर आपका रीजनिंग का 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चंस, और ऐसे ही जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस, तो ये 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा एनटीपीसी का प्री का। फिर जिन बच्चों का प्रिलिमिनरी क्लियर हो जाएगा फिर वो मेंस का पेपर देंगे। अब मेंस का जो पेपर है ऑल दो सब्जेक्ट मेंस में भी सेम है, वही आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और थर्ड इज जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब मेंस में क्या होगा, मेंस में लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्वेश्चंस का, या क्वांटिटी ज्यादा हो गई। जैसे प्री में आपको 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में करने थे और मेंस में वही आपको 120 क्वेश्चंस जो है 90 मिनट्स में करने हैं, तो बेटर है कि अगर आपको जॉब चाहिए चाहिए तो आप प्री और मेंस की तैयारी एक ही लेवल पे होती है, सेम तैयारी आपकी, सेम सब्जेक्ट है आपके प्री और मेंस के अंदर, ठीक है। तो आप उन्हीं को ही डेप्थली पढ़िए ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी हो जाए, ठीक है। तो ये आपका सीबीटी 2 है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया जैसे स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट का मतलब क्या है कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब आपकी एनटीपीसी के अंदर है, ठीक है। और मतलब आज के टाइम में आप देखिए कि जिन बच्चों ने आप में से एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 4 से 5 महीनों में जो बच्चे पहले तैयारी कर भी रहे थे तो एक तरह से उनकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। जैसे पहले तो क्या था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे थे, क्लासरूम चलती रहती थी, तो अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ दैट काफी टाइम से बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे एक ही लेवल पे है, ठीक है। जब आप एक ही लेवल पे है तो आप अगर आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें और होपफुली नवंबर में एग्जाम है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, तो अभी वो भी एक तरह से एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि रीजन क्या है कि इतने ज्यादा बच्चों का एग्जाम कराना सिंपल टास्क नहीं होता। आप देखिए 1.5 से 2 करोड़ बच्चों का एनटीपीसी का पेपर होगा तो इट्स नॉट सिंपल थिंग, तो उसमें आपको हो सकता है आगे भी एक्सटेंड हो जाए, बट आप अपनी तैयारी अभी से करना स्टार्ट करिए। और उसका मेथड बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपके बेसिक टॉपिक्स हैं, ये वही टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। आप देखिए एक बहुत बड़ी चीज क्या है कि इंग्लिश इसमें नहीं है, आप सबको पता ही है कि इंग्लिश में तो हम वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो इंग्लिश सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो एनटीपीसी में इंग्लिश कहीं भी नहीं है, तो उसमें इट्स बेटर कि आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इन तीनों सेक्शंस को टारगेट करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। और जिन बच्चों ने टाइपिंग टेस्ट की कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो बेटे अपनी टाइप टेस्ट की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें, क्योंकि काफी टाइम, कई बार ऐसा होता है कि टाइप टेस्ट जब आपका सारी स्टेजेस क्वालिफाई हो जाती हैं तो टाइप टेस्ट में हम आके अटक जाते हैं, तो वो भी एक रेगुलर प्रैक्टिस का काम होता है, और टाइपिंग तो आपको हेल्प ही करती है, तो वो आप उसे कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद में अगला पॉइंट जो हमारे पास है, ये रेलवेज में नॉन टेक्निकल जॉब्स भी आती हैं। नॉन टेक्निकल जॉब मतलब जैसे SCRA है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का रहता है, या इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर जिसको हम IRSME कहते हैं, ठीक है। तो जैसे रेलवे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, मतलब उसमें आप देखेंगे कि इंजन बनने से लेकर ट्रेन की फंक्शनिंग तक, या आप देखें कई बार इंजन में प्रॉब्लम आती है, ट्रेन के चलने में प्रॉब्लम आती है, कोच फैक्ट्रीज होती हैं, तो काफी बड़ा एरिया है। तो उसमें SCRA एक बहुत बड़ा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस की वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। SCRA जो होता है उसमें 12th क्लास में साइंस मांगी जाती है। तो मैं आपको एक चीज यहां पर ऐड कर दूं, जो बच्चे रेलवेज के टेक्निकल जॉब्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, टेक्निकल जॉब्स में जाने के लिए उनके लिए 12th में नॉन मेडिकल होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और या उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है जिसमें मैकेनिकल का डिप्लोमा की काफी ज्यादा वैकेंसी रहती है, इलेक्ट्रिकल की काफी वैकेंसी रहती है। आप देखेंगे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स अलग चीज है और इलेक्ट्रिकल अलग चीज है, तो जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है तो उनकी रेलवेज में काफी वैकेंसीज निकलती है, ठीक है। बट उसके लिए यही है कि आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि आजकल वैकेंसीज काफी कम होती हैं और एप्लीकेंट्स काफी ज्यादा होते हैं, तो वो तभी आप उस कंपटीशन को अगर आप क्वालिफाई कर पाएंगे तभी आपका जॉब लग पाता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेलवेज में काफी ज्यादा स्कोप है। रीजन क्या है कि जॉब्स भी काफी निकलती हैं और उसके बाद सैलरीज भी आपको काफी मिलती है इसके अंदर, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है या इसके अलावा डिप्लोमाज किए हुए हैं। तो आप थोड़ा सा रेलवेज की साइट पे अगर आप ध्यान रखें, जैसे जैसे वैकेंसीज निकलती हैं तो आप उसे अप्लाई करिए, चाहे वो किसी भी जोन में निकले, क्योंकि रेलवे में जोन के हिसाब से वैकेंसीज आती हैं, 17 जोन्स हैं, ठीक है। तो उसमें कई बार जैसे हम रहते हैं नॉर्थ जोन के अंदर, तो जैसे साउथ के जो जोन्स हैं उनका हमें पता ही नहीं चलता वैकेंसीज कब निकली। तो थोड़ा सा अगर आप बहुत सीरियस हैं रेलवे की तरफ, तो आपको हर तरह के जोन में किस टाइप की वैकेंसीज है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना रहता है। ऐसे ही रेलवे में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकलती हैं, जिसको हम RRB JEE कहते हैं। जो RRB है वो बेसिकली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। अगर हम RRB की बात करें तो RRB जो है इस प्राइमली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। तो रेलवेज में जो वैकेंसीज निकलती है वो RRB कंडक्ट कराता है। तो ये मैंने कुछ वैकेंसीज डाली है, ये 2019 में निकली थी, 13,000 के अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज आई थी, जिसमें जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, ठीक है, तो मतलब जिसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी हुई थी, BTech, BE, ठीक है, या इंजीनियरिंग में डिग्री मांगी हुई थी जो कंसर्न फील्ड से है, तो ये सारा आपसे, मतलब ये सारी चीजें आपको चाहिए, मतलब वैकेंसीज आती रहती हैं, ठीक है। तो कई बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने BTech किया होता है और उनका मन होता है कि वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें, तो उस केस में वो रेलवे के बारे में सोच सकते हैं। बट थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि हम इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाते, तो इसलिए कई बार काफी जॉब्स हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो आप रेलवेज को टारगेट कर सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो RRB एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है आपकी जॉब्स के लिए। ऐसे ही रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी भी आती है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक हम जिन वैकेंसीज की बात कर रहे हैं वो वैकेंसी जो है हमारी, वो ग्रुप ए, वो हमारी जो ग्रुप बी और सी की वैकेंसीज है। ऐसे ही रेलवे में आपकी ग्रुप डी की वैकेंसीज भी आती है। जो ग्रुप डी से हमारा मतलब होता है कि असिस्टेंट वर्कशॉप, ठीक है, या एक तरह से आपके असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, लोको शेड होते हैं, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, तो ऐसी आपके जैसे ट्रैक मशीन जो होती है, जैसे ट्रैक होती है, ट्रैक के ऊपर काम लोग करते हैं, तो ग्रुप डी की वैकेंसीज भी आती हैं रेलवेज में। हाँ, इसका एग्जाम भी अभी नहीं हुआ, आगे होगा। ये 2019 में फॉर्म निकला था और 1 लाख के आसपास वैकेंसीज आई थी, 1,03,769 वैकेंसीज आई थी, ठीक है। तो इसका एग्जाम भी आगे होगा, अभी कुछ इसके बारे में डिटेल्स नहीं आई है। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो है वो आपकी 10th क्लास होती है, या अगर आपने ITI किया हुआ है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहां अगर आपने किया हुआ है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सारा इसी बात के ऊपर है कि प्रिपरेशन करते रहिए आपने, ठीक है। बाकी इट डिपेंड्स भी आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, किस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, इसका भी एग्जाम होगा। मतलब जो आरआरबी आपका ग्रुप डी है, ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा, ठीक है। और जो ग्रुप डी का एग्जाम, अभी कुछ उसके बारे में डेट्स नहीं आई है। बाकी ये एक बात और है कि रेलवे की जो वैकेंसीज आती हैं वो आप मतलब एक तरह से रेगुलर वैकेंसीज नहीं है, जैसे हम देखते हैं कि एसएससी है, चाहे आपका बैंकिंग है, तो उसमें रेगुलर वैकेंसी है, अभी हर साल के बाद फॉर्म निकलेगा। रेलवेज में आती हैं तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आती है, लाखों वैकेंसीज आती हैं, तो उसमें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना उसमें स्थान बना सकते हैं उन वैकेंसीज के अंदर, ठीक है। और मतलब पेपर में जो आएगा वो सेम है, मैथमेटिक्स आएगा आपका 10th लेवल तक का, रीजनिंग आपकी आएगी, जनरल इंटेलिजेंस आएगी, और उसके साथ साथ आपका जीके आएगा। तो ये तीन सेक्शंस में आप अपना रेगुलर कमांड बनाते चलिए, ताकि आप फ्यूचर में इनकी प्रिपरेशन कर सके और अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सके। देखिए रेलवे में ग्रुप ए की पोस्ट में इंटरव्यू होता है, देखो ग्रुप सी और जो डी पे तो कोई इंटरव्यू नहीं होता। आप देखिए जो एनटीपीसी में जितने भी वैकेंसीज निकली है उसमें कहीं भी इंटरव्यू की बात नहीं की गई है, स्किल टेस्ट की बात की है। मतलब मैंने आपको जैसे अभी बताया कि एनटीपीसी में आपके टाइपिंग टेस्ट का इशू है, जैसे कुछ वैकेंसीज के ऊपर टाइपिंग टेस्ट है। रेलवेज में जो ग्रुप ए की वैकेंसी होती है, जो आपकी आईएएस के थ्रू आती है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, वो मैं बताऊंगा एंड में आके, तो उसमें इंटरव्यू आपका होता है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। अदरवाइज ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में रेलवेज के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं है। पहले इंटरव्यू हुआ करते थे, एक टाइम ऐसा भी था कि जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हुआ करती थी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, बट आज के टाइम में डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होता है। आज के टाइम में आपका टेस्ट के बाद फिर आपका स्किल टेस्ट रहता है, और जो ग्रुप ए की वैकेंसीज है उनमें आपका इंटरव्यू रहता है। इसके बाद आपका मेट्रो रेलवे रिक्रूटमेंट है, चाहे वो जयपुर में है, मैंने आप बताया, चाहे आपका दिल्ली में है, दिल्ली मेट्रो है। कुलदीप तंवर दसवीं कैसे पास करें, इसका तो हमारे पास कोई सलूशन नहीं है, ये तो पढ़ना पड़ेगा तभी पास हो पाएगा। हमने तो अपनी ई स्टडी प्रोग्राम के थ्रू वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, उसमें मैथमेटिक्स के तो है ही सारे, तो पढ़ के ही पास होती है। बाकी आजकल तो 10th पास करना बहुत ही आसान है, आप बिना किसी समस्या के पास कर सकते हैं, सरकारी पास कर देती है मतलब ज्यादातर तो। हाँ, हम बात कर रहे थे बेटे जो मेट्रो रेलवे रिक्रूटमेंट है, जितने भी जहां जहां पर मेट्रो बनती जा रही है सभी जगह पे मेट्रो की रिक्रूटमेंट होती है, और उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल जॉब्स आती हैं। तो अगर आपने रेलवे की प्रिपरेशन कर रखी है तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ कुछ मेट्रो की जॉब्स जो पिछले साल दो साल में निकली हैं वो मैं शेयर कर रहा हूं, ये बताने के लिए कि ऐसी ऐसी जॉब्स आती हैं। जयपुर मेट्रो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग से है, मतलब हर जहां मेट्रो बन रही है उनका अलग से रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ठीक है, और उस रिक्रूटमेंट बोर्ड की वो अपनी वैकेंसीज निकालते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट है, ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स कोटे की भी काफी वैकेंसीज होती हैं। आप देखिए अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे की काफी वैकेंसीज होती हैं, चाहे ग्रुप ए में है, चाहे ग्रुप बी में है, चाहे ग्रुप सी में है, तो हर ग्रुप में मतलब स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसीज होती हैं, तो वो भी टारगेट की जा सकती हैं। और मैंने पहले आपको बताया कि जोन वाइज वैकेंसीज आती हैं, तो हमें हर जोन पे ध्यान रखना रहता है। डीएमआरसी के अंदर वैकेंसीज आई थी लास्ट ईयर, जिसमें मैनेजर, इंजीनियर, फायर इंस्पेक्टर, मतलब आपने अगर एमबीए किया हुआ है, डिप्लोमा है, सीए है, एलएलबी है, सीए है, मतलब हर तरह की जॉब्स निकलती हैं, ठीक है। तो आपको अपना कंटिन्यूएशन में रखिए तैयारी, और अगर आप प्रिपरेशन कंटिन्यूएशन में रखेंगे तो नॉन टेक्निकल जॉब्स जो आते हैं, अगर आपकी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है तो कम से कम नॉन टेक्निकल जॉब्स को तो आप टारगेट कर सकते हैं। तैयारी जो गवर्नमेंट जॉब्स की है वो सेम है। ऐसे ही ईस्ट कोस्ट रेलवे रिक्रूटमेंट है, मुंबई मेट्रो रेलवे रिक्रूटमेंट है, इसके साथ साथ आप देखेंगे आईआरसीटीसी है रेलवे का, जो कैटरिंग सर्विसेज है, तो उसमें भी अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है किसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फूड साइंस से रिलेटेड, तो उसमें भी उनकी वैकेंसीज आती है, क्वालिटी कंट्रोल में वैकेंसीज आती है, राइट। तो रेलवे इसलिए बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है इंडिया में क्योंकि रेलवे में इतनी सारी विंग्स है रेलवे की कि और उनमें अलग अलग वैकेंसीज आती है। तो ये तैयारी आपके लिए है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं लास्ट में आऊंगा कि आपको मैंने ग्रुप ए के बारे में, जैसे हम बात करते हैं, देखिए ये अभी तक मैंने आपको जितना बताया ये आपको मैंने ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में बताया, ठीक है। फिर ग्रुप ए भी होता है रेलवे में। ग्रुप ए मतलब जो हम आईएएस के थ्रू आते हैं, आपका जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में हमने एक सेशन लिया था कि यूपीएससी की कैसे प्रिपरेशन किया जाए। तो अगर आप ग्रुप ए में जाना चाहते हैं तो आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना रहता है, ठीक है, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। तो उसमें आपका पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है जिसे हम प्री का एग्जाम कहते हैं, जिसमें आपके दो पेपर होते हैं। अभी जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो कल ही एग्जाम था, मतलब ऑन संडे इट वॉज द प्री पेपर, प्री का पेपर था, कल ही पेपर था प्रिलिमिनरी का। तो उसमें आपके दो पेपर रहते हैं, पहला आपका जनरल स्टडीज का पेपर रहता है 2 आवर्स का, और सेकंड आपका सी सेट का पेपर रहता है जिसे हम एप्टीट्यूड पेपर कहते हैं। अब जनरल स्टडीज में आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स का एग्जाम रहता है 2 आवर्स का। ऐसे ही आपका सी सेट का पेपर रहता है जो एक तरह से एप्टीट्यूड पेपर है। अगर आपका प्रिलिमिनरी क्वालिफाइड होता है तो फिर आप मेंस का एग्जाम देते हैं। मेंस का पेपर सब्जेक्टिव होता है जिसमें आपके 10 पेपर्स होते हैं टोटल। कंपल्सरी पेपर है एक इंग्लिश का और एक इंडियन लैंग्वेज का। इसके साथ साथ 2 एसेज के पेपर होते हैं, 4 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं और 2 पेपर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है। मतलब ये भी एक तरह से पैटर्न है अगर आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो रेलवेज में हर तरह की वैकेंसीज है। ग्रुप ए कैटेगरी में वैकेंसी है, ग्रुप बी कैटेगरी में वैकेंसी है, ग्रुप सी में है और ग्रुप डी में है। तो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंगली आप उसमें वर्क कर सकते हैं, जैसा आपका लेवल है उसी हिसाब से आप उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि आप में से जितने बच्चे टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कोई किया हुआ है या उन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो वो जरूर रेलवे को टारगेट करिए। आप उसमें थोड़ा देखिए भी आपने किस स्ट्रीम में किया हुआ है और उस स्ट्रीम में रेलवे में किस किस तरह की वैकेंसीज आती हैं। तो अगर आप उनको भी टारगेट कर लेंगे तो होपफुली आपकी कहीं ना कहीं सेटलमेंट रेलवे में अच्छी हो सकती है। फिर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको पीछे बताया भी था। हो सकता है आगे आने वाले समय के अंदर रेलवे जो है, जैसे प्रिलिमिनरी का जो पेपर है, वो आगे आने वाले समय के अंदर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू कंडक्ट कराए। तो उसमें क्या है कि अभी जो आप, जैसे अभी हम एनटीपीसी में प्री का पेपर देंगे तो वो प्री का पेपर नहीं होगा आपका, तो वो आपका एनआरए का जो स्कोर है उसी के बेस पे हो जाएगा। तो अभी तो एनटीपीसी का एग्जाम होगा, बट हम बात कर रहे हैं आगे की। हाँ नहीं, जो रेलवे का एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट नहीं कराता, रेलवे का अलग से बोर्ड है, आरआरबी कहते हैं जिसे हम लोग, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवेज के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपके टेक्निकल हैं चाहे वो आपके नॉन टेक्निकल हैं, तो वो सभी एग्जाम्स जो है वो आरआरबी कंडक्ट कराता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराता है, ठीक है। और जो आपके लेवल 1 एग्जामिनेशन है जिसको हम ग्रुप ए कहते हैं, तो ग्रुप ए के जो एग्जाम्स है वो फिर आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो हो सकता है आगे आने वाले समय के अंदर जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अपना पेपर कंडक्ट कराएगी तो उसमें आपका रेलवे का जो प्रिलिमिनरी अभी जो होगा वो आगे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंड में बात सारी इतनी सी है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज का सेशन हमारा स्पेसिफिकली रेलवे का था तो हमने रेलवे से रिलेटेड जॉब्स के बारे में बात किया। हाँ, रेलवे में इतना डिफरेंस है कि इंग्लिश का पेपर अभी तक नहीं आता, अभी तक वो मैथ्स, रीजनिंग और जीके, तो 3 सेक्शंस आपके रहते हैं। इंग्लिश उसमें नहीं आता है रेलवेज के अंदर, बट जब एनआरए के थ्रू हो जाएगा तो आप मान के चलिएगा जो एनआरए का एक जनरल पैटर्न है वही पैटर्न फॉलो होगा ऑल ओवर इंडिया में, राइट। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसके अलावा रेलवे में काफी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज आती हैं, वो डिपेंड करते हैं कि उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि अगर आपका कोई लिंकेज है रेलवे के अंदर, कोई आपके पेरेंट्स या आपके कोई फैमिली में कोई लोग रेलवे में काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रेलवे काफी वैकेंसीज निकालता है, तो उनको फिर वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अभी आज के समय में तो रेलवे एक तरह से मैक्सिमम जॉब्स जो परमानेंट जॉब्स ही निकालता है, बाकी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन पे काफी बड़े सेक्शन रेलवे के ऐसे हैं जिनको धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन का एक सबसे बड़ा लॉस यही है कि वो परमानेंट वैकेंसीज नहीं आएंगी, तो दैट वुड बी अ लॉस इन रेलवे। ठीक है, तो बेटे दैट इज फ्रॉम माय साइड, ये मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया कर दिया है रेलवे में टेक्निकल नॉन टेक्निकल की अलग अलग तरह की जॉब्स का। अब आप जो भी इसमें क्वेरी पूछना चाहें कुछ भी रिलेटेड किसी भी पॉइंट के ऊपर तो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी किसी भी क्वेरी का जो रेलवे से रिलेटेड है उसका हम आंसर करेंगे। बाकी हम इससे पहले एक टाइप से जो गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर चुके हैं पूरी एक पूरे सेशन के अंदर, हमने एसएससी बैंकिंग का कंप्लीट बात किया था और उससे पहले हम एक बार आईएएस की बात भी कर चुके हैं, तो अब ये रेलवे एक स्पेशल सेक्टर था जिसको हमने टच नहीं किया था। रेलवे में आर्मी ट्रेन होती है उसमें भी भारतीय प्रक्रिया रेलवे करती है। हाँ मतलब हाँ क्या है कि वो रेलवे की अलग अलग डिविजन्स हैं, जैसे आरपीएफ भी होता है आप सबको पता है रेलवे पुलिस फोर्स है। अब आरपीएफ की वैकेंसीज आती हैं बट इनमें दिक्कत क्या है कि ये कई कई सालों में वैकेंसीज आती हैं, ये नॉर्मल वैकेंसीज नहीं है। देखो जैसे आप देखें भी एसआई की वैकेंसी आती है दिल्ली में, दिल्ली पुलिस की तो साल दो साल में वैकेंसीज आती है, रेलवे पुलिस फोर्स की कई कई सालों में वैकेंसीज आती है। ठीक है, जब आती है तो उसमें फिर पूरा प्रोसेस होता है उसमें। जी सर,
1: हेलो।
0: हाँ जी अजय सर।
1: हाँ दिनेश जी, मेरा एक क्वेश्चन है
0: सर। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा या मतलब माइक को पास लेके बोलेंगे। हाँ जी,
1: हाँ आ रही आवाज।
0: हाँ अब आ रही है सर। हाँ जी
1: दिनेश जी, मेरा रेलवे से बहुत ही खास नाता है इसलिए मेरा एक क्वेश्चन है।
0: जी सर,
1: एससीआरए का जो है स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का है शायद, उसमें जो मैंने थोड़ी जो मैंने पीपीटी देखा है शायद उसमें जो उसमें शायद इन लोग को भी थोड़ा सा बताना है कि एससीआरए की एग्जाम जो की बहुत टफ होती है। एक जब आप देखेंगे आईआईटी लेवल का, क्योंकि एससीआरए रेलवे कंडक्ट करवाती है वो, और ये फोर इयर्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे प्लस टू पास करके जाते हैं फर्स्ट क्लास इनका होता है वो अप्लाई करते हैं। प्लस इनका इसमें थोड़ा सा ये है कि क्राइटेरिया इनका बहुत ही डिफरेंट होता है, मतलब उनका तो जिनका रिटेन तो होता है ये जिस तरह आईटी का होता है, बट सीट सर बहुत कम होती है इसमें अवेलेबल।
0: सर एक्चुअली क्या है ना, ये स्पेशलाइज्ड हो गया ना थोड़ा सा, वो तो उसमें अब इंस्टीट्यूट के नाम है जैसे आपका बिट्स मिश्रा है वो उसमें सीट्स है, तो थोड़ा सा वो तो प्रॉब्लम रहता है सर उसमें, बट ये है कि एक मतलब बच्चे तैयारी तो करते ही है। बाकी स्कोप तो है सर, देखिए अब बहुत लोग जाते हैं। अब ये है कि अगर एससीआरए में मान लो नहीं भी गए तो फिर भी काफी रेलवे में आपकी टेक्निकल जॉब्स तो रेलवे में काफी आती हैं। आपने कहीं से डिप्लोमा डिग्री कुछ भी किया हुआ है
1: ये लोग करके निकल सकते हैं।
0: हाँ तो मतलब आपने कहीं से भी कुछ किया हुआ है तो उसके बाद रेलवे मतलब मेरे हिसाब से इंडिया में अगर हम किसी भी एक टाइप से जो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा जॉब्स रेलवे में ही आती है, इनसे ज्यादा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतनी जॉब नहीं निकाल पाता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर मैंने सर ये भी देखा सर नॉर्थ जोन में तो सर कम ही, लेकिन साउथ जोन वाले बहुत रेलवे का निकालते हैं।
0: बिल्कुल सर, साउथ देखोगे हैदराबाद साउथ जोन और आपका सर जो एक तरह से जैसे बिहार वाला एरिया जो है मतलब वो जो जोन उसमें जोन आते हैं वहां तो मतलब बहुत वैकेंसीज आती है और बहुत बच्चा तैयारी करता है, बहुत ही रेगुलर तैयारी करता है। हमारे यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे कम मिलेंगे, बट वही अगर आप बिहार साइड में चले जाएं तो बहुत बच्चा आपको ऐसा मिलेगा कि जो स्पेशली रेलवे की ही तैयारी कर रहा है।
1: वो तो है।
0: जोन वाइज भी काफी वैकेंट, मतलब ये है कि अगर रेलवे के पैटर्न पे प्रिपरेशन किया जाए थोड़ा सा इंटरेस्ट होवे किया जाए तो मतलब वैकेंसीज बहुत है। जी और किसी का कोई क्वेरी, कोई भी बच्चा आप में से एनीथिंग यू वांट टू आस्क?
1: जो लोग बैंक का प्रिपरेशन करते हैं उसे तो मिलता जुलता है रेलवे जो भी जो
0: हाँ मिलता जुलता है बिल्कुल, जो आपकी रीजनिंग आती है बैंकिंग में वही ऑलमोस्ट वही टाइप की है, मैथ्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, और जो आपका बस थोड़ा सा एक आपको जो जीके के पोर्शन में थोड़ी मेहनत करनी रहती है रेलवेज में, क्योंकि उसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस पे काफी फोकस है, मतलब साइंस का फोकस रहता है ज्यादा। हाँ बिल्कुल, रेलवे का मेडिकल डिपार्टमेंट भी होता है, उसमें भी जैसे आपको मैंने पिछले क्लास में हमने उसके बारे में बात किया था, मेडिकल के बारे में बात किया था, तो उसमें डायरेक्ट वैकेंसीज आती हैं, डॉक्टर्स की वैकेंसीज आती हैं, स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आती हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं रेलवेज के अंदर। रेलवे के अपने हॉस्पिटल्स भी हैं, डिस्पेंसरीज भी हैं, तो मतलब हर तरह की वैकेंसीज रेलवे निकालता है, तो इस तरह से टारगेट किया जा सकता है रेलवेज को। और कुछ पूछना चाहे कोई भी? स्टडी प्लान सर देखो, वैसे तो बहुत बेसिक सा है कि मतलब आप एनटीपीसी के लिए ना देखिए, कोर्स आपका डिफाइंड है, चैप्टर्स आपके फिक्स्ड हैं, आप कोई भी एक पहले स्टार्टिंग स्टेज पर अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी एक लेकर ना स्पेसिफिकली एनटीपीसी की बुक ले लें, चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन करते चलिए। चैप्टर वाइज जैसे आपने आज कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया तो आपने कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन कर लिए, ऐसी एक एक चैप्टर करके करते चलिए। बस ये है कि कोर्स कंप्लीट करने में रहिए, जैसे नवंबर में एग्जाम है अगर, तो ये हमारा टारगेट हो कि नवंबर मंथ तक हम एक बार सारा कोर्स कर पाए, क्योंकि जनरली एग्जामिनेशंस में यही होता है कि कुछ चैप्टर्स बच्चे छोड़ जाते हैं और वही उसी में से क्वेश्चन मिल जाते हैं उसे, तो वो कर नहीं पाता है। तो अकबर जी, कोई स्पेसिफिकली पोर्टल्स की बात करें, उसका सर एक क्या है कि काफी आजकल तो पोर्टल्स हैं आपके जहां पर अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। बाकी उसमें एक चीज आप ऐसा कर सकते हैं कि गूगल में अलर्ट में डाल सकते हैं कि जॉब्स डाल दिया, जॉब्स इन रेलवेज, तो उसमें क्या है कि इंडिया में कहीं भी रेलवे की कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो उसका आपको मेल आ जाता है वीकली, मतलब हर रोज आपको मेल आता रहता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपके गूगल में ऑप्शन होता है, अलर्ट का ऑप्शन होता है, तो गूगल अलर्ट पे आप अपना जॉब्स इन रेलवेज अलर्ट में डाल सकते हैं, या काफी आजकल साइट्स ऐसी हैं जो फ्री जॉब अलर्ट करती हैं, तो उसमें तो आप इजीली मतलब जॉब्स के बारे में पता किया जा सकता है।

0: आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी।
1: यस मैम, शो हो रही है।
0: हाँ जी। आज का जो हमारा सेशन है, सामुदायिक स्वास्थ्य डेटा हम कैसे लेते हैं, जब हम किसी हम जब जाते हैं, हम जब जाएंगे अभी, आपको जो मैं सेशंस दूंगी, आप जाकर बाहर बोलेंगे, जब बाहर बताएंगे, या आप सर्वे जब करने जाते हैं, हम तब हम एक डेटा लेना होता है हमें लोगों का। उस डाटा में क्या-क्या लेना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फिर हाथ धोना, क्योंकि सारी जो बीमारियां हैं वो हैंड वॉश से ही शुरू होती हैं। मतलब अगर हम हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हमारी बीमारियां बढ़ती जाएंगी। हम हैंड वॉश करेंगे तो हम बीमारियों से बच सकते हैं, अगर हम हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हम बीमारियों के चपेट में आते जाएंगे। हम मतलब बीमारियां हमें लगती जाएंगी। तो हैंड वॉश बहुत जरूरी है, और किस कैसे हैंड वॉश करना है। फिर हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन के बारे में, कि पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी साफ सफाई नहीं करते हैं तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और क्या क्या पर्सनल हाइजीन में जरूरी है, ये सब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समुदाय का जो डाटा लेते हैं, जब हम जाते हैं, जब आप लोग जाओगे, बाहर जाओगे, जब आप लोग करोगे सर्वे करोगे, तो उसमें क्या-क्या पूछोगे। सबसे पहले आप नाम पूछोगे, उसकी उम्र लोगे, लिंग पूछोगे, मतलब महिलाएं हैं या पुरुष हैं, पता, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, संपर्क कहाँ किया जाए, क्या केस हिस्ट्री है, मतलब क्या उनको कौन सी बीमारी है, क्या समस्या है, कब से ये समस्या चली आ रही है, क्या उन्होंने इस बीमारी के लिए किया है, कोई रिपोर्ट है तो उसको आप वो लगाएंगे, कोई जांच है तो आप उसको देखेंगे कि उसकी जांच में क्या है, उसकी फोटोकॉपी आप लगाएंगे अपनी डायरी में, ताकि आप जब डॉक्टर के पास जाएं तो आपके पास उस मरीज का सारा डेटा हो, कि उस मरीज को क्या-क्या बीमारी थी, क्या-क्या उसने इलाज कराया, क्या रिपोर्ट्स हैं, उसका ताजा बीपी, मतलब प्रेजेंट में बीपी क्या है, उसका शुगर कितना है, ये सब आप एक अपनी डायरी में लिखकर जाएंगे जब आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर क्या वेट है, ये भी हम देखेंगे, बच्चे की जानकारी ले रहे हैं या बच्चे को बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या टीकाकरण करा है, कौन सा लगाया है, कब लगाया है, आंगनवाड़ी, आशा दीदी और ANM के साथ संपर्क है या नहीं है, ये सब भी हम उनसे जानकारी लेंगे। ये सब जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये सब जानकारी नहीं लेते हैं, बिना इन सब जानकारी के चले जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी। हमें नहीं पता चलेगा कि उनको क्या बीमारी है, उन्होंने क्या इलाज कराया है, और इसका आगे जाकर डॉक्टर्स से जैसे संपर्क करना है तो कैसे संपर्क करना है, उनको क्या बताना है, ये सब जानकारी देनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब हाथ धोना, मतलब हैंड वॉश किसको कहते हैं, हाथ धोना क्या है, हाथ धोना जैसे हमारे हाथों की स्वच्छता, मतलब हाथों को साफ रखना, हाथ धोने को कहते हैं। हमें हमारे हाथों में बहुत सारे वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया, गंदगी चिपकी होती है, जो हमें अपनी आंखों से दिखती नहीं है, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं। जब जब ये हमारे हाथों में चिपका होता है गंदगी, तो इसको हम साबुन और पानी से धोते हैं, साफ करते हैं। और जब हम साबुन और पानी से इसको धोने के बाद, जब आप साबुन और पानी से इसको 20 सेकेंड तक धोएंगे, इसको धोने के बाद आप इसको सुखाना भी उतना ही जरूरी है। टॉवल से या टिश्यू पेपर से आप इसको सुखा सकते हैं। अगर गीले हाथों को ही आप कहीं और किसी गंदगी चीज पे लगाते हैं या कहीं और चीज को छूते हैं तो हाथ और गंदे हो जाते हैं। तो अपने हाथों को धोने का एक प्रक्रिया है, आप उसको फॉलो करें। हर चीज को छूने के बाद या तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या हाथों को जरूर धोएं। तो 20 सेकेंड तक अपने हाथों को जरूर धोना है ताकि आपके हाथ जो हैं वो साफ रहें। हमें कब कब अपने हाथ धोने चाहिए? आप सबको पता है कि आपको कब कब अपने हाथ धोने हैं। तो खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के दौरान में और बाद में अपने हाथों को जरूर धोना है। हम सबको पता है, पर हम फिर भी कहीं ना कहीं इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। हम कहीं ना कहीं इसको करते नहीं है। तो खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के दौरान और बाद में अपने हाथों को जरूर धोए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी अपने हाथों को धोना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति की अगर आप देखभाल कर रहे हैं, और चाहे वो बुजुर्ग हैं चाहे वो बच्चे हैं, आप अगर उसकी देखभाल कर रहे हैं तो पहले भी और बाद में आप अपनी हाथों को जरूर धोना चाहिए। पहले इसलिए कहते हैं कि उस व्यक्ति को आपसे कोई इन्फेक्शन ना हो, और बाद में इसलिए कहते हैं कि उस व्यक्ति की इन्फेक्शन आपको और आपके घर वालों को ना हो। अगर कोई चोट लगी है, कोई घाव है, स्पेशली जब हम ब्लड के साथ, खून के साथ अगर हम फर्स्ट एड पे दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, या बच्चों को चोट लगती है, हम डेटॉल लगाते हैं या कुछ, तो उसके बाद अपने हाथों को जरूर धोना चाहिए, क्योंकि ब्लड से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैलता है। वॉशरूम यूज करने के बाद अपने हाथों को जरूर धोना चाहिए। बच्चे हैं घर में, डायपर्स बदलते हैं, बदलने के बाद अपने हाथों को जरूर, बच्चों का खांसते छींकते वक्त अपने हम अपने हाथों, वैसे हम यही बोलेंगे कि आप अपने हाथों को आगे रखें खांसते हुए भी और छींकते हुए भी। और फिर जब आप खांसते हैं और छींकते हैं अपने हाथों पे, तो जो वायरस और बैक्टीरिया आपके हाथ में आया है क्योंकि आप बीमार हैं, तो उसको आपको धोना चाहिए, अपने हाथों को धोना चाहिए ताकि वो किसी और को, किसी चीज को छूने के बाद ना लगे। किसी जानवर, आपके घर में कोई जानवर है, पशु है, कोई पालतू जानवर की अगर आप सेवा कर रहे हैं घर में, तो जब आप उसको देखते हैं तो उसके बाद अपने हाथों को जरूर धोएं। कचरा छूने के बाद अपने हाथों को जरूर धोना चाहिए। हम सबको ये पता है कि हमें अपने हाथ कब कब धोने चाहिए, पर हम बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, या हम जान कर भी अनजान बन जाते हैं। तो हमें ये इसको नहीं करना है, और हैंड वॉश जरूर करें। कुछ स्टेप्स हैं आपको वो फॉलो करने हैं जब आपको अपने हाथ धोने होते हैं। तो हाथ में जब कीटाणु जम जाते हैं, जब कीटाणु हमारे हाथों में होते हैं, उसको हम अपने शरीर के अंदर ना घुसने दें, इसलिए हम कहते हैं कि अपने हाथों को साफ करें। साफ हाथों को कीटाणु से मुक्त करने के लिए, मतलब एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है, अगर वो हाथ नहीं साफ करता है, तो उससे दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ता है और फिर कम्युनिटी भी बीमार पड़ती है, ऐसे रोग फैल जाता है। तो अपने हाथों को धोने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं जब हम अपने हाथों को धोते हैं। 20 सेकेंड तक अपने हाथ को धोना है। थोड़ा सा साबुन, मैं आप सबको यही बोलूंगी कि डेटॉल, जो लिक्विड वॉश होता है, लिक्विड वॉश का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम जब केक का जो साबुन की टिकिया जिसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन उसमें रह जाता है। अगर आप साबुन की टिकिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप साबुन को अपने हाथों में मल कर ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वो इन्फेक्शन किसी दूसरे को भी लग सकता है, क्योंकि उस साबुन के ऊपर इन्फेक्शन है। आप उसको धोने के अपने हाथ धोने के बाद साबुन को एक बारी पानी से निकाल कर रख देंगे, तो वो इन्फेक्शन भी निकल जाता है। पर द बेस्ट वे, जो बेस्ट साबुन है, वो हम डिटॉल लिक्विड को अगर हम इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अपने हाथों में थोड़ा सा साबुन लेकर, हाँ पानी लेकर अपने हाथों को मलना है, अपनी हथेलियों को मलना है, हथेलियों के पीछे वाले हिस्से को मलना है, उंगलियों के बीच में, उंगलियों के पीछे पीछे वाले हिस्से को मलें, अंगूठे को मलें, और दोनों हाथ से को पानी से अच्छी तरह से धो लें। इसको धोने के बाद टॉवल या टिश्यू पेपर से अपने हाथों को सुखा लें। ये स्टेप्स हमें 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले अपने हाथों में साबुन लें, पानी डालें, हाथों में झाग बनाएं, हाथों को धोएं, हाथों के आगे वाले हिस्से को, हाथों के पीछे वाले हिस्से को, उंगलियों के बीच में, उंगलियों के पीछे, अंगूठे को रब करते हुए अपने हाथों को पानी से धो लें, और उसके बाद टॉवल और टिश्यू पेपर से उसको सुखा लें। ऐसा करने से हम अपने हाथों से कीटाणुओं को धो देते हैं और बीमारी फैलने से बच जाते हैं। तो ये अगर हम अपनाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और हम बीमारी नहीं फैलाएंगे। और मैं आप सबको बोलती हूँ कि ये अपने घर में भी अपनाएं, अपने बच्चों को भी बताएं कि ऐसे करने से हम बीमारियों को फैलने से रोक रहे हैं। पर्सनल हाइजीन, अब हम पर्सनल हाइजीन पे बात करते हैं कि पर्सनल हाइजीन क्या है। पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी साफ सफाई, अपने आप को साफ रखना। प्रतिदिन स्नान करना बहुत जरूरी है, आप सब करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि बीमार हैं, ठंड बहुत है तो हम नहाएंगे नहीं आज, और बीमार हैं तो हम नहाएंगे नहीं आज। तो ऐसा नहीं करना है, रोज नहाएं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत गंदगी है। कि हम बाहर अगर जाते हैं, बाहर जो लोग जाते हैं वो बाहर के कीटाणु अपने शरीर पे लगाकर आते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है। और हमारी स्किन ऑयली जब हो जाती है, जब हमारी स्किन नेचुरल जब सिक्रीट करती है ऑयल, तो वो हमारे शरीर के अंदर से जितनी भी गंदगी है वो ऑयल के थ्रू बाहर आता है। तो हमें नहाना चाहिए। दिन में 2 बारी दांतों को ब्रश करना है, एक बारी सुबह, एक बारी रात को सोने से पहले। सप्ते में 2 बारी बालों को जरूर साबुन या शैम्पू से धोना है। वॉशरूम जाने के बाद साबुन से अपने हाथ जरूर धोने हैं। खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के दौरान, खाना बनाने के बाद भी अपने हाथों को धोएं। हम लोगों को ये इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चा बाहर से जब खेल कर आता है, माओं को खास कर ध्यान रखना है, जब बाहर से खेल कर आता है तो वो तुरंत अपने हाथों को धोए, क्योंकि बाहर से जब वो खेल कर आएगा उसके हाथों में गंदगी है, उसके हाथों में मिट्टी है, और वो आते ही अगर खाना खाएगा तो वो सारी मिट्टी और गंदगी उसके खाने के साथ उसके पेट में जाएगी, जिसकी वजह से उसको डायरिया जैसी बीमारी भी लग सकती है। तो खेलने के बाद अपने हाथों को बच्चों को जरूर बोले धोने के लिए। रोजाना साफ कपड़े पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों को धोकर उसको सूरज की किरणों में सुखाएं, सूरज पे सुखाएं। सूरज की किरण में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो आपके घर में या आपके कपड़ों में गंदगी या स्मेल जो भी होती है वो उसको खत्म कर सकते हैं। कपड़ों को धूप में जरूर सुखाना चाहिए। आजकल जैसे सर्दियां हैं, धूप नहीं निकल रही है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उन कपड़ों में कुछ गलन सी स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है। तो वो कपड़ों में जो स्मेल है वो डिटर्जेंट की है, वो पानी की है, तो वो जब मिक्स हो जाती है तो वो सीलन जैसी जो स्मेल है वो हमें आती है। अपने कपड़ों को धूप में जरूर सुखाना चाहिए, धूप नहीं निकल रही है तो प्रेस से जरूर उसको प्रेस कर कर अगली बार पहनना चाहिए। खांसते छींकते के समय नाक और मुंह को जरूर ढककर रखें ताकि इन्फेक्शन किसी और को ना आए। हफ्ते में एक बार ही नाखूनों को जरूर काटें। नाखूनों के बीच में जो काली गंदगी आ जाती है उसकी वजह से आपके जब आप मुंह खाना खाते हैं तो वो आपके पेट में चली जाती है। तो हफ्ते में एक बार ही नाखूनों को जरूर काटें, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, हमें जरूर काटने चाहिए। फिर इसके साथ हमें और क्या करना है? ये तो कुछ टिप्स थे। तो जब व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या है, जब मैंने अभी आपको बताया कि स्वच्छता उसे कहते हैं शरीर का अपना देखभाल, इस अभ्यास में स्नान करना होता है, हाथों को धोना, दांतों की सफाई और जो हम रोजमर्रा में अपने लिए करते हैं साफ सफाई, उसको हम व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं। हर दिन हम बहुत कीटाणुओं का सामना करते हैं और इससे संपर्क में आते हैं और इसी से हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। सो जब हमें बीमारियां लगती हैं, आसपास बहुत सारा इन्फेक्शन है, तो हम वो बीमारियां जब हमें लगेंगी तो हम आगे भी फैला सकते हैं। इसलिए अपनी साफ सफाई रखना भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब व्यक्तिगत स्वच्छता मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या थी। अब हम जैसे वॉशरूम यूज करते हैं, वॉशरूम यूज करने के बाद अपने हाथों को जरूर धोना है। 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन और पानी से जरूर धोएं। हथेलियों को उंगलियों के बीच में, जैसे अभी मैंने आपको सब बताया, उसको धोने के बाद टॉवल से सुखा लें। फिर नहाना रोज है। ऐसे करने से अक्सर स्नान करने

नेचुरल, उसको हम निकाल रहे हैं बालों से। फिर नाखूनों की स्वच्छता, अपने नाखूनों को काटा का छोटे रखें। बहुत लोगों की आदत होती है नेल बाइट करने की। नेल बाइट करने से भी हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन जाता है, तो नेल बाइट ना करें। हफ्ते में एक बार ही अपने नाखूनों को जरूर काटें। सबको अपने दांत सफेद, जैसे सफेद दांत चाहिए होते हैं, तो अपने दांतों और मसूड़ों की देखभाल करने के लिए, उसको रोकने के लिए, तो हमें 2 मिनट तक ब्रश करना है दिन में 2 बारी, एक बारी सुबह, एक बारी रात को सोने से पहले। अदरवाइज आपके दांतों में से दांतों की बीमारियां लग जाएंगी, और दांतों का जो दर्द है वो बहुत बर्दाश्त के बाहर होता है, तो आपको दांतों को साफ रखना है। घर में कोई बीमार है तब भी आपको अपनी देखभाल रखनी है और उसकी भी देखभाल रखनी है, तो आप अपने हाथों को जरूर साफ रखें। अब जब हम नहीं अपनी ये साफ सफाई रखते हैं तो कुछ उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, अगर हम अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाते हैं, आदतें अपनाते हैं, तो हम बीमारियों को अपने आप से दूर रखते हैं। और अगर वही हम अगर अपनी आदतें नहीं अपनाएंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे, शरीर गंदा रहेगा, तो हमसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, हमारी पर्सनालिटी नहीं रहेगी, वो हमारा जो आत्मविश्वास है वो भी कम हो जाएगा, हम लोगों के सामना नहीं कर पाएंगे, लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। यदि आप अपने हाथ बार बार नहीं धोते हो तो आसानी से कीटाणु आपके शरीर के अंदर चले जाएंगे, चाहे आंखों के जरिए, चाहे मुंह के जरिए, चाहे नाक के जरिए, और आप बीमार पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप दांतों को नहीं साफ रखेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, तो पारिया जैसी बीमारी हो सकती है, दांतों में कीड़े लग सकते हैं और दांत खराब भी हो सकते हैं, दांत हिल भी सकते हैं, दांत टूट भी सकते हैं। और स्वच्छता को अपना एक आदत बनाएं, प्रैक्टिस में लाएं। जैसे हम रोजमर्रा का में काम करते हैं, खाना खाना जरूरी है, काम करना जरूरी है, वैसे ही अपनी सफाई भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें इचिंग हो सकती है, शरीर में कीड़े लग सकते हैं, बालों में कीड़े हो सकते हैं, दस्त की बीमारी हो सकती है, और रिंग वर्म जैसी बीमारी भी लग सकती है। रिंग वर्म एक गोल आकार होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो आपको कैसे अपने आप को, मतलब आप इसको कैसे धारण करें, कैसे इसको अपनाएं, रोजमर्रा, मतलब आपको इसको अपनाना चाहिए, हैबिट में लाना चाहिए, रोज टाइम टू टाइम इसको करना है, कब आपको हाथ धोने हैं, कब सफाई रखनी है, कब अपनी सफाई रखनी है, ये करना बहुत जरूरी है। और बच्चों को भी आपने प्रोत्साहित करना है। बच्चों के लिए हम एक साइन बोर्ड बना सकते हैं, हम इसको सेंटर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं कि साइन बोर्ड बनाएं बच्चों को, जब वो सेंटर में आते हैं या घर में आते हैं तो उनको सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं, और जैसे वॉश बेसिन के ऊपर अपना हैंड वॉश का स्टेप्स बना सकते हैं ताकि बच्चे इंटरेस्टली अपने हाथ धोएं। प्लेट्स को जब अंदर रखने जाएंगे, जूठी प्लेट्स अंदर रखते हैं तब अपने हाथ धोने खाने के बाद, तो ऐसे साइंस अगर हम हेल्प करें इम्प्रूव करने के लिए तो बच्चे भी अपने हाथ धो सकते हैं। और एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द माइंड परफेक्ट। जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी हम इसको अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, तो हम सफाई के उतने ही पास जाएंगे। अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सफाई नहीं रखते, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्केबीज एक बीमारी है, जिसको हम छोटे छोटे दाने, जिसको कहते हैं, हमारे शरीर में लाल हो जाते हैं, ये भी एक कंटेजियस है, मतलब एक दूसरे से लगने वाली बीमारी है। ये स्प्रेड करती है बहुत ज्यादा जब एक बंदा एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, और ये कहाँ होता है,
हम अगर

0: आएंगे नहीं तो जो दो शरीर के जॉइंट्स होते हैं, जैसे घुटना हो गया, आपके एल्बोज हो गए, कहीं पर भी जहां साफ सफाई नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, वहां पर ये दाने हो जाते हैं। वहां पर इचिंग होती है, खारिश करने का मन करता है, लाल कलर के दाने हो जाते हैं। तो लाल कलर के दाने ऐसे दिखते हैं आपको, जैसे स्क्रीन में दिख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स जैसे जिसको हम बोलते हैं, वो स्किन में दिखते हैं। कहीं पर भी हो सकते हैं, शरीर के किसी भी हिस्से पे हो सकते हैं ये। और इसको हम अगर नहीं ये किस लिए होते हैं? क्योंकि हम अपनी साफ सफाई नहीं रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए अगर जब हमें ये होते हैं, तो सबसे पहले अपनी साफ सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिसकी स्किन सेंसिटिव है, बहुतों की स्किन साबुन से भी सेंसिटिव होती है, जिसको कोई साबुन नहीं सूट करता है, तो उसको भी ऐसे दाने हो सकते हैं। तो इसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो लैक्टोकैलामाइन क्रीम होती है, लैक्टोकैलामाइन लोशन होता है, जिसको आप इस्तेमाल कर इस दानों को सबसाइड कर सकते हैं। पर सबसे जो फोरमोस्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो यही है कि आप अपने साफ सफाई रखें, रोज नहाएं और साफ कपड़े पहने। ऐसे ही रिंगवर्म होता है, जिसको हम दाद बोलते हैं। रिंगवर्म जो है बॉडी में कहीं पर भी हो जाता है, ये फंगल इन्फेक्शन है। रिंग की तरह ये दिखता है आसपास, जब ये गोलाकार में होता है तो वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, और बीच की जो सरफेस है वो बिल्कुल रेड हो जाती है। इसमें भी हमको इचिंग होती है, रैशेज हो जाते हैं। सिम्टम्स जो हैं, ये हमें इचिनेस देते हैं, खुजली करने का मन करता है, कलर चेंज होता रहता है इसका, कलर रेड से वाइट भी हो जाता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन यूजली वाइट कलर का होता है, और उभरा हुआ ये इन्फेक्शन होता है, गोल शेप में होता है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि या तो आप डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो साफ सफाई रखें, लोशन लगाएं इसके ऊपर, लैक्टोकैलामाइन लोशन होता है, ये इन्फेक्शन को सबसाइड कर देता है। और एंटी फंगल अगर डॉक्टर को दिखाएंगे, तो एंटी फंगल पिल्स भी होती हैं जो डॉक्टर्स देते हैं, वो आप ले सकते हैं इस इन्फेक्शन को हम साफ क्लियर करने के लिए। बट जो फोरमोस्ट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो यही है कि आप अपनी साफ सफाई रखें, नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साफ कपड़े पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूं, आप अपने घर में भी लागू करें, अपने आसपास भी लोगों को बताएं, ताकि वो लोग भी इस चीज को फॉलो करें। एंड आप अपने अब क्योंकि अब आपको CHW की ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो चुकी है, आप ट्राई कर सकते हो, घर घर जाकर बात कर सकते हो कि आप ऐसे ट्रेनिंग ले रहे हो, और आप रिकॉर्ड ले सकते हो कि कितने लोग कितने घर में रहते हैं, उनमें आसपास क्या बीमारी चल रही है, साफ सफाई है कि नहीं है आपके घर के आसपास, ये सब आप रिकॉर्ड लेकर हमें रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कोई कुछ कहना चाहेगा या पूछना चाहेगा?
1: हेलो मैम, नमस्ते। मैं रजनी बोल रही
0: हाँ जी
1: हूँ। अभी जैसे मेरी मम्मी है, वो बेड पे है अभी,
0: हाँ
1: तो उनको ना ठंड बहुत ज्यादा लगती है। जैसे हम अभी ठंड में उनको भी इतनी जल्दी जल्दी मिला नहीं सकते, तो उसके लिए मैं आपसे पूछ रही थी कि उसके लिए हमें क्या मतलब रखना पड़ेगा कि हाँ साफ सफाई रहे।
0: हाँ उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है साफ सफाई रखना। अगर वो नहीं उठ पा रही हैं, तो आप गरम टॉवल से गीला कर कर, मतलब टॉवल को गीला कर कर उनके बदन को पोंछ कर साफ कपड़े पहनाइए उनको रोज, अदरवाइज उनको इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं।
1: जी मैम, ठीक है मैम। वैसे तो हम साफ सफाई रखते हैं, मगर इतना वो नहीं करते, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा परेशानी।
0: नहीं आप प्लीज इसको अपनाएं अपनी लाइफ में, नहीं तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है बहुत।
1: ठीक है ठीक है।
2: निधि, मेरे को लगा कि आज का सेशन इतना सिंपल था, जो हम सब अपने मतलब अपने लिए तो हम उसको अपने लिए लेकर आ सकते हैं ये सारी चीजें। और स्पेशली हमारी जो टीम है, हमारे पिंक सेंटर्स में जो टीम है, उन लोगों के लिए इतना इतना बड़ा इंफॉर्मेशन था मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे डीलिंग है डेली इतने सारे पब्लिक से जो डेली हमारे सेंटर्स को विजिट करते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन इनफैक्ट ये बहुत कंफर्टेबली इजीली ये ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने सारे यूजर्स के साथ भी, जो कंटिन्यूसली हमारे सेंटर्स में आते हैं। क्योंकि हमारे सेंटर्स में सिर्फ सैनिटेशन पर्पस के लिए नहीं, कई बार खाना खाने के लिए आके बैठते हैं ये लोग, और वॉशरूम यूज करने के बाद भी रेस्ट करने के लिए बैठते हैं। तो आपका जो आज का सेशन मुझे लगा इतने सिंपल वर्ड में थे, और इतनी छोटी छोटी चीजें जो कई बार हम नजरअंदाज करते हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और बाकी लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा
0: एग्जैक्टली
2: लगा मुझे
0: थैंक यू
2: सुन आपका।
0: थैंक यू सो मच।

0: हमारे बीच में है मैम जो एजीडीसी स्टार गुरुनाम सिंह और ये अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। जब मैं पहली बार इनसे मिली थी सांवन से, बबीता सांवन है इनका नाम, और ये मैम आप जैसी लड़कियों को जो पे कर सकते हैं 50,000 वो कोर्स सिखाती है, 50,000 फीस ही देंगे ये मैम अपने इंस्टीट्यूशन में कोर्स सिखाते हैं, और हम इनके मुकाबले में तो नहीं सिखा सकते, बट यस आज हमने इनको रिक्वेस्ट करके यहाँ पे बुलाया है कि आपके साथ एक विजन बिल्ड करें कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं और हम फैक्ट्री प्रेमिसेस में कैसे काम कर सकते हैं और किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मोस्ट वेलकम, वी गॉट अ
1: अपॉर्चुनिटी अपैरल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर। हमारे पास डिग्री कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि हमारे पास जितने भी कोर्सेज हैं पेड कोर्सेज हैं, यस। और यदि आप बात करेंगे प्लेसमेंट की तो मोस्टली 80% जो है स्टूडेंट को प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराता है। तो सबसे फर्स्ट बात वहां पर हो रही है स्विंग मशीन ऑपरेटर। तो स्विंग मशीन ऑपरेटर से आप लोग क्या समझते हैं कि स्विंग मशीन ऑपरेटर क्या होता है? एनीवन कोई बताना चाहेगा? स्विंग मशीन ऑपरेटर आई थिंक जब से रिलीज स्टार्ट हुआ है आई थिंक बहुत बार हम सिर्फ स्विंग मशीन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। स्विंग मशीन ऑपरेटर, स्विंग मशीन ऑपरेटर आखिर कौन होता है ये चीज बताइए प्लीज। हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी आपको, आज नहीं तो कल। स्विंग मशीन ऑपरेटर ही है, वेरी
2: गुड।
1: यस, स्विंग मशीन, यस स्विंग मशीन ऑपरेटर मीन्स जो आपकी सिलाई की मशीन है उसको ऑपरेट करना, उसको चलाना सीखना और उससे रिलेटेड ऐसे गार्मेंट बनाना, ऐसी टेक्निक सीखना, वो स्विंग मशीन ऑपरेटर का रोल है एंड उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास हो और हम अपने पैरों पर खड़े हो। तो स्वामी विवेकानंद जी ऐसी एक शिक्षा की बात कर रहे हैं कि जिसमें अपने पैरों पर हम खड़े हो पाए। आप अभी यहाँ पर बोर्ड पे भी आपने देखा है स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, स्किल डेवलपमेंट, स्किल स्किल। आप भी शायद बहुत बार सुनते होंगे स्किल। तो एक्चुअल में स्किल क्या है? कोई वैसे, हाँ जी यस बताइए। स्किल
2: मतलब,
1: हाँ जी स्किल का मतलब है हुनर। अब वो हुनर आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपका खाना बनाना भी हुनर हो सकता है, वो आपका कपड़े काटना सिलाई करना भी हो सकता है, वो हुनर आपको कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग करना भी हो सकता है। तो उस हुनर को सबसे पहले आपको अपना पहचानना है कि आपका एक्चुअल में वो स्किल क्या है। और आज भी मुझे लगता है 99% में श्योर हूं कि आप जितने भी यहाँ बैठे हैं अपने स्किल को पहचान चुके हैं। जो आपका स्किल है दैट इज स्विंग मशीन ऑपरेटर, सिलाई मशीन या सिलाई कपड़े बनाना, कैसे कपड़े बनाना है, कैसे कपड़े बना के आपको मार्केट में उसको सेल करना है। तो जब आपने उस स्किल को पहचान लिया तो नेक्स्ट जो बारी आई है आपकी उससे रिलेटेड ट्रेनिंग करने का, जो कि रीड एनजीओ ने आपको प्रोवाइड कराया है। आई थिंक मैम ने अभी शेयर किया मुझे, इट्स 90 डेज का आपका ट्रेनिंग है जिसमें आपने बहुत सारा कुछ सीखा। स्टार्टिंग जब आपकी हुई होगी आई थिंक सबसे पहले आपने मशीन पर बैठे होंगे, मशीन पर बैठने के बाद आपने उसको चलाना सीखा होगा, उसकी मशीन के पार्ट्स के नेम सीखे होंगे कि कौन सी मशीन के पार्ट्स को वो क्या बोलते हैं, उसके बाद उस मशीन को कैसे चलाना है, फिर कैसे कपड़े से उसको चलाना है, कपड़ा रख के कैसे चलाना है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको पहले से थोड़ा बहुत सिलाई आता हूँ, और यहाँ आके जैसे उनको पता लगा कि उनका स्किल स्ट्रांग है तो आप उन्होंने ये ट्रेनिंग के थ्रू अपने उस स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर दिया। तो जब आपने 90 डेज के कोर्स में ये सब कोर्स किया, अब आई थिंक आप लोगों के एग्जाम्स भी हिंदी कंडक्ट हो चुके आई डोंट नो मैम, तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रिंग मशीन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट या उसकी उपाधि मिलने वाली है। तो स्विंग मशीन ऑपरेटर एक्चुअल में दो तरह से हम बात कर सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री में स्विंग मशीन ऑपरेटर की हम बात कर सकते हैं और एक हम बात कर सकते हैं टेलर जो आप बुटीक में भी देखते हैं या फिर मशीन को जो चलाते हैं, दैट इज टेलर। तो आपको इसकी अपॉर्चुनिटी की यदि हम बात करें तो अपैरल सेक्टर में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है स्विंग मशीन ऑपरेटर की, और यदि आप अपना बुटीक ओपन करते हैं और वहां पर दो तीन टेलर रख के यदि आप अपना बुटीक ओपन करें बिजनेस करना चाहें तो उसमें भी बहुत ज्यादा आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। तो स्विंग मशीन ऑपरेटर यदि गवर्नमेंट इंडस्ट्री की हम बात करें तो 99% स्विंग मशीन ऑपरेटर से ही पूरा इंडस्ट्री चलता है। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि जब तक गवर्नमेंट इंडस्ट्री में स्विंग मशीन ऑपरेटर की मशीन का निडल चलता है तब तक बिजनेस है, जैसे वो स्टॉप हो जाता है तो आपका इनकम कम। तो दैट मीन्स जो मशीन की निडल वहां इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वहां स्विंग मशीन ऑपरेटर की वैल्यू है। तो सबसे पहले आपको स्विंग मशीन ऑपरेटर की वैल्यू को समझना पड़ेगा, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री में यदि स्विंग मशीन ऑपरेटर नहीं है तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री नहीं चल सकती। चल सकती है तो देट मीन्स गवर्नमेंट इंडस्ट्री में ऑपरेटर की यदि जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बट ऑपरेटर के लिए भी कुछ स्किल होने बहुत जरूरी है। स्किल मतलब कि आपको सिर्फ स्टिचिंग आना ही जरूरी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए, जिसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इनकेस आप इंडस्ट्री में जॉब करते हैं या फिर इवन अपना कोई बुटीक या कोई छोटा सा ओपन करते हैं तो उसमें भी वो आपको हेल्प करेगा। तो आपको क्या लगता है कि एज ए ऑपरेटर आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपको मशीन चलाना आना चाहिए। दूसरा कपड़ा सीना आना चाहिए, मतलब आपको सारी सीम्स आनी चाहिए। सीम्स का मतलब है कि गार्मेंट इंडस्ट्री में बहुत सारी सीम्स को यूज करते हैं, जैसे सुपर इको सीम होगी, फैन सीम होगी, बाउंस सीम होगी, ये बहुत सारी टेक्निकल सीम्स के नाम है। सीधे तौर से यदि मैं बात करूं, यदि हम दो कपड़ों को यदि हम सिलाई करते हैं तो उसको हम सुपर इम्पोज्ड सीम कहते हैं। हर सीम्स का एक अपना अलग वैल्यू है। फ्रेंड सीम जिसे लोकल भाषा में लो फोर सीम भी बोलते हैं, जो कि आपको पूरे गार्मेंट को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। अभी तक आपने सीखा होगा कि आप साइड सीम को सिर्फ सीम कर दो है ना, उसको बट उसको फिनिश कैसे कर देना, उसमें क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, तो वो आपको बेसिक सीम क्लासेस आपको हेल्प करती है। कहां पर किस एरिया में कौन सा सीम यूज आपका होना है, कहां सुपर इम्पोज सीम यूज होना है, कहां फैन सीम यूज होना है आपका, कहां लेट सीम यूज होना है आपका, कहां फेल्ट एंड फेल्ट सीम यूज होना है। तो आपको मशीन आने के साथ साथ आपको सीम के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा सीम, सीम मतलब सिलाई की टेक्निक आप कहां यूज करेंगे। आपने सुना होगा गुम सिलाई, सुना है आपने गुम सिलाई? गुम सिलाई का क्या काम है? गुम सिलाई का काम है कि जो जब आप कपड़े को कटिंग करते हैं तो उसके धागे निकल जाते हैं तो उनको छिपाने का काम करते हैं। या तो हम उनको छिपाने के लिए ओवरलॉक मशीन यूज करते हैं या फिर हम लोग गुम सिलाई यूज करते हैं। सेम इंडस्ट्री वाली लैंग्वेज में भी हम उसको फेंसिंग बोलते हैं। तो मीन्स ये है कि सबसे फर्स्ट थिंग आपको मशीन ऑपरेट करनी आनी चाहिए। अब मशीन भी आपकी दो तरह की मार्केट में मशीन अवेलेबल है, सो सिंपल डोमेस्टिक मशीन जिसे आप अम्ब्रेला मशीन बोलते हैं। सेकेंड आपका जो इंडस्ट्री में मशीन यूज होता है दैट इज SLLS सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन, वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक से चलती है और बहुत अच्छा और प्रोडक्शन क्वालिटी मटेरियल है। तो ये दो मशीनों का आपको आना चाहिए। यदि आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको SRLS मशीन तो आपने भी चाहिए, ठीक है, सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन और प्लस में ओवरलॉक मशीन, ये दो मशीनें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको सीम क्लासेस आनी चाहिए, सीम क्लासेस कौन सी सिलाई कहाँ यूज होनी है, उसके लिए कौन सी हम लोग टेक्निक यूज करेंगे। थर्ड थिंग क्या आनी चाहिए एक स्विंग मशीन ऑपरेटर को, आपको सिलाई भी आ गई, सीम क्लासेस की टेक्निक भी आ गई, थर्ड थिंग क्वालिटी में नहीं, क्वालिटी कैसे आपको मेंटेन करनी है। जब आप कोई भी गार्मेंट को स्टिच करते हैं तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका थ्रेड कट करना, जब एंडिंग करते हैं तो बैक स्टिच आप समझते हैं, इसको पक्का करना बोलते हैं। पक्का करना मतलब दो स्टिच आगे पीछे हम करते हैं जब, उसको हम बैक कट बोलते हैं, तो वो करना, उसको पक्का करना, लास्ट के जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट करना। ओवरलॉक यदि आप कर रहे हैं तो ओवरलॉक भी प्रॉपर होना चाहिए, उसके भी थ्रेड आपके प्रॉपर कट होने चाहिए। तो देट मीन्स कोई भी जब आप स्टिच करते हो आपको टेक्निक के साथ साथ क्वालिटी का पता होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी के बाद जो सबसे लास्ट है इम्पोर्टेंट, स्पीड है ना। यदि आपकी स्पीड है तो आप गार्मेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा वहां से काम कर सकते हैं, क्योंकि गार्मेंट इंडस्ट्री में आपका पीस रेट पे काम होता है, समटाइम पीस रेट पर, समटाइम मंथली बेसिस पर भी होता है, लेकिन प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको ये बेसिक चीजें आनी ही आनी चाहिए। इवन आप अपने बुटीक भी ओपन करते हैं या कुछ भी आप करते हैं तो उसमें भी क्वालिटी, स्पीड, टेक्निक, ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में आप लेकर आ सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोगों ने स्किल की बात की गार्मेंट इंडस्ट्री में या क्या इसका वैल्यू है, तो हम लोगों की बेसिक नीड, यदि हम एक सिंपल इंसान की बेसिक नीड क्या हो सकती है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। आई थिंक सब इससे सहमत है, रोटी कपड़ा और मकान ही चाहिए, ये हमारी बेसिक नीड है। तो यदि हम बात करें कपड़ा जो कि सेकेंड नंबर पे आता है, तो यदि हम कपड़े टेक्सटाइल लाइन की बात करते हैं, रेडीमेड गार्मेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं या अपैरल सेक्टर की हम लोग बात करते हैं, तो ये सेकंड नंबर पे भी है डिमांड वाइज। तो यदि आप इसमें फ्यूचर बनाते हैं और उसमें आप अपना हार्डवर्क करते हैं तो 100% गारंटी है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपनी फैमिली को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, और अपनी फैमिली को ही नहीं आप अपने पूरी टीम को साथ में लेकर जा सकते हैं। शायद शाही एक्सपोर्ट हाउस आप लोगों ने सुना होगा, सुना है किसी बच्चे ने, शाही एक्सपोर्ट हाउस गार्मेंट इंडस्ट्री है, भी शेयर किया होगा। तो मैं उनकी थोड़ी सी आपको स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे वो स्टार्ट हुआ। जैसे कि वहां की जो अभी मेन ऑनर है, मतलब अभी वो रिटायर हो चुकी है, अभी सरला आहूजा जी बिजनेस स्टार्ट किया था, और जब उन्होंने वो स्टार्ट किया था बिजनेस एक ऑपरेटर से किया था, सिर्फ एक ऑपरेटर से। लेकिन यदि आप आज देखेंगे तो उनकी 50 यूनिट्स है, उनके वहां पर 11 लाख के आसपास जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं, 75,000 के आसपास यहाँ पर फीमेल जो है काम कर रही है। तो जब एक ऑपरेटर, एक सिंपल हम बोलते हैं कि ऑपरेटर, लेकिन यदि वो ऑपरेटर भी यदि हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ काम कर सकता है तो आप शाही क्या किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको अंदर जरूर होना चाहिए। सरला आहूजा जी का नाम सुना है, सोनम कपूर का नाम सुना है, कौन है, अनिल कपूर का नाम सुना है, अनिल कपूर की जो डॉटर है सोनम कपूर, और सोनम कपूर सरला आहूजा जी की बहू है। तो आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको उनकी बहुत स्टोरी मिलेंगी। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटर को आप सिंपल ना समझिए, इसमें बहुत पावर है, बहुत पावर है, लेकिन उसको किस डेडिकेशन के साथ, किस हार्डवर्क के साथ, किस क्वालिटी के साथ आपको आगे लेकर जाना है वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। हम लोग सिर्फ तो आपको आधे घंटे का लेक्चर दे देंगे, मैम आपको शेयर करेंगे, अभी मैम ने शेयर किया आपको क्वालिटी टाइम मैनेजमेंट, यदि आप यहाँ से सुनते हो, यहाँ से निकालते हो तो तो आई थिंक मुझे लगता है ना तो हमारा कोई वैल्यू है, ना ट्रेनिंग का कोई वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू है. लेकिन यदि आप यहां से सुन के और सीधा आपने दिमाग में डाल दिया तो 100% गारंटी के साथ मैं ये बोल रही हूँ कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. लेकिन आपने कोर्स किया, आप घर बैठ गए, एक दो सिंपल सिंपल चीजें स्टिच कर दी, तो ना तो हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे ना मैं सक्सेसफुल रहेंगे. तो आपको इसका वैल्यू समझना है कि मैंने जो ट्रेनिंग दिलवाई है आपको उसको कहां तक आपको लेकर जाना है. अभी 17 इयर्स मुझे सेम इसी फील्ड में हो गया है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में मैंने क्लासेस ली है, पैटर्न मेकिंग, गार्मेंट कंस्ट्रक्शन, कैट की मैं क्लासेस लेती हूँ. तो मेरा मेन जो है वो टेस्ट स्विंग मशीन से रिलेटेड ही है. स्विंग मशीन मेरी एक्चुअल में फ्रेंड है, मैं उसके साथ बातें करती हूँ. मेरे माइंड में जो इमेजिनेशन होती है, माइंड में इमेजिनेशन मतलब कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के बनाती हूँ. आपको नींद आती है, मैं उसके साथ बैठ के बनाती हूँ, अपने सपनों को पूरा करती हूँ. और ऐसे मैंने कितने ही जानो हजारों बच्चों को मैंने ट्रेन किया है. तो आज के टाइम में अच्छे गार्मेंट इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे मैनेजर लेवल पे वो जॉब कर रहे हैं. और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, फैशन के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अपना बुटीक फैशन स्टूडियो ओपन किया, बहुत अच्छा वो रन कर रहे हैं. तो व्हाई नॉट, आप क्यों? तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको मेन अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, स्विंग मशीन आपने सब सिखा दिया, टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, वो आपको अपने गार्मेंट में इंप्लीमेंट करनी है, क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है. यदि आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, सी आप लोगों ने मार्केट्स में यदि आप देखा होगा, मेंस शर्ट यदि आपने खरीदा होगा, वही शर्ट आपकी 400 रुपए में भी मिल रही है, वही शर्ट आपकी 1000 रुपीज में भी मिल रही है, और वैसे ही शर्ट आपकी 4000 में भी मिल रही है, और वैसे ही शर्ट आपकी 10000 में भी मिल रही है. तो क्या रीजन है इनके बीच में? क्वालिटी, ओनली क्वालिटी. क्वालिटी में बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं, अभी हम लोग वो शेयर नहीं करेंगे. बट जब भी आप कोई गार्मेंट स्टिच करते हैं तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए कि आपकी वो गार्मेंट की वैल्यू कौन सी आप रखना चाहते हैं. 100 रुपीज रखना चाहते हैं या 1000? 100 रुपीज के लिए हो सकता है चलता फिरता काम करे, कस्टमर एक बार ले लेगा, बट अच्छा कस्टमर को आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे. जब तक आप उसे क्वालिटी नहीं देंगे, गार्मेंट को टच करते ही क्वालिटी का पता चल जाता है. तो आपको उसमें इतना कोई भी आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो टाइम पास करने के लिए नहीं बनाना, आपको उसमें अपनी जान डालनी है. और आपको जान डालनी है कि आप इंस्पिरेशन के लिए सलाह ऊर्जा मैं आपको ले सकते हैं कि जब वो एक ऑपरेटर से यू नो स्टेज पर आ सकती है, 51 यूनिट उन्होंने ओपन कर दी है, तो आप भी कर सकते हैं. हालांकि उनको बहुत टाइम लगा, एक दिन में नहीं होती ये चीजें, बहुत टाइम लगा, बट उन्होंने अपना मोटिवेशन को कभी भी डाउन नहीं किया. उनके सामने भी बहुत सारी हर्डल्स आई. और एक गार्मेंट इंडस्ट्री में फीमेल के लिए आप समझिए उस टाइम कितना मुश्किल काम रहा होगा उनको सर्वाइव करना. आजकल तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री में इतनी फैसिलिटी वुमेन्स को मिला है, परसेंटेज आपको मिला है, बहुत फैसिलिटी है, बट उस टाइम में वो नहीं थी. उन्होंने फिर भी इतना स्ट्रगल किया और इस मुकाम पर पहुंचे हैं. तो आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा. आप ये मत सोचिए कि आपके टीचर ने सिखा दिया काम खत्म, हमारा काम खत्म हुआ है, आपका काम अभी शुरू हुआ है ना. तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कुछ एक मैं छोटा सा आपसे शेयर करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कुशन कवर बनाते हैं, अभी जैसे मैम ने आपको दिखाया था ये प्रोडक्ट, तो जब आप उसको कुशन कवर को बनाते हैं, सबसे पहले आप अपने माइंड में मैपिंग कीजिए, माइंड में सोचिए किसको कैसे बनाना है, इसमें कौन सी मशीन यूज होगी आपकी, SNLS मशीन यूज होनी है या अम्ब्रेला मशीन यूज करनी है, ओवरलॉक मशीन यूज करनी है ना. यदि गार्मेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट अभी हम एक वूवन फैब्रिक की बात कर रहे हैं, नॉट नेट की. वूवन फैब्रिक आपका वो फैब्रिक होता है जो कि अभी सबने डाला हुआ है, जो टी शर्ट वाला कपड़ा होता है वो निट फैब्रिक होता है, ठीक है. तो वूवन फैब्रिक की हम बात कर रहे हैं, तो वो कुशन कवर में आप कौन कौन सी मशीनें यूज करोगे, कौन कौन सी उसमें सीम यूज करेंगे, कहां पर कौन सी सीम लगने वाली है ना, आप ये डिसाइड करेंगे वो किस टाइप का डिजाइन है। तो जब आप ये माइंड मैपिंग कर लेते हैं, माइंड मैपिंग के बाद आप अपना काम करना शुरू कीजिए, और जब आप काम करना शुरू करते हैं तो सिर्फ आपके माइंड में दो चीजें रहनी चाहिए, क्वालिटी और स्पीड। क्वालिटी और स्पीड, क्वालिटी और स्पीड होंगी, यू नो आपने क्वालिटी मेंटेन कर ली। एक क्वेश्चन का अगर आप यू नो दो दिन में बना रहे हो, एक दिन में बना रहे हो, कोई फायदा नहीं है ना। आपको अपने टाइम को भी वैल्यू देना है। आप यदि अपने टाइम को वैल्यू नहीं देंगे तो आप आगे सेल करने में आपके यू नो टाइम लॉसेस और काफी कुछ हो जाते हैं। तो आपको स्पीड पे, क्वालिटी पे मेन फोकस करना है। और स्विंग मशीन ऑपरेटर की बहुत अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी, बहुत ज्यादा। आप गुड़गांव सेंट्रल गुड़गांव में आप देखते हैं इंडस्ट्री एरिया, उद्योग विहार मानेसर आप जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहां वो स्किल्ड ऑपरेटर्स को ढूंढती है। स्किल्ड मतलब क्योंकि मैं, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं असेसमेंट के लिए भी जाती हूँ गार्मेंट इंडस्ट्री में, मैट्रिक्स क्लोदिंग में, मुगलामा में, तो वहां असेसमेंट लेने के लिए हम लोग जाते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो काम करते होते हैं, तो जब हम उनकी स्पीड देखते हैं, उनका काम देखते हैं, बहुत डिफरेंस है। मतलब आप ये समझिए कि स्किल ऑपरेटर्स को हम असिस्ट करने जाते हैं और वो इतनी स्पीड में काम कर रहे होते हैं, इतना नीट एंड क्लीन काम कर रहे होते हैं, उनको कोई भी कोश नहीं होता, सिर्फ काम से निकला होता है ना। और जैसे अभी मैंने स्पीड की बात की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस गार्मेंट को बनाने में आपको इतना टाइम लगेगा। जैसे एक बेसिक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग में यदि बात करो, एक मेन शर्ट, आप लोगों ने कभी मेन शर्ट स्टिच किया है? मेन शर्ट, मेन शर्ट आपने किया है? जिसने मेन शर्ट करी है ना, आप समझो कुछ भी स्टिच कर सकता है। मेन शर्ट में सारी सीम क्लासेस यूज होती है, कैसे कॉलर अटैच करना है, कैसे पॉकेट अटैच करनी है, लेग सीम क्या होती है, आपके कप कैसे बनाना है, पैकेट कैसे बनाना है, आप ये समझिए कोई भी गार्मेंट स्टिच कर सकता है। तो एक मेन शर्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है? यदि आपने स्टिच किया है तो बताइए मुझे कितना टाइम लगता है। तीन घंटे? और किसी को कोई शेयर करेगा कितना? दो घंटे
2: काम तो मैंने टाइम तो लगता है मेरे को थोड़ा सा, मतलब तीन से चार घंटे भी लग सकते हैं मुझे, बट मैं मेरे काम में मतलब कोई लेके नहीं आ सकता क्योंकि सर मुझे इस हिसाब से।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी आपको बीट करना है इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट इंडस्ट्री को बीट करना है।
2: जी मैम, मैं कोशिश करूंगी मैम टाइम मैनेजमेंट।
1: और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस गवर्नमेंट को स्टिच करने में कितना टाइम लगेगा। यदि वो आपको नहीं पता होगा, आप टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। प्लीज बैठिए। एक मेन शर्ट को स्टिच करने के लिए 26 मिनट चाहिए। अब आप सोचिए किस लेवल पे हैं आप और आपको कितना इम्प्रूव करना है। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि इंडस्ट्री में स्पीड से, बहुत स्पीड से काम होता है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तभी आप प्रोडक्शन निकाल ना। यदि आप मार्केट में कुछ सेल भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नंबर ऑफ पीसेस देने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी आपको स्पीड चाहिए, स्पीड और क्वालिटी। तो आप देखिए मेन शर्ट में इतना टाइम लगता है, 26 मिनट के आसपास। तो आप बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यदि आपको 50 शर्ट बनानी है तो कितना टाइम लगेगा, है ना? ये नहीं बताओ मुझे टाइम लगेगा। क्वेश्चन कवर है, सिंपल क्वेश्चन का आवाज है तो कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट या 15 मिनट। यदि आप 10 मिनट में ये क्वेश्चन कवर स्टिच करते हैं तो 50 क्वेश्चन कवर को आप कैसे कितने टाइम में स्टिच करेंगे, तो बहुत आराम से आप ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। यदि आप अपना छोटा सा यूनिट भी ओपन करते हैं, दो तीन टेलर नहीं तो हो सकता है आप भी 5-6 लोग मिलकर अपना एक छोटा सा यूनिट, 5-6 मशीनों का यदि आप ओपन करते हैं तो हमें कुछ तो प्लानिंग करनी होगी ना। ये नहीं, बिना प्लानिंग के हम नहीं कर पाएंगे। तो आपको उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट आपको उसमें एस्पेक्ट रखने हैं कि आप क्या स्टिच करने जा रहे हैं, कैसा गार्मेंट है, उसको कितना टाइम देना है, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, आप इस लेवल पे कर रहे हो जब आप बाहर शॉप भी लेंगे, हो सकता है रेंट पर हो, हो सकता है टेलर हो, आपको उनकी भी पेमेंट करनी होगी। बहुत सारी चीजें यदि आप प्लान करके करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सक्सेसफुली आप कर पाएंगे। कोई आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज आप कर सकते हैं। हो सकता है मे बी आप लोगों के माइंड में कुछ चल रहा हो, मैं आपको हेल्प कर पाऊँ इसमें, स्पेशली रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, या फिर कुछ भी डोमेस्टिक का आपको कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछिए। आज मौका मिला है, बोलते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी जब आती है ना बोल के नहीं आती, एकदम से आ जाती है, तो उसको पकड़ लेना चाहिए।
3: मेरी आगे बुटीक के नाम की छोटी सी दुकान है, मैंने अभी डाल दी है पिछले साल से, तो उसमें सिलाई मैं खुद ही करती हूँ। तो मेरे को ग्राहक बढ़ाने के लिए या मतलब अच्छा काम देने के लिए क्या करना चाहिए?
1: देखिए सबसे पहले बुटीक किस लेवल पे आपने ओपन किया है और किस लेवल के आपके कस्टमर आ रहे हैं?
3: मैं अभी तो छोटा मोटा ही चल रहा है, तो आते हैं वो भी सिलाई करके देते हैं, छोटी मोटी मतलब जैसे कॉस्मेटिक का सामान भी रखा हुआ है साथ में, तो सिलाई थोड़ा बहुत करती हूँ थोड़ा बहुत।
1: तो देखिए यदि आपने अपना बुटीक ओपन किया है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले अपने बुटीक का आसपास का एरिया चेंज करना होगा, ताकि कोई आपके कस्टमर में आए, कस्टमर आए आपकी शॉप पर तो सबसे फर्स्ट लुक आपके बुटीक में दे कि क्या स्टिच किया है। सेकेंड थिंग डिजाइनिंग, क्योंकि फैशन एक ऐसी लाइन है, मैं बोलती हूँ कि हर दो घंटे में फैशन चेंज होता है।
3: मुझे ज्यादातर सिलाई का ही काम करना है, वो तो मैंने कॉस्मेटिक में से साथ में रखा हुआ है, पर जितना मेरा ज्यादा ध्यान है तो सिलाई का ही ध्यान है, ज्यादातर मुझे सिलाई का ही करना है, इसलिए आगे बुटीक नाम
1: रखा। सबसे फर्स्ट आपको अपने डिस्प्ले पे फोकस करना पड़ेगा कि आप बुटीक पर कैसा डिस्प्ले करते हैं, ताकि कोई भी कस्टमर आए तो उसको कुछ डिजाइन चाहिए, वो आपके पास आया ही इसलिए है कुछ नया डिजाइन देखने के लिए। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी डिजाइन होते हैं माइंड में, होता है कि ऐसा ज्यादा चाहिए, ऐसी बाजू चाहिए मुझे, ये स्टाइल चाहिए, बट समटाइम उनकी सोच से भी ऊपर आपको उनको बताना है, आपको उनको बताना है, अपने आपको अपडेट करना है कि आजकल ये फैशन चल रहा है मैम, आप ऐसा बनवाइए, ऐसा अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। तो सबसे फर्स्ट टाइम आपको कस्टमर को रीड करना है, रीड मतलब कि रीडिंग की उसको क्या चाहिए,
3: मतलब डिजाइन पे मुझे भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मैं जल्दी दूसरों को बताऊंगा।
1: हाँ बिल्कुल, सबसे मेन तो है कि आपको अपने आप को ही डिजाइन में करना पड़ेगा, बट अपने बुटीक का डिस्प्ले आपको अच्छा करना पड़ेगा। फिर सेकंड थिंग कस्टमर, किस टाइप के कस्टमर आ रहे हैं आपको उनको रीड करना पड़ेगा, कस्टमर की माइंड मैपिंग करने के बाद आप उनके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे तो देखिए आपके कस्टमर क्या व्यू बनेगा, है ना। तो माइंड मैपिंग आप लोग कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, कोई भी दो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं कि वो किस टाइप से हम उनकी माइंड मैपिंग कर सकते हैं। तो जैसे अभी मेरे पास ये होता है तीन कस्टमर हैं, आपका नाम सुनीता है, आपका नाम सितारा है और आपका नाम खुशी है। तो ये तीन कस्टमर हैं आपके और इनको आप समझिए कुछ स्टिच करा रहे हैं। आप अपने माइंड में सेट कीजिए कि आपको क्या अपने लिए स्टिच कराना है, आप इधर आ जाइए, क्या स्टिच कराना है वो अपने माइंड में रखना है आपको। सबसे पहले जो कस्टमर आता है हमारे पास, वो हमारे पास आया है तो हमें पहले उसके लुक को समझना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बोलने से नहीं, आपको आंखों से और माइंड से समझना है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में समझना है, किस बैकग्राउंड से, वो आपको लुक से बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। फिर दूसरा, जब आप ये पता कर लेते हैं फिर आप ऐसे क्वेश्चन रखिए जो कि आपके गार्मेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, किस टाइप की फैशन वो किस लिमिट तक वो जा सकती है। आपको डायरेक्ट नहीं पूछना बहुत सारे क्वेश्चन, आपको इनडायरेक्ट वे से भी पूछने पड़ सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको क्या स्टिच कराना है, एक इनको सूट स्टिच करा दो, तो आप एज ए बुटीक आप उनको क्या हेल्प करेंगे, आपको रिप्रेजेंट करना है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कर सकती हूँ, यदि आप अच्छा नहीं करेंगे भाग जाएगा, है ना। तो आप एक बार डील करके मुझे दिखाएं, ये सबके लिए एग्जाम्पल है, प्लीज आप एक एक पॉइंट को, मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप यहां से ना सुने, यहां से सुने और यहां से ना निकालें, यहां से सुने और माइंड में सीधा डालें, क्योंकि ये चीजें आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करें। तो
3: आप डिजाइन बता सकते हैं, डिजाइन जो जो मेरे को मतलब पसंद है वही बताएंगे। हाँ तो जैसा आप बताओगे वैसा हम सिल देंगे।
1: पीछे तक आवाज आ रहा है? ओके, आ रहा है पीछे तक? देखिए मुझे ये लगता है यदि आप लोगों की टेंशन होगी ना तो सुई गिरने तक की आवाज भी पीछे आ जाएगी, है ना। तो आपको टेंशन लेनी है, इतना स्लोगी वो नहीं बोल रहे, तो प्लीज।
3: तो जैसा आप मेरे को डिजाइन बताएंगे वैसा हम कोशिश करेंगे आपके लिए बनाने की।
1: तो आपने कस्टमर समझ के क्या आपने ऑब्जर्व किया कि क्या उसके लिए किस टाइप का आउटफिट होना चाहिए?
3: जी ज्यादातर तो लोग जैसे बोलते हैं कि जैसे हमने डिजाइन,
1: लोग की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ।
3: हाँ मतलब जो भी आती है मेरी दुकान पे वो ये कहते हैं कि जैसा हमने पहना हुआ है वैसा हमें बनाना है, और कुछ चेंज करना होगा तो वो हम बता देंगे।
1: देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब कस्टमर आपके सामने आते हैं, आपको उसकी ड्रेसिंग सेंस देख के ये समझ जाना चाहिए कि उसको कैसा फिटिंग चाहिए। यदि उसमें लूज डाला है
3: तो दैट मींस ऐसा ही बनाना है।
1: हाँ तो दैट मींस उसको लूज फिटिंग में चाहिए। यदि उसको कंफर्टेबल पसंद है और आप उसके लिए टाइट स्टिच कर देंगे तो वो फिर कैसे आएगा, स्माइल करता हुआ या
3: गुस्से से?
1: और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप सर थोड़ा सा टाइट करते हैं तो सकता है वो आपके मुंह पे मारते जाएगा, कपड़े ये क्या स्टिच कर दिया मेरे कपड़े वापस। ऐसे कस्टमर भी आते हैं या नहीं? हो सकता है आप लोगों में से भी किसी ने ऐसे
3: नहीं। मैम मेरे साथ हुआ था ना ऐसे, एक बार गलती से टाइट हो गया था किसी का, तो गुस्सा कर रहे थे इतना टाइट कर दिया आपने मेरा कपड़ा खराब कर दिया, ऐसे बोला उन्होंने।
1: तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये माइंड मैपिंग कर रही है, माइंड में देखना है कस्टमर को, देखकर आपको बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट करनी है कि उसको कैसा लूज पसंद है, टाइट पसंद है, वो देख के पता चल जाता है फिटिंग, है ना। यदि हम इन कस्टमर की बात करें, है ना, तो इनके लिए आपके डिफरेंट माइंड मैपिंग होगी किस टाइप का उनको पसंद है ना। एज ग्रुप उसमें मैटर करता है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आपके ड्रेसिंग डिजाइन हो सकती है। अब जो ये इस एज ग्रुप के लिए आप डालेंगे इसके लिए तो नहीं बना पाएंगे, है ना। तो एज ग्रुप भी बहुत मैटर करता है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको सजेस्ट करेंगे, अच्छे आइडियाज देंगे कि आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा, आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा। यदि ये कस्टमर है जो कि आपकी क्या एज है, 15 ईयर की है, यदि मैं इनको ये बोलूं कि आपके लिए मैं सूट बना देती हूँ, इतनी लंबी बाजू का बना देती हूँ, यहाँ तक का गला बना देती हूँ और ये आपके ऊपर अच्छा लगेगा, और एक दुपट्टा बना देती हूँ सर पे डालने के लिए, उसमें बहुत आप मस्त लगोगे और दो ऐसे से झुमके आ जाओ, तो क्या वो कस्टमर खुश होगा? हमें अपनी एज ए बुटीक या एज ए डिजाइनर या फिर हम अपनी चॉइसेस के ऊपर नहीं डाल सकते, हम उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग हम उसका ड्रेस डिजाइन करेंगे, तो कस्टमर उसमें हमेशा खुश रहता है। बट कस्टमर को हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीजें भी बतानी है कि देखो मैम ये फैशन में न्यू है, हम ये करेंगे तो ये भी आपके बन जाएंगे। हम ऐसे उनको सजेशन हमें देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं
3: थोड़ा पॉइंट ये नहीं दे पाती हूँ,
1: कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी होता है कि कस्टमर ये सोचता है, ट्रस्ट हो जाता है उसके ऊपर कि क्योंकि वो एक जैसा नहीं डालना चाहता, कुछ डिफरेंट डालना चाहता है, कुछ डिफरेंट नेकलाइन डालना चाहता है, कुछ डिफरेंट बाजू के डिजाइन बनाना चाहता है। तो वो जो डिजाइनिंग आपको जो बतानी है वो सोच समझ कर और कस्टमर ट्रस्ट करके ऊपर आ रहा है आपके ऊपर कि ये मुझे बेस्ट डिजाइन मिलेगी और मेरे बजट के अंदर। समटाइम ये सिचुएशन भी हो जाती है कि कोई ऐसा डिजाइन है जिसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, मैं उस टाइम की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे अभी आपने बताया शर्ट को आपको 3 घंटे लगे या एक पूरा दिन लग गया, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, उस टाइम टाइम की बात। समटाइम कुछ डिजाइन में हमें ज्यादा टाइम लगता है, तो जहां ज्यादा टाइम लगेगा वहां आपका ड्रेस का कॉस्ट भी बढ़ेगा, स्टिचिंग कॉस्ट बढ़ेगी, नहीं? ओके, एक सिंपल सूट है और यदि आप उसके गले में छोटा सा पाइप में लगाते हो तो दोनों में सेम टाइम ही लगेगा, नहीं? अलग अलग लगेगा क्योंकि इसमें पैटर्न लगी है तो टाइम ज्यादा लगे, अब टाइम ज्यादा लगेगा तो पैसा भी तो ज्यादा लगेगा, है ना। तो वो यदि आपके किसी डिजाइन में यदि एक्स्ट्रा टाइम आपको लग रहा है उसको वर्कआउट करने में, तो आपको बहुत पोलाइटली अपने कस्टमर से शेयर करना है कि इस डिजाइन में मैम को लेबर कॉस्ट बढ़ सकता है आपका, लेकिन आपके पास अच्छा बहुत लगेगा और ऐसा डिजाइन मैं आपको बना के दूंगी, लोग आप लोगों से पूछे। तो ये कुछ कुछ टेक्निक्स हैं आपको अपने कस्टमर से बात करने की, या फिर जिससे भी आप डील कर रहे हैं, यदि आप बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं या फिर जिससे भी है जो भी एक्स वाई जेड है आप उससे बात करते हैं, तो उन टेक्निक्स को आपको माइंड में जरूर रखना है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि डोमेस्टिक मार्केट में कैसे काम होता है। डोमेस्टिक मार्केट मतलब जैसे जितने भी छोटे बुटीक्स हैं, छोटे टेलर्स हैं आपके, वहां पर इस टाइप को आप डील कर सकते हैं। प्लीज हम थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो क्लैपिंग अरे मुझे लगता है आप खड़े होना भी इसके लिए भी चाहिए कुछ ना कुछ, ये नहीं जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे आपका कॉन्फिडेंस ना, मतलब यहाँ आने का मतलब है कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आपका हाथ होना चाहिए, मैम मैं करूँगी, मैम मैं करूँगी। जब आपने ये सीख लिया तो आप आगे बढ़ने से आप करेंगे। कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा?
4: अभी जैसे मैंने प्रोडक्शन का स्टार्ट किया है कि मुझे अपना जुनून समझ लो इस चीज के लिए कि सेंटर को आगे लेके जाना है, कम्युनिटी को जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे उनके लिए मैं काम खुद लेके आना है और कुछ लोगों से हटके मुझे करना है उस चीज के लिए। तो अभी जैसे मैंने स्कूल का ऑर्डर लिया था उन्होंने इसे कम्प्लीट करके दिया, पर मुझे वहां पर सबसे ज्यादा चैलेंज क्या आया, एक तो क्वालिटी में कोई वो नहीं है, चैलेंज क्या आया, एक तो कपड़े का GSM का बहुत दिक्कत है मुझे उस चीज के लिए जो उनका रेट है। अगर मान एक शर्ट का रेट मुझे 145 रुपए देते हैं तो कट टू पैक में 145 में उनको कई बार दे पा रही हूँ कई बार नहीं दे पा रही हूँ कि क्वालिटी में वो चीज क्या हो जाएगी, वो कपड़ा जो दिखा रहे हैं उस चीज के लिए ये हमें कपड़ा चाहिए। तो उस चीज के लिए मैं मार्केट में ट्राई कर रही हूँ, मार्केटिंग में देख रही हूँ सब चीज के लिए, उसमें मुझे काफी दिक्कत आ रही है उस चीज के लिए।
1: मुझे लगता है इस टाइप के चैलेंज हर कोई फील करता है, यदि हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, यदि हम अच्छी क्वालिटी देना चाहें, अच्छी क्वालिटी मीन्स फैब्रिक अच्छा देना चाहें, अच्छे स्टिचेस देना चाहें, तो बट जो बाय करने वाला है उसको उसके कॉस्ट में फिट नहीं होता है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा कि आपका फर्स्ट कस्टमर है या कैसा कस्टमर है। फर्स्ट कस्टमर यदि है और यदि आप अपना काम उसमें प्रूव करना चाहते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है स्टार्टिंग में नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करना चाहिए।
4: पहला ऑर्डर में नो प्रॉफिट नो लॉस में,
1: सेकंड आपको उस कस्टमर को ये भी शेयर करना है कि सी मैं अभी आपको इतनी क्वालिटी में इतनी कम कॉस्ट में दे रही हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नहीं दे पाऊँ, मेरा ये कॉस्ट है क्योंकि आपको अपना वैल्यू खुद भी शो करना पड़ेगा। जब तक आप अपना वैल्यू नहीं शो करेंगे, और शो करना नहीं है वो आपके गाउन में अपने आप दिखेगा, वो वैल्यू क्वालिटी आपके गाउन में दिखेगा 100% वो कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपके पास। और मैं बहुत सारी ऐसी चीजें GSM के अकॉर्डिंग आपको देखा, तो इसमें सबसे मेन चीज है मार्केट में आप रिसर्च कीजिए, मार्केट में आप सर्वे कीजिए, इतने टाइप के आपको मार्केट्स का यदि आपको नॉलेज होगा अच्छे से
4: एक महीने पूरा सर्च किया मार्केट को गांधीनगर, यहाँ तक कि कपड़े की क्वालिटी को बड़े दुकान पे मैंने जाके जो आपका मैटी है स्पन है उसकी क्वालिटी को पहले वो क्या था कि मुझे स्पन और मैटी में फर्क नहीं पता लगा, इवन दुकानदार को भी फर्क नहीं पता लगा, एक शॉपर ने भी मुझे बताया कि मैम आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, उसने मुझे दोनों कपड़े को जला के दिखाए, मैटी जला तो एक राख बन गया, जब स्पन जला तो चिपक गया आपस में, तब मुझे वो कपड़े का जीन्स भी समझ में आया उस टाइम पे।
1: बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे अभी हम जैसे मैं आपने शेयर किया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे अभी आपने 90 डेज का कोर्स किया है, तो 90 डेज के कोर्स में बहुत सारी चीजें हम लोगों के लिए सिखा पाना मुश्किल होता है, तो दैट्स व्हाई इन चीजों के लिए जो है 6 मंथ के कोर्सेज, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज बने हैं, उसमें आपको नॉट स्विंग टेक्सटाइल कपड़ा कैसे बनता है, फैब्रिक साइज क्या होता है, आपका पैटर्न मेकिंग क्या होता है, गार्मेंट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या होता है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको ये बेसिक एजुकेशन में आप लर्न कर सकते हैं। और इन केस आपको कुछ इस टाइप के हर्डल्स आते हैं तो बिल्कुल बहुत पास में ही मेरा इंस्टीट्यूट है 44 सेक्टर में अपना ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर एज ए गाइडेंस के लिए आप वहां भी आ सकते हैं। और किसी बच्चे का हो कोई सोल्यूशन कुछ पूछना चाहता हूँ कोई कोई क्वेरी हो कुछ क्वेरी नहीं है मतलब मुझे लगता है कि क्वेरी नहीं है तो आप लोगों ने आज तक अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं किया कि आप करना क्या चाहते हैं। जब मेरे पास बच्चे आते हैं डे वन मैं उनकी ओरिएंटेशन लेती हूँ डे वन ही मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन बच्चों के सामने रख देती हूँ और वेरी फर्स्ट डे मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आपको करना क्या है नेक्स्ट डे मुझे क्लास में बताना क्योंकि आपने किस चीज में क्या ज्वाइन जो भी किया है किस पर्पज से किया है। जैसे अभी मैम ने भी कहा कि यदि आप यहाँ पर सिर्फ अपनी हॉबी पूरा करने के लिए आप पोस्ट कर रहे हैं तो सॉरी इस टाइप की सीट्स आपने मुझे मिलेगी नहीं। तो सबसे फर्स्ट आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपने कैरियर में करना क्या है। आपका कैरियर सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक सिर्फ सूट सलवार स्टिच करना है नो आप उससे आगे सोचिए आप अपने पैरों पे कैसे खड़े हो सकते हैं अपने आप को कैसे आप अर्न मनी अर्न कर सकते हैं अपनी फैमिली को कैसे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं है ना। तो वो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा यदि आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो देट मीन्स आपने अभी तक नहीं सोचा।
5: वेरी
1: गुड श्याम बात बताइए।
5: मेरे दो बच्चे मैं इसी वजह से घर से ज्यादा निकल नहीं पाती तो इंस्टीट्यूट में ये आरडीटी इंस्टीट्यूट जो मेरे बिल्कुल करीब है तो मैं दो घंटे लगा जाती हूँ बच्चे स्कूल चले जाते तो मैं दो घंटे लगा जाती हूँ लेकिन अभी जैसे काम हो गए तो मैं घर पे मैं चाहती हूँ कि जो भी काम हो मेरे घर पे आके मैं घर पे बैठ कर सकती हूँ क्योंकि घर की संभालना और मेरी एक्चुअली में छोटा मोटा बुटीक भी खोल रखा नहीं घर पे तो थोड़ा बहुत आता है वो मैं करती हूँ लेकिन इसके अलावा मैं सात तीन कई दो तीन घंटे फ्री रहती हूँ तो मैं चाहती हूँ घर पे कोई ऐसा काम आए कि मैं घर पे बैठ के आराम से कर
1: सकूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं जहाँ तक फीजर बैठी फीजर का बात है जहाँ वुमेन की बात है इंक्लूडिंग मी इंक्लूडिंग मैम हम लोग सब इस चीज को फेस करते हैं बट मुझे लगता है एज ए वुमेन हमें ये मेंटेलिटी को निकालना पड़ेगा कि कोई काम हमारे घर चल के आ रहा है हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा यदि आपको आगे बढ़ना है तो ठीक है ना आपके टाइम आपके घर पे कुछ टाइम के लिए आ जाएगा आपको आप उससे मनी भी अर्न करना शुरू कर देंगे लेकिन कब तक और कितना आपको आगे बढ़ने के लिए आगे निकलना ही पड़ेगा। घर बैठे चीजें नहीं मिलेंगी अब वो आपको देख रहे हैं कि कैसे आप अपने बच्चों को सेट करें है ना कैसे आप सेटिंग करें वो ऐसे यही हम लोगों का मेन वुमेन का मैनेजमेंट होता है हमें घर भी देखना है। अभी जैसे आप बात कर रहे हैं अभी यदि आप मेरी बात करते हैं तो मेरा भी जो है थर्ड क्लास में बच्चा पढ़ता है मैं भी अपना बच्चा भी संभालती हूँ अपनी फैमिली भी संभालती हूँ और इधर आकर कम से कम मेरे पास 300 के आसपास स्टूडेंट हैं उनको मैनेज करना क्लासेस मैनेज करना बाहर जाना इंडस्ट्री में जाना एज ए मैं आप लोगों के पास भी यहाँ शेयरिंग हमें ऐसे भी जाना पड़ता है तो ऐसे अपने आपको आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी बाउंड्रीज से निकलना पड़ेगा जरूरी नहीं है हर टाइम आपके घर में ही सब चीजें आए थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा यदि आपको आगे बढ़ना है। मीनवाइल आप अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं घर रहकर जितना अपने स्किल को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे स्किल को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है दृढ़ निश्चय इसके अलावा दृढ़ निश्चय तो बहुत छोटी चीज है ना
5: प्रैक्टिस करके
1: यस आप अपना कोई भी स्किल है जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्लाउज स्टिच किया एक दिन में आपने 3 घंटे में स्टिच किया उसको दोबारा प्रैक्टिस करते हैं फिर आपका टाइम कम हो जाता है टाइम कम हो जाता है टाइम कम हो जाता है तो वो आप जब बार बार प्रैक्टिस करके अपना क्वालिटी और टाइम को यदि आप क्वालिटी बढ़ाना है आपको और टाइम कम करना है तो आपको स्किल इम्प्रूव होता है ना। तो स्किल को आपका स्किल ही ऐसा है जो उस स्किल को लेके आप अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। इस बेटे लास्ट में आपको कोई है इतनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं आप कुछ पूछना आपको नहीं बिल्कुल कुछ नहीं पूछना है इधर से पीछे मैं तो अपने बच्चों को यू नो हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देती हूँ यदि वो नहीं भी आते मैं बुलवाती हूँ उनसे बोलना बहुत जरूरी है अपनी चीजों को बताना जरूरी है हो सकता है कुछ आपको बेनिफिट हम लोग दे पाए कुछ आपको हो सकता है गाइड कर पाए। हाँ जी यस
5: मेरे को फैशन डिजाइनर बनना है
3: बट मैं उसको ये नॉलेज नहीं है कि मतलब आगे क्या करूँ, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, और उसका कॉस्ट क्या रहेगा, उसके चार्जेस क्या होंगे, मतलब इन चीजों के बारे में अभी तक मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। तो
1: वैसे आपके मन में कुछ आया कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, तो क्या करते हैं? घर में बैठे बैठे अपने दिमाग में उस चीज को रखते हैं या उससे रिलेटेड आगे पूछना शुरू करते हैं? और आई थिंक आप अभी ये क्वेश्चन कर रहे हो, अभी तक आपको कम से कम 10-12 इंस्टीट्यूट छान मांग रहे थे। गाँव में काफी सारे इंस्टीट्यूट है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर आप अपने इस टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं। डिग्री प्रोग्राम भी है, डिप्लोमा प्रोग्राम भी है। डिग्री प्रोग्राम में आपका जैसे हम लोगों के इंस्टीट्यूट में है बैचलर वोकेशनल इन फैशन डिजाइनिंग रिटेल, तो ये 3 ईयर का प्रोग्राम है। 3 ईयर प्रोग्राम्स में आप फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फैशन डिजाइनिंग को लोग सिर्फ अच्छा दिखने में आई थिंक सोचते हैं, बट फैशन डिजाइनिंग में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। कपड़ा कैसा बनता है, कैसे उसकी वीविंग होती है, कैसे उसको कलरिंग होती है, कैसे उसकी डाइंग होती है, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज हो गई, आपकी बहुत सारी चीजें उसमें। तो इसमें फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ आपका एक मैन्युफैक्चरिंग डिप्लोमा कोर्सेज भी है, वो भी बहुत ज्यादा आजकल सबसे ज्यादा। यदि मैं स्ट्रेंथ बोलूँ मेरे इंस्टीट्यूट में, तो सबसे ज्यादा जो मेरे पास स्ट्रेंथ आती है दैट इज AMT कोर्स के लिए आती है। AMT मीन्स अपैरल मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी, मीन्स सबसे ज्यादा यदि जॉब अपॉर्चुनिटी की बात यदि हम गारमेंट इंडस्ट्री में करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है इसमें हमें 100% बच्चों को हम प्लेसमेंट दे पाते हैं। पर यदि फैशन डिजाइनिंग में जब बच्चे करते हैं हमारे पास, तो सबसे ज्यादा सर हम हर्डल्स करते हैं। या तो बच्चे अपने बुटीक ओपन कर सकते हैं या फैशन स्टूडियो ओपन कर सकते हैं, बट एज ए डिजाइनर यदि इंडस्ट्री में वो जाते हैं तो वहां पर बहुत कम कॉस्ट होती है एज ए डिजाइनिंग के लिए। तो यदि आप डिजाइनिंग यदि अपना बुटीक अपना फैशन स्टूडियो या फिर इस टाइप का कुछ अपना डिजाइनर ब्रांड ओपन कर सकते हैं, तो आप इस लाइन में जा सकते हैं। अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत बहुत लार्ज स्केल पे जो है इसमें काम हो रहा है, आप इसमें भी आप जा सकते हैं। तो यदि आप गुड़गांव सेंटर में करेंगे तो इधर IIMD है, विंकर यूनिवर्सिटी है, अंसल यूनिवर्सिटी है, इधर अपैरल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर है, वो भी मतलब आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। इवन काफी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जहाँ पर फ्री कोर्सेज भी, नॉट फ्री स्पॉन्सर कोर्सेज, CSR के अंडर जो कोर्सेज आते हैं वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब पेड अनपेड।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया

0: अपने समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ, पर पूरे पूरे जहान में मैं सबसे अच्छी हूँ, क्योंकि मैं रोज रात को सोने से पहले ये सोचती हूँ कि आज मैंने अच्छा काम किया क्या। और अगर मैं 10 काम भी रोज अच्छे कर लेती हूँ, तो साल के एंड में अगर मैं अपनी डायरी देखूंगी, जो मैंने पहले कभी बहुत बार ही बोला है कि अपनी डायरी लिखनी चाहिए, तो एंड ऑफ द ईयर मेरे पास इतने अच्छे कामों का खजाना हो जाएगा कि मैं कभी कुछ गलत करना ही नहीं चाहूंगी। मेरी सोच में से ही निकल जाएगा कि मुझे कुछ गलत करना है, तो नेचुरली देन आई एम द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड। यू कैन सी हाउ वी कैन गो स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड टू रीचिंग अप टू दीस पॉइंट्स। दिस इज पॉसिबल इफ यू हैव अ पैशन। और पैशन क्या है? कंटेजियस है, एक बीमारी है छूत की। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आज पैशनेट हूं कुछ करने के लिए, और जब तक मैं उसको कर नहीं लूंगी, मेरे को अंदर इरिटेशन होएगी, मुझे अंदर ये फीलिंग आएगी कि व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। वॉचिंग ए पैशनेट लीडर एनर्जाइजेस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो लीडर होता है वो दूसरों में भी पैशन की वो आग लगा देता है कि यू शुड ऑल्सो बिकम पैशनेट। और जो पैशनेट नहीं है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जो लीडर है वो इतना एनर्जाइज करता है सबको कि वैल्यूज की बात करेगा, गोल्स की बात करेगा, परफेक्शन की बात करेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की बात करेगा, अपने ये जो एटीट्यूड्स हैं और जो अपनी वैल्यू सिस्टम है वो सबको बार बार बार बार शेयर करेगा। तो ये क्या है, एक कंटेजियस भी हो जाता है, और वो जो पैशन है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को, जो लीडरशिप है सारी ऑर्गेनाइजेशन को एनर्जाइज कर देती है। तो लीडर्स सेंस ऑफ पैशन एंड जॉय सेंस इट टिंगल डाउन टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। टिंगल डाउन का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो हमेशा पोक करता रहता है कि यू जस्ट मूव टुवर्ड्स परफेक्शन, यू जस्ट मूव टुवर्ड्स आई शुड से दैट कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्रंट लाइन। उसकी प्रोग्रेस के लिए हम बात करते रहे, द रिजल्ट इज प्योर मैजिक। व्हेन यू विल डू दिस यू विल नॉट रियलाइज कि आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अब आप देख लो, रीड इंडिया को देख लो, अगर हमारे में पैशन नहीं होता, अगर मेरी टीम एनर्जाइज नहीं होती, तो क्या हम 1 करोड़ की बैलेंस शीट से 13 करोड़ तक पहुंच जाते, या 10 करोड़ तक पहुंच जाते 13 साल में? पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज काम ने अपने आप को दिखाया, हमने काम किया, हम एक्सपैंड हुए, हमने इतने सारे सेंटर्स बनाए। तो जो रिजल्ट अभी हमारे सामने आया है, तो हम उसको डॉक्यूमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना मैजिक आउटकम आ गया हमारे सामने। हमें जो भी कोई कहता है कि आप इतना काम कैसे कर रहे हो, पर हम कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, काम तो नजर आ रहा है ग्राउंड पे, आपके सामने है जो आप काम कर रहे हो। और अगर आप लोग भी डॉक्यूमेंट हमारे लिए, तो इट्स टू लेट टू डॉक्यूमेंट नाउ कि आप मुझे पिछले 13 साल का वो लिखना पड़ेगा, पर आप लोग तो अभी से लिखना शुरू कर दो आप क्या कर रहे हो। लिखना क्या है, आप लोगों के टच में हो, कोई भी स्टोरी आपको अच्छी लगती है आप अपनी डायरी में लिख लो, कोई भी काम आपको अच्छा लगता है आप अपनी डायरी में लिख लो, किसी की भी लाइफ आपने ट्रांसफॉर्म करी है जो आपके सामने आके बता रहे हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये चेंज आ गया, आप उसको लिख लो। आपने जो ट्रेनिंग करी उसके बारे में लिख लो, जो भी आपने काम किया उसका क्या आउटकम आया, अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप उसको लिखते जाओ। तो ये क्या होगा, आपका एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि आप किसी भी ऑथर को दोगे वो बोलेगा अच्छा मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको, ये तो बड़ी अच्छी स्टोरी है जो ग्रास रूट से उभर के आई है, जो एक्चुअली द नेक्टर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, आई शुड से द एसेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो है वो आप लोग कर रहे हो। एंड इट्स अ फैक्ट, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है जो सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो काम करते हैं, जो फंड रेज करते हैं, पर मैं उन सबको एक साइड पे रखूंगी, पर जो काम आप लोग कर रहे हो उसको मैं बहुत ही हाइट पे रखूंगी, बिकॉज डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ काम करना ही एक सोशल डेवलपमेंट का मकसद है, ठीक है? जो रिजल्ट्स नेचुरली दे विल बी मैजिकल रिजल्ट्स, तो हमें उस सिचुएशन तक अपने आप को लेके जाना है। नेगेटिविटीज आती हैं, गुस्सा मुझे भी आता है, मैं भी बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, पर मैं इमीडिएटली अपने आप को करेक्ट कर लेती हूँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके कि नहीं, मुझे राइट स्टेप लेना है, मुझे नेगेटिव नहीं जाना। और अगर इस चीज को मैं डिले कर देती हूँ ना, तो उतना ही जो मैजिकल रिजल्ट्स हैं वो वापस आने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है नेगेटिविटी कितनी स्पीड से चलती है, पर पॉजिटिविटी को पकड़ के हाथ में रखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ये सबको पता है, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड नेगेटिव हाईएस्ट स्पीड से भागता है, पर उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये पैशन और जो मैं बात कर रही हूँ, हंगर और डिसिप्लिन, ये बहुत तीनों चीजें लिंक करती हैं। आर यू एमिंग टू बी बेस्ट यू, ठीक है? तो चलो हम हंगर की बात करते हैं। यू वॉन्ट टू विन एंड यू हैव टू विन, ये सबको पता है। ये तो मैं अभी पिछली स्लाइड्स में भी मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया है कि हमें विन तो करना ही है। इफ यू वॉन्ट टू विन यू मस्ट फर्स्ट फील हंगरी फॉर यू। हंगर जब तक नहीं आएगी हम कैसे विन करेंगे? When we swim, we keep our mouth out of water to breathe. We cannot put our head in water for long time as we need air to breathe. अगर हम अपना सिर पानी में डुबो के ही तैरते जाएंगे तो हमें सांस कैसे आएगा? इवन फिश भी अपना मुंह थोड़ा सा बाहर करती है पानी से, कभी कभी उसको हवा चाहिए होती है। When you want to win and need wisdom as badly as you need the air when you are underwater, you will get it because you struggle to get the air and relaxed when you got it. तो ये बहुत एग्जाम्पल डायरेक्टली रिलेटेड है आपके विजडम से। जब आपको कुछ चाहिए और आप बैडली उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि जब अपना सर आप पानी में डुबा के तैरते हो तो आपको उस समय क्या चाहिए? हवा चाहिए, एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। तो आप डेस्परेटली अपना सिर बाहर करते हो एयर लेने के लिए। और जब आप चल रहे हो एंड यू वॉन्ट टू विन, यू वॉन्ट टू अकॉम्प्लिश, एंड वेन यू आर स्ट्रगलिंग टू अकॉम्प्लिश एंड यू गेट द रिजल्ट्स, देन यू फील रिलैक्स्ड। उसमें गैप क्या था? जब हम स्विम कर रहे हैं एयर का गैप था, और जब हम अपना काम करते हैं तो हमारे सामने कोई भी गैप आ सकता है, और उस गैप को फिल करने के लिए, उस चीज तक पहुंचने के लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जब हम स्ट्रगल करते हैं तो हम रिलैक्स्ड फील करते हैं कि मैंने एक मकाम या दो मकाम या तीन मकाम अपने पार कर लिए अपनी हार्डशिप से, अपने स्टेप से। सिमिलरली व्हेन यू वांट टू रियलाइज योर पैशन यू नीड हंगर, एंड व्हेन यू आर एबल टू गेट द फूड यू रिलिश यू रिलैक्स। अगर सिंपलेस्ट वर्डिंग में मैं बोलूं, हम रोज सुबह उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, किसके लिए? लेबर को देख लो, हमें देख लो, बड़ों को देख लो, एक्सेप्ट जो माल फंक्शनल है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। हम सब लोग अपने घर से निकलते हैं एक गोल के लिए कि हमें पैसा चाहिए सर्वाइवल के लिए। पैसे से हमने खाना खरीदना है, अपनी फैमिली को चलाना है, अपने परिवार को चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। हम ये सब अचीव कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिलती, वो भी स्ट्रगल करता है। किसी को कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो उनके लिए स्ट्रगल करता है। पर जब हम उनको अचीव कर लेते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं। यही पैशन हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होना चाहिए, ठीक है? तो ये मैं फिर ये मैं पैशन और हंगर को कोरिलेट कर रही हूँ। तो लास्ट में मेरा एक ही पॉइंट है कि डू नॉट गिव अप। कोई भी चैलेंज आता है तो प्लीज डू नॉट गिव अप, जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व इट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, डिसिप्लिन। हमने हंगर की बात कर ली, पैशन की बात कर ली, द मैजिक इन योर हेड फॉर एक्शन। वंस यू हैव द पैशन एंड हंगर, यू विल सी अ रोड एमर्ज इन फ्रंट ऑफ यू लीडिंग यू टू योर गोल। ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। देयर विल बी ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे, देयर विल बी रोड ब्लॉक्स, यू नीड डिसिप्लिन टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम अगेन एंड अगेन। जितने भी लीडर्स हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में एक ही बारी काम करके सक्सेसफुल नहीं हो जाते, उनको बार बार एक्शन लेना पड़ता है, बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है, बार बार अपने रोड ब्लॉक्स को रिमूव करना पड़ता है। पर जब हम राइट एक्शन एट राइट टाइम लेते हैं तो हमारे जो रोड ब्लॉक्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। सो यू नीड डिसिप्लिन टू स्टे ऑन द राइट ट्रैक। दोज हु विन द गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद डिसिप्लिन। वो ये तो नहीं कहते अच्छा आज तो नींद नहीं खुल रही, आज हम नहीं जॉगिंग के लिए जाते। वो ये भी नहीं कहते कि आज तो मैं पिक्चर देखने चला जाता हूँ, आज अपने फुटबॉल की क्लास मिस कर देता हूँ। कितना वो डिसिप्लिन रखते हैं अपनी लाइफ में, कितना उनके अंदर पैशन होते हैं, कितना उनके अंदर हंगर होता है उस गोल्ड मेडल को लेने के लिए। सिमिलरली जो बच्चे ब्राइट हैं, जो स्कूल में स्कॉलरशिप्स और आगे बढ़ते हैं, उनकी मेहनत और जनरल एक किसी भी बच्चे की मेहनत को हम कंपेयर करें तो फर्क होता है। बिकम अ पैशनेट हंगरी एंड डिसिप्लिन पर्सन, सक्सेस इज कॉलिंग, आर यू रेडी? यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। तो ये तीनों पॉइंट्स पे, पैशन, हंगर और डिसिप्लिन में कोई कोई सुझाव और देना चाहते हैं? किसी के दिमाग में कोई और बात आ रही है या कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हम ऐसा करते हैं, 5 मिनट डिवोट करते हैं इस पे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है? तो आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं।
1: गुड आफ्टरनून मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से। मैम पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपका जो ये प्रेजेंटेशन थी जो आपने हमें समझाया, एक बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल थी, इनलाइटनिंग थी। हमें बहुत ज्यादा मतलब एक मोटिवेशन फील हो रहा है कि डिसिप्लिन एक